पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ इसके लिए तैयार है तैयार? दो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। अभी बाप दादा अचानक ही बीच में रिजल्ट मंगाएगा? डेट नहीं बताते हैं, अचानक ही एक मास के अंदर कोई भी डेट पर रिजल्ट मंगाएंगे? करना ही है, ये प्रॉमिस अपने आप से करो। बाप दादा कराएगा, वह तो कराते ही है, लेकिन अपने आप से ये संकल्प करो और प्रैक्टिकल करके दिखाओ। करना ही है, करेंगे गेंगे नहीं। अभी गेंगे अच्छा नहीं है, हम बाबा कहते अभी गेंगे अच्छी नहीं है। समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है, तो समय का परिवर्तन करने वाले क्या आप पूर्वजों को अपने दुखी परिवार पर रहम नहीं आता है? रहम दिल बनो, दुखियों को सुख का रास्ता बताओ, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क से। अपना परिवार है ना, तो परिवार का दुख मिटाना है, रहम दिल बनो। अच्छा, अभी जहां भी जो बैठे हैं उन सबको, चाहे टीवी में देख रहे हो, चाहे यहां भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हैं, वह भी टीवी में देख रहे हैं, एक एक बच्चे को बाप दादा आज तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल दे रहा है। अभी इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन हो, तो यही कहना, तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है, सभी को मंजूर है? मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसलिए अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो सभी बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार और तीव्र पुरुषार्थ की सौगात दे रहे हैं। सभी बच्चों को ये टाइटल देकर के बाबा ने सौगात दे दी। अच्छा, ओम शांति। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सत्योगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है, जैसे सत्योगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। आज का स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। आज का व्यक्त इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, आप ईश्वरीय सेवाधारी सेवा करने वाले हो, न कि सेवा लेने वाले। अगर सेवा लेने वाले बनते हो तो नाम प्रमाण कर्तव्य नहीं हुआ। खुदाई खिदमतगार सेवा लेते नहीं, देते हैं, क्योंकि दाता के बच्चे हैं।
जैसे बाप कुछ लेते नहीं हैं, वह तो सदा देते हैं, ऐसे आप भी देने वाले बनो। अगर कभी प्रॉब्लम रूप बनते हो तो भी सेवा लेते हो। कोई भी प्रकार की एक्स्ट्रा सेवा लेने वालों को कभी यह नशा नहीं रहेगा कि हम दाता वरदाता के बच्चे हैं। वो नशा ही नहीं रहेगा, हम दाता वरदाता के बच्चे हैं। आज मास का तीसरा रविवार है और उस तीसरे रविवार के लिए योग अभ्यास में स्वमान दिया है। सभी भाई बहने संगठित रूप में एकत्रित होकर साय 6:30 से 7:30 बजे तक अपने ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित हो, ज्ञान की लाइट और योग की माइट सर्व आत्माओं को देकर सही राह दिखाने व उस पर चलने की शक्ति हर आत्मा तक पहुंचे, ऐसे शुभ संकल्पों से विश्व कल्याण की सेवा करो। अपने ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित हो, ज्ञान की लाइट और योग की माइट सर्व आत्माओं को देकर सही राह दिखाने व उस पर चलने की शक्ति हर आत्मा तक पहुंचे, ऐसे शुभ संकल्पों से विश्व कल्याण की सेवा करें। अच्छा,

ओम शांति। बाबा ने आकर हम सभी को सफलता मूर्त भव का वरदान दिया है। सोचें, जिन्हें परम सद्गुरु ने स्वयं वरदान दे दिया वही सफल नहीं होंगे तो भला सफल कौन होगा। भगवान के बच्चे ही यदि सफलता के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो भला कौन बढ़ेगा। तो सफलता हमारा वरदान है। रोज सवेरे उठते ही 7 बार याद कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मूर्त हूँ। और किसी भी इम्पोर्टेंट कार्य पर जाने से पहले या रोज अपने कार्यों पर जाने से पहले बाबा का हाथ सिर पर महसूस करते हुए ये दोनों स्वमान याद कर लें, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो सफलता में विश्वास करते हैं, जिन्हें अपने में संपूर्ण विश्वास होता है। सफलता उनके चारों ओर आगे पीछे घूमती है जो सफलता के लिए अथक प्रयास करते हैं। याद रखेंगे, जिनको पुरुषार्थ में सफलता है उन्हें हर कार्य में सफलता है। जो योग में सफल हैं सफलता उनके लिए दिव्य वरदान है। जो पवित्रता को धारण करने में सफल हैं चारों युग सफलता उनके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो हम संगम युग पर बाबा से सफलता मूर्त का वरदान ले लें। भगवान हमें कह रहा है, बच्चे सफलता मूर्त भव, सफलता तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वयं भगवान ने हमारे मस्तक पर तिलक लगाकर ये वरदान दे दिया है, हम इसे अपने अंतर मन की गहराई में उतार लें। इससे ही इस वरदान पर हमें संपूर्ण विश्वास रहेगा। परंतु जो लोग व्यर्थ में रहते हैं, जो ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलते हैं, जो परचिंतन में रहते हैं, जो अपने चित्त को शांत नहीं रख पाते, सफलता उनके पास होते भी दूर चली जाती है। लेकिन जिस मनुष्य ने अपनी मनोस्थिति को श्रेष्ठ बना लिया, सफलता के लिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस संसार में भी 3 तरह के लोग देखे जा सकते हैं। एक वे जो सफलता के लिए कड़ी मेहनत करके सफल होते हैं, दूसरे वे जो मेहनत करने के बाद भी निराश होते हैं, और तीसरे वे जो सहज ही सफलता का स्वाद चखते हैं। मैं कौन? हमें सफलता को अपना वरदान बना लेना है। तो अपनी मन की शक्तियों को बढ़ा देना है। मन की शक्तियां ही हमारे जीवन में हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती हैं। ये बात सभी को याद रखनी है। तो अपनी सफलता में संपूर्ण विश्वास। और मान लो कभी आप असफल हो भी जाएं, तो निराशा को अपने मन मंदिर में प्रवेश न करने दें, क्योंकि आज असफलता है तो कल सफलता अवश्य होगी। अपनी सफलता में संपूर्ण विश्वास। असफल हो गए तो उसके कारणों को गहराई से नोट कर लें और उन्हें दूर कर दें, तो ऐसी मेहनत करने से स्वयं बाबा भी हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और हमें सफलता का वरदान पुनः पुनः दे देते हैं। तो आइए आज सारा दिन हम इस वरदान की स्मृति में रहें कि मुझे तो भगवान से, परम सद्गुरु से सफलता मूर्त भव का वरदान मिल गया है। ये वरदान मेरे पास है, जहाँ भी मेरे कदम चलेंगे ये वरदान मेरे साथ होगा। मुझे सफलता प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है। और योग का अभ्यास भी साथ साथ करेंगे कि मैं आत्मा परम धाम में,
सर्वशक्तिवान के साथ हूं। विजुअलाइज करेंगे बाबा को और स्वयं को वहां, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दें हमें बाबा, और फील करें बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं, उनसे निरंतर मुझे सफलता के लिए शक्तियां मिल रही हैं। ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सबका स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कहा जाता है, जिंदगी में कभी इन्हें टूटने न देना, क्योंकि इनके टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन आदमी जरूर टूट जाता है। कौन सी होगी वो चीजें? वो है हृदय, विश्वास, वचन और रिश्ते। इसलिए इनके बारे में सदा जागरूक रहिए। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं ज्ञानेश्वर जी, हम उनका स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम।
1: थैंक यू भक्ति जी। गुड मॉर्निंग टू यू और गुड मॉर्निंग रेडियो मधुबन के श्रोतागण को तहे दिल से शुभकामनाएं और सुप्रभात। भक्ति जी, आपने जो शेर पढ़ा वह बड़ा अच्छा था, टूटना नहीं चाहिए। क्या टूटना है? दिल, मन,
0: विश्वास और
1: विश्वास। ये दिल टूटता है तो भी गड़बड़ है, विश्वास टूटता है तो भी गड़बड़ है, और ये जब टूट जाता है तब फिर जुड़ नहीं जाता। जैसा उदाहरण देते हैं, आयना है, अगर आयना टूटता है तो फिर उसको जोड़ नहीं सकते। इसलिए हर चीज, ऐसी जो नाजुक चीजें हैं, उनको बड़ा ख्याल रखना चाहिए उन चीजों का
0: जी।
1: तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपने ये कहा और हमारी जो चर्चा चल रही है रामायण के बारे में, अनेक चरित्रों के बारे में, रामायण में सिर्फ राम जी का चरित्र नहीं है, हमने लक्ष्मण जी के बारे में चर्चा की, हनुमान जी के बारे में चर्चा की, ऐसे बहुत महानुभाव है उनके बारे में चर्चा की।
0: बिल्कुल।
1: विश्वामित्र जी थे, उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी और विश्वामित्र के बारे में काफी जानकारी भी ले ली हमने।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जब हम चर्चा करते हैं तब मुझे और एक चीज याद आती है कि विश्वामित्र जी जब तप कर रहे थे तब सब देवताएं जो है वो हमेशा की तरह चिंतित हो गए। मुझे हमेशा आश्चर्य लगता है कि जब भी कोई तप करने बैठ जाता है तब देवताओं से भी ज्यादा जो इंद्र है, जो देवताओं का राजा कहलाया जाता है, वो कथा में ऐसा कहते हैं कि इंद्र बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अभी ये तप करने के बाद मेरी कुर्सी वो ले। अभी ये जब मैं पढ़ता हूं तब मुझे मन में आता है कि यह

0: सचमुच ये कुर्सी का खेल है जो हम आजकल देखते हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: या उसके पीछे भी कुछ भाव है? क्योंकि अगर कुर्सी का खेल है तो फिर आज के जमाने में स्वर्ग में देवताएं जो रहते हैं उनका राजा इंद्र
1: जी,
0: अगर वही इतना इनसिक्योर फील करेगा तो फिर स्वर्ग में जाने से फायदा क्या है? ये जब मैं सोचता था तब मुझे लगा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ भाव होना चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीक्रेट होना चाहिए, और वही रहस्य जो है वो उजागर करने की कोशिश हम ये अमृत धारा के कार्यक्रम के द्वारा करते हैं
1: जी।
0: तो ये जब विश्वामित्र जी उनकी कथा हमारे सभी श्रोतागण को मालूम होगी कि विश्वामित्र जी जो थे वो तप करने के लिए बैठ गए, और फिर जो इंद्रदेव थे उन्होंने वहां जो मेनका जो स्त्री है उन्हें कहा कि आप जाओ और उनका तप भंग करो। अभी देखिए मेनका एक स्त्री है, बड़ी लावण्यवती स्त्री है, और वो इंद्र जी मानते थे कि अगर ये विश्वामित्र तप करने के लिए बैठे हैं तो फिर ये मेनका जाके उनका तपस्या भंग करने की ताकत रखती है। ताकत दो प्रकार की होती है, एक तो तप करने की ताकत है और तप भंग करने की ताकत है। विश्वामित्र जी घोर तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करने की जिद उनके मन में है, तपस्या करने का निश्चय उनके मन में है, और फिर भी इंद्रदेव जो है, जो देवताओं के राजा कहलाए जाते हैं, इंद्रपद जिनके पास है और वो अपने राज्य में से बड़ी सुंदर स्त्री करके मान्यता है उसे भेज देते हैं। अभी उसके पीछे का जब राज मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये विश्वामित्र मेनका ये कहीं ना कहीं संकेत है हमें सीख देने के लिए जिंदगी में।
1: अच्छा
0: देखिए तपस्या, विश्वामित्र जो तपस्या कर रहे हैं, तपस्या किस लिए कर रहे हैं? उन्हें ब्रह्म पद चाहिए, वो है क्षत्रिय कुल के, और वो ब्रह्म पद ब्रह्मर्षि पद, सिर्फ ब्रह्म पद नहीं ब्रह्मर्षि पद पाने की इच्छा रखते थे। अभी वहां जब हम क्षत्रिय कुल, ब्रह्म पद, ब्रह्मर्षि पद इसके बारे में चर्चा करते हैं तो लगता है शायद ये वर्णाश्रम धर्म या वर्ण भेद उस समय भी था, ऐसी मन में आशंका पैदा होती है। और फिर ये वर्ण भेद जब मन में पैदा होता है तो बहुत बड़ी बहस हो जाती है, बतंगड़ हो जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। चातुर्वर्ण्य शायद उसी जमाने से शुरुआत है, लेकिन मुझे आपको भी और हमारे श्रोतागण को भी कहना है कि उसे थोड़ा सा अलग नजर से हम देखेंगे।
1: बिल्कुल
0: अलग नजर से इसलिए देखेंगे क्योंकि ये चातुर्वर्ण, वर्ण जो है, अभी हम कहते हैं कि चातुर्वर्ण में वर्ण तो चार है ही, और हमारे हिंदू धर्म में ही अनेक प्रकार की जातियां हैं, जाति है, प्रजाति है, और फिर ये जाति प्रजाति को पकड़ के हम बैठते हैं और आपस में लड़ते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इसलिए शायद किसी को ऐसी भूल हो सकती है कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय का विवाद है। जो विश्वामित्र की कहानी है, इंद्रदेव जो है वो क्षत्रिय तपस्या करने के लिए बैठा है ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए, उनकी तपस्या भंग करने के लिए षड्यंत्र रचा है, ऐसी कुछ भावना हो सकती है।
1: एक्चुअली शास्त्रों में इसी प्रकार का वर्णन है, और इसीलिए कई बार शास्त्रों की कथा सुनने के बाद हमारा विश्वास उड़ जाता है।
0: बिल्कुल सही, और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए अगर उसमें से कुछ संदेश लेना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान कुछ मोटिव लेके जिंदगी में, कुछ उद्देश्य लेके अगर कुछ हासिल करना चाहता है और उसके लिए वो प्रयत्न करता है तो ये मेनका एक रूपक है, मेनका एक उदाहरण है कि मेनका के रूप में ऐसी बहुत सारी मोह और माया जो है वो हमारे प्रयासों में विघ्न डाल सकती है
1: जी।
0: और अगर उसके हम बलि हो जाते हैं तो फिर हमारा लक्ष्य जो है वो हासिल नहीं हो पाता। इसलिए कहानी ऐसी है कि विश्वामित्र जी तपस्या करते हैं, मेनका पृथ्वी पर आ जाती है और फिर विश्वामित्र उनके बलि हो जाते हैं। विश्वामित्र उनमें फंस जाते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं, और फिर उनके साथ संबंध जो होता है उससे एक बेटी पैदा होती है और वो है शकुंतला। अभी यह शकुंतला जब बेटी है और फिर क्या होता है, विश्वामित्र की आंखें खुल जाती है। विश्वामित्र को पता चलता है कि ये कोई चाल थी और मुझे फंसाया गया, और फिर वो मेनका को छोड़ देता है। मेनका को छोड़ देता है, फिर वो बच्ची का क्या करे? और ये बच्ची वो कण्व ऋषि के आश्रम में पलती है और उसका नाम है शकुंतला। शकुंतला जो बेटी है बहुत सुंदर रहती है, बहुत गुणवान होती है, और फिर वो शकुंतला की शादी राजा दुष्यंत से होती है, और उनका जो पुत्र है उसका नाम भारत है।
1: अच्छा।
0: और ये भारत देश का नाम ऐसे कहते हैं कि वो भारत के ऊपर आया है।
1: फैंटास्टिक।
0: अभी देखिए, ये भारत देश जो है उनका नाम आया। अभी इसमें मुझे और एक कहना है कि जब ये विश्वामित्र की जब आंखें खुल गई, उन्हें पता चला कि ये मेनका जो है वो एक साजिश थी मेरी तपस्या भंग करने के लिए, और फिर उससे वो संभल गए। और गिरना और संभलना ये मेरे ख्याल से जिंदगी का मकसद है।
1: गिरना और संभलना ये जिंदगी में बहुत स्वाभाविक है, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि जब हम गिरते हैं तब हम इन मिसालों को सिर्फ याद रखें या बार बार गिरे। लेकिन यह निश्चित है कि जब हम कोई मंजिल को पाने के लिए प्रयास करते हैं तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कई प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में आती है, और उस समय केवल हम उन बाधाओं को पकड़ ले या निराश हो जाए, मायूस हो जाए, उदास हो जाए, उस समय हम अगर ऐसे उदाहरणों को देखेंगे और फिर से अपने लक्ष्य की ओर दुगने उत्साह से बढ़ेंगे तो निश्चित है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत है सबका अमृत धारा प्रोग्राम में। कहा जाता है कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। तो ये विकार जिनको कहते हैं षड्रिपु, शत्रु है माया मोह, तो ये शत्रु जब आते हैं तो शायद हम ज्यादा कामयाब होते हैं ऐसा लगता है। ज्ञानेश्वर जी, आपका क्या विचार है?
3: ये विकार और षड्रिपु, इसके बारे में जो आपने कहा है, यही जो अध्यात्म में या भक्ति मार्ग में बहुत सारे संत सज्जन जो है वो हमेशा हमें सावधान करते हैं कि ये विकार उनसे मुक्त रहे या विकार उनसे बच के रहे। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये आशंका पैदा होती है कि विकार तो है ही, मन में विकार होना ये स्वाभाविक है, और फिर उससे बचेंगे कैसे। और ये हमारी जो सीख है, चाहे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, महर्षि वाल्मीकि जी हो, या वेद व्यास हो, या और कोई संत सज्जन हो, मीराबाई हो, या और कोई संत हो, हर संत ने, हर महात्माओं ने यही सीख दी है कि हमें विकारों से बचना है, क्योंकि ये विकार जो है वो हमारी प्रगति में बाधा डालते हैं।
2: और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो मिसाल अभी आपने बताए वो भी संसार में रहते हुए ही विकारों से बचकर उन्होंने अपना जीवन बनाया।
3: बिल्कुल सही कहा। और बहुत सारे ऐसे संत हैं जो संसार करते हैं, घर गृहस्थी करते हैं, लेकिन फिर भी विकारों से बचे हुए हैं। तो ये विकार जो है वो हम कहते हैं पतित, हम कहते हैं ना, हम आत्मा पतित है और पावन परमात्मा को हम कहते हैं पतित पावन, और उसे बुलाते रहते हैं। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि हम समझते हैं हम पतित हैं। अभी हम पतित हैं ये तो पक्का है, मन में निश्चय है, और इसलिए पतित पावन आ जाओ, पतित पावन आ जाओ ऐसी गुहार लगाते हैं। और फिर अगर किसी ने कहा आप पतित हो तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम पतित है ये हमारा और ईश्वर के बीच का पर्सनल मामला है। अगर दूसरा कोई कहे कि आप पतित हो तो फिर बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये ड्यूअल स्टैंडर्ड है, और ठीक तरह से मेरे ख्याल से हम उसे समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए सही क्या है गलत क्या है ये भ्रमित अवस्था हो जाती है, और फिर बहुत सारे भेद खुलते नहीं है। और फिर ये शास्त्रों में जो कथाएं हैं वो ऐसी लगती है, एक तो वो विचित्र लगती है, असंभव लगती है, या फिर उससे कई हम निगेटिव भाव लेते हैं। जैसे हमने कहा मनुस्मृति, मनुस्मृति कहते हैं तो सब लोग टूट पड़ जाएंगे कि उनके मन में आएगा कि यही है वो चातुर्वर्ण का पुरस्कर्ता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मुझे ये लगता है हमारा देखने का नजरिया, देखने का एंगल, दृष्टि अगर हमारी बदल गई तो उससे कुछ अच्छी चीजें भी हम निकाल सकते हैं।
2: बिल्कुल।
3: जैसे कि हम जो कहानी सुनते हैं त्रिशंकु की, क्योंकि अगर हमारे पास गुण है, शक्ति है, लेकिन उसका हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और हम विकारों में फंस गए तो फिर हम गिरना शुरू हो जाते हैं, उसको कहते हैं पतन
2: जी।
3: और फिर से हम तपस्या जब करते हैं तब उसे उत्थान कहते हैं। हम विश्वामित्र ऋषि की जो कहानी सुनते हैं वो पतन और उत्थान की है। वो तपस्या करने के लिए जिद है उनकी, उनका निश्चय है, उन्होंने ठान ली है कि कैसे भी करके हम ब्रह्मर्षि पद पाएंगे, और इसलिए तपस्या करते हैं, प्रयास करते हैं, बीच में मोहवश हो जाते हैं, चाहे वो मेनका हो या और कोई हो।
2: लेकिन यहाँ एक बात होती है ज्ञानेश्वर जी, कि विश्वामित्र के सामने मेनका आई, एक स्त्री आई, और इसीलिए मैं समझती हूँ कि तब से लेकर समाज ने स्त्री को दोषी ठहराया है। उसके बारे में आपका क्या विचार है? सचमुच स्त्री दोषी है या फिर विश्वामित्र की नजर का वो दोष है?
3: देखिए, यहाँ मेनका जो, जैसे हमने कहा कि मेनका जो है वो एक सिंबॉलिक है, संकेत रूप से है। वहां मुझे ये नहीं लगता कि तपस्या विश्वामित्र बैठे हैं, घनघोर तपस्या कर रहे और मेनका आके डांस कर रही है और फिर वो फंस गए। यहां मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि महर्षि वाल्मीकि को ये दिखाना था कि हमें कैसे संभल के रहना है जिंदगी में। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हम कैसे संभले। और फिर ये कहानी है, आप जो बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये कहानी से स्त्री जाति का अपमान भी हो जाता है और स्त्री जाति बदनाम भी हो जाती। हम कहते हैं कि स्त्री जाति से हम संभल के रहना है, लेकिन वही स्त्री है जब देवी बन जाती है, महिषासुर मर्दिनी बन जाती है, दुर्गा बन जाती है, अन्नपूर्णा बन जाती है, लक्ष्मी बन जाती है या सरस्वती बन जाती है, उनके दर्शन के लिए रीघ लग जाती है, उनके दर्शन के लंबी कतार क्यों खड़ी हो जाती है। तो हम कैसे देखें, इसके हिसाब से हमारी नजरिया बदली होनी चाहिए, हमारा दृष्टिकोण बदल होना चाहिए। वो अगर बदल गया तो फिर वो स्त्री स्त्री नहीं रहती, वो स्त्री अबला नहीं होती, स्त्री सबला हो जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज तक जैसे कि आपने मनुस्मृति की बात कही और स्त्री पर इसीलिए दोषी उसको ठहराया जाता या इसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते, क्योंकि आदि काल से लेकर एडम और ईव जो बोलते हैं, तो ईव जो है उसने एडम को फल खाने के लिए कहा, या ऐसी ऐसी कुछ कथाएं हैं जिसके कारण आज भी समाज में ऐसे कई जगह है कि जहां स्त्री को इस प्रकार से देखा जाता है जैसे कि जुत्ती के रूप में। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने ये भी सुना हुआ है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी सुना हुआ है कि ब्रह्मा कुमारीज जो एक संस्था है, जिस संस्था की जो मुख्य संचालिका है दादी जानकी, उनके 100 साल अभी अभी पूरे हुए और ये संस्था की जो पहचान है वो ये है ब्रह्मा कुमारीज नाम से ही, कि यह संस्था देश तथा विदेश में महिलाओं की एक ऐसी शक्ति है, एक नारी शक्ति का बहुत सुंदर उदाहरण है जो आपस में बहुत समन्वय से अपना कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपने कार्य को सफल रीति से किया है। तो इसीलिए जब ये शास्त्रों की कहानियाँ सुनते हैं, वो कहानियाँ सुनना और उसका मिसाल, उसका दृष्टांत के रूप में अर्थ समझना, ये बड़ा स्वाभाविक और जरूरी भी होता है।
3: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, आपने जो बहुत अच्छी बात निकाली है कि स्त्री को सम्मान कैसे दिया जाए, और जैसे हमने कहा कि जितनी स्त्रियां हैं वो देवियों के रूप में भी उनका पूजन होता है। और उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो लक्ष्मी और नारायण की चित्र अगर हम सामने लाए, तो लक्ष्मी और नारायण का जब चित्र सामने लाते हैं तो हमेशा हमारे नजर के सामने चित्र आता है नारायण शेष शैया पे लेटे हुए हैं और लक्ष्मी उनके पाँव दबा रही है। अभी देखिए, ये चित्र जो है उसमें ये दिखाना है कि लक्ष्मी दासी है। लक्ष्मी दासी है उसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी सचमुच पाँव दबा रही है, लेकिन यहां ये दिखाना है नारायण और लक्ष्मी जो है उनमें कोई कुछ अंतर है। लेकिन अभी दूसरी तरफ से देखेंगे तब जब हम लक्ष्मी को बुलाते हैं, और लक्ष्मी को मेरे ख्याल से सिर्फ दिवाली में लक्ष्मी पूजन होता है, लेकिन लक्ष्मी का वैसे पूजन तो रोज होता है। हर एक चाहता है कि मेरे घर में लक्ष्मी आए, हर एक चाहता है कि मेरे ऊपर लक्ष्मी प्रसन्न रहे। और अगर लक्ष्मी, हंसी की बात बताता हूं, अगर वो पाँव दबाने से फ्री जब तक नहीं होगी तब तक आपके पास कैसी आएगी, आपको प्रसन्न कैसी होगी
2: जी।
3: तो ये सब कहानियां जो है, लक्ष्मी हो या सरस्वती हो, और भी और एक चीज है कि यहां देखिए विष्णु का जो दर्शन है, नारायण तो सोए हुए हैं उस समय उनके चित्र है, लेकिन विष्णु का जब दर्शन हो जाता है तब वो चतुर्भुज दिखाए जाते हैं
2: जी।
3: और वो चतुर्भुज जो है मुझे लगता है लक्ष्मी और नारायण उनका जो कंबाइंड स्वरूप है वो है चतुर्भुज विष्णु। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं अगर किसी की शादी होती है तो हम क्या कहते हैं उसके दो हाथ थे अभी उसके चार हाथ हो गए, और किसी को हथकड़ी डाल देते हैं तो भी कहते हैं वो चतुर्भुज हो गया
2: जी।
3: तो ये शादी होने के बाद चतुर्भुज कहते हैं क्योंकि दो हाथ पति के दो हाथ पत्नी के है लेकिन चेहरा एक है, दो चेहरे नहीं है, एक ही मुख से अगर वो पति कुछ कहे तो पत्नी हाँ बोलती है, पत्नी कुछ कहे तो पति हाँ बोलता है, तो वो आदर्श स्थिति है। और मुझे लगता है विष्णु जो कंबाइंड स्वरूप है वो युगल अगर कोई है तो उनका आदर्श स्वरूप जो है वो विष्णु है।
2: बहुत सुंदर बात आपने कही, जो सचमुच ही धारण करने योग्य है असल में ऐसे होता है या नहीं होता वो तो बात सोचने की है, लेकिन जो भी ऐसे पति पत्नी हो जो एक मुख से अपने निर्णय, एक ने निर्णय लिया और दूसरे ने स्वीकार किया, तो ये सबसे आदर्श उदाहरण जो है वो विष्णु जी का है। ये बहुत एक सुंदर विचार है, उस रीति से हम देखेंगे तो सचमुच है वो जो कपल है, वो जो युगल है, वो आदर्श रूप में विष्णु के रूप में दिखाए हैं। दोस्तों, हमें ऐसे ही आदर्श बनना है और यही हमारे जीवन का मकसद है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब समय है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो. दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत है सबका. और हम बात कर रहे हैं विकारों की. संसार में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इन विकारों पर जीत पाना बहुत बहुत मुश्किल है, ऐसा महसूस होता है कभी कभी. या हम उस प्रकार से बात करते हैं और फिर अपने लिए छुट्टी करते हैं. लेकिन ज्ञानेश्वर जी, आप हमें इन बातों को किस प्रकार से हम धारण करें ये बता रहे हैं.
2: देखिए भक्ति जी, जब हम विश्वामित्र जी की बात कहते हैं, विश्वामित्र के बारे में, कथा के बारे में जब विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और ये भी देखते हैं कि वो ब्रह्मपद पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं. अभी यहाँ मुझे ये लगता है कि ब्रह्मर्षि पद पाना एक डिग्री पाने जैसा है. अगर कोई डिग्री हासिल करनी है, अगर कोई MBBS बनता है, कोई IAS ऑफिसर बनता है, कोई IIT की एग्जाम देता है, वो तो बहुत कठिन परीक्षा है
1: जी.
2: छोटी मोटी परीक्षा नहीं है. अगर 10वीं की परीक्षा है, वो भी मैं ये नहीं कहता कि ये छोटी है, लेकिन अगर उसकी भेंट में IIT या MBBS या इंजीनियरिंग की भेंट में 10वीं की परीक्षा कंपैरेटिवली सिंपल है, आसान है, तो ये ब्रह्म पद या ब्रह्मर्षि पद जो पाना है वो मुझे लगता है कि कुछ डिग्री हासिल करने लायक है. और ये अगर उसमें कोई बाधा आती है, विघ्न आते हैं, जैसे विकार है. विकार मीन्स क्या है? माया है, मोह है. अगर हम कहीं मोहवश हो जाते, अगर कोई विद्यार्थी है वो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और अगर उसका कोई मित्र आता है, दोस्त आता है या सहेली आती है और वो कहीं उनको पिक्चर फिल्म दिखाने के लिए चले गए, घूमने फिरने के लिए चले गए, और फिर क्या होगा? वो ठीक तरह से परीक्षा पास नहीं हो पाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा और फेल्यूर आएगा. अगर इसी फेल्यूर को लेके अगर कोई दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है और फिर कहीं सुसाइड कर बैठता है, तो उनके लिए मुझे मेरा ये संदेश है कि हम विश्वामित्र को आदर्श माने.
1: अच्छा,
2: एक्चुअली ये विश्वामित्र के पतन की कहानी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विश्वामित्र को आदर्श माने किस हिसाब से, कि कितना भी फेल्योर आ जाए, तो इस विषय में मुझे लगता है कि विश्वामित्र जी आदर्श है, क्योंकि वो निराश नहीं हुए, वो हताश नहीं हो गए, उनकी तपस्या भंग हो गई, लेकिन उन्होंने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा और वो तपस्या करते रहे, करते रहे, करते रहे, और आखिर उन्होंने ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति की. तो ये मुझे लगता है कि एक हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए एक संदेश है कि कोई भी कार्य, कोई भी अगर हमें टास्क मिला है, प्रोजेक्ट में मिला है, सिर्फ विद्यार्थी नहीं है, हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते होंगे, कुछ भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते होंगे, उनके लिए भी ये कठिन टास्क रहता है और कभी कभी व्यक्ति निराश हो जाती है, फिर मोहवश हो जाती है. वहां तो मेनका है, यहाँ मेनका भी भले नहीं आए, लेकिन मेनका के रूप में बहुत सारे विघ्न आ सकते हैं, बहुत सारे मोह आ सकते हैं, और वहां अगर हम फंस जाते हैं तो फिर हमारे लक्ष्य से दूर हो जाते हैं. तो मुझे इसलिए ये लगता है कि जब हम फंसते हैं, विकारों में फंस जाते, मोह में फंस जाते हैं, तो फिर कहते हैं ना इधर का ना उधर का,
1: ना घर का ना घाट का.
2: बिल्कुल सही. और ये जब ना घर का ना घाट का, ये इसके बारे में जब हम सोचते हैं, तब हमें त्रिशंकु की याद आती है.
1: अच्छा,
2: हम बहुत बार कहते हैं उसकी तो अवस्था त्रिशंकु जैसे है. त्रिशंकु जैसे क्यों? वो ना नीचे आ सकता है ना ऊपर जा सकता है. और ये त्रिशंकु की अवस्था जो है वो संभ्रमित अवस्था है. और बहुत बार हमारे में से कई लोग या हम ही कई बार हमारे जिंदगी में ऐसी अवस्था में पाते हैं कि वहां हम त्रिशंकु जैसे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता नीचे उतरू या ऊपर.
1: या कहो कि जब हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तभी भी हमारी कभी कभी दोलायमान स्थिति होती है, और उस अवस्था को भी हम त्रिशंकु कह सकते हैं.
2: बिल्कुल. और उसी अवस्था का वर्णन करते समय मुझे लगता है यह त्रिशंकु की कथा भी यहाँ शास्त्रों में लिखी गई होगी.
1: बहुत अच्छा. ये तो बहुत आपने अलग भाव से कहा, और कई बार हमने ये महसूस किया है कि हमारी ऐसी अवस्था होती है, तो उस पर कैसे हल निकाला जाए, किस प्रकार से उस अवस्था से हम फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, ये सुनना मैं समझती हूँ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दोस्तों अब समय है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, ब्रेक के बाद हम उत्सुक हैं ज्ञानेश्वर जी से कि त्रिशंकु अवस्था जब हमारी होती है या त्रिशंकु जो शब्द है वो क्या बतलाता है, और सचमुच ही ये कहानी जो है जो विश्वामित्र की कहानी से बिल्कुल ही नजदीक का रिश्ता रखती है, वो सच्चाई क्या है।
1: देखिए, त्रिशंकु की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये कहा कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश का है। त्रिशंकु जो है वो इक्ष्वाकु वंश का है, और इक्ष्वाकु वंश मीन्स रघुवंश कहते हैं, या कहे सूर्यवंशी कहे
0: जी।
1: और वो जो इक्ष्वाकु वंश का जो त्रिशंकु जो राजा है, वो राजा बड़ा उदार था, बड़ा दानी था, बड़ा अच्छा था। ऐसे नहीं कि राजा दुष्ट था या कपटी था, लेकिन उसके मन में एक इच्छा पैदा हो गई। दिखने में बड़ा सुंदर था, शरीर भी सुंदर था, और ये शरीर के ऊपर उसका बड़ा मोह था, और उसे ये लगता था कि ये शरीर छोड़ के अगर मैं स्वर्ग में जाऊं तो फिर उसका क्या फायदा है। मेरा इतना अच्छा शरीर है, सुंदर शरीर है, और ये शरीर को त्यागना और फिर स्वर्ग में जाना, ये कल्पना उसे डाइजेस्ट नहीं होती थी।
0: अच्छा।
1: और इसलिए वो बड़ा चिंतित था, और उसे लगता था कि कहीं ना कहीं ऐसी तरकीब निकाले कि ये शरीर के साथ मैं स्वर्ग में चला जाऊं। तो ये कामना रखते हुए वो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं, और फिर उन्हें कहते हैं कि देखिए, मैं ये शरीर लेके स्वर्ग में जाना चाहता हूं। तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी जो है उन्हें समझाते हैं कि राजन, ऐसे आज तक कोई नहीं हुआ कि जो शरीर के साथ स्वर्ग में गया है। आपको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना है मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा, लेकिन शरीर के साथ जाना असंभव है। तो फिर उसने माना नहीं, और ऐसे कहते हैं कि वशिष्ठ जी जो है उनके भी कुछ पुत्र थे, और ये पुत्र जो थे उनके पास, जब वशिष्ठ जी ने माना नहीं तो वो पुत्रों के पास गया। वो भी तपस्या कर रहे थे, और वो तपस्या करते हुए उन्होंने रिक्वेस्ट लेके गया, अर्जी लेके गया कि मुझे कैसे भी करके शरीर के साथ स्वर्ग में भेज दो। तो वशिष्ठ के पुत्रों ने तपस्या कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि ये वशिष्ठ जी ऋषि जो है, उन्होंने उसके मना करने के बावजूद वो हमारे पास आया है। तो उन्होंने उनसे कहा कि ये राजन, आप हमारे पिताश्री के पास गए थे, उन्होंने आपको मना किया था, और फिर भी आप हमारे पास आए,
0: ये तो जैसे उनका अपमान हो गया।
1: बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि आपने हमारे पिताश्री का अपमान किया है, और मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि ये संभव नहीं है। एक बार हमारे पिताजी ने कह दिया असंभव है तो असंभव है।
0: जो काम पिताजी नहीं कर पाए वो पुत्र क्या कर पाएंगे, इस प्रकार से शायद उन्होंने समझाया होगा।
1: बिल्कुल। तो फिर भी वो माना नहीं, और जिद पे खड़ा था, और फिर वो अपशब्द बोलने लगा। वो वशिष्ठ मुनि को अपशब्द बोलने लगा, उनके पुत्रों को अपशब्द बोलने लगा, और फिर इतना होने के बाद ये वशिष्ठ के जो पुत्र थे उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया, और कहा कि आप चंडाल बन जाओगे, और चंडाल बन जाओगे। ऐसा जैसे श्राप दे दिया, तो फिर ऐसे कहते हैं कि उनका शरीर काला हो गया, उनके बाल छोटे हो गए, उनके गले में हड्डियों की माला आ गई, वगैरह वगैरह। जो वर्णन करते हैं वो निगेटिव वर्णन है, मीन्स वो निगेटिव वर्णन इतना दर्दनाक था, भयानक था, और वो शरीर, उनका जब शरीर था, इतना सुंदर शरीर था, वो काला पड़ गया, वो कुरूप हो गए। और फिर जैसे अपने राज्य में वापस आए, तब वो मंत्री थे, प्रधान थे, उनकी प्रजा थी, उन्होंने उनको पहचानने से इनकार कर दिया, और फिर उन्हें अपना राज्य भाग्य छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं था।
0: लेकिन ये कहानी जो है जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बिल्कुल मन में डर पैदा होता है, और ऐसे लगता है कि जब कोई तप करता है और उसे श्राप मिलता है तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। ये क्या कहानी बताती है, क्योंकि कई हमारे श्रोता ऐसे होंगे जिनके मन में यह सब सुनने के बाद भगवान के प्रति विश्वास कम हुआ होगा या फिर डर ज्यादा पैदा हुआ होगा, ना तो भगवान के प्रति, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप उस पर भी प्रकाश डालिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि ये देखिए, भगवान के प्रति डर तो है, हम बार बार कहते हैं कि बहुत बार हमारी जो भक्ति है वो नॉट बिकॉज ऑफ लव, हम डर के मारे भक्ति करते हैं, हम गॉड फियरिंग पीपल बन जाते हैं, गॉड लविंग पीपल नहीं बनते। और ऐसे ही साधु संन्यासी जो है उनसे हमें कुछ सीख लेनी है, उनसे हमें कुछ आशीर्वाद लेने हैं, उनसे हमें कुछ प्रेरणा लेनी है, उसके बजाय अगर हम मंत्र तंत्र में पड़ जाते हैं तब कभी कभी ये नौबत खड़ी हो जाती है। शायद मुझे लगता है कि यही सीख उसमें मिल सकती है कि अगर हमारा उद्देश्य सही नहीं है, हमारा अगर उद्देश्य सही नहीं है, हमारा उद्देश्य अगर विकारी है, हमें अगर स्वार्थ मन में पैदा होता है तो वो हमारे लिए सही नहीं है।
0: अभी जैसे कि ये त्रिशंकु ने कहा कि मुझे देह सहित स्वर्ग में जाना है, तो ये देह सहित स्वर्ग में जाना है, यह शब्दों का राज क्या है?
1: देखिए, स्वर्ग में जाना है, जब तक ऐसे कहते हैं जब तक आप खुद नहीं मरोगे आप स्वर्ग में नहीं जा पाते, ऐसी कहावत है। तो यह स्वर्ग में जाना और देह के साथ जाना और देह रहित जाना, देह सहित और देह रहित, उसमें बड़ा रहस्य है। क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति, जो स्वर्ग सुख है, सुख का परमोच्च अवस्था है स्वर्ग, उसे प्राप्त करने के लिए अगर आप शरीर के मोह में फंसे हो, बॉडी कॉन्शियस हो, तो आप स्वर्ग प्राप्ति नहीं कर सकते। उसकी अगर आध्यात्मिक परिभाषा में अगर हम उसको देखें तो मुझे ये लगता है कि जब तक आप बॉडी कॉन्शियस हो, आप शरीर से प्यार रखते हो, शरीर से लगाव रखते हो, तब आपकी अवस्था उन्नत अवस्था नहीं हो सकती, तरल अवस्था नहीं हो सकती, और आप हल्के नहीं बन सकते, आप भारी बन सकते हो।
0: अर्थात मुझे लगता है कि मैंपन को छोड़ना, जब तक हम इस मैंपन को नहीं छोड़ते तब तक हम अपने ही इन उलझे हुए बातों में रहते हैं और तब तक हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती, वो सुख नहीं मिल सकता।
1: बिल्कुल, यही मेरे ख्याल से लगता है कि एक कहीं ना कहीं संदेश अगर हम लेना चाहे तो ये ले सकते हैं त्रिशंकु की कथा से। और फिर ऐसे होता है कि ये त्रिशंकु जब कुरूप काला शरीर है, कुरूप अवस्था है, और ऐसे करके वो विश्वामित्र जी के पास जाता है। विश्वामित्र जी तपस्या करते बैठे हैं और ये विश्वामित्र के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे शरीर के साथ स्वर्ग में जाना है। देखिए, इतना कुरूप हो गया, इतना झेल लिया, फिर भी वो शरीर का मोह नहीं टूटा उनका, और फिर शरीर के साथ वो कहते हैं कि मुझे स्वर्ग में जाना है। और फिर विश्वामित्र कहते हैं कि आप वशिष्ठ जी के पास गए थे, फिर क्या हो गया, उन्होंने मना किया आपको? तो वो रोते रोते कहते हैं कि दया करो, उन्होंने मना किया और मेरी अवस्था ऐसी कि आप जैसे तपस्वी हो, आप जैसे महानुभाव हो, आप बहुत महान तपस्वी हो, आप मेरी मदद कर सकते हो। और फिर विश्वामित्र जी जो है वो खुश हो गए, क्योंकि उनकी सराहना की, उनके कीर्ति का गायन किया, तो वो खुश हो गए और वो मदद करने के लिए तैयार हो गए।
0: बहुत अच्छा। और ये कहानी जो है, उस कहानी को सुनने में हमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि ये कहानी हमें कुछ और संदेश देती है जो हमारे जीवन के लिए, आज के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, समय है वाणी को विराम देने का। फिर से आपके साथ मिलते रहेंगे। रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते।

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सबका आपके पसंदीदा कार्यक्रम समाधान में। आपके बहुत सारे ईमेल हमारे पास आ रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप इसके अंग बन गए हैं, आप इसके सदस्य बन गए हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे द्वारा पहुंचाए जाने वाले समाधान आपको पसंद आ रहे हैं और आप इन्हें यूज करके अपने जीवन में समस्याओं से मुक्त होते चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे हमारे पास ईमेल आए हैं जिन्हें एक एक करके हम लेंगे। आदरणीय भ्राता जी हमारे साथ हैं, आइए पहले उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है। भ्राता जी, बहुत सारे ईमेल हमारे पास आ रहे हैं, लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं और बहुत वैरायटी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं। कोई परिवार से अपनी समस्याएं भेज रहा है, कोई पढ़ने लिखने वाले जो स्टूडेंट हैं वो भेज रहे हैं, कोई अपने कार्य क्षेत्र में है वो भी भेज रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है कि सब तक ये समाधान कार्यक्रम पहुँच रहा है।
1: बिल्कुल, देखिए इन समस्याओं को दूसरा भी एक शब्द दिया जाता है, परिस्थितियाँ
0: जी।
1: पर स्थितियां, ये पराई स्थिति है, हमारी स्थिति नहीं है। तो एक बहुत सुंदर सिद्धांत सभी याद रखेंगे कि मन की स्थिति अगर श्रेष्ठ होगी, यानी मन पीसफुल होगा, धैर्यवत होगा, अच्छे विचारों में होगा, बहुत चिड़चिड़ा नहीं, क्रोध में नहीं, उलझन और चिंताओं में नहीं, तो जब मन की ऐसी सुंदर स्थिति होती है इसको श्रेष्ठ स्व स्थिति कहा जाता है। तो ये एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, यूनिवर्सल सिद्धांत है कि मन की स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं, क्योंकि वास्तव में परिस्थितियां मनुष्य को बड़ी प्रतीत होती हैं, पर वो हमसे बड़ी नहीं होती। बड़े हम हैं, पावरफुल हम हैं। परिस्थितियों के बारे में सदा ही एक ध्यान सभी को रखना है कि वो बहुत कमजोर हैं, वो कमजोर मन की रचना है। अगर हम अपने मन को, हम अपनी मनोस्थिति को पावरफुल कर लें तो परिस्थितियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी।
0: कई बार समस्याएं होती नहीं है लेकिन हम उन्हें समस्या बना लेते हैं।
1: बस यही इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम एक परिवार में रहने वाले लोग जो ऐसा सोचते हैं कि बहुत परिस्थितियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, अगर वो ध्यान से देखें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अपने को संभाल के रखें तो परिस्थिति है ही नहीं। तो हर चीज को परिस्थिति बना देना या हर चीज को परिस्थिति मान लेना, ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इससे हमें बाहर निकलना चाहिए, अपनी शक्तियों को उजागर करना चाहिए, जरा खुले दिल का होना चाहिए, खुले आकाश के नीचे उदार चित और खुल कर जरा सोचें, अरे तो कुछ भी नहीं है, ये तो हो ही रहा है ना। अभी बाजार में हम जा रहे हैं, बहुत लोगों की भीड़ चल रही है, एक दूसरे को टक्कर मारते हुए भी चल रहे, कोई परेशान हो जाए देखा सॉरी भी नहीं कहते, ये कैसे हैं लोग, ऐसे चल रहे हैं गंवारों की तरह। तो परिस्थिति है और वो उसको एंजॉय करे, वाह क्या चहल पहल है, आनंद छाया हुआ हमारे मार्केट में, तो सारी टेंशन ही आके तो समाप्त हो गई है।

0: प्रसन्न हो गया बाजार में तो आकर, तो एक सुंदर चीज हो गई।
1: बिल्कुल, मतलब एक अपने देखने का नजरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। और जैसे आपने कहा कि मन की भी जो स्थिति है बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हम अपने मन को यदि शक्तिशाली बना करके रखते हैं तो हमें परिस्थितियां बहुत हल्की लगती हैं। जैसे किसी ने कहा कि यदि आप ऊपर आकाश में उड़ रहे होते हैं, प्लेन में होते हैं, तो नीचे की सभी चीजें आपको छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन आप नीचे हैं तो आपको छोटी चीज भी बड़ी दिखाई देती है। तो बात मनोस्थिति की है, यदि ऊंची स्थिति होगी तो निश्चित रूप से समस्याओं का निदान सहज और सरल हो जाएगा। जी पता जी, मैं मेल्स की ओर आ रहा हूँ। ये है जालंधर से महिमा सिंह लिख रही हैं। ये कहती हैं कि सख्त कानून होने के बाद भी बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसका आप क्या कारण मानते हैं? क्या इन्हें कभी भी पूरी तरह से रोका जा सकेगा?
0: देखिए, कानून अलग है और कानून तो घटना होने के बाद काम करता है ना
1: जी।
0: ऐसा तो कोई कानून नहीं है ना कि भाई जो मन को स्वच्छ कर दे। कानून तो ये, इसने रेप कर दिया, इसको ये सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, इन सभी घटनाओं के बढ़ने का कारण है मनुष्य के अंदर बढ़ी हुई दूषित वृत्तियां, वासनाएं। और ये सत्य है कि ये घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। प्रकाश में आने वाली घटनाएं तो बहुत कम हैं जो हमारे मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती हैं, पर ऐसी घटनाएं तो बहुत हो रही हैं। कई लोग तो लज्जावश उनका जिक्र भी नहीं करते, दबा के रह जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और बस ये तो एक प्रकोप का रूप लेता जा रहा है, जिसका कारण
1: महामारी
0: बन गई है। छोटे बच्चे भी सेफ नहीं रहे, उनपे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है पेरेंट्स को। इवन जो रक्षक हैं उनमें भी ये दूषित वृत्ति आ गई है, तो कोई करे तो क्या करे, रिपोर्ट भी वहां दायर नहीं की जाती है। तो कारण इसका बढ़ा हुआ मनोविकार ही है। जब तक मनुष्य को उसके सत्य स्वरूप का ज्ञान न दिया जाए, जब तक इस धरातल पर, इस वसुंधरा पर स्पिरिचुअल वेव्स न फैला दी जाएं, यानी ऐसी वेव जैसे जब इलेक्शन होते हैं हम देखते हैं ना, तो हर व्यक्ति इलेक्शन की चर्चा कर रहा है। दुकान पर चार लोग खड़े, इलेक्शन की चर्चा हो रही है,
1: टीवी चैनल में बैठे हैं
0: तो वो भी चर्चा। ऐसी एक अध्यात्म की लहर फैल जाए कि सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएं और सबको ये जागृति होने लगे, तुम तो पवित्र हो, तुम तो भगवान की संतान हो, ये देह तो विनाशी है, इस देह के चंगुल में फंसकर इन वासनाओं का तुम क्यों आह्वान कर रहे हो, बी प्योर। तो एक पवित्रता की लहर हमारी वसुंधरा पर फैल जाएगी, तब कहीं जाकर थोड़ा समय लगेगा ये दूषित वृत्तियां मनुष्य की शांत होंगी और मनुष्य एक दूसरों को या तो आत्मिक दृष्टि से देखेगा या भाई बहन की नजर से देखेगा। हमें याद है, बहुत पुरानी बात नहीं, हम ही छोटे थे, एक गांव की लड़की सबके लिए अपनी लड़की होती थी, सबके लिए बहन होती थी। जहां उसकी शादी हुई, अगर वहां गांव का कोई चला गया तो ये कहेगा हमारी लड़की है ये। तो एक सुंदर माहौल हमने अपने इसी जीवन में देखा, लेकिन 50 साल में जैसे युग बदल गया, पिछले 20 साल में तो संपूर्ण रूप से संसार बदल गया है। तो हमें इन दूषित वृत्तियों को रोकने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की एक लहर फैलानी होगी, जो कार्य हम कर रहे हैं, ताकि मानसिक वृत्तियां मनुष्य की शुद्ध हों, तब ये कुछ बदला जा सकेगा। हम जानते हैं ना, कानून इसे बदल पा रहा है, ना पुलिस का दबाव इसमें कुछ कर रहा है, क्योंकि जब मनुष्य की मानसिक वृत्तियां, दूषित वृत्तियां उजागर होती हैं तो वो उसको ब्लाइंड बना देती हैं। वो ऐसा अंधा हो जाता है कि उसकी कुछ समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है।
1: वैसे भी कहा जाता है कि काम व्यक्ति को अंधा बना देता है,
0: वो परवश हो जाता है, उसका संपूर्ण नेत्र बंद हो जाता है और वो कार्य कर लेता है। फिर भले ही वो जेल में पूरा जीवन पछताता रहे, समाज उसको बिल्कुल बहिष्कृत कर दे, वो बाद की बात है। निश्चित रूप से उस मनुष्य को भी अपनी गलतियों का आभास तो होता है, लेकिन तब तक तो खेल बिगड़ चुका होता है।
1: जी जी जी, तो माता जी, एक आध्यात्म की लहर की आवश्यकता है और हर एक व्यक्ति भी आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाए, लेकिन यदि जब तक आध्यात्म की ये लहर, जैसा आपने कहा कि चारों ओर फैले और सबकी वृत्तियां सतो प्रधान हो, तब तक थोड़ा वक्त तो लगेगा। अभी प्रेजेंट समय में जो लोग ऐसे हैं, जैसे महिलाएं,
0: हमेशा सोचता हूं कि एक ओर हम ये कह रहे हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, दूसरी ओर हमारे टीवी चैनल्स पर गंदे दृश्य दिखाए जा रहे हैं, मनुष्य की युवकों की दूषित वृत्तियों को बढ़ाया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं एक ओर कहते हैं शराब न पियो, दूसरी ओर शराब की दुकानों के लाइसेंस मिल दिए जा रहे हैं, जगह जगह शराब की दुकानें खुलती जा रही हैं, और ये भी देख रहे हैं कि लोग शराब से बहुत नुकसान हो रहा है फिर भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखिए, अगर हमें सच्चे मन से, हम या हमारी सरकारें या हमारा समाज, ये जी सच्चे मन से ये चाहे कि भाई ये चीजें अब रुकनी चाहिए, तो इनको जो बढ़ावा देने वाली चीजें हैं उनको तो बैन करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि टीवी चैनल्स इनके बिना नहीं चल सकते, हमारा भी तो चैनल है जो बिना इनके ही चल रहा है, जहाँ संपूर्ण शुद्धता है। तो ये जो नग्नता का प्रदर्शन हो रहा है, जो कामुक वृत्तियों को बढ़ाने वाले प्रदर्शन हो रहे हैं, जब तक इन पे बैन नहीं लगेगा तब तक इससे हम मुक्त नहीं होंगे। रही बात ये कि ये हैं, इन पे बैन नहीं लगेगा, ऐसा भी लोग समझते हैं कि ये तो सब कॉमर्शियल हो गया है, और दिखाने वाले भी ये सोचते हैं देखने वालों को जो चाहिए वही तो हम देंगे, हमारी गलती थोड़ा ही है, देखने वाले ना देखें, अपना चैनल बंद कर लें। लेकिन गलती देखने वालों की बहुत हो रही है, इसलिए परिवारों में जो परिवार बहुत समझदार हैं, जो अपने बच्चों को चरित्रवान बनाना चाहते हैं, वो ऐसे चैनल्स न देखें, जब ऐसी बुरी ऐड आती हैं उनको बंद करें। क्योंकि एक सूक्ष्म चीज मैं इसके पीछे जानता हूँ, मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, एक लड़की बाजार में चली जा रही है, उसका चित्त बहुत पवित्र है, वो इन दूषित वृत्तियों से मुक्त है, उसके बारे में दूसरों को गंदे विचार आएंगे भी नहीं। लेकिन एक लड़की चली जा रही है, कोई भी लड़की हो या औरत हो, उसकी अपनी मानसिक वृत्तियां बहुत दूषित है, उसकी नजर इधर उधर जा रही है, उसके बारे में ही लोगों को गलत विचार उठेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं नारी समाज को भी अपनी वृत्ति को शुद्ध करना पड़ेगा।
1: जी जी जी, मतलब हर एक अपनी जिम्मेवारी समझे भी, और हर एक अपनी वृत्ति में शुद्धता लाए, तभी इस चीज का संपूर्ण रूप से निदान हो सकता है। और जहां तक आपने मीडिया की बात कही, तो मीडिया भी इस चीज पर विशेष करके ध्यान अवश्य दे, क्योंकि उसकी भी एक नैतिक जिम्मेवारी तो अवश्य बन जाती है कि समाज में श्रेष्ठता, सदाचार, इसका प्रवाह वो फैलाए, न कि नकारात्मकता का। और यदि हो रहा है तो व्यक्तिगत रूप से हम ध्यान रखें कि हम अपने अंदर उन नकारात्मक बातों को शामिल,
0: क्योंकि मीडिया में ऐसा है, बहुत सारे चैनल्स हैं, एक चैनल वाला ये सोचता है मैं बंद कर दूं, मेरे को कोई देखेगा नहीं, दूसरे तो 90 लोग उसको चालू किए हुए, तो मैं क्यों बंद करूं। तो ये एक तो होड़ है, इसलिए देखने वालों को ही अपने चरित्र को सेफ रखने के लिए, अपने जीवन को बहुत शुद्ध करने के लिए इन चीजों से बचना होगा।
1: बिल्कुल प्रातः जी, अगला जो हमारे पास मेल आया है, इसमें हमारी एक बहन लिखती हैं कि मेरी मम्मी की उम्र लगभग 48 वर्ष है, और वो पिछले 10-12 वर्षों से डिप्रेशन के शिकार हैं, और अभी लगभग उन्हें नींद भी नहीं आती, खाना भी वो ठीक से नहीं खा पाती हैं, सारे दिन कमरे में ही बंद रहती हैं। हम लोग बात करने की उनसे कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो खुलकर बात नहीं करती हैं। तो उनके लिए क्या कोई आध्यात्मिक उपाय हो सकता है कि वो डिप्रेशन से बाहर आए?
0: ये एक बहुत ही सीवियर, बहुत ही खतरनाक स्थिति डिप्रेशन की हो जाती है। तो देखिए, इसके लिए आध्यात्मिक उपचार ही सत्य उपचार है, क्योंकि मेरे अनुभव में इसके जो कारण हैं वो कुछ और हैं। अभी एक साइकेट्रिक डॉक्टर तो फिलोसोफर होता नहीं, वो तो गहन चिंतक भी नहीं होता, वो तो ये देख सकता है कि ब्रेन में कैसी कैसी डेफिशिएंसी हैं, या उसके कोर्सेज में जो उसको ज्ञान दिया गया है ये किस तरह का डिप्रेशन है, इसके लिए ये मेडिसिन है, वो इतना ही करेंगे
1: जी।
0: लेकिन देखिए, बहुत गुह्य रूप से हमें विचार करने की बात है, किसी ने किसी को 200 साल तक बहुत सताया है, 200 साल छोड़ो, चलो 25 साल बहुत सताया है, दूसरे को बहुत हर्ट किया है, उसकी खुशी को नष्ट किया है, उसकी नींद को समाप्त कर दिया है, उसके नेगेटिव वाइब्रेशंस निरंतर इनको आते रहते हैं, इसको कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जो दूसरों को सता रहा है, हमारे व्यवहार के कारण दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी नींद खत्म हो रही है, उनकी खुशी जा रही है, उनके घर का माहौल भारी होता जा रहा है, तो उनके निगेटिव वाइब्रेशन इनको निरंतर आते रहेंगे। इसको लोग पाप नहीं समझते, पर ये बहुत बड़ा पाप है। दूसरों को सताना, दूसरों की खुशी छीन लेना, उनके मार्ग में अवरोध खड़े कर देना, उन पे तंत्र मंत्र करा देना, उनके बिजनेस को नष्ट करा देना, ये सब महापाप हैं। तो इनके इफेक्ट मान लो 25 साल से चलते आ रहे, अब धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस इनको डाउन करेंगे। ये बात मैंने अब की कही, लेकिन ये हो सकता है 200-300 साल से किसी के साथ चला रहा हो, उस व्यक्ति के कुछ अच्छे कर्म, कुछ अच्छी फीलिंग्स, कुछ अच्छी मनोस्थिति भी हो तो ये काम न कर रहे हो, लेकिन आखिर जब उसकी मनोस्थिति डाउन हुई तो ये प्रभावी हो गए। तो इस माता के साथ यही हो रहा है, इसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं। मैं कहूंगा जिसने ये प्रश्न किया है, इसकी बच्ची ने, वो एक घंटा राजयोग का अभ्यास करके अपनी माँ को योगदान करे, इसको हम योगदान कहते हैं। यानी हम राजयोग का अभ्यास करेंगे और करेंगे दूसरों के लिए। एक विधि है कि राजयोग हमें सुख देता है
1: जी।
0: हमारे जन्म जन्म के पाप कर्मों को नष्ट करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, लेकिन यही काम हम राजयोग करके दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी योग की शक्ति को। तो ये लड़की अपनी माँ के लिए एक घंटा बहुत अच्छी तरह से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करे, उसको डोनेट करे ये। इससे उसके वो सब नेगेटिव वाइब्रेशंस जो इस पे बहुत हावी हो गए हैं कटने लगेंगे, और इससे इसका मन कुछ प्रसन्न होने लगेगा। फिर इसे बात भी करें, इसको थोड़ा हंसाए बहलाएं, उसको अकेला ना छोड़ें, और उसको तैयार करें कि वो कुछ काम करती रहे। देखिए, अगर डिप्रेस्ड व्यक्ति काम नहीं करेगा, नींद तो उसको आएगी नहीं, तो वो लेट आ रहेगा और उसका डिप्रेशन गहरा होता जाएगा। इसलिए उसको काम में लगा दिया जाए। मैंने कई ऐसे केसेस कराए हैं कि जो अभी डिप्रेशन शुरू ही हुआ था, जिनकी बहुत खराब कंडीशन नहीं थी, उनको सेवाओं में लगा दिया, खूब काम कर दो तुम 8-10 घंटे, और मैं देखा 5-7 दिन में तो वो उससे बाहर आ गए। फिर इसके बाद ये माता जब थोड़ी सी जरा संभल जाए, और अभी कोई उसके साथ बैठ के कराए, उसकी लड़की उसके साथ बैठे और शुरू करे लिखना, मैं भगवान की संतान महान आत्मा हूं, 21 बार लिखे एक बार, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ा के 50 तक ले चले, फिर 108 तक ले चले। अगर ये क्रम जारी रखें तो इस विचार से कि मैं एक महान आत्मा हूं, आत्मा से ब्रेन को बहुत प्योर एनर्जी जाती है और इससे डिप्रेशन ठीक हो जाते हैं। तो जैसा मेरे अनुभव में मैंने देखा, लोगों के डिप्रेशन 21-21 दिन में ठीक हो गए हैं, तो इनका भी ठीक हो जाएगा
1: जी। राधा जी, जैसे आपने कहा कि शुरुआत यदि हो रही हो डिप्रेशन की, तब तो उनको कार्य में लगा दिया जाए, तब तो वो कुछ कार्य कर भी लेते हैं, लेकिन जैसे इनका केस है कि लगभग 10-12 वर्षों से इन्हें डिप्रेशन है और अब वो बिल्कुल कट ऑफ हो गई हैं, इनके बच्चे इनसे बात भी करना चाहते हैं, पूछना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलती नहीं, तो क्या वो लिख पाएंगी या कुछ सोच पाएंगी?
0: हाँ, यही समस्या है, इसलिए किसी को बैठ के शुरू कराना पड़ेगा। भले 2 बार लिखे, वैसा ही होता है, वो नहीं लिखते, फिर 5 बार लिखे, थोड़ा सा उनको घुमाए फिराए घर में हाथ पकड़ के, थोड़ा सा उनको मदद करनी पड़ेगी, उनकी इच्छा के विरुद्ध भी जाकर, क्योंकि उनकी इच्छा तो होती है अकेले
1: पड़े रहे, पड़े रहती
0: है, जल हो रहे, नींद भी नहीं, पता नहीं किस दुनिया में खोए रहे हैं, उनको कहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा घुमाए फिराए भी घर में, थोड़ा बाहर ले जाए उनको, थोड़ा वो भी देखें, कुछ उनकी सोई हुई स्मृतियां जागृत हों, तो उनमें चेतना आ सकती है। लेकिन असंभव कुछ नहीं है, किया जा सकता है। कोई उनका शुभ चिंतक, जैसे इसकी लड़की है, ये बहुत शुभ चिंतक है इसकी, ये उसको इस तरह का साथ दे के थोड़ा सा उसकी मालिश वालिश भी कर दे, उसके हाथ पैरों को दबा भी दे, क्योंकि एनर्जी ब्लॉक हो जाती है जहां तहां। बहुत अच्छा होगा कि उल्टा लेटा कर उसका जो स्पाइन कॉर्ड होता है ना, रीढ़ की हड्डी, उसके दोनों ओर मुट्ठी बांध के धीरे धीरे 5-7 मिनट दबा दिया जाए, तो वहां भी एनर्जी बहुत ब्लॉक हो जाती है, वो खुलने से ब्रेन को एनर्जी जाने लगेगी और काफी फ्रेशनेस होगी।
1: जी जी जी जी, निश्चित रूप से आपने बहुत सारे अच्छे अनुभव सुनाए हैं अपने भी, और साथ ही बहुत सारी उन्हें युक्तियां भी बताई हैं, इन्हें करने से उनकी माँ जल्दी से जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाए,
0: और हमारी यही शुभकामना है कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आए और एक अच्छी गृहिणी बनकर अपने बच्चों की पालना करे, अपने घर को मंदिर बनाए, घर में फिर से खुशहाली का माहौल,
1: क्योंकि आमतौर पर भ्राता जी यही होता है, घर में यदि कोई इस प्रकार से लेटा हो, बीमार हो, उसे तकलीफ हो, तो घर में खुशी का माहौल नहीं रह पाता, खास करके बच्चों के ऊपर यदि माँ ऐसी हालत में है तो बहुत ज्यादा उसका बुरा असर देखने में आता है। भ्राता जी अगला जो हमारे पास मेल आया है ये है उज्जैन से, केदारनाथ साहू जी लिख रहे हैं कि मैं योग के बारे में सब कुछ जानता हूँ लेकिन मेरा योग नहीं लगता। जब मैं योगाभ्यास के लिए बैठता हूँ तो मन भटकने लगता है। मुझे अच्छा योग करने की इच्छा है, योगी बनने की इच्छा है, कृपया मेरा मार्गदर्शन।
0: हाँ, ऐसा कुछ प्रारंभिक समय में कई अभ्यास करने वालों के साथ होता ही है, लेकिन जब मनुष्य धीरे धीरे अभ्यास कर लेता है और अनुभव हो जाता है फिर वो इन चीजों से पार हो जाता है। तो साहू जी का राजयोग में बहुत इसको सफलता नहीं मिल रही है। इसमें इनको पहले तो ध्यान देना है कि वो सारा दिन सोचते क्या हैं।
1: जी।
0: वो सोचते रहते हैं जो उन्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी ब्रेन की भी एक स्थिति है, हमारे मन की भी एक श्रेष्ठ स्थिति है, हमारी बुद्धि को भी कुछ भोजन चाहिए। बुद्धि का भोजन प्योर फूड, प्योर थॉट्स, बिल्कुल जितने सुंदर विचार होंगे हमारी बुद्धि आनंद का अनुभव करेगी। हम सारा दिन खुली आंखों से संसार को देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं? कहीं हम वो तो नहीं देख रहे हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। अनेक बार क्या हो रहा है कि जब मनुष्य कुछ भी देखता है उसका चिंतन उसके मन में चलता ही रहता है
1: जी।
0: बिल्कुल मन की ये बड़ी सूक्ष्म गति है, जो हमने देखा उसका चिंतन मन में प्रारंभ हो गया। तो कहीं साहू जी ऐसी चीजें तो सारा दिन नहीं देख रहे जिससे व्यर्थ चिंतन उनके मन पर हावी होता जा रहा है। इन चीजों से इन्हें बचना होगा, इम्पोर्टेंट चीज है। अगर ये इनसे नहीं बचेंगे तो जब ये राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस में बैठेंगे तो मन इनको बार बार उधर ही खींच कर ले जाएगा। इम्पोर्टेंट बात यह, इन सब से बचने के बाद इन्हें एक तो सवेरे थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, 4 बजे, क्योंकि जब ऐसे केस मेरे सामने आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कितने बजे उठते हैं तो कहेंगे 7 बजे। तो 7 बजे तक क्या है, मन की स्थिति, ब्रेन की स्थिति कुछ और होती है, 4 बजे उसकी स्थिति कुछ और होती है। 4 बजे उठें, थोड़ा अव्यक्त महावाक्यों का, ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करें, अपने को फ्रेश करें, थोड़ी खुली हवा में, अगर इनके पास मौका हो घर के आंगन में या बरांडे में, पैसेज में, कहीं भी थोड़ा घूम फिर कर थोड़ा सा खुले विचार करें, जीवन कितना सुंदर है, ये संसार कितना ब्यूटीफुल है, संसार का ये नाटक कितना सुंदर गति से आगे बढ़ रहा है। इस तरह पहली चीज इन्हें जो करनी है, अपने विचारों को सुंदर रूप देना। इसके बाद इनका मन राजयोग को एंजॉय करेगा और तब इनको इस मार्ग में सफलता मिलेगी।
1: बिल्कुल, मतलब अपने सारे दिन के विचारों पर ध्यान दें और देखने पर भी ध्यान दें कि वो सारे दिन क्या देख रहे हैं, और सुबह उठ करके कुछ सुंदर अभ्यास।
0: अब मैं कुछ अभ्यास बता देता हूँ। सवेरे जब ये उठे, चलो मान लो ये 4 बजे नहीं उठे, 5 उठे, तो उठते ही ये 108 बार लिखेंगे, मैं भगवान की संतान, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे क्या होगा कि उठते ही शक्तिशाली वेव्स इनके ब्रेन में प्रवेश करने लगेंगे। बहुत सुंदर अनुभव लोगों के हैं, 108 बार उठते ही लिखा, अब इतना ही लिखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो बहुत एनर्जेटिक हो गए, इसमें 10-12-15 मिनट ही लगे लेकिन बहुत एनर्जेटिक हो गए। जो नींद और सुस्ती का एक प्रकोप सा था देह पर और मन पर, वो जैसे आवरण ही हट गया। ऐसे ही सोने से पहले, भगवान की संतान हूँ मैं एक महान आत्मा हूँ, 108 बार लिखें। इससे ब्रेन को बहुत प्योर एनर्जी जाती है। उसके बाद सोना चाहिए, उसके बाद कामकाज नहीं, बस अपनी कॉपी रखो और सो जाओ। इससे जो सर्किल है 24 घंटे का वो बहुत सुंदर हो जाएगा। एक ही अभ्यास करना चाहिए। दूसरी चीज फिर अभ्यास करना चाहिए आत्मिक स्वरूप पर स्वयं को स्थित करने का, फिर परमात्म स्वरूप पर स्थिर करने का। ये काम पहले 10-10 सेकंड से शुरू करें, फिर आधा सेकंड, आधा सेकंड, आधा सेकंड आत्मा पर, आधा सेकंड परमात्मा पर, ऐसा स्वरूप का चिंतन करते हुए उसमें स्थिर होंगे तो धीरे धीरे मन योग का आनंद लेने लगेगा।
1: बहुत सुंदर भ्राता जी, जो आपने अभ्यास बताए हैं, निश्चित रूप से केदारनाथ जी का योग अवश्य लगेगा और उसका वो आनंद जरूर लेंगे। आज आपने जिन भी प्रश्नों का उत्तर दिया भ्राता जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपके पास भी किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो ये मंच आपका है, ये कार्यक्रम आपका है, हम आपके हैं, आपके लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप अपने प्रश्नों को मेल के द्वारा हम तक पहुँचा सकते हैं, आपके प्रश्नों को, आपकी समस्याओं को हम इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। और ये अवश्य मान करके चलें कि मुश्किलें उन्हीं के पास आती हैं जो वास्तव में सशक्त हैं। मुश्किलें आईं तो हम उन्हें किस प्रकार फेस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा

0: इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा प्रयास रहता है कि हम कुछ ऐसी आध्यात्मिक बातें, ऐसे आध्यात्मिक टिप्स आपके तक अवश्य पहुंचाएं जो आपको सशक्त बनाए, योग्य बनाए और आपको सक्षम बना करके उस परिस्थिति से पार ले चलने में आपकी मदद करें। तो आप इस कार्यक्रम में हमेशा हमारे साथ बने रहें। आज के लिए समाधान में इतना ही। दीजिए इजाजत अपने मित्र को। नमस्कार।
1: धैर्य और दृढ़ मनोबल से
2: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
3: लाइफ इज अ सॉन्ग। जीवन एक बहुत सुंदर संगीत है। सिंग इट, सिंग इट। जीवन एक बहुत सुंदर गीत है और इस गीत को हमें गाना बजाना आना चाहिए। मुझे एक सिंगिंग कंसर्ट में बुलाया गया और मुझे ये बताया गया कि ये कंसर्ट जो है कुछ अलग है, यूनिक है। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि वो जो सारे कंसर्ट में जो पार्टिसिपेंट थे वो पूरी तरह अंधे थे। चाहे वो गीत गायक क्यों ना हो, बजाने वाले क्यों ना हो, दे वर ऑल पीपल हु वर नॉट एबल टू सी। एक डेढ़ घंटे का जब मैं ये प्रोग्राम सुना मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज सच अ वंडरफुल कलरफुल शो बाई दोज पीपल हु हैव नेवर सीन कलर इन देयर लाइफ। उसी तरह जीवन एक बहुत सुंदर गीत है, उसको गाना बजाना आना चाहिए। अगर हम उन गायक की तरह गीत नहीं गा सकते हैं, अगर हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते, नथिंग टू वरी, लेकिन हमारे शब्द तो मीठे हो सकते हैं ना, हमारे शब्द तो सुखदायी हो सकते हैं ना। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मैंने एक स्लोगन पढ़ा जिसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये बोलना, पहले सुनना, और वो है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। क्योंकि हमारे शब्द जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यूबल है। सभी बोलेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। ठीक है।

0: तो बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है। मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस। लेकिन अपने आप के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू, गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम के अंतर्गत और तनाव और चिंता से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, इस विषय पर आपने जाना आदरणीय सूरज भाई जी और रुपेश भाई जी के क्वेश्चंस के माध्यम से। आज रेलवे सुरक्षा बल दिवस भी है और आज के पंचांग के अनुसार दिन विशेष के ऊपर भी हम थोड़ा नज़र डाल देते हैं। आज शक संबंध 1948 भाद्रपद शुक्ल नवमी रविवार है और विक्रम संबंध है 2083। अंग्रेजी तारीख है 20 सितंबर सन 2026। सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु है। राहुकाल शाम को 5:30 से शाम को 7 बजे तक है। नवमी तिथि शाम को 5:51 तक, उपरांत दशमी तिथि का आरंभ है। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र अगले दिन तड़के 4:34 तक, उपरांत उत्तर आषाढ़ नक्षत्र का आरंभ है। सौभाग्य योग दोपहर 3:23 तक, उपरांत शोभन योग का आरंभ है। कोलव करण शाम को 5:51 तक, उपरांत तोतिल करण का आरंभ है। चंद्रमा दिन रात धनु राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय 6:08 पर हुआ है। सूर्यास्त का समय 6:20 पर होगा। चंद्रोदय का समय दोपहर 2:34 पर और चंद्र अस्त का समय है मध्य रात्रि 12:41 पर 21 सितंबर को। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी आज के दिन विशेष के साथ। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:50 से 12:39 तक। सूर्यदेव कन्या राशि में स्थित है, चंद्रदेव धनु राशि में स्थित है। अमृतकाल रात्रि 11:12 से मध्य रात्रि 12:59 तक है आज के दिन। और इसके साथ साथ इस्लामी हिजरी है 1448 रबीउल आखिर इतवार नाइम है आज के दिन। आज रेलवे सुरक्षा बल दिवस भी है। भारत के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है और ये ऐसा सुरक्षा बल है जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्तियों की रक्षा तथा किन्हीं देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखना है। और ये केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल है जो पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में जाना जाता है, जिसे दोषियों को गिरफ्तार करने, जांच पड़ताल करने एवं अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार है। भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन में है ये, RPF के नाम से हम जानते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में रेलवे का बड़ा ही योगदान रहा है। यही वजह रही कि माल की ढुलाई से लेकर यात्रियों को सुरक्षा पहुंचाने की जिम्मेदारी भी रेलवे के साथ जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों ने भी रेलवे की सहायता ली थी, पर समय के साथ साथ रेल संपत्तियों की चोरी और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा बल की स्थापना की जरूरत महसूस की गई। इसके फलस्वरूप रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना 20 सितंबर 1985 में एक कानून बनाकर की गई। और उद्देश्य क्या है? अवांछित तत्वों से रेल यात्रियों की सुरक्षा, यात्री क्षेत्र की सुरक्षा तथा रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा इनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। रेल से असामाजिक तत्वों को निकालना तथा रेल क्षेत्र को यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाना इसके प्राथमिक जिम्मेदारी है। रेल क्षेत्र में बच्चों एवं महिलाओं की तस्करी रोकने के लिए उचित कार्रवाई तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना इनकी जिम्मेदारी है। रेलवे की छवि को जनप्रिय बनाए रखने के लिए अन्य विभागों के साथ उचित समन्वय बना के रखना। रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस तथा रेल प्रशासन के लिए सेतु का कार्य करता है। उत्कृष्ट मानव अधिकार प्रक्रिया, उन्नत तकनीक और जनप्रिय प्रबंधन, महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा इनकी जिम्मेदारी है। रेलवे सुरक्षा बल में आरक्षक, उप निरीक्षक और रेलवे सुरक्षा बल में निरीक्षक अभियोजन तथा उप निरीक्षक अभियोजन की नियुक्तियां होती हैं। जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी लखनऊ द्वारा प्रारंभिक तथा विशेष अंतर सेवा पाठ्यक्रम भी

जाता है। तो एक ये केंद्रीकृत कोष है जिसे रेल सुरक्षा कल्याण निधि भी कहा जाता है। आपातकालीन समय जैसे किसी भी प्राकृतिक आपदा, मृत्यु या फिर असामाजिक तत्वों से लोहा लेते वक्त मृत्यु तथा अंतिम संस्कार का खर्च वहन करना होता है। और बल कार्मिकों को यहाँ पर पुनः श्रेणीबद्ध होने पर, कैंसर एवं टीबी जैसी बीमारी होने पर भी विपत्ति सहायता कोष से सहायता मिलती है। सेवानिवृत्त होने पर, बल से सेवा युक्त होने तथा इस्तीफा देने पर भी अनुग्रह राशि का भुगतान भी इस कोष से किया जाता है। तो ये कुछ बातें जुड़ी थी रेलवे सुरक्षा बल के साथ। आज रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस है। आज के दिन 1985 में स्थापना हुई थी कानून बना करके।

मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर और इस मोड पर एक हमारे श्रोता हमारे साथ बात करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
1: हेलो दीदी नमस्कार
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ। आजकल तो थोड़ा सूखा हो गया है, बरसात के मौसम कम हो गया है
0: जी।
1: मौसम
0: जी
1: सुहाना है, बढ़िया है।
0: कल बारिश नहीं हुई आपके यहाँ थोड़ा बहुत?
1: मेरा भजन सुनने की इच्छा हो रही है
0: जी, बताइए।
1: लाख करो प्रतिराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई।
0: कोशिश करेंगे हम बुढ़लाल जी आपको सुनाने के लिए भजन, ठीक है? धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्कार और आपको भी प्रणाम।
0: प्रणाम जी, प्रणाम, धन्यवाद कॉल करने के लिए। ये थे हमारे भूरी लाल जी। तो आइए हम चलते हैं वेदर रिपोर्ट की ओर। वेदर रिपोर्ट में सबसे पहले चलते हैं राजधानी जयपुर की ओर। यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है और आसमान साफ रहेगा आज के दिन। उदयपुर में 34 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 24 डिग्री तक जा सकता है। वर्षा की संभावना दिन के समय है उदयपुर में 70% तक की बारिश होने की संभावना है। 37 डिग्री तक आबू रोड में अधिकतम तापमान, न्यूनतम 25 डिग्री तक जा सकता है और यहाँ पर 55% तक थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावना है। और बात करें माउंट आबू की तो 21 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। आसमान साफ रहेगा। पाली जिले में 37 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है। जोधपुर में भी 37 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है, आसमान साफ रहेगा। सूरत में 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक जा सकता है। आज दिन के समय रात्रि के समय भी बारिश होने की यहाँ पर संभावना है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावना है। मेहसाना में 37 डिग्री तक अधिकतम, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है और यहाँ पर 60% तक संभावना है दिन के समय बारिश होने की। रात्रि के समय आसमान साफ रहेगा। राजकोट में क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश होने की संभावना है, 55% तक संभावना है दिन के समय बारिश होने की। रात्रि के समय कम संभावना है बारिश होने की। गांधीनगर अहमदाबाद में 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है। दिन के समय बारिश होने की संभावना है, रात्रि के समय बहुत ही कम संभावना है। और आइए चलते हैं हम दिल्ली की ओर। राजधानी दिल्ली में 35 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है, आसमान साफ रहेगा रात्रि के समय, दिन के समय बारिश होने की संभावना है। कोलकाता में 32 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है, बारिश होने की संभावना है लगभग 98% तक और रात्रि के समय बारिश होने की थोड़ा सा कम संभावना है लेकिन जोरदार बारिश होने की आज दिन के समय संभावना है। अगर हम बेंगलुरु के बारे में बात करें तो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक जा सकता है और 60% तक संभावना है दिन के समय भी और रात्रि के समय भी जोरदार बारिश होने की। मुंबई के बारे में बात करें, 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है, 61% तक संभावना है बारिश होने की मुंबई में आज दिन के समय और रात्रि के समय थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावना है। चेन्नई के बारे में बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जाने की संभावना है और 28 डिग्री तक या 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान जाने की संभावना है यहाँ पर और रात्रि के समय यहाँ पर जोरदार बारिश होने की संभावना है लगभग 84% तक और दिन के समय 70% तक बारिश होने की संभावना है। जिला सिरोही के बारे में बात करें तो यहाँ

पर 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर। बारिश होने की संभावना दिन के समय 50% से ज्यादा है और रात्रि के समय यहाँ पर 16% तक है बारिश होने की। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे वेदर रिपोर्ट के साथ। आइए लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम में गुड मॉर्निंग अबोर। मैं हूँ आरजे शुभा।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जीवन में हर अनुभव एक दर्पण है जो आपकी आत्मा के किसी न किसी पहलू को दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आइए चलते हैं आबू रोड रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां। गाड़ी संख्या है 22547 ग्वालियर से गांधीग्राम तक जाने वाली सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 8:25 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। आरावली एक्सप्रेस 14702 8:30 पर पहुंचने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस 12461 9:05 पर पहुंचेगी। गरीब नवाज एक्सप्रेस 16532 9:10 पर पहुंचने वाली है। जम्मू तभी साबरमती एक्सप्रेस 19224 9:45 पर पहुंचेगी। अजमेर मैसूर एक्सप्रेस 16209 10:10 पर पहुंचेगी। वहीं पर जोधपुर सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 20496 10:30 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। योगा एक्सप्रेस 19032 10:51 पर पहुंचने वाली है। प्रयागराज से गांधीग्राम तक जाने वाली स्पेशल ट्रेन 04111 11:00 आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। दौलतपुर गांधीनगर एक्सप्रेस 19412 11:30 पर पहुंचने वाली है। गांधीग्राम से जोधपुर तक जाने वाली एक्सप्रेस 14822 11:40 पर पहुंचने वाली है। तो ये कुछ ट्रेन से जुड़ी हुई बातें हम आपके समक्ष रख रहे थे। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। आइए, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि आज हम जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। PGIMER में नर्सिंग ऑफिसर के 243 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी आई है और ये जानकारी हम आपको दैनिक भास्कर के जरिए पहुंचा रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ ने नर्सिंग ऑफिसर के लिए 243 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक उम्मीदवार www.pgimer.edu.in पर जाकर के रिक्रूटमेंट सेक्शन पर नर्सिंग ऑफिसर के भर्ती के आवेदन लिंक से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं पर बात करें, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तर के ग्रुप सी के 553 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू किया है और इसमें जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, रजिस्टर और कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य पद भी सम्मिलित हैं। लिखित परीक्षा 15 नवंबर को प्रस्तावित है। www.ssc.uk.gov.in पर जाकर के आप ग्रुप सी इंटरमीडिएट लेवल भर्ती 2026 के आवेदन लिंक पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं पर कर्मचारी चयन आयोग SSC ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, LDC, JSA और डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO समेत 2536 संभावित पदों पर भर्ती होगी। अंतिम रिक्तों की संख्या के बाद में ये जारी की जाएगी। इस भर्ती में पिछले वर्ष की तुलना में बदलाव किए गए हैं। टीयर वन परीक्षा में अब प्रत्येक विषय के लिए 15 मिनट का सेक्शन टाइमर रहेगा और समय समाप्त होने पर संबंधित सेक्शन अपने आप बंद हो जाएगा। टीयर टू में भी सेक्शनल टाइमर लागू किया गया है। इसके अलावा आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का शुल्क 100 रुपये से घटाकर 50 रुपये प्रति प्रश्न कर दिया गया है। रिक्त पदों को भरने के लिए यहाँ पर स्लाइडिंग मैकेनिज्म और FRGA को भी आधिकारिक रूप से लागू किया गया है। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर संस्थान से 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, SSC और संस्कृति मंत्रालय, DEO और DEO ग्रेड A के लिए विज्ञान स्ट्रीम में गणित विषय के साथ 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। और आवेदन कैसे करें, www.ssc.gov.in पर जाकर पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करें और फिर CHSL 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करने से फॉर्म भरें। आवेदन में व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक जानकारी दर्ज करने के बाद शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करें। 7 अक्टूबर 2026 लास्ट डेट है। यूपी में यूपी के शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1936 पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किया है। www.upessc.up.gov.in पर आप ये देख सकते हैं। और वहीं पर संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने भारत सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में 213 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। शैक्षणिक योग्यता अलग अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है। अधिक जानकारी के लिए www.upsc.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है तो आप इस वेबसाइट में जानकारी ले सकते हैं। भर्ती के तहत विशेषज्ञ, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट है 2 अक्टूबर 2026। उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। आवेदन अधिक होने पर UPSC वांछनीय योग्यता, अधिक शैक्षणिक योग्यता और संबंधित क्षेत्र में अनुभव और भर्ती परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर सकता है। आवेदन शुल्क ₹25 निर्धारित किया गया है। महिला SC ST और PWD उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना है। पद के अनुसार अधिकतम आयु सीमा अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और ये MBBS के साथ साथ स्नातक तौर कोई भी विषय पर और विशेषज्ञता, पत्रकारिता, जन संचार में डिग्री या डिप्लोमा समेत पद के अनुसार अन्य योग्यता मांगी गई है। कुछ पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव भी जरूरी है। और वहीं पर रेलवे में पैरामेडिकल स्टाफ के 560 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 2026। तो रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने पैरामेडिकल भर्ती 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत 560 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है। भर्ती में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, स्वास्थ्य एवं मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और ECG टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट Grade 2 सहित अन्य पद शामिल है। पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए GNAM और BSc नर्सिंग की योग्यता होनी चाहिए। JNM और BSc की नर्सिंग की योग्यता। अन्य पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में निर्धारित डिप्लोमा या डिग्री जरूरी होगी। अलग अलग पदों के लिए आयु सीमा पद के अनुसार निर्धारित की जाएगी। सामान्य OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए शुल्क है ₹500। SC ST और EBC, ESM सभी महिला उम्मीदवारों, अल्पसंख्यक और थर्ड जेंडर उम्मीदवारों के लिए शुल्क ₹250 है। www.rrbapply.gov.in पर जाकर पैरामेडिकल भर्ती 2026 पर आवेदन लिंक कर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। शुल्क जमा करने के बाद आवेदन सबमिट करें। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। और वहीं पर सीनियर इंस्ट्रक्टर के 132 पदों पर भर्ती होगी। लास्ट डेट है 5 अक्टूबर और ये UPSSSC ने राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के लिए सीनियर इंस्ट्रक्टर के 132 पदों पर भर्ती निकाली है। और वहीं पर दिल्ली पुलिस और CAPF में SI के 1871 पदों पर भर्ती है। 30 सितंबर 2026 लास्ट डेट है। तो कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत 1871 पदों पर भर्ती होगी। दिल्ली पुलिस में SI पुरुष के 205, SI महिला के लिए 112 और CAPF के 1320 और CISF में सब इंस्पेक्टर फायर के लिए 234 पद शामिल हैं। www.ssc.gov.in पर जाकर के आप SSC CPO 2026 के आवेदन लिंक पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी BGSSL में 2049 पदों पर भर्ती है। बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी में ग्लोबल शेयर सर्विसेज लिमिटेड ने 2049 पदों पर भर्ती निकाली है। लास्ट डेट है 30 सितंबर 2026 और इनमें फील्ड कलेक्शन ऑफिसर, डिजिटल ऑनबोर्डिंग स्पेशलिस्ट, आधार ऑपरेटर और सेल्स ऑफिसर, अप्रेंटिस टेली कलेक्शन एजेंट समेत एग्जीक्यूटिव और MIS एनालिस्ट और IT सपोर्ट के पद शामिल है। आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। www.bgss.in पर जाएं। इसके बाद करियर्स में करंट अपॉर्चुनिटीज पर क्लिक करें। संबंधित पद का चयन करें। मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और कार्य अनुभव की जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे जॉब्स के साथ, लक्ष्य के साथ। लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम। मिलते हैं अल्पविराम के उस पार। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अपने आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। और कुछ क्षणों के बाद आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो जुड़ी हुई है हमारे आसपास के साथ जान लेते हैं। रेवदर में केपी संघवी राजकीय कॉलेज में एमए प्रथम सेमेस्टर हिंदी इतिहास राजनीति विज्ञान के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। कॉलेज प्राचार्य मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि स्नातकोत्तर हिंदी इतिहास राजनीति विज्ञान सेमेस्टर प्रथम में नवीन प्रवेश के लिए आवेदन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ई मित्र के माध्यम से किया जाएगा। कॉलेज की ओर से 9 अक्टूबर को आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन होगा। अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन होगा। नोडल अधिकारी भंवर लाल जी ने बताया कि नव प्रवेशित छात्रों की प्रथम सूची 15 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वहीं पर शहर की सत्ता की रणनीति बाड़ाबंदी में और घर के कामकाज की कमान पति सास और बेटियों के हाथ में। 6 नगर निकायों में मतदान के बाद से ही दोनों पार्टियों ने पार्षदों को क्रॉस वोटिंग के डर से रखा है बाड़ाबंदी में। शहर की सरकार बनाने के इस राजनीतिक कवायद का असर अब पार्षदों के घर तक दिखाई देने लगा है। कई महिला पार्षद पिछले 9-10 दिनों से बाड़ाबंदी में है और ऐसे में अनेक उनके घरों की रोजमर्रा की जिम्मेदारियां पति सास और बेटियां संभाल रही हैं। कहीं व्यापार के साथ पति रसोई संभाल रहे हैं तो कहीं बुजुर्ग सास को खाना बनाने के लिए और बर्तन साफ करने का जिम्मा भी उठाना पड़ रहा है। और बात करें रेवदर में 110 प्लांट और 35 से ज़्यादा बंद, टेंडर खत्म तो रखरखाव भी ठप हो रहा है। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लाखों रुपए की लागत से लगाए गए सोलर आधारित वाटर प्लांट रखरखाव के अभाव में बंद होते जा रहे हैं। आज से खेलों का महाकुंभ, 18 स्कूलों में 22 खेलों के मुकाबले। शिक्षा विभाग ने जिले के सरकारी और निजी स्कूलों में होने वाली 70वीं जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र छात्राओं की प्रतियोगिताएं 3 चरणों में होगी। पहला चरण रविवार को शुरू होगा। जिले के 18 स्कूलों में विभिन्न खेलों के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप दैनिक भास्कर पर पढ़ सकते हैं कि कौन से स्कूल में कौन से प्रतियोगिताएं हैं। जिला सलाहकार समिति के बैठक 22 सितंबर को है। दिव्यांगों को मिलेंगे अब जरूरी सहकरण उपकरण और इसके साथ साथ 22 नवंबर से शुरू होगी IFS मुख्य परीक्षा। यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्ते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
2: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
3: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
4: जो हाल ही में जीएसटी का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर, कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पड़ नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित लगे कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
3: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
5: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
3: पिछले 9 वर्षों में जीएसटी सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में एबीवीपी की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए एबीवीपी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
7: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राम लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी, क्योंकि वो हियरिंग होनी है तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
8: We have to continuously be watchful of the
9: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले 2 दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाये रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
10: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगो केश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमरीकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
11: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक। राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिन्दुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनुभाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमरीका करेगा इसकी चौकीदारी। ग्रीनलैंड और अमरीका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी।

0: और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आइए आज आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ विशेष अनघा सावंत हमारे साथ है, उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस प्रोग्राम। और साथ में हमारे गेस्ट में पूजन मुजुमदार जी भी हैं और आप अच्छे गाते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: अर्चना जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आज के इस हमारे प्रोग्राम में अनघा जी से हम लोग बातें करेंगे और खास करके नेचुरल जो ब्यूटी है उसके बारे में जानेंगे, सोचेंगे और किस तरह से उन्होंने काम किया है इस विषय लेकर, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। और कई बार हम लोगों को ब्यूटी के लिए बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं और नेचुरल ब्यूटी आजकल या तो बहुत महंगा हो गया है या तो पता नहीं या तो मिलता नहीं, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन फिर भी हम लोग अनघा जी से इनके कुछ खास अनुभवों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग अपने लाइफ में इन चीजों को ठीक से समझ पाए, जान पाए और एक क्या कहते हैं, नेचुरल हमारा जीवन जो है खुशियों से भर जाए, ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे। तो विशेष अनघा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा वर्तमान समय में आप कहाँ पर हो और किस तरह से कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। स्वागत है।
2: थैंक यू। नमस्ते सबको। मैं फिलहाल एक अनिरिया बाथन बॉडी एसेंशियल्स नाम का मेरा ब्रांड है जो मैंने ऑफिशियली 2020 में शुरू किया, तो 2 साल हो गए आई एम वर्किंग ऑन दिस ब्रांड। हम क्या करते हैं, तो वी हैव द नेचुरल प्रोडक्ट्स जो अपना स्किन केयर के लिए, स्पेसिफिकली स्किन केयर के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर इनटू।
0: जी अनघा जी, धन्यवाद, शुक्रिया। और आपने बताया कि स्किन के लिए आप प्रोडक्ट बनाते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट। तो आइए मैं पूजन जी से चाहूंगा कि एक छोटा सा गीत के साथ आपका स्वागत करें और उसके बाद हम लोग बातें करेंगे आपसे, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में और आपने इसको शुरू कैसे किया वो कहानी भी आपसे सुन। पूजन सर, स्वागत कीजिए एक छोटे से गीत के द्वारा।
1: जी शुक्रिया, शुक्रिया रमेश भाई। जो राह चुनी है अनघा जी ने वो राह उनके लिए काफी सफलता से भरी रहे और बहुत आगे वो बढ़े, ऐसी मेरी मनोकामनाएं पेश करता।

0: पूजन मजुमदार जी, बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया, शुक्रिया करके शिवाज जी ने मैसेज किया है और मिनल जी ने भी ओम शांति लिख के भेजा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अनघा जी से मैं बात करना चाहूंगा, आप सभी को बोलना चाहूंगा। अनघा जी, मैं चाहूंगा कि क्या ऐसा हुआ कि आपको ये नेचुरल प्रोडक्ट को बनाने के लिए तैयार किया गया, यानी क्या सिचुएशन था कि आप इस ओर आए?
1: जी, मैं थोड़ा सा शुरुआत से शुरुआत करती हूँ। प्रोफेशनली मैं एक साउंड इंजीनियर हूँ, सो मेरा करियर में से 10 साल आई हैव वर्क्ड विद इंडस्ट्री, साउंड के लिए मैं काम करती थी, तो काफी सारे चैनल्स के लिए, काफी सारे स्टूडियोज में, काफी सारे शोज के लिए मैंने काम किया था। सो तब से लेकर के मेरा एक सपना था कि मुझे मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस होगा, ये मेरा तब से काफी शुरुआत से मेरा एक सपना था। बट शादी हो गई, बच्चा हो गया, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल प्रिटी गर्ल। जब वो 4 साल की थी, 4 साढ़े 4 साल के आसपास, उसे ड्राई स्किन का इशू शुरू हो गया। तो वो ड्राई स्किन का इशू इस हद तक था कि मतलब 70-80 साल या 50 साल 60 साल के आगे अपने पैर में छाले पड़ जाते हैं। उसको वो 4 साल की उम्र में पड़ रहे थे और वो इतने सीवियर थे कि उसकी उंगलियों में से खून निकल के बहुत, मतलब बहुत ज्यादा जख्म हो जाता था उसको। तो डॉक्टर्स की मेडिसिन तो चल रही थी, शी वॉज टू यंग कि इंटरनली उसको कुछ दिया जा सके, तो डॉक्टर यूज टू पुट हर ऑन एप्लीकेशन स्टेरॉइड्स, तो बाहर से उसको क्रीम लगाने के लिए दिया जाता था। उससे कुछ समय के लिए, जब तक दवाई चालू है तब तक उसको उस चीज से आराम पड़ के अब ठीक हो गया, आप बंद कर देते हैं, ये सोच के जैसे ही बंद कर दे वो वापस शुरू हो जाता है। इससे ये सिलसिला चल रहा था कुछ साल करीबन तक, साल 8-10 महीने साल तक ये चल रहा था। वो भी परेशान थी, मैं भी परेशान थी कि क्या किया जाए। तो उस रिसर्च में मैंने पढ़ते पढ़ते कि वाई द ड्राई स्किन एंड उसके ऊपर क्या इलाज हो सकता है, तब जाकर के मुझे पता चला कि हैंडमेड सोप करके कुछ है। तो अभी हैंडमेड सोप, मैं तो ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना तो मैं साइंस फील्ड से बिलोंग करती हूँ, ना तो मैं कॉस्मेटिक फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत नया था कि क्या है, कहाँ से इसको, कैसे सीखा जा सकता है, इसको कैसे मैं मेरी बेटी को दे दूँ। तो मार्केट में तो ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो मैंने पहले उसमें से कुछ चीजें ट्राई की जिससे उसको फर्क पड़ गया। और शुरू से एक जज्बा था कि मुझे मेरा खुद का बिजनेस करना था, खुद का ये सब मतलब वेंचर करना था। तो फिर एक बत्ती जल गई कि क्यों नहीं मैं इसी में करूँ, और मैंने फिर सीखना शुरू कर लिया, कुछ कोर्सेज किए, जैसे कि सोप मेकिंग का कोर्स किया, बॉडी बटर्स का कोर्स किया, क्रीम्स, लोशंस, ऑयल्स, जितना भी मुझसे बन सकता था मैंने वो हर एक चीज सीखना शुरू कर दिया। और जो चीज सीखती थी उसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होता था मेरी बेटी के ऊपर। रमेश जी, सच मानिए, जिस चीज के पीछे मैं 6 महीने 8 महीने 10 महीने डॉक्टर्स के पीछे भाग रही थी, उस चीज को मैंने 3 हफ्ते में उसके जख्म भर गए और आगे वाले 2 महीने में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो ये नेचर की देन है, ये कुदरत का करिश्मा है, मैं ये कहना चाहूंगी। बट हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम भागते हैं केमिकल्स की तरफ जिससे जल्दी रिजल्ट मिले, जिससे हम बहुत बाहरी खूबसूरती के ऊपर हम ध्यान देते हैं। बट हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि आयुर्वेद जैसे जो श्रेष्ठ शास्त्र है वो हमारी संस्कृति से आए हुए हैं और हम उन्हें कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। तो मुझे एक मौका मिल गया कि मैं उसको मेरे जरिए उसको शुरू करूं, मेरी बेटी के जरिए उसको शुरू करूँ, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब बेटी तो उसके ऊपर तो रिजल्ट दिख ही रहे थे, तो आजू बाजू आस पड़ोस वालों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या है जो वो अचानक से इतनी ठीक हो गई, उसकी स्किन में अचानक से इतना बदल कैसे आ गया। तो फिर वहां से मेरे बिजनेस की शुरुआत हुई। तो वो फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, मेरे बिल्डिंग वाले जो मेरे पड़ोसी, आस पड़ोसी थे, वहां से मेरे बिजनेस की शुरुआत हुई। और धीरे धीरे जो चीज मैंने एक साबुन, एक कोल्ड प्रोसेस्ड साबुन एक, और एक बाथ सॉल्ट, इस जर्नी से जो शुरुआत की थी, जो अब 18 से 20 प्रोडक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, और उसमें से मेरे 4 प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक सर्टिफाइड हो गए। सो दिस हैज बीन द जर्नी ऑफ अ मदर फॉर द मदर नेचर।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात। अभी हमने, मैं एक हमारे राम प्रकाश करके व्यक्ति थे जो यूएस से मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टाइटल दिया। पहले तो मैं टाइटल सुन के ही कंफ्यूज था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्राइसिस टर्न्स इनटू अपॉर्चुनिटीज।
1: ट्रू ट्रू ट्रू।
0: वो चीज मुझे लगा कि उन्होंने फिर अपने लाइफ में बोला कि, मैं बोला ये कैसे संभव है, जैसे उनको ये सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, हमारा पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था, वो एकदम से करप्ट हो गया, हम लोग पूरी तरह से खाने के लाले पड़े। ऐसे सिचुएशन में आप सोच सकते हैं, एक बहुत ही मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम जी रहे थे यूएस में, और अचानक सब कुछ गया, तो मुझे लगा अब तो मेरा जीवन खत्म हो गया, लेकिन पता नहीं वहाँ ऐसे हुआ कि मैं काम करने लगा और फिर धीरे धीरे मेहनत करके इंजीनियर बना और फिर वापस सब कुछ वापस आ गया। तो मैं ना क्राइसिस अपॉर्चुनिटी दिया, हो सकता है कि मेरे पिताजी का मेरे पे वो सारी चीजें मैं करता रहता या उनका बिजनेस संभालता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास वो क्राइसिस होने की वजह से मुझे करने का अपॉर्चुनिटी, तो उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो मैं तो आपके साथ भी आप किया जो
1: तो मुझे कहीं ना कहीं एक मौका मिला कि जो मैंने मतलब एज अ मदर जो मैंने मेरी बेटी के लिए शुरू किया था, जिस जिस विचार से मैंने ये सारी चीजें सीखना और बनाना शुरू किया था, उसको क्यों ना मैं और 10 लोगों में और 100 लोगों में और जितने भी लोगों तक मैं उसको पहुंचा सकूं, वहां तक मैं पहुंचा के मतलब इट वी आई कैन ऑफर समथिंग बेटर टू द कम्युनिटी, इस थॉट से मैंने वो आगे करना शुरू कर दिया। एंड दूसरी चीज सर ये है कि कहीं ना कहीं हम जो केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसका जो
0: जी
1: जिस तरह से वो बनते हैं, जिस तरह से उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, उससे भी कुदरत को हानि पहुंचती है और उसका जो
0: बिल्कुल
1: रेसिड्यू निकलता है उससे भी हानि होती है। ऊपर से जो हम यूज करते हैं उससे भले आपको ऐसे लगे कि हाँ भाई 10 मिनट में मैं गोरी हो गई या 10 मिनट में मुझे असर दिख गया, बट कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग टर्म आप खुद को भी उससे तकलीफ पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आई स्टार्टेड विद समथिंग टू गिव एज माई गिफ्ट फॉर द कम्युनिटी।
0: तो ये जो स्किन के लिए आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, ये कैसे आपने सीखा या कैसे शुरू हुआ ये? हमें जैसे आपने कहा कि
1: जी
0: आपने चीजें देखी और फिर नेचुरल
1: हाँ,
0: करना
1: तो
0: शुरू।
1: मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं साइंस स्टूडेंट नहीं थी, मुझे केमिकल्स का कोई ज्ञान नहीं था, ना कि मैं कोई डॉक्टर हूँ कि मुझे मेडिसिन का ज्ञान है, ना कि मैंने कोई कॉस्मेटिक्स का कोर्स किया है, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब देर आर फ्यू डॉक्टर्स हु आर एलिजिबल टू लर्न द कॉस्मेटोलॉजी या कॉस्मेटिक्स मेकिंग कोर्सेज फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, तो मेरे पास वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो मेरे पास एक और ऊपर से एज बार जो रहता है वो भी मेरा क्रॉस हो चुका
0: बिल्कुल
1: था।
0: बिल्कुल वो भी अलग होता
1: तो हाँ, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ये सारी चीजें सीखूं। आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड टीचर, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से मुझे जो बेसिक नॉलेज था कि प्रोसेसेस जो थे या जो उसके पीछे जो केमिकल प्रोसेसेस रहते हैं या उसके पीछे जो साइंस था, वो उनने मुझे बड़ी अच्छे तरीके से सिखाया। मैं ये क्या कहूंगी यहाँ पर कि मैं नसीबवान थी कि जब मैं सोप मेकिंग सीख रही थी उसी दौरान मेरी मुलाकात एक आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट से हुई। ठीक है
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो मेरे साथ वो भी कोर्स कर रही थी, हालांकि उन्होंने ऑलरेडी कॉस्मेटिक्स का कोर्स किया हुआ था, उन्होंने ऑलरेडी सारी मतलब उनकी खुद की प्रोडक्ट रेंज बहुत ज्यादा बड़ी, बट उनके पास ये कोल्ड प्रोसेस सोप्स नहीं थे। तो हमारी मुलाकात उस कोर्स के दौरान हुई और हम दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर मैं जो भी चीज बनाती थी या जो भी फॉर्मूला मैं बनाती थी, तो समझिए अभी मुझे ड्राई स्किन के लिए सोप बनाना है, तो बेसिकली सोप में क्या है कि कुछ ऑयल्स है जो आपको सिलेक्ट करने हैं, उसके अगेंस्ट आपको अकुस्टिक सोडा है और पानी है, तो इन तीनों चीजों को मिला करके आपको साबुन बनाना। तो मैं जो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था, मैं सीख रही थी, तो मैंने उनसे काफी सारी चीजें सीखी कि हर एक ऑयल का अपना एक गुणधर्म होता है। तो कोई ऑयल आपको ठंडक पहुंचाता है, कोई आपकी बॉडी की हीट बढ़ाता है, कोई आपके स्किन के पोर्स ब्लॉक करता है, कोई नहीं करता है। हर एक एसेंशियल ऑयल की भी अपनी अपनी विशेषताएं होती है, जैसे कि जिस चीज के लिए मैं तुलसी का तेल या बेजिल का तेल मैं यूज कर सकती हूँ, उसी रिजल्ट के लिए मैं लेमन ग्रास का ऑयल नहीं यूज कर सकती हूँ, या मैं कॉफी का ऑयल उस चीज के लिए नहीं यूज कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने उनसे सीखना शुरू कर दिया। सो डायरेक्टली इट वॉज दो आई कुडंट एनरोल टू अ कॉस्मेटिक्स कोर्स, आई स्टार्टेड लर्निंग इट थ्रू हर नोट्स एंड शी वॉज काइंड इनफ टू शेयर हर नॉलेज, सो आई बी ऑलवेज ओबलाइज्ड टू हर टू शेयर हर नॉलेज विथ। फिर क्या होता था कि मैं जो भी चीज बनाती थी, जो भी फॉर्मूलाज मैं बनाती थी, वो मैं उनसे शेयर करती थी एंड शी यूज्ड टू सजेस्ट मी द करेक्शंस कि जी अब इससे मैं सीखती हूँ। बट जो मैंने कोर्सेज किए थे वो जैसे कि हम स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को बोल सकते हैं कि हमें जो ज्ञान दिया जाता है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे कि तैसे हम नहीं यूज कर सकते हैं, तो वैसे ही मेरा भी हुआ कि कोर्स तो सीख लिया, टेक्निक तो समझ गई, लेकिन जो रिजल्ट चाहिए वो कैसे निकाले, तो वो मुझे डॉक्टर मनाली से मिला। एंड फिर हम मतलब मैं वो यही कहना चाहूंगी कि मैं दो मेरे प्रोडक्ट के ऊपर मेरे पैकेजिंग के ऊपर मैं नहीं लिख सकती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड है मतलब डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, बट हम वही
0: बिल्कुल
1: करते हैं कि मैं एक डर्मेट को मेरे प्रोडक्ट्स देती हूँ, वहां पे वो उनके क्लाइंट्स के ऊपर टेस्ट होते हैं, मेरे घर पे मेरे बच्चों पे मेरे फैमिली पे वो सारी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, और उसके बाद रिसर्च करने के बाद ही वो आप तक पहुंचते हैं।
0: जी चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे ये शुरुआत हुआ और कैसे ये साबुन बनाने से जो है एक अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ पर आपके फ्रेंड एक जिससे आपकी मुलाकात हो गई और उनके द्वारा ये सारा काम। तो अच्छा, ये जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं नेचुरल प्रोडक्ट, वो चीजें कहाँ से मिल जाती हैं,
1: सर
0: कैसे आपके पास आती?
1: बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ऑयल्स है या एसेंशियल ऑयल्स है, वो तो हमें कहीं ना कहीं से सोर्स करने पड़ते हैं, बट दे कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग जगह से आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि यहाँ पे नहीं बनती है, तो वो बट हालांकि आई डोंट इम्पोर्ट देम, माई वेंडर्स अरेंज देम फॉर मी। एंड बाकी तो सर चीज़ें अपने अगल बगल में ही मिल जाती है, जैसे कि एलोवेरा हो गया, नीम, तुलसी, ये चीज़ें जो जो हम पुश्तों से सुनते आ रहे हैं दादी माँ के नुस्खों में कि इससे वो होता है, ये खा लो तो वो होता है, तो वो सारी चीजें तो अपने इर्द गिर्द ही मिल जाती है, उसके लिए कहीं ज्यादा दूर तक जाना नहीं। एंड सेकेंडली जो हर्ब्स यूज होते हैं, आई मेक श्योर कि दे आर लैब टेस्टेड, एंड जो कॉस्मेटिक ग्रेड, उसमें भी दो चीजें होती है, एक कॉस्मेटिक ग्रेड होता है और एक मेडिसिनल ग्रेड के लिए प्रोडक्ट्स, मतलब रॉ मटेरियल्स बनते हैं। सो जो हम यूज करते हैं वो आई मेक श्योर कि वो उस लेवल के हो कि कॉस्मेटिक ग्रेड में थोड़ी अल्ट्रेशन होती है क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव बन जाए। मेडिसिनल ग्रेड के प्रोडक्ट्स जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, सो वी मेक श्योर दैट वी प्रोक्योर दोज काइंड ऑफ रॉ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया किस तरह से आप काम करते हैं उसके बारे में आपने बताया। और नेचुरल प्रोडक्ट को मंगाने के लिए मेरे ख्याल से जैसे दूसरी चीजें हैं उसे मंगाने के लिए आपको टाइम नहीं लगता क्योंकि वो प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है, लेकिन इन चीजों के लिए
1: सर
0: आपको
1: इंडिया में तो
0: शायद
1: कोई
0: बहुत
1: कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इंडिया इन चीजों से भरा पड़ा है, हमारी इग्नोरेंस है इन सारी चीजों की तरफ, बस ये एक ही बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक आपने जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं वो जैसे समझो आपकी बेटी का जो तकलीफ था उसको दूर करने के लिए आपने सोप बनाया पहले, और दूसरे जो प्रोडक्ट है उनको कैसे आपने रिसर्च कर बना क्या किया, कितने प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट्स आप बोल रहे थे तो? जी
1: हाँ, तो जो दो प्रोडक्ट्स से पहले जिससे मेरी बेटी को आराम पड़ा वो था, एक तो मिल्क एंड हनी सोप था और दूसरा फुट सोप था। तो फुट सोप क्या है, बाथ सॉल्ट आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा, सबको पता होगा। तो बाथ सॉल्ट भी क्या है कि अपना ये भी पुराना दादी माँ का नुस्खा ही है कि गर्म पानी में नमक डाल के उसे सेक कर लो तो आपको पैर में दर्द कम हो जाएगा, पैर की सूजन कम हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गोइंग फर्दर जो ये वो है जो अपना जाड़ा नमक जो है, समुंदर वाला नमक, सी
0: हाँ
1: सॉल्ट जिसे हम। सो
0: जी
1: गोइंग
0: जी जी
1: फर्दर सॉल्ट में भी काफी सारी चीजें हैं। इप्सम सॉल्ट करके एक आता है जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। तो मैग्नीशियम
0: जी जी
1: सल्फेट, हिमालयन सॉल्ट जो पिंक सॉल्ट है आजकल, उसका भी बहुत ज्यादा प्रमोशन चल रहा है हर तरफ। ये दो सॉल्ट्स थे, उसमें भी आलमंड ऑयल, बेजिल ऑयल और लेवेंडर ऑयल। तो तुलसी के तेल से उसके जख्म भर गए, नमक के पानी से उसका जो इन्फेक्शन था वो कम हो गया, और लेवेंडर से और बादाम के तेल से मॉइस्चराइजेशन मिल गया। तो इस तरह से वो मेरे पहले दो प्रोडक्ट्स थे। उसके बाद लोग को, मतलब जैसे जैसे लोगों को पता चलने लग गया कि मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ, तो लोगों से डिमांड आने लग गया कि आने का तेरे पास ऑयली स्किन के लिए कुछ है, तेरे पास कोई क्रीम है, तेरे पास शैम्पू है, कंडीशनर है, एन नंबर ऑफ थिंग्स पीपल स्टार्टेड
0: अच्छा
1: आस्किंग मी
0: अच्छा
1: कि तेरे पास ये है, तेरे पास वो है। मेरे पास नहीं था, इसके लिए मैंने वो सीखना शुरू कर दिया और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसको एज अ प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो माई प्रोडक्ट्स हैव ऑलवेज बीन आउट ऑफ द नीड फॉर द बायर, नॉट कि मुझे ये आता है तो मैं ये बेच रही हूँ, ऐसा नहीं था।
0: अनघा जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। जैसे जैसे लोगों का आपके पास डिमांड आता गया फिर उसके बाद आपने सोचा कि यार इसकी भी डिमांड है तो इसको भी बनाना सीखें और इसको भी बनाएं, तो लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसके अनुसार आपने प्रोडक्ट बनाए। और अभी तक कितने प्रोडक्ट हैं आपके पास, थोड़ा सा बताइए हमें।
1: सर ऐसे मतलब ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आगे भी और भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बट आज की तारीख में अगर आप मुझे पूछे कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो मेरे हाथ में आज की तारीख में 20 प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें से चार, जैसे कि मैंने बताया, चार आयुष सर्टिफाइड, दैट इज आयुर्वेदिक सर्टिफिकेशन हो चुका है, और पांच मेरे FDA के अप्रूवल के लिए इन प्रोसेस है। तो अब शायद जिन्हें पता ना हो उनके लिए कि किसी भी कंट्री में, भारत में तो है ही बट बाहर भी किसी भी कंट्री में कोई भी कॉस्मेटिक, फिर साबुन भी कॉस्मेटिक्स में ही आता है। तो ये सारी चीजें अगर आप लार्जर स्केल पे बेचना चाहते हो तो विदाउट द गवर्नमेंट अप्रूवमेंट अगर आप बेच रहे हो तो यू आर डूइंग एन इलीगल बिजनेस। तो मेरे लिए वो होममेड से हैंडमेड तक का जो जर्नी था वो थोड़ा मुश्किल था, जिसमें थोड़ा वक्त लगा। और वो चैलेंज मुझे अभी भी आता है कि जब मैं किसी से बोलती हूँ कि ये मेरा दिस इज माई हैंडमेड प्रोडक्ट, तो लोग थोड़ा सा उसको
0: सोचते हैं
1: हाँ कि
0: इग्नोर।
1: हाँ अच्छा मतलब होममेड है। सो होममेड तो खाना भी होममेड ही होता है अपना, बट होममेड खाने को ही ज्यादा प्रायोरिटी या ज्यादा हेल्दी हम मानते हैं। तो एक थोड़ा सा वो जो नीचे अंडर एस्टिमेट करते हैं
0: ब्रांडेड
1: लोग, तो हाँ मतलब ब्रांड कॉन्शियस नहीं
0: और
1: हो। हाँ
0: राइट
1: आप अच्छा ठीक है आप तो होममेड हो जी, तो वो होममेड से हैंडमेड ब्रांड की तरफ का मेरा जर्नी अभी भी चल रहा है। और दैट इज अ चैलेंज फॉर मी टू ब्रेक दैट मोशन फॉर मी एंड राइज अप। तो अभी मेरे 20 प्रोडक्ट हो गए, जिसमें से 4 मेरे आयुष सर्टिफाइड हो गए, और आगे के 5-6 प्रोडक्ट्स मेरे FDA अप्रूवल के लिए प्रोसेस में है। सो सूनर वी विल बी हैविंग 10 प्रोडक्ट्स व्हिच विल बी सर्टिफाइड, एंड अदर देन दैट ऑन बोर्ड 20 प्रोडक्ट्स है, और कम से कम 5 प्रोडक्ट्स मतलब जो सर्टिफिकेशन है उसके अलावा 5 प्रोडक्ट्स और लाइनअप में है कि हम लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अनघा एक और बात पूछना चाहूंगा, आजकल जो विशेष रूप से जैसे स्किन डिजीज होते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं जल्दी से, तो ऐसा मैंने पिछली बार एक डॉक्टर से मैंने बात किया था बॉम्बे का ही, तो उन्होंने कहा जो इचिंग है आजकल बहुत ज्यादा वो लोगों को हो रहा है और उसमें ठीक होने में बहुत टाइम लेता है। पहले क्या होता था कि किसी भी चीज को मना ऑइंटमेंट लगाते ही 2 दिन में 3 दिन में लोग ठीक हो जाते थे, लेकिन ऐसा आज नहीं है। आज देखते हैं कि एक दो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास बड़ी लंबी लाइन लगती है और उनके एक फाइल बनती है जैसे कोई कैंसर पेशेंट की फाइल बनी हो, और बड़े लंबे लंबे बड़े बड़े तगड़े जो मेडिसिन हैं वो लिए जाए, तो क्या इतना मुश्किल है और क्या उसका कुछ अल्टरनेटिव है आपके इस नेचुरल प्रोडक्ट?
1: सर मुश्किल तो है, और मुश्किल हमने ही बना के रखी है, क्योंकि देखिए स्किन के लिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीज़ें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, और हमने हर तरफ गंद मचा के रखी हुई है। हमारा डाइट ज़्यादातर बहुत मतलब आजकल आजकल की जनरेशन का ज़्यादा करके बहुत ज़्यादा जंक फूड पे डिपेंडेंट है, तो उस वजह से अंदरूनी बीमारियां हो जाती है। सेकेंडली पोल्यूशन की वजह से भी आपकी स्किन खराब हो जाती है। ये दोनों चीजें मतलब ए अपने कंट्रोल में है, बी अपने कंट्रोल में नहीं है। तीसरी चीज ये है कि जो हम डे टू डे लाइफ में हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रमाण में केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो जैसे कि मान लो अपना जो साबुन है, सीधा साधा साबुन है, उसमें कलर्स है जो आपको स्किन इरिटेशन देते हैं, उसमें परफ्यूम्स है, अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम्स है जो आपको स्किन बेने ये देते हैं। काफी सारे प्रोडक्ट्स में सल्फेट्स यूज किए जाते हैं, पैराबेंस यूज किए जाते हैं। तो सर जहाँ तक कि मेरा रिसर्च मुझे कहता है ना, जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ, तो सल्फेट्स और पैराबेंस ये वो चीजें हैं कि इन चीजों से आपको मतलब आप जब नहा के आते हो तो आपको एक रूखा सापन महसूस होता है स्किन पे, स्किन खींची खींची सी लगती है। तो ये सारी चीजें ये सल्फेट्स की वजह से होती है। सल्फेट का काम ये है कि आपके स्किन पर से ऑयल हटाना है। तो कोई भी सरफेस हो आप वो सल्फेट काम करेगा, जहाँ तेल है वो तेल को साफ करना है। तो आप उससे बर्तन भी धो लेते हो, आप उसी से कपड़े भी धो लेते हो, आप उसी से नहा भी लेते हो। और स्किन ये ऐसा अपनी बॉडी का पार्ट है जो कि पोरस है, तो वो सारी चीजें अब्जॉर्ब करते रहता है। और सल्फेट की वजह से कई लोगों को कैंसर तक जैसी बीमारियां होती है, ये रिसर्च कहता है। इवन मैं नहीं कहती, ये रिसर्च कहता है। आप भी अगर कहीं गूगल कर लो तो आपको भी पढ़ने में मिल जाएगा।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: मेरी कोशिश ये है कि ये जो सारी चीजें हैं उनको अपने रूटीन से, या मेरा सजेशन है सबको कि अपने रूटीन से आपके प्रोडक्ट में पढ़ लो कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। उसमें अगर SLS है, उसमें अगर SLES है, उसमें अगर पैराबेंस है, तो ये प्रोडक्ट्स आप जितने कम हो सके उतने कम यूज कीजिए। उससे कुछ हद तक ये जो इचिंग वाला जो कंप्लेंट्स है लोगों की वो कम हो सकती है। डाइट
0: बिल्कुल
1: तो आपको मतलब करना ही है, उसके ऊपर ध्यान देना है, वो तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू कमेंट ऑन दिस।
0: जी। एक इन्होंने मैसेज किया है मानसी जी ने, लिखते हैं वॉन्ग इन मराठी, इट्स रिकवरेबल और नॉट टोटली, वो उनका पूछने का।
1: आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट बॉन्ग जाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता है, बहुत ज्यादा वक्त लगता है। एंड आइडियली यू शुड कंसल्ट अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड आइडियली यू शुड कंसल्ट एन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दिस, क्योंकि वापस एलोपैथी विल इंजेक्ट अ लॉट ऑफ केमिकल्स, लॉट ऑफ मतलब हालांकि कुछ हद तक वो नेसेसरी है, बट वोंग के लिए आप आयुर्वेदिक उपचार करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
0: अनिका जी, काफी अच्छी बात आपने बताया। और फोंग, ये मानसी जी, आप समझ लिया होगा कि क्या करना है आपको। इसमें थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है, और एक तो आपको डाइट सिस्टम को और डर्मेटोलॉजिस्ट को दोनों को ही फॉलोअप करना पड़ेगा। दोनों का कंसल्टिंग जो है प्रॉपरली अगर आप लेते हैं तो चीजें आसानी से ठीक हो सकती है। और कोई भी चीज दुनिया में वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब हम उसको ठीक से समझे, डायग्नोस ठीक से हो जाए तो फिर काम करने में आसानी हो जाता है। डायग्नोस प्रॉपरली हो जाए किस कारण से ये चीजें बन रही हैं, तो वो कारण पता चल जाए तो निवारण आसान है। जब तक कारण नहीं पता चल रहा है तो वो चीजें जो है थोड़ी सी लंबी चलती है। तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि इन फ्यूचर बहुत सारे तो इतने सारे प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है अलग अलग बनाने में, तो क्या बाय ऑर्डर आप उसको बनाते हैं या बना के रखते हैं?
1: सर कुछ चीज़ें हैं जो बना के रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कोल्ड प्रोसेस्ड सोप जो हम बनाते हैं उसका प्रोसेस ऐसा है कि ऑयल ले लिया, उसको मतलब बैटर उसका बन गया, मोल्ड में डाल दिया, उसके बाद 24 घंटे बाद वो मोल्ड से बाहर निकलता है। उसके बाद मुझे उसको 3 हफ्ते तक, उसको क्यूरिंग पीरियड कहते हैं, उसको 3 हफ्ते का हमें क्यूरिंग पीरियड देना पड़ता है, शेड ड्राई देना पड़ता है। तो अगर आप मुझसे कल कहेंगे कि अनंगा जी मुझे मलकनगिरी साबुन चाहिए, तो मैं कल आपको नहीं दे पाऊंगी, तो उसके लिए मुझे प्री प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है। सो कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे स्टॉक में रखनी पड़ती हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम मतलब छोटी बैच में बनाते हैं, तो मैं एट अ टाइम 1 किलो 2 किलो इतना ही बनाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो तक का
0: अच्छा,
1: बैच बनाती हूँ। तो जैसे वो खत्म हो जाता है हम फ्रेश बनाते हैं, तो ऐसे नहीं है कि एक बार 50 किलो 100 किलो 1000 किलो बना के रख दिया और फिर 2 साल
0: बना
1: में
0: के
1: कभी
0: रखा हो
1: बेच
0: फिर।
1: दिया, वो नहीं होता है।
0: अच्छा, इसमें एक मेडिसिन या फिर सोप जो भी बनाते हैं उसमें एक्सपायरी डेट वगैरह आती है या क्रीम में आती है, तो क्या आयुर्वेद जो आप बनाते हैं उसमें भी आप लिखते हैं या नहीं लिखते,
1: नहीं लिखना
0: या
1: पड़ता
0: फिर
1: है
0: आप?
1: सर, लीगली लिखना ही
0: अच्छा,
1: पड़ता है।
0: हाँ, तो बेसिकली कितना दिन चलता है आपका बना हुआ प्रोडक्ट जो है, कितना टाइम तक चलता है?
1: सर कोल्ड प्रोसेस सोप्स जो है वो, ये जो थॉट है ये इंडिया में अभी थोड़ा नया है ये ट्रेंड, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जो वो बनता है तो फॉरेन कंट्रीज में सर क्यूरिंग पीरियड 1 साल का देते हैं वो लोग। जैसे कि 100% ऑलिव ऑयल का अगर अगर सोप है तो उसको 1 साल तक वो क्यूर करते हैं, उसके बाद वो यूज करने के लिए निकालते हैं। बट हाँ, हम हमारे में इतने पेशेंस नहीं है, हमारी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि हमें सब जल्दी चाहिए और हमें सब इंस्टेंट चाहिए, तो उस वजह से मुझे 3 हफ्तों से ज़्यादा मैं उसको क्यूरिंग पीरियड नहीं दे पाती हूँ, उसके बाद वो सेल के लिए आता है। तो सोप्स के लिए बेसिकली देर इज नो एक्सपायरी टेक्निकली, लेकिन जैसे कि हम इसमें सारी चीज़ें नेचुरल यूज करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका कलर चेंज होना, उसकी खुशबू जो है वो कम हो जाना, ऐसी चीज़ें होती है। सो फॉर दैट रीजन वी कीप द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स, एंड यही चीज़ें बाकी सारे प्रोडक्ट्स को भी अप्लाई होती है कि 18 महीने तक तो प्रोडक्ट को कुछ नहीं होता है फॉर श्योर, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा डिटेरियरेट हो जाता है, मतलब जैसे कि खुशबू है, उसका रंग है, ये चीजें बदलना शुरू हो जाता है। सो फॉर दैट रीजन वी कीप द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स फॉर एवरी प्रोडक्ट।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जो आपके प्रोडक्ट हैं वो ज्यादातर कौन से मतलब स्किन डिजीज को ठीक करते हैं, स्पेशली जो जिस पे आपने काफी रिसर्च किया हो कि आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये चीज के लिए
1: मेरे
0: ये चीज?
1: प्रोडक्ट जी, तो मेरे प्रोडक्ट्स वैसे तो हर एक ने यूज़ करना चाहिए, भले उसको स्किन डिसीज है या नहीं है, स्किन डिसीज होने तक इंतजार मत कीजिए, स्विच योर सोप्स एंड योर प्रोडक्ट्स एज अर्ली एज यू कैन। बट जिन्हें सोराइसिस है, जिन्हें सनबर्न जैसे इश्यूज है, जिन्हें स्किन इचिंग का इशू है, जिन्हें ड्राई स्किन का इशू है, इन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा परिणामकारक और यूजफुल है।
0: तो आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि नेचुरल आप अच्छी चीजें बना रहे हैं, तो जो अवेलेबल केमिकलाइज चीजें हैं उसको रिप्लेस अगर करते हैं तो आपका स्किन ब्यूटी भी बनी रहती है और आप केमिकल का जो साइड इफेक्ट्स होगा उससे भी बचे रहते हैं, ये आपका
1: कुछ कहना
0: कहना?
1: चाहूंगी सर यहाँ पे
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी, ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कहीं पर भी कि आप सलून में मत जाइए या पार्लर में मत जाइए, आप फेशियल मत कीजिए, प्लीज कीजिए, जरूर कीजिए, वो आज के जमाने में वो इट्स अ नीड ऑफ आर और इट्स अ नीड ऑफ टाइम, लेकिन आप फेशियल करके आए हैं समझिए, तो फेशियल को अगर लंबे समय तक आपको उसका रिजल्ट चाहिए, उसका इफेक्ट चाहिए, तो फेशियल के बाद आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। क्योंकि अगर आप केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो जो गुडनेस आपके स्किन में आपके डॉक्टर ने हो या आपके ब्यूटिशियन ने डाली है, वो आप जल्दी से जल्दी आपकी स्किन से निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे, वो रहेगा और बहुत ज्यादा देर तक रहेगा। इसके लिए मतलब ऑल फॉर एवरीथिंग, मतलब भले स्किन प्रोडक्ट्स है, हेयर केयर प्रोडक्ट्स है, प्लीज स्विच टू नेचुरल स्किन केयर बिकॉज इट विल कीप यू हेल्दी एंड ब्यूटिफुल ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
0: जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, और स्विच ऑफ करना अच्छा है क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो अच्छा है। और अर्चना जी, मैं चाहूँगा कि अनघा जी से कैसी आपकी मुलाकात हुई, थोड़ी सी बातें हम जो शेयर कीजिए।
2: रमेश जी हमारे शो पर ऑलरेडी जो एक गाना गा चुकी है बिंदिया राणे, उन्होंने मुझे अनघा जी से कनेक्ट करवाया। एंड
0: अच्छा
2: थैंक यू
0: अच्छा
2: बिंदिया फॉर कनेक्टिंग मी विद अनघा। एंड अनघा, जो आपकी अभी बातें सुनी, मदर केयर टू मदर नेचर विद मदर नेचर, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एंड लॉट ऑफ इंसाइट्स और करेजियस जर्नी बाय अ मदर, हैट्स ऑफ टू यू। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने आपके प्रोडक्ट का नाम क्या दिया और क्यों दिया?
1: नाम के पीछे दो चीजें थी। जब मैं ये कंसेप्चुलाइज कर रही थी, मतलब मैंने शुरू तो कर दिया था 2017 2018 से ही मैंने ये बनाना शुरू कर दिया था, बट जब ये स्केल अप हो रहा था, जबकि मुझे इसको एज अ ब्रांड या एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करने का टाइम था, तब मैंने अपनी तो आदत है कि पहले सबसे पहले दोस्तों से सब हर बात दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचती, तो मैंने मेरी दो सहेलियों को बताया कि यार मैं ऐसा ऐसा सोच रही हूँ, क्या ये किया जा सकता है? एंड दे पुश्ड मी कि प्लीज डू दिस एंड वी विल सपोर्ट यू बाय ऑल आर मीन्स एंड व्हाट एवर वी कैन डू फॉर यू। तो वो हम तीन जन थे, अनघा, सोनिया और आर्या। तो हम तीनों के नाम का एक एक अक्षर उठा करके अनेरिया ये शब्द बना। लेकिन अगर हम अनेरिया का मतलब जानने की कोशिश करें तो अनेरिया का मतलब है फॉरेन लैंग्वेजेस में फ्लावर गर्ल या मैजिकल एंड गॉड्स गिफ्ट। ये अर्थ निकलते हैं अनेरिया इस शब्द के। सो दैट्स व्हाट अनेरिया मींस एंड दैट्स व्हाट वी डिलीवर। वेरी नाइस।
0: थैंक यू अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछा। और अनेका, मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक मैसेज सभी दर्शक मित्रों को क्या बताना चाहेंगे आप, क्योंकि काफी टाइम से आप इन चीजों को कर रहे हैं तो नेचुरली लोगों की हैबिट्स का आपको पता ही होगा और लोग आपको फोन करके बताते भी होंगे, तो आप थोड़ा बहुत तो उनका अजम्पशन हो गया होगा आपको कि लोगों के पास मोस्टली क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो आप जरूर एक छोटा सा मैसेज इन प्रोडक्ट को लेकर क्या बता।
1: प्रोडक्ट्स को लेके तो सर जितना आप कुदरत से जुड़ सकते हैं उतना आप जुड़ेंगे तो अच्छा है। ये एक बेसिक, एकदम बेसिक मैसेज है मेरी तरफ से। लेकिन थोड़ा सा आगे चल के मैं कहीं ना कहीं, मतलब बीइंग एन वुमन, मुझे जब मैं बिजनेस, मतलब एक वर्किंग प्रोफेशनल से जब बिजनेस वुमन की तरफ मेरा जर्नी शुरू हुआ, तो जो चैलेंजेस हमें आते हैं, तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस शो कि प्लीज सपोर्ट वुमन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द सोसाइटी। नॉट जस्ट बिकॉज कि वो दे कैन अर्न अ गुड मनी, बट दे कैन टेक योर कंट्री एंड योर नेशन टू अनदर लेवल। सो प्लीज सपोर्ट वुमन एंटरप्रेन्योर्स इज वन मोर थिंग दैट आई वुड टेक एन अपॉर्चुनिटी एंड रिक्वेस्ट द होल नेशन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म।
0: जी, अनघा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया कि जो फीमेल यानी महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती हैं उसको जरूर सपोर्ट करना चाहिए, और दूसरा अपने नेचुरल जो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं वो भी हम भी के लिए अच्छा रहता है, तो उसके लिए आपने कहा कि उसे जरूर यूज करना चाहिए क्योंकि उससे हमारी नेचुरल ब्यूटी बनी रहती है और हम सभी लोग।
1: बिल्कुल, इतर चीजों के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है, तो
0: बिल्कुल
1: यू कैन बी सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट फॉर योर ओन एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्किन केयर।
0: तो थैंक यू अनघा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छी बातें आ रहा है, और चाहेंगे कि आप इसी तरह नए नए चीजें बनाते जाएं, नेचुरल प्रोडक्ट, और लोगों के बीच में आपके प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हो और लोगों को आपके प्रोडक्ट से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले और फटाफट वो आपकी तरफ जुड़े रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। मंगल का थैंक यू सो मच, बहुत बहुत
1: थैंक यू,
0: शुभकामना।
1: थैंक यू एज रमेश, थैंक यू अर्चना दीदी एंड थैंक यू बिंदु, थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच, चलिए दोस्तों, आज हमने अनघा को सुना। अनघा की जो स्टोरी है उससे पता चल जाते हैं कि इस और किस तरह से उनका आना होगा। उनके बच्चे के लिए वो इन सारी चीजों को सीखना शुरू कर दिया, रिसर्च किया। उसके बाद उनको लगा कि बच्चे के लिए मैं कुछ बनाऊँ, तो फिर उन्होंने सीखना शुरू किया। सीखते सीखते उन्होंने इन चीजों को बनाया और उनका अच्छा रिजल्ट उनके बच्चे को मिला। फिर लोगों ने उनको सामने से पूछा कि आप ये भी करते हो क्या, ये भी बनाते हो? तब फिर उनको लगा कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए भी करूँ। तो फिर उन्होंने लोगों के डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ऐसा है कि भाई आपको ऐसे क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले ही बताना पड़ेगा इनको, तब जाके ये बना के फिर आपको दे देगी। तो नेचुरली ये चीजें जो है घर में बनाती है, होममेड है, तो हाई क्वालिटी वाला मिल जाएगा और आपको अच्छा चीज है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप ऐसे जो
1: गणेश जी, क्या
0: होममेड।
1: एक एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे सकती हूँ?
0: जी जी हाँ जी बताइए।
1: जी, तो अगर कोई भी जो इस कार्यक्रम को सुन रहा है वो अगर हमारे प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है, तो हम आज की तारीख में अमेजोन पर अवेलेबल है। हम LBB क्रॉप शॉप ऐसे कुछ छोटे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अवेलेबल है। हमारी खुद की वेबसाइट है www.aneria.com, यहाँ पर भी आपको हमारे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं। इसके अलावा मैं मेरा नंबर बता रही हूँ, 9619188854। एक बार दोहराती हूँ, 9619188854। आप मुझे इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं अगर कोई भी मुझसे जुड़ना चाहता है।
0: तो दोस्तों आपका नंबर भी मिल गया, आप उनसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। आपको क्या तकलीफ है वो बताने से उस टाइप के प्रोडक्ट आपको जो है सजेस्ट किए जाएंगे और आप फिर उस प्रोडक्ट को ले सकें। तो चलिए फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अच्छी चीजें माना नेचुरल प्रोडक्ट जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ही आपका जो है बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा, आप साइड इफेक्ट से बचे रहेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय।

0: की हुई है और आप अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं, आप सभी के साथ हिलमिल करके प्यार से रहते हैं और बहुत ही आपका व्यवहार सौम्य व्यवहार है। तो और भी बहुत सारी विशेषताएं जो आपके द्वारा ही जानेंगे, तो ऐसी नारी शक्ति से आप सभी को मिलवाना चाहूंगी। देखिए, वंदे मातरम स्पेशल नारी शक्ति पर आधारित है कि महिलाओं के अंदर कोई ना कोई ऐसी विशेषता होती है जो ऐसे तो पता ही नहीं चलता है कि इनके अंदर क्या विशेषता है, लेकिन रेडियो मधुबन के जरिए आप समझ सकते हैं कि महिलाओं में क्या नहीं है। तो आइए हम आपको मिलवाएंगे। सोम्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: थैंक यू।
0: जी सोम्या जी, आपकी स्माइल बता रही है कि आपको अच्छा लग रहा है यहाँ आकर।
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पधारे हैं। आज आपके अनुभव हम सुनेंगे। तो आपकी उम्र वैसे 55 वर्ष की है, 55वां अभी लगा है,
1: हाँ जी
0: तो चलिए 55 में बचपन को याद कर लेते
1: जी
0: हैं।
1: जरूर जरूर करेंगे।
0: जी
1: हम तो बचपन से ही बेंगलोर से ही पैदा है, कर्नाटक
0: जी
1: बेंगलोर से ही है हम लोग। हम यहाँ अभी 5 साल हो गए, मगर बचपन में हम अध्यात्म में और धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि थी। हम जब से पैदा हो गए दादी के साथ ही हम रहते थे। दादी पूजा पाठ में बहुत चलती थी।
0: अच्छा, तो दादी जी की वजह से आपको भी ऐसे ईश्वर में रुचि होने लगी,
1: हाँ जी
0: तो आप बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति के
1: हाँ
0: रहे।
1: जी
0: तो दादी जी क्या करते थे, मंदिर वंदिर जाते थे या घर में पूजा पाठ करते थे?
1: दादी जी मंदिर भी जाते थे, मंदिर भी बनवाए थे। हम बचपन से ही दादी के साथ ही पले बड़े हैं। अब हमारे घर धार्मिक प्रवृत्ति है और बड़ा घराना था वहाँ हमारा, वहाँ बेंगलोर में। तो आने जाने वाले भी बहुत सारे थे, स्वामी लोग भी बहुत सारे आते थे, साधु संत आते थे, ऋषि मुनियों का आना जाना रहता था। मेरा दादी सबको एक आश्रिता दाता जैसे वो रहती थी। इसके उनके बाद में मेरे पिताजी और मम्मी दोनों ऐसे उसी रास्ते में चल पड़े थे।
0: अच्छा, ये बताइए आपके परिवार में कितने सदस्य, संयुक्त परिवार था?
1: हाँ, जॉइंट फैमिली थी हमारी। हमारी फैमिली में वैसे तो हम 23-24 लोग तो हमेशा घर में रहते थे और आने वाले वो लोग भी रहते थे। 30 तक हमारा घर में रोज सुबह शाम खाना बनता था।
0: अच्छा, तो उसमें आपके चाचा चाची?
1: चाची, बड़ी माँ, बड़ी पापा सब थे, और जॉइंट फैमिली होने के कारण कजिन ब्रदर्स, कजिन सिस्टर्स बहुत सारे थे।
0: जी, तो कहाँ समय बीतता पता ही नहीं चलता,
1: नहीं,
0: क्योंकि इतना
1: बिल्कुल
0: बड़ा
1: नहीं,
0: परिवार है तो सभी भाई
1: बिल्कुल
0: बहन
1: नहीं।
0: साथ में हिलमिल
1: और
0: करके रहे होंगे।
1: इसका एक रिजल्ट ऐसा है हमारी जिंदगी में, सबके साथ जुल मिलकर कैसे रहना, ये भी हमको आसानी से आ गई। और सब काम करने की तरीका, साथ में मिलकर काम कैसे करें, वो एक करे हम एक दूसरे करे कैसे कर सकते हैं, वो सब हमको सीखने को मिला, बचपन से ही सीखने को मिला। आज अपनी जिंदगी में वो सब आ रहा है, वो सब काम आ रहा है।
0: जी, वो तो देखो बचपन के दिन भुला न देना, तो बचपन के जो हमने प्राप्ति की है ना वो लाइफ टाइम चलती है।
1: हाँ,
0: तो बहुत ही सुंदर कि आपके दादी जी, चाचा चाची, उनके बच्चे, 30 लोगों का परिवार था।
1: 30 लोगों का परिवार था।
0: आप रियल भाई बहन कितने थे?
1: हम रियल भाई बहन 4 लोग हैं, 2 बहनें और 2 भाई। मैं सबसे ऊपर, मतलब बड़ी मैं ही हूँ, मेरे पीछे सब लोग हैं, तो जिम्मेवारी भी मेरी ज्यादा ही थी। और
0: जी
1: मम्मी पापा को देखना, वो सब वो जो कहते वो सब काम करना, और पूजा पाठ में उनका समय देना, उसको रेडी करके जो पूजा करते थे वो रेडी करके देना, वो सब हमारी जिम्मेवारी थी।
0: घर में सबसे बड़ी बेटी आप ही थे,
1: हाँ जी,
0: बाकी चाचा के सबके
1: वो
0: छोटे
1: सब
0: भाई।
1: छोटे ही थे, होती
0: बड़ों के ऊपर तो जिम्मेवारी होती है।
1: ही है।
0: तो आपके दादाजी भी थे?
1: दादाजी नहीं थे,
0: अच्छा, आपके दादी जी बहुत धार्मिक
1: दादी जी
0: प्रवृत्ति के थे,
1: हाँ
0: तो
1: बहुत धार्मिक।
0: सभी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते
1: हाँ,
0: थे।
1: सभी, अब
0: जी
1: सभी हमारी एरिया में वो तो बड़ी दादी नाम के, बड़ी नाम से वो पुकारते थे वो लोग। हमारे वहाँ श्रृंगेरी शारदा पीठ है, शंकराचार्य से जो स्थापित किया हुआ है, वहाँ से जो स्वामी जी आते थे वो हमारे घर में आकर रुकते थे। उनका प्रवचन चलता था 7 दिन 8 दिन, ऐसा भागवत वगैरह सब। और उसके बाद में हमारा साउथ इंडिया के जो कंची हम अभी जानते हैं कंची कामाक्षी नाम से, वो भी शंकराचार्य पीठ से ही हो गया, शंकराचार्य के हाथों से ही वो भी स्थापित हो गया।
0: अच्छा, तो ये सत्संग आपके घर में होते या आप लोग अरेंज करते
1: हैं? नहीं, अपने घर में, अपना तो बड़ा वाड़े जैसा घर था।
0: अच्छा, बहुत बड़ा?
1: हाँ,
0: था।
1: बहुत बड़ा था, दो हॉल थे, ऐसे 50 के लोग आराम से बैठ सकते थे हम।

0: ऊपर और नीचे ऐसे आंगन भी बड़ा था हमारा, इसीलिए हमारे घर में ही ज्यादातर चलते थे और मंदिरों में भी चलते थे, हम उधर भी चले जाते थे।
1: जी, बिल्कुल। तो वो तो कहते हैं ना कि जब बड़े इस तरह अध्यात्म के रंग में रंगे हुए तो छोटों पर तो प्रभाव उसका पड़ना ही है। तो आप भी ऐसे
0: हाँ, और हर महीना हमारे घर में एक तो यज्ञ या होम हवन चलता ही था हर महीना।
1: जी,
0: हाँ,
1: तो साधु संतों का तो आना जाना
0: आना
1: चालू
0: जाना।
1: था। तो आप जैसे बच्चे लोग हैं और साधु संतों को तो बहुत ही स्वच्छता और वो उनका ध्यान रखना पड़ता था,
0: पड़ता
1: तो
0: है।
1: भाई इतना बड़ा परिवार की वजह से, बच्चों की वजह से कभी डिस्टर्ब तो नहीं हुआ कि
0: नहीं
1: कोई साधु
0: नहीं
1: संत थोड़ा भड़क गए
0: नहीं
1: हो?
0: नहीं संस्कार ही ऐसे हो गए थे ना हमारे, इसलिए ऐसे ही हो गए थे हम। उनको जैसे चाहिए इसलिए हमारे घर को सिलेक्ट करते थे वो सब लोग।
1: और उनके रहने के लिए भी एक्स्ट्रा रूम
0: अलग
1: थे?
0: से कमरा उनका आने जाने के लिए। उनके साथ वो भी शिष्य लोग भी आते थे, उनके चेला लोग भी आते थे, उनके
1: जी,
0: लिए भी रहना। और अपना तो क्या है, वो बड़े जमींदारी ऐसा था ना, सर्वेंट्स तो हमेशा मैं अपने घर में रहते ही थे, दिन रात चलता था वो सब, तो चलता था। मेरे पापा और बड़े पापा दोनों मिलकर करते थे वो सब।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: जी। तो आपके क्या बिजनेस था या सर्विस थी
0: हमारी
1: पापा के?
0: बिजनेस थी, नहीं बिजनेस थी पापा की, अपना जमींदारी थे तो जमीन था, वो जमीन में वो पैदा उगा करते थे चावल वगैरह वो सब। और अपना बिजनेस भी था, पिताजी का साड़ी का, दादाजी का ये था, साड़ी का दुकान था, होलसेल दुकान था,
1: अच्छा,
0: तो वो सब करते थे। हम भी जाते थे साथ में, वो भी सिखाते थे हमको। लड़कियां पीछे नहीं हटना है, सब चीजें सीखे लड़कियां, आगे कौन सी वक्त आता नहीं पता नहीं है, निडर होके आगे चलने के लिए क्या चाहिए वो सब सिखा दिए मेरे पापा।
1: जी, हर प्रकार का कार्य आपने किया होगा।
0: हाँ, जैसे भाई लोग करते हैं, भाई और बहन अलग से देखा ही नहीं अपने घर में, हर किसी को नहीं देखा है, ये भाई बहनों का काम है, ये भाइयों का काम है, ये करना चाहिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। पिताजी अपने साथ हम लोगों को, लड़कियों को मतलब अपनी बेटियों को साथ में लेके जाते थे, सुनो परखो करो ये सब निर्णय ले लो कि तुम करती तो क्या होता, तुम होती तो क्या करती, वो सब सोचो, वो सिखा दिए, बचपन से ही सिखाते आए पिताजी हमको।
1: जी,
0: पाला बहुत अच्छी मिली है बचपन से हमें।
1: जी, बिल्कुल। तो इस तरह आप भी जैसे बिजनेस में भी माहिर हो गए
0: हाँ,
1: और अध्यात्म
0: अपना
1: में तो थे
0: आगे
1: ही।
0: होकर अपना खुद का बिजनेस भी मैंने खड़ा कर दिया था।
1: अच्छा, बताएंगे क्या
0: हाँ,
1: बिजनेस खड़ा किया?
0: मैंने साड़ी का ही बिजनेस खड़ा कर दिया था। शादी हो गई, शादी होने के बाद ये हमारे हस्बैंड वो बैंक मैनेजर थे, तो बैंक मैनेजर माना उसका क्या होता है, काम सुबह से रात तक होती है, तो अकेले घर में बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी। और हमारे अपने घर में मायके में तो इतने सारे लोगों के साथ रहकर ये अकेला टाइम बिताना बहुत मुश्किल लग रहा था मेरे को,
1: जी
0: तो मैंने भी साड़ी का बिजनेस शुरू कर दिया। पिताजी ने थोड़े बहुत मुझे अपने दुकान की साड़ी दिए थे, मैंने वहाँ से शुरू कर दिया। नाम के 5,000 से, 5,000 रुपये की माल लेके आई थी मैं बस, तब से लेकर 14-15 लाख तक अपने बिजनेस को बढ़ाया। घर बैठे ही मैंने बिजनेस भी करती थी और
1: क्या
0: आध्यात्म
1: बात
0: के
1: है,
0: रुचि रखती थी, आध्यात्म में भी यहाँ भी टाइम देती थी और अपने बिजनेस को भी बढ़ाते चली थी मैं।
1: क्या बात है। आपकी शादी की बात तो हम जरूर करेंगे, अभी
0: हाँ
1: आपके
0: जी
1: बचपन की बातें चल रही
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: तो चलिए हम यहाँ पर एक गीत सुन करके पुनः लौटेंगे, आपके अनुभव जरूर सुनेंगे,
0: जी
1: लेकिन सुन लेते एक गीत। तो
0: जी
1: कहीं भी जाइएगा नहीं मेरे प्यारे श्रोता बंधु, सौम्या जी के अनुभव बहुत सारे बाकी है और आप देख रहे हैं कितने सुंदर अनुभव है। तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, पहले सुनेंगे गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नारी है तो सृष्टि है, नारी से संसार। नारी है तो सृष्टि है, नारी से संसार। उसके हौसले के आगे फीका हर वार। ममता भी है, शक्ति भी है, साहस की पहचान। नारी के सम्मान से बढ़ता देश का मान, नारी के सम्मान से बढ़ता देश का मान। तो ऐसे ही नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सौम्या जी हमारे साथ बने हुए हैं। सौम्या जी के बचपन के अनुभव हमने सुने हैं कि किस तरह आप बचपन से ही अध्यात्म में गहरी रुचि रखते थे। तो आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। सौम्या जी, पुनः आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
2: थैंक यू।
1: तो आप अपने बचपन की बातें बता रहे थे। हाँ, आप बता रहे थे कि देखिए आप पढ़ाई भी करते थे, अध्यात्म में आप बहुत ही गहरी रुचि रखते थे, परिवार भी पूरा धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो आप हर प्रकार की मदद करते। फिर आपने बताया कि दुकान पर भी चालू किया आपने जाना, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद जाना शुरू किया या पढ़ते
2: नहीं,
1: समय?
2: बचपन से पढ़ते समय भी हमको उस पर भी ध्यान देते थे ज्यादातर। अभी दिवाली आती है तो ग्राहक लोग ज्यादा रहते हैं, कस्टमर लोग, तो सर्वेंट्स कितने भी होते हैं तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए भी चाहिए। और गल्ला जो हम बोलते हैं पैसा लेने की बिलिंग जगह होती है, वहां पर पिटाते थे हमको। बिल्डिंग का भी हम करते थे, पैसे लेन देन करना। बिजनेस थोड़ा बड़ा था तो एक घंटा दो घंटा दिन में जाकर हम बैठ जाते थे दुकान में।
1: अच्छा, तो सभी का साथ में ही था, जैसे बड़े पापा?
2: हाँ, सभी का साथ में, सभी का, सब मिलकर। यहाँ पर अपना राइस मिल था, जमींदारी थी और दुकान था, तीन भाई। अच्छा। हाँ, बड़े पापा और चाचा और अपना पिताजी का, सबका वही था।
1: तीनों भाई
2: साथ में थे।
1: जी जी जी। जैसे आप बता रहे थे कि संतों का आना जाना शुरू रहता था, तो आपने गुरु किया होगा उस समय?
2: हाँ, उस टाइम गुरु किए, मगर मन में एक अजीब सी एक प्यास थी, मतलब और कुछ हमें चाहिए। जो मैं उनसे प्रश्न पूछती थी, प्रश्न से उनको उलझाती थी, वो ऐसा कैसे करते हैं, ये पूजा कैसा क्यों करना है, ये क्यों करने से क्या फायदा होता है, ये देवी ऐसे करने से हमको प्राप्ति, इससे वर मिलता है क्या, ऐसे मैं उसे जिज्ञासु होकर मैं उनसे प्रश्न पूछती थी।
1: तो आपके दादी जी डांटते नहीं थे कि क्या पूछ रही है? तो
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बड़े पापा डांटते थे, क्योंकि दादी तो स्कोप देती थी, कितना अपना बुद्धि को बढ़ाना चाहती हो बढ़ा दो, अपना प्रश्न को उनसे निवारण कर लो तो तब भी तुमको तसल्ली मिलती है। और अपने तो भजन वो सब गाते थे, भजन में भी अपने दादी के साथ बैठकर ही हम गाते रहते थे। वो प्रश्न आता था उसमें भजन गाने से भी, अब भज गोविंदम ये सब गाते हो, गोविंद का नाम इतना क्यों है, ये ऐसा क्यों है, कृष्ण को यहाँ आप वृंदावन में क्यों लाए, वो तो महाराजा होने वाला था, राजा होने वाला था, ऐसा प्रश्न तो मन में आता था। दादी को भी बोलते थे, पूछते थे, और अपने गुरु लोगों से भी मैं पूछती थी तब तो, अगर उत्तर वो क्या समझते थे, उनको क्या समझ में आता वो बताते थे, या अपनी उम्र के हिसाब से वो बता देते थे, मगर तसल्ली नहीं होती थी।
1: जी जी,
2: बिल्कुल तसल्ली नहीं होती थी। मैं अपने पापा को बोलती थी, ये जो बोल रहे हैं ना, ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आता, मुझे अपने मन के अंदर लगा रहता था कुछ और चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए, ये है नहीं, ये जो बता रहे हैं वो मेरे लिए है नहीं, कुछ और चाहिए, ऐसा मुझे होता था। और थोड़ा और आगे होने के बाद अपने घर में किराए पे एक चिन्मयानंद मिशन वाले आ गए किराए पे रहने के लिए, तो वो तो सुबह और शाम दो वक्त उपनिषदों का वो क्लास कराते थे। इतने उपनिषद थे, 8 उपनिषद थे, उप उपनिषद थे, वो सब उपनिषद का क्लास के लिए मैं सुबह और शाम दोनों उनके साथ बैठती थी, क्लास में जाती थी
1: जी।
2: कॉलेज जाते समय, स्कूल का टाइम अलग था, कॉलेज का टाइम में सुबह शाम उसको सुनना, मगर वो आत्मा के बारे में, चैतन्य के बारे में क्या बोलते थे वो सही लगता था, मगर परमात्मा के बारे में जो वो बोलते थे, अद्वैत सिद्धांत बता देते थे शंकराचार्य का वेदांत के बारे में, ये सब मुझे ना थोड़ी सी अजीब सी लगती थी। घर में तो धार्मिक प्रवृत्ति रहते हुए भी मुझे वो अब मानने के लिए मैं रेडी नहीं थी। ये कुछ दूसरा है, ये कुछ और बोल रहे, जो चीज़ वो दूसरा है वो अपने हाथ में नहीं था, देखने के लिए भी नहीं, सुनने के लिए भी नहीं और समझने के लिए भी नहीं है। वो क्या है, वो क्या है, अंदर अंदर ये जिज्ञासा होता बहुत सारा था मेरा।
1: जी जी जी, लेकिन आपके प्रश्नों का समाधान फिर आपको मिला कि नहीं मिला?
2: मिला ना, आगे जिंदगी में जरूर मिला।
1: अच्छा अच्छा, उस समय नहीं मिला?
2: उस समय नहीं मिला।
1: तो मैं आपको एक
2: कंची श्री से मैं एक बार प्रश्न पूछी थी भगवान के बारे में, भगवान माना क्या है, कौन है, भगवान के बारे में सही सही बताइए। मगर वो बोले थे अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, मैं 16-17 साल की थी तब, तो छोटी है और तुम ये सब, तुमको ये सब सोचना नहीं है।
1: अच्छा,
2: क्योंकि लड़कियां हैं
1: जी,
2: लड़कियों को एक पाबंदी रहती है, दिन महीने में 4 दिन का वो रहता है ना, इसलिए पाबंदी रहती है, ये सब तुम नहीं कर सकती, ऐसे बोले थे। मुझे अंदर से एक फेमिनिज्म, स्त्री शक्ति के बारे में ये अपमान कर रहे ऐसा लगा था उस टाइम लगा था। मगर उनकी बुद्धि शक्ति और उनकी नॉलेज उतनी ही थी, तो वो तो उस टाइम के वो जो बताए वो उनके लिए सही था, वो मैं गलत नहीं कहती हूँ।
1: जी जी जी, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं।
2: हाँ,
1: और हमको ऐसा लगता है कि नारी होना क्या गुनाह है क्या?
2: हाँ, ऐसा लगता था मेरे को।
1: सही है, क्या नारी भक्ति नहीं कर सकती, क्या नारी
2: कर सकती है,
1: आगे नहीं बढ़ सकती? वो सारे प्रश्न आपके अंदर घूमे होंगे।
2: वो तो मैं हमेशा, मेरे पिताजी बोलते थे वीर शक्तियाँ, उनके बारे में बताते थे, और गार्गी और ये सब जो है, मुक्ता ये सब है, और मीराबाई के बारे में तुम आगे बढ़ सकते हो। पिताजी का, मम्मी और अपने दादी का बहुत स्कोप, माना बहुत स्कोप था हमको।
1: जी जी,
2: कितना आगे बढ़ा सकते हो, बढ़ सकती हो, बढ़ो, कितना आगे बढ़ सकते हो, पढ़ो, तुम्हारा है। हम तो छूट दे दिए पढ़ने के लिए, जाने के लिए, कभी फर्क नहीं किए।
1: जी जी जी जी, एक अच्छा माहौल मिला। और भाई बहने आपस में कैसे रहते थे?
2: बहुत फ्रेंडली, अभी भी है, बहुत फ्रेंडली है
1: जी। तो कभी ऐसे तू-तू में तो नहीं होता था?
2: नहीं नहीं, बड़ी होने के कारण क्या होता था, जो भी मिलता है पहले छोटों को, बाद में मेरे को।
1: अच्छा,
2: ऐसा सिस्टम था हमारे घर में, जो छोटे लोग पहले चूज करते हैं वो चुन लेते, पहले उनके अधिकार है, बाद में तुम्हारा। बड़ी माना संभाल के जाना है, उनको भी संभालना है तुमको।
1: अच्छा, तो मतलब बड़ा होना तो ऐसे हो गया बस त्याग करो शुरू से ही?
2: नहीं, ऐसा तो नहीं है, जिम्मेवारी है, एक जिम्मेवारी उठाना तब से शुरू हो गई थी।
1: तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पसंद का था लेकिन उसने ले लिया?
2: नहीं, मेरे
1: मन मार के कोई चीज आपने ली हो?
2: ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, वो वापस हमको ही देते थे बाद में। जो मुझे पसंद है वो मेरे भाई बहनों को भी पता रहता था, वो चीज छोड़कर वो दूसरा ले लेते थे।
1: जी जी जी,
2: जैसे मैं उनका ख्याल रखती हूँ वो भी ऐसे मेरे ख्याल रखते थे।
1: जी जी,
2: हाँ,
1: वो स्नेह, वो प्यार दिखाई देता है।
2: हाँ,
1: वो त्याग भी दिखाई देता है दोनों का,
2: तो वो पता चलता था, लेते तो भी वापस कर लेते थे।
1: जी जी जी, और जैसे आप कह रहे थे कि पूजा की सारी तैयारी आप करके रखते थे, मान लीजिए कभी कोई ऐसे गड़बड़ हो गई हो तो दादी जी से डांट भी खाई कभी?
2: नहीं नहीं, दादी तो कभी नहीं डांटी, ऐसे तो हमने छूटा नहीं है, मगर बड़ी मम्मी जो थी ना वो डांटती थी कभी कभी।
1: अच्छा, वो क्यों डांटते थे?
2: वो क्यों, इसलिए मैं पूजा करना पसंद नहीं करती थी, पूजा की तैयारी करती थी मैं, जो जो चाहिए वो सब पूजा की तैयारियां करती थी, तो बेल पत्र फूल वगैरह सब लाना होता है, कलरफुल करना होता है, वो देवी के हिसाब से, इस देवी के हिसाब से ये कलर का होता है, लाल कलर का होता है, शंकर के नाम से सफ़ेद फूल रहते हैं, शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र रखना चाहिए, वो सब उनके जो रीति रिवाज होता था उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई तो वो थोड़ी बहुत डांट पड़ती थी, ज्यादातर नहीं।
1: जी जी, बिल्कुल, बड़े हैं थोड़ा सा डांट भी देते हैं और बच्चे हैं तो थोड़ी गलतियां हो ही जाती है।
2: सब लोगों को क्या होता है, उस टाइम पूजा करना होता है, लड़कियों को भी पूजा करना होता था, सारी मेरी सिस्टर्स, कजिन सिस्टर्स पूजा करती थी, मैं अकेली नहीं करती थी, इसके लिए भी कभी कभी डांट पड़े हैं।
1: जी जी जी तो आपको कोई हेल्प करने वाला होता था भाई बहन या
2: हाँ,
1: फिर आप
2: करते थे, अपने सर्वेंट्स भी थे, ये छोटे भाई बहन भी करते थे।
1: जी जी जी तो भाई इतना बड़ा परिवार है, इतना साधु संतों का आना जाना लगा रहता था, तो सर्वेंट भी हर प्रकार से हेल्प करने में रहे होंगे।
2: हाँ जी,
1: तो किचन में भी हेल्प लेते थे?
2: किचन में कभी नहीं लिया।
1: जी जी
2: किचन में अलाउ नहीं था हमारा। साउथ इंडिया में एक कम्युनिटी, मतलब हम एक ब्राह्मण्स है, एक ब्राह्मण्स में दादी थी ना, वो शेर मुंडन कर, ऐसा सिस्टम था।
1: अच्छा, क्यों मुंडन कराते थे?
2: वो तो शायद दादाजी गुजर गए, माना वो ऐसे करेंगे तो पूजा पाठ के लिए आ सकते हैं।
1: अच्छा,
2: नहीं तो नहीं आ सकते।
1: अच्छा, तो सोनिया जी चलिए फिर से समय हो चला यहाँ पर एक गीत सुनने का, तो ये गीत सुनने के बाद तुरंत लौटते हैं फिर इसी विषय पर बात करने के लिए। ठीक है,
2: जरूर।
1: तो बने रहिएगा श्रोता बंधुओं कार्यक्रम वंदे मातरम में। सोमिया जी के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं और जरूर सुनेंगे, पर पहले सुनेंगे गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma
1: Kumaris. Kabhi beti bankar ghar mein khushiyan lati hai. Kabhi beti bankar ghar mein khushiyan lati hai. Kabhi maa bankar jeevan ki raah dikhati hai. हर रिश्ते को प्यार से सजाती है नारी, हर रिश्ते को प्यार से सजाती है नारी, अपने हौसलों से लिखती है नई कहानी, अपने हौसलों से लिखती है नई कहानी। तो ऐसे ही नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम वंदे मातरम आप सुन रहे हैं, और इसमें सौम्या जी हमारे साथ बने हुए हैं। सौम्या जी के काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं, आइए और भी इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। सौम्या जी, आप बता रहे थे कि आपके दादी जी सिर मुंडवा करके ही पूजा कर सकते थे, बाकी नहीं, तो ऐसा उधर रिवाज है?
2: रिवाज है, अपना सामाजिक पद्धति था तब की टाइम, तब की टाइम में, अब तो नहीं है, तब की टाइम था, वो कंपलसरी भी था, उन लोगों को कंपलसरी था। बाद में जो हो गए तो वो नहीं करवाए, मगर उन्होंने करवाए थे।
1: अच्छा, तो फिर तो वो तो रोज ऐसे मुंडवा के रखते थे बाल?
2: हाँ,
1: क्योंकि पूजा तो रोज करनी होती है,
2: रोज करनी होती है। और शालिग्राम रहता है घर में, जहाँ शालिग्राम रहता है वो तो वो पूजा करने वाले एक वैसे लोग चाहिए, सर मुंडन करने वाले, या नहीं तो भाई लोग चाहिए। हम लड़कियाँ तो कर नहीं सकते और बहनें भी कर नहीं सकते शालिग्राम का पूजा, ऐसे सिस्टम था।
1: अच्छा जी जी जी, तो दादी जी तो खुशी खुशी करवाते होंगे?
2: उनको पूजा पाठ में, अध्यात्म में, धर्म में बहुत रुचि थी।
1: जी जी जी, बढ़िया। और आप बता रहे थे कि आप दुकान भी संभालते थे, तब आप कौन सी क्लास की पढ़ाई करते थे?
2: मैं 8th 9th स्टैंडर्ड।
1: अच्छा, तब से आपने दुकान पर जाना शुरू कर दिया?
2: हाँ।
1: जी जी, और स्कूल में कैसा व्यवहार था सखियों के साथ?
2: स्कूल में तो सब मेरे फ्रेंड्स है, वैसे तो हम स्कूल में पढ़ाई में भी अच्छे ही थे, फर्स्ट रैंक आते थे हम स्कूल में भी, और टीचर्स बहुत अच्छे अपना प्यार करते थे। जैसे कि टीचर एक बात बोली तो वो मना नहीं करते थे, हम कुछ भी हो जाए मानकर उस पर चल के दिखाते थे।
1: जी जी जी,
2: हाँ, आज्ञा पालक थे
1: जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह आपकी स्टूडेंट लाइफ, और घर में भी सभी का प्यार मिला, स्टूडेंट लाइफ भी अच्छी बीती। अच्छा, और पढ़ाई के अलावा क्या आपको रुचि थी? जैसे आप बता रहे थे कि भजन भी गाते थे।
2: हाँ।
1: तो दो लाइन सुनाएंगे हमारे श्रोता बंधुओं को?
2: अभी तो बहुत दिन हो गए, वो तो याद ही नहीं है।
1: अच्छा,
2: और हम कन्नड़ लैंग्वेज में गाते थे, कन्नड़ लैंग्वेज का वो पुरंदर दास के वो सब, अभी तो वो आदत ही नहीं है, छूट गई है बहुत दिन के बाद।
1: अच्छा अच्छा, तो और आप क्या करते थे स्कूल में, जैसे गेम्स वगैरह खेलते थे?
2: गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स रहता था ना, स्पोर्ट्स में बैडमिंटन में चैंपियन थे हम।
1: अच्छा।
2: और कैरम बोर्ड में थे।
1: अच्छा।
2: इंडोर वो भी थे, और वॉलीबॉल में थे हम, वॉलीबॉल। अच्छा। अच्छे से खेलते थे।
1: तो कभी आप टूर्नामेंट में गए?
2: गए हैं ना।
1: तो आप किस में गए थे?
2: डिस्ट्रिक्ट, वो थे वही बैडमिंटन और इसका, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए थे, आगे जा नहीं सके क्योंकि टीम वर्क रहता है, टीम हार गई तो वापस आ जाते।
1: जी जी। हाँ। वो तो है बिल्कुल। तो बैडमिंटन में जाते थे?
2: हाँ, बैडमिंटन और वॉलीबॉल।
1: अच्छा, दो गेम्स में जा सकते हैं?
2: हाँ।
1: अच्छा,
2: जा सकते, कितने भी हम जा सकते हैं, नेशनल लेवल तो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटर डिस्ट्रिक्ट रहता है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये जोन रहता है।
1: जी।
2: जोनल लेवल तक हम गए थे।
1: अच्छा, और डांस वगैरह?
2: डांस वगैरह कुछ कभी नहीं की है।
1: अच्छा।
2: मगर गाना गाते थे, संगीत सीखे थे बचपन से।
1: अरे वाह।
2: हाँ, गाना गाते थे।
1: तो स्कूल में गाना भी गाते थे?
2: हाँ,
1: कन्नड़ भाषा,
2: कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा।
1: हिंदी में कभी नहीं गाया?
2: हिंदी में कभी कभी गाए थे बचपन में, वो भी अभी याद नहीं है।
1: अच्छा। चलिए, कोई बात नहीं। और कॉलेज लाइफ आपकी कैसी गई?
2: कॉलेज लाइफ तो अच्छी थी, जब सेकेंड ईयर थे तब मम्मी को एक सीरियस या बीमारी आ गई थी, तो उसकी वजह से हम घर का ध्यान ज़्यादा देने लगे तब से।
1: अच्छा।
2: हाँ, इसीलिए थोड़ा नंबर कम मिले, मगर घर पर ध्यान देना जरूरी समझा।
1: हाँ, बड़ी बेटी हो तो जिम्मेदारी घर की आ गई आपके ऊपर। भले संयुक्त परिवार है, फिर भी माँ को संभालना
2: जरूरी था, तो माँ को ज्यादा पालना देना था उस टाइम। तब से अपना लाइफ और थोड़ा अंतर्गत, मतलब क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी होने लगे। मम्मी को सीरियस हो गया, उसको बचा के ले आना हमारे लिए एक अच्छा लगा था, मुश्किल भी लगा था तब के टाइम।
1: जी जी जी, वो उस समय, आज तो भाई परिपक्व एज है, उस समय तो बच्चे ही थे ना।
2: मैं तो 18 साल की थी तब।
1: जी जी जी जी,
2: 18 years old।
1: जी जी, तो उनकी फिर तबीयत में सुधार आया,
2: बाद में सुधार आ गए।
1: अच्छा अच्छा,
2: बाद में अच्छे भी हो गए, मगर जिम्मेवारी अपनी बढ़ गई।
1: जी,
2: उनके बाद अपनी बढ़ गई, माना पूरा जिम्मेवार ले लिया रसोई का भी।
1: अच्छा, तो रसोई में तो इतने जने थे बनाने वाले, फिर भी आपको
2: बनाने वाले थे, मगर मम्मी जो बनाती थी, मम्मी का जो काम था वो करना ही था हम लोगों को।
1: अच्छा, हाँ, पेशेंट के हिसाब से खाना बना के देना, उनके केयर करना,
2: वो सब था ना।
1: जी जी जी जी, और फिर तो आप बड़े हो जो थोड़ा सा सौम्या जी इमोशनल हो गए हैं, स्वाभाविक है। चाहे माँ का तो बच्चों का बिल्कुल अजीज रिश्ता होता है, बिल्कुल ही करीब होते हैं माँ के। तो सौम्या जी, खैर,
2: उस टाइम हम चले गए थे, आपने याद दिलाया, उस टाइम पास्ट में हम चले गए थे ना।
1: जी जी जी,
2: उस टाइम क्या क्या हो गया था
1: जी,
2: सब
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसी लाइफ को अभी जी रही हूँ, जैसे,
2: हाँ, जैसे
1: याद आ गए सारी बातें। जी जी,
2: वो सब लगने लगा था।
1: फिर आपके मम्मी ठीक हो गए धीरे धीरे?
2: बिल्कुल, अभी बेंगलोर में, अभी तो नहीं है, बेंगलोर में ही है।
1: जी जी जी,
2: बेंगलोर
1: लेकिन
2: में थे।
1: हाँ, लेकिन आपकी तपस्या रंग लाई।
2: हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक हो गई जब उसके बाद
1: वापिस उन्होंने संभाल लिया सब।
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: जी जी जी, और इतने बड़े देखो घर में साधु संतों का जमावड़ा रहता था, तो उनकी भी दुआएं तो मिलती थी।
2: दिन रात एक होके करो सेवा करते थे मम्मी।
1: जी जी जी,
2: हम तो छोटे छोटे उन हाथ में काम करते थे, मगर पूरा जिम्मेवारी उन लोगों की थी ना, बड़ों की।
1: जी,
2: तो एक नहीं है तो दूसरों को उसका प्लेस लेना ही पड़ता है, उस स्थान में रहकर करना ही पड़ता है, वो प्रेशर ज्यादा होता है।
1: जी जी,
2: और हम कभी किए नहीं थे वो सब,
1: जी,
2: तो सीख गए और करने लगे।
1: वो कहते हैं ना, जिम्मेदारी चीज ही ऐसी होती है कि कुछ नहीं आता, वो सब कुछ आ जाता
2: सिखा
1: है,
2: देता है।
1: जी, समय सिखा देता है।
2: सिखा दे
1: से आपका बचपन बहुत अच्छा बीता। कहते हैं ना कि फिर भी संघर्ष तो हर एक के जीवन में रहता ही है। अच्छा सौम्या जी, फिर आपकी शादी कब हुई?
2: 1995 में शादी हो गई।
1: बीकॉम फाइनल हो गया था?
2: फाइनल तब भी हो गया था, उसी में साल में हो गया था, 1995 में शादी हो गई।
1: अच्छा, तो शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
2: शादी के बाद तो बहुत बदलाव आ गई है, क्योंकि शादी के बाद हम दूसरे शहर पे आ गए, तो 30 लोगों से हम दो हो गए।
1: अच्छा,
2: ये बहुत बड़ी बदलाव है।
1: और आपके ससुराल में कोई नहीं है? ससुराल
2: सास थी, सासू माँ थे, और इनकी बहनें भी थे, ननद वगैरह थे, उनकी भी शादी हो गई थी। हम दूसरे शहर में रहते थे, वहाँ भी नहीं, मैके में भी नहीं, ससुराल में भी नहीं।
1: अच्छा,
2: जॉब की वजह से।
1: नाम बताएंगे आपके ससुराल का, शहर का नाम?
2: ससुराल का नाम है सिरसी, बोलते हैं उसका नाम।
1: अच्छा,
2: सिरसी।
1: हाँ। और रहते कहाँ थे?
2: वो सिरसी में ही रहते थे वो लोग।
1: नहीं, आप कहाँ रहते?
2: हम कहाँ, दूसरी जगह पे रहते थे। हुबली के पास एक शहर है, छोटा सा तालुका प्लेस है, वहाँ हम लोग बैंक में, श्याम सुंदर मेरे हस्बैंड वहाँ काम करते थे, वहाँ हम लोग रहते थे।
1: जी जी जी,
2: तो 30 लोगों से, या उस वो भी 10 लोग थे ससुर के घर में, वहाँ से भी हम निकल के आ गए, तो दो के दो हो गए। तब थोड़ा बोर होता था मुझे, मगर श्याम सुंदर भाई आध्यात्म में वो भी रुचि रखते थे, उनके घर में भी ऐसे मेरी सासू माँ वो सब आध्यात्म में बहुत सारे रुचि रखते थे, उनको आसक्ति थी, तो मैंने भी थोड़ा बहुत उसको आगे बढ़ाया।
1: अच्छा,
2: बचपन का जो मेरे अंदर जो हवस था आध्यात्म का, वो उसमें मैं आगे बढ़ गया, बढ़ा दिया।
1: अच्छा, शादी के बाद आपको?
2: शादी के बाद
1: आपके सारे प्रश्न खत्म हो गए, आपको वो तोड़ मिला?
2: शादी के बाद पूरा खत्म ऐसा नहीं हो गया, मैं वैसा बिल्कुल नहीं कहती हूँ। 2-4 साल उनके बाद साधना की मैंने।
1: अच्छा,
2: उसमें साधना की जो मुझे मिला, वो साधना के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा, जो प्यास थी अंदर अंदर, जो मेरे में एक वैक्यूम रह गया था, खालीपन, वो भरता गया भरता गया भरता गया, वो मुझे एहसास होने लगा।
1: जी बिल्कुल, और जो आपके प्रश्न थे उसका जवाब मिल गया आपको?
2: हाँ, जवाब मिलते चले गए, जवाब मिलते चले गए वो तो।
1: जी जी, जी। तो चलिए सौम्या जी, फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौटते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नारी को कमजोर समझने की भूल न करना, उसके हौसलों को कभी धूल न करना। वो चाहे तो आसमान भी झुका सकती है, वो चाहे तो आसमान भी झुका सकती है, अपने जुनून से इतिहास बना सकती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सोम्या जी हमारे साथ बने हुए हैं। सोम्या जी, आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं, और आप बता रहे थे कि शादी के बाद आपके जो पहले आप धार्मिक प्रवृत्ति में थे तो बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन शादी के बाद अध्यात्म में जाने से आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया और आपके प्रश्न खत्म हो गए।
3: खत्म होने लगे,
2: होने लगे,
3: होने लगे
2: जी।
3: ऐसा था माहौल दीदी, हम बताएंगे। उस टाइम में भी लड़कियां बहुत सारे जॉब करते थे, मेरी भी जॉब लगी थी एज ए टीचर, मेरी भी जॉब लगी थी। मगर मेरे हस्बैंड जो है वो श्याम सुंदर ने वो नौकरी भी छुड़ाई मेरे से।
2: अच्छा।
3: क्योंकि वो आध्यात्म के रुचि में थे ना, मैं और वो दोनों साथ में वो सब प्रैक्टिस करते थे हम, ध्यान का वगैरह
2: जी, जी मेडिटेशन करते
3: थे। हाँ, मेडिटेशन वो सब जो करते थे, उसके दोनों का इंटरेस्ट सेम था हमारा। तो उन्होंने कहा तुम क्यों जॉब करती हो, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अपने को बच्चा पैदा करके अपने में फंसना नहीं है, अपना स्वार्थ में फंसना नहीं था, हमको दुनियादारी विश्व कल्याण करना था, दुनिया की सेवा करनी थी, दोनों का इरादा वही था। इसलिए हमने जो सोचा और निर्णय किया, खुद का बच्चा न होना नहीं है, भगवान को ही अपना बच्चा मान ले।
2: क्या बात,
3: जैसे यशोदा माता श्री कृष्ण की पालना करती थी, वैसे ही हमने भी भगवान का सेम टू सेम पालना किया। वैसे ही हमने सब कुछ की, अपने अनुभव से मैं सब कुछ करती थी, कल्पना शक्ति से मैं करती थी
2: जी।
3: और उसका रिजल्ट भी आज मैं देखती हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और संतुष्ट हूँ, क्योंकि दुनिया वाला जो सृष्टि करता है उसको ही मैं अपना बेटा मान चुकी हूँ।
2: जी जी जी।
3: तो उसी तरह अब दो हम दोनों उसी मार्ग में चल पड़े, अपना खुद का जिंदगी, अपना खुद का स्वार्थ जो है अपना साइड रखा, विश्व कल्याण की दृष्टि से अब हम आगे बढ़ने लगे।
2: तो आपके परिवार वालों ने विरोध नहीं किया?
3: पहले
2: पहले ससुराल वालों ने
3: पहले पहले विरोध किया, मैं हम दोनों मिलकर क्या किया, अपने माता पिता को और सास ससुर को सबको बिठाए, अपने घर में जो बड़े हैं सबको बिठाए, और अपनी मन की जो वो इच्छा थी वो हमने उनके सामने रखा। पहले पहले मना कर दिया, एक बच्चा होने दो, बाद में वो सब करो ये सब। वैसे एक दो घटना हो गई, बच्चे होने के बाद भी कमज़ोर थे या कुछ हो गया, वो मैं यहाँ बता नहीं सकती। इसलिए उन्होंने क्या कहा, तो अपना जिंदगी है ये भी अच्छा है, तुम अपना जिंदगी जी लो, तुमको कैसे चाहिए वैसे जी लो, ऐसे हमको आशीर्वाद देकर उन लोगों ने भेज दिया। हमने किसी का विरोध भी नहीं किया, अभी भी आज भी हम लोग साथ में रहते हैं, सब लोग साथ में हैं, वहाँ भी हम जाते हैं, बेंगलोर में भी जाते हैं, वहाँ भी रहते हैं, दो तीन महीना रहकर फिर वापस हम यहाँ आते हैं। तो यहाँ भी अपना जिंदगी अच्छी चल रही है, वहाँ भी वो जो दिल में एक बार आ गया, अपना बच्चा नहीं हो तो मैं तो माँ बन सकती हूँ, क्योंकि दुनिया सृष्टिकर्ता भगवान को भी माँ बनी, मतलब सबको माँ बन सकती हूँ
2: जी।
3: तो अपने को मैं जगदम्बा रोल समझ लेती हूँ, अपने को सबको पालन देना है
2: जी जी जी। एक में बंद के नहीं, आप पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सोम्या जी, कहाँ पूरा जीवन आपका बेंगलोर में बिता, अभी आप 5 साल से आबू तलेटी में रह रहे हैं, तो यहाँ आपको अच्छा लगता है? पूरी भाषा आपकी चेंज हो गई, माहौल चेंज हो गया, तो यहाँ कैसा लग रहा है आपको?
3: बहुत अच्छा लग रहा है, चेंज माना क्या, साउथ से नॉर्थ आना माना विरुद्ध ध्रुव जैसा होता है ना, वैसा हो जाता है ये तो। खाना पीना और वायुमंडल, यहाँ का एयर कंडीशन, पानी हवा सब बदली होती है और लोग बदले होते हैं, मगर सब में क्या रहता है, एक भगवान की नाम, और हर किसी के दिल में भगवान की ऊपर स्नेह और प्यार है, वो जो है आपस में बांधता है हम लोगों को। ये हम दोनों ने अनुभव किया। और पहली बात यह है, मैं अपना एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। 97 में पहली बार आ गए थे हम लोग, 95 के बाद ज्ञान में चलने के बाद, आध्यात्म में चलने के बाद। तो तब आए तो मुझे पहली बार देखा तो यहाँ गेट वो सब एंटर किया, देखा तो पहले मैंने कहीं देखा है, कभी देखा हुआ है, कभी सुना हुआ। तब आते ही क्या हो गया, एक गीत बजा, तब तो गीत बजा तो मैं अपनी दीदी को बोल पूछ रही थी, ये गीत आपने सेंटर पे लगाई थी क्या, ये गीत मैंने कहीं सुना है, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो ये जो सृष्टि चक्र चलता है, फिरता रहता है, वैसा एहसास मुझे तब हो गया था, ये मैं सुनी सुनी हूँ, देखा हुआ है, मैं पहले मैं रह चुकी हूँ, ये कहाँ हुआ है, ऐसे जिंदगी में कहीं हो गया होगा अपने अपनी इस जिंदगी में। कब हुआ था वो मुझे याद नहीं, वो याद आता रहता था मुझे पहली बार आए तो। बाद में हर साल आने लगे, साल में 2 बार आने लगे, 3 बार आने लगे। बाद में क्या हो गया, VRS लेके कायम अपने यहाँ रहने के लिए आ गए।
2: अच्छा।
3: तो कुछ भी नया लगा।

0: ही नहीं हम लोगों को,
1: जी जी आपको
0: जैसे
1: ऐसा लगा पहले भी आके
0: पहले
1: रहे
0: भी
1: हैं।
0: आके रहते थे अभी भी आ रहे, इसमें क्या बड़ी बात है, सब अपने हैं, अपने भाई बहन है,
1: जी
0: ऐसा
1: जी
0: फील
1: जी
0: होने लगा, आराम से रहने लगे,
1: जी जी जी कोई दिक्कत नहीं आई,
0: कुछ भी नहीं, ना
1: चलिए अच्छा
0: खाने की
1: है।
0: ना पीने की ना हवा की, कुछ भी दिक्कत
1: आप
0: नहीं,
1: रोड आपको पसंद आ गया।
0: पसंद आ गया।
1: बहुत ही सुंदर अनुभव है सोमिया जी आपके, और कार्यक्रम के अंत में जो हमारे बहनें सुन रही हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं इस बहनें सिर्फ बहनों के लिए नहीं कहती, सभी के लिए कहती हूँ, भाइयों के लिए भी और जो स्टूडेंट्स हैं सबके लिए कहती हूँ। मैं यहाँ पहले से ही आती थी, इस मार्ग में मेरे चलने से मेरे अपनों का अनेक प्रश्नों का अनेक उत्तर भी मिले, और यहाँ आने के बाद जो भगवत गीता के बारे में, भागवत के बारे में, वेदों के बारे में, उपनिषद बारे में, वो बचपन में जो पढ़ी थी, सुनी थी, कही थी, वो सब के उत्तर यहाँ मिल गए। यहाँ भगवान कहते हैं सबका सार में, शास्त्रों का सार मैं बताता हूँ, ये सच में ये सार ही है, यहाँ मैं सुनने को आ गया, पढ़ने को आ गए यहाँ, और ये एक अजीब सी शांति है यहाँ, मैं बता नहीं सकती, जैसे मीठा खाने के बाद उसकी अनुभव सुना नहीं सकते, वैसे
1: जी
0: मेरा अनुभव है। यहाँ आने के बाद यहाँ कोई नहीं है अपना, मगर सब अपने हैं, यह यहाँ की हकीकत है, ये सच है यहाँ की,
1: जी
0: ये हम लोगों ने यहाँ ये अनुभव किया है, मेरी जिंदगी का यही सच है। दुनिया भर में कहीं भी सब जगह पे दुख है, कहाँ नहीं है, सब जगह पे सब तरह की दुख है, सिर्फ हम लोगों को यह ऐसा नहीं लगता, ये युद्ध चल रहा है, ये बारिश हो रही है, धूप ज्यादा है, ऐसा नहीं, अपने मन में भी बहुत सारे दुख है, ये ऐसा क्यों किया, ये क्यों कहा, हर किसी के ऊपर भी एक आरोप लगता है सोचे तो उस आरोप, उस दुख की दुनिया, उससे हम बाहर आ गए और अपना मनस्थिति को ऐसा कर दिया, उज्ज्वल कर दिया, निर्मल कर दिया, ये ज्ञान अपना आध्यात्म जीवन ऐसा कर दिया हमको, और ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ले जा रहे हैं। मैं तो ऐसा समझती हूँ जैसे पंछी दो पंखों से उड़ता जा रहा है, ऐसे ही मैं यहाँ आकर उड़ रही हूँ
1: क्या बात
0: और
1: है,
0: ऊपर उड़ रही हूँ मैं।
1: बहुत सुंदर सोम्या जी, बहुत अच्छे अनुभव आपने किए हैं और बहुत सुंदर आपने अपने अनुभव सुनाए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आए और आपने अनुभव सुनाया इसके लिए।
0: थैंक यू, आपने बुलाए, आपको भी धन्यवाद।
1: तो श्रोता बंधु, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम सोम्या जी से। सोम्या जी, जो पूरा जीवन आप बेंगलोर में रहे, अभी आपकी 55 साल की उम्र है और अभी आप 5 साल से आबू तलेटी में रहते हैं, लेकिन आपके अनुभव बहुत ही गहरे रहे, आप अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं और यहाँ आकर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत खुश हैं, दुनिया में इतना दुख है लेकिन हम बहुत खुश हैं, हम उड़ रहे ऐसा महसूस होता है। तो सचमुच ऐसी नारी शक्ति देखिए जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए सोच लिया कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, मैं पूरे विश्व की माँ हूँ, एक और दो की नहीं। तो आप निस्वार्थ रूप से सेवा भी करते हैं, दीन दुखियों का मदद करते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी भारत देश की बेटी को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव सुनाना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आया। और आज भी कुछ गणपति जी को विसर्जन करेंगे और कुछ तो 24 तारीख तक चलेंगे। तो चलो भाई, एक के बाद फिर, और दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, त्योहार के ऊपर त्योहार तो आ ही रहे हैं, खुशी का माहौल चल ही रहा है। शुरू करते हैं उज्जैन महाकाल की नगरी की एक कहानी से। रोजाना मंदिर की साफ सफाई देखभाल करे वाले गरीब युवक का भाग्य बदला। वहाँ एक बहुत पुराना पर छोटा सा मंदिर था, चिंतामन गणेश से थोड़ा आगे एक गली के अंदर, छोटा केदारेश्वर। कहते हैं ये मंदिर वही कारीगर ने बनाया था जिसने महाकाल का गर्भगृह बनाया था, पर काहे कि गली में था तो बड़ा नहीं था ना, इसलिए यहाँ भीड़ नहीं आती थी। दिन में 10-20 लोग आते, दिया जलाते, चले जाते। ये गली में रहता था एक युवक, उसका नाम रहा प्रकाश। प्रकाश की उम्र 23 साल, अनाथ। माँ बाप बचपन में ही एक सिर एक्सीडेंट में गुजर गए थे, मामा ने पाला, पर 16 साल की उम्र में मामा ने भी कह दिया अपना देख लो। प्रकाश के पास कुछ नहीं था, न पढ़ाई ज्यादा न पैसा। वो गली में एक छोटी सी चाय की दुकान पर बर्तन धोता, 100 रुपये रोज मिलते, उसी में गुजारा। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता जिसमें एक ही फोटो थी उसके माँ बाप की, पर प्रकाश में एक अजीब आदत थी, रोज सुबह 4 बजे उठता, चाहे ठंड हो चाहे बारिश, उठकर सीधे उस छोटे केदारेश्वर मंदिर में जाता। मंदिर का कोई पुजारी नहीं रहा, जो आखिरी पुजारी थे वो 2 साल पहले मर गए रहे, तब से मंदिर गंदा पड़ा रहता, पत्ते धूल लोगों का फेंका कचरा। प्रकाश रोज जाता, अपने हाथों से पूरा मंदिर को धोता, फूल पत्ते हटाता, शिवलिंग को नहलाता, बेलपत्र लाता, दिया जलाता। कोई उसे कहता नहीं था, लेकिन कोई उसे पैसे नहीं देता था। लोग हंसते भी थे, अरे प्रकाश तू क्यों करता है, तुझे का मिलेगा, भगवान तुझे नौकरी दे देगा का। प्रकाश हंस कर कहता, पता नहीं भैया, पर यहाँ सफाई करता हूँ तो मन की सफाई भी हो जाती है, लगता है मेरे माँ बाप यही कहीं हैं। 3 साल हो गए, रोज बिना नागा एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब प्रकाश ने मंदिर साफ ना किया हो। दिवाली पर लोग बड़े मंदिरों में जाते, प्रकाश अपने छोटे केदारेश्वर में रंगोली बनाता। शिवरात्रि पर लोग महाकाल जाते, प्रकाश पूरी रात अपने छोटे मंदिर में जाकर पहरा देता। वो सावन का महीना, इसी साल सावन का महीना आया। उज्जैन में सावन का मतलब है महाकाल की सवारी, लाखों की भीड़। उही भीड़ में एक बहुत बड़े सेठ जी आए, मुंबई के रहे वाले, नाम रहा सेठ जगदीश अग्रवाल, अरबपति, हीरे के व्यापारी। पर पिछले 6 महीने से उनकी किस्मत खराब थी, उनका एक जहाज डूब गया था, करोड़ों का नुकसान, बेटे को कैंसर हो गया रहा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया रहा। किसी ने उनसे कहा उज्जैन जाओ, महाकाल को जल चढ़ाओ, शायद कृपा हो जाए। सेठ जी महाकाल आए, पर भीड़ इतनी रही कि ठीक से दर्शन भी नहीं हुए। निराश होकर वो गलियों में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक छोटा सा मंदिर देखा, साफ सुथरा, अंदर से घंटी की आवाज आ रही थी। वो अंदर गए, देखा एक गरीब सा लड़का फटी बनियान पहने शिवलिंग को ऐसे नहला रहा है जैसे अपने पिता को नहला रहा हो। पूरा मंदिर चमक रहा था अगरबत्ती की खुशबू। सेठ जी को अजीब सा सुकून मिला, महाकाल में जो सुकून नहीं मिला वो यहाँ मिल गया। उन्होंने प्रकाश से पूछा, बेटा तुम यहाँ के पुजारी हो? प्रकाश ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं सेठ जी, मैं तो बस साफ सफाई करता हूँ, पुजारी तो भोलेनाथ खुद हैं। तुम्हें कितना मिलता है यहाँ? कुछ नहीं सेठ जी, जो मिलता है वो मन को मिलता है। सेठ जी ने जेब से 500 रुपये निकाले, लो बेटा रख लो। प्रकाश ने हाथ जोड़ लिए, नहीं सेठ जी, मंदिर की सेवा का पैसा नहीं लेता, अगर देना है तो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। सेठ जी को और आश्चर्य हुआ, इस जमाने में ऐसा लड़का। उन्होंने 500 रुपये शिवलिंग पर रख दिए। फिर उन्होंने कहा, बेटा मैं बहुत परेशान हूँ,
मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, का तुम्हारे भोलेनाथ मेरी सुनेंगे?

प्रकाश ने कहा, सेठ जी मैं तो अनपढ़ हूँ, मंत्र नहीं जानता, पर एक बात जानता हूँ, जो रोज अपने दरवाजे पर आए कुत्ते को रोटी देता है वो का अपने बेटे को भूखा रखेगा। मैं 3 साल से रोज इनका दरवाजा साफ कर रहा हूँ। ये मेरे भी पिता जैसे हैं, आपके बेटे के लिए भी प्रार्थना कर दूंगा। सेठ जी की आंखें भर आई, वो चले गए। किस्मत का पहला ताला खुला। अगले दिन सेठ जी मुंबई लौट गए। 2 दिन बाद उनके बेटे की रिपोर्ट आई। डॉक्टर हैरान थे, जो कैंसर 4थी स्टेज पर था वो अचानक 2री स्टेज पर आ गया था, जैसे किसी ने रोक दिया हो। सेठ जी को तुरंत प्रकाश की बात याद आई। 1 हफ्ते बाद उनका डूबा हुआ जहाज, जिसे सबने मान लिया था कि मिल ही नहीं सकता, उसका बीमा क्लेम पास हो गया 12 करोड़ का। सेठ जी समझ गए ये उस छोटे से मंदिर के भोलेनाथ का चमत्कार है और उस गरीब लड़के की प्रार्थना का। उन्होंने तुरंत अपने मैनेजर को फोन किया, उज्जैन जाओ, उस छोटे केदारेश्वर मंदिर को ढूंढो, उस लड़के को ढूंढो। मैनेजर उज्जैन आए, मंदिर ढूंढा, प्रकाश मिल गया, वही बर्तन धो रहा था। मैनेजर ने कहा, सेठ जी ने तुम्हें मुंबई बुलाया है। प्रकाश डर गया, मैंने क्या किया? कुछ नहीं, सेठ जी तुम्हें मिलना चाहते हैं भाई। प्रकाश मुंबई गया, सेठ जी ने उसे गले लगा लिया। बेटा तूने क्या किया, मेरे बेटे की जान बच गई। प्रकाश ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया सेठ जी, सब भोलेनाथ ने किया। सेठ जी ने कहा, बेटा मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, मांग का चाहिए। प्रकाश ने कहा, सेठ जी अगर देना है तो मेरे मंदिर की छत टपकती है, उसे ठीक करा दो। सेठ जी हंस पड़े, इतना बड़ा मौका और ये लड़का छत मांग रहा है। सेठ जी ने कहा, ठीक है, मंदिर तो मैं सोने का बनवा दूंगा, पर तुझे भी कुछ लेना पड़ेगा। सेठ जी ने अपने ही ऑफिस में प्रकाश को नौकरी दे दी, 35,000 रुपये महीने की, रहने को घर दिया। प्रकाश की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सेठ जी पर मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे काम नहीं आता। सेठ जी ने कहा, बेटा मुझे तेरी डिग्री नहीं, तेरी नीयत चाहिए। जो इंसान 3 साल तक बिना पैसे के, बिना मतलब के भगवान का घर साफ कर रहा था, वो मेरे घर की, मेरे काम की सफाई भी ईमानदारी से करेगा। मुझे ऐसे ही इंसान की जरूरत थी। भाग्य कैसे बदला, यहाँ से प्रकाश का भाग्य पलटा नहीं, दौड़ा। मुंबई में वो सेठ जी के साथ रहा, काम सीखा। उसकी ईमानदारी देखकर सेठ जी ने उसे धीरे धीरे अपने हीरे के व्यापार में शामिल कर लिया। प्रकाश दिन में काम करता, रात में पढ़ाई करता। 5 साल में प्रकाश सेठ जी का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी भी प्रकाश से करने का प्रस्ताव रखा। प्रकाश ने कहा, सेठ जी मैं अनाथ हूँ, गरीब हूँ। सेठ जी ने कहा, तू अनाथ कहाँ, तेरा तो पूरा परिवार केदारेश्वर है और गरीब, तू तो सबसे अमीर है, तेरे पास भोलेनाथ है। प्रकाश की शादी सेठ जी की बेटी से हो गई। शादी के बाद प्रकाश ने पहला काम का किया, वो उज्जैन आया। उस छोटे से केदारेश्वर मंदिर को, जहाँ उसने 3 साल तक झाड़ू लगाई थी, उसे अब संगमरमर का बना दिया, सोने का कलश चढ़ाया। पर एक चीज नहीं बदली, वो खुद रोज सुबह 4 बजे उठकर अपने हाथों से मंदिर की सफाई करता, आज भी करता है। आज प्रकाश करोड़पति है, मुंबई में उसका फ्लैट है, गाड़ी है, कंपनी में हिस्सेदारी है, लोग उसे प्रकाश सेठ कहते हैं। पर जब भी कोई उससे पूछता है, प्रकाश जी आपकी सफलता का राज क्या है, तो वो कहता है, राज कोई नहीं है, मैं रोज भगवान का घर साफ करता था, भगवान ने मेरा भाग्य साफ कर दिया। हम सोचते हैं मंदिर साफ कर रहे हैं, पर सच में मंदिर हमें साफ कर रहा होता है, हमारे मन का अहंकार, हमारा लालच, हमारा डर। मैंने 3 साल तक बिना मतलब की सेवा की, दुनिया हंसती थी पर भगवान देखता था। और जब भगवान का कैमरा आप पर फोकस करता है ना, तो दुनिया का कैमरा अपने आप आपकी तरफ घूम जाता है।
इसलिए अगर भाग्य बदलना है तो किसी बड़े मंदिर में सोना मत चढ़ाओ, किसी छोटे टूटे हुए मंदिर में झाड़ू लगा दो, वहाँ कोई नहीं जाता, इसलिए वहाँ भगवान अकेले होते हैं और अकेले में की गई प्रार्थना सबसे जल्दी सुनते हैं। और आज भी उज्जैन के उस छोटे केदारेश्वर मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा है जो प्रकाश ने लगवाया है, यहाँ झाड़ू लगाने वाले को नौकरी मिलती है, और नीचे छोटे अक्षर में लिखा है भोलेनाथ की तरफ से। का सीख मिली? भगवान को बड़े बड़े पकवान नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा भाव चाहिए। जो रोज बिना फल की इच्छा के सेवा करता है, एक दिन भगवान खुद उसका सेवक बन जाता है। आशा करते हैं आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे, काहे कि ये बहुत हमको उमंग उत्साह भर रही है, तो आप सबको भी जरूर भर रही होगी। भगवान भावना का भूखा है, उसको आपके लड्डू पेड़े गुलाब जामुन नहीं ना चाहिए, उसको चाहिए सच्ची भावना। कहते भगवान भावना का भूखा है। चलिए भाई, यही बात पर एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहें मुस्कराते रहें। सुनिए गए गीत, बहन जी को उन्होंने एक गीत सुनवा दीजिए।

0: नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुईया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा मैं सबना हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरा संपर्क हुआ तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इन्हें से मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगाकर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, हंसते रहो मुस्कुराते रहो।
1: खुशियों का रिमोट। नित्या एक साधारण परिवार की लड़की रही, लेकिन उनको सजना सवरना, तस्वीरें खींचना और छोटी छोटी खुशियों को जीना बहुत पसंद रहा। एक दिन वो अपनी सहेली की मैरिज पार्टी में गई। गुलाबी रंग की साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सभी ने उसकी तारीफ की। उसने कई सेल्फियां ली और घर आकर बड़े उत्साह से अपनी सबसे सुंदर तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। तस्वीर पोस्ट करते समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उनको पूरा विश्वास रहा कि कुछ ही घंटों में सैकड़ों लाइक्स और तारीफों की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर रहा। सुबह उठते ही उसने सबसे पहले मोबाइलवा उठाया, पोस्ट खोली, सिर्फ 5 लाइक्स। उसने खुद को समझाया अभी लोग सो रहे होंगे। दोपहरिया हुई, बार बार मोबाइल देखती रही, लाइक्स मुश्किल से 10 हुए थे। कुछ लोगों ने तस्वीरें देखी जरूर थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। शाम तक उसकी मुस्कान गायब हो चुकी रही। उसे लगे लगा का मैं अब सुंदर नहीं रही, का किसी को मेरी परवाह नहीं, का मैं लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। उसने अपनी वही तस्वीर व्हाट्सएप के कई ग्रुपों में भेज दी। वहाँ भी नीले टिक तो आ गए, मगर जवाब नहीं आया। हर बार मोबाइल की स्क्रीन जलती, उसका दिल उम्मीद से धड़क उठता, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। रात को तकिए में चेहरा छिपा कर रोए लगी। तभी उसकी माँ उसके पास आई। वो प्यार से पूछा, बेटी का हुआ? नित्या फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, माँ शायद अब मैं किसी के लिए अच्छी नहीं रही, मेरी फोटो किसी को पसंद ही नहीं आई। माँ ने उसके आंसू पोछे और उसे अपने पास बिठाकर बोली, बिटिया जब तू छोटी रही ना, मिट्टी में खेलकर घर आती थी, तब तेरी मुस्कान देखकर हमारा घर खिल उठता था। तब ना कोई लाइक था ना कोई कमेंट, फिर भी तू सबसे ज़्यादा खुश रहती थी। आज तूने अपनी खुशी उन लोगों के हवाले कर दी है जिन्हें शायद तेरी पोस्ट देखने की भी फुर्सत नहीं। माँ ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, याद रख, जो लोग तुम्हारी तस्वीर पर लाइक नहीं करते, जरूरी नहीं कि वो तुमसे प्यार भी नहीं करते। कई लोग दिल से दुआ देते हैं, लेकिन शब्दों में नहीं कहते, और कुछ लोग सिर्फ स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। का उनकी चुप्पी से तुम्हारी कीमत कम हो जाती है? नित्या की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि सचमुच उसने अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे दिया था। उसने उसी पल मोबाइल बंद किया, माँ को गले लगा लिया और बोली, आज से मेरी मुस्कान किसी लाइक कमेंट या शेयर की मोहताज नहीं होगी, मैं अपनी खुशी खुद तय करूंगी। माँ ने उसके माथे को चूम लिया। उस रात नित्या ने वर्षों बाद सुकून भरी नींद सोई। ये कहानी सुनाए से का शिक्षा मिली भाइयों बहनों, आप खुद बताइए। जौन दिन हम अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथों से वापस अपने हाथ में ले लेते हैं, उसी दिन से सच्ची जिंदगी शुरू होती है। दुनिया की तालियों से ज़्यादा कीमती अपने मन की शांति होती है। दुनिया तो मतलब के अनुसार भी आपको मतलब होगा तो बहुत चढ़ा देगी, नहीं होगा तो उतार देगी। लेकिन हम दूसरों की तारीफ पे या दूसरों की बात पर काहे भरोसा करें? अपनी खुशी अपने अंदर ही खोजिए ना। जैसे जौन दिन नित्या ने अपना मोबाइलवा बंद किया और सोई तो बहुत अच्छी नींद उसको आई, यानी बाहर की तारीफ से वो कहीं ना कहीं छूट गई। अब उसके मन में जो शांति थी वो बहुत बड़ी बात थी। आज इंसान के पास सब कुछ है, वो शांति ही तो नहीं है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। दूसरों को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलना सीखिए। आपका सकारात्मक चिंतन ही आपकी सफलता का मुख्य सूत्रधार है। कदम छोटे रखो लेकिन दिशा हमेशा मंजिल की ओर रखो। शिकायत करने के लिए 100 कारण मिलेंगे, लेकिन शुक्रिया करने के लिए सिर्फ एक शांत मन ही काफ़ी है। किसका शुक्रिया? परमपिता परमात्मा जी का। जब हम दूसरों की कमियों के बजाय उनकी विशेषताओं को देखना शुरू करते हैं, तब रिश्ते मधुर और जीवन शांत बन जाते हैं। परवाह न करें, तमाशे होते रहेंगे। परवाह न करें, तमाशे होते रहेंगे उम्र भर। बस ये ख्याल रहे कि अपना किरदार बेदाग रहे। जिंदगी में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, लेकिन हम अपने आप से पूछें कि हमारे किरदार में दाग ना लगे। अपनी खराब आदतों पर विजय हासिल करने से ज़्यादा आनंद इस जीवन में और कुछ नहीं होता। जिंदगी में जब भी मौका मिले दुआएं कमाते रहो और जमा करते रहो, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर दवाएं तो कीमत देखकर खरीदी जा सकती है, लेकिन दुआएं किसी बाजार में नहीं बिकती। अपनी खुशियों की हेलो
2: दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, ओम शांति जी। एकदम ठीक है, आप कैसे हैं?
2: हम भी बहुत अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें आपसे, हमारा मित्र भी सुन रहे हैं। और बहुत अच्छी बात बताई दीदी आपने, जो महाकाल के उज्जैन की बात बताई, बिल्कुल सही बात है दीदी। हम चाहे कि सोना चांदी नहीं चढ़ाएंगे तो सही है, लेकिन हम थोड़ा सा साफ सुथरी कर दे, भगवान का मंदिर के आसपास कोई जगह पे कोई कचरा फैला है अच्छा कर दे, तो ये बहुत जरूरी है दीदी। सोना चढ़ाने सोना चलाने से भगवान खुश होते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान सोना चढ़ाने से खुश होते हैं, लेकिन हम कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं तो भी अच्छी एक सफाई होती है, तो एक अच्छा हमको आशीर्वाद भी मिल जाता है दीदी भगवान का। तो
1: भावना होनी चाहिए।
2: हाँ, भावना
1: प्रेम परमात्मा
2: की। मैं बिल्कुल आज सुबह भी मैं कैसे सत्य घटना बताऊँ दीदी, सुबह की आज की बात तो जैसे आपने बताया वैसा ही मेरे पास हुआ है
1: जी।
2: कि आज सुबह में मेरे पास एक भाई आया था और बुला बोल रहा था कि भाई मेरे बगैर जो अम्बा माँ का कपड़ा बनाना है आप आओ तो सही है। तो दीदी मैं गया मंदिर पे।
1: हाँ।
2: वो मंदिर कम से कम 1-2 साल से ऐसा मंदिर पड़ा था, कितनी धूल मिट्टी, कितनी कोई ऐसे कोई साफ सुथरे नहीं करे। मैं तो मंदिर के अंदर गया तो मैंने देखा यार ये क्या बात है, कितने दिनों से आपने मंदिर को साफ सफाई भी नहीं, इसके कपड़े इतने गंदे हैं, मूर्ति को कोई सफाई नहीं है, इतनी धूल मिट्टी है, तो आप क्या इससे साफ नहीं कर सकते? तो बोला नहीं ऐसे मंदिर पड़ा रहा है कितने सालों से ऐसा है। तो मैं गया तो मैंने थोड़ा सा साफ सुथरा कर दिया। मैंने बोला कोई नहीं, मैं अच्छा माता जी का कपड़ा बना दूंगा, बड़े अम्बे माता का
1: जी।
2: लेकिन आप जब मैंने साफ तो किया, लेकिन मैं जब शाम को आऊँ कपड़ा पहनने के लिए बना के, तो आप इसको अच्छी तरह से पानी से
1: साफ करके रखना,
2: अच्छी बना देना।
1: हाँ,
2: तो दीदी ऐसे मुझे बोलना पड़ा और इतनी धूल मिट्टी थी कि कोई बेकार भी नहीं करते थे कि मंदिर बना दिया छोड़ दिया बस वापस कोई साफ सुथरी नहीं करते थे। और मुझे बार बार बोल रहा था कितने कपड़ा का प्रसाद कितना हो देंगे, कितना लोगे। मैंने सोचा है पैसा नहीं लेना, मैं ऐसा ही काम कर दूंगा, सेवा कर दूंगा।
1: हाँ,
2: आप चिंता मत करो।
1: हाँ, हाँ,
2: क्योंकि सामने वाला दीदी ऐसे कोई पैसे वाला नहीं था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं अम्बे माँ का कपड़ा बना के आपको
1: दे दूंगा,
2: सुबह में जल्दी आपको पहना दूंगा, चिंता मत करना, मैं रात को बना दूंगा। तो कभी कभी दीदी जो मंदिर तो बनाता है लेकिन साफ सुथरी नहीं होती है, साफ सुथरी करते तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमको भी हमारे घर में कोई घर के सामने कोई कचरा पड़ा तो हमको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा,
1: नहीं
2: तो भगवान का मंदिर है।
1: अभी देखो तो, जानवर कुत्ता है वो जहाँ बैठता है ना पूंछ से पहले साफ सफाई करता है फिर हाँ, बैठता है, वो जानवर को भी इतनी अक्ल है। तो फिर हम तो इंसान है और फिर हम देवी देवताओं को जहाँ रखते हैं वो साफ सुफ ना रहे तो कैसा लगेगा।
2: तो ऐसा है दीदी, हम भगवान का कोई भी भगवान का काम हो घर का काम हो आसपास हमारे दुकान के आसपास हो कोई गंदगी हो तो हम ठीक कर देना ही चाहिए
1: जी,
2: क्योंकि साफ सफाई सबको अच्छी लगती
1: है। अच्छी लगती
2: तो साफ सुथरा होता है तो भगवान का परमात्मा का हमारे घर पे वास होता है।
1: हाँ,
2: तो ऐसा होता है कि साफ सुथरी सबको अच्छी लगती है करना दीदी। तो आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया, इसी हिसाब से आज मुझे अच्छी मेरी बात हो गई और भाई से मैं गया हुआ बहुत अच्छा मेरा भी काम हो गया, चलो मुझे एक सेवा का मौका और मिला आज
1: जी।
2: तो ऐसे सेवा का लाभ दीदी मैं हर दम नहीं भूलता हूँ, कोई काम भगवान का काम मैं तुरंत चला जाता हूँ हर एक काम में,
1: इसीलिए बाबा की दुआएं मिलते रहती हैं और आप सदा खुश भी रहते हैं, परिवार भी आपका खुश रहता है।
2: मैं पैसे की आशा बिल्कुल नहीं रखता हूँ दीदी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, बस एक सेवा का मौका मुझे मिल जाए मेरे लिए बहुत काफी है। तो बस
1: यही सबसे बड़ी
2: माइंड भी ऐसा है कि मैं पैसे की बहुत दरकार नहीं करता हूँ, बस अच्छी सेवा मुझे मिल जाए भगवान की तो पैसे बहुत कीमती है
1: जी।
2: नमस्ते हमारे सभी मित्रों को आपको आज के दिन की बहुत शुभकामनाएं,
1: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। अपनी खुशियों की तुलना दूसरों से मत करो, हर आत्मा की यात्रा समय और कहानी अलग अलग होती है। ईश्वर से जुड़ा मन परिस्थितियों में भी मुस्कराना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग चल रहा है, गलत को गलत ही रहने दो, अगर गलत को गलत साबित करने जाओगे तो खुद ही गलत साबित हो जाओगे। देखिए भाई ये कलयुग में तो ऐसा होता ही है, इसके लिए रामचंद्र कह गए सिया से, वो गाना भी है ना सुने होंगे, सब कलयुग आएगा तो कलयुग है तो बहुत कुछ कलयुग में ना होता रहता है। लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो फिर आलोचना विवेचना प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती। स्कूल की परीक्षा की डेट कुछ दिन पहले बताई जाती है, पर जिंदगी में परीक्षा कभी भी आ सकती है, इसलिए दुआओं का स्टॉक रखें। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अपने मन को बदले परिस्थितियाँ अपने आप बदलती हुई दिखाई देंगी। कभी अपनी जिंदगी को किसी जरूरतमंद की नज़र से देखना, बहुत सी शिकायतें उसी पल धन्यवाद में बदल जाएगी। कहे कि हमारे पास जो भगवान ने दिया है कई ऐसे हैं उनके पास इससे आधा भी नहीं है। शिक्षक का अर्थ है शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला, कमजोरी दूर करने वाला, अर्थात जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी हर कमजोरी दूर कर उसे शिखर यानी सफलता तक ले जाता है, वही सच्चा शिक्षक कहलाता है। चलिए भाई एक बात पे एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बताएंगे, सुनिएगा गीत का।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखे एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: किस्मत वाले हैं वो जिसकी है माँ। शहर की एक सड़क पर गरीब 10-12 साल का एक बच्चा भूख और प्यास से बेहाल घूम रहा था। फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर और पिचके हुए गाल उसकी गरीबी की कहानी कह रहे थे। वो हर घर का दरवाजे पर जाकर कहता, बाबूजी मालकिन कौन काम मिल जाएगा का, मैं घर का सारा काम कर लूँगा। कोई उसे ये कहकर भगा देता कि छोटे बच्चे को काम पर रखकर मुसीबत नहीं मोल लेनी, तो कोई उसे डांटकर दरवाजे से हटा देता। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सामने एक घर के बाहर नल लगा था, प्यास के मारे वो उठकर पानी पिए लगा। तभी घर के अंदर से एक महिला बाहर आई। बच्चा डर गया, मालकिन हम बस पानी पी रहे थे, हमने कुछ नहीं किया। महिला ने उसकी आंखों में भूख और बेबसी देखी और पूछा, तुम्हें भूख लगी है? बच्चे ने सिर झुकाकर कहा, मालकिन अगर हो सके तो खाना देने की जगह मुझे काम दे दीजिए, मैं मेहनत करूँगा। महिला को उस पर दया आ गई, उसने उसे घर के काम पर रख लिया। महिला का एक बेटा रहा जो उस बच्चे से लगभग 3 साल बड़ा था। वो अपने बेटे को हर बात के लिए समझाती, समय पर खाना खाओ, कपड़े संभाल कर रखो, किताबें पढ़ो, चीज़ें उधर उधर मत फेंको, लेकिन बेटा उसकी बातों को अक्सर अनसुना कर देता। इसके विपरीत वो गरीब बच्चा मालकिन की हर बात बिना कहे मानता। खाना खाने के बाद बर्तन साफ करता, मेज कुर्सियाँ ठीक करता और घर की हर चीज को बड़े प्यार से संभालता। एक दिन महिला के बेटे की टी शर्ट पर खाना गिर गया। माँ ने उसको कपड़े संभाल कर रखने को कहा तो गुस्से में बोला, मेरी टी शर्ट है, मैं चाहे जो करूँ आपको का। महिला की आंखें भर आई, उसने रोते हुए कहा, देख वो भी तो बच्चा है, तुमसे छोटा है, मेरी हर बात मानता है, तेरे पुराने कपड़े और जूते भी कितने संभाल कर रखता है, उसकी माँ कितनी खुश होती होगी। ये कहकर वो कमरे में चली गई। गरीब बच्चा सब सुन रहा था, उसने धीरे से कहा, भैया आपको मालकिन का दिल नहीं दुखाना चाहिए, माँ बच्चों को डांटती है तो उनकी भलाई के लिए। लड़का झिंझला कर बोला, तू मुझे ज्ञान मत दे, तेरी माँ भी तो तुझसे खुश है। ये सुनते ही गरीब बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया मैंने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं, मेरे जन्म के समय ही वो दुनिया छोड़ गई थी, बाद में पिताजी भी चल बसे। वो रोते हुए आगे बोला, मैंने दूसरों की माँ को देखा है, बच्चों को डांटते, फिर प्यार से गले लगाते। मैं भगवान से पूछता था, मेरी माँ मुझे क्यों नहीं डांटती, मुझे प्यार क्यों नहीं करती। फिर मैंने मालकिन की आंखों में वही ममता देखी। जब आप स्कूल जाते हैं तो वो आपकी तस्वीर से बातें करती है, पूछती है, मेरा बच्चा समय पर खाना काहे नहीं खाता, मेरी बात काहे नहीं मानता, आपके फेंके कपड़े भी वो खुद धोती है। मुझे कहती है, मेरे बच्चे की चीज़ें मुझे खुद संभालना अच्छा लगता है। बच्चे की आवाज़ भर्रा गई, भैया सबकी किस्मत में माँ नहीं होती, और जिनकी होती है उन्हें अक्सर उसकी कद्र नहीं होती। ये सब महिला दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका बेटा दौड़कर माँ के गले लग गया। महिला ने उसे सीने से लगा लिया और मन ही मन सोचने लगी, न जाने वो कैसी माँ थी जिसने इस मासूम को जन्म देकर इतनी जल्दी दुनिया छोड़ दी। उस दिन उसे समझ आया कि माँ की डांट भी प्रेम है, माँ की चिंता भी प्रेम है, और माँ की छोटी सी रोक टोक में भी बच्चे का पूरा भविष्य छिपा होता है। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, लेकिन शायद ईश्वर ने माँ को जरूर देखा है, क्योंकि माँ ही तो धरती पर ईश्वर का सबसे सुंदर रूप है। किस्मत वाले हैं वो जिनकी माँ है, और उससे भी ज़्यादा किस्मत वाले वो हैं जो अपनी माँ की कद्र करना जानते हैं। अगर आपकी माँ है उनकी कदर करिए। हेलो,
3: हाँ जी दीदी, नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
2: नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। कैसे
3: हैं?
2: प्रोग्राम सुन रहे हैं?
3: हाँ, आधा घंटा होने आया, मैं ट्राई कर रही थी, लग नहीं रहा था। मैं बोला पता नहीं लाइव कार्यक्रम चल रहा है या नहीं।
2: नहीं नहीं, लाइव चल रहा है।
3: हाँ, तो फिर मैंने हमारे सुरेश भाई को फोन किया।
2: जी हाँ, उनका तो फोन आया ना अभी लाइव।
3: हाँ आया, मैं सुना, इसलिए तो मेरे लगता है, मैं बोला अभी लाइव कार्यक्रम चल रहा है। और चार पांच बार फोन लगाया है, लगता नहीं है क्या मालूम। तो बोले कि करो, आप ट्राई करो, लग जाएगा।
2: जी जी।
3: आपकी बातें सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं
2: जी।
3: हमें सुरेश भाई ने देखो बताया, वो भी बहुत सेवा का काम कर रहे हैं बैठे बैठे। उनका जो नौकरी भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, दोनों साथ साथ मिल रहे हैं उन्हों को
2: जी।
3: बहुत ही अच्छा। हम भी बाबा से दुआ मांगते हैं ऐसे आगे बढ़ते रहे हमारे सुरेश भाई
2: जी। वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने अपनी माँ की बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है।
3: माँ की सेवा की है, तो देखो वो भी अभी सब परिवार सुखी है ना।
2: हाँ, वो ही दुआएं मिलती है ना।
3: हाँ,
2: बड़ों की दुआओं से
3: उनकी पत्नी भी बहुत अच्छे है
2: जी।
3: और लड़का है, बहू है, उसको भी एक लड़की है छोटी, बहुत अच्छी है छोटी,
2: पूरा परिवार अच्छा है।
3: हाँ, वो भी हमारे बाबा के सेंटर पे लेके आते है ना, इतना अच्छा बोल रही है, इतनी छोटी है, बाबा बाबा ऐसे बोल रही है, ओम शांति ये सब बोलती है। आप बहुत मीठा लगता है, इतनी अच्छी है। आप भी देखो अच्छी की बातें सुना रहे हमको, हमने पहले भी सुना है कार्यक्रम
2: जी।
3: अभी आपने पहले बताया, वो भी बहुत अच्छा
2: जी।
3: देखो बाबा कहते हैं ना, हमारा दिल साफ है ना,
2: बिल्कुल
3: हमारा दिल साफ है तो मुराद हासिल है। और सच्चे दिल पे हमारा साहिब बहुत
2: राजी रहता है, बिल्कुल। और वो राजी तो सब कुछ अपने आप होता रहता है ना।
3: हाँ, वो तो अपने आप होता ही रहता है।
2: वो किसी को भी निमित्त बना के हमारे कार्य करवाते रहता है,
3: करवा देते। देखो वो बोलते हैं कि हमारे खाली एक मंदिर में उन्होंने बना के दिया है भगवान का कपड़ा, तो उनको कितना काम आता है, बोलो देखो, है ना। सेवा का भाव है उन्होंने, तो देखो
2: बहुत
3: बहुत पगार भी मिलती है और भगवान का काम भी मिलता है, सेवा करते है।
2: नहीं, हमसे जितना बने उतना करना चाहिए सेवा।
3: हाँ, वो देखो उनको तो पहले से आदत है, सुबह उठते तो वो पक्षी के लिए जो पानी रखा होता
2: है
3: वो
2: सब रखते हैं,
3: पानी की सब भरते हैं
2: के लिए।
3: कितने साल से वो सेवा कर रहे हैं।
2: हाँ।
3: पक्षी को दाना भी डालते हैं। हमारे बाजू में एक क्षेत्रपाल मंदिर है दादा का, वहाँ भी दर्शन करने आते हैं कभी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सेवा का। भगवान ऐसे ही सबको देवे, सद्बुद्धि देवे,
2: सद्बुद्धि दे सबको ऐसी। इंसान के पास कमी नहीं है लेकिन नियत नहीं है देने की, करने की। नहीं तो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है इंसान,
3: कर सकता है इंसान। सही बात है, सही बात है। परिस्थिति तो देखो जीवन में आती रहेगी
2: लेकिन अच्छा कार्य तो हम करते ही रहे ना। वो अच्छे कार्य करने की वजह से परिस्थिति भी कब चली जाएगी, निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा।
3: पता नहीं चलेगा सही,
2: क्योंकि दुआएं मिलती है ना आप कुछ भी अच्छा करते हैं तो वो दुआएं आपके जो छोटे बड़े हिसाब किताब है उनको भी चुकतू कर देती है।
3: वो किसी को पता नहीं ना मेरी।
2: हाँ नहीं पता, पता बहुत लोगों को है लेकिन दिल नहीं है करने की।
3: हाँ और ऐसे प्रैक्टिकल में किसी को पता चल जाए ना कि इसका रिटर्न में ये सब मिलता है, प्रैक्टिकल मिलता है
2: जी,
3: तो सभी करने लग जाए। लेकिन प्रैक्टिकल में लाते नहीं ना।
2: वही वही वही।
3: हाँ प्रैक्टिकल में लाते नहीं कोई। बहुत अच्छा है। हम तो देखो ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने के बाद तो हमारे आत्मा को इतना शांति खुशी मिल रही है। हम अमृत वेला करते तो हमको जीवन में बहुत आनंद, भले कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन अमृत वेला हमारा होता ही है। मैं बोलती हूँ बाबा मेरा अमृत वेला कभी मिस नहीं हुए। हाँ मैं तो रात को सोती हूँ ना तो मैं बाबा को बोल के ही सोती हूँ, बाबा मेरा अमृत वेला कभी मिस। जिस दिन अमृत वेला थोड़ा भी मिस हो जाता है ना
2: जी,
3: हाँ 3:30 बजे के बाद 4:15 बज जाता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज थोड़ा मेरा अमृत वेला मिस हो गया है बाबा। तो मैं रोज बाबा को बोलती हूँ बाबा मेरा अमृत वेला मिस ना हो। मैं जब तक ये तन में प्राण है मेरे बाबा तो मेरा अमृत वेला कभी मिस नहीं होंगे।
2: बहुत अच्छी बात,
3: ये मैं बाबा के बताती हूँ बाबा। और मेरे दिल में सदा हमेशा सब प्यार रहे यही बोलती हूँ बाबा को।
2: चलिए
3: और सभी दुखी आत्मा है जो भी उसको बाबा आप शांति देना। मेरे द्वारा ऐसा कार्य कराना बाबा, मैं सब अच्छा करूँ, कल्याण करूँ सबका।
2: ये भी पुण्य का काम है, इतना बोलना भी समझो कि पुण्य का काम है। आज के जमाने में लोग ऐसे अच्छे विचार भी नहीं रखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। हाँ
3: ओम शांति,
2: ओम शांति। तो चलिए भाई बात पर एक गीत सुन लेते हैं, उनके बाद आपसे बताएंगे। सुनिएगा ये गीत। वैसे लग रहा है कि टाइम तो हो ही रहा है पूरा हो का आया, तो छोटी सी एक कहानी सुना देते हैं उनके बाद गीत सुन लीजिए। पुराने जमाने की बात है, एक मजबूर बिल्कुल अकेला था। कभी आवश्यकता होती तो मजदूरी कर लेता तो कभी यूं ही रह जाता। एक बार उनके पास खाने को कुछ नहीं था, वो घर से मजदूरी ढूंढने के लिए निकल पड़ा। गर्मी का मौसम था और धूप बहुत तेज थी। उनको एक व्यक्ति दिखा जिसने एक भारी संदूक उठा रखा था। उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आपको मजदूर चाहिए? उस व्यक्ति को मजदूर की आवश्यकता भी थी, इसलिए उसने मजदूर संदूक को उठाने के लिए दे दिया। संदूक को कंधे पर रखकर मजदूर चले लगा। गरीबी के कारण उसके पैरों में जूते नहीं थे। सड़क की जलन से बचने के लिए कभी कभी वो किसी पेड़ की छाया में थोड़ी देर खड़ा हो जाता था। पैर जलने से वो मन ही मन झुंझला उठा और उस व्यक्ति से बोला, ईश्वर भी कैसा अन्यायी है, हम गरीबों को जूते पहनने लायक पैसे भी नहीं दिया। मजदूर की बात सुनकर व्यक्ति खामोश रहा। दोनों थोड़ा आगे बढ़े ही थे तभी उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखा जिसके पैर नहीं थे और वो जमीन पर घिसटते हुए चल रहा था। ये देखकर वो व्यक्ति मजदूर से बोला, तुम्हारे पास तो जूते नहीं है परंतु इसके पास तो पैर ही नहीं है। जितना कष्ट तुम्हें हो रहा है उससे कहीं अधिक कष्ट इस समय इस व्यक्ति को हो रहा होगा। तुमसे भी छोटे और दुखी लोग संसार में हैं। तुम्हें जूते चाहिए तो अधिक मेहनत करो, हिम्मत हार कर ईश्वर को दोष देने की जरूरत नहीं। ईश्वर ने नगद पैसे तो आज तक किसी को भी नहीं दिए, परंतु मौके सभी को बराबर दिए हैं। उस व्यक्ति की बातों का मजदूर पर गहरा असर हुआ। वो उस दिन से अपनी कमियों को दूर कर अपनी योग्यता व मेहनत के बल पर बेहतर जीवन जीने का प्रयास करने लगा। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज़्यादा मिला है। यदि आपके पांव में जूते नहीं हैं तो अफसोस मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में कई लोगों के पास तो पांव ही नहीं हैं। देखिए भाई, बात समझ में आ गई हो तो ध्यान रखिएगा, और जहाँ कहीं अच्छा कर सकते हैं करिएगा। यही बात पर अब प्रभा पंडिताइन आपसे विदाई लेती है। अगले शनिवार फिर मिले का वादा करके नमस्कार। गीत सुन के जाइएगा।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस मनुष्य सृष्टि के आदिकाल से ही संगीत का जन्म हुआ होगा। आदिकाल अर्थात मानव समाज में हर मनुष्य अपने मन बुद्धि संस्कार रूपी तीन सूक्ष्म शक्तियों के बंधन में आ गई, तब से ही संगीत का उद्भव हुआ। प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि तपस्या द्वारा संगीत के माध्यम से ही माना मंत्रोच्चारण द्वारा अपने ईष्ट देव देवियों का आह्वान करते थे। जबकि इस आधुनिक काल में भी उषा काल से ही हम मंदिर मस्जिद में संगीत के सुर मूर्छना सुनते रहते हैं।

0: जो चल रहा है, ओम ध्वनि जो होता है
1: जी,
0: कितना सुर में उसको बैठा कर करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, महल बदल जाती है
1: जी।
0: तो हम कह सकते हैं कि आदि में भी जो वेद का शामगान, हम कह सकते हैं शामगान में भी जितने सारे मंत्र थे वो मुनि ऋषि आदि सब इतना अच्छा करके संगीत के सुर के द्वारा, सुर के धुन में बैठा कर इतना अच्छा मंत्र चरण करते थे कि सुनने का लायक है। कि सबका अलग अलग तरीका है, भगवान को बुलाने का, आह्वान करने का अलग अलग तरीका है, तो हम क्यों ना संगीत के माध्यम से करें
1: जी।
0: इसलिए अभी भी
1: वही सरल माध्यम,
0: हाँ जी, अभी वही परंपरा चल रहा है
1: जी।
0: कि आप देखो संगीत जो है, सुबह आप कोई मंदिर में जाओ तो देखोगे भजन पूजन हो रहा है, रामगान हो रहा है, शिव का स्तुति हो रहा है, या आदि आदि देवी देवता का स्तुति होता है जिस मंदिर में जो है व्यवस्था जो है, या मस्जिदों में अल्लाह को जो बुलाते हैं, या गिरजा में आप जाओ उधर में भी ऐसी आप धुन सुन सकते हो। मतलब संगीत ही एक माध्यम है जो भगवान के पास पहुंच सकते हैं हम भक्तजन
1: जी। सभी लिसनर को पता ही होगा कि जौनपुरी राग की शुरुआत तो श्यामली जी ने कर चुके हैं
0: जी,
1: आगे श्यामली जी आप इसमें क्या सिखाना चाहेंगे?
0: हाँ, पिछले एपिसोड में शायद लिसनर को जो विलंबित हम सिखा रहे थे तो उसमें स्वर लिपि दे दिया था
1: जी।
0: तो लिसनर को हर बार की तरह मैं उसको कौशन करती हूँ, सावधान करती हूँ कि अगर ये जो हमने स्वरलिपि दे देती हूँ, अगर वो बहुत ध्यान पूर्वक आकार सहयोग से करते हैं तो कभी हम जो विलंबित का बंदेश देंगे अभी वो मिस नहीं कर सकते
1: जी।
0: बहुत अच्छा से बैठा सकते हैं, क्योंकि अभी नए नए राग सीख रहे हैं, थोड़ा कठिन में जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि यह कठिन है हम नहीं कर सकते, ये कभी नहीं होता है। कि हमने भी ऐसे ही किया था, पहले स्वरलिपि को आकार सहित उसको अंदर बैठा लिया
1: जी,
0: उसके बाद अगर बंदिश दे दिया तो मास्टर जी ने, तो हम आसानी से उसको बैठा दिया। तो हमने जो स्वरलिपि दे दिया, मैं तो रिवाइज कराऊंगी, तो अब आज बंदिश देने का दिन है, बंदिश दे देती हूँ जो जनपुरी राग में एक तल के ऊपर 48 मतलब 48 मात्रा थे उसके ऊपर जो बंदिश है, बंदिश को स्थाई का जो बोल है, बाजे झनन झनन बाजे पायलिया मोड़ी राज दुलारी दौड़े अंगनवा, बहुत सुंदर बंदिश है। बाजे झनन झनन बाजे पायलिया मोड़ी राज दुलारी डोड़े अंगनवा माँ, और अंतरा जो है, मन मातंग मतवारो मन मातंग मतवारो ही डोरे इन नए नए छवि अति ही छाही, मन मतंग मतवारो ही डोरे इन नए नए छवि अति ही छाही। तो ये बंदिश शायद लिसनर लिख लिया किताबों में, तो अभी इसको जैसे हमने सिखाया है उसको धुन में बैठा देती हूँ, पहले स्थाई उसके बाद अंतरा बैठा देती हूँ, ठीक है? ओके
1: जी, जी।

0: ये हमने थोड़ा विस्तार करके लिसनर को सुनाया, क्योंकि अभी हमने एक बात फिर से स्मृति दिलाती हूँ कि मैंने पिछले एपिसोड में हमने राग आशावरी सिखाया था, क्योंकि ये जनपुरी जो राग है इसका ठाट भी आशावरी है। तो आशावरी के साथ इसका अंतर है, तो आशावरी एकदम धा सा होता है, नी वर्जित है, लेकिन इसमें धा नी सा ऊपर जो हम जब मध्य स्वर में उठते हैं ऊपर चढ़ते हैं तो सा रे मा पाए धा नी सा। लिसनर को याद है, याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने ऐसे सिखाया था, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना है
1: जी।
0: मैं करके सुनाती हूँ, पहले आशावरी उसके साथ फिर से करती हूँ, उसके बाद जैनपुरी।

0: शायद लिसनर के सामने क्लियर हो गया कि आशाबरी के साथ जौनपुरी जो राग है इसका अंतर। अभी जो दिया है हम स्वरलिपि शबरी के साथ हम बंदिश बैठा देते हैं।
1: जरूर आप बंदिश हमें सिखाइएगा, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हम अपने श्रोता मित्रों के साथ जौनपुरी राग से ही संबंधित एक गीत का आनंद लेंगे। पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो।

0: आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज शुरुआत में हमने संगीत की आदि काल से ही चली आ रही महिमा के बारे में सुना, उसके साथ साथ जौनपुरी राग और आशावरी राग में क्या अंतर है ये भी श्यामली जी ने हमें स्पष्ट समझाया। आगे श्यामली जी आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, अभी मैं फिर से लिसनर को स्वरलिपि के साथ ये बंदिश बैठा देती हूँ, ठीक है?

0: ये हमने स्थाई के थोड़ा बिस्तर किया, थोड़ा बोल के साथ जो बंदिश का जो बोल दिया है उसके साथ किया है। इतना जल्दी तो हम इतना छोटे एपिसोड में नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा इसका सैंपल दे दिया। अगर लिसनर गुरु के पास जाकर शिक्षा लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन सबसे बड़े अगर बंदिश उठाना है तो स्वरलिपि को आकार सहित उसको कंठस्थ करना है।
1: शमली जी, आज जाते जाते आप कौन सा गीत लेकर आए हैं?
0: हाँ, बहुत सुंदर एक गीत 1973 में हस्ते जखम एक फिल्म बना हुआ था, उसमें ऑब्वियसली लता जी का ही है जो अभी तो लता जी बिना हम तो नहीं रह सकते हैं ना
1: जी।
0: तो बहुत सुंदर गीत, आज सोचा तो आंसू भर आए, अभी भी लता जी को याद करते हैं तो आंसू भर आ जाते हैं,
1: दर्द भरा गीत है।

0: ये गीत जब भी गाती हूँ लता जी का याद ताजा हो जाते हैं
1: जी, क्योंकि अभी अभी ही लता जी हमारे से रुखसत कर गई है, मगर आज भी हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेगी।
0: जी जी,
1: उन्होंने ऐसा सारे विश्व को अपने कंठ के द्वारा ऐसी यादें दी है जो सदियों तक हम सभी और आने वाली पीढ़ी भी उसको याद करती रहेगी। ये सच में लता जी थी, मगर है भी हमारे दिलों में सदा जिंदा रहेगी। श्यामली जी, यही हम विराम लेते हैं, पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। पुनः रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब आसमान में एकदम अंधेरा होता है, काले बादलों ने चांद को भी ढक दिया होता है, और तब एक टिमटिमाता तारा नजर आता है जो ये एहसास कराता है कि ढूंढने पर रोशनी की एक झलक तो मिल ही जाती है। राठौड़ परिवार के जमाईसा यानी सूरजमल जी को अपने घर से बेदखल कर दिया गया और अपनी पत्नी यानी राठौड़ परिवार की सुपुत्री शांति के साथ घर जमाई बनकर रहना मतलब समाज की जिल्लत सहना। क्या राठौड़ परिवार अपने जमाई को अपनाएगा? क्या इस घर में एक और मेंबर आएगा, या फिर शांति और सूरजमल को अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना होगा? आइए सुनते हैं।
1: मेरा फैसला यह है कि
2: क्या है पापा,
3: थोड़े दिन तो जमाई सा को रहने देते हैं।
4: मुझे पता है पापा कभी नहीं मानेंगे।
5: मुझे तो लगता है कहीं साथ साथ शांति को भी ना घर से निकाल दें।
1: इस दुनिया में भांति भांति के रिश्ते हैं। कुछ लोग उन्हें दिल से निभाते हैं और कुछ समाज के डर से। मान मर्यादा का ख्याल हमको भी है। समाज के नियम के हिसाब से हम भी चलते आए हैं, लेकिन वो नियम जो सच्चे है, जो घर की सुख शांति के लिए जरूरी है।
5: हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं, और हम राठौर परिवार का नाम बदनाम थोड़ी होने दे सकते हैं। जा शांति, तू भी अपना बैग पैक कर ले, ढूंढो कहीं और अपना ठिकाना दोनों।
6: भाभी, आप ये क्या कह रही है? क्या ये घर मेरा नहीं है? पापा, आप भी?
7: शांति, सब ठीक कह रहे हैं। चलो, हमें यहाँ किसी पर बोझ नहीं बनना है।
8: तुम लोग का आज से टीवी सीरियल देखना बंद।
9: क्या?
10: क्या?
9: क्या?
8: अरे मेरी पूरी बात सुने बिना एकदम टीवी सीरियल के जैसे अपना अपना मतलब निकलते जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और बेटा सूरजमल, इस दिल में और इस घर में दोनों में तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
11: हाँ जमाईसा, तो यहीं रुकेंगे, कितनी अच्छी बात है ना?
3: हाँ बिल्कुल, ये बात सही है।
6: मैं तो बहुत खुश हूँ।
3: बढ़िया,
9: बहुत अच्छी बात है,
12: सब लोग मिलकर रहेंगे।
13: सुनिए, मैं जानती हूँ आप शांति और दामाद जी का भला चाहते हैं, और मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन सोचिए जरा, घर जमाई बनकर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी?
3: माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त जमाई सा को हमारी जरूरत है।
1: मेरा फैसला आखिरी है, जमाई सा यही रहेंगे, अब से यही उनका घर।
14: वीरेंद्र, तू तो समझ बेटा, मैं तो बस इनकी भलाई सोच रही हूँ।
15: माँ, आप क्या चाहती हो, दीदी और जीजा जी सड़क पर दर दर भटके?
13: किशन, सुन ले मेरी बात, वो तेरी तरह किताबी बातें और शायरी नहीं करते हैं जो सड़क पर भटकना पड़े।
3: जमाई सा परिवार के हैं, और आपने ही हमें बचपन से सिखाया है कि परिवार का मतलब ही है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। हम आपकी ही सीख पर चल रहे हैं माँ।
5: अरे ये समाज हम पर थू थू करेगा, और घर जमाई की इज्जत कौन करता है?
15: हम तो करते हैं भाभी जी, भाभी ताने कसती है फिर भी उनकी करते हैं, तो जीजा जी की क्यों नहीं?
16: अरे वैसे भी भाभी, जब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता तो भला बहू और दामाद में क्यों हो?
5: मेरा इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, पहले गलती करेंगे फिर पछताएंगे। देखती हूँ मैं भी कब तक रहती है खुशी न दामाद की।
3: अरे जमाई सा, अब तो आंसू पोंछ दीजिए, आपका आपके घर में स्वागत है।
11: वैसे जमाई सा, मैं आपको वार्न कर देती हूँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
13: अरे राजकुमारी, तू डरा क्यों रही है इस बेचारे को?
3: अरे माँ, खतरा है ना।
14: क्या?
3: राजकुमारी के हाथ का खाना।
7: नहीं नहीं, मुझे तो राजकुमारी भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद है।
16: क्या करेले के लड्डू
6: या मिर्ची का हलवा?
11: बस इसी से वार्न कर रही थी मैं आपको जमाई सा, यहाँ ना आपकी टांग खिंचाई कर कर के लंबा ही कर देंगे। लेकिन सच बताऊं, ये परिवार बहुत प्यारा है, हर रंग है यहाँ पे।
5: देखो किस्मत हमारी, जब इनके जीवन में अंधेरा हुआ, ठोकर लगी तो हम याद आ गए। भाई हम सब कोई सूरज थोड़ी हैं जो तुम्हारे जीवन में उजाला कर देंगे। इतनी कमाई नहीं है हमारी कि अब बेटियों को और उनके पतियों को भी बैठ कर खिलाएं।
15: इस बात पर मुझे गर्मा गर्म शेर याद आ गया।
10: सुनाओ सुनाओ किशन, इनके तानों से अच्छा है तुम्हारा शेर ही सुन ले।
12: शेर नहीं भाई साहब, शेर शेर।
10: हाँ हाँ वही।
13: हाँ बेटा, हमारी समझ में नहीं आते ये तेरे शेर कविताएं, लेकिन कम से कम किसी के दिल को दुखाती तो नहीं है तेरी ये कविताएं।
15: तो अर्ज किया है, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या? सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या? अहमियत पर उसे अपनी कुछ कम नाज है क्या? अंधेरों में साथ निभाता है, दिन में भला क्या खूबी है? मुख्तलिफ किस्मत पर अपनी उसे एतराज है क्या?
2: वाह वाह वाह वाह
3: वाह वाह। किशन बात तो तूने सो आने सच्ची कही है, रिश्ते कभी चांद बन जाते हैं तो कभी दिए की लौ ही सही, लेकिन अंधेरों में कभी रोशनी देना नहीं भूलते।
5: तो बनो चांद सितारे तुम लोग, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
10: चंद्रावती तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो।
5: मैं तो बस सच्ची बात कहती हूँ, बुरी तुम लोग को अपने आप लग जाती है।
10: सच तो बहुत है दुनिया में चंद्रावती, एक सच मैं भी कह देता हूँ।
3: भाई साहब जाने दीजिए ना।
7: भाभी जी मैं किसी पर बोझ बनने नहीं आया हूँ, मैं शांति को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, बस कुछ दिन ही।
10: जमाई साहब आपका घर है, आप यहीं रहेंगे, और तुम्हें सच सुनना है ना चंद्रावती, तो सुनो। एक तुम हो जो इस घर का माहौल खराब करके रखती हो, ना किसी को चैन से रहने देती हो ना सोने देती हो तुम।
3: भाई साहब बस कीजिए, जमाई साहब के सामने ये सब शोभता नहीं।
5: मैंने इस घर के लिए क्या क्या किया और ये कहते।
12: भाभी जी भाभी जी चुप हो जाइए, हम जानते हैं आपके पास जुबान कड़वी है दिल नहीं।
16: बातों बातों में आधा सच कह दिया राजकुमारी भाभी ने, जुबान की तो बड़ी कड़वी है बड़ी भाभी।
15: हाँ बहना, रोने में भी ऐसा लग रहा है गुस्से में तंतना रही हो।
5: क्या क्या मैं कड़वी हूँ जुबान की?
13: नहीं नहीं बेटा, तेरे मुंह से तो फूल झड़ते हैं।
8: अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या करो, ऐसे ही बिठा कर रखा है जमाई साहब, कुछ खिलाओ।
7: आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है पापा।
8: एहसान कैसा बेटा, ये तो रिश्ते की परिभाषा है, समय का खेल बहुत निराला है, कभी किसी का अच्छा वक्त आता है कभी बुरा, ये तो जीवन का चक्र है। रिश्ते इस पूरे चक्र में साथ निभाते, अगर गम में साथ नहीं तो खुशी में रहने का अधिकार भी नहीं।
3: पापा एकदम सही कह रहे हैं जमाई साहब, हम पांचों भाई बहन में बड़े भाई साहब किशन शांति और रागनी यही सीख के बड़े हुए हैं कि परिवार मतलब प्यार, कितनी भी नोक झोंक हो, गुस्सा आए या एक दूसरे से दिमाग की सोच में अंतर हो सकता है लेकिन दिल में नहीं।
13: चलिए जमाई साहब अब आप अंदर चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर हम बाहर खाने के लिए मिलते हैं।
12: पापा कितना सही कह रहे हैं भाभी, ऐसा कोई अपने घर वालों के साथ करता है क्या जैसा जमाईसा के भाई ने किया? ऐसे तो मैं अपने जले हुए आटे के साथ ना करूं। उस दिन आटे का हलवा बनाते समय जो आटा जल गया था उसको भी मैंने सब्जी में घोल कर इस्तेमाल कर लिया था। वो जो जली हुई सी महक नहीं आ रही थी सब्जी में, आप लोग कह रहे थे सब्जी जली भी नहीं महक भी आ रही है, ऐसा कैसे? वो उस आटे की वजह से ही तो थी। जमाईसा रुकिए रुकिए, मैंने कल ही काली गाजर और करेले का केक बनाया है आपके लिए, अभी लेकर आई।
17: अब राजकुमारी जी के हाथ का केक खा के जमाईसा का हाजमा खराब होगा या सिर्फ मुंह का टेस्ट, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ लेकिन ये जानता हूँ कि रिश्तों के धागों में अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो खुलने पर भी धागे को कमजोर कर देती है। क्या सचमुच रिश्ते इतनी आसानी से छूट जाते हैं? क्या वो भाई या बहन जिसके साथ बड़े हुए, हंसे खेले, जिसने बचपन में हमें पापा की डांट से बचाया, जिसको अगर किसी और ने चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो हम आगे खड़े हो गए। उसे हम आज खुद चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं सोचते। कैसे आ जाती हैं इतनी दूरियां? वो प्यार कहां खो जाता है? खैर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि राठौड़ परिवार ने सूरजमल यानी जमाई सा को ये एहसास दिलाया कि ये उनका अपना घर है। लेकिन राठौड़ परिवार है जी, यहाँ सूरज भी अपनी निकलने की दिशा भूल जाता है तो नए जमाई सा मतलब पुराने जमाई, नए घर जमाई क्या चीज है ना? बस सुनते जाइए कि इस जंगल में अब क्या क्या होगा जब एंट्री होगी एक नए जीव की। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
11: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम सलामे जिंदगी। आपकी अपनी उषा के साथ सलामे जिंदगी सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार। आज आपको मैं ऐसी हस्ती से मिलाने जा रही हूँ इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप चीफ मैनेजर के पद से निवृत्त हो चुके हैं। आपकी उम्र 58 वर्ष है, आप बेंगलोर से हैं, लेकिन 5 वर्षों से आप राजस्थान आबू तलेटी में रहते हैं। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। बचपन से आप पढ़ाई में अव्वल थे। आपका स्नेह, आपका व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी विशेषता आपके अंदर यह है कि आपने शादी तो की, लेकिन भगवान को आपने बच्चा बनाया। आपका मानना है, आपका कहना है कि हम निष्पक्ष भाव से और निस्वार्थ भाव से विश्व की सेवा करना चाहते हैं। अगर हमारे बच्चे हो जाएंगे तो हमें स्वार्थ आ जाएगा, इसलिए भगवान ही हमारा बच्चा है और सभी भगवान की संतान है, तो हमें पूरे विश्व की सेवा करनी है। और आज आप पूरे विश्व की दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं और आप डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो आइए आपको मिलवाएंगे।

0: इसमें हम लोग बहुत बात करते थे, लेकिन कुछ गलती हो गया तो क्षमा कर दीजिए। ओके।
1: नहीं नहीं देखिए, फिर भी काफी आपने कोशिश की और यहाँ की भाषा सीख ली। आज आप हमें कहेंगे कि कन्नड़ बोलो तो हम नहीं बोल पाएंगे, फिर भी आप 5 सालों के अंदर अच्छे हिंदी बोलना सीख गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए थोड़े समय के लिए आपके बचपन की तरफ जाते हैं। आप पढ़ाई में कैसे थे बचपन में, किस तरह का माहौल मिला आपको?
0: हमारा पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन छोटी उम्र में क्या हो गया था, घर में कुछ हमारा कोई हमारा फैमिली देखने वाला हमारा पिताजी था, उनका सडनली हम लोग सेकंड स्टैंडर्ड में थे तभी डेथ हो गया। उसके बाद में हमारा पढ़ाई करने में सभी प्रॉपर्टी देखने वाले कोई नहीं था, लेकिन हम लोग पढ़ाई में कंटिन्यू कर दिया और पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। और पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों रहे तो हम सभी टीचर लोग मेरा कैरेक्टर सभी देखने के बाद में और उनको रिस्पेक्ट कितने हम लोग सभी टीचर्स के लिए हम लोग देते थे वो देख के वो लोग बहुत खुशी हो जाते थे। और क्लास में हम लोग फर्स्ट और सेकंड रैंक ऐसे ही आते रहते थे। और मेरा पढ़ाई में मैथमेटिक्स पता है तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था मेरा, इसलिए हम लोग बैंक में भी हम लोग ज्वाइन हो गया। उससे पहले हम लोग अप टू बीकॉम तक स्टडी किया।
1: अच्छा ये बताइए कि आप कितने साल के थे तब आपके पिताजी गुजर गए?
0: मैं तो सेकंड स्टैंडर्ड में बताए तो 7 इयर्स ओल्ड तभी थे।
1: बहुत छोटे थे तब तो।
0: छोटे
1: और भाई बहन आपके थे?
0: हाँ भाई बहन थे, लेकिन बहन थे और देखभाल करने वाले कोई नहीं था। एग्रीकल्चर लैंड था, वो लैंड देखने के लिए ओके कल्टीवेशन करने के लिए कोई बड़ा लोग नहीं था।
1: और अच्छा अच्छा, अब बेटे आप अकेले थे?
0: बेटे हम लोग मेरे से और एक छोटा मेरा भाई भी है मेरे अच्छा। से छोटा था इसलिए बहुत हम लोग हमारा रिलेशन सभी बहुत रिच थे, लेकिन हम लोग बहुत एक स्टडी करने के लिए किसी से कमाई से हम लोग उनके कमाई से पैसा लेके हम लोग स्टडी करने का वो सभी इंटरेस्ट नहीं था। हमारा अंकल एक था बॉम्बे में कलेक्टर था, उनको मुझे आईएएस बनने के लिए पूरा रेडी करने के लिए कोशिश करता था, लेकिन हम लोगों को जल्दी से जल्दी अच्छे स्टडी करके अच्छे रैंकिंग में आके हम लोग अच्छे जॉब मिले। तो हमारा बहन भाई सभी को हम लोग माताजी को सभी देख सकते हैं हम लोग।
1: अच्छा, आपकी ख्वाहिश ये थी कि मैं जल्दी से अच्छी पढ़ाई करके कोई अच्छी जॉब लग जाऊं। आईएएस में तो टाइम लगेगा।
0: हाँ आईएएस में बहुत टाइम लग जाएगा,
1: इसलिए कि चलो भाई बहनों की जिम्मेदारी मैं उठा सकूं।
0: यस,
1: इस वजह से आपने चाहा कि मैं जल्दी से जॉब लग जाऊं।
0: हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करके क्लास हमारा स्कूल हाई स्कूल पढ़ाई होने के बाद में हम लोग क्या करते थे, स्कूल होने के बाद में शाम में मेरा अंकल का एक फैक्ट्री था, फैक्ट्री में थोड़ा हम लोग वर्कर जैसे ही काम करके हम लोग और उनका बड़ा एक शॉप था उधर भी हम लोग सीजन में हम लोग जाके शॉप में थोड़ा उनको मदद करके उन दिया हुआ पैसे से हम लोग बुक्स नोटबुक सभी परचेज करके हम लोग बहुत कष्ट लेके स्टडी किया है। हमारा जैसे ही उनका बच्चों का उतना क्लेवर नहीं था वो लोग उनके साथ में भी हमारे पढ़ाई हो जाता था और हम लोग लेकिन हम लोग अच्छे पढ़ाई से हम लोगों को रैंकिंग और अच्छे मार्क्स स्कूल में आ जाता था।
1: पढ़ाई में अव्वल थे इसलिए आपके अच्छे नंबर आते थे।
0: यस,
1: और रैंक फर्स्ट रैंक बनते थे।
0: फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक स्कूल में ऐसे ही हम लोग आते थे हर साल में
1: जी,
0: और स्टडी में और खेलने में, और खेलने में भी हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग कॉलेज लेवल स्कूल लेवल से भी कॉम्पीट करते थे।
1: अच्छा, तो आपके इनकम का जरिया क्या था? जैसे पिताजी तो कम उम्र में ही चले गए, आप 7 साल के थे तभी, तो पहले का पैसा था या आपके मम्मी भी कुछ करते थे?
0: हाँ मम्मी ने

0: मेरा बहन भी करते थे। हमारा पिताजी का एक फैक्ट्री में हमारा अंकल सभी देखभाल करते थे, लेकिन वो सभी पैसे उनसे ही हम लोग उधर ही थोड़ा फैक्ट्री में थोड़ा काम करके उनको मेहनत उनको मदद करके हम लोग पैसा लेते थे। उसमें ही हम लोग पढ़ाई ज्यादा करते थे। हमारा एग्रीकल्चर लैंड भी था, उसका भी थोड़ा इनकम आ जाता था
1: जी,
0: इससे।
1: खेती बाड़ी थी
0: खेती बाड़ी थी।
1: जी,
0: हॉर्टिक
1: तो आपके मम्मी को तो कुछ करना नहीं पड़ा,
0: नहीं, मम्मी को कुछ
1: आप
0: नहीं
1: लोगों पे
0: करते थे।
1: संभालना
0: मम्मी
1: होता था।
0: मम्मी तो बहुत बड़े खानदान का
1: बेटी है
0: बेटी था, इसलिए उनको काम करने का ये नहीं हो
1: जी
0: गए।
1: जी जी और इधर सभी का सहयोग था, आपकी फैक्ट्री थी जो संभालते थे सभी।
0: सभी संभालते, अंकल सभी संभालते थे, लेकिन हम लोग वर्कर के जैसे हम लोग जाके काम करके हमारा खुद का स्कूल का क्या खर्चा है वो सभी हम लोग ही वो अमाउंट से ही हम लोग लेते थे, उनसे पैसा सभी लेके।
1: अच्छा जी, तो आप तो इतने छोटे थे फिर भी काम करते थे।
0: काम करते थे हम लोग इवनिंग जाके। बाद में हमारा तो स्कूल 5:30 खत्म हो जाता था, हम लोग 6:30 से अप टू 9 o'clock तक जाके फैक्ट्री में और शॉप में हम लोग काम करते थे।
1: अच्छा
0: उनको
1: जी,
0: मदद के लिए हम लोग जाते थे, वो सभी उनका हमारा मदद देके वो लोग हमारा जिम्मेदारी सभी उठाते थे, बुक्स का फीस का वो सभी, कपड़े का वो सभी।
1: जी।
0: सभी प्रॉपर्टी रहे तो भी हम लोग थोड़ा मेहनत से ही हमारा स्टडी पढ़ाई का मेहनत वो सभी करके ही वो इनकम से कुछ काम करके इनकम से ही हम लोग पढ़ाई कंटिन्यू किया।
1: जी, भले प्रॉपर्टी थी लेकिन आपने मेहनत की और बचपन से मेहनत करके ही आपने पढ़ाई की, तो मतलब सारी पढ़ाई का खर्चा भी आपने खुद निकाला।
0: खुद खुद निकाला।
1: माँ को दुख हुआ होगा उस समय, स्वाभाविक
0: बहुत
1: है, एक माँ तो कहाँ एक फूलों की तरह पले और कहाँ बच्चों को स्ट्रगल देखा, तो माँ से तो सहा नहीं जाता। तो कभी उन्होंने अपने मायके में बात की कि मेरे बच्चे इस तरह मेहनत कर रहे हैं।
0: वो मायके में भी सभी को बता दिया था, लेकिन वो लोग हेल्प करने के लिए आते थे, लेकिन हमारा स्वाभिमान एक था, खुद हम लोग थोड़ा अर्न करके ही उससे ही हमारा पढ़ाई कंटिन्यू करना है और किसी को बोझ नहीं बनना है। छोटे बचपन से ही हमारा मन में ऐसे ही था,
1: क्या बात है,
0: इसलिए जल्दी जल्दी डिग्री बीकॉम होने के बाद में हम लोग डिग्री कंप्लीट होते ही हम लोग 2-3 एग्जाम दे दिया, बैंक का BSRB बोल के था हमारा कर्नाटका, इसमें हम लोग उधर ही एग्जाम BCom फाइनल एग्जाम के पहले हम लोग एग्जाम दे दिया और 2 लाख 3 लाख में हम लोग ओनली सिलेक्टेड 110 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए बैंक के कर्मचारी के तरफ से।
1: क्या बात है श्याम सुंदर जी। चलिए आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। श्याम सुंदर जी के अनुभव बहुत अच्छे हैं और अभी बाकी है, तो बने रहिएगा कार्यक्रम सलामी जिंदगी में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: Kandho par zimmedariyan, phir bhi chehre par muskaan. Kandho par zimmedariyan, phir bhi chehre par muskaan. Parivar ki khushiyon mein hi dhoonde apni pehchaan. Khud ki chahaton ko piche rakhkar, sabka khayal kare. Aise bete ko mera dil salam kare. Aise बेटे को मेरा दिल सलाम करे. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामे जिंदगी और सलामे जिंदगी में श्याम सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं. श्याम सुंदर जी देखे उस समय तो 7 साल की उम्र थी आपकी, तो एक छोटे से बेटे होने के बावजूद भी आप स्वाभिमानी से जीवन जीते थे, खुद मेहनत करते थे, खुद की फैक्ट्री पर काम करके उससे जो पैसा मिलता अपने अंकल के द्वारा उसके द्वारा वो पढ़ाई करते थे और ऐसे आगे बढ़ते गए. पढ़ाई में बहुत होशियार थे और पहली बार ही आप सेलेक्ट हो गए. बीकॉम फाइनल करने के बाद आप बैंक में आपको जॉब लग गई, वो भी पहली बार. तो श्याम सुंदर जी पुनः आपका स्वागत है सलामे जिंदगी कार्यक्रम में.
2: थैंक यू.
1: तो आप बता रहे थे कि आपको हर चीज में सफलता मिली. पढ़ाई में आप फर्स्ट या सेकंड रैंक के आते थे, है ना? और कॉलेज में भी आप पढ़ाई में वो ही रहे.
2: कॉलेज में भी ऐसे ही, वो तो फर्स्ट एंड सेकंड रैंक में ही मैं आगे जाता था और मेरा मन पूरा स्कूल में, कॉलेज में. और मुझे क्या है, एम्बिशन मुझे एक ही था, जल्दी से जल्दी अच्छे जॉब हम लोग हासिल करना है. जॉब करके वो इनकम से हमारा पूरा फैमिली को, बहन को, मदर को और मेरा माताजी को और मेरा छोटे भाई को, सभी को देखना मेरा, ऐसा मुझे लगता था. इसलिए मेरा पूरा कंसंट्रेशन स्टडी के ऊपर ही था. कंसंट्रेशन से कर दिया तो हम लोगों को एग्जाम से अच्छे मार्क्स मिल जाएगा. अच्छे मार्क्स मिलने से अच्छा जॉब हम लोगों को कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में अच्छा जॉब मिल जाएगा
1: जी.
2: जल्दी मिल जाएगा, ऐसे ही मेरा इरादा वही था. और कोई मेरा फ्रेंड सभी फिल्म देखने के लिए मुझे बुलाते थे और किसी को चिट चैट करने के लिए मुझे बुलाते थे, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था. वो लोग मेरे साथ ऐसे किया तो मैं उनसे अलग हो जाता था. अलग कोई स्टडी करने वाला रहे तो उसके साथ मैं इंटरेस्ट से मैं फ्रेंडशिप उनके साथ करता थे ज्यादा. और मेरा अच्छा जॉब आने के लिए कुछ स्पोर्ट्स भी चाहते थे, मुझे चाहिए थे, इसलिए स्पोर्ट्स में भी मेरा 100 मीटर्स और 400 मीटर्स में मैं स्कूल में पहला था. फर्स्ट आते थे
1: जी,
2: और
1: जी.
2: मेरा कॉलेज में मैं तो कॉलेज का मिस्टर स्पोर्ट्स था.
1: बताए हाँ, क्या बात है.
2: और इंडोर गेम आउटडोर गेम दोनों में कॉलेज से मैं जीत हासिल किया हूँ, इसलिए मुझे मिस्टर स्पोर्ट्स का अवार्ड भी फाइनल ईयर में मिल गया.
1: अरे वाह.
2: आउटर गेम्स बताए तो मैं तो क्रिकेट में कॉलेज का प्लेयर था.
1: अच्छा.
2: और काम कबड्डी बताए तो उधर का कर्नाटक में बहुत अच्छा कबड्डी का ये रहता है, वो तो डिस्ट्रिक्ट प्लेयर था
1: जी.
2: और बाद में बाहर टेनिकॉइट मिक्स डबल उसमें भी मेरा अच्छा था. और रनिंग रेस में 100 मीटर्स 400 में मैं तो फर्स्ट और सेकंड आ जाता था. ऐसा बहुत खेल में भी मेरा, सभी खेल में मैं पहले आगे आना है ऐसे ही मुझे इरादा था. लेकिन बाद में मेरा टीचर ने बता दिया कोई 2-3 खेल में उतना ही कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बताया था
1: जी.
2: इसलिए 2-3 और ट्रिपल जंप में और बाद में टेनिकॉइट में फाइनल में मैं तो पहले नंबर सेकंड नंबर ऐसे आ गए.
1: तो आप स्पोर्ट्स की तरफ फोकस नहीं दिया आपने?
2: स्पोर्ट्स में मेरा इरादा था, स्पोर्ट्स में पूरा दे दिया तो क्या होता है, पढ़ाई में थोड़ा कम आ जाता है, इंटरेस्ट लग जाता है, मार्क्स भी कम हो जाता है. इसलिए मेरा एम था मुझे जल्दी से जल्दी जॉब लेने के लिए.
1: अच्छा जी जी. और आपको डांस भी बहुत अच्छा आता, तो क्या कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में आपने डांस किया?
2: कॉलेज लाइफ में मैं थोड़ा मेरा बाबी के साथ तो भरतनाट्यम डांस के लिए क्लास में ज्वाइन होते थे उनके साथ में. मैं भी उनको बोलता था मैं भी साथ में आऊंगा, मैं भी डांस सीखूंगा. थोड़ा डांस सीख लिया, दोनों क्लासिकल डांस और बाद में, और डिस्को डांस, वो तो हमारे जमाने में वो डिस्को डांस बोल के बहुत फेमस था, वो डांस में कॉलेज में बाहर और कोई स्पिरिचुअल रहे तो, और भक्ति मार्ग में वो भी स्टेज पे मैं डांस करता था। बचपन से मुझे डांस करने में बहुत इंटरेस्ट था।
1: अच्छा, बढ़िया बढ़िया। और गाना गाते?
2: और ओ, गाना तो नहीं गाता हूँ लेकिन मुझे गाना सुनने में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है
1: जी।
2: लेकिन मैं अभी तक कॉलेज जाने तक एक बार भी फिल्म टाकीज तो नहीं गया हूँ।
1: अच्छा, क्या बात है।
2: और घर में भी ओके, चाय भी मैं नहीं लेता था, चाय कॉफी कुछ नहीं लेता था, क्यों बताए तो अच्छा स्टूडेंट बनना है, अच्छा बच्चे बनना है, कुछ हैबिट
1: कोई
2: नहीं
1: भी बैड
2: करना
1: हैबिट
2: है,
1: नहीं होनी
2: नहीं
1: चाहिए।
2: बैड हैबिट नहीं रहना चाहिए, ऐसे मेरा इरादा था।
1: अच्छा, तो चाय दूध कॉफी कुछ भी नहीं?
2: कुछ कुछ नहीं लेते थे।
1: तो आपके माताजी नहीं कहते थे कि दूध लो कुछ?
2: हाँ,
1: तो लो।
2: वो सभी बताते थे लेकिन मुझे ओके नहीं करना है, कुछ हैबिट नहीं बन करना है।
1: जी जी
2: हाँ, चाय पीने का वो भी एक हैबिट मैं समझता था वो।
1: जी जी
2: तभी से मैं
1: अच्छा, तो अभी तो पीते हैं या नहीं पीते हैं?
2: अभी तो बहुत कम है, कभी
1: बहुत
2: भी
1: कम।
2: हाँ,
1: जी
2: बहुत
1: जी
2: कम है।
1: बचपन के आते नहीं थी तो आज भी वो आदत नहीं है, मिली
2: आदत
1: तो
2: नहीं
1: ठीक,
2: है।
1: नहीं मिली तो भी ठीक।
2: करेक्ट करेक्ट, ऐसे ही
1: जी
2: कंपलसरी चाहिए बोल के ऐसे नहीं रहता है, कभी भी कभी बाहर गए तो किधर भी गए तो थोड़ा फ्रेश होने के लिए थोड़ा कुछ ग्रीन टी वो सभी लेते हैं।
1: जी जी जी चलिए, बहुत अच्छा। मतलब कम उम्र में इतनी समझ आना, ये बहुत बड़ी बात है। आज बड़े बड़े हो जाते बच्चे, उनको समझाते फिर भी वो समझ नहीं पाते, बहस करने लगते हैं। और कहते हैं कि जिम्मेदारियों का बोझ ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने आप ही संभल जाता है।
2: सच है,
1: जबकि आपको तो बहुत अच्छा माहौल मिला, आपके कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी आपने खुद को संभाल लिया।
2: यस,
1: जी
2: संभाल लिया। सभी फ्रेंड सर्कल सभी थे, सभी बहुत बुरे बुरे आदत डालते थे लेकिन उनका संग भी मैं नहीं करता था। कोई बहुत अच्छा स्टडी करता है, बहुत अच्छा आदमी स्टूडेंट रहता है, उनके साथ ही मेरा संग ज्यादा
1: जी
2: हो
1: जी
2: जाता।
1: जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो पढ़ाई में सिर्फ ध्यान देते हैं, उनके साथ आप दोस्ती रखते थे, बाकी तो सही है। ऐसा कि वाह, पापा तो है नहीं, कौन टोकने वाला है, चल ऐसे कर ले वैसे कर ले, है ना। लेकिन
2: सच्चे
1: आपने ऐसा संग नहीं किया।
2: नहीं किया है।
1: जी बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे आपने कॉलेज पूरा किया, कॉलेज पूरा करते ही आपने कंपटीशन फाइट किया।
2: हाँ, कॉलेज अभी तो फाइनल ईयर एग्जाम था तभी मेरा कंपटीशन स्टार्ट हो गया, क्यों बताए तो डिग्री के बाद में मुझे 21 इयर्स हो जाते तभी से मेरा जॉब लेने का मेरा इरादा था, इसलिए मैं तो सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पे स्टडी करने लगा। बीकॉम फर्स्ट में मेरा तो पहला कॉम्पिटेटिव ग्रामीण बैंक में, मेरा घर में मेरा बड़ी अंकल सभी हायर ऑफिसर थे, वो लोग सभी बता रहे थे छोटे छोटे जॉब में नहीं जाना है, इसलिए और एक बार बीकॉम फाइनल में एग्जाम कंप्लीट होने से पहले ही मैं बैंक का एग्जाम बहुत मेहनत करके मैं एक गांव से एक बड़ा गांव में जाके, हुबली हमारा घर गांव से 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर सिरसी गांव से।
1: जी जी, आप सिरसी के रहने वाले और सिरसी से हुबली 100 किलोमीटर है
2: दूर,
1: तो आप हुबली जाते थे?
2: हुबली एग्जाम लिखने के लिए उधर जाना पड़ता था हम लोग, इसलिए हम लोग इधर बीकॉम फाइनल एग्जाम भी हम लोग पढ़ना है, उसके साथ में ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी लिखने के लिए रात में एक लॉरी पकड़ के हम लोग सुबह उधर जाके उधर एग्जाम खत्म करके और तुरंत आके बीकॉम का एग्जाम स्टडी करने लगा। और बीकॉम कंप्लीट रिजल्ट आते ही मुझे 2-3 जॉब मिल गया था।
1: अच्छा,
2: एक टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट ऑफिसर वो मिल गया, और उसके बाद में वो ट्रेनिंग के लिए मैं चले गए टेलीकॉम ऑफिसर के लिए
1: जी।
2: वो ट्रेनिंग 3 महीने का था, 1 महीने कंप्लीट होते ही मुझे बैंक में आप एग्जाम पास हो गया और इंटरव्यू आप पास हो गया, आप आके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका आप प्लेसमेंट हो गया, आप आके ज्वाइन कर लिए, इसलिए मैसेज आ गया। इसलिए मैं क्या किया, वो तो टेलीकॉम ऑफिसर सभी ने बताने लगे आप ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छा है इसलिए उधर चले जाइए बोल के वो लोग सभी बता दिया, इसलिए
1: परिवार वालों ने,
2: परिवार वाले ने और वो टेलीकॉम ऑफिसर वालों ने सभी बता दिया वो ही जॉब अच्छा है, इसलिए मैं तुरंत आके बैंक ज्वाइन किया हूँ। इन द एज ऑफ 21 में मेरा जॉब हो गया।
1: जी जी, क्या बात है, इतनी कम उम्र में आप जॉब भी लग गए, आपका सपना पूरा हो गया।
2: हाँ, पूरा सपना, मेरा एक सपना था जल्दी जॉब लेके मेरा फैमिली सभी संभालना है, मेरे माता जी को और बहनों को सभी का शादी करना है, और मेरा बाइक का स्टडी में मैं तो उनको पढ़ाई में थोड़ा आगे बढ़ाना है, वो सभी मेरा इरादा था।
1: जी जी जी, तो कहते हैं ना कि नेक जो विचार होते हैं तो ईश्वर भी पूरा करता है, और इस तरह आप जॉब लग गए। चलिए श्याम सुंदर जी, आगे का और भी हम आपके जीवन के जो अनुभव है सुनेंगे, लेकिन अभी समय हो चला एक गीत सुनने का, तो कहीं भी जाइएगा नहीं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, अभी सलामी जिंदगी कार्यक्रम बाकी है। श्याम सुंदर जी के अनुभव बहुत ही सुंदर है और बहुत ही गहरे है और बाकी है, तो हम जरूर सुनेंगे। तो आइए सुनते गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मीठे बच्चे, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: पिता बनकर छाव बने, भाई बनकर सहारा, बेटा बनकर खुशियां दे, जीवन साथी बनकर प्यारा। रिश्तों की डोर को मजबूती से थामे रहे, रिश्तों की डोर को मजबूती से थामे रहे। पुरुष वही जो हर रिश्ते में इंसानियत को नाम दे, पुरुष वही जो हर रिश्ते में इंसानियत को नाम दे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामे जिंदगी, और सलामे जिंदगी में श्याम सुंदर जी बने हुए हैं हमारे साथ, और आपके काफी अनुभव सुने हैं, और कैसे आप मतलब हर क्षेत्र में सफल होते गए। पढ़ाई में अव्वल थे, पढ़ाई में आगे बढ़े, स्पोर्ट्स में अव्वल थे, स्पोर्ट्स में फर्स्ट सेकंड रैंक आपका आता था, और देखिए जॉब में भी 21 साल की उम्र में आपको जॉब लग गई, वो भी 3-4 जॉब आई, लेकिन आपने बैंक में जॉब करना उचित समझा क्योंकि परिवार की सलाह थी कि भाई बैंक में करो। तो श्याम सुंदर जी, जैसे आपने बैंक में शुरुआत की, ठीक है, तो जैसे डिसीजन दूसरों ने भी सुनाया, आपका खुद का क्या था डिसीजन?
2: सिंपल, अच्छा जॉब रहना चाहिए, रिस्पेक्टेड जॉब रहना चाहिए। और मेरा ब्रदर इन लॉ एक थे, वो तो PWD पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट में मैनेजर थे। उनका इरादा था श्याम सुंदर को एक अच्छा बैंक में मैनेजर बनना, मैं देखना चाहता हूँ और बैंक में मैनेजर बनना है, और कोई स्पिरिचुअल लाइन में उनका बहुत, मेरा बहुत इंटरेस्ट था, वो आगे, वो स्पिरिचुअल में आगे बढ़ने के लिए उनका बहुत आशा था, इसलिए उनके तरफ से, उनसे मदद से मैं बैंक में ही कंटिन्यू किया। और 2-3 जॉब, LIC डेवलपमेंट ऑफिसर वो सभी आ गए हैं वो जॉब, और एक न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में स्टोर का मैनेजर, ऐसे सभी बहुत 2-3 जॉब आ गए हैं, लेकिन बैंक में बहुत इंटरेस्ट था। और बैंक में पहले से वाइट कलर जॉब ऐसा बता के, लाइफ तो स्टैंडर्ड और एक सिंपल शैंपल बन के जीना है, मेरा मन में ऐसे ही था।
1: जी जी जी जी, तो चलो आपका लक्ष्य पूरा हुआ, आपका सपना पूरा हुआ। अच्छा, आप बता रहे थे कि छोटा भाई भी है, बहनें कितनी आपके?
2: मेरा बहन तो 3 बहनें हैं
1: जी,
2: और भाई है,
1: 5 भाई बहन।
2: हाँ, 5 बहन।
1: तो तीनों बहनें आपसे बड़ी?
2: हाँ, तीनों बहन में 2 बहन बड़ी है, एक छोटी बहन थी।
1: जी जी, बहुत छोटे छोटे थे जब आपके पिताजी।
2: यस यस, बड़ा परिवार था, लेकिन सभी कारोबार, मेरा पिताजी भी थोड़ा पॉलिटिशियन भी था
1: जी,
2: और वो तो उनको टिकट भी मिल गया था MLA का सीट का
1: जी,
2: और उनके तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने वो कंटिन्यू पॉलिटिकल लाइफ कंटिन्यू नहीं किया, इसलिए हम लोग भी पॉलिटिकल में ज्यादा जा नहीं सकते थे, लेकिन ये बैंक में बहुत अच्छा था मेरा जॉब भी। और आध्यात्मिक में सैटरडे संडे कुछ टाइम मिले तो आध्यात्मिक क्लासेस अटेंड करने के लिए हम लोग जाते थे। ये आध्यात्मिक भी बहुत अच्छा, मुझे बैंक जॉब में बहुत हेल्प हो गया।
1: जी जी जी, तो आपकी शादी हुई जॉब लगने के बाद की या पहले हो गई?
2: ना ना ना, जॉब लगने के बाद में ही मेरा शादी हो गया, मेरा बहन का शादी किया, उसके बाद में मेरा शादी हो गया।
1: अच्छा, तो आपके दोनों बहनों की शादी,
2: शादी
1: फिर
2: होने के बाद में मेरा शादी हो गया
1: जी,
2: और बहुत मेरा अच्छे साथी थे, मेरा कैरेक्टर सभी देख ही उनके घर में हमारा लड़की को इनको देना है, बहुत इसको कुछ
1: जीवन में कोई नशा नहीं,
2: नशा
1: है,
2: नहीं, कुछ
1: जीवन
2: नहीं
1: है,
2: सात्विक जीवन है, बहुत अच्छा आदमी है, वो सभी देखे मुझे लाइक करके शादी मेरा फिक्स कर दिया।
1: जी जी जी, तो जैसे आपको अध्यात्म में रुचि है, ऐसे आपके धर्मपत्नी को भी रुचि थी अध्यात्म में?
2: तो वो बहुत भक्ति करते थे, हर एक मंदिर जाना है, हर एक दिन में एक एक मंदिर जाते रहना है, पूजा पाठ सभी करना है, और उनका भी एक ईश्वर का टेंपल में जाके और कृष्ण के टेंपल में जाके वो तो बहुत भक्ति करते थे, मुझे मिले तो अच्छा साथी मिलना है, इसलिए मैं पूजा पाठ रखूंगा बोल के व्रत भी रखता था अच्छा पार्टनर पाने के लिए।
1: जी जी जी, और घर की खुशहाली, पति के लिए भी, आयुष के लिए, बहुत सारी बातें
2: इसलिए उसको बराबर से ही मिल गया
1: जी जी,
2: वो तो साथी।
1: आपका भी धार्मिक प्रवृत्ति है, उनके भी धार्मिक प्रवृत्ति है, तो दोनों के अच्छा, तो कभी तू तू मैं नहीं हुआ होगा?
2: नहीं होता, कभी भी हुआ तो भी एक सेकंड रहता था उतना ही। हम लोग एक बात, दोनों एजुकेटेड थे, दोनों एक अभिप्राय सुनने के बाद में, उसका ओपिनियन सुनने के बाद में हम लोग चुप हो जाते थे, इजी से हम लोग लाइफ करते थे। कभी भी हमारा झगड़ा वो सभी कंटिन्यू नहीं हुआ, एक ही सेकंड उतना ही रहता था। कभी भी हुआ तो भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग अलग रहता था, और लेकिन रहे तो भी एक सेकंड में अंडरस्टैंड होके इजी से सॉल्व हो जाता था
1: जी जी,
2: तकलीफ तो नहीं आया।
1: और बैंक में जॉब लगने के बाद तो आप जगह जगह गए होंगे, क्योंकि एक जगह तो रहने नहीं देते, तो साल भर में ट्रांसफर होता था या दो साल?
2: हाँ, ऐसा होता था, बैंक मैनेजर के लिए तीन तीन साल एक एक गांव हम लोगों को मिलता था। मैं भगवान को ये बताता था, भगवान मुझे नजदीक अच्छा सभी मंदिर वो सभी अच्छा आश्रम सभी कुछ नजदीक रहना है, और घर भी नजदीक रहना है, और ऐसे ही सारी ट्रांसफर में हर एक जगह पे ऐसे ही मिलता था। और किधर डिफिकल्ट डिफिकल्ट सेंटर में रहे तो भी हम लोग बहुत मेहनत से बैंक में सभी के साथ में मिलजुल कर अच्छे स्टाफ मिलते थे मुझे, और सभी फ्रेंडली हो जाते थे, और फ्रेंडली होने के बाद में हमारा प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छा हो जाता था। लोग भी हमारा कस्टमर्स भी अच्छे अच्छे मिलते थे, और हम लोग सभी फ्रेंडली बनते थे। हमारा सभी फ्रेंडली नेचर लेके उनसे व्यवहार हमारे साथ अच्छे, उन लोगों को पता हो जाता था। इस हम लोग कुछ बताए तो वो सभी कस्टमर ने हमारा बैंक का कुछ डिपॉजिट एडवांस वो सभी नीड इजी से सभी बना के देते थे।
1: जी जी जी, आपका व्यवहार आपका स्वभाव बहुत अच्छा है कि सब आपके साथ सेट हो जाते थे, एडजस्ट हो जाते थे। कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ सब दोस्ती भी रखना चाहेंगे, तो आपके करीब रहना चाहते थे।
2: हाँ, करीब रहते थे, और मुझे बहुत, हम लोग भी कस्टमर को पहले जैसे गांधी जी बहन बताते थे ना, कैसे पहले ही कस्टमर, कस्टमर फर्स्ट, और कस्टमर को हम लोग कैसे रिस्पेक्ट देते, वो लोग भी हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। ऐसे ही पहले हम लोग उनको रिस्पेक्ट देख के प्यार से बातचीत किया तो वो लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा था, फ्रेंडली हो जाते थे। फ्रेंडली में कुछ प्रॉब्लम, लेट हो गया तो सर्विस में क्यों बताए, तो आज के दुनिया में कंप्यूटर और इंटरनेट के तरफ से बैंक चलता है ना, उसे थोड़ा गलती हो गए तो, इंटरप्शन हो गए तो, लेट हो गए तो भी वो संभालते थे। इसलिए हमारा बीच में कस्टमर और मैनेजर के बीच में कभी भी उतना झगड़ा और ये नहीं होता था।
1: जी जी जी जी, चलिए श्याम सुंदर जी, फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं आपके अनुभव सुनने के लिए। तो बने रहिएगा कार्यक्रम सलामी जिंदगी में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आंखों में सपने लेकर कदमों में विश्वास रखते हैं, आंखों में सपने लेकर कदमों में विश्वास रखते हैं, मुश्किलों से लड़कर भी अपनों के चेहरे पर हंसी रखते हैं, अपनी तकलीफ अक्सर दिल में ही छुपा लेते हैं, अपनी तकलीफ अक्सर दिल में ही छुपा लेते हैं। पुरुष है जनाब, जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद को भुला देते हैं, पुरुष है जनाब, जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद को भुला देते हैं। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामे जिंदगी, और सलामे जिंदगी में श्याम सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपके काफी अनुभव सुने हैं और इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। तो श्याम सुंदर जी, जैसे आप बता रहे थे कि जो बैंक मैनेजर के आपकी पोस्ट थी, ये समय आपका बहुत अच्छा बीता और लोगों का व्यवहार, जो क्लाइंट आते वो भी अच्छे और आपका स्टाफ भी अच्छा था, तो कभी किसी को ईर्ष्या भी होती थी कि भाई बंदा तो सबके साथ अच्छा रहता है, क्या बात है? कभी कहते हैं ना कि कोई अच्छे रहते वो भी किसी को पचता नहीं है, तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ ईर्ष्या बस किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो?
3: ईर्ष्या बताए तो बहुत कॉम्पिटिटिव थे सभी ने मुझे, बिजनेस करने का तरीका देख के। मैं तो बैंक में इतना अच्छा बिजनेस करता था, सभी को मेरा मैं कहने के बाद में सभी कस्टमर मान लेते थे, अच्छे अच्छे डिपॉजिट देना है, हम लोग रिक्वेस्ट किया तो, और अच्छे डिपॉजिट देते थे। और हमारा तो बैंकिंग में बहुत बहुत दूसरा दूसरा अलग बिजनेस भी रहता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में SBI लाइफ रहता है, SBI म्यूचुअल फंड रहता है, और वो कस्टमर के लिए बहुत बेनिफिट रहता है। वो सभी कस्टमर को हम लोग ठीक तरीके से बताने के बाद में वो लोग बहुत खुशी हो जाते थे, और वो हम लोग ये सभी को इसके विवरण के बारे में बताए तो उनके फायदे के बारे में बताने के बाद में वो लोग सभी हमारा बात मान के ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो सभी बैंक से परचेस करते थे। इसलिए मेरा बैंक का बिजनेस सभी इमिडिएटली सभी का साथ में बहुत फ्रेंडशिप थे और तो रिलेशन बहुत अच्छे थे, इसलिए जल्दी जल्दी मान के वो लोग सभी लेते थे। वो देखे हमारा दूसरा ब्रांच का मैनेजर सभी बताते थे, आप कैसे ब्रांच में इतना बिजनेस कर लेते हो? हम लोग कितने लोगों को बताए तो वो लोग हम लोगों को बिजनेस नहीं दे रहे हैं, आपको इतना इजी से बिजनेस कैसे होते हो? वो लोगों को बहुत देता। मेरा हर एक दिन में मैं भगवान को बोल के ही जाता था, भगवान मैं आज सभी को दुख नहीं देता हूँ, सभी को खुशी देता हूँ, और मेरे फायदे के बारे में नहीं सोचता हूँ, सभी के फायदे में मैं सोचता हूँ, जगत का कल्याण करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ बोल के मैं बैंक में जाके स्टार्ट करता था बिजनेस, सभी स्टार्ट करता था। इसलिए मैं रात में भी सभी काम होने के सक्सेस होने के बाद में भगवान को थैंक्स बोल के, आज तो बहुत अच्छा हो गया मेरा बैंक का सेवा, थैंक यू, आप मेरा साथ है इसलिए बहुत अच्छा चल रहा है।
2: तो ये बताइए कि फिर आप उधर तो रह लिए, बेंगलोर ही उधर आपकी जॉब थी, ठीक है, तो आप कभी आउट ऑफ स्टेट भी गए?
3: हाँ, बैंक आउट ऑफ स्टेट, हमारा स्टेट बैंक में आउट ऑफ स्टेट सभी को नहीं मिलते, हम लोगों को चाहे तो अच्छे बिजनेस करने वालों को विद इन स्टेट में हम लोग रह देते, और दूसरा बैंक में सभी है ऑफिसर बनने के बाद में अलग अलग स्टेट रहता है, लेकिन हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विद इन स्टेट में थे, लेकिन अलग अलग गांव में हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और अलग अलग ब्रांच में हम लोग काम करना पड़ता था। हम लोग किधर भी काम किया तो फ्रेंडली हो जाते थे और अलग अलग इसमें हम सेट हो जाते, प्लेस में क्लाइमेट में सेट हो जाते थे।
2: और आबू रोड आना कैसे हुआ, आप वीआरएस लेकर के आए या, क्योंकि अभी तो आपकी 58 साल की उम्र है, आजकल तो रिटायर्ड भी 60 साल की उम्र में होते हैं।
3: क्या हो गया मेरा जीवन में, सभी हम लोग क्या क्या अचीव करना है बैंक जॉब में सभी अचीव कर लिया, और हम लोगों को ब्रह्मा कुमारी एक संस्था में हम लोग जुड़ गए, जुड़ने के बाद में मेरा लाइफ में मेरे घर में बहुत शांति आने लगा, दोनों जाके हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों जाके हम लोग क्लास अटेंड करते थे, आध्यात्म के बारे में सभी को हम लोग बताते थे, इसलिए बहुत हम लोग भी खुशी हो जाते थे और दूसरे का जिंदगी भी सुधर जाते थे, बहुत लोग ने जुड़ लिया और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट ज़्यादा ज़्यादा आते लगा, इसलिए मैं क्या किया, मेरा 32 ईयर्स सर्विस कंप्लीट होते ही मैं, मेरा 556 ईयर्स था तभी, मैं तो डिसाइड किया अभी तो मैं वीआरएस लेंगे और भगवान ने सभी दे दिया और आध्यात्मिक में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा विश्व के सेवा के लिए हम लोग हमारा लाइफ पूरा उसमें ही हम लोग लगेंगे बता के हम लोग दोनों मिलके घर में डिसाइड कर दिया, और हम लोग दोनों को बताए तो मैं और मेरा वाइफ को ज़्यादा आशा नहीं थे, वो खरीदी करना बिल्डिंग खरीदी करना है प्रॉपर्टी खरीदना है ज़्यादा ज़्यादा वो सभी नहीं था, इसलिए हमारा लाइफ में सभी आध्यात्मिक से बहुत खुशियाँ मिलते थे, भगवान ने बता दिया ये एक जन्म में आप थोड़े समय में आध्यात्मिक में ज़्यादा आगे जाते रहो और आपको 21 जन्म में आपको खुशी से सतयुग में गोल्डन लाइफ आप जी सकते हो, इसलिए प्रॉमिस किया, इसलिए मैं क्या किया मेरा 50 अप द एज ऑफ 53-54 में मैं वीआरएस ले लिया, और वीआरएस लेने के बाद में हम लोग पूरा जिंदगी ब्रह्म कुमारी हेडक्वार्टर में भगवान का सेवा करते ही उधर जिंदगी बिताएंगे डिसाइड कर दिया,
2: डिसाइड करके आप फिर इधर आ गए। तो इधर आपको भाषा की दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि कहाँ आप कर्नाटका बेंगलोर में रहते थे, भाषा अलग, वातावरण अलग, सब कुछ अलग, ये अलग परिवेश अलग, राजस्थान की भाषा अलग, तो कैसे सेट हुए फिर?
3: सेट तो एक भगवान और उसका प्यार वो सभी देखने के बाद में उनसे कितना उनके साथ में रहे तो उनके याद में रहे तो हम लोगों को कितना उनसे प्यार मिलते हैं वो पाने के लिए, और इधर ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है ना, हर एक जगह से वर्ल्ड से सभी लोग आ जाते हैं, सभी कंट्री का लोग आ जाते हैं, इसलिए उन लोगों को सेवा करना है, हर वर्ल्ड में हर एक को भगवान का संदेश अपने के लिए इधर से ही कोशिश करना बता के हम लोग सभी सैनिक हैं, इधर हमारा तो उधर ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री रहता है लेकिन ज़्यादा 45-47 तक रहता है और उतना कोल्ड नहीं रहता है हमारा जगह पे।
2: जी जी, वातावरण तो काफ़ी चेंज हो जाता है उधर, ना गर्मी ना सर्दी।
3: हाँ
2: तो बहुत अच्छा, तो यहाँ इस तरह आप सेट हो गए क्योंकि पूरी दुनिया यहाँ आती है तो
3: इसलिए।
2: जी जी, तो अच्छा लगता है। चलिए श्याम सुंदर जी, लास्ट में इतना सा कहना चाहूंगी हमारे जो श्रोता बंधु सुन रहे हैं, विशेष करके युवा जो यूथ सुन रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं लेकिन आजकल तो कंपटीशन बहुत है, जॉब नहीं लग पा रही तो वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम छोटी मोटी जॉब क्यों करें, इतनी अच्छी पढ़ाई की है तो अच्छी जॉब करें, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखो पढ़ाई में कंसंट्रेशन करके सक्सेस हो गया, अभी ऐसे ही आपका लाइफ में आप थोड़ा कंसंट्रेट करके आपको कौन सा इंटरेस्टेड है जॉब में, आप उसमें ज़्यादा बड़ा छोटा मत देखिए, आपका एजुकेशन के लेवल कौन सा जॉब मिलता है पहले उधर ज्वाइन कर दीजिए, नहीं तो अच्छे बिजनेस में उसमें भी आप जा सकते हो। और दूसरा सोशल वर्क रहता है और अलग अलग तरीका, बहुत अपॉर्चुनिटी तो ज़्यादा है अभी, तो पहला उतना अपॉर्चुनिटी नहीं था, अभी तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। कौन सा ही फील्ड में आपको अच्छे लगे तो उधर से आपको थोड़ा इनकम भी होना है, आपको लाइफ भी थोड़ा सेटल होने के लिए, आप कौन सा ही जॉब पहला मिलता है और वो जॉब में कंटिन्यू करके और आपका प्रमोशन होते रहता है, बाद में आपको अच्छे मिल जाता है, लेकिन कौन सा मिलेगा आपको बिजनेस जॉब, उसमें आप जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। और आशा रखिए हमारा लाइफ अच्छे बन जाता है, वो आशा रखिए, आप निराशा मत हो जाके आप लाइफ कंटिन्यू करके आगे बढ़ाइए।
2: बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है, तो आपको ऐसे नहीं सोचना कि ये छोटी जॉब है या बड़ी है, एक बार आप एंट्री कर लीजिए फिर धीरे धीरे धीरे आप आगे बढ़ ही जाएंगे। तो श्याम सुंदर जी, बहुत सुंदर आपने मैसेज दिया, आपने अपने जीवन के अनुभव भी सुनाए, आपने अपना कीमती समय निकाल करके रेडियो मधुबन के स्टूडियो में हमारे सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू रेडियो मधुबन और सभी मेरी प्यारी भाइयों बहनों सभी को मेरा नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सलामे जिंदगी, जिसमें श्याम सुंदर जी बेंगलोर से बने हुए थे हमारे सभी के सामने, और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप चीफ मैनेजर के पद से आप निवृत्त होकर के आबू तलेटी में अभी वर्तमान में रह रहे हैं, और आपके अनुभव कितने गहरे थे जो आपने सुना है कि किस तरह 7 साल की उम्र में आपके पिताजी गुजर गए और सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई, आपने स्वयं को संभाला, परिवार को संभाला और कैसे आप पढ़ाई में अव्वल रहे, आपके द्वारा सुना है। तो ऐसे भारत देश के बेटे को, ऐसे भारत देश के नागरिक को रेडियो मधुबन सलाम करता है, नमन करता है। प्यारे भाइयों, आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: साथियों और श्रोताओं, आज फिर से एक बार आपका होस्ट और दोस्त, बट इस बार हम लोग रिमोट से नहीं, स्टूडियोज में हैं, और स्टूडियोज से आपके साथ हूं मैं, आपका होस्ट शरद। तो आपका फेवरेट प्रोग्राम है जुनून, और जुनून आप जानते ही हैं, आप सुनते हैं हर बार, हर शनिवार शाम 6 बजे आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 पर। और इस बार है दो शानदार गेस्ट हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में, और स्टूडियोज आपको तो पता ही है आबू रोड पे है ना, मधुबन के कैंपस में हम बैठे हैं हमारे स्टूडियोज में, और हम आज स्वागत कर रहे हैं हमारे दो गेस्ट। दोनों ही यंग हैं, हमारे बिजली चैलेंज साथी हैं, कोमल और प्रतिभा। तो प्रतिभा जी, आप दोनों ही का हमारे स्टूडियोज में स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपके बारे में, मैंने ये तो बताया है कि आप बिजली चैलेंज हैं, हमारे दृष्टिबाधित साथी हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी डिसेबिलिटी जो है वो क्या है, अभी उसकी क्या स्थिति है। पहले मैं कोमल आपसे जानना चाहूँगा।
1: यस, तो मेरी डिसेबिलिटी है कि मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ
0: जी,
1: और मेरी माँ भी एक पार्शल ब्लाइंड है, जिसकी वजह से मुझे ये डिसेबिलिटी आई।
0: जी। हाँ, तो ये जेनेटिकली आपको ट्रांसफर हुआ है। जी। और प्रतिभा जी, आपकी क्या कहानी है डिसेबिलिटी एक्वायर करने की?
2: सर, मेरा बाय बर्थ ही है, मुझे ग्लूकोमा है, मैं भी पार्शली ब्लाइंड हूँ।
0: जी। बहुत ही बढ़िया। तो डेफिनेटली आपने अपनी स्टडीज तो पूरी की होंगी है ना, तो थोड़ा सा आपका एक जुनून है जो मैं श्रोताओं को थोड़ी देर बाद बताऊंगा है ना। हालांकि कार्यक्रम का नाम जुनून है, लेकिन श्रोताओं को थोड़ा वेट तो करना चाहिए ना, इतना आसानी से हम नहीं बताएंगे चीजें। तो श्रोताओं, पहले हम इनके बारे में जानना चाहेंगे। तो इन दोनों ही हमारी बेहतरीन गेस्ट हैं,

0: पेरेंट्स ने मुझे दादर में जो हमारी गर्ल्स स्कूल है श्रीमती कमला मेहता दादर स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें मुझे डाला। तो मैं 2006 में मैंने एडमिशन लिया स्कूल में
1: जी।
0: तब से मैंने 12th तक उधर पढ़ाई की है
1: जी।
0: तो 12th के बाद मैं बाहर आ गई
1: जी।
0: तो 12-13 साल मैंने हॉस्टल में निकाले
1: जी जी।
0: के बाद मैंने पढ़ाई मैंने फर्स्ट मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने यूनिवर्सिटी से की है
1: जी।
0: ऑनलाइन ही सब उस पर था जब कोरोना चल रहा था तभी
1: जी। जी
0: मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया है
1: जी।
0: अंधेरी में है
1: जी।
0: ऐसी मेरी पढ़ाई अब तक हुई है।
1: पर आप अभी अंधेरी रहते हैं?
0: नहीं नहीं मैं बोईसर रहती हूं
1: जी। जी मुंबई का सबअर्बन एरिया है ये जी। तो हमारे साथ प्रतिभा जी भी हैं। तो प्रतिभा जी आप थोड़ा सा बताएं ना अपनी अध्ययन की यात्रा के बारे में, आपने कैसे पढ़ाई की और यहाँ तक कैसे पहुँचे?
2: जी सर, मेरा पढ़ाई तो नॉर्मल स्कूल में हुआ है। मैं नांदेड़ जिले से एक छोटे से गांव की हूँ, बेलगुजरी, ये गांव में मेरा पढ़ाई हुआ है। तो मेरा दिखने का प्रॉब्लम है वो माता पिता को पता ही नहीं चला, और उनको इतना भी पता नहीं था कि स्पेशल मतलब हमारे लिए स्पेशल स्कूल वगैरह होते हैं, वहाँ डालना होता है, वो सब पता नहीं था। तो मेरा पूरा पढ़ाई का जर्नी नॉर्मल स्कूल में ही हुआ है
1: जे.
2: तो मुझे बोर्ड के ऊपर का दिखता नहीं था, फिर भी मैं सुन सुन के वो पूरा किया है। तो किसी को पता ही नहीं चला कि मैं ब्लाइंड हूँ ऐसे
1: जी। जी आशुतोष, वैसे पढ़ाई तो हमारी नॉर्मल स्कूल या जिसे कहते हैं हम सामान्य मेन स्ट्रीम स्कूल, तो मेन स्ट्रीम स्कूल में ही होनी चाहिए। और जहाँ पर चुनौती किसी दृष्टिबाधित या किसी दिव्यांग व्यक्ति को विशेष तरह की आ रही है तो उसके लिए विशेष सेशंस या क्लासेस अलग से लगाई जानी चाहिए, ये प्रावधान है हमारे देश के कानून का। हालांकि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी ना होने के कारण वो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। अब समय आ गया है एक कुछ इंतजार के बाद जानने का हमारे दोनों ही गेस्ट के जुनून का, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है जुनून। और श्रोता सोच रहे होंगे क्या पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही है, आइए ना जुनून की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल श्रोता, थोड़ा धैर्य तो रखिए, मैंने हर बार कहा है आप जुड़े रहें, सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर जो आप सुनते हैं 107.8 FM पर हमारे आबू रोड और माउंट आबू की वादियों से, और हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन पर। तो जुनून है श्रोताओं मलखम का। मलखम हमारे देश का एक इंडिजिनस गेम, इसने हजारों सालों तक हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया, सलीका सिखाया, और मलखम अब जगह बना रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। लेकिन मलखम के साथ खास बात है इन दो जुनूनी लड़कियों और कहें कि हमारी बेटियां, ये इस तक कैसे पहुंची हैं, आइए ना उनके बारे में जानते हैं। तो मलखम के बारे में कोमल हम जानना चाहेंगे, मलखम क्या है श्रोताओं को थोड़ा बताइए ना जिन्होंने नहीं देखा है या नहीं जाना है।
0: बेसिकली मलखम एक एज अ स्पोर्ट्स करके जाना जाता है अभी
1: जी।
0: और मेरी मलखम से दोस्ती मैं कहूँगी कैसे हो गई, तो बचपन से ही जब मैं स्कूल में एडमिशन लिया एक साल हो गया, तो हमारे स्कूल में एक पीटी का क्लास होता है
1: जी।
0: तो उस पीटी में हमें मलखम भी इंट्रोड्यूस कराया गया था
1: जी।
0: जब मैं 6 साल की थी तब
1: जी।
0: तो हमारे जो मतलब श्री समर्थ व्यायाम मंदिर से सर आते थे देशपांडे सर, तो वो हमें सुबह का 1 घंटा क्लासेस देते थे। तो उस क्लासेस में मुझे मतलब गेम्स तो हम ऐसे खेलते भी थे, भागना दौड़ना या लपन छुपाई खेलना ऐसे, पर ये मलखम एक अलग ही चीज है। तो ऐसे हमने कभी देखा नहीं था कि रस्सी पे चढ़ के भी हम कुछ कर सकते हैं। तो ये मुझे अलग लगा, और मेरे में तब भी ऐसी क्षमता थी कि मैं ऐसे भागती दौड़ती बच्ची थी
1: जी।
0: तो मुझे ऐसे पसंद था। तो सर ने मैडम ने वो मेरा जुनून देखा और मुझे वो सिखाया
1: जी।
0: तो अभी मैं 12-13 मुझे साल हो गए कि मैं इस क्षेत्र में मेरा जो योगदान है मैं देती हूँ
1: जी। जी मलखम के बारे में आप क्या जानते हैं प्रतिभा जी, आप कैसे? देखिए हम ये रेडियो माध्यम के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो मलखम जब कोई खेलता है तो वहां पर क्या दृश्य बन रहा होता है, हमारे श्रोताएं भी अभी हमारी तरह विजुअली चैलेंज है क्योंकि वो नहीं देख पा रहे हैं, हमें उनको इमेजिनेट करवाना है। तो मलखम कैसे खेला जाता है, थोड़ा उसके नियम भी बताइए, कुछ और बताइए मलखम के बारे में प्रतिभा जी।
2: जी सर, मलखम एक

0: खेल है तो मलखांब यानी एक लकड़ी होती है, लकड़ी जमीन के ऊपर 6-7 फुट ऐसे एक लकड़ी होती है, उसके ऊपर अलग अलग तरह के योगा के आसन हम लोग जैसे जमीन पे करते हैं वैसे सेम आसन वो लकड़ी पे बैठ के खड़े रह के और सब ऐसे आसन कर सकते हैं। उनका स्पेशल ऐसा यूनिफॉर्म वगैरह ऐसा नहीं होता है, एक शॉर्ट्स पहनना होता है और एक टी शर्ट, उसके ऊपर लड़कियां करते हैं और लड़के लोग करते हैं तो सिर्फ वो शॉर्ट्स पहनते हैं और वो कर सकते हैं। तो एक मलखांब करने से उनको मतलब सबको इतनी एबिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी और कंसंट्रेशन, एक स्ट्रेंथ भी आ जाती है और इस मलखांब करने से और बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ताकि तुम लोग कौन से भी परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं, ये मलखांब से मिलता है।
1: जी, मलखांब के दो वेरिएंट बताए जाते हैं, खेलने के दो तरीके, एक रोप और एक पोल, तो दोनों में क्या अंतर देखते हैं कोमल आप?
2: बेसिकली रोप मलखांब जो होता है वो कॉटन का बना होता है
1: जी,
2: तो वो एक रस्सी जैसे रोप हम जैसे बोलते हैं ना वो होता है
1: जी,
2: और जैसे अपने प्रतिभा ने बोला है कि पोल मलखांब जो एक हमारा वुडन का खाम रहता है
1: जी,
2: वो 8 फुट तक रहता है वो
1: जी,
2: तो उसपे सब हम योगा वगैरह करते हैं
1: जी,
2: तो ये डिफरेंस है
1: जी जी। हाँ, जो एक खंबा है उसके ऊपर फिर हम अपनी अलग तरह की पोजीशन,
2: उसमें भी क्या होता है कि खंबे में हम जब करते तो एक टॉप लेवल हमारा जैसा शरीर होता है ऊपर से लेके नीचे तक सर है, तो हम उसे एक बोंडा मतलब बोंड कहते हैं, जो हमारा गले तक का ये है उसको हम खाच कहते हैं, नीचे की पूरी बॉडी, तो टॉप पे रह के अलग अलग योगा होते हैं, बीच में रह के अलग अलग होता है और नीचे एक ऐसे 3 लेवल होते हैं
1: जी, जी जी। निश्चित रूप से एक एडवेंचरस खेल है और निश्चित ही इसमें करने के लिए हमें एक स्ट्रेंथ या कहेंगे शक्ति चाहिए होती है। तो आपने जो शुरुआत कोमल जी ने अपने बारे में बताया कि वो खेलते कूदते थे, और प्रतिभा जी आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई इस मलखांब के साथ में?
0: सर, मैं शिवाजी पार्क में एक बार रनिंग के लिए गई थी, वहाँ पे मुझे ऐसे पोल वगैरह दिखाई दिए थे और मेरी एक रूम पार्टनर वगैरह थी, वो लोग ऐसे बात करते थे रोप मलखांब और डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह ऐसे बात करते थे, और मैं तो गांव से बिलोंग करती थी तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था ये सब चीज के बारे में, तो मैं ग्राउंड पे गई थी तभी मुझे पता चला, तो मैं जाके वहाँ पे इंक्वायरी की और देशपांडे सर ने मुझे बोला कि तू आ सकती है, तो सर ने ही मुझे एक शॉर्ट्स दी थी 2 साल पहले, अभी तो वो शॉर्ट्स भी मेरे पास है और वो शॉर्ट्स ही मैं अभी तक कर रही हूँ। तो मतलब ये है कि सर ने बहुत एफर्ट्स लेते हैं हमारे लिए, मतलब हम लोग को दिखता नहीं फिर भी लोग बोलते कि हाँ दिखता नहीं, तो मैं इतना कठिन आसन उसको कैसे सिखाऊं वगैरह ऐसे होता है, बट सर ने बहुत दिल पे लेके बहुत अच्छे से सिखाए है, तो मैंने तभी से जैसे जैसे मेरा पढ़ाई का एग्जाम का टाइम आता है तभी मैं थोड़ा छुट्टी वगैरह ले लेके और डेली आके मैं थोड़ा टाइम निकाल के वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी, तो तभी से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है कि पोल मलखांब और रोप मलखांब में करती।
1: जैसा कोमल ने बताया है कि निश्चित रूप से एक इसमें स्ट्रेंथ की आवश्यकता है और थोड़ा सा ये कठिन खेल माना जाता है, और मुझे लगता है आप दोनों यूनिक साथी हैं, विजुअली चैलेंज साथी हैं जो शायद इस खेल को अपने जीवन में अपना रहे हैं। आगे की दृष्टि में मुझे तो अभी उत्तर भारत में तो मेरा ऐसा संपर्क नहीं हुआ किसी विजुअली चैलेंज से, लेकिन हाँ हो सकता है हमारे और भी साथी कुछ कर रहे हो। हालांकि खेलों की दृष्टि से अभी देखा जाए कि ओलंपिक में पिछले सालों में विजुअली चैलेंज व्यक्तियों ने अच्छा परफॉर्म किया है, और चूंकि आप दोनों भी एक खिलाड़ी हैं और आप एक इंडिजिनस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, खेल का भविष्य भी आपको अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पे आगे लेके जाएगा, आपकी भी खेल की जर्नी हो सकता है शुरू हो जाए आगे। लेकिन इस अभी जो समय है, मुझे प्री इस बातचीत से पहले कुछ बातचीत जब हमारी हो रही थी तो उसमें मालूम चला कि आप लोग मुंबई के उस इलाके में रह रहे हैं, दूर के इलाके में रह रहे हैं, और जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो रही है वो दादर में है, वो जगह आपका स्कूल है ना, कमला मेहता आपके स्कूल का नाम मुझे बताएंगे? कोमल मिस कर गया,
2: कमला मेहता दादर स्कूल फॉर।
1: यस यस यस, तो आपका जो स्कूल बताया आपने दादर में, तो इस स्कूल तक की एक लंबी यात्रा सुबह और वो भी मुंबई के ट्रैफिक में आप कैसे मैनेज करते हैं और कैसे अपने रूटीन में इसको जारी रखे हुए? कोमल, मैं आपसे
2: जब मैं स्कूल में थी तब तो सब ऐसे सुलभ ही था कि स्कूल से लेने जाने के लिए बस थी, आने के लिए बस थी, जैसे कोई दिक्कत नहीं आती थी। पर जब मैंने स्कूल छोड़ा और जब खुद पे ट्रैवलिंग की बात आई तो सोचा कि अभी कैसे किया जाए, तो क्योंकि मैं बोईसर में रहती हूँ और बोईसर और दादर ट्रेन से 2 घंटा लगता है, 2 घंटा जाने में 2 घंटा आने में। तो तब मेरे ऐसे मतलब मैं ट्रैवलिंग करते करते मुझे थोड़ा सा समय लगा सब समझने में करने में। तो तब से मैंने मतलब एक जुनून तो था कि बाबा करना ही है, प्रैक्टिस तो जारी रखनी ही है, बीच में गैप नहीं आना देना है। तो मैं और एक मेरी फ्रेंड थी वो भी पार्शियली ब्लाइंड है, तो हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं। तो उस तरह से मेरी ट्रैवलिंग का सफर चालू हुआ घर से शिवाजी पार्क तक का।
1: जी हाँ, मुंबई एक विजुअली चैलेंज व्यक्तियों के लिए कंसेप्ट शहर माना जाता है और वहाँ की भगमभग वाली जिंदगी में हमें कोई इधर से टक्कर दे रहा है, कोई उधर से टक्कर दे रहा है, और अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो और भी मुश्किल है। तो आप अपनी मोबिलिटी कैसे मैनेज करते हैं प्रतिभा जी?
0: सर मैं तो थोड़ा पार्शियली हूँ तो इतना दिक्कत आता नहीं है, फिर भी भीड़ में होती है। तो बॉम्बे के लोग बहुत सपोर्टिव है हमारे लिए, तो कितना भी भीड़ रहने दो, कितना भी ये होने दो, हम लोग का बहुत ख्याल रखते हैं। तो बॉम्बे सिटी ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत अच्छी सिटी है।
1: अच्छा, चाहे लोकल की बात हो चाहे बीएसटीसी की बात हो,
0: कहीं पर भी सर, कहीं
1: जी,
0: पर भी।
1: जी,
2: मतलब तो, थोड़ी सी दिक्कत आती है पर इतनी दिक्कत नहीं आती कि जैसे दूसरे शहर में हम देखते हैं, तो वैसी दिक्कत नहीं आती।
1: जी जी जी, नहीं मुंबई वैसे भी 24 आवर चलता है, चलता हुआ शहर है और आपके जुनून में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। और मुंबई के बारे में तो कहते हैं ना कि जुनूनियों का शहर है, तो कुछ जो कुछ ना कुछ जीवन में हासिल करने आए हैं। तो आप भी वेलकम को लेकर अपने इलाके नांदेड़, और आपने बताया कोमल का बोईसर, यस, तो बोईसर और नांदेड़ से आप दोनों आके और मुंबई में अपनी जगह बना रहे हैं, वो भी दादर जो कि मुझे लगता है शहर के कहीं बीचों बीच है। तो इस पूरी प्रक्रिया में मलखम के बारे में कुछ यूनिक बातें कोमल बताइए ना। ये जुनून देखिए क्या है ना कि एक शौक होता है और एक जुनून होता है, तो जुनून तक की यात्रा जो है ना वो कैसे हो गई कि नहीं अब नहीं छोड़ेंगे ना, अब तो करना ही है, और इसमें आप क्या आगे प्लानिंग कर रहे हैं कुछ नया करने की, एज अ ट्रेनर और विजुअली चैलेंज लोगों के साथ जुड़ने की क्या योजना है?
2: स्कूल में थी तो ऐसे मतलब मुझे ऐसे फिजिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होता था, मैं बहुत बार महीने में 1-2 बार तो बीमारी पड़ जाती थी।
1: जी जी,
2: तो जब मैंने क्लास शुरू की तो सर ने थोड़ा थोड़ा हमें बताना शुरू किया कि मतलब मलखम के बारे में कि आप जब करोगे तो थोड़ा सा जो हमारी फिजिकल जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब जब बुखार आता था खांसी सर्दी वो लगे इन्फेक्शन वगैरह पकड़ जाते थे वो कम हो जाएंगे, हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। मतलब तब ऐसा होता था कि पढ़ाई में भी हम मैं तो इतनी अच्छी नहीं थी, एवरेज से भी थोड़ा सा कम ही थी, तो फोकस इतना नहीं था। तो जब मैंने मलखम शुरू किया तब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट बढ़ने लगा मेरे में। तो कभी मेरे 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, कभी 80 से ऊपर मुझे परसेंटेज आने लगे। तो ऐसा मलखम का मेरा एक अच्छा सा अच्छा अनुभव अभी तक मेरे साथ है।
1: जी, आपने सीधा बदलाव अपनी पढ़ाई और अपनी स्टडीज में देखा,
2: में और हेल्थ में देखा,
1: हेल्थ में देखा आपने, तो हेल्थ में क्या बदलाव आपने देखे? मतलब मैं देखता हूँ मलखम एक विजुअली चैलेंज व्यक्ति होने के नाते मलखम वाले जो व्यक्ति होंगे थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना, या बॉडी पे चेहरे पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, कुछ ऐसे बदलाव आते हैं?
2: हाँ बदलाव तो आते हैं बहुत, मतलब मुझे पहले ना ऐसे बोलने भी दिक्कत आती थी, स्टेज का फियर जो होता है, कैमरे के सामने बोलना या माइक पे बोलना, तो वो बहुत मुझे डर लगता था। पर अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ या रेडियो सेशन पे बात कर रही हूँ तो उतना मुझे डर नहीं है मलखम की वजह से।
1: जी प्रतिभा जी, आप बताइए ना आपके जुनून की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जैसा बताया कि आप लोग सुबह सुबह मुंबई में कितने बजे उठते हैं प्रतिभा जी सुबह अपने एकेडमी पहुंचने के लिए, आप स्कूल पहुंचने के लिए जहां पर आपकी ट्रेनिंग हो रही है?
0: 4 o'clock।
1: और फिर उसके बाद आप वहां पर 1 घंटे में पहुंचते हैं?
0: 4 o'clock पे उठती हूँ, उसके बाद मैंने फ्रेश होके 5 बजे ट्रेन पकड़ती हूँ, 6:30 बजे तक ग्राउंड पे पहुंच जाती हूँ श्री समर्थ व्यायाम मंदिर। वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा खुद का एक राउंड रनिंग वगैरह करना होता है, बाद में सर 7 to 8 सर क्लास ले लेते हैं।
1: जी जी जी, कोमल आप भी ऐसे यात्रा कर रहे हैं सुबह?
2: हाँ, मैं तो 3:30 बजे मुझे उठना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो सब खुद का टिफिन वगैरह बनाना, मतलब मैं कुक भी करती हूँ, मतलब खुद का खाना बनाना भी मुझे पसंद है।
1: जी, जी।
2: तो खाना बना के लेके जाना और 7 बजे के पहले या 7 बजे तक पहुँचना, 7 से 8, जैसे प्रतिभा ने बोला सर, देशपांडे सर हमारा क्लास लेते, तो हम जब क्लास में जाते हैं तब ऐसा नहीं कि हमारा अलग और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनका अलग, सबका साथ में लेते, क्योंकि पता चले कि हम भी कैसे करते हैं या सर भी हमें कैसे सिखाते हैं। तो ये अभी हम जब क्लास में जाते हैं तब लड़के लोग को पता चलता है कि हमको क्या डिफिकल्टीज आ सकती है या हम क्या फेस करते हैं, तो ये सर के वजह से पता चलता है उधर।
1: जी, और भी कुछ दिव्यांग साथी हैं आपके साथ में जो मलखम कर रहे हैं वहाँ पर अभी?
2: ना, ऐसे बहुत सारी एक्चुअली बच्चियाँ हैं, पर क्या होता है कि वही कि डेली आना ये किसी को पॉसिबल नहीं होता, तो जिसको जैसा वक्त मिले वो वैसे प्रैक्टिस को आता है, प्रैक्टिस करके चला जाता है, पर है बहुत सारी लड़की है।
1: जी जी, प्रतिभा जी, ये जो हम बात कर रहे हैं फिर से हम उसी बात पे आएंगे कि जुनून एक बात है और जुनून की ही बात हमको देखनी है, तो आप मलखम के साथ में अपना भविष्य क्या देखते हैं, मतलब आप इसको एज अ करियर अपनाना चाहेंगे या सोचते हैं कि नहीं ठीक है हम इसको अपने फिटनेस के लिए अपने जीवन का पार्ट रखेंगे और जो हमसे सीखना चाहेगा वो उसको सिखाएंगे, आपका क्या प्लान है?
0: जी सर, मलखम ये एक स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स या एज अ फिटनेस यहाँ तक ही सीमित रखना नहीं है, तो मलखम को आगे, मतलब आगे जैसे एशियन गेम होता है वो सब गेम में भी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए, बाकी खेलों जैसा वो खेल को भी प्रावीण्य मिलेगा, तो हम लोग का भी भविष्य उसमें से बन जाएगा। इसके लिए मलखम एक बहुत अच्छा खेल है, वो खेल को मान्यता मिलनी चाहिए।
1: जी, आपने स्टूडियो से सरकार के सामने एक मांग भी रख दी है।
0: जी हाँ सर।
1: जी, निश्चित रूप से अगर हमारे नीति निर्माता सुन रहे हैं जो खेलों को देखते हैं या हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय के जो माननीय मंत्री जी हैं, निश्चित रूप तक आपकी बात वहाँ तक पहुँचे और वो भी इसको लेकर कुछ प्रयास करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं।
0: धन्यवाद सर। इसके लिए सर भी हमारे अलग अलग देशों में जाके ये पोल मलखम, रोप मलखम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि ऐसे माना जाता है कि जहाँ जहाँ खेल होता है, मतलब ऐसे खेल बहुत जगह पे जो खेल खेला जाता है उसको फर्स्ट मान्यता मिलती है, ऐसे बहुत जगह होता है, मतलब सुना है, तो इसके लिए ये स्पोर्ट्स को और ये पोल मलखम को बहुत जगह हमारे सर बहुत देशों में जाके उसका प्रचार कर रहे हैं, ताकि सबको पता चले, जल्दी वो पोल मलखम को मान्यता मिले।
1: जी, तो कोमल जी, आप कौन कौन से आसन करते हैं सुबह 7 बजे जब पहुंच जाते हैं वहां पर, तो रोप मलखम के साथ में किस किस प्रकार से मूवमेंट्स होते हैं, मूव्स कैसे होते हैं, थोड़ा सा और बताएं ना हमारे श्रोताओं को।
2: तो हम, हमारा जब क्लास शुरू होने से पहले हम वार्म अप करते हैं, जैसे प्रतिभा ने बोला रनिंग तो कंपलसरी करना ही होता है। रनिंग के बाद हमारा एक स्पेसिफिकली वार्म अप होता है, तो उस वार्म अप में भी मतलब हाथ के वेरिएशंस, लोअर बॉडी के वेरिएशंस वगैरह ये सब डिसाइड होते हैं, तो वो हमें कंपलसरी करना ही रहता है। तो उससे क्या होता है कि हम मलखम करने से पहले हमारी बॉडी जो वार्म हो जाती है, तो वो करने में इजी हो जाता है। तो वार्म अप नहीं करेंगे और सीधा सा रोप करने लगेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, ऐसा वो होता है, तो वैसे शुरुआत करते हैं हम। और रोप में जब करते हैं तब अभी मतलब मेरे लाइफ के हिसाब से देखती हूँ, तो मैं मेरे फिटनेस के हिसाब से रोप को देखती हूँ, वो तो अच्छी बात है कि वो मलखम को आगे ले जाना भी बहुत जरूरी है, लोगों तक पहुंचना। जैसे सर ने, सर हमारे बहुत आउट ऑफ इंडिया या इंडिया में भी बहुत जगहों पे हमें लेके जाते हैं, जैसे बेसिकली मैं बहुत सर के साथ घूमी हूँ मलखम के लिए बचपन से ही, तो मुझे, मैंने सर को बचपन से ही देखा है, तो कैसे वो दूसरों को सिखाते और मुझे भी, मतलब मैं जितना सीखी हूँ तो वो मैं मेरे ब्लाइंड जो स्टूडेंट है उनको सिखाने में भी जाती हूँ। और अभी क्या है, अभी हमारे स्कूल में, मतलब मैं जहाँ पढ़ी हूँ उधर भी हमारे मंगलवार और गुरुवार मलखम के क्लासेस होते हैं, तो हमारे जो दूसरे ताई है, नीता ताई ताटके, तो उनके साथ मैं 7:30 से 8:30 तक मलखम का क्लास देने जाती हूँ।
1: जी जी जी, जी निश्चित रूप से आपने अपना रूटीन में तो शामिल किया है, और आपने कुछ ऐसी बातें भी छेड़ी हैं कि विजुअली चैलेंज व्यक्तियों के साथ निश्चित रूप से एक चैलेंज है कि वो उनको कुछ भी जीवन में अपना अपनाना है या जुनून बनाना है उसमें एक उनको संघर्ष की जरूरत है। लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग बात बीच में रखी कि आप अपना खाना भी खुद पकाते हैं, तो जुनून में तो आपको पता है इस पर बहुत सारी बातें हम लोग भी आने वाले दिनों में बात करना चाहते हैं कि विजुअली चैलेंज व्यक्ति का खाना बनाने का मतलब है कि आग के साथ खेलना है ना, तो वो भी एक चैलेंज है और चुनौती है, तो उसको भी करते हैं आप। खैर उस पर हम कभी फिर कभी बात करेंगे, और कितनी मात्रा में हमें मसाला डालना है, कितनी मात्रा में हमें डालना है, तेल पक गया कि नहीं पक गया ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर इस रसोई पर तो भी हम जाएंगे, और एक ब्लाइंडनेस के साथ रसोई में घुसने की बात है और उससे सक्सेसफुली कुछ सुगंधित बना के बाहर लाने की बात है, तो इस यात्रा पर कभी और बातचीत होगी किसी और जुनून के शो में। लेकिन अभी तो हम बात हमारे जुनून की कर रहे हैं जो कि मलखम से संबंधित है, और मलखम में हम ये देख रहे हैं कि हमारी कलाइयाँ और हमारे कंधे कितने मजबूत हैं, राइट। तो प्रतिभा जी मुझे बताएं ना थोड़ा सा कि इस 7 से 8 का जो समय है उस समय क्या हो रहा होता है, मतलब मैदान में मुझे लगता है कुछ लोग पसीना बहा रहे होते हैं, कुछ लोग इधर कसरत कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ रस्तों के ऊपर प्रयास कर रहे हैं, तो आप जिस रोप के साथ प्रयास कर रहे होते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिकली एक ब्लाइंड व्यक्ति को और एक सामान्य व्यक्ति को कुछ अलग व्यवस्थाएं करने की जरूरत पड़ती है या खेल के नियम वही रहते हैं?
0: नहीं सर, सबके लिए सेम नियम होते हैं और सबका क्लास साथ में लिया जाते हैं, और सुबह जब क्लास स्टार्ट होता है 7 to 8 तभी माहौल इतना अच्छा रहता है वहाँ पे, बहुत ऐसा दिल लगता है, और सुबह कभी 7 बजते ऐसा इसका इंतजार कर लेते हैं हम लोग इतना अच्छा लगता है, कभी उठने का कंटाला नहीं आता, ऐसे डेली भी जाना बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, और जाने के बाद बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, रोज एक नया आसन सीखने के लिए मिलता है, रोज नया एक्टिविटी, रोज नए लोग, ऐसे सब सीखने के लिए मिलता है वहाँ पे, बहुत विजिटर भी आते हैं मिलने के लिए, तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है वहाँ जाने के बाद।
1: जी तो हम लोग पिछले दिनों कोमल जी, हम पिछले दिनों बात कर रहे थे तो मुझसे किसी ने पूछा कि ऐसे कौन से खेल हैं जो ब्लाइंड व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति साथ में खेल सकता है, तो मैंने कहा चेस। तो चेस कैसा खेल है जो हम सामान्य रूप से दोनों अक्रॉस खेल सकते हैं, और मजा तो तब आता है जब कोई ब्लाइंड व्यक्ति सामान्य व्यक्ति को चेस में हरा दे तो उस दिन वो मतलब कुछ ये टाइप मोमेंट होता है उसमें ना। तो मलखम भी एक ऐसा खेल है जो मुझे लगता है अब आपसे बात करने के बाद समझ में आया कि कोई अलग नियम नहीं है, और मलखम में भी एक सामान्य व्यक्ति और एक नेत्रहीन व्यक्ति साथ में इस खेल को खेल सकते हैं, ये बात मुझे समझ में आई। कोमल जी आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे और कौन से खेल आपको समझ में आते हैं?
2: चेस जैसे बोला आपने खेल सकते हैं, मलखम भी वैसे तो कोई मतलब हम अपने हमने अभी ऐसे कोई टूर्नामेंट्स वगैरह नहीं खेली है, मतलब मुझे वो टूर्नामेंट्स करने में इतना कोई रस नहीं है, मुझे मेरे सिर्फ हेल्थ की वजह से मैं ये करती हूँ। और ऐसे कौन से गेम है
1: जी? खैर लेकिन मैं इस पर आता हूँ कि ब्लाइंड व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है इंडिपेंडेंट मूवमेंट, मोबिलिटी और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ना। तो मोबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब आप मोबिलिटी के साथ कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे स्टेप्स आते हैं या आपके साथ बहुत सारी बाधाएं बीच में आती हैं, ठोकरें आती हैं, हर्डल्स आते हैं, तो एक मलखम ने आपके जीवन में कुछ क्या बदलाव किया है जिससे आपकी मोबिलिटी अच्छी हुई है, खासतौर पर बस से चढ़ना, बस को उतरना, ट्रेन में चढ़ना, ट्रेन से उतरना,
2: मतलब मलखम के वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इंसान में कॉन्फिडेंस होना वो तो कुछ भी कर सकता है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, तो उसके वजह से क्या है, रस्ते पे चलना, ट्रेन पे ट्रेवल करना, उतरना, बस से चढ़ना उतरना, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बाबा नहीं डर लगता। मतलब मलखम एक ऐसा है कि उसमें स्ट्रेंथ तो बहुत लगती है, ताकत बहुत लगती है, फोकस भी बहुत होना पड़ता है, जब मतलब पैर अच्छे से नहीं लगा तो गिर भी सकते हैं, ऐसा भी डर होता है, तो इस वजह से कॉन्फिडेंस तो लेवल हो जाता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे मुझे डेली लाइफ में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती ट्रैवलिंग में या किसमें भी।
1: प्रतिभा जी आपको कैसे अपनी मोबिलिटी और आपका जो डेली लाइफ है खासतौर पे फिर आप दिन में क्या कर रहे होते हैं? आप लोग अपने कॉलेज जा रहे होते हैं या दिन में कुछ अपना अध्ययन किस प्रकार से कर रहे होते हैं?
0: जी सर, सुबह

0: सब एक्टिविटी पार करके पोल मलखाम वगैरह ग्राउंड से हम लोग, मैं अभी जैसे कि पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी जाती हूँ, उसके साथ साथ मैं इवनिंग में पावर लिफ्टिंग का भी प्रैक्टिस करती हूँ। दूसरा गेम है उसका भी 6 to 8 तक उसका प्रैक्टिस होता है, वो प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो मुझे सुबह जो मुझे जो स्ट्रेंथ मिलता है और सुबह का जो कॉन्फिडेंस है वो लेके मैं पूरा दिन भर पढ़ाई वगैरह कर लेती हूँ, और शाम में भी वही वजन उठाना वगैरह होता है पावर लिफ्टिंग में, वो भी कर लेती हूँ। तो इसीलिए मोबिलिटी का इतना दिक्कत नहीं होता, ताकि जब पोल मलखाम करते हैं ना तभी स्टेप बाय स्टेप करना होता है। वैसे भी अपने जीवन में भी जब रास्ता चलते हैं हम लोग, तभी भी खड्डा आएगा तो थोड़ा साइड में चलना होता है, कोई सामने से आएगा तो, और ऐसे रास्ता पार करते समय किसी का हेल्प लेना, वो सब हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। तो इतना हम लोग को ट्रैवलिंग करते टाइम चलते टाइम इतना दिक्कत आते नहीं है।
1: और बेसिकली क्या होता है कि ब्लाइंड स्कूल में सिखाया जाता है, मतलब प्रतिभा ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया पर मैंने किया है कि ब्लाइंड स्कूल में मोबिलिटी के क्लासेस दिए जाते हैं। तो रास्ते पे केन लेके कैसे चलना है, केन कैसी चलानी है, तो वो सब हर्डल्स है वो कैसे पार करते हैं, या किसी से मदद मांगनी हो तो वो कैसे मांगनी है, तो वो सब सिखाया जाता है। तो उसकी वजह से
2: हाँ मलखाम की वजह से मोबिलिटी में ज्यादा बेटर मोबिलिटी आप अपनी पाते हैं। और आप देखते हैं कि जो पहले हम गिर रहे होते थे या फिर टकरा रहे होते थे उसमें काफी हद तक हमारी
1: मलखाम एक हाइट का गेम है। और ये मलखाम के बारे में एक विशेष बात है कि सब गेम जो होते हैं वो ग्राउंड पे खेले जाते हैं, पर मलखाम ऐसा गेम है कि वो हाइट पे खेला जाता है।
2: जी जी,
1: तो ये एक विशेष बात है उसकी। तो डर तो होता ही है
2: जी,
1: और उस डर पे मात कैसे करनी है हमारे हाथ में,
2: और जब डर खत्म हो गया तो फिर मोबिलिटी तो अच्छी होनी है। तो ये सब मामला जो है कॉन्फिडेंस का है। हाँ मोबिलिटी में कुछ टेक्निक भी जरूरी हैं, वो आपको आनी चाहिए। टेक्निक्स के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा होगा तो आप एक अच्छी मोबिलिटी अपनी रख पाएंगे, और जिससे आपको आपके शरीर को नुकसान कम होगा। तो प्रतिभा ने बताया, प्रतिभा पावर लिफ्टिंग भी कर रहे हैं जो कि एक ओलंपिक खेल है। तो आपको आपको क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपको जैसा भविष्य में जुनून के साथ अपने?
0: हाँ जी सर, मैंने अभी स्टेट में सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और नेशनल में गोल्ड मेडल मिलाया है पावर लिफ्टिंग में
2: जी।
0: तो अभी वो नेशनल का भी, इंटरनेशनल का भी वो लोग प्रैक्टिस ले रहे हैं, तो मैं उसकी तैयारी भी कर रही हूँ साथ साथ।
2: नेशनल पैरा गेम्स की बात कर रहे हैं आप?
0: हाँ जी सर
2: जी, बहुत बढ़िया। तो किस कैटेगरी में खेलते हैं आप? और आपको
0: B3 सर।
2: अच्छा अच्छा, B3 कैटेगरी में खेलते हैं, राइट राइट। कोमल जी आप कैसे अपना दिन कर रहे होते हैं? प्रतिभा ने तो बता दिया है कि वो अपनी प्रतिभा का उपयोग कहीं और भी कर रही है और दो खेलों के साथ आगे बढ़ रही है जी। आप बताएं ना कोमल जी, आप कैसे कर रहे हैं शाम को?
1: तो मेरा जब प्रैक्टिस खत्म हो जाता है तो मैं ट्रेन पकड़ के पालघर जाती हूँ। पालघर में एक NGO है आनंद आश्रम करके
2: जी।
1: तो उधर जो वृद्ध लोग रहते हैं तो उनको मैं एक्सरसाइज सिखाती हूँ, उनसे करवाती हूँ, मतलब उनका भी दिन थोड़ा सा कट जाए ऐसा मैं ये करती हूँ। क्योंकि उसमें क्या होता है, उधर जो रहते हैं वो हमारा वो कैसे भी मतलब खुद का टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ देखते हैं, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि बाबा उनके पास भी कोई तो ऐसा मतलब उनके हेल्थ के लिए हिसाब से, तो वो मैं उनको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह सिखाने के लिए जाती हूँ। शाम को घर पे आती हूँ तो जब काम वगैरह करने पड़ते हैं तो खाना वगैरह बनाना, मतलब सब साफ सफाई करना या कुछ भी
2: जी जी,
1: तो ऐसे मेरे दिन अभी तो कट रहा है
2: जी जी। नहीं लिख ठीक है, आप जो है दोनों जुनून के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और एक आपने इंडिजिनस स्पोर्ट को अपने जीवन में डाला है, और एक मलखाम के साथ एक मलखाम जैसा खेल जो ऊंचाइयों पे खेला जा रहा है, और उसमें भी आप ब्लाइंडनेस के साथ या कहें कि अपनी पार्शियल ब्लाइंडनेस के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो कहें कि आंखों की रोशनी तो आधी है बट प्रयास पूरा है ना। तो कुछ ऐसी ही बात आप लोगों ने मैंने देखी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा प्रतिभा जी, इन दोनों ही चीज़ों के अलावा और क्या जुनून में शामिल है? मतलब जुनून में देख रहा हूँ कि सुबह रस्तों पे मलखम चल रहा है और शाम को रॉड्स के साथ पावर लिफ्टिंग, तो ये रस्ते और रॉड के साथ अलावा कुछ और भी है रास्ते में आपके?
0: हाँ जी सर, मैं साथ साथ महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रिपरेशन करती हूँ
2: जी,
0: MPSC का
2: जी,
0: तो वो मेरा पढ़ाई भी चल रहा है
2: जी जी। लेकिन हम दोनों साथियों को कहेंगे कि जुनून के साथ में जुनून जो है वो आपका जीवन का जुनून बन जाए, और हम जुनून में ऐसे ही साथियों के साथ बातचीत करते रहे हैं जिन्होंने अपने जुनून को कभी नहीं छोड़ा और उसको हमेशा अपने जीवन में बनाए रखा और उसको कंटिन्यू किया। तो आप हमारे प्रोग्राम में जुनून में शामिल हुए हैं, तो जुनून में हम यही आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप इस खेल को लेकर आप अपने जीवन में लगातार प्रयास करते रहें। और क्या इसमें ऊंचाइयां बढ़ती जाती हैं कोमल जी, मैं जानना चाहूंगा खेल के साथ में?
1: यस, ऊंचाई तो बढ़नी चाहिए और बढ़ती ही रहती है।
2: जी,
1: जैसे मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाके मुझे मलखम डेमोन्स्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा।
2: जी,
1: 2024 में हमने जब पेरिस में ओलंपिक हुआ तब हमें मौका मिला कि उधर जाके हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना है।
2: जी,
1: तो ये हमको मतलब संधि दी वो रिलायंस फाउंडेशन ने दी।
2: जी,
1: तो तब जाके हमने मेरे साथ मतलब दो लड़कियां और दो लड़के, ऐसे हमारी 8 जनों की टीम थी जो पेरिस में जाके हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था आउट ऑफ इंडिया।
2: जी,
1: इंडिया में तो बहुत किया है और सिखाया भी किया भी है।
2: जी,
1: पर आउट ऑफ इंडिया ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था।
2: ये प्रदर्शन ओलंपिक कमेटी के सामने था,
1: ये मतलब वो जब मतलब इंडिया हाउस करके था।
2: अच्छा अच्छा। जी,
1: तो उसमें हमारा हर दिन डेमोन्स्ट्रेशन रहता था।
2: जी,
1: तो जो भी ओलंपिक देखने जो आते थे तो वो टिकट लेके हमारा मलखम देखते थे।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। और भारतीय खिलाड़ियों को चीयर करने का भी अवसर मिलता था। जी, तो और मुझे लगता है और उसी ओलंपिक में आपने देखा कि नीरज जी ने गोल्ड मेडल लगा दिया। खैर, तो प्रतिभा जी पावर लिफ्टिंग और मलखम के बीच में समन्वय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पावर लिफ्टिंग के साथ में आप स्ट्रेंथ और आपकी फिटनेस दोनों ही जरूरी हैं, और मलखम के साथ भी ऐसा ही है। मलखम क्या ऐड ऑन करता है पावर लिफ्टिंग के अलावा? मतलब पावर लिफ्टिंग में वो चीज नहीं जरूरत पड़ती है लेकिन मलखम में वो जरूरी है, मेरा कहने का मतलब यह है।
0: नहीं सर, साथ साथ उन पावर लिफ्टिंग कैसे जमीन पे होता है और वो लकड़ी के ऊपर जमीन के ऊपर करना होता है।
2: जी,
0: तो इतना ही डिफरेंस है, बट ताकत तो सेम लगती है।
2: जी,
0: ताकि मेरी ताकत मलखम से आई है और मैं जब पावर लिफ्टिंग करने गई तो तभी मुझे पता चला कि मेरे में इतनी ताकत है, मैं इतना वजन उठा सकती हूँ। तो तभी से मुझे वो गेम भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो गेम को मैंने सिर्फ ट्रायल करके मैंने गई थी खेलने के लिए, तो वो गेम में मुझे मेडल मिला है, तो तभी से मुझे वो गेम बहुत अच्छा लग रहा है और साथ साथ वो गेम भी मैं खेल लेती हूँ।
2: जी हाँ, चुनौतियों के बाद ही मालूम चलता है हमारे अंदर कितना एबिलिटीज हैं। राइट, कोमल जी भविष्य की क्या योजनाएं हैं?
1: मेरे भविष्य की योजना तो ये कि सेहत के साथ साथ मतलब खुद की सेहत तो अच्छी रखनी है, सेहत अच्छी हो तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं।
2: जी,
1: तो सेहत अच्छी है तो
2: सक्सेस की कहानी सेहत से शुरू होती है।
1: जी,
2: लेकिन आपकी क्या योजनाएं हैं आने वाले दिनों में?
1: मैंने अभी जैसे मैंने MA साइकोलॉजी में मेरा किया है और मुझे काउंसलिंग का कोर्स करके अच्छा काउंसलर बनना है।
2: जी,
1: तो जैसे हम देखते हैं कि अभी के परिस्थिति में सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जुड़ते हैं, तो उनके साथ थोड़े से बातचीत करके या उनका कुछ सुन के या हमसे कुछ हेल्प हो सके तो ऐसा मैं करना चाहती हूँ।
2: हाँ, निश्चित रूप से आपने जो बताया है कि आप सोशल वर्क की तरफ सोच रहे हैं और उस दृष्टि से आप अपने जीवन को प्लान कर रहे हैं, तो मैं कोमल जी आपने तो मुझे बोला है कि सेहत से सक्सेस की बात तो है ही है और जीवन में नई हमें योजनाएं बनानी है, और प्रतिभा ने तो बताया है कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन खेलों के साथ में मतलब जो फिटनेस जो जीवन में इम्पोर्टेंट है, जिस हिसाब से मैंने देखा कि ब्लाइंड व्यक्तियों के साथ एक समस्या है जीवन में, कि क्योंकि वो लिथार्जिक हो जाते हैं कई बार जीवन में, मोबिलिटी का लेवल उतना नहीं है, कसरत नहीं कर रहे हैं जीवन में, तो उनको एक सर्टेन एज के बाद उनको चुनौतियां फील होती हैं शारीरिक रूप से। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या समझ बनी है इसको लेकर कि ब्लाइंड व्यक्तियों को कैसे फिटनेस को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग बनाना चाहिए?
1: मतलब जब अभी जो स्कूल में जो जाते हैं बच्चे लोग, तो उस स्कूल में उनको ट्रेनिंग या फिटनेस लेवल का महत्व समझाना जाना चाहिए, जो कि उतने लेवल पे नहीं होता है।
2: जी,
1: वो थोड़ी बहुत मतलब समझा कर छोड़ देते हैं,
2: जी।
1: और जैसे हमें अभी जुनून था कि हमें हमारे स्कूल में तो रोप मलखम था, तो उसमें से होता है ना कि बाबा स्कूल में 100 लड़की है तो 100 के 100 तो नहीं जाएंगी मलखम खेलने
2: जी।
1: तो उसमें से 10 लड़कियां या 5 लड़कियां 15 लड़कियां ही ये करेगी मूव करेगी
2: जी।
1: तो ऐसे सब नहीं होता कि बाबा सबके दिमाग में आए कि चलो हमें मलखम करना है सीखना है, ऐसा नहीं होता। पर वो तो मेंटालिटी के हिसाब से होता है ना, किसको कुछ पसंद है किसको क्या पसंद है वो तो डिपेंड करता है।
2: क्योंकि तो हमारे आसमान में बहुत सारे फूल हैं और उसको कौन से रंग का फूल पसंद आएगा उसको वो उसकी चॉइस है जी जी। लेकिन मलखम के साथ में मेरा जो एक अनुभव है एक समझ बनी है कि मलखम एक ऐसा इंडिजिनस स्पोर्ट है जो निश्चित रूप से हमें फिटनेस की तरफ तो लेके जाता ही है। और पिछले दिनों राजस्थान में भी हमने खेलो इंडिया की एक अकेडमी मलखम के साथ में हमने अटैच की थी जयपुर में, और हम लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पर क्यों ना ब्लाइंड व्यक्ति जुड़े, और आपने तो अपना अनुभव भी सुना दिया आज हमें, आज जुनून प्रोग्राम के माध्यम से। तो श्रोताओं आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन और आपका प्रोग्राम है जुनून, और जुनून में हमारे साथ दो जुनूनी हैं आज डेफिनेटली वो हमारे स्टूडियोज में आज आई हैं, और इस हमारे स्टूडियोज में भी एक ऐसा वातावरण बन गया है मलखम वाला जिसमें शायद अब बस रोप्स आनी बाकी है, और नहीं तो हम थोड़ी देर में अब हमें भी देखेंगे कि हम कुछ यहाँ पर कर गुजर रहे हैं, है ना। तो श्रोताओं आप हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM, आपका फेवरेट प्रोग्राम।

0: जी तो श्रोताओं, फिर से आपके साथ एक ब्रेक के बाद। और आपको तो मालूम ही है, हमारे स्टूडियोज में बैठी हैं दो महाराष्ट्र से मुंबई आए हुए प्रतिभाशाली साथी, और दोनों ही हमारी विजुअली चैलेंज साथी हैं, और दोनों ने ही जुनून प्रोग्राम में रंग भर दिया है अपने अलग अलग कौशल बता के। और अभी तो कोमल के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। कोमल, और क्या कर रहे हैं आप इस बीच में, मतलब मलखम के अलावा और क्या कर रहे हैं अपने जीवन में?
1: मलखम के अलावा मैं टेंडम साइकिलिंग भी करती हूँ।
0: जी,
1: टेंडम साइकिलिंग एक बेसिकली ऐसा है कि जब ब्लाइंड विजुअली चैलेंज को साइकिल चलानी है
0: जी,
1: तो वो खुद मतलब सिंगल साइकिल तो नहीं चला सकता
0: जी,
1: पर एक सपोर्ट जो होता है, आधार जो होता है
0: जी,
1: तो वो टेंडम साइकिल से मिलता है कि पायलट आगे बैठता है और ब्लाइंड पीछे के सीट पे बैठते हैं, तो उस हिसाब से टेंडम साइकिल का आनंद ले सकते हैं।
0: जी जी, तो टेंडम साइकिल के साथ में आपके साथी कौन होते हैं ज्यादातर?
1: ज्यादातर हमारी जो अभी एक संस्था है जो टेंडम साइकिल चलाती है, मतलब वो भी शिवाजी पार्क में ही अभी होता है
0: जी,
1: उसका भी क्लासेस संडे टू संडे क्लासेस होते हैं उसके 7 to 9, तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं
0: जी।
1: और मुझे टेंडम साइकिल करते हुए अभी 4 साल हो गए, 4-5 साल, तो उसमें भी मैंने बहुत मतलब मैंने खुद से भी साइकिल चलाई है, और मैंने मतलब आगे बैठ के और पीछे सर या कोई जो होता है हमारे साथ, तो वो उसको बैठ कर मैंने साइकिल चलाई है, और मुंबई के सड़कों पे मैंने साइकिल चलाई है इतने मतलब ट्रैफिक में या सब इसमें सब एक्सपीरियंस किया हुआ है।
0: तो कितने किलोमीटर कर चुके हैं अपनी साइकिलिंग के साथ?
1: मैंने मेरा हाईएस्ट मतलब लॉन्गेस्ट ये था पुणे से मुंबई का 161 या 171 ऐसा किलोमीटर था साइकिल पे।
0: जी जी जी जी, हाई स्पीड ट्रैफिक के बीच आपकी टेंडम साइकिल, वाह बहुत बढ़िया। तो एक होलिस्टिक हेल्थ के लिए, अब आप साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं और आप खेलों से जुड़े हुए हैं, तो होलिस्टिक हेल्थ के फील्ड में क्यों नहीं एक आपका जुनून जो है वो पूरा किया जाए, और क्यों ना आप काउंसलिंग के साथ भी जुड़ जाएं, और ऐसी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं? और युवाओं को तो बहुत जरूरत है आजकल इस चीज के, और आप तो एक युवा हैं।
1: मेरा यही ये है कि हर किसी को कोई ना कोई एक्टिविटी करनी ही रहनी चाहिए
0: जी।
1: घर में बैठ के भी बहुत सारे काम होते हैं, पर वो फिजिकल होना वो अलग बात है
0: जी।
1: तो बाहर हम जब जाते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं तो अलग सा हमारे विचारों में या बोलने में बिहेवियर में अलग सा चेंज होता है, तो वो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी इंसान ने करती रहनी चाहिए
0: जी। प्रतिभा जी, आप क्या इसके अलावा कर रहे होते हैं? कुछ गाना गुनगुनाना बजाना भी कर रहे हैं, कुछ मराठी कविताएं या मराठी गीत?
2: नहीं सर, मैं भी टेंडम साइकिल में भी चलाती हूँ। कोमल के साथ ही मैंने, कोमल एक बार मेरी पायलट बनी थी और मैं पीछे बैठी थी, वो मोमेंट याद आया है। तो टेंडम साइकिल भी बहुत अच्छा है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए हमारे सर मनोज कटारिया एक सर है, उन्होंने भी बहुत ऐसा प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हमारे दोनों सर, जैसे उदय देशपांडे सर, मनोज सर, वो हमारे लिए बहुत अच्छे से सोचते हैं, क्योंकि हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए वो सर सब स्पोर्ट्स के बारे में भी बहुत अच्छा सोचते हैं।
1: मतलब टेंडम साइकिलिंग को भी उतनी मान्यता नहीं है जैसे अभी थोड़े से मलखम के बारे में है, तो हमारे जो सर है मनोज सर, वो भी टेंडम साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल लेवल जाने के लिए बहुत कष्ट करते मेहनत करते है
0: जी। तो आप एकेडमी की साइकिल्स के साथ ही अपना टेंडम साइकिल, या आपने स्वयं की साइकिल भी ले ली है?
1: नहीं नहीं, अब तो नहीं
0: जी। ये साइकिल्स गियर के साथ में होती हैं या?
1: यस, गियर के विद गियर के होती है
0: जी जी जी, बहुत ही बढ़िया। तो मुंबई से पुणे की यात्रा तो बाकी आपने करी ली है, मुझे लगता है मुंबई से गोवा कब करने जा रहे हैं आप जुनून में?
1: अभी वैसा मौका तो मुझे नहीं आया है,
2: अपकमिंग पर्पल फेस्ट में।
1: इन फ्यूचर
0: हाँ, पर्पल फेस्टिवल में जा रहे हैं आप लोग?
2: अभी नहीं,
1: पर्पल फेस्टिवल तो शुरू हो गए है ना
0: जी,
1: तो यहाँ है।
0: नहीं, पर्पल फेस्टिवल में अभी खेलों के साथ कुछ गतिविधियां हुई हैं, लेकिन जुनून प्रोग्राम में हम लोग भी सोच रहे थे कि पर्पल फेस्टिवल के साथ बातचीत की जाए। तो पर्पल फेस्टिवल में की बात आपने याद दिलाई, तो क्या मलखम का प्रेजेंटेशन वहाँ हुआ है आने वाले दिनों में? प्लान कर रहे हैं,
1: पिछले साल हुआ था तब मैं नहीं गई थी, मेरे अजय लालवानी करके एक मेरा दोस्त है और स्वरांजलि पवले करके, तो वो सर के साथ गए थे, तो उन्होंने उधर दिया था डेमोन्स्ट्रेशन
0: जी। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि विजुअली चैलेंज या डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक बेहतरीन या उनका अपना एक फेस्टिवल उत्सव गोवा सरकार हर साल आयोजित करती है अक्टूबर से जनवरी के मध्य बीच में किसी भी महीने में। तो इस बार इस अक्टूबर के आज के दिन से ही लगभग पर्पल फेस्टिवल गोवा में चल रहा है और पर्पल फेस्टिवल में दिव्यांग व्यक्ति अपनी अपनी प्रतिभाओं के साथ वहां पहुंचते हैं हर साल और वहां पर एक उत्सव का माहौल रहता है और पर्पल इसकी थीम है जो कि दिव्यांगता को पहचान देती है। तो आप भी जब भी आपको मौका मिले आप पर्पल उत्सव फेस्टिवल में जरूर जुड़े। तो हमारे साथियों से कोमल आप भी कुछ ऐसा कुछ गाना गुनगुनाना या मराठी सॉन्ग्स आपको आते हैं या आपको लगता है कि आप
1: नहीं गुनगुनाना तो नहीं तो घर में मैंडोलियन मुझे बजाना अच्छा लगता है।
0: वाह
1: स्कूल में सीखा
0: यस जी जी
1: तो अभी मैं मेरा खुद का मैंडोलियन लेके उस पे प्रैक्टिस करके मुझे शो में बजाने की बहुत उत्सुकता है।
0: जी जी जी जी
1: जरूर
0: जी जी जी वाह रस्तों से लेकर पैडल और पैडल से लेकर
1: तारों तक
0: की यात्रा आप कर रहे हैं। तो इस बातचीत के साथ में हम भी जानना चाह रहे हैं कि मलखम में आप का जो मैदान होता है वो लगभग कैसा दिख रहा होता है कोमल, थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को बता पाएंगे मतलब क्या दृश्य होता है? चारों तरफ पेविलियंस होते हैं और फिर बीच
1: मतलब हम जहाँ प्रैक्टिस करते हैं।
0: जी जी जी जी
1: तो वो तो शिवाजी पार्क तो बहुत बड़ा शिवाजी पार्क है तो उसमें क्या है कि जो हमारी व्यायामशाला की जो जगह है तो उसपे उतना बड़ा मैदान नहीं है क्योंकि वो बाकी का मैदान है उसपे तो क्रिकेट वगैरह चलते रहते हैं।
0: जी
1: तो हमारी जो जगह है उधर 8-10 ऐसे पोल मलखम पूरे हुए हैं और कई जगहों पे ऐसे सिंगल बार डबल बार ऐसे प्रैक्टिस के लिए करे हुए तो वो जो है उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं।
0: जी
1: और अलग व्यायामशाला में भी बहुत बड़ा उधर मतलब रूम है जहाँ पे मलखम के अलावा बहुत जूडो कराटे के क्लासेस वगैरह भी होते हैं।
0: जी
1: तो मैंने प्रतिभा ने थोड़ा जूडो का भी थोड़ा सा ये ट्राई किया है मतलब
0: तो आप घाट घाट का पानी पीने के बाद आपको मालूम चला है कि मलखम इज अवर चॉइस तो
1: इज द बेस्ट।
0: हाँ मलखम इज बेस्ट इंडिया इज बेस्ट। हाँ तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि इन खेलों के साथ में हम जब इनसे जुड़ते हैं तो आपको लगता है कि कुछ जिम्नास्टिक से मिलता जुलता ही खेल है मतलब जिम्नास्टिक में भी कुछ ऐसे ही मूव्स या ऐसे ही स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है तो आप बार्स के साथ में जब कर रहे होते
1: हैं एक मिश्रण है पूरे मुझे ऐसा लगता है पूरे जो गेम्स है उसका मिश्रण मलखम है।
0: जी जी
1: जो स्ट्रेंथ लगती है पावर लगती है बहुत मतलब वो बढ़ाती है। अभी मेरे में भी उतनी ताकत नहीं थी कि मैं खुद का शरीर अपने हाथों पे उठा पाऊं और उसमें क्या होता है कि ग्रेविटी के मतलब विरुद्ध हमें अपना शरीर ऊपर उठाना होता है तो वो अलग स्ट्रेंथ उसमें लगती है तो वो प्रैक्टिस के वजह से मतलब हम बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही मतलब हमें डेवलपमेंट मिलते जाते और हमारे सर ऐसे एक मतलब वाक्य बोलते हैं कि नो पेन नो गेम ऐसा बोलते हैं तो जहाँ पेन होता है वहाँ गेम होता ही है।
0: जी जी जी जहाँ गेम होता है वहाँ पेन होता है और पेन के साथ ही आपको कुछ गेन भी होता है गेन भी होता है जीवन में तो हाँ ये बात तो हुई है तो पेन से गेन की बात हुई है तो आप बताएं पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कैसे सोच रहे हैं वहां पर कैसे जाने का प्लान बनाया है और आपको तो मालूम ही होगा कि कुछ राज्यों ने राज्य सरकारों ने मैं श्रोताओं को बता दूं कि राजस्थान में चूंकि हम राजस्थान में हमारे स्टूडियोज हैं तो राजस्थान सरकार ने विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो खिलाड़ी नेशनल लेवल पे मेडल लेकर आए हैं उनको आउट ऑफ द टर्न गवर्नमेंट सर्विसेज ऑफर की हैं और बहुत सारे खिलाड़ियों ने बिना किसी परीक्षा के डायरेक्टली राजस्थान सरकार को ज्वाइन किया है क्योंकि उन्होंने अपने खेल के मैदान में राजस्थान का परचम ऊंचा किया है। तो ऐसे ही कुछ राज्यों ने और किया है महाराष्ट्र सरकार ने

0: कुछ ऐसा प्लान बनाया है या योजना बनी है आपके राज्य में दोनों साथियों से?
1: बनाने का प्रयास चल रहा है सर
0: जी।
1: हम लोग ने भी जब नेशनल गेम खेल के आए थे तभी हम लोग ने भी मंत्रालय में जाके बहुत सारे प्रयास किए हैं। अभी तक वो नहीं हुआ है, होने वाला है
0: जी।
1: तो वो प्रयास चल रहा है। तो मैंने आपके श्रोताओं को मतलब कुछ संदेश देने के लिए आप बोल रहे थे, तो मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि डेली जब आप उठते हो तभी अपने बॉडी के लिए एक घंटा तो डेली देना ही देना है। जब मतलब हम लोग का जब भी शरीर को तकलीफ हो जाती है तब हम लोग हॉस्पिटल में चार चार दिन एडमिट रहते हैं, वो न आना चाहिए। इसके वजह से सबने हमने हमारे दिन में ऐसे एक घंटा हमारी बॉडी के लिए देना ही चाहिए। सबने एक्सरसाइज करने का, सबने प्राणायाम करने का, डेली हमारे बॉडी के लिए कुछ करने का।
0: जी जी जी, नहीं नहीं डेफिनेटली आपने संदेश दे ही दिया है कि भैया उठो और जागो और कुछ कर गुजरो। हाँ तो कोमल, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से, और आपको क्या लगता है कि भविष्य की यात्रा को लेकर या देश की में जो खेलों की जो अभी पूरा एक पैनोरमा है खेलों का, उसमें क्या ऐड करने की जरूरत है?
2: मुझे बस इतना ही कहना है कि अपने सेहत को संभालो और जो अचीव करना है वो करो।
0: हाँ, क्योंकि सेहत होगी तो आप सब कुछ कर पाएंगे,
2: हम सब कुछ हासिल कर सकते।
0: जी जी, ठीक है। तो श्रोताओं, हम हमारे कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, आपसे विदा लेना चाहेंगे, और इन दोनों साथियों से, हमारे प्रतिभा जी से और कोमल जी से भी। आप महाराष्ट्र इतनी दूर से हमारे बीच में आए और मलखम जैसे एक इंडिजिनस स्पोर्ट के बारे में हमारी एक दृष्टि विकसित की, और आप भी हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहे, और आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: तहे दिल से धन्यवाद सर
0: जी। थैंक यू, थैंक यू।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: आजादी के संग्राम में बुंदेलखंड की अहम भूमिका रही है। राजा मर्दन सिंह ने इस संग्राम में बुंदेलखंड का नेतृत्व किया था और इस संग्राम में उनके साथी थे शाहगढ़ के राजा बखत वली। दोनों ने बुंदेलखंड के जमींदारों और जागीरदारों को पत्र लिखकर संग्राम में भाग लेने की गुजारिश की थी। मर्दन सिंह के आह्वान पर ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम कर रहे भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ कैदी क्रांतिकारियों को रिहा किया बल्कि स्वयं भी गोरी सरकार की नौकरी छोड़ दी। मर्दन सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने बुंदेलखंड के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार वापस ले लिया। राहतगढ़ में भी मर्दन सिंह ने क्रांतिकारियों की मदद की थी। बड़ौदिया के युद्ध में मर्दन सिंह के युद्ध कौशल को देखकर अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। इतना ही नहीं, मर्दन सिंह ने कालपी पहुंचकर रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद की थी। खुरई युद्ध के दौरान उन्हें लक्ष्मीबाई की शहादत की खबर मिली और वे ग्वालियर की ओर बढ़ गए। तब मुरार में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1874 तक वे लाहौर जेल में रहे। जीवन के संध्याकाल में उन्हें आगरा संभाग में रहने की अनुमति मिली। 22 जुलाई 1879 को उन्होंने मथुरा में अंतिम सांस ली। मर्दन सिंह की शौर्य गाथाएं बुंदेलखंड के लोकगीतों में आज भी गूंजती रहती हैं।
3: अरे काफी दिनों बाद दिख रहे हो बेटा, कहीं बाहर गए थे क्या?
4: हाँ काका, पहले इसके काम के सिलसिले में हम इंदौर गए, वहाँ भागा दौड़ी में 3-4 दिन लग गए। फिर ये मेरे काम के सिलसिले में मेरे साथ ग्वालियर चला गया तो वहाँ टाइम लग गया।
3: अरे बताता क्यों नहीं है, तेरे लिए लड़की देखने गए थे और दादा से क्या शर्माना।
4: अरे शर्मा कौन रहा है, कोई बात जमे तब तो किसी को बताई जाए ना।
3: क्यों, कोई बात नहीं जमी?
4: अभी कहाँ काका।
3: अरे लड़का लड़की के मामले में कई बार ऐसा होता है।
4: अच्छा,
3: पर एक बात हमें अच्छी लगी।
4: क्या?
3: कि तुम दोनों एक दूसरे के काम में पूरी पूरी सहायता करते हो।
5: सो तो है दादा।
3: अच्छा, तुम लोगों को देख के हमें राजा मर्दन सिंह और राजा बखत वली की दोस्ती की याद आ रही है।
4: अच्छा, वो भी पक्के दोस्त थे?
5: और दादा ये मर्दन सिंह कौन है?
3: अरे भूल गए, बानपुर के राजा मर्दन सिंह।
5: अच्छा।

0: मर्दन के पिता मोद प्रहलाद के पास रह गया।
1: अच्छा दादा, तो आज मर्दन सिंह की ही कहानी सुनाओ ना।
0: सो तो ठीक है, लो तुम्हारी चाय आ गई।
2: अच्छा अच्छा, ला भाई चाय लाओ पहले।
0: वो ऐसा है बेटा कि राजा मर्दन सिंह रण कौशल में निपुण अति बहादुर योद्धा थे।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: जब से उनने बानपुर का राज संभाला उनकी एक ही मंजिल रही, चंदेरी पे वापस कब्जा और अंग्रेजी राज की समाप्ति। इसके लिए वो अपने मंत्री के साथ मिलकर नित नई योजना बनाते रहते थे।

0: राजा साहब, इस समय रियासत में हालात जरा नाजुक चल रहे हैं। यही कहलाने बहुत संभल कर काम काज करने पर है।
1: वैसे हमें अंग्रेजों की चाल बहुत कुछ समझ में आ रही है। उनकी नजर अपनी रियासत पर है।
0: आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। बरतानिया सरकार के पॉलिटिकल एजेंट का फिर से शिकायत भरा पत्र आओ है। वह कहते हैं कि कई चेतावनियों के बाद भी रियासत का शासन प्रबंध ठीक से नहीं चल पा रहा है। कृपया ऊपर ध्यान दें।
1: मैं समझता हूँ बरतानिया सरकार बुंदेला विद्रोह के कारण खिसियाई हुई है। अरे वो इसे भूल नहीं पा रही है।
0: आपने बिल्कुल सही समझो है।
1: मुझे रोशनी की एक नई किरण नजर आ रही है।
0: का मतलब?
1: मतलब ये कि यदि हम बुंदेला विद्रोह के किसी बड़े सरगना की गिरफ्तारी करा दें, तो क्या ब्रिटिश सरकार हमें हमारा खोया इलाका सिंधिया से वापस दिला देगी?
0: राजा साहब, जब हम ब्रिटिश सरकार की मदद करें तो बदले में हम अपनी मदद के लिए उन पर जोर सोई डाल सकते हैं, और उन हालात में बहुत मुमकिन है कि वे हमारी मदद करवे को तैयार हो जाएं।
1: आप ब्रिटिश सरकार को रुक्का भिजवा दो कि बुंदेला विद्रोह का प्रमुख विद्रोही राजा हृदय शाह हमारी गिरफ्त में है।
0: हाँ।
1: इसे कहां और किसे सुपुर्द करना है? और हाँ, इसे अमली जामा पहनाने के लिए हमें क्या करना है वो तो आप समझ ही गए होंगे।
0: हाँ राजा साहब, हम आपका इशारा समझ गए। हुकुम की तामील हुई है। अच्छा, मैं चलत हूँ।
2: राजा मर्दन सिंह ने आखिर 22 दिसंबर 1842 को हीरापुर के राजा हृदय शाह और उसके परिवार को कर्नल एली के सुपुर्द कर दिया।
3: अच्छा,
2: पर अंग्रेजों ने राजा मर्दन सिंह का साथ नहीं दिया और हृदेश के बदले में चंदेरी को वापस पाने का सपना सपना ही रह गया।
1: ये अंग्रेज तो बड़े धूर्त निकले।
0: अरे धूर्त का एक ही नंबर के एहसान फरामोश है। जानत है पॉलिटिकल एजेंट ने हमारी बिनती के जवाब में क्या बात कही है?
1: हाँ, हमें बताया गया है।
0: अरे बे बोला, सिंडिया हमारा भोट फैट फुल राजा होता, हम किसी कीमत पर उस पे दबाव डालने सकता।
1: समझ में नहीं आता, आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा सपना पूरा हो सके?
0: राजा साहब, ये तभी संभव है जब हमें कोई ताकतवर सहयोगी मिल जाए। फिर तो हम इन फिरंगियों को बुंदेला विद्रोह भूलने नहीं दें।
1: आपने ठीक कहा, हमें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सहयोगी ढूंढना होगा।
2: अब राजा मर्दन सिंह ने सोच लिया कि दूसरे राजा की मदद के बिना अंग्रेजों से चंदेरी को पाना बहुत मुश्किल है।
3: अच्छा,
2: राजा मर्दन सिंह ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। और ये तलाश भी उनकी बहुत जल्दी पूरी हो गई राजा बखत बली से मिलकर।
3: अच्छा,
2: इन दोनों राजाओं के मिलन का भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है,
3: सुनाओ ना।
2: हुआ यूं कि मदनपुर के डाकू मधुकर को पकड़ने के लिए राजा मर्दन सिंह ने अमझेरा की घाटी पे घेरा डाला।
3: अच्छा,
2: उसी समय खिमलासा के डाकू हंसा को पकड़ने के लिए बखतवली ने भी अमझेरा की घाटी को घेरा।
3: अच्छा, फिर कहीं दोनों की सेनाएं आपस में टकराई तो नहीं?
2: अरे नहीं, बल्कि दोनों राजा की आपस में मुलाकात हो गई।
3: अच्छा,
2: मर्दन सिंह ने प्रस्ताव रखा, क्यों ना हमारी सेनाएं मिलके इन डाकुओं के खात्मे के लिए कार्रवाई

0: दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने की बात मान ली और जल्द ही इस सहयोग का परिणाम भी मिल गया।
1: अच्छा,
0: दोनों डाकू पकड़े गए।
1: अरे वाह।
0: उन्हें ललितपुर के डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया गया।
2: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। बधाई हो राजा साहब।
1: आपको भी बधाई, आपको भी बधाई।
2: राजा साहब, आखिर हमारा मेल काम आया।
1: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं।
2: इसीलिए मैं कहता हूँ, यदि हम मिल जाएं तो क्या नहीं कर सकते।
1: मैं आपकी बात समझ रहा हूँ।
2: तो राजा साहब, क्यों ना हमारा ये मेल आगे भी हमारी समस्याओं को, हमारे सपनों को सफल बनाने में इसी तरह सहायक हो।
1: अब जब हम मिल ही गए हैं तो लगता है मालिक हमें हमारे मंसूबों में कामयाबी देना चाहता है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कोई शुभ संयोग ही है कि हम इस तरह मिले। मेरा मन भी कहता है कि अब हम अपने राज्य और देश की समस्याएं हल करने में सहज ही कामयाब हो सकते हैं।
1: अब जब हमने साथ मिलकर काम करने की सोच ली है तो हमें एक दूसरे की जरूरतों, समस्याओं की जानकारी भी हो जानी चाहिए।
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा राजा साहब। हमारी तत्काल समस्या है सिंधिया से चंदेरी का इलाका वापस पाना और अंग्रेजों को देश से बाहर भगाने की योजना बनाना।
1: अंग्रेजों को देश से बाहर तो हम भी करना चाहते हैं, पर ये बड़ा काम है। पहले हमें शुरुआत छोटे छोटे कामों से करनी होगी। जैसे फिलहाल हमें अंग्रेजों के पिट्ठू सिंधिया से गड़ा कोटा वापस लेना है।
2: यानी ये भी एक सुखद संयोग ही है
1: जी।
2: कि हम दोनों का फिलहाल वास्ता सिंधिया से
1: है। जी हाँ जी हाँ। पर हमें याद रखना होगा कि सिंधिया कमजोर नहीं है, फिर उसके साथ अंग्रेजों का पूरा समर्थन भी है।
2: यानी हमें अंग्रेजी फौज से लोहा लेने के लिए भी तैयार रहना।
1: जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझे।
2: और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, मतलब ये कि हमें खूब सोच समझ कर योजना बनानी होगी और पुख्ता तैयारी करनी।
1: इतना ही नहीं, हमें अपने आसपास के जागीरदारों, रियासतों से भी समर्थन और सहयोग जुटाना होगा ताकि समय पड़ने पर वे हमारा साथ दें।
2: आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। हमें कदम दर कदम आगे बढ़ाना होगा।
1: जी हाँ जी हाँ। मैं आपको बता दूँ, पहले कदम में शाहगढ़ की सेना सिंधिया से चंदेरी को मुक्त कराने के लिए आपके साथ होगी।
2: अच्छा।
1: और हमारे पास कोई 2000 सिपाही और 10 तोपे हैं।
2: वाह।
1: आपका इशारा पाते ही वे चंदेरी विजय के लिए कूच कर देंगी।
2: क्या बात है। इस सहयोग के लिए मैं और मेरी जनता दिल से आपकी शुक्रगुजार रहेगी राजा साहब। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बानपुर के 1500 सैनिक और 5 तोपे हर समय आपकी सेनाओं के सहयोग के लिए तैयार रहेंगे।
1: हम आशा करते हैं हमारी ये दोस्ती बुंदेलखंड के इतिहास में नया अध्याय जोड़ेगी।
2: ठीक कहा आपने।

0: यूं समझो बेटा कि उनकी बात सच हुई। जब मर्दन सिंह और बखत बली की सेना ने चंदेरी को घेरा तो अचानक हुए हमले से घबराए सिंधिया के अधिकारी जसवंत राय के सामने संधि करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा।
1: अच्छा,
0: हाँ, चंदेरी के किले पे बानपुर के राजा मर्दन सिंह का झंडा लहराने लगा।
2: देखा, एक साथ काम करने की शक्ति।
3: तभी तो मैं कहता हूँ, एक से भले दो।
0: यो समझो बेटा कि इस सम्मिलित अभियान की कामयाबी ने उन दोनों राजाओं के हौसले सातवें आसमान पर पहुंचा दिए।
2: तो पहुंच नहीं थे दादा।
0: हाँ, चंदेरी से लौटते समय सेना ने रास्ते में पड़े तालवेहट को भी अपने कब्जे में कर लिया।
2: अरे वाह।
0: हाँ, अब अगले कदम में गढ़ा कोटा के लिए योजना बनानी थी।
2: गढ़ा कोटा यानी जबलपुर।
0: हाँ, जैसे मर्दन सिंह चंदेरी छीनने के कारण दुखी थे, वैसे ही बखत बली गढ़ा कोटा छीनने के कारण दुखी थे।
2: अच्छा,
0: पर गढ़ा कोटा की वापसी इतनी आसान नहीं थी, तभी उन्हें योजना बनाने का एक अच्छा मौका मिल गया।
3: सो कैसे दादा?
0: हुआ यूं कि इसी समय झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु हो गई।
2: ओह,
0: सभी शासक शोक संवेदना प्रकट करने झांसी पहुंचे। राजा मर्दन सिंह और बखत बली भी वहां पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई, जो देश की आजादी की योजना में जुटे हुए थे।
4: मर्दन सिंह जी, ये तो खुशी की बात है कि आपको चंदेरी वापस मिल गई, पर गढ़ा कोटा वापस पाना इतना आसान नहीं होगा। यूं समझ लीजिए, आपको ब्रिटिश सरकार से जूझना ही पड़ेगा।
5: तात्या टोपे जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि हमने ब्रिटिश सरकार से जूझने का पूरा पूरा मन बना लिया है।
4: ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की खबर है कि बुंदेलखंड में आप लोग अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए कमर कसे बैठे हैं, पर हमें पूरा संगठित होकर और पुख्ता योजना के साथ काम करना होगा।
5: बिल्कुल।
2: अब आप ही बताएं, हम कहां से शुरुआत करें?
4: सबसे पहला कदम होना चाहिए अपनी शक्ति बढ़ाना, चारों ओर से समर्थन जुटाना, वो भी गुपचुप।
5: हाँ, ये बात तो हमारे जहन में है। हमने बांदा के नवाब से बात कर ली है, उन्होंने पूरे समर्थन का वादा किया है।
4: बहुत खूब। इसके अलावा सागर और दमोह के जागीरदारों, ओबारीदारों, सरदारों और मालगुजारों से भी संपर्क करना होगा। इस क्षेत्र के ये लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने को उतावले हो रहे हैं। इनके पास करीब करीब 2000 सशस्त्र सैनिक हैं, जो हमेशा मरने मारने को तैयार रहते हैं।
5: और इस काम के लिए मैं अपने वरिष्ठ मंत्री जवाहर सिंह को लगा देता हूँ।
4: एक काम और आप कर सकते हैं, वो ये कि 12वीं और 42वीं रेजिमेंट तथा 3री अनियमित घुड़सवार सेना के जिन बागियों को सेना से निकाल दिया गया है, उन्हें आप नौकरी दे दें।
2: वाह, ये बात तो आपने अच्छी बताई। यानी यदि ये काम पूरे हो जाते हैं तो फिर हम ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे सकते हैं।
4: चुनौती भी हमें पूरी योजना बनाकर देनी होगी, ताकि अंग्रेज सकते में आ जाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों का अंग्रेजों के प्रति व्यवहार मित्रवत दिखना चाहिए। एक बात और, आप मर्दन सिंह जी लगातार लक्ष्मीबाई के संपर्क में रहेंगे और सारी जानकारी लेते देते रहेंगे।
2: जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक।
0: वहां से लौट के दोनों राजा योजना को आकार देने में जुट गए।
2: पर काका, वो अंग्रेजों के प्रति मित्रवत व्यवहार की बात?
0: हाँ, जब उत्तर भारत से उठी क्रांति से बुंदेलखंड रणभूमि बना, तो एक ओर तो मर्दन सिंह ललितपुर के फौजियों को उकसाते रहे।
2: हाँ?
0: दूसरी ओर अंग्रेजों के हितेशी बनते गए।
2: अच्छा।
0: वहाँ के कैप्टन सेल, डॉक्टर ओब्रियन आदि को अपने यहाँ शरण भी दे दी।
2: और बखत बली?
0: बखत बली भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने ललितपुर के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिख के बताया कि वो अंग्रेज सरकार का बड़ा हिमायती है।
2: अच्छा।
0: हाँ, उसके राज में नारहट के कटेरा वाले ठाकुर और मर्दन सिंह ने सागर जिले में तबाही मचा रखी है।
2: अच्छा।
0: वो तो सागर के बागियों को बहला फुसलाकर शाहगढ़ ले गए, नहीं तो बागी सागर किले में बंद यूरोपियन परिवार को मार डालते।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उसी समय वो मर्दन सिंह के साथ सहरई गांव के किले में अंग्रेज सेना को मुंह तोड़ जवाब देने की योजना बनाने में व्यस्त भी रहे।
2: राजा साहब, इधर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कई बार खतों किताबत हुई है, इनमें से ये दो पत्रों का मजमून बताता हूँ। ये पहले पत्र में उन्होंने अपनी तैयारी पे खुशी जाहिर करते हुए लिखा है, अपुन ने लिखी के फौज की तैयारी में लगे हैं, सो मन को खुशी भाई। हमारी राय है कि विदेशियों का शासन भारत पर ना हो चाहिए, और हमको अपुन को बड़ो भरोसा है, और हम फौज की तैयारी कर रहे हैं, सो अंग्रेजन से लड़वो बहुत जरूरी है।
5: और दूसरे खत में क्या है?
2: जी, ये दूसरा खत है, इसमें लिखा है, अपुन की पाती आई और अपुन ने महाराज शाहगढ़ की पाती को हवाला दो, सो मालूम भाव आप यहाँ लिखी के आप सागर को कूच करें, वहाँ दो कंपनी बीच में साहबन की है, उनको भारत बखेड़त सागर वो वारे राजा को लिखावत फौज के सीधे काल्पी कूच करें, हम वो तात्या टोपे व नाना साहब फौज की तैयारी में लगे। अच्छा अच्छा, हाँ, सो आप नोट घाट पर सर ह्यूरोज की फौज को भारत बखेड़त काल्पी कूच करें, यहाँ से हम आप सब जन मिलके ग्वालियर में अंग्रेजन पर धावा करें, अब देर ना भयो चाहिए।
5: ठीक है, हम घामोनी पर और आप सेना के साथ नारहट घाटी पर तैनात रहेंगे और ब्रिटिश सेना को आगे बढ़ने से रोकेंगे।
2: ठीक है, ये भी तय रहा कि यदि हम विफल होते हैं तो हम अपनी संपत्ति झांसी भेज देंगे, और हम में से एक पेशवा के पास जाकर सहायता की मांग करेगा और दूसरा जंगल में ही ठहरा रहेगा।
0: बुंदेलखंड में इन दो विद्रोही राजाओं के अभियान और उनको मिलने वाले जन सहयोग के कारण इस इलाके में अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे।
5: अच्छा।
0: आखिर कैप्टन गार्डन की सहायता के लिए लेफ्टिनेंट हैमिल्टन को बुलाना ही पड़ा।
6: लेफ्टिनेंट हैमिल्टन, तुम्हें हमने मेजर सोगन के साथ मिलकर विनायका में विद्रोहियों पर काबू पाने के लिए बुलाया है।
7: क्या हुआ विनायका में सर?
6: दरअसल इधर कुछ दिनों से शाहगढ़ के राजा बखत बली ने बागी रुख अख्तियार किया हुआ है।
7: सुना है भानपुर का राजा मर्दन सिंह भी उसके साथ मिल गया है।
6: हाँ, इन दोनों ने साथ मिलकर इधर कई वारदातें की है, जैसे चंदेरी ताल बेहट के बाद अब पंचमगढ़ और खुराई के थानों पर अधिकार कर लिया है।
7: सुना है खुराई में तो लंबरदार करुण सिंह और गणेश चू ने गद्दारी की थी।
6: हाँ, इन दोनों को पकड़ने के लिए तो हमने भारी इनाम की घोषणा किया है। वहाँ विद्रोही 1000 की संख्या में और 2 तोपे लेकर आए था।
7: सो तो ठीक है सर, लेकिन विनायका में हुआ क्या?
6: सब कुछ बखत बली का हिमाकत है। 8 जुलाई को विनायका थाने पर अधिकार किया, 12 जुलाई को विनायका तहसील पर, और अब विनायका शहर पर धावा है।
7: सर, हम लोग 20 जुलाई को विनायका पहुंचाएंगे, कहीं विद्रोही अतिरिक्त जोर लगाए तो आप 31वीं देसी फलटन और 30वीं नियमित सेना को सपोर्ट के लिए तैयार रहने के आदेश दे दें।
6: ओके।
7: जरूरी होने पर हम आपको खबर दे देंगे।
6: ठीक है, तुम्हारी विजय के लिए हमारा शुभकामना है।
7: थैंक यू सर।
0: इसके बाद घटनाएं तेजी से घटी। हैमिल्टन ने विनायका पे कब्जा कर लिया। सर यूरोज मड़ावरा से विद्रोहियों को खदेड़ते हुए तेजी से झांसी की ओर बढ़ने लगे। धामोनी के पास इंद्रपुरा गांव में बखत बली और ब्रिटिश सेना से टक्कर हुई। बखत बली की सेना की हार हुई और बखत बली को जंगल में भागना पड़ा।
1: और राजा मर्दन सिंह?
0: राजा मर्दन सिंह की यूरोज से पहली मुलाकात राहतगढ़ के किले में हुई। जब यूरोज ने किले पे धावा बोला तो मर्दन सिंह ने क्रांतिकारियों को बचाने के लिए आक्रमण कर दिया और सभी को बचा के ले भागे।
3: फिर
0: राजा मर्दन सिंह और अंग्रेजी फौज का अगला मुकाबला 30 जनवरी 1858 को बड़ोदिया के किले में हुआ। किसने सोचा कि भोपाल और बस्तर के बीच राहतगढ़ के पास बीना नदी के किनारे बना छोटा सा किला आजादी की लड़ाई में राजा मर्दन सिंह की वीरता और शौर्य का साक्षी बनेगा। पर यूरोज के विजयी अभियान को ये राजा रोक नहीं पाए। भागते समय जंगल में इनकी मुलाकात हुई।
2: राजा साहब, सब नष्ट हो गया। हमने हीरोज को झांसी जाने से रोकने के लिए मालथौन के पास नरहट की घाटी में मोर्चा जमाया था, पर किसी गद्दार ने हीरोज को इसकी सूचना दे दी और वो मदनपुर की घाटी की ओर से निकल गया। सब नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया।
5: मदनपुर की घाटी में तो हमने उससे दो दो बात किए थे, पर बड़ी सेना के आगे हमारी सेना टिक नहीं पाई और हमें प्राण रक्षा के लिए भागना पड़ा।
2: हीरोज ने बानपुर को भी अपने कब्जे में ले लिया, किले को ध्वस्त करके पुस्तकालय जला दिया। पूरे बानपुर में लूट खसोट तांडव कर राज हो गया है राजा साहब।
5: यही हाल श्यामगढ़ का हुआ है। लगातार असफलताओं ने हमें इतना निराश कर दिया है कि आत्मसमर्पण का मन करने लगा है।
2: आत्मसमर्पण तो अंतिम रास्ता है, पर अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं राजा साहब।
5: मतलब
2: ये कि एक रास्ता है
5: क्या,
2: कि हम अपनी बची सेना के साथ तात्या टोपे से जा मिले, पर इसके लिए हमें सागर जिला छोड़ना पड़ेगा।
5: अब यहाँ हमारा बचा ही क्या है।
2: तो ठीक है, हम महोबा के रास्ते मऊरानीपुर चलते हैं। चरखारी विजय के बाद में जैतपुर महोबा होते हुए मऊरानीपुर पहुंचने वाले हैं, वहीं उनसे मुलाकात होगी।
0: मऊरानीपुर में तात्या के आने के बाद मर्दन सिंह और बखत बली अपनी सेना के साथ उनके साथ हो लिए।
5: अच्छा,
0: 31 मार्च के दिन तात्या की सेना की भिड़ंत झांसी से लौटती यूरोज की सेना के साथ बरुआ सागर के पास बेतवा घाट पे हुई।
5: अच्छा,
0: पर ब्रिटिश सेना के जोरदार आक्रमण के आगे तात्या टोपे की सेना टिक नहीं पाई और भाग खड़ी हुई। सब तितर बितर हो गए।
3: फिर क्या हुआ दादा?
0: फिर पता चला झांसी की रानी तात्या टोपे के संग कालपी की ओर जा रही है।
3: अच्छा,
0: तो ये दोनों राजा भी अपने 3,000 सैनिकों के संग कालपी की ओर चल दिए। पर 28 अप्रैल 1858 को उनकी भेंट रानी और तात्या से कोंच में हो गई। वहां फिर ब्रिटिश सेना के संग भयंकर लड़ाई हुई, पर झांसी की रानी की सेना की भारी पराजय हुई। जिसको जहां जगह मिली वो वहीं भागा। राजा मर्दन सिंह और बखत बली इतने निराश और हतोत्साहित हुए कि उनने वापस सागर लौटने की ठान ली।
8: पर वहां उनके लिए बचा ही क्या था काका?
0: तुमने सही कहा बेटा, पर वे कुछ लेने नहीं देने आए थे।
8: क्या?
0: 5 जुलाई 1858 को मर्दन सिंह ने शाहगढ़ के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट मिस्टर थार्टन के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। ये देखकर अगले दिन यानी 6 जुलाई को बखत बली ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से दूर लाहौर जेल भेज दिया गया। पर आखिर में उनकी इच्छा के अनुसार इन्हें मथुरा वृंदावन में रहने की अनुमति मिल गई। 22 जुलाई 1879 को मथुरा में राजा मर्दन सिंह आजाद भारत का सपना लिए संसार से विदा हो गए। लेकिन आज भी बुंदेली लोकगीतों में उनकी शौर्य गाथा गर्व से गाई जाती है।

निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಷು ಸರ್ವದಾ. ರೇಡಿಯೋ ಮಧುಬನ್ ಸುನ್ನೆ ವಾಲೆ ಸಭಿ ಶ್ರೋತಾವೋ ಕೋ ಗಣಪತಿ ಕೆ ಇಸ್ ಪರ್ವ ಕಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಶುಭ ಕಾಮನಾಯೆ. ರೇಡಿಯೋ ಮಧುಬನ್ ಸುನ್ತೆ ರಹಿಯೆ ಮುಸ್ಕುರಾತೆ ರಹಿಯೆ.
1: दोस्तों, जीवन में मुस्कुराना कितना जरूरी है और मुस्कुराते हुए लोग कितने अच्छे लगते हैं। कभी कोई उदास होता है तो ढूंढते हैं कुछ ऐसे लोगों के पास जाएं ताकि हमारी चेहरे की रेखाएं बदल जाएं, मुस्कान आ जाए। ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हुए भी हम कभी ये नहीं सोचते हैं उनके जीवन में उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनका जीवन इतना सुखमय है या फिर इतना खुशहाल है या सदा मुस्कुराहट उनके चेहरे पे होती है। यही सारी रहस्यों को जानने के लिए आज हम कार्यक्रम लेके आए हैं। जीना इसी का नाम है। दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर लगातार आप इस कार्यक्रम के जरिए कुछ योगियों के अनुभवों को सुन रहे हैं। उनके जीवन में वो परिवर्तन कैसे आया और वो अपने जीवन को इस तरीके से कैसे बनाया ताकि लोगों को लगे कि वाह क्या जीवन जिया इन्होंने। तो दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं आदरणीय रुपेश भाई जी को। आप ब्रह्म कुमारी मुख्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी जो अलौकिक यात्रा है कब और कैसे कहां शुरू हुई जानते। रुपेश भाई, आपको रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी मैं दिल से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ आज के सुंदर से कार्यक्रम में।
1: जी, तो रुपेश भाई, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप अभी वर्तमान में तो एक अलौकिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपकी जो जीवन की यात्रा कब और कहाँ से कैसे शुरू हुई, आपने कौन से परिवार में जन्म लिया, आपके भाई बहने, और आपने जब जन्म लिया तो समय का क्या माहौल था, आपके परिवार में धार्मिक थे या अध्यात्म के रुचि रखने वाले थे, तो ये सारी बातें हम जानना चाहेंगे।
2: जी जी, मेरा जन्म छत्तीसगढ़ बिलासपुर में हुआ। तब तो एमपी हुआ करता था, मध्य प्रदेश, और 8 फरवरी 1976 में बर्थ हुआ मेरा। और एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, पिताजी अकाउंटेंट थे और घर का माहौल ठीक है, सामान्य रूप से भक्ति भाव वाला ही था। माताजी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थे और हम चार भाई बहन हैं, 3 भाई 1 बहन और मैं सबसे छोटा हूँ उनमें। तो छोटा होने के नाते वैसे सबका लाडला रहा छोटे को वैसे भी बहुत प्यार मिलता है। तो बिलासपुर में रहना हुआ, उसके बाद पिताजी का ट्रांसफर हो गया तो हम अंबिकापुर चले गए, वो भी छत्तीसगढ़ में ही है। तो वहीं मेरी स्कूलिंग आदि सभी अंबिकापुर में ही हुई। और जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तभी एक जैसे एक परिवर्तन का भाव जीवन में अचानक से आने लगा। मन में एक प्रश्न उठने लगा कि आखिर ये संसार है क्या, किसने रचा है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो वैसे तो माताजी के साथ थोड़े से आध्यात्मिक स्थानों पे जाना होता था लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं। और पढ़ाई में वैसे मेरी बहुत रुचि थी, मेडिकल करने का लक्ष्य था, इसीलिए मैंने बायो भी लिया था। लेकिन वही 10th के बाद थोड़ा थोड़ा एक वैचारिक परिवर्तन आने लगे। मुझे लगा कि नहीं, संसार को समझना और संसार के लिए मैं ऐसा क्या करूं जो जिसकी आज संसार को जरूरत है। तो एक चीज विशेष लगती थी कि आज जैसे एक नैतिक मूल्यों का ह्रास होता चल रहा है समाज में। आज धन है, वैभव है, भौतिकता से हम संपन्न होते चल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से, कहीं ना कहीं नैतिक रूप से एक मनुष्य नीचे की ओर जा रहा है। तो इस बात की ओर ज्यादा ध्यान जाने के कारण लगा कि क्यों ना कुछ नैतिक या आध्यात्मिक रूप से किया जाए, लेकिन उसका मार्ग क्या हो ये पता नहीं था। और ईश्वर की भी एक तलाश, सत्य की एक तलाश बहुत तीव्र रूप से मेरे अंदर आ गई थी, ना जाने कहां से। वो कहते हैं ना, कई बार गॉड का कुछ कॉल होता है तो एक भूमिका वो बना रहे होते हैं। तो सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, ये जानने की बहुत ज्यादा इच्छा उत्पन्न होने लगी। तो कभी मैं पहाड़ पे चला जाता था, कभी एकांत में चला जाता था और अपने अंदर से ही कोशिश करता था कि वो चीज निकल करके आए। कभी गुरुओं से मिलना होता था लेकिन वो चीज आ नहीं पा रही जिसकी मुझे तलाश थी। जानता भी नहीं था कि क्या चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी जिससे मुझे संतोष मिले, तृप्ति मिले। और तभी एक प्रदर्शनी लगी हुई थी ब्रह्मा कुमारी की ओर से। मम्मी तो वैसे भी इन सब चीजों में रुचि रखती थी तो उन्होंने वो देखा, प्रवचन हुआ, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसा ऐसा है, आप चलें। फिर जब ब्रह्मा कुमारीज में आना हुआ तो पहले दिन से ही एक परिवर्तन,
1: मम्मी के साथ साथ में
2: जी वो लेकर के आई, तो हम फिर साथ आए, फिर ब्रह्मा कुमारीज के बारे में जाना, और जिसकी फिर तलाश थी ना, एक कहें कि प्यास थी, एक अतृप्ति थी अंदर जो जागृत हुई थी, वो लगा कि नहीं वो यहीं से मुझे सब कुछ प्राप्त होगा, तो अंदर की एक तृप्ति, अंदर की जो एक प्यास का बुझना, उसकी अनुभूति मुझे यहाँ।
1: जी तो जैसे आप आए थे ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में, तो उस समय आपकी क्या उम्र थी?
2: उस समय मैं था 15-16 ईयर्स की एज थी मेरी, और उसके 2 साल के बाद ही फिर मैंने ये निर्णय कर लिया कि मुझे अब जैसे पूरी तरह से अध्यात्म के रंग में रंगना है अपने जीवन को इस मार्ग में, क्योंकि एक था एक जो चाहना थी कि नहीं कुछ ऐसा किया जाए जिसकी जरूरत है आज समाज को। अंदर से मेरी भी एक रुचि अध्यात्म की ओर एक बढ़ ही गई थी, तो भगवान को जानना, खुद को जानना और खुद को विश्व की सेवा में लगाना, ये
1: आदर्श भी थे आपके जीवन।
2: वैसे विवेकानंद जी को मैं बहुत पढ़ा करता था और वो बहुत ही जैसे प्रभावित किया करते थे, लगता था कि जीवन हो तो ऐसा जैसे ईशो का नाम ही है ना, जीना इसी का नाम है, तो लगता था कि सच में जीना तो इनका ये है, ऐसा होना चाहिए जीवन जो अपने लिए नहीं, क्योंकि कितने सक्षम थे, कितने योग्य थे, कितने बुद्धिमान थे विवेकानंद जी, लेकिन वो चाहते तो क्या कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज की सेवा को चुना या मानव जाति की सेवा को चुना और अध्यात्म को के पद को चुना, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि अध्यात्म ही हमारी नींव है, यही हमारी संस्कृति है, और ये जब तक भारतवासियों के लोगों के जीवन में नहीं आएगा तब तक हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते, एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते। बाहरी तौर से विकसित भले हो जाएं, लेकिन पहले विकसित तो अंतर मन से होना है, तो मेरे आदर्श रहे, उनको मैं बहुत पढ़ा करता था। और यहाँ विद्यालय से जुड़ने से पहले एक बार मन ये भी मैंने बना लिया था मैं रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करूंगा, क्योंकि वो मेरे आदर्श थे, मुझे अच्छा लगता था, लगता था कि उनकी एक बात, वैसे बहुत सारी बातें हैं उनकी, लेकिन एक बात बहुत दिल को छूती थी, वो कहा करते थे कि हम इंसान हैं और यदि हम भी जीव जंतुओं की तरह वनस्पतियों की तरह पैदा हुए हैं, हम भी बड़े हुए, हमारा भी विवाह हुआ, हमारी भी 2-4 संतानें हुई और हम भी कालकल्पित हो गए, मृत्यु के ग्रास बन गए, तो हम में और जीव जंतुओं में क्या अंतर रहा? आप इंसान हैं, मानव हैं और जीव मंडल के सर्वोच्च प्राणी हैं, तो जरूर आपको जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जो लगे कि मैंने समाज के लिए, मानव जाति के लिए कुछ किया। तो वो बात बहुत छूती थी और इसीलिए संन्यास या अध्यात्म की ओर चढ़ने की और रुझान जो है वो तेज हो गए थे मेरे।
1: So, जब आप और आपकी माताजी दोनों कोर्स वगैरह करने लगे और ज्ञान मार्ग में चलने लगे, तो फिर बाकी आपके पूरी परिवार वाले आपके सपोर्ट में थे?
2: धीरे धीरे उन सब ने ज्वाइन कर लिया।
1: अच्छा, क्योंकि माँ की बात माननी पड़ेगी।
2: हम लोगों का पूरा परिवार, हमारा कोर्स जो है लगभग 1 महीने चला। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि जस्ट 2-3 दिन का कोर्स होता था, उसके बाद एक ज्वाइन कर लेता था, तो फिर से पहले से वो कहते थे अच्छा ये आ गया, फिर से पहले से शुरू करते हैं, फिर 3-4 दिन के बाद दूसरा, तो ऐसे करके लगभग 1 महीने तक वो पूरा ही साप्ताहिक कोर्स हम लोगों का चलता रहा, और सभी ने बहुत हृदय से स्वीकार किया, क्योंकि लगता है सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य में शक्ति होती है, सत्य हमें अनुभूति कराता है, सत्य हमारे हृदय को छूता है। तो वही स्थिति हम सबकी थी, कोई मन में द्वंद्व नहीं, कोई मन में प्रश्न नहीं, सभी ने सत्य को हृदय से स्वीकार किया कि नहीं सचमुच यही जीवन जीने का सही मार्ग है और इसी की आवश्यकता आज हर एक इंसान को है यदि आप सुख शांति में जीवन जीना चाहते हैं तो।
1: जी तो जैसे आपने कहा कि आप 15-16 साल की उम्र में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में है और आपको ये ज्ञान बहुत ही स्पष्ट और सही लगा कि यही जीवन का सही मार्ग है, फिर आपने वो भी कहा कि उसके 2 साल के बाद आपने ये भी संकल्प कर लिया कि मुझे अभी जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित करना है, तो फिर क्या आपको आसानी से अनुमति मिल गई थी?
2: जैसे मैंने एक शब्द यूज किया था कि भगवान का जब एक बुलावा होता है ना, एक जो गॉड्स कॉल है वो इतना तीव्र होता है कि उसके रास्ते में आने वाले सारे व्यवधान दूर हो जाते हैं। जैसे हम भक्ति में देखा करते थे ना कि जस्ट श्री कृष्ण के फादर उनको लेके बस यमुना में चल पड़ते हैं बस, और वो यमुना नीचे रास्ता बनाती चलती है, क्योंकि वो एक ईश्वरीय लीला दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये मेरा अपना प्रयास नहीं था, ठीक है अंदर की मेरी एक चाहना, एक प्यास थी जो मुझे ये मार्ग मिला, लेकिन ईश्वर की कहीं ज्यादा इच्छा थी। मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरा है और इसकी जरूरत मुझे है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए इतना प्रबल था, मैं आपको बताऊं, मैं बुक वर्म था, मतलब मेरे हाथ में किताब होती होती थी। इवन प्ले ग्राउंड में भी ना, मैं जब फुटबॉल खेला करते थे हम लोग, तो मैं गोल कीपर बन जाता था, वो इसलिए ताकि मैं अपने किताब के साथ जो बॉल है, नहीं नहीं वो तो यदा कदा ही आएगा, वो कभी बीच में रहता है, यहाँ वहां रहता है, जब मेरे पास आएगा तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा। तो कभी हमारे टीचर भी कहा करते थे, किसी कोई पूछता था कि रुपेश कहाँ मिलेगा, तो कहते थे कि देख लेना जा करके, जिसके हाथ में किताब हो वो रुपेश है। मतलब ऐसी मेरी छवि थी, किताब से जुड़ा हुआ, इतना बुक वर्म, और ऐसा कि नहीं बनना है तो एक अच्छा डॉक्टरी का भी पेशा, इसलिए कि वो सेवा भाव है ना, कि औरों के लिए सेवा है, औरों के हम काम आते हैं। लेकिन वही मैंने कहा ना, जो ऐसा बुक वर्म हो, किताब से इतना चिपका हुआ हो, जिसको ऐसा उसके अंदर ये भाव डाल देना कि नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा जरूरत किसी और चीज की है, मुझे या संसार को है। क्योंकि नैतिकता और आध्यात्मिकता आज के समय की पुकार है, और जब जब समय की पुकार होती, कितने ऐसे युवक थे जो अच्छे अच्छे फील्ड में रहे होंगे, जब देश को आवश्यकता थी, महात्मा गांधी जी ने या सुभाष चंद्र बोस ने जब पुकारा कि अब मातृभूमि को तुम्हारी जरूरत है, उन्होंने भी तो त्याग किया ना, उनके भी मन में सपने थे, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई और कुछ करना चाहता होगा। यदि उन्होंने वो त्याग नहीं किया होता तो देश आज भी आजाद नहीं होता। तो यही भाव मन में था कि आज संसार को, वो भी एक विकृतियों से जकड़ी हुई है ना, अब उसे भी आजाद कराने की जरूरत है, तो किसी ना किसी को तो सामने आना पड़ेगा, क्यों नहीं मैं।
1: मुझे तो कोई भी द्वंद नहीं लगता है इस बात में, क्योंकि भले आप फिजिकल डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल डॉक्टर बन पाए, लोगों की चेहरे पे मुस्कुराहट से दिल की दर्द को दूर करने का काम करते हैं।
2: जी शुक्रिया, ये भी परमात्मा का आशीष है।
1: जी, तो जैसे आप अभी समर्पित हुए हैं और आपको वो प्रेरणा थी कि मुझे देश की सेवा करना है, जब समय के अनुसार, जब देश ने जिसको जैसे पुकारा और वो देश की सेवा करने चले, तो जब आप ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए और अब बहुत ही छोटी उम्र में थे, वेरी यंग एज, उसमें बहुत ही रेबेलियस थिंकिंग भी होती है, क्रांतिकारी विचार ऊर्जामयी होते हैं, और ऊपर से आप मेडिटेशन करते हैं तो और भी ज्यादा ऊर्जा का संचार होता है।
2: जी जी।
1: तो क्या कार्य करते थे आप और क्या क्या सीखा आपने समर्पित जीवन में?
2: जब मैं वहां से चला था, मन में एक भाव आया, जैसे हमने इस सत्य ज्ञान को समझा, तो कि अब ये जीवन ईश्वर के लिए है या विश्व सेवा के लिए है। तो जब मैं वहां से चला छत्तीसगढ़ से माउंट आबू के लिए कि अब समर्पित होना है, तो मन में एक ही भाव था कि वहां ईश्वर के घर में जो भी कार्य मिलेगा, जो भी सेवा मिलेगी, वो सेवा हम करेंगे, लेकिन रहेंगे ईश्वर के पास ही, उसके साथ ही, खुद को जानेंगे, समझेंगे, ईश्वर को समझते हुए ईश्वर की सेवा करेंगे। तो कोई ऐसी चीज थी नहीं कि हम पर्टिकुलर कि हाँ ये चीज हमें मिले तो हम जाएंगे, या हमें ये स्थान मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मन में यही था कि जो होगा ईश्वर जो देंगे, जो कहते हैं ना कि ईश्वर जैसे बिठाए जो खिलाए, ऐसा एक भाव मन में था। तो आए तो किचन से शुरुआत है, जैसे हमारे यहाँ उस समय ज्ञान सरोवर का निर्माण हो रहा था, और जो भी आते थे पहले किचन में ही जाते थे, तो किचन की सेवाएं, तो वहां पे किचन में रह करके मैंने अपनी सेवाएं शुरू की। और बड़े भाग्यशाली रहे कि हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय सूर्य भाई जी, उनकी देखरेख में इस अध्यात्म की गहराई में उतरने का बहुत सुंदर अवसर मिला। तो किचन की सारी सुंदर सेवाओं को सीखते सीखते, वही सेवाएं करते करते आगे बढ़ते चले, फिर तो और बहुत सारी, आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि जो ईश्वर को समर्पित रहते हैं ना, इस भाव से रहते हैं कि आपको मुझे जैसे यूज करना है आप करो, तो वो उसके लिए खुद ही मार्ग खोलने लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे नहीं, एक छोटा बच्चा होता है, वो नहीं सोचता कि उसको क्या करना है, ज्यादा नहीं सोचता, उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ मतलब इसको किस स्कूल में डालना है, कहाँ ले जाना है, क्या कराना है, तो पेरेंट्स सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने खुद को ऐसे अर्पित करके रखा भगवान को कि आपको जो कराना हो आप कराना, मैं अर्पित हूँ। तो उन्होंने हर प्रकार के और मार्ग खोलते गए मेरे लिए, चाहे वो अच्छा प्रवचन करने की बात हो, लोगों के बीच जाने की बात हो, और मैं उतना नहीं किया करता था, लेकिन हाँ अलग अलग जो रैलियां होती हैं उन सब में भाग लेने की बात हो, इन सब का द्वार उन्होंने खोला। तो मुझे लगता था कि मेरा एक दोस्त आया जब मैं यहाँ सरेंडर हो गया था, तो 3-4 साल के बाद, वो भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ था। उसने देखा कि मैं किचन में काम कर रहा हूँ, तो उसने कहा रुपेश तू जीवन भर किचन में ही काम करता रहेगा ऐसे। तो मैंने तो खैर इस विषय में सोचा नहीं था, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद इसने भगवान को, अध्यात्म को, सेवा भाव को नहीं समझा है। जहाँ सेवा भाव होता है ना, वहाँ छोटे कार्य बड़े कार्य ये नहीं होते, वहाँ छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं। सेवा अपने आप में ही बड़ी चीज है, समर्पण अपने आप में ही बड़ी चीज है। तो ईश्वर ने फिर बहुत कुछ दिया, बहुत आगे बढ़ाया। मैं समझता हूँ कि विश्व के मंच पर आने का उन्होंने भाग्य दिया। तो आप ईश्वर को अर्पित होते हैं, ईश्वर आपके लिए सारे मार्ग खोल देता है, मैं तो ऐसा अनुभव कर।
1: तो रुपेश भाई ये बताइए कि आपको कौन सी ऐसी चीजें लगी कि अगर मैं संस्था में नहीं आया होता तो शायद ही मैं ये चीजें सीख पाता, और ये आपकी योगी जीवन की ये जो 40 वर्ष रहे हैं इसमें आपने कौन सी ऐसी प्राप्तियां या अपने जीवन में वो परिवर्तन देखते हैं?
2: देखिए, यदि जीवन में अध्यात्म नहीं है तो भले ही आप संसार में हैं, अच्छे से आप आगे बढ़ जाते हैं, बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, आपके पास धन धान्य हो सकता है, सुविधाएं हो सकती हैं आपकी योग्यता के आधार पर, लेकिन मुझे लगता है जब तक जीवन में अध्यात्म नहीं होता या ईश्वर नहीं होते तो वो चीजें आपको सुकून नहीं देती। वो आपके अहम को बढ़ाती हैं, वो आपके मैंपन को बढ़ाती हैं, वो आपकी तृष्णाओं इच्छाओं को और भी ज्यादा बढ़ाती चलती हैं। फलता व्यक्ति भागता ही रहता है उन चीजों के पीछे, 99 का चक्कर जिसको कहते हैं, एक और चाहिए, एक और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति इस मार्ग से में से जुड़ता है तो वैसे ही ना उसके अंदर एक तृप्ति और संतोष आ जाता है। वो आगे से आगे बढ़ता ही है, उन्नति करता है, लेकिन संतोष के साथ करता है, खुशी के साथ करता है, इच्छाओं और चाहनाओं के साथ नहीं करता। मुझे लगता है कि यहाँ आने के पश्चात वहां मैं जितना ज्यादा महत्वाकांक्षी था तो यहाँ भी वो उसका रूप परिवर्तित हुआ, लेकिन उसमें एक समर्पण का भाव, उसमें एक ये भाव जागृत अवश्य हो गया कि नहीं, ईश्वर को अर्पित करके अब मुझे जीवन को आगे बढ़ना है। तो ये जो समर्पणता का भाव है, ये जो नम्रता का भाव है, या जहां से आपने शुरुआत की थी कि आप मुस्कुराते रहते हैं या आपके जीवन में एक सुंदर मुस्कान है जिसे आप बांटते रहते हैं, तो मुझे लगता है ये चीजें शायद मैं यदि यहाँ नहीं होता तो ये चीजें मेरे जीवन में नहीं होती। जो निरंतर मुझे लगता है ये भगवान के द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट है, बहुत बड़ी गिफ्ट है। बहुत सारी लिस्ट हो सकती है कि उन्होंने क्या क्या दिया, लेकिन एक ये चीज जिसे मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके चेहरे पे जो आपकी मुस्कान है वो ईश्वर का हस्ताक्षर है, इसे किसी भी कारण से मिटने ना दें। तो मुझे लगता है कि भगवान ने परमानेंट मार्कर से ये हस्ताक्षर मेरे चेहरे पे कर दिया है, और ये प्राप्ति मुझे यही हो सकती थी, आध्यात्मिक जीवन से ही हो सकती थी, वहां मैं ये नहीं कर सकता था।
1: अगर ऐसा गिफ्ट मिलना है, परमात्मा का हस्ताक्षर आपके चेहरे पे, तो लोगों को क्या करना चाहिए?
2: मुझे लगता है कि केवल एक चीज यदि सभी कर लेना, अपने आप को अर्पित करें उन्हें मन से, हम तेरे हैं। भक्ति में वैसे भी हम गाते थे ना, तेरा तुझको अर्पण, और ये भी कहते हैं जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, लेकिन केवल गाते हैं। मुझे लगता है केवल एक चीज ये कर लेना, अपने आप को अर्पित कर दे, हम तेरे हैं, तुम्हारे हैं, ये भाव ही मुस्कान ले आता है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है तू चिंता मत कर, मैं बैठा हुआ हूँ। तो कोई आपके लिए सब कुछ कर रहा है, नहीं बड़े से बड़ा कार्य है, जिम्मेवारी है, और भगवान कह रहे हैं तू चिंता मत कर, मैं बैठा हुआ हूँ, तो क्या होगा, चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, आप हल्के हो जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति बोझिल होकर के अपने मुस्कान को भूल गया है ना, कि ये काम है, वो काम है, ये करना है, वो करना है, और इसने हमारी मुस्कान को छीन लिया है। बस इसने जीवन दिया है उसे करने दें, और निमित्त भाव से ट्रस्टी बनकर के चलते चले ना, आपकी मुस्कान हमेशा कायम रहेगी।
1: वो कौन सा मोड़ था या कौन सा पल था जिस दिन आपको या उस समय आपको लगा कि यही जीना है, इसी को जीना कहते हैं या जीना इसी का नाम है?
2: शुरुआत में मैं पुनः चलूंगा, जब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, हम लोगों का कोर्स जैसे मैंने कहा थोड़ा सा लंबा ही चला, लेकिन मुझे लगता है पहले ही दिन जब कोर्स हुआ और मैं बाबा के रूम में बैठा, मेडिटेशन रूम में, जहां परमात्मा से एक रूबरू, मुझे एक गहरी फीलिंग थी कि ये ट्रांसलेट नहीं है, लेकिन खुद भगवान ही सामने बैठे हुए हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, और शायद लोगों को भी, अपने हमारे दर्शकों को भी हो सकता है इन पे विश्वास हो ना हो, लेकिन अध्यात्म में ये चीजें बहुत होती हैं कि बस वहां मेडिटेशन करते करते ना इतने आंसू मेरे अंदर से आने लगे, इतना आंसू। मुझे खुद भी लग रहा था कि आंसू क्यों आ रहे हैं, लेकिन बाद में ये रियलाइज हुआ कि व्यक्ति के आंसू राइट तभी आते हैं जब उसका मिलन उस चीज से हुआ हो जिसकी तलाश उसको सदियों से हो। आपका बच्चा यदि वर्षों से बिछड़ गया है और जब वो आपको मिलेगा तो आपकी फीलिंग कैसी होगी? क्या आप अपने आंसू रोक पाएंगे? कोई कहे ना कहे, लेकिन वो स्वतः ही बाहर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस ज्ञान के, जिस सत्य के, जिस परमात्मा को मुझे तलाश थी ना, वो मुझे मिल गया। और सचमुच वो मिला तभी वो आंसू आए ना। किसी ने कहा नहीं कि चलो तुम रो, क्योंकि मेडिटेशन में बैठने के बाद रोना होता है, ये किसी ने कहा नहीं, ये स्वतः स्फूर्त था। और उसी दिन मैंने ये निर्णय कर लिया कि नहीं, कि यही सत्य और इसी मार्ग पर चलते हुए इस सत्य का साक्षात्कार सभी को कराना है। वो एक सबसे बड़ी एक टर्निंग पॉइंट थी मेरी लाइफ की, जो एक मेडिकल की ओर बढ़ने वाला एक स्टूडेंट एक ऐसे आध्यात्मिक डॉक्टर बनने की ओर बढ़ चला, जो मन में जो विकृतियां है लोगों के उसे दूर करने में कुछ अपना योगदान दे सके।
1: बहुत सुंदर। मुझे लगता है आंखों की जो आंसू है वो हमारी इमोशन का एक एक्सप्रेशन है
2: जी।
1: जरूरी नहीं व्यक्ति दुखी होता है तभी वो आंसू बहाता है, कभी खुशी में भी आंसू आते हैं, कभी जब संतुष्ट हो जाता है, जैसे आपने कहा जिनसे हम बिछड़े हुए हैं और ढूंढ रहे और जब अचानक मिलता है तो वो शब्द नहीं आते हैं, वो इमोशन आंसू के रूप में एक एक्सप्रेशन होता है कि आपसे मिलके हमें खुशी हुई या तृप्त हुए हैं, और जो हमारा जो खोज था वो खत्म हुआ है और हम अभी मिल गए हैं। बाद में धीरे धीरे फिर वो बातें आने लगती है।
2: वो पहले तो वो जो भाव है उस भावना में हम बह जाते हैं और वो बहुत सुखद अनुभूति होती है। हाँ। क्योंकि उसमें कोई व्यापार नहीं है, वो कोई लेन देन नहीं है, वो बहुत शुद्ध, जैसे एक स्मृतियां हैं, शुद्ध भाव है, हृदय के भाव है, जिसमें बहना व्यक्ति के लिए यादगार होता है और जीवन को बदलने वाला होता है पूरी तरह से।
1: So, अगर आप अपनी पूरी जीवन यात्रा को देखते हैं और कोई एक शब्द से अगर आप कहते हैं कि आपका पूरा जीवन उसे जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा शब्द है जो आपके पूरे जीवन को दर्शाता है?
2: एक शब्द यदि ढूंढ के मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि परमात्मा साथ,
1: कंपेनियन ऑफ गॉड
2: जी। ये मुझे लगता है कि मैं अपने पूरे जीवन को यदि थोड़ा सा डिस्क्राइब, मतलब इस रूप में करना चाहूँ कि कौन सी ऐसी चीज रही जिसने मुझे छुआ, मुझे बदला, या जिसके साथ मैं हमेशा रहना चाहूंगा, या जिसे मैं अपनी पहचान बनाना चाहूंगा, वो यही एक ऐसा शख्स जो भगवान के साथ रहता है, जो भगवान का दोस्त है, जो भगवान का मददगार है, जो भगवान की इच्छाओं आशाओं को पूर्ण करने वाला है, या फिर जैसे ईश्वर की जो सृष्टि है, ईश्वर चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे सुखी हों, संसार स्वर्ग हो, तो उसके उस कार्य में मदद करने वाला। तो मैं सोचता हूँ कि इस रूप में मैं खुद को ज्यादा कनेक्टेड फील करता।
1: थैंक यू सो मच रूपेश भाई, बहुत ही लाइट मोड में बहुत ही गहरी बातों को, और जीवन की वो चंद पल जहाँ पे भी आपकी टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं आपके जीवन को दर्शाने वाले, उन सारी बातों को हमारे साथ शेयर किया। और मैं समझती हूँ कि आज के युवा भी उन चीजों से कनेक्ट कर पाते हैं और प्रेरणा ले पाते हैं आपके जीवन से। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए।
2: जी, दिल से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए और हमारे सभी रेडियो मधुबन के श्रोताओं से जुड़ने के लिए। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी श्रोताओं का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, यहीं पे हम विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं जीवन रोशनी कार्यक्रम रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। क्योंकि 4:02 हो गया है और जैसे कि आप सभी को पता है कि हर संडे इस समय पर हम लेकर के आते हैं जीवन रोशनी कार्यक्रम। दोस्तों, कई बार नई राहें हमेशा बाहर नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी एक नई राह हमारे अपने अंदर ही जन्म लेती है। लेकिन बात होती है सिर्फ एक बार एकांत में बैठ कर के उस राह को देखने की, तलाशने की। एक ही परिस्थिति, एक ही साधन, लेकिन सोचने का तरीका नया हो सकता है तो परिणाम भी नया हो सकता है। यही है नवाचार। कुछ नया करने से पहले कुछ नए देखने की क्षमता भी होना बहुत ज़रूरी है। तो उस नए देखने की क्षमता को कैसे विकसित करें, कैसे हम इनोवेट करें, तो आज हम ये मूल्य लेकर के आए हैं। और हम सभी के समक्ष हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो है बीके रुचिका दीदी। और आप पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़ी हैं और 2010 से आप ब्रह्मा कुमारीज के अंतरालय मुख्यालय में माउंट आबू में हेडक्वार्टर में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपने MBA फाइनेंस की शिक्षा प्राप्त की और इसके साथ साथ इंटरनेशनल बैंक्स में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे समक्ष हैं, रेडियो मधुबन के साथ जुड़ी हुई हैं। वैसे जो भी सेमिनार्स आदि अकाउंट्स के रिलेटेड प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं यहाँ पर, तो आप उनको भी गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, स्पिरिचुअल सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी कराते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज रेडियो मधुबन पर।
1: थैंक यू। ओम शांति।
0: ओम शांति। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप इनोवेशन को कैसे समझाएंगे हमारे श्रोताओं को।
1: इनोवेशन इज समथिंग हम अपने में कुछ बदलाव करें जिससे कुछ बेटर हो। चेंजेस तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन जो बदलाव एक बेटर आउटकम हमें दे वो इनोवेशन है।
0: जी, बेटर आउटकम हमें,
1: बेटर आउटकम हमें दे
0: जी।
1: कुछ सुधार के लिए अगर हम अपने अंदर कुछ चेंज लाते हैं तो दैट इज इनोवेशन।
0: ओके। तो अगर सिर्फ नई चीज बनाने के बजाय आप कह रहे हैं कि कोई चीजों को अगर हम हमारे दृष्टिकोण परिवर्तन करके देखते हैं तो उसे भी इनोवेशन कहेंगे।
1: जी, एक्चुअली चीज कब बनती है, हम अभी बाहरी रूप से अगर हम देखते हैं तो हम बाहर की चीजें देखते हैं कि ये नई चीज हमें बनी है, बट अगर उसका बैकग्राउंड देखें तो हमने अपनी सोच बदली, हमने अपने संकल्प बदले, हमने अपना दृष्टिकोण बदला, तो हम वो नई चीज प्रोड्यूस कर पाए।
0: जी।
1: अगर हम अपनी सोच ही ना बदलते तो कभी उस नई चीज का प्रोडक्शन या आउटकम कभी आता ही नहीं। कोई भी अगर बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग का नक्शा पहले हमारे माइंड की में बनता है।
0: जी।
1: उसका पूरा आर्किटेक्चर की कैसा होना चाहिए, बिल्डिंग कैसे दिखनी चाहिए, किसी भी चीज का अगर आविष्कार होता है तो पहले हमारे

0: सफल हो पाएंगे या नहीं सफल हो पाएंगे या उसका आउटकम क्या होगा
1: जी,
0: तो सबसे पहले तो हमें सोच को बदलें कि मैंने पहले नहीं किया या अगर मैं करूँगा तो मैं फेल ना हो जाऊँ या कुछ गलत ना हो जाए। हर गलती जो है आविष्कार का एक पहला कदम है, नवीनता का एक पहला कदम है। तो सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा
1: जी,
0: और ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन के अंदर बदलाव जरूरी है। जब तक हमें उसकी जरूरत फील नहीं होती या उस बदलाव से होने वाली प्राप्ति क्या है वो जब तक हमें समझ में नहीं आता तब तक हम कोई भी कदम उठा नहीं पाएंगे। वो अंदर मन में भय डर बना ही रहेगा। तो सबसे पहला जो चाहिए हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए
1: जी।
0: वो जो अंदर की इच्छा है कि वी शुड चेंज समथिंग, जैसे दुनिया में भी कहावत है ना, मूव यू आर नॉट अ ट्री,
1: राइट
0: राइट। तो ट्री जो है वो मूव नहीं कर सकता, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव क्रिएटिविटी, वी हैव कैपेबिलिटीज। जब तक हम उस अंदर की अपनी क्रिएटिविटी को परखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बाहर नहीं लाएंगे तब तक हम कुछ नया कर नहीं पाएंगे
1: जी। जैसे कहते हैं कि अपने अंदर की क्रिएटिविटी को परखने के लिए आप कहीं अकेले में चले जाओ, कहीं बैठो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कैसे हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचानेंगे?
0: जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि अकेले में चले जाइए। कहते हैं साइलेंस इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, साइलेंस इज द मदर ऑफ इनोवेशन
1: जी।
0: अभी हम देखते हैं कि अगर हम थोड़ा भी हमें टाइम मिलता है तो हम सीधा अपना फोन उठाते हैं। अगर हम मान लो बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं बस का, हम अपने फोन में बिजी हैं। हम भोजन कर रहे हैं, अपने फोन में बिजी हैं। जैसे हमारा एक रिंगटोन बजा, छोटा सा मैसेज भी आया
1: जी,
0: हम तुरंत ईगर होते हैं उसको चेक करने में। कहीं थोड़ा सा भी हमें टाइम मिलता है, नींद नहीं आ रही, फोन उठा लिया, जल्दी आंख खुल गई, हमने फोन उठा लिया। हमने अपने को कहीं ना कहीं हमेशा ऑल टाइम ऑक्यूपाई रखा हुआ है,
1: राइट।
0: तो जब तक हम अपने आप को उन सब चीजों से फ्री नहीं करेंगे, कहते हैं द बेस्ट वे टू क्रिएटिविटी, बेस्ट वे फॉर इनोवेशन इज टू डू नथिंग।
1: ओके,
0: आप कुछ मत कीजिए। आपके मन में नए आइडियाज तभी आएंगे अगर हमने पहले से ही अपने मन को इधर उधर व्यस्त रखा हुआ है। तो मार्जिन ही हमने नहीं छोड़ी कुछ नया सोचने की
1: जी।
0: तो हम नया तभी सोच पाएंगे, क्रिएटिव तभी सोच पाएंगे जब हम अपने आप को मार्जिन देंगे, अपने आप को टाइम देंगे, खुद से बात करेंगे, खुद को समय देंगे, तो हम कुछ नया सोच सकते हैं
1: जी। तो नथिंग सोचने के लिए ना, जो हम पहले सोचा हुआ होता है या दिन भर में देखा हुआ होता है ना, तो जैसे आपने कहा कि आंख खुलते ही मोबाइल देख लेते हैं, तो वो सारी चीजें आती है, फिर कहीं सीरियल्स देखा हो तो ये सारे वेस्ट थॉट्स,
0: सब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड ने वो सब चीजें एक्सेप्ट कर ली है। और मन अपने आप ही उधर भागता है
1: जी,
0: और हम इस चीज को नोटिस भी नहीं कर पाते हैं जब तक हमें दूसरा कोई व्यक्ति अगर हमारे नोटिस में नहीं लाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये खास नोटिस में हम ला रहे हैं कि हमारा मन इधर उधर व्यस्त है, हर चीज हमेशा अपने को ऑक्यूपाई करना चाहता है। तो मैं अपने आप से पूछूं, क्या मैं सच में फ्री हूँ? सबके लिए तो टाइम है मेरे पास
1: जी,
0: क्या मेरे पास अपने लिए टाइम है? जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, जब हम साइलेंस में बैठते हैं, एकाग्रता से बैठते हैं, अपने मन को फ्री करते हैं, हमें तभी कुछ नए आइडियाज टच होते हैं
1: जी। तो अपने मन को ऐसे कंट्रोल में रखना या फिर नए आइडियाज़ के लिए शांत करना ज़रूरी है। तो अगर ये सारे वेस्ट थॉट्स, पास्ट की बातें, इधर उधर की बातें आएँ तो क्या करना चाहिए फिर हमको उस वक्त?
0: वही जो मैंने बताया कि रियलाइजेशन, कि हमें अपने में कुछ चेंज लाना है। और सबसे बड़ा इनोवेशन बाहरी दुनिया का इनोवेशन नहीं है, सबसे बड़ा इनोवेशन मैं समझती हूँ कि अपने व्यवहार में इनोवेशन लाना, खुद में चेंज लाना। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का ये मोटो ही है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा बदले, सामने वाला व्यक्ति बदले, वो हमारे कंट्रोल के बाहर है
1: जी।
0: मैं खुद मेरे कंट्रोल में अगर नहीं हूँ, देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू चेंज,
1: राइट जी,
0: राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसे आपने बोला वेस्ट थॉट्स, हम अपने को बिजी रखते हैं, तो उससे कैसे बचे? तो उसके लिए अपने ऊपर अटेंशन। और अगर कोई भी व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है तो ऑटोमेटिकली वो अपने लिए टाइम निकाल ही लेगा। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ अलग करना है
1: जी।
0: और अगर ये अंदर से दृढ़ इच्छा है कि हमें करना है, तो ऑटोमेटिकली हम अपने लिए समय निकालेंगे
1: जी। तो क्या अपने आप से बात करनी है उस समय जब इस प्रकार से ख्याल दूसरे आता हो और हम फोकस नहीं कर पाए, तब अपने मन से बात करनी होती है
0: जी? पहले तो हम अपनी प्रॉब्लम समझें कि प्रॉब्लम क्या है।

0: अभी क्या है, हमारा माइंड जो है बहुत जगह प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है। अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए उसका सॉल्यूशन निकालना कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, एंड मेन थिंग इज सबसे पहले कि अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे करना क्या है, मैं चाहती क्या हूँ करना। अभी हम देखें बहुत सारे लोग जो है विदाउट गोल ओरिएंटेड,
1: जी
0: कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, कोई बड़ा एम नहीं है, और व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति का जो सबसे अच्छा निवारण है वो है अपने लक्ष्य को इतना महान बना लो कि आपके लिए व्यर्थ के लिए समय ही नहीं बचे,
1: जी
0: टाइम ही नहीं बचे। कहीं हम देखते हैं लोगों को इधर उधर बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं, कभी किससे बातें कर रहे हैं, और बातें भी क्या परचिंतन व्यर्थ। वही समय अगर हमारा एक गोल सेट होता कि मुझे जीवन में ये करना है, तो हम बहुत सारी व्यर्थ से बहुत सारे परचिंतन से ऑटोमेटिकली बच जाते हैं
1: ओके,
0: और हम जीवन में कुछ नया कर पाते हैं।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों अपने जीवन के लक्ष्य को रिवाइज करिए, और फिर अगर आपने सेट नहीं किया है तो सेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसे फॉलो करते हुए इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और अपने मन के साथ अपने आप को बात करनी चाहिए शिफ्ट करने के लिए व्यर्थ से समर्थ की ओर।
0: जी
1: जी, हर एक परिस्थिति के बारे में अगर बात करें कि परिस्थिति बार बार सामने तो आ ही रहा है कि जिंदगी है, परिस्थिति आएगी, और पुराने तरीके के अगर हम काम ना करके उसको नए तरीके से इनोवेट करेंगे जैसे आपने कहा, तो कौन सी ऐसी आदत है जो पहले हमें परिवर्तन करना चाहिए, एक फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए?
0: मैं आपको अपने जीवन का अनुभव सुनाती हूँ। कई बार ऐसा होता है हम पास्ट की बातों को बहुत पकड़ के रखते हैं, कुछ भी बात होता है पुराना रेफरेंस, पहले आपने ऐसा कहा था, पहले ऐसा हुआ था, क्योंकि हम अपने बुरे अनुभवों को छोड़ नहीं पाते हैं।
1: जी,
0: अच्छे अनुभवों को इतना पकड़ के नहीं रखते हैं और बुरे अनुभवों को छोड़ नहीं पाते हैं, तो पुरानी बातें बार बार बार बार रिकॉल होती है
1: जी,
0: जिससे हमारा समय भी व्यर्थ जाता है, एनर्जी भी व्यर्थ जाती है। तो अगर हम अपने जीवन की ये धारणा बना लें, एक छोटी सी धारणा
1: जी,
0: कि जो हुआ सो हुआ, उसको हम बदल नहीं सकते, वो तो हो गया, अभी हमारे हाथ में है ही नहीं बदलना, अभी हमारे हाथ में है कि आगे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। पुराने को फुल स्टॉप लगाकर, बीती को बिंदी लगाकर, व्हाट नेक्स्ट, अभी मुझे आगे क्या करना है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड से स्विच करना सॉल्यूशन ओरिएंटेड की तरफ,
1: जी
0: दैट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इनोवेशन। पहले मैं अपने अंदर ही बदलाव लेकर आऊं,
1: राइट, ओके,
0: दिस इज इंपॉर्टेंट।
1: तो बार बार शिफ्ट ऑफ
0: एटीट्यूड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव।
1: जी, जब जब भी पास्ट की बातें, गिल्ट, जो भी चीजें हैं हमारी जिंदगी में वो आए, और तभी तभी ही हमें ये वाली टेक्निक सब
0: हमें लेट गो करना है। एक चीज हमेशा माइंड में रखते हुए कि पुराने को मैं बदल नहीं सकता, बट अपना फ्यूचर बनाना वो मेरे हाथ में है, प्रेजेंट मेरे हाथ में है, पास्ट मेरे कंट्रोल से बाहर है।
1: जी,
0: तो रादर देन फोकसिंग ऑन पास्ट अपनी प्रॉब्लम्स, हम अपना एटीट्यूड अपना फोकस शिफ्ट कर ले अपने फ्यूचर की तरफ,
1: ओके,
0: आगे मुझे क्या करना,
1: क्या करना है। जी, तो घर हो, ऑफिस हो या परिवार हो, छोटी सी ऐसी कौन सी चीज जैसे आपने कहा कि शिफ्टिंग करना है, लेकिन जिसमें हम आज से ही एक नया तरीका अपनाकर बदलाव ला सकते हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, जितना हम हर छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, थैंक्स गिविंग फील करते हैं, उतना हमारे जीवन में अच्छी चीजें ज्यादा होती हैं।
1: ओके,
0: अगर हम एक अपना छोटा सा नेचर चेंज कर ले, नो कंप्लेंट,
1: जी
0: चाहे हम दिन फिक्स कर लें, लाइक टुडे इज संडे, एवरी मंडे आई विल नॉट कंप्लेन फॉर एनीथिंग, ये नवीनता ला करके अगर हम देखें, भोजन चाहे हमें जैसा भी मिल रहा हो, पसंद आए या ना पसंद आए, ये नवीनता ला करके देखें कि मुझे शुक्र करें परमात्मा का कि मुझे भोजन मेरी थाली में है, और हम उसको स्वीकार करें खुशी खुशी।
1: जी,
0: रात को सोने से पहले सब परिवार वालों को हम थैंक्स करें, परमात्मा का थैंक्स करें उस दिन के लिए,
1: जी
0: हर छोटी छोटी बातों का थैंक्स करें। एक दिन रखें अपने जीवन में नो कंप्लेन डे, एक दिन अपने जीवन में रखें थैंक्स फॉर एवरी लिटिल थिंग्स, हर चीज के लिए हमें ग्रैटिट्यूड फील हो, अपने को भाग्यवान फील करें, भाग्यशाली फील करें कि आज जो मेरे पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। ये छोटे छोटे से बदलाव हम जब अपने जीवन में लाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन कैसे बाकी लोगों से अलग होता है।
1: ओके, तो ये हम आज से शुरू कर सकते हैं, थैंक्स देना है, धन्यवाद देना है, और कृतज्ञता महसूस करना है अपने लाइफ में, और डे वाइज कर सकते हैं,
0: डे वाइज आप अपने गोल सेट कर सकते हैं, एक बड़ा गोल सेट करने के बजाय आप उसके छोटे छोटे गोल्स सेट कर सकते हैं, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे गोल्स में। या जैसे हमें पता है हमारा नेचर कैसा है, सपोज मुझे गुस्सा अगर बहुत आता है तो अपने लिए खुद ही गोल सेट करें, ठीक है हम एक महीने का टारगेट लेकर नहीं चलते, एक हफ्ते का टारगेट लेकर भी नहीं चलते, अगर हम हर दिन का टारगेट लेकर के चले, या अगर मुझे लगता है कि मैं फोन से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हूँ तो उसमें आप एक दिन का, कुछ घंटे का आप एक टारगेट लेके चलिए, गोल लेके चलिए कि शाम को 4 बजे से 8 बजे तक, या फिर ड्यूरिंग द फैमिली टाइम जब हम परिवार के अंदर हैं
1: जी,
0: तो उस समय हम अपने परिवार वालों को ही समय देंगे, तो उससे हम देखेंगे हमारे घर का वातावरण भी चेंज होगा और हमें चेंज देख करके, हमारे अंदर वो चेंज देख करके हमारे परिवार वाले भी वो चेंज अपने अंदर लाएंगे।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप आज से क्या करने वाले हो, आप हमें कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हो 94-14-15-14-15 इस नंबर पर। जी कई बार हमारे पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं लेकिन हम उन्हें लागू नहीं कर पाते हैं, उस आइडियाज़ को एक्शन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करें?
0: जी हमारे पास नए आइडियाज़ आ रहे हैं तो पहले तो यही प्रूव करता है कि हम लोगों से अलग सोचने की क्षमता रखते हैं और हम कुछ नया करना चाहते हैं, हम कुछ नया सोच रहे हैं।
1: जी
0: अगर हम नहीं कारण किसी भी कारणवश अगर हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में नहीं ला पा रहे तो सबसे पहले तो उसके कारण हम ढूंढें कि क्या ऐसे कारण हैं। अगर उन कारणों के में मैं बदलाव कर सकता हूँ और कैसे बदलाव कर सकता है तो हम उसको सोचें
1: जी
0: कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज मेरे अंदर गुस्सा बहुत है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता तो हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। तो क्यों ना हम आज से ये चेंज करें, दूसरों पे अपनी गलती या किसी की भी गलती शिफ्ट करने के बजाय अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हमारे हर व्यवहार के लिए, हमारे हर एक्शन के लिए, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ।
1: जी ये तो, हम भूल जाते हैं,
0: ये हम भूल जाते हैं। और अगर ये हम खुद से प्रॉमिस करें कि मेरा व्यवहार मेरी जिम्मेवारी है, अगर हम इस पर शिफ्ट करते हैं और इस पर बार बार बार बार अटेंशन देते हैं तो हम जरूर वो कर पाएंगे जो अभी तक हमें लगता था कि हम नहीं कर पा रहे।
1: राइट तो ये हमें याद रखना है कि जो ब्लेम गेम हम खेल रहे हैं तो उसको हम स्टॉप करके एक नई चीज अपनाएं,
0: अपने ऊपर जिम्मेवारी लें,
1: अपने ऊपर जिम्मेवारी लें। तो बहुत नए नए चीजें हम सीख रहे हैं आपसे रुचिका जी, जैसे इनोवेशन के नए नए तरीके, नए नए दृष्टिकोण। तो क्या इनोवेशन के लिए हमेशा टेक्नोलॉजी या फिर बड़ी सुविधा की जरूरत होती है, या फिर बिना पैसे खर्च किए भी हम जीवन में इनोवेशन का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम भी अपने सकते हैं?
0: इतना जरूरी नहीं है इनोवेशन के लिए, जैसे हमने पहले भी बात किया कि यहाँ सारा संकल्पों का खेल है। कुछ भी इनोवेशन अगर आता है तो पहले माइंड में आता है। टेक्नोलॉजी तो बाद की बात है।
1: जी माइंड में ही ब्लूप्रिंट निकलता है,
0: माइंड में ही हमारा ब्लूप्रिंट निकल कर आता है। आज अगर मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ तो मैं फोन्स के या यूट्यूब के या इंटरनेट के मोहताज नहीं हूँ। अगर पहले जमाने में भी लोग सब सीखते थे, कुछ नया करते थे, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशन करते थे, तब भी उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। तो टेक्नोलॉजी के हम सोचते हैं कि बिना टेक्नोलॉजी के हम कुछ नया कर नहीं सकते, ये सिर्फ एक बहानेबाजी है।
1: राइट जी
0: अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं, सच में करना चाहते हैं और हमें गोल बहुत क्लियर है, हमारे स्पष्ट है, निर्धारित है, तो हम जरूर वो कर पाएंगे बिना पैसों के भी।
1: जी जैसे कई गरीब घर के बच्चे होते हैं लेकिन बिना टेक्नोलॉजी बिना उसमें आगे बढ़ जाते हैं, चाहे खेल कूद में।
0: बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे कि बिना हाथ पैर के भी लोग अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन जीत रहे हैं।
1: राइट
0: तो उनको तो अपने शरीर के ऊपर भी वो डिपेंडेंट नहीं है। तो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं है।
1: जी जी बिल्कुल। आप पायल नाग के एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों यूट्यूब पर कि कैसे उन्होंने तीरंदाजी में गोल्ड लिया है। शीतल देवी भी जिनके हाथ पैर नहीं है लेकिन वो जीत रहे हैं। बिल्कुल। तो परिवार या वर्क प्लेस में जब कोई व्यक्ति नए तरीका या फिर नए आइडियाज देने लगता है तो बाकी लोग उसे थोड़ा पहले रिजेक्ट करते हैं, तो उस रेजिस्टेंस को कैसे हम फेस करें बताइए।
0: जी कोई भी नया चेंज हमारे सामने भी कभी आता है तो हम भी उसे अपनाने में कभी झिझकते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं क्या उसके आउटकम्स होंगे या क्या उसके रिजल्ट्स निकलेंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हमारे मन में कुछ भी आइडिया आता है, ऑफिस में अगर हम अपने बॉस के आगे रखते हैं या परिवार में किसी के भी सामने रखते हैं और वो उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हम उनको 3 डे एज एन एक्सपेरिमेंट के रूप में ले सकते हैं। हम उन्हें ऐसा बोल सकते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं।
1: ओके।
0: अगर सही निकला, अगर उसका आउटकम पॉजिटिव हुआ और सबको पसंद आता है तो सब फॉलो करेंगे, नहीं तो हम कुछ और सोचेंगे, उसका ऑल्टरनेट कुछ सोचेंगे, क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल रिजिड अप्रोच भी फॉलो नहीं करना है कि मेरा ही सुना जाए, मेरा ही माना जाए। वो कई बार क्या होता है, वातावरण को और ज्यादा खराब कर देता है
1: जी।
0: तो रैदर देन रिजिडिटी, मैं ही ठीक हूँ, मेरा ही आइडिया ठीक है, सी इनोवेशन के लिए हमें शेयर करना है
1: जी।
0: शेयर करके आपस में सबके आइडियाज ले रहे हैं, सबकी राय सलाह करके किसी भी एक आइडिया को, चाहे वो मेरा हो या किसी और का आइडिया हो, किसी भी आइडिया को हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ता सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर उसमें हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो जो सबका रेजिस्टेंस है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो भी एक दिन सबको एक्सेप्ट करेंगे
1: जी। तो अगर बार बार भी रिजेक्शन मिले तो भी हम इस चीज को अपना सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 3 दिन के लिए आप
0: जी जरूर
1: इस प्रकार से
0: सब एक्सपेरिमेंट करके देखें। बिकॉज कहते हैं ना, जो सामने दिखता है वो बोलता है। हम एक आइडिया दे रहे हैं, वो हमारी एक सोच है, हमारा एक आइडिया, बट जब तक हम उसको प्रैक्टिकल नहीं करते, प्रैक्टिकल ट्राई नहीं करते, तब तक लोगों को एक प्रमाण भी नहीं मिलता है
1: जी। तो ऐसे उदास होकर छोड़ नहीं देना है, लेकिन ट्राई करते रहना है। कई बार हम फीलिंग्स में आ जाते हैं कि मुझे रिजेक्शन मिला, फिर हम नई तरीके से सोचना छोड़ भी देते हैं कि मेरे आइडियाज तो कभी कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं क्यों सोचूं।
0: एक आइडिया नहीं तो दूसरा आइडिया, इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से, बट हिम्मत नहीं हारनी,
1: हिम्मत नहीं हारनी, अपनी इनोवेशन के जो तरीके हैं, क्रिएटिव सोच है, उसे जारी रखनी है जी। तो पुरानी समस्या और नई सोच, क्या आप कोई सामान्य जीवन की समस्या लेकर के ये हमें एग्जाम्पल दे करके बता सकते हैं कि नई सोच से उसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है, कोई पुरानी समस्या है तो?
0: पुरानी समस्या, अभी तो लोगों की सबकी पुरानी समस्याएं ही चल रही हैं और सभी फोकस करते हैं समस्या पर ही, प्रॉब्लम पर ही फोकस करते हैं। लेकिन अगर हम उसी समस्या को दृष्टिकोण अपना बदल ले देखने का, जैसे वो एग्जाम्पल बताते हैं ना, दो व्यक्ति साइड बाय साइड खड़े होते हैं, बीच में 6 लिखा होता है, एक साइड से 6 है बट दूसरी साइड से वो 9 पढ़ने में आता है,
1: राइट।
0: जबकि सिचुएशन सेम है लेकिन दोनों अलग अलग नजरिए से उसको देखते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से। तो पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हुए अगर हम वही समस्या को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखते हैं तो मुझे लगता है वो समस्या रहेगी नहीं
1: जी।
0: बिकॉज वॉट इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज हमारा दृष्टिकोण, हमारा एक कमजोर दृष्टिकोण जो हम उसको नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं
1: जी,
0: तो वो हमें समस्या का रूप दिखती है। बट अगर वही हम उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल दें, पॉजिटिवली ले
1: जी,
0: तो वो समस्या है ही नहीं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, कई ऐसे कल्चर वाले घर होते हैं जिसमें वो पसंद नहीं करते कि घर की बहू बेटियां बाहर जाएं और कमाएं
1: जी,
0: जॉब करें, वो बहुत रिलक्टेंट होते हैं, तो उनकी वही पुरानी सोच है
1: जी
0: कि क्यों जाएं। लेकिन अगर हम अपनी सोच बदले जमाने के हिसाब से या आज की डिमांड के हिसाब से या सामने वाले की फीलिंग्स, इमोशंस और उनकी रिक्वायरमेंट्स को ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए
1: जी
0: प्रॉब्लम्स को अगर हम समझें, तो शायद वो प्रॉब्लम जो आज कई घरों में इसी बात को लेकर के रोज झगड़े होते होंगे
1: जी,
0: सिर्फ एक दृष्टिकोण बदलने से हमेशा के लिए वो समस्या समाप्त हो सकती है
1: जी। तो इसीलिए पुराने तौर तरीके नहीं, लेकिन नए तरीके से, नई
0: सोच, सिचुएशन वही रहेगी, सिर्फ हमने उसको देखने का, हमने उसको सोचने का नजरिया बदल लिया है
1: जी। जैसे लड़कियों को खेल में आगे नहीं आने दिया जाता था, अब आने दिया गया है। और इसके साथ साथ इंडिया ने ये भी किया कि क्रिकेट में लड़के और लड़कियों की बराबर से सैलरी देने लगे हैं।
0: इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव ले रही है जहाँ पे बिल्कुल जेंडर इनइक्वालिटी।
1: यस, तो जब मन तनाव में हो या फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो अपने ऊपर, तब क्रिएटिविटी और नवीन सोच कम हो जाती है ना, सोच नहीं पाते हैं। तो फिर ऐसे समय में माइंड को फ्रेश करने के लिए प्रैक्टिकल तरीका आप क्या अपनाते हो?
0: एक्चुअली इस क्वेश्चन में ही आपका जवाब है। आपने बोला तनाव से क्रिएटिविटी कम हो जाती है, इसको अगर आप दूसरे नजरिए से देखें, अपनी सोच बदल दें, तनाव से क्रिएटिविटी कम नहीं होती, क्रिएटिविटी ना होने से तनाव बढ़ जाता है।
1: राइट राइट,
0: कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, लैक ऑफ समथिंग यूनिकनेस है, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ नवीन नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से हमको स्ट्रेस हो रहा है
1: जी।
0: वही पुराने पैटर्न्स के बीच में हम बंधे हुए हैं या वही पुराने पैटर्न्स हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हम उस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्ट्रेस इज नॉट द कॉज ऑफ लैक ऑफ क्रिएटिविटी
1: जी,
0: है ना, एब्सेंस ऑफ क्रिएटिविटी इज द रीजन फॉर स्ट्रेस,
1: राइट जी।
0: तो स्ट्रेस को अगर दूर करना है तो कुछ अलग सोचें, कुछ अलग करें, डेली रूटीन पैटर्न से बाहर निकल के सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, ताकि स्ट्रेस आने की मार्जिन ही नहीं रहे। अपने को इतना नवीन कार्यों में बिजी रख ले कि कुछ तो नया करना है, कुछ तो वो अंदर से एक ईगरनेस होनी चाहिए, एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम कुछ नया करें। चलो आज क्या करें खाली बैठे हैं तो
1: जी।
0: और ऐसा नहीं है कि सीखने को कुछ है नहीं, बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ नया करने को है, बहुत कुछ जानने को है। तो अगर हम अपने को अपने मन को इन सब में बिजी रखेंगे तो स्ट्रेस का तो सवाल ही नहीं उठता है। स्ट्रेस भी तभी आता है जब हम खाली हैं।
1: खाली हैं तो इसलिए अपने मन को क्रिएटिविटी में लगाना है,
0: क्रिएटिविटी में लगाना है, तो स्ट्रेस का मार्जिन ही नहीं रहेगा, नेगेटिव वेस्ट का मार्जिन ही नहीं रहेगा।
1: जी, जैसे एग्जांपल है कि आजकल रिलेशनशिप इश्यूज बहुत हैं, तो वो चाहकर भी अपने मन को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं कर पा रहे। घरेलू महिलाओं के बारे में बात करें, किसी महिला ने अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए जॉब छोड़ दी है, क्रिएटिविटी छोड़ दी है, लेकिन उन्हीं संबंधों में ही रस नहीं आ रहा है, तो क्या करें?
0: हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरों को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। जैसे आपने बोला अपने परिवार वालों की खातिर नौकरी छोड़ दी कि वो संतुष्ट हो जाए,
1: जी
0: है ना, लेकिन खुद के लिए हमने क्या किया? हम कुछ ऐसा करें और करके दिखाएं। क्या है, जैसे हमने पहले अभी बात किया कि सबको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए, हर चीज का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, तो क्यों ना हम खुद को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि दूसरे भी हमसे इंस्पायर हो।
1: जी, ओके।
0: इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करें, बट हम अपने जीवन के अंदर कार्य ऐसे करें, कुछ ऐसा काम करें कि दूसरे हमसे इंस्पायर होकर के वो सीखें।
1: ओके, तो इस तरीके से हम नया सोच के दृष्टिकोण कर परिवर्तन करके हर प्रॉब्लम का
0: सॉल्यूशन है।
1: जी, तो इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या कनेक्शन है?
0: मैं समझती हूँ अगर फ्लेक्सिबल व्यक्ति नहीं है तो वो इनोवेशन कर नहीं सकता, वो रिजिडिटी है, वो जिद है। अगर कोई व्यक्ति इनोवेटिव आइडिया लेकर के आता है, सपोज अगर कोई एम्प्लॉय अपने बॉस के पास जाता है कि ये प्रोसेस चेंज करना है,
1: जी,
0: तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर उसे लगता है कि मेरा ही तरीका सही है, और अगर उसका बॉस बोलता है हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे,
1: जी,
0: और वो उसको मानने को तैयार नहीं है, फ्लेक्सिबल ही नहीं है, तो वो कभी इनोवेशन ला नहीं सकता।
1: जी,
0: तो आपस में दोनों बहुत कनेक्टेड है। जितना हम फ्लेक्सिबल होंगे, जितना अपने को हम मोल्ड कर सकेंगे, उतना हम इनोवेटिव होंगे, उतना हम क्रिएटिव होंगे।
1: ओके, तो मोल्ड करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे जो भी कह रहे हैं उसमें हाँ जी करना है, लेकिन जहाँ पे ना बोलना है
0: जहाँ पर ना, हमें हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हमें ओपन रखने चाहिए।
1: जी,
0: ऐसा नहीं कि हम मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन लेकर के आगे बढ़ रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये।
1: जी,
0: तो लेट्स बी ओपन टू आइडियाज, ये नहीं कि सिर्फ मेरा ही माना जाए। आई शुड नॉट ओनली बी अ गुड स्पीकर या गुड डिक्टेटर, आई शुड ऑल्सो बी अ गुड लिसनर। मैं दूसरों के आइडियाज भी एक्सेप्ट करूँ, उनको भी स्वीकार करूँ, उनको भी समझूँ, दूसरों को भी मौका दूँ। सी, शेयर करना इज समथिंग डिफरेंट, हम शेयर कर रहे हैं अपने आइडियाज, बट सबके आइडियाज को सम्मान देते हुए अगर हम फ्लेक्सिबल रहते हैं आपस में,
1: जी,
0: तो वो एक टीम का बहुत एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा बनता है, वर्कप्लेस का एनवायरनमेंट भी अच्छा बनता है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड भी रहता है, प्लस हम दूसरे के आइडियाज जब एक्सेप्ट करते हैं तो हमें भी कुछ सीखने को मिलता है।
1: बिल्कुल, तो इस प्रकार से हमें फ्लेक्सिबल,
0: बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना चाहिए हमें।
1: जी, तो फ्लेक्सिबल व्यक्ति के लिए कोई अगर सोल्यूशन ढूंढना होता है तो आसान हो जाता है फिर।
0: बिल्कुल, फ्लेक्सिबल के लिए सोल्यूशन बहुत ईजी है, वो क्योंकि एक चीज को पकड़ के कभी नहीं बैठा है। He is always open.
1: तो इसीलिए आप flexible रहेंगे तो आप खुद भी कुछ नए नए सीख सकते
0: हैं। खुद भी हम संतुष्ट रहेंगे और दूसरों से हमें सीखने को भी बहुत मिलेगा।
1: Yes. Okay. अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ तो वो क्या अपनी इनोवेटिव थिंकिंग को विकसित कर सकता है, क्रिएटिव बन सकता है?
0: देखिए, क्रिएटिविटी तो हर एक में है। हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता है, कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, तभी हम सब अलग अलग है।
1: जी,
0: तो मेरी क्रिएटिविटी किस में है
1: वो मुझे ढूंढना है
0: कि मैं कहाँ क्रिएटिव हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज क्या हैं।
1: जी,
0: राइट, एक मछली है वो पानी में है, वो उड़ नहीं सकती।
1: जी,
0: बट एक बर्ड है वो पानी में तैर नहीं सकता बट वो उड़ सकता है। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं एंड विच आर यूनिक इन देयर ओन वेज। हम ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे से कोई कम है।
1: जी,
0: दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, बेस्ट हैं। तो सिमिलरली हर मनुष्य, हर आत्मा जो है अपने आप में बेस्ट है। वो मेरे अंदर बेस्ट क्या है वो मुझे खुद ही आइडेंटिफाई करना है।
1: ओके,
0: और वो आइडेंटिफाई करने का हमें मार्जिन चाहिए। जैसे हमने पहले भी बात की कि साइलेंस इज द मदर ऑफ इनोवेशन। तो हमें अपने लिए टाइम देना पड़ेगा, खुद से बात करनी पड़ेगी, अपनी विशेषताओं को जानना पड़ेगा, और ना सिर्फ जानना पड़ेगा परंतु उन विशेषताओं को मैं कहाँ कहाँ यूज़ करूँ
1: जी
0: वो पता होना चाहिए, और कैसे यूज़ करें अपनी विशेषताओं को।
1: ओके, तो जो माँ बाप सुन रहे हैं आप उन्हें यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे के अंदर ये क्रिएटिविटी ना देखे कि वो कितने मार्क्स ला रहा है, वो प्रेशर ना डाले, उसकी क्रिएटिविटी में भी दूसरे जगह पे खेल कूद में या संगीत में, अलग फील्ड में,
0: अलग फील्ड में, क्योंकि हर एक की अपनी विशेषता है। तो हम कभी भी किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते कि आपको यही काम करना है,
1: इतने मार्क्स लाने,
0: इतने मार्क्स जी, प्रेशर नहीं डाले, कॉम्पिटिशन में ज्यादा नहीं जाए या कंपैरिजंस में नहीं जाएं। कई बार कैसे होता है, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं कि वो देखो स्पोर्ट्स में इतना नंबर वन है, तुम क्यों नहीं क्रिकेट खेलते हो या तुम क्यों नहीं फुटबॉल खेलते हो, वो चैंपियनशिप जीत करके ला रहा है, वो यहाँ जा रहा है। हो सकता है आपका बच्चा पेंटिंग में बहुत माहिर हो सकता है आपका बच्चा डांसिंग में बहुत माहिर हो, सिंगिंग में बहुत माहिर हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटीज।
1: तो आप उसे ढूंढे,
0: उसे ढूंढे और उसी के ऊपर वर्क करके अपनी क्वालिटी को ग्रो करें, उसी में ही कुछ इनोवेटिव करें।
1: ओके जी, बिल्कुल। और जो ये सोचते हैं मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, ये नेगेटिव थॉट्स को,
0: ये नेगेटिव थॉट्स हैं। अपने लिए समय दें और समय दे करके हमारे अंदर क्या हीरे छुपे हुए हैं उसको तराशें।
1: जी, आपने एक ग्रैटिट्यूड वाली बात कही थी, तो क्या अपने अंदर की अच्छाइयों के प्रति अगर हम कृतज्ञ रहते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी?
0: बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि हम जिस पे फोकस करते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ती है,
1: चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे
0: चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर हम हमेशा नेगेटिव चश्मा पहन रखा है, दूसरों की बुराइयाँ देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर आ जाती हैं। कहते ना, जैसा संग वैसा रंग। तो हम जिस संग में, संकल्पों से भी, नॉट ओनली ह्यूमन हमारा संग है, हम संकल्पों से भी हम जिस संग में रहते हैं तो वो हमारे, हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम पॉजिटिविटी के संग में रहेंगे, अपने अंदर पॉजिटिव, दूसरों के अंदर विशेषता देखेंगे, तो हम उस चीज़ को अपने अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं।
1: जी, तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जैसा चश्मा हम पहनेंगे वैसे दिखाई देगा दुनिया
0: जी।
1: तो पॉजिटिव देखने की कोशिश करें। तो बच्चों और युवाओं में इनोवेशन की शक्ति विकसित करने के लिए पेरेंट्स को और टीचर्स को किस तरह से वातावरण को बनाना है, उनके एनवायरमेंट कैसे रखना है?
0: सी, एनवायरमेंट को बदलना हमारे ही हाथ में है। कई बार हम बोलते हैं कि हमें ऐसा वातावरण नहीं मिल रहा है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हम डेवलप नहीं कर पा रहे, हमारा नेगेटिव वातावरण है, या हमें पेरेंट्स या टीचर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं। तो व्हाट आई फील इज़ कि वातावरण को डेवलप करना वो अपने ही हाथ में है
1: जी।
0: और जहाँ तक ये बच्चों और युवाओं की बात है, डेफिनेटली इसमें पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कहते हैं जैसे संस्कार हम बच्चों को पहले से देते हैं तो वो संस्कार भी उनमें धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं
1: जी।
0: जैसे हमने घर में अपने बचपन से सीखा कि सुबह जैसे ही हमारी आँख खुलती थी तो वो मंदिर की आरतियाँ, घर में ही एक पूजा का स्थान था, उसमें ही वो पेरेंट्स आरती कर रहे होते थे, घंटियाँ बज रही होती थी, एक बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स होती थी घर की। तो बचपन से ही वो संस्कार हमारे अंदर है कि शाम को मंदिर जाना है, और अगर सामने प्लेट आती है खाने की तो पहले परमात्मा को याद करना है, थैंक्स करना है। तो छोटी छोटी जो बातें हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं अपने बच्चों के अंदर, उनको ये चीज़ें सिखाएं
1: जी।
0: ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं, घर के अंदर आ रहे हैं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, हर बात पेरेंट्स को बतानी है, परमात्मा का धन्यवाद करना है, या सुबह उठ के ही घर में एक छोटा सा पूजा का स्थान बना सकते हैं जिससे उनके आदत पड़े, उनके संस्कार पड़े, कि वो डेली कम से कम एक बार तो परमात्मा के आगे जा करके नतमस्तक हों, ताकि बड़े होकर वो भी अपने बच्चों को वो संस्कार दे सकें
1: जी।
0: तो बचपन से अगर हमारे अंदर ऐसे संस्कार है, सिमिलरली आज स्कूल में भी क्यों होता है, स्कूल में भी है, स्टार्ट ही स्कूल प्रेयर से होता है, असेंबली होती है, प्रेयर होता है, कि तो कुछ बेसिक ये संस्कार है जो सबके अंदर होने चाहिए। और स्कूल्स में तो आजकल बहुत ज़्यादा इनोवेशन पे फोकस किया जा रहा है कि बच्चा जो है एक नई लर्निंग करे, हर दिन हर पल उसका लर्निंग में बीते
1: जी। प्रोजेक्ट्स बहुत सारे,
0: इवन कुछ भी आप करते हो तो हर चीज़ में उनकी लर्निंग है, इन एवरीथिंग। इवन स्कूल्स में तो कई स्कूल्स ऐसे मैंने सुना है कि उनका भोजन भी आता है तो उसमें भी उनको कलर सिखाए जाते हैं कि आपको ग्रीन कलर की वेजिटेबल लानी है पूरी क्लास को, तो दिस इज हाउ दे आर लर्निंग कलर्स।
1: जी,
0: बिल्कुल जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, प्री नर्सरी के बच्चे होते हैं, तो उनके खाने में भी उनको एक लर्निंग मिल रही है, यू नो. तो ऐसे हर चीज में हम इनोवेशन कर सकते हैं. कई बार क्या होता है, घर की महिलाएं भी हम देखते हैं काम करते करते बोरिंग तरीके से काम कर रही होंगी, कपड़े प्रेस कर रही हैं या बर्तन मांज रही है, तो क्यों ना हम ये बदलाव लाएं घर में, भजन चलाते हुए, है ना, संध्या एक एक शाम का नुमा शाम का जो वातावरण है, एक भजनों से, कीर्तन से, आरती से शुरुआत करें सुबह और शाम की, ताकि घर का वातावरण बदले. या हम कुछ काम भी कर रहे हैं तो गीत सुनते सुनते हम काम करें, उसको एंजॉय करें. जो भी हम काम कर रहे हैं उसको एक बोरिंग तरीके से नहीं करें. लेट्स चेंज.
1: जी बिल्कुल, नए तरीका अपनाते हुए करेंगे तो हम बोर नहीं होंगे,
0: हम बोर नहीं होंगे
1: चीज को, और फिर इरिटेशन
0: भी नहीं होंगे. वो माइंड को भी फ्रेश रखता है हमेशा, और काम कैसे चुटकियों में हो जाता है मालूम भी नहीं पड़ता है.
1: राइट, तो ये आप नए नए तरीका ढूंढिए, और हमें आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि क्या नए तरीके से आज इस हफ्ते आपने काम किया, आज से शुरू किया आपने. तो क्या जो स्पिरिचुअलिटी है, ब्रह्मा कुमार इसके साथ आप जुड़े हुए हैं, तो हमारे इनोवेटिव थिंकिंग को बढ़ा सकती है?
0: बिल्कुल 100%. क्योंकि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी फोकसेस ऑन स्पिरिट.
1: जी,
0: स्पिरिट इज
1: हमारी आत्मा,
0: हमारी आत्मा. व्हाट इज, हु एम आई, हु एम आई, जैसे जानकी दादी भी बोलती थी, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है. फोकस कहाँ है, मुझे क्या करना है, नॉट ऑन तुम क्या कर रहे हो या दूसरे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, नहीं, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, पूरा शिफ्ट खुद के ऊपर है.
1: जी,
0: तो जब हम पूरा फोकस और पूरा शिफ्ट खुद के ऊपर अटेंशन देते हैं, सबसे पहली बात, हमें दूसरों के लिए, दूसरों को देखने का मार्जिन ही खत्म. हम दूसरों को देख ही नहीं रहे, दूसरों की बुराइयों पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं.
1: जी.
0: और अगर हमारा खुद पे फोकस है तो मेरी क्या कमियां हैं उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरी क्या क्वालिटीज़ है उसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, और कैसे दिन प्रतिदिन हम कुछ नया जीवन में कर सकते हैं.
1: जी.
0: मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में ही सब कुछ समाया हुआ है. सारा इनोवेशन इसी में समाया हुआ है कि मुझे क्या करना है, मैं हूँ कौन और मुझे करना क्या है. बिकॉज हमने पहले भी बात की कि गोल सेट.
1: जी.
0: अगर हमने गोल सेट कर लिया जीवन के अंदर, तो हमारा हर दिन इनोवेटिव है.
1: इनोवेटिव है, तो ये पहले अपने आप से पूछना,
0: ये पहले मुझे क्या करना है. राइट.
1: जी जी, जैसे राजयोग करते हैं आप, तो उसे स्वयं को शांत करके, मन को स्थिर करके, तो कैसे आप नए नए इनोवेटिव तरीका निकालते हैं? क्या जीवन के हर सवाल का जवाब भी मिल जाता है?
0: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. जब भी कुछ ऐसा लगता है कि मन बहुत भारी है, या मन में कुछ उथल पुथल चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन रूम में जाते हैं 5 मिनट के लिए. कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन साइलेंस में है.
1: जी.
0: साइलेंस में सबसे पहली बात, तो हम अपने पुराने जो हमारे बहुत संकल्प चल रहे हैं, वेस्ट थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स, उस पर फुल स्टॉप लगता है. मेडिटेशन स्टार्ट्स विद अ फुल स्टॉप एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. तो फुल स्टॉप, जब हम पुराने जो हमारे उथल पुथल वाले संकल्प हैं उनको हम फुल स्टॉप लगाते हैं, एक माइंड एकाग्र होता है. फिर मुझे क्या करना है, क्लैरिटी आती है. क्योंकि एक शांत मन ही, एक स्थिर मन ही अच्छा सोच सकता है.
1: जी.
0: एक सही डायरेक्शन में जा सकता है. अगर मन में ऑलरेडी बहुत सारे सवाल है, हम कुछ अच्छा सोच नहीं सकते, कुछ क्लैरिटी नहीं आ सकती. तो मेडिटेशन इसमें बहुत हेल्प करता है. चाहे हम बीच बीच में भी 1 घंटे के लिए हम ट्रैफिक कंट्रोल करें, अपने सब संकल्पों को स्टॉप करके, उससे क्या है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है.
1: जी.
0: तो अपने मन को स्टॉप करके, क्लियर करके, पुरानी सब बातों को फुल स्टॉप लगाकर, मुझे क्या करना है, प्रेजेंट में क्या करना है, जो हुआ सो हुआ. ऑफिस में भी कई बार ऐसा होता है ना, गलतियां हो गई, बॉस ने डांट दिया, माइंड इतना अपसेट है, अभी डांट खाकर आए ऑफिस में, केबिन से, बॉस के केबिन से भी डांट खाकर अपनी सीट पर आए, मन हैवी है, फुल स्टॉप. अभी जो होना था हो गया, गिल्ट में नहीं जाए, गलती तो हो गई, अभी मैं पास्ट को बदल नहीं सकता, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है. तो उस पर अगर हम फोकस करें, तो दिस वे मेडिटेशन जो है हमारी जो मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, हमें क्लैरिटी लाता है, और हमें एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देता है.
1: जी बिल्कुल, तो ये मेडिटेशन आप सीखें और करें. अपने नज़दीकी जो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर है वहाँ पर भी आप सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन भी सीख सकते
0: हैं. ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, अभी तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं
1: जिससे आप सीख सकते हैं. अगर घर में हर दिन होने वाला कोई काम बोरिंग लगता है, जैसे आपने कहा कि हम भजन वगैरह चला सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है बहुत समय लेता है, तो उसे कैसे बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
0: कुछ भी काम अगर समय लेता है, हमें लगता है कि हमारा टाइम एनर्जी उसमें ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो हम उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं
1: जी,
0: कि इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, या इस काम को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, या अगर हम जल्दी करते हैं, फॉर एग्जांपल कई लोगों का एक माइंडसेट है
1: जी,
0: मैं उसमें सहमत, मतलब मेरी बात से सहमत भी हो सकते, नहीं भी सहमत हो सकते, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता रही हूँ कि जैसे कई सोचते हैं कि कपड़े हाथ से जो धोते हैं तो ही साफ होते हैं, मशीन से धोते हैं साफ नहीं होते, एक माइंडसेट बना हुआ है और सही भी हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी टाइम का शॉर्टेज है, वो अगर वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोकर और वो टाइम किसी बेटर चीज के लिए यूटिलाइज करता है
1: जी,
0: तो आई थिंक वो एक ज्यादा बेटर आइडिया है रादर देन फोकसिंग ऑन पुरानी मेंटालिटी कि यही हम इसी चीज को सही मानते चले। कई बार क्या है, हमें टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारे गैजेट्स हैं उनका भी सहारा लेना पड़ता है
1: जी,
0: या अगर कोई ये सोच के चले नहीं फोन तो जो है बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना,
1: खराब चीज है
0: फोन, अगर हम इस माइंडसेट के साथ भी चलते हैं, बिकॉज हमने पहले भी बात की फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हम गैजेट्स यूज करते हैं और वो हमें कुछ बेहतर बना रहे हैं, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, हमारा काम आसान हो रहा है, तो हम उसे इनोवेशन के लिए हम जरूर उसका प्रयोग करें
1: जी, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप अपने टाइम बचा सकते हैं
0: और
1: हर बार सोचे कि किस तरीके से आप अपना टाइम बचाए, नए तरीके से
0: जी।
1: तो अगर आज हमारे श्रोता अपनी जिंदगी की किसी एक पुरानी समस्या को दूर करना चाह रहे हैं और उसे चुन करके नए नजरिए से देखना चाहते हैं, तो आप ऐसे कौन सा 3-स्टेप इनोवेशन फॉर्मूला बताएंगे उनको प्रैक्टिकली करने के लिए?
0: देखिए, अभी तक जो हमने बात की तो उन सभी बातों का जो सार, मैं आपको 3 बातों में बताती हूँ। पहली बात, जो हुआ सो हुआ
1: जी,
0: पास्ट इज पास्ट, फोकस ऑन द फ्यूचर, फोकस ऑन प्रेजेंट। जो हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, हमें फ्यूचर पे भी उतना फोकस नहीं करना है जितना हमें प्रेजेंट पे फोकस करना है, राइट
1: जी।
0: सेकंड, हम अपना फोकस दूसरों की बजाय खुद पे शिफ्ट करें,
1: ओके, अपने ऊपर,
0: दूसरों को देखने के बजाय कि वो क्या कर रहा है, हम खुद पे अपना फोकस शिफ्ट करें
1: जी,
0: कि मुझे क्या करना है, मैं खुद को देखूं, खुद की विशेषताओं को, खुद की कमी कमजोरियों में कैसे दूर कर सकता हूँ, फोकस हम खुद पे शिफ्ट करें। एंड द थर्ड इज, हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने,
1: ओके जी। तो वर्तमान को देखें, फिर
0: अपने ऊपर देखें, और बार बार बार बार प्रॉब्लम्स को गाने की बजाय
1: सॉल्यूशन,
0: उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम उस पे फोकस करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं समझती हूँ अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर ये अपने जीवन की हम धारणाएं बना लें तो हम खुद अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज आ गया है। ये 3 बातें अगर हम ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते का सिर्फ एक्सपेरिमेंट करें अपने ऊपर, 1 हफ्ते का प्रयोग करें प्रैक्टिकल, तो हमें समझ में आएगा और उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हम देखेंगे कि मेरे अंदर कितना पॉजिटिव चेंज आया है
1: जी। बिल्कुल, तो अभी तो वक्त हो गया है कि हम यहाँ से अलविदा कहें, लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप, बोनस टिप्स देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को?
0: बोनस टिप इज जस्ट लाइक कि सबसे पहली बात, चेंज से पहले आता है रियलाइजेशन,
1: उसके लिए खुद के साथ बैठना पड़ेगा
0: जी। जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे कि व्हाई चेंज इज इम्पोर्टेंट, व्हाई चेंज इज नीडेड, कई कहते हैं ना जैसा चल रहा है चलने दो, क्यों नया करना है
1: जी,
0: व्हाई इनोवेटिव, क्यों करें हम नया, क्यों नवीनता लाएं, जैसा चल रहा है हम संतुष्ट हैं, डोंट बी सैटिस्फाइड, ट्राई समथिंग न्यू, रुक नहीं जाना है हमें अपने जीवन में कि हाँ हम तो संतुष्ट हैं, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है
1: जी।
0: नो, इस सोच को भी बदले और एक नई सोच लाएं कि कुछ नया करना है, और रियलाइज करें कि जो भी हम नया करेंगे कि उससे हमें प्राप्ति क्या है
1: जी,
0: उसके कितने बेटर आउटकम्स हो सकते हैं, तब हमें बाद में रियलाइज होगा कि हमने पहले क्यों नहीं किया
1: जी। चाहे घरेलू महिला भी हैं, घर में रहते हुए बच्चों को पढ़ाने के तरीका पुराने काम नहीं आ रहा है तो नए तरीका ढूंढें
0: जी,
1: या आप जॉब में जा रहे हैं बोरिंग लग रहा है आपको तो क्या नए
0: जी, बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर ऑफिस से लेकर परिवार से लेकर हर जगह हम कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, और करना भी चाहिए
1: तो आप अपनी योगी लाइफ में भी नया करते होंगे
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी डे टू डे लाइफ पे जब हम मेडिटेशन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक वही तरीके से, हम बहुत अलग अलग तरीके से उसको एंजॉय करते हुए, क्योंकि अगर हम नया नहीं करेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। तो इसलिए नवीनता जरूरी है कि अपनी जिंदगी से हम बोर ना हो, हमारे मुंह से कभी ये शब्द ना निकले कि हम तो बोर हो गए
1: जी,
0: आज तो बड़ा बोरिंग दिन है, क्या करें, वो हम मौका ही नहीं आने दें अपने जीवन के अंदर
1: जी। सेवा वही होती है, रूटीन वही होती है,
0: रूटीन वही होता है लेकिन तरीका अलग होता है,
1: तरीका अलग होता है जी, बिल्कुल। तो दोस्तों, कभी आप शांतिवन परिसर में आए तो ज़रूर विजिट करिएगा यहाँ के ऑफिसेस में, तो आप देख सकते हैं किससे कैसे अलग अलग तरीके से यहाँ पर कार्य भी करते हैं, और राजयोग के साथ, साधना के साथ, मेडिटेशन के साथ। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं 94-14-15-14-15 इस नंबर पर मैसेज करके, या फिर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो रुचिका दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत थैंक यू।
1: तो यहीं पर रुकते हैं, कार्यक्रम जीवन रोशनी है, अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे 5 बजे हमराही, जरूर सुनिएगा कार्यक्रम। फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।

मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हंसी आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता, स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबका बेहद पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। पिछले सप्ताह मैंने आप सबसे कहा था कि अब कोशिश करेंगे कि दोबारा जल्दी जल्दी प्रोग्राम रिकॉर्ड हों और आप सब सुनें और कुछ न कुछ सीखें, जानें, समझें, अलग अलग जिंदगियों के बारे में, अलग अलग कहानियों के बारे में और अलग अलग फैमिलीज के बारे में। हमरा ही एक संघर्ष का नाम है, हमरा ही एक जज्बे का नाम है, हमरा ही एक जुनून का नाम है और हमरा ही एक हौसले का भी नाम है। तो चलिए, आज की कहानी से आपको बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के रूबरू करवाते हैं। आज एक बार फिर से हम देश की राजधानी में हैं और हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, तो आपको मिलवाते हैं। स्वागत है हमरा ही कार्यक्रम में अजंता जी और परमेश्वर जी, आप दोनों का
1: नमस्कार।
2: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, सुना आपने, परमेश्वर जी जरा हमारे सुनने वालों को बताएं अपने बारे में, आपकी दिव्यांगता कौन सी है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और किस तरह से आप दिव्यांग हुए और आजकल क्या कर रहे हैं।
1: मेरा तो नाम परमेश्वर प्रसाद है
0: जी,
1: और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ
0: जी,
1: और मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई पटना से
0: जी।
1: उसके बाद 11-12 हमारा वाराणसी यूपी इलाहाबाद बोर्ड से
0: जी।
1: तत्पश्चात मैं दिल्ली में यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद हम जॉब के लिए प्रयास किया और पहली बार में मैंने जॉब में सक्सेसफुल हो गया।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MES में मैं कार्यरत हूँ
0: जी,
1: हेड ऑफ क्लर्क के पद पे
0: जी।
1: और इस समय मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी में जुड़ा रहता हूँ। मेरे बचपन से आंखें थी, 10 साल के बाद हमारा आंख जो है रोशनी धीरे धीरे घटता गया। घटने का कारण यह है कि बचपन में क्या हुआ कि जैसे आई फ्लू होता है तो गांव में क्या होता है कि झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना।
0: बिल्कुल होते हैं जी।
1: तो हमारे पेरेंट्स दिखा दिए, इधर उधर दवा डाल दिए, जबकि आंख कान नाक इतना नाजुक होता है,
0: बिल्कुल
1: बिना अच्छे डॉक्टर से सलाह लिए बिना दवा नहीं डालना चाहिए कोई
0: जी।
1: इसी के वजह से हमारा रिएक्शन आंख में जो है इन्फेक्शन हुआ, इसी से रोशनी चली गई।
0: अच्छा,
1: तो ब्लाइंड होने के बाद घर वाले सोचे कि अब क्या होगा, इसका लाइफ कैसे जाए गुजरेगा। तो फिर धीरे धीरे ब्लाइंड स्कूल के बारे में पता चला, पहले पटना में, उसके बाद उत्तराखंड में देहरादून।
0: अच्छा,
1: तो वहां तो मेरा नामांकन नहीं हुआ लेकिन मैं पटना में ही अपना शिक्षा दीक्षा शुरू हुआ। तो आज मैं पटना से वाराणसी और उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली में ही मैं अभी जॉब में लगा हुआ हूँ। और हमारा फैमिली और मैं दिल्ली कैंट में ही है, गवर्नमेंट फ्लैट है यहाँ।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है पर जी। परिवार में एजुकेशन का स्तर कैसा है आपके?
1: मिला जुला ठीक है, ना ज्यादा हाई फाई है।
0: घर में इतनी समझ थी कि भाई अब इसकी आंखों की रोशनी चली गई है तो इनकी पढ़ाई करवाना जरूरी है, या फिर किसी ने सलाह दी तो फिर पता चला?
1: नहीं, हम लोग तो गांव में रहते थे, हालांकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ गांव नहीं है।

0: चला कि एक ब्लाइंड स्कूल भी इन लोग का है।
1: जी
0: तो हम पहले देहरादून गए, वहाँ बहुत छोटे थे, एडमिशन हुआ नहीं, तो एक साल मुझे बैठना पड़ा। फिर दोबारा पटना में एडमिशन हुआ, तब हमारी शिक्षा वहाँ से आगे बढ़ा।
1: जी और बनारस में आप कहाँ, दुर्गा कुंड में पढ़े हैं,
0: हाँ जी, हाँ जी, वहाँ मेरा 11th 12th हुआ है
1: पोद्दार स्कूल में।
0: जी।
1: आजकल तो सुना है वो 8वीं तक कर दिया है स्कूल।
0: हाँ, वो स्कूल का मामला क्या है कि वो कोई ट्रस्ट चलाता है उसको, और वो ट्रस्ट वाले मड़वाड़ी हैं, तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये बिल्डिंग, उनका उनका मानना है कि ये बिल्डिंग मल्टी स्टोरी के लिए यूज किया जाए। एक अच्छे जगह में है और बढ़िया बिल्डिंग है, जगह भी पर्याप्त है। आज वो स्थिति ऐसी हो गई कि 12वीं से स्कूल जो अब 8वीं तक चली गई है।
1: बिल्कुल, मुझे भी एक बार मौका मिला है उस विद्यालय को जानने समझने का, 2019
0: अच्छा,
1: में। खैर, तो श्रोताओं, अब आपको अजंता जी से भी मिलवा देते हैं। जी अजंता जी, अभिवादन का जवाब तो दे ही दिया है, लेकिन अब श्रोता चाहते हैं जरा जाने समझें आपकी जिंदगी के बारे में। जी बताएं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर आपका। आपने हमें मौका दिया कि हम लोगों से जुड़ सके। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग क्लब को बहुत बहुत थैंक्स है मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से, और आपको भी स्पेशली। मैं बेसिकली मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ, काठमांडू से। मेरी वेल एजुकेटेड फैमिली है। मेरे फादर मदर दोनों पढ़े लिखे थे, मेरे दादा दादी भी थोड़ा बहुत ही सही उस जमाने का। दादी मेरी 5th पास थी और मेरे दादाजी 8th पास थे। तो ब्लाइंड में बाय बर्थ नहीं हूँ, लेकिन 6 मंथ की जब मैं थी तो मुझे मेनिनजाइटिस हो गया, और ड्यू टू मेनिनजाइटिस मेरे ब्रेन में पानी भर गया, और डॉक्टर की थोड़ी सी लापरवाही कह सकते हैं कि पानी की जगह ऑप्टिक नर्व का ब्लड सूख गया, बिकॉज उन्होंने ब्लड निकाल लिया मतलब पानी की जगह पे। तो मैं ब्लाइंड हो गई। ब्लाइंड हुई तो पहले मैं टोटली ब्लाइंड हुई। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी ना, 1.5 2 साल की रही होंगी, तो मैं दीवार को छू छू के चला करती थी। मुझे बचपन बस इतना याद है। लेकिन मेरे फादर मदर हारे नहीं, उन्होंने सब जगह घुमाया मुझे।
1: जी
2: यूएसए भी डॉक्टर्स आया करते थे नेपाल, क्योंकि आप सबको पता है कि उस कंट्री को सब मदद करते रहते थे पहले। तो
1: जी
2: नेपाल में आइस के लिए भी स्पेशलिस्ट आते रहते थे,
1: जी
2: तो वहां उन्होंने, मेरे जो ग्रैंडफादर है उनके एक फ्रेंड थे, वो भी एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट थे नेपाल में, काठमांडू में। तो उनकी हेल्प से कहो या सोर्स फोर्स से, उन्होंने मुझे बाहर के डॉक्टर्स को भी दिखाया। उनका यही कहना था कि नर्व्स पैरालाइज लाइट फॉलोज, रिपोर्ट
1: अच्छा
2: हमेशा यही रहती थी, क्योंकि ऑप्टिक नर्व्स तो पैरालाइज हो ही गई ना, ब्लड है ही नहीं।
1: बिल्कुल
2: लेकिन सबका ये भी कहना था कि जैसे जैसे ये बड़ी होगी ना, थोड़ी बहुत तो इसकी विजन आएगी, तुम
1: अच्छा
2: इसको ग्रीन वेज, और तुम अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो एग फिश वगैरह खिलाओ। तो ऐसा ही मेरी फैमिली भी करती थी। तो धीरे धीरे फिर मेरी ना रोशनी मुझे दिखने लगा। फिर मेरे, मुझे
1: अच्छा
2: याद है पापा ने ना मेरे को सबसे पहले ब्लू कलर का टूथब्रश दिखाया और मुझे बताया कि ये नीला है, इसको ब्लू बोलते हैं, तो तुम ब्लू जानते। तब तो मैं स्कूल जा चुकी थी, तो ये ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने मुझे दोबारा थोड़ी देर बाद और भी चीजें दिखाने का फिर चीजें पूछी, तो मैं सही पहचान पा रही थी। वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उन लोगों को था कि भले ही फुल साइटेड ना हो, बच्ची को कुछ तो दिखे। फिर सर ब्लॉक्स वगैरह से भी जो कैपिटल लेटर होते हैं ना, वो सब भी थोड़ी थोड़ी, मैं जब बड़ी हुई एकदम से नहीं, तो मैं 6th 7th में आई, तो पापा ने मेरे को ब्लॉक से ABCD की भी पहचान कराई। मैं ब्लाइंड स्कूल से तो नहीं पढ़ी हूँ, मैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन से काठमांडू में पढ़ी हूँ, नर्सरी से ही टाइम से। और फिर 7th 8th में आते आते मेरी विजन और अच्छी हो गई, जब तो उन्होंने मुझे ये ब्लॉक्स वगैरह से पढ़ना सिखाया, फिर बड़े बड़े साइन बोर्ड पढ़ना सिखाया। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे करके मतलब मेरा एजुकेशन भी हुआ। मैं 8th तक नेपाल में पढ़ी हूँ। फिर क्लास 9 में, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है और नेपाल में मैथमेटिक्स का कुछ अच्छा सोर्स भी नहीं था उन दिनों में ब्लाइंड के लिए,
1: अच्छा
2: तो तो मुझे ना वहां से भाग के

0: कह सकते हो, मतलब मैं मस्ती में बात करती हूँ, छुड़ाना
1: आगे भी तो
0: चाहती हूँ
1: अच्छे
0: इससे।
1: काम
0: हाँ,
1: के लिए भागे ना जनता जी। जी
0: तो मैं जो है इंडिया आई कि इंडिया में मैथ्स जो है 8 तक होता है, अगर
1: जी
0: 9th से आप कोई और सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो पता
1: जी
0: नहीं क्या था, जुनून था कि सितार सीखूं, सितार
1: ओ
0: सुनती थी कभी कभी ना, अच्छा लगता था। तो मैं
1: जी
0: आई थी, तो मैंने यहाँ राष्ट्रीय ब्रजानंद कन्या विद्यालय है विकासपुरी में, दिल्ली में, वहाँ एडमिशन लिया 9th से। और मैं सितार तो खैर नहीं सीख पाई ज्यादा, क्योंकि वहां पे भी इतने सोर्सेस नहीं रहे, रिसोर्सेस नहीं रहे जो भी है। फिर मैं उस सपने को भी तोड़ दिया, फिर मैंने पढ़ाई की वहां 12th तक, फिर लक्ष्मीबाई कॉलेज जो DU का है वहां से मैंने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स इन सोशल वर्क करना चाहा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई।
1: वो भी सपना टूट गया।
0: हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई कि उन दिनों रिलैक्सेशन थे नहीं, और आपको पता है कि पहले परसेंटेज बनाना बहुत मुश्किल होता था, है ना। अब तो बहुत इजी रह गया पढ़ाई, पहले के टाइम में 2001-2 के टाइम में हमारे लिए पढ़ना और सब कुछ बहुत थोड़ा टफ सा था, तो उतने परसेंटेज बना ही नहीं पाई मैं कि उसको मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो फिर मैंने ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से कंप्यूटर ट्रेनिंग की, और फिर उसी की वजह से 2003 में, छोटी एज थी मेरी, मैं वहां पे जनता आदर्श अंध विद्यालय नाम का स्कूल है सादिक नगर में, 8th तक,
1: क्या नाम है?
0: तो जनता आदर्श अंध विद्यालय। हाँ
1: जनता में अजंता।
0: बिल्कुल, जनता में अजंता पहुंच गई एज अ पार्ट टाइम कंप्यूटर ट्रेनर। फिर शायद उन्हें मेरा काम अच्छा लगा, वट एवर, उन्होंने 2005 में मुझे रेगुलर किया, और कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश भी मेरे लिए दिया कि आपकी इंग्लिश ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ाओ यहाँ पे। तो फ्रॉम दैट डे आई एम वर्किंग एज अ कंप्यूटर ट्रेनर एंड इंग्लिश एजुकेटर इन जनता आदर्श अंध विद्यालय। मीनवाइल फिर मैंने शालिनी खन्ना मैम को किसी की एडमिशन के लिए एक बार कॉल किया 2003 में ही, तो उन्हें भी पता नहीं थोड़ा ठीक लगा, वाट एवर, उन्होंने बोला तुम काम कर सकते हो, इंग्लिश क्लास ले सकते हो। मैंने बोला यस। बोले अच्छा, आओ मिलो मुझसे जरा। तो फिर नवंबर 5th में मैंने जनता आदर्श ज्वाइन किया था, और दिसंबर 31st को मेरा फर्स्ट डे था नैब इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज में एज पार्ट टाइम इंग्लिश टीचर।
1: करीब करीब आप मतलब 23 सालों से जॉब कर ही रहे हैं एक तरह से, है
0: बिल्कुल
1: ना जी? बताएं,
0: जी,
1: आगे बताएं जी।
0: बिल्कुल। बस तो पहले मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी नैब इंडिया सेंटर में, फिर 2015 से मैं मोबिलाइजेशन पर्सन और स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर बनी, और अब मैं साथ में एडमिशंस भी देखती हूँ। मेरी अगर हॉबी की बात करूँ तो मुझे ट्रैवल, कुकिंग, ये सब बहुत पसंद है, और मैं मूवीज भी देखना पसंद करती हूँ, पुराने कम देखती हूँ नए, और गाने भी मेरे को ज्यादातर पॉप टाइप के ज्यादा पसंद आते हैं, और बस। और मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, ठंडा मौसम पसंद है। हाँ,
1: आप नेपाल की जो हैं।
0: कह सकते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अजंता जी, फिर मतलब ये जो स्कूल में पढ़ाने का और नैब से जुड़ने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा?
0: बहुत बढ़िया। शुरू में थोड़ा लगा, जब मैं स्कूल में टीचर बनी ना, तो मुझे लगा मैं तो MNC के लिए बनी हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर फील्ड से थी, टेक्नोलॉजी से थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कंप्यूटर टीचर बनूँ। यहाँ बचपन में जब खेलते हैं ना घर में, तो मैं टीचर टीचर खेल ज्यादा खेलती थी, तो पापा बोलते थे तो बाद में ना टीचर बनेगी, मैं बोलती थी नहीं मैं डॉक्टर, मेरे को ये तो पता नहीं था ना मैं ब्लाइंड, तो डॉक्टर नहीं बन सकते, मैं बोलती थी मैं डॉक्टर बनूंगी। लेकिन बाद में मुझे भी लगा कि मैं किसी MNC में जाऊंगी, किसी बढ़िया कॉल सेंटर में, कहीं अच्छी जगह पे जाऊंगी। फिर जब मैं टीचर बनी तो शुरू में मुझे थोड़े दिन लगा, लेकिन बाद में मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि वहां पे हमेशा आप यंगस्टर्स से जुड़ते हो, और जब आप यंगस्टर्स से जुड़ते हो ना, तो हमेशा यंग रहते हो, आपकी जो भी फीलिंग्स होती है ना, वो बूढ़े होने ही नहीं देते आपको।
1: अच्छा, गवर्नमेंट जॉब का भी सपना था आपका?
0: नहीं, सच बताऊं ना तो थोड़ा थोड़ा था, लेकिन मेरा एक चीज था कि मुझे ना बैठना नहीं है, अगर मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊं तो मुझे काम मिले, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से ये सिखाया है कि आप अपने लिए सेल्फ हेल्प पे बिलीव करो। मुझे उन्होंने कभी ब्लाइंड बन के रहने ही नहीं दिया। जो पनिशमेंट भाई को मिली वो मुझे मिली, जो चीज वो भाई से एक्सपेक्ट करते थे कि वो सीखे, वो चीज उन्होंने मुझसे भी की। उन्होंने कभी इसको बैरियर बनने ही नहीं दिया, मेरे ब्लाइंडनेस को ना। तो मुझे भी था कि भाई मैं अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगी तो फिर मुझे काम मिले, ऐसा नहीं कि भाई आप आ रहे हैं बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही गवर्नमेंट जॉब वाले ऐसा ही करते हैं, लेकिन अपनी जो भी आपकी एबिलिटी है उस हिसाब से काम मिले ना तो मजा आता है, फिर जॉब पे जाने का एक अलग वो रहता है। तो प्राइवेट जॉब में थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क देते हैं ना तो मुझे मजा आता है। गवर्नमेंट जॉब की एक दो एग्जाम्स दिए मैंने, बैंकिंग के दिए, और एक बार मैंने ESIC का भी दिया था, और एक बार मैंने EEO का दिया था, पर मैंने इतने सीरियसली दिया ही नहीं था कि मेरा हुआ ही नहीं। फिर मैंने सोचा चलो मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है ही, तो फिर मैंने कोशिश भी नहीं की शादी के बाद तो और भी। हाँ जी
1: जी, तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा ही प्रोग्राम, आज अजंता जी और परमेश्वर जी के साथ। देखिए श्रोताओं, यही इत्तफाक होता है, यही जिंदगी है। पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे सपनों के सच होने की, और इस प्रोग्राम में कुछ कुछ बात ये हो रही है कि सपने अधूरे रह गए। ऐसा ही होता है हम सबके जीवन में भी। चलिए आगे अब बढ़ाते हैं बातचीत को। तो अजंता जी, बताएं अब फिर मेन मुद्दा जो है हमारे इस प्रोग्राम का, जिसके लिए श्रोता भी इंतजार करते हैं। ये सब तो एक जरूरी हिस्सा होता है कार्यक्रम के उस हिस्से तक पहुंचने का, जिस हिस्से के पीछे कोई ना कोई किस्सा छुपा हो। तो अब मुद्दा ये
0: बिल्कुल
1: है कि आप दोनों के मिलने का क्या किस्सा है, ये बताएं जरा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल। उससे पहले मैं आपसे एक आपको एक बार करेक्ट कर दूं, सपने
1: नहीं,
0: सर मेरे अधूरे नहीं रहे, क्योंकि मुझे सोशल वर्कर बनना था ना,
1: आपने
0: तो
1: कहा ना लेकिन कि आपको सितार का सपना और मैथ्स का सपना।
0: यस यस यस हाँ, सितार का तो टूट गया, लेकिन आज बीइंग सोशल वर्कर मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला पाती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ। छोटे छोटे
1: बिल्कुल
0: बच्चे भी मतलब एडमिशन के लिए मुझे अप्रोच करते हैं, और बड़े बड़े लोग भी करते हैं, है ना। तो
1: बिल्कुल
0: ये है कि मुझे मजा आता है, और जो आपने पूछी है जिसपे हम जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, तो आप किससे पहले सुनना चाहेंगे, मुझसे या परमेश्वर जी से? ओके,
1: आप ही से अभी तो हम बात कर रहे हैं।
0: तो
1: जी
0: मेरे पेरेंट्स को था कि अब जॉब भी कर रही है, चल ठीक है प्राइवेट जॉब ही सही। और ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि ना नेपाल में जल्दी ब्लाइंड लड़कियों की ब्लाइंड से शादियां नहीं होती है ना। अब थोड़ा होने भी लगा, पहले नहीं मैंने देखे। सबको रहता है कि एक्साइटेड, चाहे ब्लाइंड लड़का भी हो चाहे ब्लाइंड लड़की हो, एक्साइटेड चाहिए, है ना। और मैं थोड़ी सी अलग थी, मेरे मन में ये था कि अपने जैसा होगा तो हमें ज्यादा समझेगा, क्योंकि एक्साइटेड होगा तो थोड़ा सा उसको लगेगा कि ठीक है ये काम मैं जल्दी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, लाओ ये मेरे को दे दो ये कर दो। वो हो सकता है सिंपैथी ना दे रहा हो हमें, लेकिन कभी कभी ऐसा लगने भी लगता है कि नहीं यार हम भी तो साथ साथ में काम करेंगे ना, जब पार्टनर है तो फिर हम ऐसा क्यों सोचें। तो मेरा शुरू से ही था कि मुझे अगर मैं शादी करूंगी तो मेरे को ब्लाइंड चाहिए। तो ऐसे ही फिर मैंने पेरेंट्स को मनाया, पहले तो वो साइटेड के लिए कह रहे थे कि मतलब थोड़ा तो होता ही है हर किसी का मन में। तो फिर एक फ्रेंड है हमारे, मतलब मेरा एक फ्रेंड है मनीष, मनीष गुप्ता, वो भी लेट ब्लाइंड थे, हम AICB में मिले थे। तो एक दिन उनका फोन आया कि यार अजंता क्या हाल चाल, शादी वादी नहीं करोगे? मैंने बोला इतना बोल रहे हो तो ढूंढ के दिखाओ।
1: मनीष जी, आपके मनीष जी आपके मित्र थे और AICB में मिले वो आपको।
0: हाँ मिले थे तो फोन पे बात होती थी हमारी, AICB में
1: ये
0: हम
1: कौन से
0: टू
1: सन की
0: थाउजेंड
1: बात
0: टू
1: है?
0: थ्री में ये 2002-03 से मतलब हम लोग जानते थे एक दूसरे को।
1: ओके
0: तो वो क्राइसिस यूनिट में थे और मैं कॉलेज गोइंग के लिए थी AICB में, तो हमारी बातचीत बीच बीच में होती रहती थी। तो वो बोल रहे थे अब तो शादी वादी कर लो, ये 2012 की ही बात है, अप्रैल की। तो मैंने उन्हें बोला अच्छा ढूंढो लड़का कोई हो, तो फिर उन्होंने वाकई में परमेश्वर जी को ढूंढ निकाला, और फिर हमारी फोन पे बात कराई। परमेश्वर जी की अपना बताएंगे, उनके थ्रू एक मीडिएटर के थ्रू ही वो भी मिले मनीष जी तक, और बस फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर पहले फोन पे बात हुई, फिर उसके बाद लगा कि सुइटेबल कैंडिडेट है तो हम मिले भी, और बहुत सारी चॉइसेस हम दोनों की मिलती जुलती है, खाने पीने से लेके सोच में भी, और कुछ कुछ चीजें अपने हॉबीज में भी। तो लगा कि हाँ ही इज गुड कैंडिडेट फॉर मी, तो बस।
1: क्या परमेश्वर जी के अलावा कोई और भी बातचीत हुई थी किसी और के बारे में भी, या बस इन्हीं के बारे में बात हुई और इन्हीं को अपना लिया?
0: नहीं, पहले भी और दो चार लोगों के बारे में लोगों ने बताए थे, लेकिन लेकिन उनसे ना बात बनी नहीं, जमी नहीं, मुझे लगा नहीं कि हाँ। लेकिन परमेश्वर जी की सबसे अच्छी बात है कि उनका मन बहुत अच्छा है, मन के बहुत साफ पर्सन है ये, और इनका मन ही देख के, बस मैंने और कुछ नहीं देखा, सिर्फ इनका मन देख के शादी किया था।
1: अच्छा, तो
0: हाँ जी
1: आप दोनों को मिलवाने में, मतलब ये कहना चाहिए मनीष जी का हाथ है।
0: हाँ, मनीष जी और एक प्रवीण जी है परमेश्वर जी के दोस्त, इन दोनों का।
1: ओके, तो जब आप हौस खास से जुड़ गए थे तो
0: हाँ जी,
1: फिर वहां भी प्रयास हुए होंगे शालिनी मैम वगैरह के माध्यम से भी।
0: हाँ। देखो, लाइफ में क्रश सबका होता है, मेरा भी, मेरे भी क्रश थे, मुझे भी कुछ लोग अच्छे लगते थे, लेकिन ये था कि लोगों की, सबकी थिंकिंग अलग होती थी, है ना। उन लोगों को था कि नहीं, ब्लाइंड से नहीं करना है, ब्लाइंड को पता नहीं चीजों की पता नहीं चलती, जो भी है व्हाटएवर। तो फिर शालिनी मैम लोग मुझे एक दो कैंडिडेट उन्होंने भी बताए हैं, और अच्छे अच्छे कैंडिडेट बताए उन्होंने भी, बट वही वाली बात है ना, संयोग जहाँ होता है ना वही होता है। मुझे इतना इंटरेस्ट आया नहीं, इंटरेस्ट मुझे सीधा परमेश्वर जी के ऊपर आया, जब उनसे मिली, मैं बात किया मैंने तब।
1: मेरा पूछने का मतलब खैर वो नहीं था, हालांकि आप उस ओर भी
0: हाँ
1: ले गए
0: हाँ
1: तो अच्छी बात है। मतलब मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि मैम ने भी कहीं ना कहीं बात की होगी, आप आपसे पूछना शुरू किया होगा कि भाई शादी वगैरह का
0: हाँ
1: क्या।
0: देखो, अरे नहीं, बहुत शालिनी खन्ना मैम का ये है कि वो मेरी बॉस बहुत कम, मेरी एक एल्डर सिस्टर कह सकती, मैं उनसे हर तरह की बातें कर लेती हूँ, मैं उनकी एम्प्लॉय जरूर हूँ, लेकिन मैं उनको उस नजर से, मतलब रेस्पेक्ट है मेरे मन में उनके लिए पूरा पूरा, लेकिन मैं उनसे ना अपनी कुछ भी कह सकती हूँ। कल को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम भी हुई तो मैं उनके सामने जाके रो सकती हूँ, गुस्सा आया तो मैं अपना गुस्सा भी दिखा सकती हूँ उनको, और वो समझती भी है कि ये गुस्से में है ना। मतलब हमारी जो पहचान है, हमारी जो बॉन्डिंग है, वो इतनी अब डीप हो चुकी है कि मैं उनसे कुछ भी कह दूंगी या कुछ भी उनको बोल दूंगी तो वो मुझे समझ लेती हैं। उन्होंने बिल्कुल सोचा है मेरे लिए, मतलब सोचा था तब, और ट्राई भी किया था, लेकिन वही कि परमेश्वर जी से होनी थी ना, इसीलिए परमेश्वर मिलना था, तो फिर और कहीं
1: मिल
0: कोई
1: जब
0: और
1: बात
0: ईश्वर
1: ही
0: मिला ही नहीं।
1: परमेश्वर परमेश्वर पे ही जब बात आ गई तो फिर उससे आगे बचा कौन।
0: सही बात है,
1: आपने कहा क्रश की बात की आपने अजंता जी, फिर आपने
0: बिल्कुल
1: किया कि ब्लाइंडनेस कहीं ना कहीं आड़े आ गई,
0: हाँ।
1: इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि वो जो भी थे, जो लोग वो दृष्टिवान थे, मुख्य धारा के लोग थे।
0: नहीं, थे तो वो भी हमारी तरह विजुअली इम्पेयर्ड, बातचीत तो उनकी भी अच्छी थी, लेकिन उनका ये था कि शादी नहीं, टाइम पास, और टाइम पास मुझे करना नहीं था। हाँ मतलब बातचीत करो ऐसे ही।
1: बिल्कुल।
0: हाँ वो, मैं उस टाइप की लड़की शुरू से नहीं रही। हाँ मेरा था कि भाई बातचीत मीन्स ठीक है, मतलब गुड फ्रेंड्स अलग चीज होती है, अगर आप पर वैसे बात कर रहे हो घंटों घंटों फोन पे करना चाहते हो ये सब है तो फिर नहीं, अगर आप मैरिज के हिसाब से सोचते हो तो उस हिसाब से बात करो। पहले मैरिज के हिसाब से बात करते थे, फिर उनको लगता था कि नहीं।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब आप की ऐसी इच्छा है तो परमेश्वर जी से भी पूछ लेते हैं को इतनी जनता के बीच में अपनी अजंता को ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई या नहीं हुई।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल,
1: परमेश्वर जी बताएं जरा।
0: मुश्किलें नहीं थी। मेरा भी जो दोस्त था प्रवीण, तो उन्होंने मनीष से बात की होगी, तो उन्होंने बोला कि एक लड़की है, तो बोला ठीक है बात कराओ फिर मेरी। तो उसने बोला कि मैं नंबर दे रहा हूँ तुम कॉल करो। मैं बोला नहीं, मैं ही नंबर दे रहा हूँ, तुमने बोला वो कॉल करी।
1: अच्छा।
0: तो मुझे बहुत सुनकर मुझे बहुत शर्म आता था, पहले शादी वादी प्यार प्रसंग ये सब सुनकर मुझे बहुत शर्म आता था, लड़कियों से मैं जल्दी बात ही नहीं करता।
1: आपने ऐसा कहा कि भाई वो आगे से फोन करें आपको, ऐसा।
0: हाँ
1: अच्छा
0: मैंने बोला
1: अच्छा अच्छा फिर
0: मेरा नंबर दे दो, वो खुद कॉल करें। तो जब मैं दिल्ली आया था पहली बार, तो लड़कियों के प्रति हमारा कोई रुझान था नहीं, जैसे कभी कभी बसों में यात्रा करते थे तो हमारे पैर वैर दब जाते थे, तो आम लड़कों की तरह मैं लड़कियों पर भी थप्पड़ जड़ देता था। बाद में लोग समझाए कि नहीं, ये सब पर उंगली उठाना ठीक नहीं है, सब
1: नहीं,
0: ये दिल्ली में थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा।
1: ये दिल्ली है, ये पटना ना ही। हाँ
0: बोले नहीं, किसी लड़की उड़की पर हाथ मत उठाया करो, फिर महंगा पड़ जाएगा, सोचो समझो। फिर मैं समझ में
2: आ गया मुझे कि ये अपराध है लड़कियों पर हाथ उठाना। तो फिर इन सब चीजों से मैं दूर ही रहता था ज्यादातर, लेकिन सोचा अब जब जॉब लग गया है तो कुछ करना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल
2: तो 1-2 महीना हमारी बातचीत चलती रही,
1: नहीं,
2: लेकिन
1: पहले तो ये
2: उसका कॉल
1: बताइए कि फिर अजंता जी का कॉल आया या आपने ही किया?
2: तो इनका ही आया।
1: जी, इनका ही आया था। ठीक है। एक
2: तो
1: दो महीने बातचीत हुआ फिर।
2: बातचीत होती रही, तो बोले मिलने आओ कभी। तो मैंने बोला कि ऐसा है, बाहर ही मिलते हैं, कहीं चाय वाय पीते हैं।
1: जी।
2: घर में एक कमरा लेकर रहती थी और मैं दिल्ली कैंट में था, तो मुझे लगता था कि भाई मिलना एक अलग ठीक नहीं है, हम बाहर ही मिलते हैं कहीं।
1: बिल्कुल।
2: हाँ, तो हम एक लड़के को लेकर गए थे कि चलो जरा मिल के आते हैं, कैसा क्या व्यवहार है। तो लेकिन हमको जाना था कहीं, और चले गए जहाँ रह रहे थे कमरे में, वहीं चले गए।
1: अच्छा।
2: हमारे साथ एक मीडिएटर था, वो बात करता रहा करता रहा करता रहा। हमने कहा ठीक है, बातचीत से लगा कि हाँ हमारी यहाँ जो है विचार स्वभाव मिल रहा है, मन भी मिल रहा है, फिर आगे बात बढ़ानी चाहिए। फिर हम 1-2 महीना बात करते रहे करते रहे, और घर वालों को सूचित किए। उस बीच में बोली कि क्या हुआ, क्या सोचा, जल्दी करो। मैं कहा इतना जल्दी है तो कहीं और देख लो। फिर
1: अच्छा।
2: मेरे पेरेंट्स थोड़ा गांव में रहते हैं ना, तो यहाँ आने में तो उनको दिक्कत थी, तो मेरा विचार था कि वो यहाँ आए, सब कुछ देखें समझे, तब अपना राय सलाह दे। करना तो मुझे ही था, क्योंकि वो तो चाहेंगे नहीं कि ब्लाइंड ब्लाइंड से करे। उनका भी सोच
1: बिल्कुल।
2: यही था कि साइटेड से करे, क्योंकि वो दिल्ली में तो थे नहीं, तो अपने हिसाब से चाहते थे ना। फिर पेरेंट्स जैसे तैसे आए, बातचीत हुई, उन्होंने खुद अपने से देखा के बाद तब हाँ में हाँ मिली, तब बात बढ़ी आगे शादी की।
1: आपकी जॉब कौन से साल में लग गई थी?
2: जो मेरी 2010 में लगी थी, 12 मई 2010 में।
1: 10 में लगी थी। अच्छा, फिर ठीक है। और शादी तो खैर 12 में हुई ना आप दोनों की,
2: हाँ, दिसंबर में।
1: तो 1-2 महीना बातचीत में फिर आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये आपकी जीवन संगिनी, जीवन साथी बन सकती हैं।
2: बन सकती है जी। नहीं, मेरा एक ये था कि पेरेंट्स एक बार खुद से देख ले, क्योंकि बिना पेरेंट्स के हम आगे नहीं बढ़ते थे। जो भी सोचते थे, पेरेंट्स की अनुमति के बगैर हम कोई काम करते नहीं थे। तो उनको आने तक इंतजार किया, आए भी, बातचीत भी हुई, देखे भी, तब फिर आगे बढ़ी बात है।
1: शादी दिल्ली में हुई कि बिहार में हुई?
2: नहीं, शादी तो दिल्ली में हुई थी। हमारा वो चौपाल धर्मशाला है वहाँ, ये फिल्म स्थान यहाँ दिल्ली में ही, वहाँ पर हमारी शादी हुई। और वही मंदिर है आर्य समाज मंदिर, वहाँ शादी हुई, और धर्मशाला में हम लोग पार्टी वार्टी थी।
1: लेके जाते हैं बिहार कभी?
2: अभी तो रक्षाबंधन में घूम के आए वहां, चलता
1: अच्छा, अभी घूम के आई हैं, मतलब आना जाना वहां भी लगा हुआ है।
2: रहता है।
1: बहुत बढ़िया।
2: नेपाल
1: और
2: भी
1: वो
2: जाना आना होता है, बिहार भी जाना आना होता है।
1: बहुत बढ़िया, नेपाल और बिहार को दिल्ली ने जोड़ के रखा हुआ है
2: जी,
1: ना? तो
2: लेकिन नेपाल जाना थोड़ा, अब वहां तो वाई एयर जाना पड़ता है, तो थोड़ा बिहार इतना तो नहीं जा पाते हैं, पर हाँ जाते रहते हैं। साल में 2 बार तो यात्रा हो ही जाती नेपाल की।
1: 14 साल हो गए आप लोगों की शादी को, तो कोई मुश्किल, कोई कठिनाई शादी के बाद जीवन में महसूस हुई?
2: नहीं, शादी के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, और हम एक फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह भी रहते हैं, घर परिवार की तरह भी रहते हैं, मौज मस्ती में है, अच्छी चल रही है।
1: अच्छी चल रही है।
2: हाँ जी,
1: तो आपकी हिम्मत नहीं हुई और इनकी हिम्मत हो गई कुल मिला के, मतलब ये जो ज्यादा श्रेय है वो तो अजंता जी को जाना चाहिए एक तरह से।
2: कह सकते हैं।
1: आप तो सोच के बैठे थे, अब इनका कॉल, ये भी अगर ऐसा सोच लेते मान लो फिर
2: हाँ, तो फिर तो हमें और ढूंढना पड़ता, फिर थोड़ा और टाइम लगता, तो 12 नहीं बल्कि फिर 14 में होता।
1: अच्छा, परमेश्वर जी ये बताइए कि शादी के बारे में कभी कोई ऐसी बात आई थी आपके परिवार में, जीवन में, मन में, शादी गांव में करनी है, ब्लाइंड से करनी है, या साइटेड से करनी है, या करनी ही नहीं है, कुछ इस तरह के विचार भी थे क्या मन में कभी?
2: नहीं, ये सब प्लान हम स्कूल में बना लिए थे कि
1: अच्छा, पहले ही? वाह, क्या
2: हमें
1: बना
2: शादी,
1: बताएं जरा।
2: पहले हमें जॉब करना है, 2 साल तक हम खुद खाएंगे खिलाएंगे, जितना मौज मस्ती करना हो तब करेंगे, क्योंकि ये मौका परिवार में बनने के बाद नहीं मिलता है, जो अकेले में एंजॉय होता है ना फैमिली लाइफ में वो नहीं होता है।
1: अच्छा,
2: और वैसा ही हमने किया भी, 10 में हमारी 2010 में जब लगी, 2 साल तक हमने खूब खाया पिया उड़ाया, कुछ सेव भी किया,
1: बचाया नहीं।
2: उसके बाद लगा कि अब जो है अब हमारा काम पूरा हो गया है तो अब परिवार के विषय में भी सोचना चाहिए। फिर हम अपने दोस्तों को इधर उधर बोलने लगे कि अब ढूंढो देखो। और मुझे तो ब्लाइंड से करने का था मन था, क्योंकि हम ब्लाइंड के विषय में जान चुके थे, लेकिन ये घर वाले का केवल दबाव था कि ब्लाइंड हो कैसे, अगर दोनों ब्लाइंड हो तो कैसे चलेगा और कैसे चलेगा। उनका कहने का मतलब ये था कि वो अपने पास देखते नहीं थे ना, क्योंकि हम दिल्ली में रहते थे, वो बिहार में थी, उनको लगता था कि कैसे काम करेगा, कैसे जाएगा आएगा। उन्होंने हम बहुत कन्विंस किया कि नहीं, दिल्ली में अगर हम साइटेड से करते हैं तो कल को क्या कर रही है नहीं कर रही है हमें तो कुछ पता नहीं चलेगा।
1: सही है,
2: कल को कुछ हो जाएगा तो फिर हाथ पे हाथ धर के रोते रहोगे। और ब्लाइंड जो है ब्लाइंड के फीलिंग जानता है,
1: बिल्कुल,
2: तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, 2-4 दिन भाग के जाएंगे, फिर तो आना ही है ब्लाइंड के पास। साइटेड को अगर जो कर दिया तो कर ही देगा।
1: अच्छा,
2: और दो तीन घटना हम सुन चुके थे, दिल्ली में देख ही चुके थे।
1: वही पूछने वाला था कि भाई ऐसे केस सुने हैं क्या आपने?
2: जी, मैंने बुराड़ी में सुना था एक दो केस।
1: चलिए चलिए, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल उसकी चर्चा तो रहने देते हैं अपन, लेकिन चलिए कुछ अच्छी बात है। अच्छा, कोई और भी जीवन में किसी और के बारे में भी प्रस्ताव आया था या सीधा बस मैडम के बारे में ही प्रस्ताव आया था?
2: नहीं, शुरू शुरू में हमारे दोस्त लोग थे, वो थोड़ा इन सब चीजों में एक्टिव थे पहले से ही।
1: जी,
2: शादी वादी तो नहीं, वहाँ प्यार प्रसंग में थे वो लोग।
1: नहीं नहीं, आपके जीवन में सीधा जो आपको आपके दोस्तों ने बताया, जनता मैडम के बारे में बताया या कोई और भी किसी के बारे में आपको बताया था कि भाई ये भी है वो भी है ऐसे?
2: हाँ, हल्का फल्का एक दो लड़कियों से मुलाकात हुई थी पहले, लेकिन जिनसे मुझे नहीं करना था वो मुझे जोर लगाया, लेकिन उसके हुआ नहीं, उसे करना ही नहीं था मुझे, उसमें बहुत सारी कमियां थी। और जिसको जिसको हम चाहे उसकी शादी कहीं और हो गई।
1: बहुत बढ़िया,
2: इसलिए मैंने फिर सोचा जब होगा तब होगा, देखा जाएगा।
1: तो ये सब अजंता मैडम को पता है कि नहीं पता?
2: हाँ हाँ, हम जो भी करते हैं ओपनली करते हैं।
1: अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुन रहे हैं आप हमारा ही प्रोग्राम अजंता जी और परमेश्वर जी के साथ। उम्मीद है आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बाकी वो तो खैर आपकी प्रतिक्रिया बताएंगी। चलिए बातचीत को अब आगे लेकर के चलते हैं। जी अजंता जी, तो ये कब सोच लिया आपने, चलिए मैथ्स पढ़ना और सितार सीखना, आगे की एजुकेशन लेने के लिए इंडिया आ गए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये फिर कब आपने तय कर लिया कि अब रहना तो दिल्ली में ही है, भारत में ही है, वापस नहीं जाना है?
0: देखिए, कभी कभी ना, मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो है चाहते ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। तो मेरा ना इंडिया में रहने से मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन हर किसी को लगता है ना अपने पेरेंट्स के आसपास रहें, है ना, ताकि हम जल्दी से उनके पास प्रॉब्लम में भी जा सके और वो भी हमारे पास आ सके, खुशी में भी जा सके। बट थोड़ा सा इस बात का दुख मुझे हमेशा से ही है, लेकिन ये सच्चाई भी मैं जानती थी कि बेटर लाइफ अगर जीना है तो हर कोई आजकल ब्लाइंड ही क्यों, साइटेड लोग भी तो अब्रॉड में जाके कर रहे हैं, इधर जाके कर रहे हैं, तो मैं इंडिया में अब सेटल हो जाऊंगी तो एटलीस्ट इंडिया में ब्लाइंड के लिए फैसिलिटी बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। इसीलिए फिर मैंने ये मन में सोच लिया था कि नहीं, मैं यहीं पे करूंगी। और जहां तक रही बात शादी की, तो मुझे पता था कि इंडिया में लड़के ज्यादा मिल जाएंगे, मतलब नेपाल के कंपेरिजन में ब्लाइंड लड़के मिल जाएंगे। तो फिर बस वही था मेरे मन में। और मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है, नो डाउट। मेरा ससुराल, सच बताऊं तो मेरा दूसरा मायका है। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं और दीदी जो इनकी हैं दोनों बहुत अच्छी, मतलब फैमिली मेरे को एकदम अच्छी मिली है। इनके मन के साथ साथ अच्छी फैमिली भी ब्लेस की है गॉड ने मेरे को।
1: नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई ये फैसला आपने कब कर लिया था कि मुझे अब वापस नेपाल जाना नहीं है? आपने बताया कि जाने का मन तो था, मजबूरी की भाई अब तो यार इंडिया में ही रहते हैं चलो, ये कब तय हो गया था, जब आपकी जॉब लगी तब हुआ था या उससे पहले ही ये तय हो गया था?
0: थोड़ा सा उसके बाद जॉब लगी और मैंने फिर भी सिचुएशन देखे लोगों को करते हुए, और यहाँ पे मतलब नेपाल से और भी मेरे सीनियर, मैं आई हूँ डॉक्टर श्वेता सिंह है एक विजुअली इम्पेयर्ड, उनकी मम्मी की वजह से, मतलब श्वेता दीदी मेरी नेपाल में सीनियर रही हैं,
1: असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शायद वे, है ना?
0: हाँ नहीं, प्रोफेसर नहीं, वो रीजनल असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं,
1: डायरेक्टर हैं इग्नू में, है ना?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही
1: जी।
0: हाँ तो उन्हीं की हेल्प से मैं यहाँ आई हूँ, और उसमें आंटी ने बहुत हेल्प की मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने में, कि समझाने में कि भेज दो कुछ नहीं होगा ये वो। पहले थोड़ा पेरेंट्स को लगता है मैं अकेली बेटी हूँ, मेरा एक भाई है बस, हम दो भाई बहन है, तो पेरेंट्स की बचपन से ही मैं बहुत ही एकदम क्या बताऊं, मतलब लाडली बोलते हैं ना हिंदी में, एकदम एडोरेबल चाइल्ड हूँ। उन्होंने हाँ मुझे प्यार भी उतना ही दिया, सब कुछ दिया, मतलब मेरे को बैरियर मेरी लाइफ में कोई सी भी चीज को बनने नहीं दिया, तो उनको लग रहा था, बट आंटी ने बहुत कन्विंस किया कि नहीं जाने दो कुछ नहीं होगा चलो आप लोग। फिर मैं आई यहाँ पे इंडिया, तो मतलब तब तो था कि नेपाल वापस जाना है, लेकिन फिर जॉब लगने के बाद देखा अरे छोड़ो यहीं रहते हैं यहीं पे, और मतलब सब फ्रेंड्स भी मेरे यहाँ बन गए, अच्छी अच्छी मेरी सब फ्रेंड्स हैं, स्कूल की फ्रेंड्स भी हैं और बाकी लोग, क्योंकि मेरा ना मिजाज ही ऐसा है, मतलब मेरा नेचर फ्रेंडली है तो तुरंत दोस्त बना लेती हूँ मैं। हाँ लेकिन ये जरूर है कि मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स वही हैं जो कि मतलब पॉजिटिविटी को लेके चलते हैं, अगर किसी में नेगेटिविटी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी नेगेटिविटी को मार सकूं, अगर नेगेटिविटी को मैं किल नहीं कर पाती हूँ उसकी, तो फिर उसे हाय हेलो तक ही मैं सीमित रहती हूँ।
1: अच्छा बहुत खूब। अच्छा अजंता जी बताइए मुझे कि देखिए काम तो लगभग सबके जीवन में ही है, है ना?
0: हाँ
1: और अपने अपने तरीके से हम लोग वक्त निकाल लेते हैं सारी चीजों के लिए, सारी चीजें हम मैनेज भी करते हैं, लेकिन
0: हाँ जी
1: कभी कोई बंदे आपसे, जब अभी आपने बात की निराशा की, है ना, तो
0: हाँ
1: कभी आप जब अकेले में सोचते हैं या कभी वक्त मिलता है खुद से जब बात करते हैं, तो क्या आपको भी किसी बात का दुख होता है या कोई निराशा आप पर हावी होती है या कोई चीज है ऐसी जो आपको परेशान करती है?
0: देखो जो रियलिटी है ना वो ये है कि मैं जब सच बताऊं आपको भी हंसी आई और श्रोताओं को भी, मैं ना सबसे ज्यादा निराश तब होती हूँ जब मैं बस का वेट कर रही हूँ और मेरे को थोड़ा बहुत विजन है, तो जैसे मैं एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज हेल्प मी टू टेक दिस बस बोल रही हूँ और लोग धीरे धीरे पीछे सरक रहे हो, एकदम से नहीं सरकते, जैसे धीरे धीरे करके ना स्टेप बाय स्टेप पीछे हटते हैं, कुछ नहीं बोलते, एकदम क्वाइट से पीछे हटते हैं, और फिर मुझे लगता है कि यार मैं ब्लाइंड नहीं होती ना तो ये चीज नहीं देखने को मिलता आज, है ना, मेरे को ब्लाइंडनेस कभी मेरे मतलब बुरा नहीं लगता है, मुझे सिर्फ बुरा लगता है कब, जब लोग आंखों के सामने सामने ना डिच करना चाहते हैं, जैसे कभी कभी वर्क प्लेस में मैं देखती हूँ कि लोग इशारे में कई चीजें बोल जाते हैं, और ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मेरे साथ भी होता है कि कुछ ऐसे मेरे कलीग्स होंगे जो कि इशारों इशारों में ही बहुत कुछ मेरे से, मतलब चुप चुप अरे छोड़ो रहने दो मत बचाओ टाइप के इशारे करते हैं, है ना, तो मेरे को इतना नहीं दिखता, लेकिन मेरे साथ वाले अगर देख के मुझे बताते तो मुझे लगता हाँ ये है, अगर मैं ब्लाइंड नहीं होती तो ऐसा होता। बाकी तो निराशा मेरी लाइफ में है नहीं, मैं निराशा को भी तुरंत हटा डिलीट करने में बिलीव रखती हूँ, और निराश होना तो लाइफ में है नहीं ना, देखो चैलेंज है, चैलेंज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो।
1: जी तो जब आप दोनों बैठे होते हैं तो फिर किस तरह की चर्चाएं होती हैं?
0: हम लोगों में ज्यादातर तो कभी न्यूज को लेके होती है, कभी किसी प्लेस को लेके होती है, कभी अपनी फैमिली के, दोनों की फैमिली के बारे में भी बातचीत होती है, और फिर कभी ये भी बात होती है कि चलो अब ऐसा करना है वैसा करना है, फ्यूचर के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, और कभी कभी फिर ये भी होता है कि जैसे हमने ये नहीं किया, है ना, मतलब हर तरह की बातें होती है हम लोगों में।
1: अच्छा आपने तो ब्लाइंड फील्ड के सारे तौर तरीके इंडिया में ही आके सीखे होंगे मेरे ख्याल में, है ना?
0: सॉरी
1: आपने जैसे ब्लाइंड फील्ड में कैसे एडजस्ट होना है, क्या सीखना है, ये सारी चीजें तो आपने इंडिया में आके ही सीखी होंगी ना।
0: रियली यू कैन से, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ ना नेपाल में, वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन था, और मैं हॉस्टल में भी नहीं रहती थी, मैं डे स्कॉलर थी। सुबह 35 to 40 minutes का मेरा ट्रैवल होता था बस से, स्कूल बस से। तो मैं हॉस्टल में मतलब ब्लाइंड लोगों के साथ ज्यादा रह, मतलब क्लास में ही जो ब्लाइंड फ्रेंड्स थे वो होते थे, हॉस्टल के लोगों से मैं बातचीत करती थी, मिलती भी थी, पिकनिक वगैरह भी स्कूल ले जाता था तो तब मिलते थे। बट सही तरीके, सही मतलब एक जो रियलिटी है कि ब्लाइंड के साथ कैसा लगता है, वो मैंने यही इंडिया में आके ही सीखा है।
1: यही आके सीखा है ना।
0: यस
1: तो घर में जो जैसे कामकाज नॉर्मल जो होते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाना, ये सब, तो ये सारी जिम्मेदारियां आप पर हैं कि सर भी कुछ कुछ संभाल लेते हैं चीजें?
0: अरे ये बहुत संभालते हैं, ही इज वेरी गुड कुक, ही इज
1: अच्छा
0: वेरी गुड इलेक्ट्रीशियन, इनके अंदर तो बहुत टैलेंट है हमारे घर
1: अच्छा
0: में। हाँ, छोटे मोटे बल्ब लगाने हो, ट्यूब लगानी हो, या फिर फैन गंदा होता है तो खोलना है, फिर उसको धो धा के वापस लगाना, परमेश्वर जी के अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं। कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, इन्होंने मुझे कुछ चीजें बनाना भी सिखाया, जैसे कढ़ी। कढ़ी ना मुझे खाना पसंद था ना बनाना, इन्होंने मुझे खाना भी सिखा दिया और बनाना भी सिखा दिया, और भी बहुत
1: वाह
0: सारी चीजें। जब
1: क्या
0: ये
1: बात।
0: कभी हाँ चाय बनाते हैं, मैं जब घर आती हूँ इनके हाथ की चाय पीती हूँ ना, तो सारी मेरी थकान जो है खत्म हो जाती है, मैं एकदम रिचार्ज हो जाती हूँ।
1: ये तो मैडम हर पत्नी का है ना, चाहे मतलब चाहे अच्छी भी ना हो तो भी पति के हाथ की मिल जाए तो फिर ये तो मेरे ख्याल से ज्यादातर घरों में होता होगा ये तो।
0: हो सकता है,
1: ये
0: लेकिन मेरा तो मतलब मुझे तो मजा आता है इनकी।
1: तो मजाक की बात रही, लेकिन वाकई में आप जब इतना कह रहे हैं तो परमेश्वर जी बनाते ही होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है रोज की ड्यूटी इन्हीं की लगा रखी है आपने?
0: नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा
1: जी
0: नहीं है, हम लोग मिल के करते हैं सब कुछ,
1: जी
0: है ना। हाँ, और हमारी एक आप कह सकते हैं एडॉप्शन हमने लीगली तो नहीं की है, हमारी फैमिली से ही है। परमेश्वर जी की तीन
1: जी
0: सिस्टर है, तो बीच वाली सिस्टर की डॉटर है, उसको
1: जी
0: अब
1: क्या
0: हमने अपना बेबी बना लिया है, 12th में पढ़ती है अभी।
1: वाह,
0: हाँ,
1: वो
0: 12th
1: आप
0: में
1: दोनों
0: पढ़ती
1: के
0: है
1: साथ पूरा एकदम एडजस्ट हो गई है?
0: एकदम। अब वो वापस उन लोगों के पास जाना ही नहीं चाहते, हम जाते हैं तभी जाती है वो बिहार,
1: सालों से है आपके?
0: नहीं 2013 में नवंबर से हमारे साथ है।
1: वाह बहुत खूब, ये बहुत नेक काम किया है
0: हाँ,
1: आप।
0: छोटी सी थी तो मैंने ऐसे खेल खेलने वाला, रहोगी हमारे साथ, बोली हाँ। तब उसको मगी आती थी, मुझे हिंदी कम्युनिकेशन भी इतने अच्छे से नहीं होती थी, पर हाँ टूटी फूटी मैं भी मगी समझती थी और थोड़ी बहुत वो भी हिंदी। और मामा जी तो थे ही साथ में, मेरे मदर इन लॉ वगैरह आए थे, तब हमें नेपाल जाना था, पहला दशहरा था शादी के बाद ना, तो हम नेपाल जा रहे थे, तो मम्मी
1: जी
0: लोग आए थे, तो दीदी भी आई थी, वो बेबी भी आई थी। तो फिर
1: जी
0: मैंने उसको ऐसे खेल खेल में बोला, तो इसने बोला हाँ मैं रहूंगी। अब दीदी जब जाने लगी तो उसके कपड़े वगैरह पैक करने लगी, तो जोर से रोने लगी, क्योंकि
1: अच्छा
0: उसको उम्मीद थी कि मामी रोक लेगी, और तब से वो हमारे साथ है। और मेरे लिए मेरी मतलब जो संतान कहना चाहिए वो यही है, मतलब हम
1: वाह
0: दोनों
1: बहुत
0: के लिए।
1: बहुत खूब। तो मतलब कुल मिला के आप दोनों का जीवन उसको भी संभालने में और पालने में और बड़ा करने में एक तरह से
0: बिल्कुल
1: बीत रहा है ना।
0: बिल्कुल
1: ये बहुत बहुत अच्छी बात है। तो परमेश्वर जी,
0: यस
1: काफी कुछ तारीफ कर दी अजंता जी ने आपकी है।
2: जी सर।
1: तो ये क्या आपको शौकी शौक था या आपने ये मजबूरी में सीखा सब?
2: नहीं, मतलब शौक है, क्योंकि मैं बचपन से ही रेडियो सुनना, टीवी देखना बहुत पहले से ही है।
1: नहीं, कुकिंग
2: तो
1: वगैरह करना खासकर?
2: कुकिंग वगैरह में क्या हुआ कि मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट है होम साइंस, तो होम साइंस वहाँ अनिवार्य है, लेना पड़ता है, तो 9th से, तो होम साइंस में मुझे इंटरेस्ट था, वहाँ थ्योरी थ्योरी प्रैक्टिकल वगैरह सब कराते हैं बढ़िया से, इस वजह से हमने सीख लिया। तो शौक भी था,
1: अच्छा
2: हम लोग सारा डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, अब गड़बड़ी कुछ हो गई घर में तो मैकेनिक को बुलाओ, या अभी तो हम गवर्नमेंट फ्लैट में हैं तो कंप्लेन करो कब आएगा नहीं आएगा। मुझे सारे काम आते हैं, मतलब लाइट इंजीनियर से लेकर इलेक्ट्रिशियन, प्रेस करना, सिलाई करना।
1: ये बहुत सारे लोगों का एक एक जिज्ञासा रहती है परमेश्वर जी, कि ब्लाइंड व्यक्ति मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए कामकाज कैसे कर लेता है, तो थोड़ा आप
2: हाँ
1: समझा पाए तो कुछ लोगों
2: एक
1: को
2: बार
1: हो
2: मैं
1: सकता
2: घर में,
1: है ऐसा
2: एक बार
1: हो
2: मेरी
1: मदद।
2: मम्मी बोली उनको कुछ सिलना था, तो बोले सुई में धागा डालना है, मुझे थोड़ा कम दिख नहीं रहा है, बड़े लोग को थोड़ा हो रहा है ना कि आँख कम दिखता है, तो थोड़ा एजेड होने के बाद, तो मैं कहा दिखाओ मुझे, मैं डाल रहा था, हमारे अगल बगल जितने भी पड़ोसी थे छत पर से देख रहे थे, मैं वही पकड़ा और डाल के दे दिया। अब उन लोग सोचने लगे कि भाई कैसे डाल दिया, तो बिना हाथ से कुछ लिए बिना हाथ से कैसे डाल दिया, हम लोग को देख रहा है दो दो आंख फिर भी नहीं डाल पा रहे, ये तो बिना देखे हाथ से कोई भी सुई हो मैं हाथ से ही डाल के धागा सिलाई करता हूँ,
1: जी
2: कोई नीडल नहीं, कोई थ्रेडर नहीं, हाथ से
1: हम
2: ही।
1: पूछ रहे थे जो लाइट संबंधित बिजली संबंधित जो काम काज हैं
2: जी
1: वो आप कर लेते हैं, तो कभी करंट वरेंट आने का डर नहीं लगता है?
2: हाँ, पहले एक दो बार करंट खाए हैं, तब से यह सबक मिल गया कि हमें पहले उधर से पहले लाइट काट के करना है,
1: अच्छा, तो वो सब कुछ आप कर लेते हैं, काटना, जोड़ना, लगाना सब?
2: सब कर लेते।
1: बहुत अच्छी बात
2: अगर
1: है।
2: देखना पड़ता है कि पहले हमारे यहाँ वायरिंग कैसी है, तो वहां से हम लाइट को पहले डिस्कनेक्ट करके ही करते हैं, कई जगह वायरिंग ठीक नहीं होता तो इधर से लाइट आ रही है, उधर से लाइट आ रही है, इधर हाथ फंस जाए, तो ये सब का ध्यान रखना
1: थोड़ा
2: पड़ता है।
1: थोड़ा बहुत आपको शायद दिखाई भी देता है ना?
2: लाइट वाइट थोड़ा दिखता है, मतलब मुझे 2012 तक भी थोड़ा बहुत दिखा है, धीरे धीरे रोशनी चली गई, अब तो लगभग केवल लाइट दिखता है, बस दिन रात का बस अभी पता लग जाता है कि दिन है रात, थोड़ा पहले सब कुछ मैंने देखा है दुनिया पूरी, तो कभी कभी लगता है कि हाँ, अब जो लोग नहीं देखे होंगे उनको तो कोई बात ही नहीं है, हम लोग देख रखा है सब कुछ, तो कभी कभी मन के अंदर आ जाता है उसका तस्वीर कि 500 का नोट ऐसा है तो ऐसा होगा, इस तरह होगा। हाँ
1: पुरानी बातें याद आ जाती हैं। अच्छा,
2: हाँ तो अब हमने ब्लाइंडनेस एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, और आज भी हम यात्रा करते हैं तो खुद ही घूम लेते हैं, अकेला जहाँ आना हो, दिल्ली, मुंबई, बिहार, नेपाल वाल, तो खैर अब फैमिली के साथ जाते हैं, लेकिन इतना सक्षम है हम कहीं भी अकेले जा सकते हैं और जाते भी, बचपन से हमने स्कूल अपने खुद ही गया आया, दिल्ली, बिहार, पटना, बनारस, पेरेंट्स को पता नहीं लगा कि बनारस में कब दिल्ली आ गया, कब एडमिशन ले लिया, तो नहीं तो वो परेशान होते थे कहाँ ले जाऊँ, कैसे करूँ, किससे मिलूँ, वो एक बार केवल हमें पटना में एडमिशन करा दिए, उसके बाद मैं खुद ही रास्ता बना लिया।
1: बहुत बढ़िया। कब दिल्ली आ गए, कब अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। चलिए, बहुत खूब, आप दोनों से मजा आया बात करके। तो
2: और हम
1: श्रोताओं
2: लोग, हमें भी मजा आया बोला।
1: जी, आपने सुना हमराही कार्यक्रम में अजंता जी और परमेश्वर जी को। तो अब लगभग कार्यक्रम के अंत में हैं हम लोग। परमेश्वर जी, कुछ सुनने वालों को कहना चाहते हैं आप अपनी ओर से?
2: मैं यही कहूंगा कि अपने आप को ब्लाइंड ना समझे, और जो ब्लाइंड है और डिपेंडेंट ना रहे किसी पर, प्रयास करें, आगे बढ़ें, जब आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा।
1: वाह, जब आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा, ये परमेश्वर प्रसाद जी का कहना है। जी अजंता जी, आप भी अपनी
2: जी
1: जिंदगी के कुछ अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ चाहें तो साझा कर सकते हैं, जो भी देखा है, समझा है, जाना है दृष्टिबाधित समाज के बारे में। जी
0: बिल्कुल, देखो मैं ये कहूंगी कि ब्लाइंडनेस को लेके ना, सबसे पहले तो अपनी ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट करो, चाहे वो बाय बर्थ हो, चाहे वो लेट ब्लाइंडनेस आई हो, एक्सेप्टेंस जहाँ होती है ना, फिर वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरी बात, पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि अपने बच्चे को आप बेचारा मत समझो, बेचारा, अरे क्या होगा, वो कोई बेचारा नहीं होता, वो भी बहुत बदमाशियां करता है, बहुत चीजें सीखता है, बहुत अच्छा होता है, पर बेचारा नहीं होता है ना, अपने बच्चे को और बच्चों की तरह समझो, और उसको बस चांस दो कि वो चीजें करे, उसको घर में मत बिठाओ, कोने में मत रखो, और अपने जैसे लोगों को बस ये मैं यही कहूंगी कि काम से मत घबराओ, काम पकड़ो और काम करो, लाइफ में काम करने में बहुत मजा है, और मस्त रहो।
1: क्या बात है, मस्त रहो, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजंता जी और परमेश्वर जी, आप दोनों का प्रोग्राम
2: बिल्कुल
1: के लिए, वक्त निकालने के
2: बिल्कुल
1: लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें साझा करने के लिए। जी
0: हाँ आपको भी और रिकॉर्डिंग क्लब को पूरी टीम को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम भी लोगों से जुड़े, कभी हम भी औरों की सुनते थे और लोग हमें सुनेंगे।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ये हमारा ही प्रोग्राम का काम यही है।
2: मुझे रिकॉर्डिंग क्लब के लिए मुझे ये कहना है कि मैं आपका सारा मैसेज सुनता हूँ तो मुझे कभी लगा कि एक बार कंट्रीब्यूशन के बाद हो रही थी
1: जी,
2: तो मैंने भी कोशिश सोचा कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, लेकिन मैं जान पहचान था नहीं किसी से, तो मैं कंट्रीब्यूशन दूं किसको दूं किसे कहूं, मैं केवल मैसेज सुन के रह गया, लेकिन मुझे मेरा भी इच्छा था कि आप लोग के साथ जुड़कर मैं भी योगदान करूं।
1: जी
2: आपका कार्यक्रम बढ़िया है, बहुत सारे कार्यक्रम मुझे अच्छा लगा, मैं सुनता रहता हूँ।
1: जरूर जरूर जरूर, बहुत बहुत बहुत खूब, बस ऐसे ही अब बातचीत हो गई है तो जुड़ गए हम सब आपस में। और श्रोताओं, यही बस रिकॉर्डिंग क्लब ऐसे ही चलता है हमारा, लेकिन फिलहाल ये रेडियो मधुबन का कार्यक्रम है हमराही, और हमराही कार्यक्रम भी आप लोग सुनते होंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप दोनों ने भी सुने होंगे हमराही कार्यक्रम तो?
0: बिल्कुल बिल्कुल सुने हैं, और रेडियो मधुबन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हमराही प्रोग्राम चला के मतलब उन लोगों ने और लोगों को मोटिवेट करने का काम किया। कई लोग अभी सोचते हैं शादी कैसे होगी, जैसे मेरे में तो हर यंगस्टर्स के साथ जुड़ी हूँ, वो कॉलेज वाले बच्चे हों स्कूल वाले, तो
1: जी
0: मैं उन्हें भी कहती हूँ कि तुम लोग ना कभी मौका मिले रेडियो मधुबन का हमरा ही सुनना, मजा आएगा तुम्हें, बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा।
1: ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए परमेश्वर जी, अजंता मैम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। श्रोताओं
0: हाँ
1: जी,
0: हमारी तरफ से भी आपको टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और एक स्पेशल धन्यवाद मैं यहाँ हसीबा को करूंगी। हसीबा मेरी स्टूडेंट रही है नैब इंडिया सेंटर की, और उसी ने मुझसे पहले कहा था कि मैम आप जुड़ोगे मतलब आओगे इंटरव्यू दोगे, तो मुझे भी शुरू में लगा कि बात करना चाहिए, लेकिन जो क्रेडिट है ना मतलब हम तीनों को मिलाने का इस प्रोग्राम के जरिए, उसमें हसीबा का भी हाथ है, तो हसीबा को भी बहुत बड़ा थैंक्स।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा हमेशा की तरह। और एक बात और, आप में से भी कोई भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, आप दोनों में से, यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो आप दोनों में से कोई भी एक बस केवल दिव्यांग होना चाहिए, तो फिर आपकी भी कहानी हमराही के माध्यम से दुनिया तक लाने का वादा हमारा रहा। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ, तब तक रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
4: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट दी अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इनटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी जीने का नाम है। जिंदगी क्या हर पल एंजॉय की जा सकती है? क्या जिंदगी को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? कितने सारे सवाल आते हैं ना मन में, लेकिन उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे धीरे धीरे अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे कार्यक्रम लव यू जिंदगी में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, जो कि सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं ग्लोबल अस्पताल माउंट आबू से। आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू आरुषि जी, बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से डायरेक्ट मिलकर उनसे बातें करके, अपनी बातें शेयर करके। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी।
0: दीदी मुझे ना एक गाने की लाइन याद आ गई थी और उसमें कहते हैं कि बताना भी नहीं आता और छिपाना भी नहीं आता। कई बार भावनाओं के साथ ऐसा ही होता है कि समझ में नहीं आता कैसे एक्सप्रेस करें, और कभी कभी हमें लगता है हम बड़ा अच्छा छुपा ले रहे हैं लेकिन वो किसी और तरीके से एक्सप्रेस होके बाहर आ जाती है। और हम लोग भावनाओं के बारे में ही, इमोशनल अवेयरनेस के बारे में पिछले कुछ एपिसोड से बातचीत कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक प्रश्न आया था मेरे सामने, वो मैं आपसे पूछती हूँ। उन्होंने ये बोला कि उनको जब एक्सप्रेस करने का वक्त आता है, वैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि मेरी भावनाएं अगर मैं किसी के भी सामने ले आऊंगी तो वो मुझे समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं लाना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि नोबडी विल अंडरस्टैंड। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल सही समझा उन्होंने अपने आप को, कि एक तो होता है भावनाओं को समझना कि मेरी क्या फीलिंग है। मैं खुशी फील कर रही हूँ, मैं गुस्सा फील कर रही हूँ, मैं उदास फील कर रही हूँ, मैं जेलस फील कर रही हूँ, मैं कंपटीशन फील कर रही हूँ, दूसरे के साथ कंपैरिजन की फीलिंग मुझे है, मुझे क्या मेरी भावनाएं हैं, इसको पहचानना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम उन भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं तब हमें एक अडल्ट होने के नाते फिल्टर लगाना होता है ना?
0: Okay.
1: हाँ, फिल्टर क्यों लगाना है कि अगर हम एज इट इज अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देंगे तो लोगों को वो शायद समझ में भी नहीं आए और शायद पसंद भी ना आए। ये भी हो सकता है ना?
0: जी।
1: सो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक छोटा बच्चा 9 साल का मेरे पास आता है। उसके माँ बाप उसको लेकर आए इसलिए कि आप इसे थोड़ा सुधारिए। ये जब बड़ों से बात करता है, बड़े कुछ भी पूछते हैं तो ब्लंटली जवाब देता है, जो उसकी फीलिंग है वैसी ही वो एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहन ने उससे पूछा कि कैसे हो आप, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। सो अब उसको सवाल समझ में नहीं आया तो उसने कहा, क्यों नहीं दिखाई दिया, आप इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी, क्या आपको दिखाई? सो उसके जवाब बहुत ब्लंटली होते हैं, फिल्टर किए बिना वो किसी को भी जवाब दे देता है। तो उसके पेरेंट्स को ये चिंता है कि ये एज इट इज अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर देता है, जो कभी कभी सामने वाले को
0: अनकंफर्टेबल होते हैं।
1: अनकंफर्टेबल, किसी बच्चे से हम इस तरह के जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं।
0: जी।
1: तो आजकल वो रोज बच्चा मेरे पास आ रहा है। सो मैंने जो ऑब्जर्व किया, ही इज वेरी ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ। वो बहुत इंटेलिजेंट

0: नहीं आती है कि व्यवहार में कैसे जवाब देना है। सो हम सभी ने डिस्कस किया, उसके पेरेंट्स और हम सभी ने मिलके सोचा कि अभी इसकी उम्र छोटी है, ये बिना फिल्टर के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा उसे टाइम देना चाहिए।
1: ओके।
0: जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा, तो उसको समझ में आएगा कि जवाब कैसे देना है। सो वो समझ रहा है इस बात को, और उसके लिए हमें पेशेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि एक कहानी मुझे याद आती है, किसी साइंटिस्ट की है। तो वो साइंटिस्ट बहुत बड़े रिसर्च करते थे, तो जिस कमरे में वो रिसर्च करते थे वहां एक बिल्ली थी और एक बिल्ली का बच्चा था, है ना। सो वो देखते थे कि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे के लिए आने जाने का रास्ता उनको बनाना था। तो रिसर्च में इतना बिजी रहते थे कि इस छोटी सी बात को सोचने के लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया। उन्होंने सोचा मेरे पास दो बिल्लियां हैं, तो मुझे दो होल्स बनाने हैं, एक बड़ा होल और एक छोटा होल।
1: ओके।
0: तो उन्होंने दो होल बना दिए, एक बड़ा होल एक छोटा होल। सब लोग आके पूछते थे ये आपने दो होल क्यों बनाए हैं। कहा बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा होल, छोटी बिल्ली के लिए
1: छोटी बिल्ली के लिए छोटा होल।
0: बट वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सके कि अरे बड़े होल में से छोटी बिल्ली भी जा सकती है ना, उसके लिए अलग होल बनाने की जरूरत
1: नहीं है।
0: तो जब कई लोग एक अलग लेवल पर, एक जीनियस लेवल पर होते हैं, तो वो कभी कभी छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते,
1: क्योंकि ब्रेन कहीं और ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो जैसा आपने बताया, वो बच्चा भी बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, तो और बहुत ऑनेस्ट भी है, जैसा आपने कहा अपनी फीलिंग्स के साथ। उसे वही फील हो रहा था तो उसने वही कह दिया। यहाँ मेरे पास एक और सवाल आता है।
0: नहीं, आपका सवाल में से मुझे लगता है कि मैंने एक आधा जवाब दिया।
1: जी जी।
0: जो सवाल था आपका, उसमें आपने कहा कि कोई मुझे समझेगा नहीं।
1: हाँ जी, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं करते।
0: नहीं करते हैं। तो एक्सप्रेस करो या नहीं करो, लेकिन एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी।
1: ओके, कैसे?
0: मेरी किस तरह की फीलिंग है, मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, मेरी इस समय कौन सी भावना है, अगर मुझे अच्छी तरह से पता हो। और मैं किसी के सामने इसलिए नहीं व्यक्त करती हूँ कि वो मुझे नहीं समझेंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त जरूर करना है। वो कैसे हो सकता है? आप कोई चित्र बना दो।
1: ओके।
0: हो सकता है आप कहीं किसी डायरी में लिख डालो। ना, लिखना सबसे अच्छी एक्सप्रेशन है। हो सकता है आप गार्डनिंग करते समय पेड़ पौधों को वो बात सुना दो। जैसी है वैसी, क्योंकि वो जज नहीं करेंगे आप, है ना। या फिर हम जो करते हैं मेडिटेशन में, हम जब ईश्वर से बात करते हैं, परमात्मा से बात करते हैं, या यूनिवर्स से बात करते हैं, तो हम अपनी बात एज इट इज यूनिवर्स को सुना देते हैं।
1: ओके।
0: क्योंकि
1: इंटरेस्टिंग है।
0: हाँ, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको पलट के जवाब नहीं देगा, केवल सुनेगा, है ना, और एक्सेप्ट भी करेगा। परमात्मा भी ऐसे ही है, जो आपको जज नहीं करते हैं, जो आपको रिमार्क नहीं देते आप ऐसे हो आप ऐसे हो, जो आपको गलत नहीं समझते हैं। तो जब हम अपनी फीलिंग्स को, जैसे कहा जाता है ना लेटर टू गॉड, हम ये प्रैक्टिस भी करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ।
1: okay.
0: कि राइट अ लेटर टू गॉड, गॉड इज योर फादर, सो राइट अ लेटर टू गॉड। उसमें शिकायत हो सकती है, उसमें अपने दिल की बात हो सकती है एज इट इज, एंड वो इतने उदार दिल है कि वो कभी भी आपकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस, हमको एक्सप्रेस करना जरूरी
1: है। ओके। तो ये मतलब जैसा आपने कहा कि भले हम लोगों से शेयर करने में अभी अनकंफर्टेबल हैं एट प्रेजेंट, तो हम ऐसे भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
0: कर सकते,
1: बट एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, भावनाओं को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है।
0: एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो उसका ऑपोजिट वर्ड है सप्रेस। तो क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परिवेश में हम देखते हैं कि महिलाएं और गर्ल्स, फीमेल है, फीमेल्स है, उनको अक्सर कहा जाता है कि चुप रहो, बोलो मत। या कोई बहू है, बेटी है, या किसी भी रोल में है फीमेल्स, तो उनको दबाया जाता है उनकी फीलिंग्स को

0: शेयर करने का मौका नहीं मिलता है तो वो सप्रेशन में चली जाती और सप्रेस की हुई फीलिंग्स। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप अगर एक छोटी सी स्प्रिंग है अगर आप उसको दबा के रखेंगे प्रेशर दे तो वो दबी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप हाथ उठाएंगे
1: तो एकदम से बाहर आती है,
0: उछल कर कूद कर
1: चलती है,
0: कहीं और चली जाएगी। तो वैसे ही जब हम अपनी भावनाओं को सप्रेस करते हैं तो हम धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। उसको वेंट आउट नहीं हुई ना हमारी फीलिंग्स। उसको कई बार कहते हैं आप बहुत अच्छा खाना खा लेते हो पर थोड़ा ज्यादा खा लेते हो तो क्या होता है, उल्टी हो जाती है,
1: वॉमिटिंग हो जाती है
0: या आपको वॉमिटिंग करनी पड़ती है, वो हजम भी नहीं हो रहा है और मैंने ओवर ईटिंग कर लिया है। तो वो उल्टी करना एक्सप्रेशंस के साथ भी ऐसा ही होता है, फीलिंग्स के साथ भी ऐसा ही होता है। दबा दबा दबा दबा के सप्रेस कर कर करके फिर एक टाइम आता है कि आपको उल्टी करना पड़ता है। तो वो अगर उल्टी ना हुई, निकला नहीं आपके दिमाग से वो बातें, तो फिर वो आपको ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाए। क्योंकि आप अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं के साथ रिपीट करते रहोगे उन थॉट्स को, उन विचारों को,
1: और वो बिल्कुल भी अच्छा दृश्य नहीं होगा। जैसा आपने कहा इट इज लाइक सब कुछ एकदम से बाहर आना, हैंडल भी नहीं कर पाएंगे उस वक्त, तो शायद इतना कुछ एक साथ डील भी नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, जो बहुत बार होता है सच में, हमें से बहुत लोगों के साथ होता है, एट एनी पॉइंट शायद हुआ है। यानी यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मिलता जुलता ही था ये सवाल, लेकिन मैंने सोचा आपसे थोड़ा अलग से पूछती हूँ क्योंकि एक डिफरेंट केस था। उन्होंने ये कहा कि वो एक्सप्रेस करते हैं लेकिन उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा सा उनसे फाइनेंशियल स्टेटस में अलग है, एंड उसमें उनको कई बार ऐसा लगता है मैं अगर ओरिजिनली एक्सप्रेस करूंगा तो थोड़ा मजाक उड़ाया जाएगा या ऐसा कहा जाएगा, जो उनके साथ एक दो इंसिडेंट्स हुए भी हैं। एंड उन्होंने ये कहा आई एम ट्राइंग टू चेंज, तो मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ एंड आई विल वन डे, अभी मुझे थोड़ा सा हाइड करना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी को या अपनी चीजों को, मैं अभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ, बट मैंने ये प्लान किया है कि मैं अपने आप को इतने समय में एक न्यू मी बना लूंगा, एक नया मैं बन जाऊंगा जो बाकी लड़कों की तरह है, जो कॉन्फिडेंट है, जो मस्ती मजाक करता है ज्यादा, अभी वो वैसे नहीं है, बट ही सेड कि वो उनका प्लान है, तो इस बारे में क्या लगता है आपको?
0: बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी इन चीजों से गुजरी हूँ। जब स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड फाइनेंशियल स्टेटस से बच्चे आते हैं, तो हम तो मुंबई के स्कूल में थे तो हमने देखा हमारे स्कूल में गवर्नर के बच्चे भी थे, तो बड़े बड़े घरों से बच्चे थे, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके पास पैसे होते थे, वो रिसर्च में जाकर कुछ खरीद कर खा लेते थे, परंतु उनके बीच में रह के हमारे पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं होती थी। तो जो हमें उनके साथ रहते हुए भी गिल्टी फील नहीं कराता था या लो फील नहीं कराता था वो चीज थी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, सो वो कैसे बना, तो मैं आप एक उदाहरण देना चाहूंगी, मेरे ही बचपन का उदाहरण है। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे परंतु जीवन का काफी अनुभव था उन्हें, पुराने लोगों को था जीवन का अनुभव, तो एक घटना के माध्यम से उन्होंने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाया। तो एक बार क्या हुआ, बहुत छोटी उम्र थी 4-5 साल की, और सभी आसपास पड़ोस के दोस्तों ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से थोड़े थोड़े पैसे लेके आ जाओ, हम बहुत अच्छी चॉकलेट्स लेंगे, और हमारी वो छोटी सी चॉकलेट पार्टी होने वाली थी। दोपहर का समय था, मैं भी अपने घर में गई, देखा सब लोग सो रहे हैं, अब मुझे तो पैसे चाहिए थे, तो मैंने देखा कि टेबल पर कुछ चिल्लर पड़ी है, हमारे जमाने में 10-5 पैसे हुआ करते थे। और वो 25 पैसे का वो क्वाइन होता था जी। तो वो चिल्लर मैंने उठाई और मैं चॉकलेट खा के खत्म भी कर लिया, मतलब एंजॉय किया हमने वो दोपहर में। अब शाम हुई तो मम्मी पापा ने देखा कि इधर पैसे कुछ थे वो अभी दिखाई नहीं दे रहे, तो सबको अनाउंस किया गया किसने लिए, क्या यहाँ कहाँ गए पैसे, तो मैंने आगे आके कहा कि मैंने लिए और मैंने चॉकलेट्स खाए। सो मम्मी पापा ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सब लोग इधर उधर हो गए, फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा आपने पूछा था किसी से पैसे उठाते समय, तो मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने पहली शिक्षा दी कि देखो चाहे आपके घर की चीज है, चाहे आप पड़ोस में खेलने जाते हो उनके घर में कोई चीजें पड़ी है, छोटी है, बड़ी है, पैसे है, चीज वस्तु है, कोई भी चीज आपको पूछे बिना हाथ नहीं लगाना है ना। किसी के भी परमिशन लिए, क्योंकि आपकी नहीं है ना, तो आपको परमिशन लिए बिना उसको यूज नहीं करना है। उसी का मौका लेकर उन्होंने दूसरी बात समझाई, देखो बच्चा हमारी जो हैसियत है उसके अनुसार हम आपको सब कुछ देना की कोशिश करते, तो आपको उस बात की खुशी होनी चाहिए जो हम देते हैं उसमें आपको खुश रहना है। जब आप पड़ोस में देखते हो कि उनके मम्मी पापा उनको अच्छी अच्छी गुड़िया देते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ी पुरानी है, थोड़ी छोटी है, आपको वही अच्छी लगनी चाहिए, आपकी नजर उनकी चीजों पर नहीं जानी चाहिए और अपने आप को आपको कम नहीं समझना चाहिए। जो आपको मिला है वो भगवान का दिया हुआ एक बहुत सुंदर गिफ्ट है, उसके लिए आपको थैंकफुल रहना है, लेकिन दूसरों की चीजों को देखकर अपने आप को छोटा नहीं समझना है। ये जब उन्होंने कहा तो उन्होंने और एक बात कही कि इस समय हम आपको जो बता रहे हैं बातें वो शायद आपको समझ में ना आए, पर आप इसको याद रखना और इसी को यूज करना। सो उस छोटी सी उम्र में वो बात याद रह गई कि दूसरों के साथ मुझे कंपेयर नहीं करना, उनकी सोने की चैन होगी, स्टील की होगी, पीतल की होगी, लेकिन मुझे उस पर नाज होना चाहिए। उनके कपड़े बहुत ब्रांडेड होंगे, बहुत फैशनेबल होगे, मेरे सिंपल होगे, लेकिन स्वच्छ होगे, मुझे उस पर नाज होना चाहिए। सो वो चीज दिमाग में इतनी बैठी थी, तो इतने बड़े घरों के लोग होने के बावजूद भी हमें कभी अपने लिए गिल्टी फील नहीं हुआ या कम फील नहीं हुआ, हम उनके साथ उतना ही कॉन्फिडेंस से बात करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ रहना और अपनी ओरिजिनलिटी बना के रखना, वो बहुत पैसे खर्च करते थे लेकिन हमारे पास जो थोड़े होते थे उसमें से हम थोड़ी चीज लेते थे और हम शेयर करके खाते थे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब मुझे ये पता चला कि वो बड़े घर के बच्चे मेरे टिफिन से खाना खाते थे और उनको मेरे घर का खाना अच्छा लगता था, तो मैंने पूछा ऐसी क्या बात है जो आपको मेरे घर का, तो वो कहते थे आप हमारा टिफिन ले लो, आपका हमें दे दो। तो मैं कहती थी मेरा तो इतना सिंपल है, आपको मेरा क्यों अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें तुम्हारी मम्मी कितना प्यार से बना के दे रही, उसका टेस्ट हमें पता है, इसलिए तुम्हारा टिफिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो तब मुझे महसूस हुआ कि अपने छोटे से घर में उन्हें ले जाने में मुझे शर्म नहीं आई,
1: प्यार मतलब उससे भी ऊपर है। कई बार हम भावनाओं को कम रख लेते हैं, पैसों से कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, पर जब ओरिजिनलिटी रहती है तो ओरिजिनली लोग पसंद करने लगते हैं। कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया दीदी आपने, और मुझे लगता है कितना प्रैक्टिकल है ये।
0: लोग क्या करते हैं स्कूल कॉलेज में शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं
1: जी,
0: कपड़ों से, अपनी बातों से, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों? आप जो हो जैसे हो वैसे ही प्रेजेंट रहो, तो वो भी एक भावनाओं की सच्चाई जो है
1: जी,
0: वो सामने वाले के दिल को छू जाती है।
1: ये जो न्यू मी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने ये वाला शब्द सुना उनके मुंह से न्यू मी, तो ये न्यू मी बनने के लिए क्या हम अपनी भावनाओं को फेक करना या फिर कुछ और बनने के लिए, अगर कहीं हमें जो चीज सही नहीं लग रही है वो भी फील करना, जैसे उन्होंने बताया ग्रुप में कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं किसी का, तो उनको इनिशियली वो नहीं होता था उनसे, क्योंकि शायद उनको गिल्टी लगता होगा, ये वर्ड तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन बाद में वो कोशिश करने लगे कि मैं भी उड़ाऊं मजाक थोड़ा, मैं भी उस प्रकार से करूं। तो ये अपनी भावनाओं को खुद ही हम कुछ और समझ रहे हैं, क्या कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है ऐसा लग रहा है।
0: देखिए एक मजाक उड़ाने की जहां तक बात है
1: जी,
0: तो मुझे आप बताओ, उनको ये पूछना चाहिए हमें कि आपको किसी का मजाक उड़ाते हुए अच्छा लग रहा है क्या?
1: वो इनिशियली नहीं लग रहा था, बट उन्हें लगा कि ठीक है नहीं लगना चाहिए मुझे गिल्टी, बिकॉज ये ऐसा ही कूल होता है या ऐसे
0: ग्रुप में अच्छा शामिल होने के लिए हम भी मजाक करना शुरू कर देते
1: जी,
0: है ना, कि मुझे उस ग्रुप में शामिल होना है। कई बार है ना पीयर प्रेशर इस तरह का होता है कि जैसे कुछ बच्चे गलत काम करते हैं, कहीं चोरी करना, कहीं कुछ सिगरेट पी लेना, कहीं शराब का घूंट लगाना, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जिनको ये पसंद ही नहीं है, वो अपने आप को उस ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए उनकी जैसी आदतें डालने की कोशिश करते हैं,
1: अपनी फीलिंग्स को ही नेगलेक्ट कर देते हैं।
0: यस यस, ये फेक मी है,
1: इसमें न्यू मी नहीं है,
0: ये न्यू मी नहीं है, ये फेक मी है, और ये फेक मी के साथ लंबा समय जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो असली मी को समझना, न्यू मी करो बट वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं। सो यहाँ हम नेगेटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव फीलिंग्स, जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करना सीखते हैं।
1: ओके,
0: हमें कि नेगेटिव फीलिंग्स क्या है, कि किसी के बारे में मुझे ईर्ष्या होना, उसको देख के मुझे अपने आप में कमी महसूस होना, ये नेगेटिव फीलिंग्स है ना।
1: मुझे अच्छा फील नहीं कर रहा, अच्छा बुरा लग रहा है, डाउन बुरा लग रहा है।
0: फिर लोग बड़े बड़े शौक रखते हैं, मुझे भी ऐसे लगता है मैं क्यों नहीं रख सकती, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सो हमें लगता है कि मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो ये कंपैरिजन होता है। हाँ, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, फिर हम सोचते हैं मैं क्यों नहीं हूँ। तो क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ फोकस जो है खुद से निकलकर दूसरों के अराउंड घूमता रहता है ना। तो अब अपने सेंटर ऑफ फोकस को जब मैं अपने पास वापस ले आती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि अरे उनमें अगर ये चीज अच्छी है तो मुझमें ये चीज अच्छी है, वो ये काम कर सकते हैं तो मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो करते हैं वही मैं करूँ,
1: सेम जरूरी नहीं है,
0: नहीं है। मुझे जो आता है, मेरी जो फीलिंग्स है, मैं उसके साथ चलूं, उसके साथ जिंदा रहूं, वो है रियल एंड न्यू मी।
1: बहुत सुंदर डेफिनेशन है, और कई बार हम सब इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स डिपेंडेंट ही रहती हैं। सेम ही बनना चाहते हैं, वैसे यूनिक बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स सेम करना चाहते हैं किसी ना किसी के साथ, ग्रुप के साथ, आइडेंटिफाई जिनके साथ हम करते हैं। बहुत सुंदर है, मेरे मन में और भी सवाल है, मुझे लगता है अभी तो हमें समय इजाजत नहीं देगा, लेकिन आने वाले एपिसोड में आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि और हम पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ कैसे जाएं, या फिर कई बार हमें रॉन्ग स्टिमुलस, यानी मान लीजिए किसी को चिढ़ा कर या गिरा कर अगर स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, तो फीलिंग तो मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, बट उसके लिए मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, तो एक्शन और फीलिंग में क्या रिलेशन है, ये भी थोड़ा आपसे क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है दीदी कि कुछ अगर आप मेडिटेशन या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराएं जो हम अपनी पॉजिटिव फीलिंग से और अटैच हो पाए, और मी जो हम न्यू मी या रियल मी की बात कर रहे हैं उसको रियल ही रखें।
0: जी, सो मैं चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि वो 2 मिनट के लिए अपने आप को कहीं सेटल कर ले, किसी एक शांत स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर बैठ जाएं, रिलैक्स करें अपने माइंड और बॉडी को, गहरी और लंबी सांस लें, और उस सांसों को ध्यान लगाते हुए, सांसों पर ध्यान एकाग्र करते हुए इमेजिन करें कि आप अपने आप से अलग हो रहे हैं। आई एम डिटैचिंग माई सेल्फ फ्रॉम मी, मैं थोड़ा सा दूर जाकर दूर से अपने आप को देख रही। गहरी और लंबी सांस ले और देखिए कि मुझे एक जो शरीर मिला है, इस शरीर के साथ मैं हर जगह पर एक अलग अलग रोल प्ले कर रही हूं। घर में मेरा रोल बेटी का है, बेटे का है, भाई या बहन का है। सो देखिए अपने आप को उस रोल में प्ले करते हुए, एक्ट करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए 10 सेकेंड्स के लिए देखिए अपने आप को रोल प्ले करते। मैं अपने हर रोल में ओरिजिनल हूं, रियल हूं। मैं एक बेटा या बेटी के रूप में माता पिता के साथ अपने ट्रू रियल एक्सप्रेशन से प्रेजेंट हूं। माता पिता के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, शुक्रगुजार हूं। गहरी और लंबी सांस ले। स्कूल कॉलेज में अपने रोल को देखी, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ अपने रोल को दूर से ऑब्जर्व करें और उसमें रियलिटी डालें। आप जो है, जैसे है, वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें, उस ओरिजिनलिटी के साथ लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए अपने आप उस रियलिटी के साथ, लोग आपकी पहचान करते हैं, चाहे आप अमीर है, गरीब है, छोटे हैं, बड़े हैं, होशियार है, कम होशियार है, एवरेज है, आप जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। लोग सच्चाई की, ईमानदारी की, रियलिटी की कद्र करते हैं। इसलिए गहरी और लंबी सांस ले, अपने आप से वादा करें, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे अपने आप को बहुत लाइक करती हूं। अपनी अच्छाइयां और कमियों के साथ मैं खुद का स्वीकार करती हूं। मैं अपने आप को, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे ही प्रेजेंट करती हूं। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच दीदी। मुझे लगता है कि रियलिटी चेक है ये हमारे लिए, और अपने आप को वो करते देखना जैसा मैं हूँ वैसे ही पेश करना। अगर अभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो धीरे धीरे कर लेंगे, पर उसके लिए मैं ना बदलू। बहुत सुंदर आपने एग्जाम्पल्स के साथ हमें प्रैक्टिकल एक हमारी वर्जन की ओर लेके गए। मैं आशा करती हूँ हमारे दोस्तों को बहुत फायदा हुआ होगा इससे। दोस्तों, अगर आप कभी भी थोड़ा भी लो महसूस कर रहे हैं या परेशान लग रहा है आपको कि मैं अलग हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, तो दोस्तों बस ये कहना चाहेंगे कि आप अकेले रहिए और आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में, इस कार्यक्रम में। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें गाइड करने के लिए।
0: धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का। मुलाकात होगी लव यू जिंदगी की अगली कड़ी में। तब तक आइए, दिल खोल के कहे लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अंग्रेजों ने नाखून उखाड़े, तोड़ डाले दांत और जबड़े, खूब सताया, खूब तोड़ा, ताकि मरते वक्त ना बोल सके वंदे मातरम। पर वो था एक वीर योद्धा, चटगांव विद्रोह का नायक, सहे जुल्म सारे और जब छोड़ा प्राण तो मुख से निकले सिर्फ दो शब्द, वंदे मातरम। कुछ ऐसी प्रीत थी क्रांतिकारियों की वंदे मातरम गीत से, जिस गीत को गुनगुनाना ब्रिटिश हुकूमत की नजरों में एक संगीन अपराध था, उसे वो स्वाधीनता की लड़ाई का मूल हथियार मानते थे। उसके लिए कितने ही अत्याचार सहर्ष सह लेते थे, लेकिन अपने लबों से इन दो शब्दों को कभी जुदा नहीं होने देते थे। गीत उनकी धड़कनों में बसा था, उसके शब्द उन्हें शक्ति देते थे। असल में वंदे मातरम गीत ने देश की आत्मा में गहराई से बसी उस सोच को जीवित किया था कि धरती हमारी माँ है, जिस पर जुल्म हो रहा है, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, उसे आजाद कराना है। इसलिए जब स्वदेशी आंदोलन को एकजुट करने का प्रश्न उठा, तब ये गीत आंदोलन का ना सिर्फ नारा बल्कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों का एक जादुई मंत्र, साहस का प्रतीक भी बन गया। रेडियो मधुबन के एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की कड़ी में हम उन क्रांतिकारी की बात करेंगे जिन्होंने अंग्रेजों की तमाम प्रताड़ना झेली और आखिर में अपने होठों पर वंदे मातरम का नारा लिए शहादत को गले लगा लिया। ये कहानी है साल 1930 की, बंगाल का चटगांव जिला। अंग्रेजों के जुल्म से धरती कांप रही थी, लेकिन कुछ युवाओं की आंखों में आजादी का ख्वाब अंगारा बनकर दहक रहा था। इस बारूद को चिंगारी दी थी एक स्कूल टीचर ने, जिन्हें दुनिया मास्टरदा कहकर पुकारती थी। मास्टरदा एक बेहतरीन प्लानर, ऑर्गेनाइजर और रणनीतिकार थे। उन्होंने चटगांव में 5 जगहों पर एक साथ हमला करने की योजना बनाई और उसके लिए बनाई क्रांतिकारियों की अलग अलग टीमें।
1: अनंत, लोकेनाथ, रीतिलता, इधर आओ। ये चटगांव का नक्शा है। हमारा मकसद सिर्फ हंगामा करना नहीं है, बल्कि हमें अंग्रेजों को यह बताना है हम उनकी सत्ता को उखाड़ फेंक सकते हैं।
2: मास्टरदा, लड़के तैयार हैं, बस आपके आदेश का इंतजार है। सरकारी शस्त्रागार पर कब्जा करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
3: बिल्कुल, अगर हथियार हमारे हाथ लग गए तो चटगांव में अंग्रेजों के पैर उखड़ जाएंगे।
1: याद रहे, तारीख होगी 18 अप्रैल 1930। हमारा हमला इतना तेज होना चाहिए कि फिरंगी संभल न पाए। टेलीफोन और टेलीग्राफ की लाइनें काट दी जाएंगी, रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए जाएंगे। चटगांव को पूरी तरह दुनिया से काट देना होगा।
4: मास्टरदा, मुझे क्या जिम्मेदारी मिलेगी? मैं सिर्फ घर पर बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकती।
1: ऐसा नहीं होगा प्रीतिलता, तुम्हारी वीरता पर मुझे पूरा भरोसा है। वक्त आने पर तुम इस जंग का नेतृत्व करोगी। अभी के लिए संदेशों को सही जगह पहुंचाना तुम्हारा काम है।
0: सूर्य सेन और उनके क्रांतिकारी अंग्रेजों पर हमले की रणनीति को सफल बनाने में जुटे थे। समूह के सबसे युवा क्रांतिकारी लोकेनाथ योजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तत्पर थे। इधर 21वीं सदी के बन्नो भी मास्टर दा के इस युवा क्रांतिकारी को जानने की उत्सुकता लिए संगठन की वरिष्ठ क्रांतिकारी कल्पना दत्त के पास पहुंचती है।
5: जानते हो बन्नो, मास्टर दा के संगठन में लोकेनाथ क्रांतिकारी थे, उन्हें जरा भी डर नहीं लगता था।
6: अच्छा, ऐसा क्या? उन्होंने क्या किया था?
5: 18 अप्रैल 1930 की रात, जब चटगांव की सड़कें इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठी थी, तो उस क्रांतिकारी समूह का नेतृत्व कोई और नहीं लोकेनाथ ही कर रहे थे। लोकेनाथ की अगुवाई में ही 10 सदस्यों के एक ग्रुप ने ऑक्सिलरी मिलिट्री आर्मरी पर धावा बोला था। इस हमले में रजत सेन, मनोरंजन सेन, जीवन घोषाल, फणी नंदी, सुबोध चौधरी और 30 अन्य लोग शामिल थे।
7: लोकेनाथ अंदर आओ, सारे हथियार कब्जे में ले लो, कोई भी ब्रिटिश सिपाही बचना नहीं चाहिए।
3: हमें राइफल मिल गई है रजत दा, लेकिन गोलियां नहीं मिल रही है। गोलियों का भंडार कहीं और छुपाया होगा।
7: चिंता मत करो, जितना बंदूकें हैं उन्हें उठाओ, जो काम के नहीं उन्हें आग लगा दो, यूनियन जैक को नीचे गिराओ और अपना झंडा लहराओ।
8: मास्टर दा की योजना के अनुसार चटगांव में पुलिस और सेना के शस्त्रागार पर छापा मारने के साथ ही मशीन गन व कारतूस अपने कब्जे में ले लिए जाने थे। साथ ही रेलवे लाइन और टेलीग्राफ लाइनों को नुकसान पहुंचाने, यूरोपियन क्लब पर हमला करने, यूरोपियन अधिकारियों को मार डालने या उन्हें बंधक बनाने की योजना थी। गणेश घोष के नेतृत्व में लगभग 6 क्रांतिकारियों के समूह ने सबसे पहले शस्त्रागार पर कब्जा किया। इस टीम में अनंत सिंह शामिल थे। दूसरे समूह का नेतृत्व लोकेनाथ कर रहे थे। 10 सदस्यों के उनके समूह ने सहायक सैन्य शस्त्रागार पर कब्जा किया। वहीं नांगलकोट रेलवे लाइन पर लोकेनाथ, कल्पना और लाल मोहन ने हमला किया जब चटगांव से एक माल गाड़ी गुजर रही थी। दूसरी ओर लाल मोहन सेन, सुबोध मित्रा, सुकुमार भौमिक और हरेन दत्त चटगांव से 60 मील दूर रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने रेल की पटरी उखाड़ दी। अंबिका दा की टीम ने टेलीग्राफ लाइनें काटी। ब्रिटिश छावनी पर प्रीति लता ने हमला किया जबकि यूरोपियन क्लब पर हमले का नेतृत्व सूर्य सेन ने किया।
9: फिर आगे क्या हुआ कल्पना दीदी? क्या क्रांतिकारी पकड़े गए? उनकी योजना सफल हुई?
5: बन्नो, ये दुर्भाग्य था। खुद मास्टर दा को भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस अथवा आर्मी के शस्त्रागार में कोई कारतूस नहीं होगा। वहां बहुत कम या लगभग ना के बराबर मशीन गन थी। दरअसल उन्होंने गुड फ्राइडे को ईसाइयों के शोक के दिन के बजाय एक त्योहार समझ लिया था। गुड फ्राइडे होने के कारण यूरोपियन क्लब में कोई भी यूरोपियन नहीं था।
9: कल्पना दीदी, आप कहना चाह रही है कि क्रांतिकारियों के पास पूरी खुफिया जानकारी नहीं थी?
5: हाँ बन्नो, इसलिए मास्टर दा के क्रांतिकारियों की बेहतरीन और सच्ची कोशिश के बावजूद चटगांव शस्त्रागार पर छापा पूरी तरह सफल नहीं हो सका। लेकिन इस बगावत से ब्रिटिश हुकूमत हिल गई। उन्होंने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए पूरी फौज झोंक दी।
10: बागियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, विशेषकर उस लीडर सूर्य सेन को। I want him anyhow.
8: चटगांव मिशन की आंशिक सफलता के बाद मास्टर दा को अपने युवा क्रांतिकारियों को चटगांव की जलालाबाद पहाड़ियों पर भेजना पड़ा। हालांकि कुछ ही समय में उस पहाड़ी को भी अंग्रेजों ने घेर लिया, लेकिन क्रांतिकारी हार मानने को तैयार नहीं थे।
11: मास्टर दा, हमारे पास गोला बारूद खत्म हो रहा है, अब क्या करें?
1: नीति लता, घबराओ मत, क्रांतिकारी कभी मरते नहीं है, वे सिर्फ अपना शरीर बदलते हैं। तुम यहाँ से निकलो, तुम्हें अभी देश के लिए और काम करना है।
11: नहीं मास्टर दा, ना, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी।
1: ये मेरा हुक्म है। प्रीति लता, जाओ और यूरोपियन क्लब पर हमले की तैयारी करो। देश को तुम्हारी शहादत की जरूरत सही वक्त पर होगी।
8: जलालाबाद पहाड़ी पर हुए इस संघर्ष में सूर्य सेन को अपने कई साथियों को खोना पड़ा। वो कुछ क्रांतिकारियों के साथ पास के गांवों में भाग गए। अगले 4 वर्षों तक अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए, लेकिन फिर उनके ही एक रिश्तेदार नेत्र सेन ने धोखा दे दिया।
9: मास्टर जी कैसे पकड़े गए दीदी?
5: मास्टर दा जिसके घर में रह रहे थे वो उनके एक रिश्तेदार का था, उसने ही अंग्रेजों को उनके वहां होने की खबर दे दी। इस तरह 1933 में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में नेत्र सेन को मास्टर दा के एक वफादार क्रांतिकारी ने मार डाला।
8: सूर्य सेन को गिरफ्तार कर मिदनापुर जेल ले जाया गया, फिर उन्हें रत्नागिरी ले जाया गया। जेल में उन पर अमानवीय जुल्म ढाए गए, हथौड़े से उनके दांत तोड़ दिए गए, उनके नाखून उखाड़ दिए गए, उनकी आंखें निकाल दी गई।
10: सूर्य सेन, तुम अपने घमंड की सजा भुगत रहे हो, कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तुम्हारा खेल खत्म।
1: कैप्टन, खेल मेरा खत्म नहीं, तुम्हारा शुरू हुआ है। तुमने मेरे शरीर को जंजीरों में जकड़ा है, मेरी सोच को नहीं। मेरी फांसी चटगांव के हर घर में एक नया सूर्य सेन पैदा करेगी। वंदे मातरम।
12: मैं कितनी भाग्यशाली हूं, देश के इन वीर सपूतों ने मेरी मर्यादा और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सूर्य सेन जैसे नायकों ने अपनी देह पर जुल्म और यातनाओं के पर्वत सहे, अपनी हर सांस को भारत मां के चरणों में अर्पित कर दिया, पर अपने मुख से उफ तक नहीं निकाली। उनकी टूटी हड्डियां और बहते रक्त से भी केवल एक ही हुंकार गूंजी, वंदे मातरम। मेरे बोल केवल गीत नहीं थे, इन वीरों के सीने में जलती हुई क्रांति की ज्वाला थे, एक ऐसी ज्वाला जिसे ब्रिटिश हुकूमत की आत्मा तक कांप उठती थी। धन्य हूं मैं जो इस महान बलिदान का स्वर बन सकी। जब तक इस मिट्टी में सूर्य सेन जैसे शूर वीरों का रक्त रहेगा, तब तक मेरी हर तान पर आजादी का परचम लहराता रहेगा।
8: आजादी की लड़ाई में कुछ नायक ऐसे रहे जिनकी गाथाएं वक्त की छाती पर स्वर्णिम अक्षरों से अंकित हो गईं। सूर्य सेन एक ऐसा ही नाम थे। उन्होंने बंगाल की मिट्टी में क्रांति की जो लौ जगाई, वो बच्चों, नौजवानों और महिलाओं के दिलों में चिंगारी की तरह धधकी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि चटगांव के नुआपाड़ा के स्कूल टीचर राम निरंजन का ये बेटा ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक काल बनेगा। एक शिक्षक के रूप में उनकी आंखों में सिर्फ छात्रों का भविष्य नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र भारत का सुनहरा सपना तैर रहा था।
3: रजत दा, मास्टर दा तो इतने अच्छे शिक्षक थे, फिर उन्होंने क्रांतिकारी बनने का निर्णय कैसे लिया?
7: लोकीनाथ, सूर्यदा कृष्णनाथ कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पढ़ रहे थे, वही एक टीचर ने उनके भीतर राष्ट्रीय भक्ति के चिंगारी सुलगाई। फिर बहरमपुर कॉलेज, अभी के मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई के दौरान उनका परिचय युगांतर दल के क्रांतिकारी विचारों से हुआ। यही से मास्टर दा ने कलम के साथ साथ क्रांति का पाठ सीखना और सिखाना शुरू कर दिया। उससे पहले तक सूर्यदा गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से प्रभावित थे, वो उनके अहिंसक असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी रहे, लेकिन 1922 में चौरा चौरी के घटना के कारण जब बापू ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उनका गांधी जी के नीतियों से मोहभंग हो गया। मास्टर दा का मत था कि आजादी क्रांति के तरीके से ही हासिल की जा सकती है। उन्हीं दिनों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अंग्रेजों के क्रूरता ने मास्टर दा और भगत सिंह दोनों को भीतर से परेशान कर दिया। तभी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के बारे में सोचा।
8: सूर्य सेन पर रूसी क्रांति, लेनिन और कार्ल मार्क्स व एंगेल्स के विचारों के अलावा आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के कामों का भी काफी असर रहा। आयरलैंड को आजादी दिलाने के लिए आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने हिंसक तरीके अपनाए थे। मास्टर दा उनसे प्रेरित होकर ही भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी शुरू की। फिर उन्होंने देश के बच्चों, नौजवानों और महिलाओं के साथ वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
9: कल्पना दीदी, मास्टर दा तो काफी दूरदर्शी सोच रखते थे।
5: दरअसल सूर्य सेन अपने समय से आगे की सोच रखते थे। आजादी की लड़ाई में बच्चों, महिलाओं और किशोरों को शामिल करने का उनका फैसला उनकी दूरदर्शी सोच को दिखाता है। जानती हो बन्नो, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती दौर में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं थे। उनकी भूमिका ज्यादातर अप्रत्यक्ष होती थी। वे फरार क्रांतिकारियों को पनाह देती थी या संदेश और हथियार पहुंचाने का काम करती थी। गांधीवादी आंदोलनों के दौरान महिलाएं पहली बार अपनी बंदिशों से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन में शामिल हुई, लेकिन वह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था।
9: कल्पना दीदी, फिर प्रीतिलता और आप कैसे बनी क्रांतिकारी?
5: चटगांव में मास्टर दा यानी सूर्य सेन बंगाल के युवाओं और महिलाओं को आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित कर रहे थे। हमने भी इस आंदोलन में भागीदार बनने का फैसला लिया, लेकिन यह राह उतनी आसान नहीं थी। उस दौर में तो किसी भी परिवार में लड़की के जन्म तक का स्वागत नहीं होता था। क्रांतिकारी के रूप में कल्पना करना तो बहुत दूर की बात थी। तुम जानती हो बन्नो, प्रीति लता के जन्म पर भी उनके घर वाले खुश नहीं थे। परिवार में कोई खुशी नहीं मनाई गई थी।
9: ओ, इतनी कमतर सोच थी लड़कियों को लेकर। उफ।
5: प्रीति लता के जन्म पर एक करीबी रिश्तेदार ने बताया है,
13: मुझे याद है कि कैसे प्रीतिलता के परिवार में हर कोई लड़के के जन्म की उम्मीद कर रहा था। उन्हें लगता था कि भविष्य में वह परिवार के लिए कमाएगा और बूढ़े माता पिता की देखभाल करेगा।
9: लेकिन दीदी, प्रीतिलता दीदी ने तो अपने वीरतापूर्ण कार्यों से परिवार क्या देश का नाम रोशन किया।
5: हाँ, तुमने प्रीतिलता की बहादुरी के किस्से तो सुने ही है। वे निर्भीक और अपने इरादे की पक्की रही है।
8: साल 1932 में जब मास्टर सूर्य सेन ने पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना बनाई, तो उन्होंने क्लब में विरोध प्रदर्शन करने के लिए 7 सदस्यों वाले एक समूह की कमान प्रीति लता को ही सौंपी थी। चटगांव के ही एक मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में जन्मी प्रीति लता स्कूली दिनों से ही एक बुद्धिमान एवं होनहार छात्रा थी। साल 1927 में फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के उपरांत उनका दाखिला ढाका के इडेन कॉलेज में हुआ था। 1929 में वहां से इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने कलकत्ता के बैथून कॉलेज से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया और वापस चटगांव आकर एक स्कूल की हेडमिस्ट्रेस बन गई। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आजादी के संघर्ष में योगदान देने की इच्छा काफी तीव्र थी।
5: मास्टर दा जानते थे कि बच्चों एवं युवाओं में कितनी असीम शक्ति होती है। वे जानते थे कि बच्चों को ऐसे साहसी सपनों पर यकीन दिलाना आसान होता है जिन्हें बड़े लोग अपने तर्क के आधार पर खारिज कर देते हैं। मास्टर दा ने उन्हें नेतृत्व और विजन दिया।
9: दीदी, अब सच कह रही हैं, अपने सपनों को पूरा करने के मामले में बच्चों में कहीं अधिक उत्साह होता है।
8: मास्टर दा ने बच्चों, युवाओं और महिलाओं के सहयोग से चटगांव विद्रोह की नींव रखी। वो चाहते थे कि ये विद्रोह भारत के अलग अलग प्रांतों में अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले भविष्य के सभी विद्रोहों के लिए एक मिसाल बने। 12 जनवरी 1934 की काली सुबह को उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। लेकिन मरने से पहले सूर्य सेन ने अपने आखिरी पत्र में देशवासियों के नाम जो संदेश छोड़ा, वो वतन पर मर मिटने वालों के जोश को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था।
1: मैं क्या छोड़कर जा रहा हूँ? सिर्फ एक चीज, मेरा सुनहरा सपना, आजादी का सपना। मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ो, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हमारी शहादत बेकार नहीं जाएगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
8: मास्टर दा बेशक चले गए, लेकिन उनके जलाए आजादी की मशाल ने पूरे भारत को रोशन कर दिया। चटगांव का वो सूर्य आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा के आज के एपिसोड में इतना ही। अगली कड़ी में आजादी के परवानों और आंदोलनों से जुड़े कुछ और किस्सों को लेकर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन। वंदे मातरम।
14: श्याम तेरी बंसी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना आसपास लोक भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते हैं क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का जो भागीदारी देखने को मिलता है कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है। तो हर एपिसोड की तरफ आज पर्यावरण का बात करेंगे और पर्यावरण जो एनवायरनमेंट सबको विदित है कितना आवश्यकता है। हम जहाँ पर रहते हैं वो परिवेश कितना स्वच्छ होना चाहिए और स्वच्छ होंगे तो हमारा मन बुद्धि स्वच्छ होता है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ ईश्वर वास करते हैं सर। तो आप आज का कार्यक्रम को सजाने के लिए हमेशा की तरह हर एपिसोड के हमारा साथ सजाते हैं श्रीमान भूपाल राम पुरेत जी जो कि किवली निवासी है और एक शिक्षा जगत में बिलोंग करते थे और अभी भी शिक्षा में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस से गर्ल्ड सर्विस की ओर प्रमोशन हुआ उनका रिटायरमेंट होने के बाद। और पर्यावरण को लेकर एक एनवायरमेंट एक्सपर्ट है जो पर्यावरण बीते तो उनको स्वागत करते सर। आपको स्वागत करते सर।
1: सर नमस्कार। सर
0: नमस्कार। आप अपना परिचय तो मैंने दे दिया फिर भी कोई होगा तो आप अपना थोड़ा संकेत पर परिचय दीजिए और आज का जो पर्यावरण का ऊपर में क्या लेकर खजाना लेकर आए हमारा श्रोता मित्र और हम आपस में बात करने के लिए।
1: जी हाँ जी हाँ। सर जैसा आपने परिचय दिया रेडियो मधुबन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बीके पवित्रा भाई दूर पर्यावरण में रिमोट एरिया तक आप भ्रमण करते हैं और आपको जब भ्रमण करते हुए कई बार मैंने देखा तो मेरे मन में एक वो हुक पैदा होती कि आप इस शांति के ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोगी हैं, समर्पित राजयोगी। और एक राजयोगी की विचारों सिद्धांत ये होते हैं कि भूत से प्रेरणा लेकर मतलब भूत को भूलना है प्रेरणा लेकर और भविष्य के प्रति चिंता ना करते हुए लोगों को जगाना है और वर्तमान में जीना है। तो आप एक बहुत ही अच्छी सोच को लेकर के जो आध्यात्मिक सोच है आत्मनिरीक्षण करना या स्व उन्नति करना स्व साधना करना ये सामान्य रूप से सभी कर रहे हैं अधिकांश लोग कर रहे हैं
0: जी
1: राजयोगी करता है। पर देखिए उनका जीवन का ये जो समय है वो किस तरह से बढ़िया तरीके से खुद भी जिए और दूसरों को भी इस रास्ते पर लाए इसके लिए वो रिमोट एरिया तक दूरस्थ एरिया तक भ्रमण करते रहते हैं। आप स्वयं राजयोग में रहते हुए और मुक्त जीवन जीकर आप दूसरों को भी इस ओर प्रेरित करना चाहते हैं और इसलिए आप दूरस्थ एरिया तक क्षेत्रों तक भ्रमण करते हुए मैं लंबे समय से आप देखता रहता हूँ। तो ये जो भाव है वो मेरे अंदर भी पैदा हुआ कि भाई साहब के साथ में बैठ करके जो पर्यावरण पर मेरा चिंतन है जो आध्यात्मिक चिंतन है ये किस तरह से एक दूसरे से और मनुष्य के लिए मिले हुए मिला जुला स्वरूप है। तो जीवन का मेरे ख्याल से सर्वोत्तम समय तो यही होता होगा कि आप स्वयं वर्तमान स्थिति में रखते हुए स्वयं को आत्मचिंतन करते हुए भूतकाल से प्रेरणा लेकर के जो संतों ने जो साधुओं ने जो बाबा ने जो बताया है उसकी वर्तमान जीवन में उतार करके साधना करके भविष्य की चिंताओं को देखकर चिंतित नहीं होना
0: चिंतन
1: संकल्पित होकर के दृढ़ संकल्पित होकर के कि किस तरह से मनुष्य के सहज जीवन के लिए अच्छे जीवन के लिए जो श्रीमत के अनुसार जो भी है अच्छे जीवन जीने के लिए अध्यात्म में वातावरण किस प्रकार से सहयोगी हो सकता है काम करने की बड़ी इच्छा थी और आपने ये मंच उपलब्ध करवाया है तो मैं बड़ी खुशी से दौड़ा चला आता हूँ आपकी तरफ और आप मुस्कुराते हुए चेहरे से मुझे मिल ही जाते हैं एक आनंद की अनुभूति होती है।
0: सही बात जितना बताए एक्चुअल मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होता है और हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है और किसका पार्ट कहाँ पर होगा हमें पता नहीं
1: बिल्कुल।
0: और ये जो ड्रामा एक्यूरेट है एक्यूरेट नहीं तो आप कहाँ और हम कहाँ और हमारा श्रोता मित्र कहाँ है कोई सोचा नहीं था
1: कोई सोचा नहीं था
0: ये तो ड्रामा में ऐसे बना हुआ है और हमें उसको
1: रोल प्ले करना
0: हमको
1: प्ले करना है
0: क्योंकि
1: आप जो रोल प्ले कर रहे हैं तो मुझे लगा कि भाई साहब से मिलकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहीं और छोटा सा विचार
0: विमर्श हम भी कर लेते हैं, क्योंकि सरकार क्यों जाता है, क्योंकि ये जो रेडियो स्टेशन दिया है कम्युनिटी रेडियो,
1: जी जी जी,
0: आप लोग का साथ रूबरू होने के लिए जो इंटर एरिया जहाँ दूरस्थ जगह में पहुँचते हैं, क्योंकि हमें सेवा दिया गया है जो तो आपको इस रिमोट एरिया में सभी को आप जैसे आप समान आप जितना शांति सुख आनंद जीवन जीने की कला जो सीखे उसको आप जब जाएंगे आपका चलन चेहरा और कर्म से लोग को प्रभावित करें, भले बोल से नहीं हो किंतु आपका मन से जो भावना है भाव है तो जन तक तो पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य लेकर हम एक कदम जब बढ़ाए शुरुआत में। हम तो ओडिशा से आए यहाँ पर हिंदी

0: इसलिए इसकी आवश्यकता है। सरकार भी उनको प्रेरित करने का प्रयास कर रही है विभिन्न तरीके से। तो सर ये सारा मिला जुला रूप है, इसको अगर सही समय का सही उपयोग कर रहे हैं
1: यहाँ का पर्यावरण प्रेरणा परमात्मा यहाँ का जो माउंट आबू जो है
0: जी
1: तो देवभूमि है,
0: बिल्कुल
1: तपोभूमि है और स्वयं परमात्मा का अवतरण भूमि है।
0: जी हाँ जी,
1: इस भूमि का जो इस आबू रोड और ये आसपास माउंट आबू का एरिया है इतना शुद्ध भगवान ने इसको सिलेक्शन किया और हमें वहाँ पर रहने के लिए मौका मिला।
0: तो
1: और जो वासी हमारा
0: सौभाग्य है, सौभाग्य है
1: आबू रोड में जो 32 ग्राम पंचायत है।
0: जी हाँ।
1: जैसे हम इधर देलदर साइड में जाएंगे भाकर में
0: जी हाँ।
1: भी तो देलदर रास्ता बंद उधर उपलागढ़ से
0: जी हाँ
1: निचलागढ़ उपला खेजडा पावा दैतरा।
0: कितनी सुंदर जानकारी आपकी कि ये पहाड़िया आप जब यूँ कहते तब मैं पहाड़ियों पर चढ़ता उतरता हूँ हमारे मन से भी।
1: ये तो प्रकृति है सर, ये पर्यावरण है सर।
0: तो सर ये पर्यावरण यूँ तो सहज लगता है, यही बात आज मैं कहना चाह रहा था कि सर ये अपन सामान्य तौर पर इस प्रकृति के बीच में रहते हैं, कितने सहज भाव से प्रकृति का वो आनंद दे रही है लेकिन हम उनके प्रति कितने समर्पित है, ये चीज हमको यहाँ पर हमको चेतना।
1: सर आपने एक बात बताया
0: सर,
1: एक भूतकाल
0: जी हाँ
1: भविष्य और वर्तमान
0: जीना वर्तमान में,
1: वर्तमान में हम दोनों को लक्ष्य रखते हैं। तो अनुभव किए हैं
0: भूत का तो देखा है,
1: अनुभव
0: तो ध्यान रखना है पर वो और भविष्य के लिए चिंतित नहीं होना,
1: सीख लेकर
0: के लिए चिंतित नहीं सब वर्तमान में जीना है। और राजयोगी तो यही
1: करता है,
0: संकल्प से सिद्धि करता है, संकल्प से सृष्टि बनाता है।
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है इस एरिया में जाने का, बहुत सुकून मिलता है। आप भी कभी बहुत सारा क्योंकि आप जब शिक्षा अधिकारी थे इससे आपका विजिट होना होता है
0: जी जी जी।
1: तो बहुत अच्छा सकन जल जंगल और जमीन सर, आदिवासी लोग का जो धन है जैसे हमारा इस पूरे विश्व में तीन चीज तीन रत्न होता है
0: जी हाँ,
1: झाड़ू सफाई
0: जी हाँ,
1: फिर पोछा और बर्तन सफाई।
0: और कितनी सफाई है सर वहाँ, वहाँ सर आपने जब जब हमें ब्रह्मा भोजन का अवसर दिया भाई साहब मैं देखता हूँ कि उस थाली में बड़ी मुश्किल से ही कुछ कण बचते हैं, तो यही तो है सर संरक्षण, जितना करे उतना कम है
1: जी।
0: ये चीज बहुत बड़ी है सर, बहुत बड़ी है
1: सर। इसका पीछे हम और आप जैसे आप सोच रहे हो ब्रह्मा कुमार भाई बहन करते हैं लेकिन उनको प्रेरणा व शिक्षा जो देने वाला उसको अभी तक लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे
0: सर। करेंगे
1: सभी कह रहे क्या अरे उनका तो रहने का जगह बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, दिनचर्या बहुत अच्छा है, सब अच्छा है।
0: इतना समर्पण है कि बात ही समझ में नहीं आ रही कि ये काम कहाँ से हो रहा।
1: हाँ ये
0: इतना समर्पण,
1: लेकिन जब पता चलेगा ये हमारा बाप कर रहा है खुद को
0: बिल्कुल
1: परमात्मा एक
0: और बाप ही कर रहा है। बताऊं मैं कैसे बाप इसलिए कर रहा है प्रभु कि यहाँ पर सर बिजली के नाम पर आपने सोलर सिस्टम को लगा दिया जो मेरे ख्याल से एशिया का सबसे बड़ा
1: सोलर
0: प्लांट यहाँ पर है जो जर्मनी से टेक्नोलॉजी लेकर के
1: पर्यावरण को सहयोग दे।
0: तो सर ये कितना बिजली पैदा कर, कितना बड़ा मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट हुआ लेकिन उसके बाद तो बिजली बिल्कुल फ्री सी आ रही है और वो सर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
1: जी,
0: और पूरे भारत में और सब जगह। और अब तो सर वो सब जगह सोलर पैनल लगना शुरू हो गए हैं। कौन सा सोलर पैनल फायदे वाला है, जर्मनी का है कि अन्य सोलर पैनल है जो भी है, तो कौन सा सिलिकॉन वाले, कौन से कई तरह के। तो सर उससे अब तो किसानों को भी कुसुम योजना के तहत
1: जी जी।
0: सर ये जो बिजली के सौर ऊर्जा के पंप्स है, वाटर खींचने के जो पंप है वो सरकार लगवा रही है, उसमें सब्सिडीज दे रही। तो सर ये कितना बड़ा काम है सर। उस जो सोलर प्लांट है उससे लेकर के सीधा सा विद्युत सप्लाई में सीधा फायदा, फिर उसी से भोजन का बनना, सोलर प्लांट से भोजन बनना और उससे भोजन बनना और उसी से जो वाटर है वो भी आगे पीछे होना और सोलर की गाड़ियों का वहां पर होना, एक कितना मतलब ऊर्जा की बचत करता है
1: और पर्यावरण के लिए तो
0: कितना फ्रेंडली इको फ्रेंडली सिस्टम है सर। तो यहाँ पर तो परमात्मा ने एक बार इन्वेस्ट करके सारा बिल्कुल निःशुल्क जैसे प्रकृति से ही जो आ रहा है
1: और सारी चीज प्रोडक्शन इतना होता है तो ये भी प्रकृति का एक देन है। और प्रकृति यहाँ पर क्या है, सूरज का किरण डायरेक्ट प्राप्त होता है, राजस्थान ये एक प्लस पॉइंट है जिसका चल
0: बिल्कुल सर
1: अच्छा हो पा रहा है। जैसे बारिश का बहुत कम होता है, बादल आता है तो कम पड़ता है, लेकिन
0: सोलर एनर्जी डायरेक्ट मिलती है
1: राजस्थान के लिए,
0: इसलिए फिट है सर। तो सर आपने इसको इस एरिया को भी पूरा का पूरा ग्रीन बना दिया इस तरह से और इतने समर्पित भाई बहन, बीके भाई बहन जो बिल्कुल समर्पित होकर के यहाँ पर काम करते, पूरा जीवन ही समर्पित कर दी। तो फिर
1: ये जो चीज है सर, आज जो है ना जो डेडिकेशन भावना कब
0: उनका

0: संकल्प या सिद्ध हो रहा है।
1: डेडिकेशन भावना मैंने वो अपना परिवार हद में नहीं रहा है, हद में जैसे हद में रहते हैं, जैसे हमारा माँ बाप पिताजी भाई बहन इसमें कितना 25-30 लोग का एक दायरा होता है सेवा का,
2: बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल।
1: लेकिन जब बेहद होता है जिसका जैसे सरेंडर होते हैं बाद जो बैचलर रहते हैं सिंगल रहते
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: पवित्रता रहते हैं, तो उनका ये परिवार पूरा विश्व को अपना परिवार मानते हैं,
2: पूरा विश्व पूरे विश्व के 140 देशों में ये फैले हुए है इसका हेडक्वार्टर, तो उसका मैनेजमेंट गॉडली मैनेजमेंट तो से बहुत बहुत सर ये सामान्य सामान्य चीज है।
1: कोई भी आते तो हमारे यहाँ पर जो कैंपस विजिट में आते चाहे आप भी आते कोई भी आते तो उनको एक संकल्प होता है इतना पैसा कहाँ से आता है, इतना वेल मैनेजमेंट वो सोचते नहीं ये मनुष्य कोई व्यक्ति
2: ये सर व्यक्ति का नहीं है, फिर
1: क्षमता चलाते
2: इतने सर जुड़े हुए लोग ये बड़ा ही वो सहज है सर इसको समझना, वो समर्पित है बिना कुछ लिए दिए कर रहे
1: हैं।
2: अच्छा दूसरा इन्होंने सिस्टम ऐसा एडॉप्ट कर लिया जैसे यहाँ से चारों तरफ खेती के लिए जमीन है, रहने के लिए स्ट्रक्चर है जो एक बार बना दिया तकलीफ देख करके तो वो स्थायी रूप से हो गया, फिर जल है जंगल है जमीन है उसको बचाते हुए चल रहे तो वो गॉडली मैनेजमेंट हो जाता है।
1: देखिए सर आपका घर में आपका गांव में एक छोटा सा फंक्शन करते शादी
2: जी जी जी बिल्कुल
1: 50-200-300
2: जी जी जी जी
1: क्या हालत होता है और कितना पोल्यूशन का।
2: और सर यहाँ जरा भी
1: डेल तो 5,000 मिनिमम है,
2: मिनिमम 5,000 तो
1: मैक्सिमम
2: भोजन में और मैक्सिमम 50,000 सर बहुत बड़ा नंबर है।
1: कभी कोई पॉल्यूशन का आपको देखने को नहीं
2: कहीं। और सर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट आपने मुझे दिखाया
1: उसका ही था
2: सर, ये सारी चीजें मैं इसलिए प्रेरित हूँ आप सभी से कि इतना अच्छा आसपास के एरिए में सबको सुविधाएं देने हैं, कहीं पर बिल्डिंग्स बनाए हैं, कहीं स्कूलों में आपने कमरे भी डोनेट किए हैं संस्थान ने, कई जगह पर
1: करा था वो भी हमारा भाई बहन
2: है ना, भी तो आपके ही भाई बहन आपसे प्रेरित है तभी तो वो कर रहे हैं।
1: हमें लगता है आप भी हमारे हैं और हमारे जो सुन रहे वो भी मेरे हैं
2: बिल्कुल सर,
1: और उनसे हमारा प्यार है
2: बिल्कुल सर।
1: तो दो चीज हमको अच्छा लगता है मेरा है मेरा पंचायत मेरा बन होता है सर, उसमें त्याग भरना आता है।
2: और सर जितना यहाँ किया है वहाँ बीके भाई बहन जहाँ जहाँ जैसे अभी
1: सभी जगह
2: जहाँ जहाँ है वहाँ भी सर इसी तरह से
1: बड़ा बड़ा सिटी सोचिए दिल्ली वाराणसी हमारे जो पूरा है वहाँ पर भी बड़ा बड़ा ऐसे ही आप जाएंगे तो मिनी मधुबन है वहाँ पर
2: मिनी मधुबन
1: जैसे
2: मिनी मधुबन कहाँ कहाँ पर ये आप बताए थोड़ा सा जैसे
1: जैसे
2: बड़े बड़े मतलब जैसे बिल्कुल शॉर्ट नहीं अच्छे अच्छे कहाँ कहाँ बने
1: जैसे सर हैदराबाद आप जाएंगे
2: हैदराबाद
1: शांति सरोवर है
2: अच्छा अच्छा
1: क्या सुंदर गजा
2: अच्छा
1: कभी कोई भी श्रोता जाना चाहेंगे वहाँ भी मिनी मधुबन है
2: अच्छा
1: पूरा रिट्रीट
2: हैदराबाद
1: फिर दिल्ली में जाएंगे सर
2: दिल्ली में
1: ओआरसी है ओम शांति रिट्रीट सेंटर है
2: अच्छा अच्छा अच्छा
1: ओम शांति रिट्रीट
2: सेंटर
1: है
2: अच्छा
1: वहाँ पर भी पहला रिट्रीट सेंटर ओआरसी
2: जी जी जी ये भी मिनी मधुबन
1: जैसे अभी तो हर शहर में मिनी मधुबन कर दिया
2: ठीक है वो
1: क्योंकि जब समय आएगा इतना लोग अभी आ रहे तो इतना लेकिन यहाँ पर जैसे सुविधाएं इतना हम प्रोवाइड नहीं कर पाते जैसे पानी का गवर्नमेंट का कुछ रूल एंड रेगुलेशन को भी हमको मानना पड़ता है उसका सिस्टम का जितना पॉपुलेशन का परमिशन लेना पड़ता है नहीं तो प्रशासन को बहुत दिक्कत हो जाती है।
2: बिल्कुल सही बात है सब जगह पानी तो देना है
1: पानी और उसको ऐसे नहीं हम आगे बढ़ ऐसे
2: दिल्ली का जो ओआरसी है उसकी कैपेसिटी कितना होगा सामान्य तौर पे
1: उसका भी एकड़ में पूरा 25-30 एकड़ तो मिनिमम
2: उसका बड़ा है सर
1: 70-80 एकड़ तो वहाँ पर मैंने 66 एकड़ का मैंने देख कर आया था
2: अच्छा अच्छा अच्छा
1: ऐसे भुवनेश्वर में जाएंगे
2: भुवनेश्वर
1: कटक में जाएंगे उड़ीसा में तो मैंने अपना स्टेट का मैंने गया था इसलिए मैंने बोला
2: जी जी जी
1: एक स्टेट में 5 जगह रिट्रीट सेंटर खोला है बड़ा बड़ा शहर में
2: अच्छा
1: संबलपुर उड़ीसा का संबलपुर में
2: जी जी जी जी हाँ बहुत प्लान्ड तरीके से हर स्टेट में
1: ऐसे
2: 5 जगह रिट्रीट सेंटर
1: ऐसे ही छोटा
2: भुवन जैसे छोटा छोटा
1: छोटा बना
2: ये भी छोटा थोड़ी है बहुत बड़ा
1: ये तो सबसे बड़ा है जो ब्रांचेज
2: वो
1: क्यों कर
2: कितनी सेवा
1: जैसे यहाँ पर जो हो रहा है वहाँ पर भी इस तरह सेवा के लिए निमित्त तो आते हैं सभी वर्गों को
2: जी जी वो सभी वर्ग को आप बुला दें ये तो सर बिल्कुल फैक्ट है कि यहाँ पर पहले जो भी मैनेजमेंट का जो तरीका रहा बाबा का आप पूरे बीकेज और नॉन बीकेज के लिए अलग अलग प्रोग्राम करते हुए उनको सबको सेवा देने का
1: सर इसमें क्या है हम क्यों इतना ध्यान देते
2: हैं शांति के लिए प्रयास
1: पर्यावरण को जो चलाता है पर्यावरण का जो हमें खुद महसूस करते हैं जीव जंतु
2: जी जी
1: और जो सराउंडिंग जैसे पृथ्वी आकाश वायु जो 5 तत्व
2: है
1: इस सब का यूज करने वाला मनुष्य है सर।
2: बिल्कुल सर,
1: हम और आप
2: बिल्कुल,
1: चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो,
2: सभी
1: कोई भी धर्म हो, कोई भी आयु हो, इस सबका जो चलन संचालक
2: कोई भेद नहीं है,
1: मनुष्य है
2: जी हाँ,
1: पशु का भी वही है,
2: सभी का,
1: पंछी का भी वही, सभी का ये
2: संजहा।
1: हम परमात्मा क्या सोचे भाई, इसको बनाने के लिए पहले उसका जो मालिक जिसको हम भगवान जो चलाता है उसको सुधारेंगे।
2: बिल्कुल सही बात है,
1: वो सुधर जाएगा, ये ऑटोमेटिक सुधर जाएगा।
2: सही बात है, सही बात है।
1: हम प्रकृति सुधारने के लिए जाते हैं लेकिन खुद को नहीं सुधारते।
2: नहीं, खुद ही सुधरना तो पड़ेगा।
1: यस,
2: सुधरना खुद को ही।
1: ये चीज
2: सुधरना
1: यूनिक सर।
2: सर, खुद सुधर करके खुद बी के भाई बहन दुनिया के 140 देशों तक फैल गए
1: जी।
2: बाबा को याद करते राजयोग से, तो दुनिया के 140 देशों में उनका प्रकाश तो जहाँ है वहाँ आसपास जा ही रहा है ना। तो सर, ये पूरी सृष्टि के लिए काम करने वाली बात हो गई, पूरी पृथ्वी मंडल के लिए काम करने वाली बात हो गई। तो वो तो सब जगह है, ये जो गॉडली जो वर्क है ये करने का पूरा जो श्रेय है वो इस तरह के बड़े संगठन को जाता है। ये अपने आप में एक ऑटोमेटिक गवर्नमेंट।
1: सर, बहुत अच्छा बात आपने बताया।
2: एक ऑटोमेटिक गवर्नमेंट
1: सोचते हैं सही में, जो प्रकृति हमें सब कुछ देता है
2: जी हाँ,
1: देता है कब, जब हम सात्विक भावना से और निस्वार्थ भाव से,
2: निस्वार्थ भाव से करेंगे तभी मिलेगा।
1: तो नहीं तो वो अपोजिट से जाएंगे, शत्रुता भावना से, नकारात्मक सोच से करेंगे तो वो भी हमें रिटर्न
2: हो रहा है ना,
1: वही हो रहा है
2: अभी। सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जब अब हो रहा है किसका, नेचर का माइनिंग से, सैंड का, जो जितने भी अयस्क है, जितने भी मेटल्स के, वो सारा तो सर उससे नुकसान तो हो ही रहा है। तो वो पर सर वही बात है कि डेवलपमेंट के लिए उसका कितना उपयोग होना चाहिए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, और ये मनुष्य ही करेगा और वो विवेक से कर पाएगा। अगर उसमें अध्यात्म है तो कर पाएगा, नहीं तो फिर वो लूटेगा। ये शब्द सही शब्द है, वो रॉबरी करेगा इकोनॉमिक, मतलब उसकी प्रकृति की। तो फिर जब वो लूटेगा तो सर प्रकृति तो प्रकृति है सर, परमात्मा के बाद में अगर बड़ी कोई चीज है यूनिवर्स में तो वो प्रकृति है, प्रकृति है सर, और फिर मनुष्य है। अब वो पर अगर
1: ये भी निस्वार्थता भी स्वार्थ होगी
2: तभी जाकर के वो सार्थक सिद्ध होगा, वो उसको सही रिटर्न देगा। नहीं तो फिर वो जितनी ये घटनाएं हो रही है, परमाणु युद्ध ही समझ लो आप, और प्रकार के युद्ध ही समझ लो,
1: तो
2: ये सारी की सारी चीजें। अब आप कहते बहुत सही बात कहते, मेरे सर मेरे दिमाग में कई बार ये विचार आता है कि ये जो बड़े बड़े युद्ध करने वाले देशों के जो लीडर्स हैं वो इस पर क्यों नहीं सोच पाते इतना ज्यादा। वो भी एक व्यक्ति है
1: सर,
2: एक ब्रह्मा बाबा या एक कोई भी आध्यात्मिक लीडर या कोई भी अच्छे देश का लीडर वो युद्ध के लिए मना करता है और वो युद्ध के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई थोड़ा आप छोड़ो, थोड़ा हम छोड़ो, थोड़ी त्याग की भावना हो तो मुझे लगता है भाई विश्व शांति में कितना बड़ा आनंद आए, क्योंकि वो लीडर भी तो एक ही व्यक्ति है। हाँ, वो देश के लिए सोचता है लेकिन वो हजारों लोगों के विनाश के स्थान पर थोड़ा बहुत अगर अपना त्याग कर ले तो मेरे ख्याल से विश्व शांति की कल्पना की जा सकती है।
1: जैसे आपने बताया तो बहुत अच्छा बात, अपना सबके लिए, उनके भलाई के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन जो ड्रामा ऐसे बना है तो उसमें परमात्मा जो डायरेक्टर है ना वो भी बोलता है भाई उस तरह यदि नहीं होगा उस तरह नहीं होगा तो जो आप लोग का जो पद भी कैसे बढ़ेगा और उनका जो
2: बात भी सही है,
1: पाप का गढ़ा
2: जो वो जैसे भी भरेगा
1: तब जाकर उसका बिजनेस होगा,
2: नई सृष्टि
1: स्थापना होगा,
2: नई तरीके से।
1: ड्रामा एक्यूरेट है सर, परमात्मा जो
2: तो सर होना ही है, वो तो होना ही है,
1: कोई रोक नहीं सकता है और कितना भी आप शांति कर दो
2: सर विध्वंस होना ही है,
1: क्योंकि ये सब जो मिसाइल्स जो बना है हर का पास जो है पूरा मिसाइल्स का भंडार है
2: जी,
1: तो वो तो प्रकृति के लिए कितना दुखदायी होगा हमको मालूम
2: है।
1: दुखदायी तो है ही है, फिर भी सुखदायी को लाने के लिए दुख तो लाना पड़ेगा, दुख का बाद सुख आएगा ना सर।
2: बिल्कुल सर,
1: दिन का बाद रात, सर रात क्यों आता है, हमको ऐसे जो आता है उसका भी एक चक्र है सर।
2: बिल्कुल सर, उसका
1: भी चक्र है, और चक्र में हमारा भी बुद्धि उस चक्र में ही
2: उस विनाश के बाद फिर वापस वो वही साइकिल में बिल्कुल,
1: और हम लोग भी हमारा चिंतन कैसे चल रहा है, कुछ तो होगा तब तो हम आगे बढ़ रहे।
2: बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा चिंतन है, और खास कर पर्यावरण में कितना हम सब सिर्फ ब्रह्मा कुमारी क्यों
2: सभी
1: मिलकर करेंगे, तो करते भी है,
2: करते हैं
1: करते करते, हैं, करते हाँ हैं। जितना आवश्यकता उतना हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, इसलिए हम
2: हमको इसके लिए सोचने की आवश्यकता है, उसके लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
1: और इसका जो श्रेय इससे भक्ति भावना आस्था विश्वास
2: वो सब मिल करके
1: वो लोग ही कर पा रहे हैं,
2: वही सब मिल करके विवेक से करेंगे तभी
1: जाकर। बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे प्रकृति का जो तांडव हम तो देख रहे हैं, और तांडव हम करते तो प्रकृति भी हमें तांडव दिखाता
2: है। रिजल्ट में तांडव ही मिलेगा,
1: पानी का कभी वायु का कभी भूकंप का सभी तरफ आता ही।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो उसके लिए हम पहले से समय हमें कहे हम पहले से सुधर जाए,
2: बस बस हम पहले से सुधर जाए
1: और हमें
2: तो थोड़ा अच्छा तो लगेगा,
1: हमें रिजल्ट मिलेगा।
2: तो सर इसमें तो, जैसा कि शास्त्रों में कहा है, जैसा पूर्व के साधु संतों ने कहा है, हमारे बाबा ने कहा है कि आप अगर सही तरीके से जियोगे तो प्रकृति आपको जीने देगी, और आप प्रकृति का शोषण करोगे तो फिर प्रकृति भी रिजल्ट में आपका शोषण कर लेगी। तो ये तो सीधी सी बात है, जैसा आप दोगे वैसा ही पाओगे, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो फिर ये तो अवश्य अवश्य अवश्य भाव है।
1: आप काला बॉल फेंकेंगे
2: जी
1: ब्लैक, तो क्या आएगा सर?
2: बस वही आएगा रिटर्न में। तो
1: और व्हाइट बॉल फेंकेंगे गेंद तो व्हाइट ही आएगा
2: बिल्कुल।
1: हमारा जो जा रहा है
2: बस
1: वो व्हाइट की ब्लैक हम जानते हैं,
2: बस बस
1: उसको थोड़ा सा चेंज करना और कुछ नहीं,
2: बस बस सहज है सर। ये सर जब कहते हैं ये सब ऐसे युद्धों का होना उनका रोकना, ये सर सहज युद्ध रोके जा सकते हैं, लेकिन वो जो जो करने चलाने वाले हैं ना, वो छीनने वाले, वो चुप हो जाए तो शांति से आराम से काम हो जाए। सर मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ से लोकल स्थान की बात कर लो, यहाँ से अगर आपको सिरोही जाना है तो आप शांति से समय से उठ करके तैयार हो करके गाड़ी से धीरे धीरे जाए ना, के एकदम देरी से तैयार हो करके फिर दौड़ करके गाड़ी से एकदम 120 की स्पीड से जाएंगे तो दुर्घटना की संभावना रहेगी ना सर।
1: सर लेकिन इससे
2: तो सर शांति और आनंद के साथ में, मैं ये कह रहा हूँ योग के साथ में जीते हुए इस जीवन की यात्रा को आप पूरी करें, अपने लक्ष्य तक पहुँचे, ये कह रहा हूँ।
1: जानेंगे और इसका बात में इसे सर ने बताया, भाई हमें धीरे से शांति से और अपना प्रिपरेशन का साथ चलेंगे
2: जीना है।
1: ये चीज सभी लोग नहीं कर पाते,
2: यात्रा आनंददायक
1: नहीं होता है। अब सभी का यात्रा आनंद क्यों नहीं होता है उसका जानेंगे अगला लिंक में कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन। ये तक खासकर पर्यावरण संबंधित कुछ जानकारियाँ और हम आपस में ही बात कर रहे हैं, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है, और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस? इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।
2: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही है। और सर ब्रेक का पहले हमें बोल रहे थे भाई हसीरो जाना है, तो जैसे आप लोग कैसे जाते हैं शांति से मेडिटेट होकर और अपना प्रिपरेशन होकर धीरे से गाड़ी धीरे धीरे चक्कर अपना
3: खुशी से जाइए,
2: जा रहे
3: जिस गाड़ी में जगह है उसमें बैठ के जाइए
2: जाइए
3: जाइए। लोगों को स्थान भी दीजिए, अपने से वृद्ध है उनको स्थान दीजिए, महिलाओं को स्थान दीजिए, माताओं को स्थान दीजिए, तो जाकर के आनंददायी यात्रा हो जाएगी।
2: लेकिन
3: यात्रा तो सब करेंगे
2: सर, लेकिन
3: एक तो झगड़ते हुए करेंगे, अरे खुशी के साथ करेगा।
2: लेकिन कितना लोग कितना यात्री इस तरह भावना लेकर पहुंचते हैं
3: सर? ये भावना तो अब जिसको यात्रा करनी है उसको लेना है।
2: कारण क्यों? क्योंकि अभी मान लीजिए आपको एक घंटा लगता है, 45 मिनट लगता है यहाँ साब रोड से शुरू जाने के।
3: जी हाँ जी,
2: ठीक है। लेकिन आपको टाइम दिया गया 10 बजे,
3: ठीक है?
2: ठीक है सर, ये भी आप क्राइटेरिया लगाइए।
3: बिल्कुल सर, क्राइटेरिया ये
2: क्राइटेरिया आपको जाना है 10 बजे वहाँ पहुँचना है।
3: बिल्कुल सर,
2: वैसे कभी भी जाओ तो धीरे धीरे साइकिल में मोटरसाइकिल में भी जा सकते हैं। जो बॉस का बात करें भाई, आप
3: जी सबको जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी
2: हाँ। लेकिन आज का लोग जो है भाई, हम कैसे कम समय में सभी का जो परसेंटेज

0: कम समय
1: कम समय पहुंचे, कोई जाए चाहे नहीं जाए, हम पहले कैसे
0: सबसे पहले हमको पहुंचना है।
1: इसका सुख दुख का हमसे कोई नहीं है, एक दो परसेंट को छोड़ के 70-80% लोग का भावना क्या होता है,
0: भाग के
1: भाग कर पहुंचना है और सबको मैंने रेस में जाकर आगे पहुंचेंगे, 10 बजे का पहले पहुंचेंगे इसे सोचेंगे। और उनका जो स्थिति है
0: जी हाँ
1: किस सोच में जा रहा है,
0: तो सर वहाँ जाकर भी वो हड़बड़ाहट में वो सही एडजस्ट भी नहीं हो पाएंगे और फिर वो जो कुछ होना है उस कार्यक्रम को भी चूक जाएंगे,
1: फिर भी वो खुद को दोषी नहीं साबित करेगा, उसका चलते ही हुआ है, उसका चलते सबको उधर दिखाएगा,
0: बिल्कुल सही बात,
1: नहीं पहुँचेगा
0: नहीं फिर बहाना
1: ये सब कराएंगे। तो ये चीज बहानाबाजी हो जो हम जो सभी अनुभव, तो ये भी पर्यावरण के लिए कितने क्षति
0: सर,
1: एक्सीडेंट का
0: बिल्कुल सर
1: आप गलत है, दूसरा सही चल रहा
0: बिल्कुल सर
1: उसका हुआ है
0: सर, इसमें प्राय देखा गया है अब तो, क्योंकि सर बहुत पहले तो अपने जो हिंदुस्तान के जो रूल्स है ना उसमें गाड़ी अब हम लोग लेफ्ट में ही चला करते थे और गाड़ी राइट से ओवरटेक होती थी
1: जी
0: काफी समय पहले, लेकिन एक समय के बाद अब तो सर जब 4 लेन हो गए हैं तब से गाड़ी इधर से भी राइट से भी आगे निकल जाएगी, लेफ्ट से भी आगे निकल जाएगी, वो अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं करता है सर। अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट से राइट में जाता है वो आगे बढ़ना चाहता है राइट साइड से, उसकी स्पीड उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो उससे भी कम स्पीड में बीच में चलता रहता है। तो सर इस तरह की जो अनियमितता है वो किसको डिस्टर्ब करती है, जो सही चलने वाला है, जो सही एंगल में चल रहा है, सही डायरेक्शन में चल रहा है, नुकसान कई बार उनको ज्यादा होता है स्थान पर उनके की जो गलत चल रहे हैं,
1: जिसके चलते पर्यावरण को नुकसान होता है
0: बहुत बड़ा,
1: जैसे जीव जंतु कहीं भी कुत्ता बिल्ली बरा गाय बरा देख वो तो मनुष्य तो जाता जाता है
0: सर, इतना ज्यादा नुकसान होता है कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी और सर इनकी जब चोट लगती है उनको संभलने वाला कोई नहीं मिलता।
1: और तो ये जो वस्तु निर्जीव वस्तु तो है ही है, गाड़ी का खुद का भी उसका भी गाड़ी का जो मेटेरियल फिर रोड का अवस्था खराब होता है, ये भी पर्यावरण का साथ है
0: सर, ये तो उसके साथ में ही सर इसको देखना होगा,
1: कितना जिम्मेदारी है खुद थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल नहीं होता,
0: बिल्कुल सर
1: हो रहा है
0: बिल्कुल सर,
1: हर रोज आप पेपर देखिए सुनिए न्यूज में वही है, तो इसका कारण क्या है पर्यावरण का ये भी नुकसान।
0: सर सर अब हम इसमें बात करें थोड़ा इसके पूरा इसको फोकस करते हुए
1: जी,
0: कि सर ये जो पर्यावरण है इसको अगर अपन संभालते हैं, अच्छा सर इस पर लंबे समय से कार्य होता रहा है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग कह दो या बादलों का फट्टा कह दो या जो कुछ भी कह दो, उस पर हम धीरे धीरे इसको समझाते आ रहे हैं, बस समझाने का मतलब ये है कि हम सचेत हो जाए
1: जी,
0: हम जग जाए, हम अपनी यात्रा को सुखद कर लें, समझाने का मतलब ये है कि हमारे जीवन की यात्रा सुखद हो जाए, हम अच्छा खाएं ताकि हम बीमार ना पड़े, हम अच्छे वातावरण में जिए ताकि हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं हो, हम उन आध्यात्मिक विचारों के साथ में सलूक करें पशु पक्षी प्रकृति के साथ में ताकि वो भी खुश रहे और हम भी खुश रहे, नहीं तो फिर पेड़ों को काटते जाओ, पशुओं को मारते जाओ, एक्सीडेंट करते रहो, तो फिर जीवन आपका और उनका कैसा होगा इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। सर अब ग्लोबल वार्मिंग की जो बातें पढ़ाई जाती है सिखाई जाती है, आपने हमने स्कूलों में जाकर के भी देखा, वहाँ पर समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, एक सामान्य चर्चा अपन ने की है, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, प्रति माह बरसात हो रही है साहब अपने यहाँ पर लोकल एरिया में, 2 साल पहले प्रति माह बरसात हुई सर, तो सारा हमारा सिस्टम ही गड़बड़ा गया, तो फिर भी ठीक है इस बार तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, नहीं तो प्रति माह बरसात हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रदूषण का इम्बेलेंसिंग का बहुत बड़ा लक्षण था। सर वन्य जीव आबादी लुप्त होती चली जा रही है, जंगली जीव प्रदूषण के कारण लुप्त होते चले जा रहे हैं, सर वहाँ कितना बड़ा इम्बेलेंस होगा, भाई जो भी पशु जो है वो जिस वातावरण में सर्वाइव करते हैं वो वातावरण ही उनके पास में नहीं रहेगा, तो वो जंगलों से निकल करके कहाँ आएंगे, सड़क पर आएंगे, उनको भोजन जंगल में नहीं मिला तो कहाँ आएंगे, सड़क पर आएंगे
1: सर,
0: फिर आप हम कहेंगे कि हमको उसने नुकसान पहुँचा दिया, अरे भाई नुकसान आपने पहुँचाया इसलिए वो आपको नुकसान पहुँचाने आ रहे हैं।
1: सर ममता बाबू
0: जी सर
1: जो भी आते हैं यहाँ पर लिखा रहता है भाई ये वन्य
0: क्या गजब बात की,
1: इसमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का बहुत रेस्ट्रिक्शन बहुत अच्छा लगता है
0: सर, बहुत अच्छा है वो,
1: नहीं तो आज क्या होता है, आज कोई माउंट आबू जो अभी सुरक्षित रूप में है
0: जी, जी
1: कम से कम जितना दूसरा,
0: अब तो सर सरकार परमिशन दे रही है, अब तो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में छूट मिलने लग गई है,
1: लेकिन उसमें मेरिट और डिमेरिट दोनों साइड है
0: जी सर, इसमें डिमेरिट ज्यादा है
1: कंस्ट्रक्शन में,
0: कंस्ट्रक्शन में नुकसान जाता है।
1: नुकसान जाता है
0: सर, ये कंक्रीट के जंगल खड़े करना ये अच्छा नहीं है सर।
1: एक ही जगह पता तो वो भी सरकार दे रहा है, उसका डिमांड तो कल तो सरकार भी क्या कर भाई चलो।
0: हाँ वो देखो मैं कहता हूँ सरकार को तो बैलेंसिंग करना
1: पड़ता है उनका
0: बैलेंसिंग। सर सरकार ने तो अभी मैं आपसे निवेदन करूँ एक डिसीजन तो बहुत अच्छा लिया सर, इसको पर्यावरण से सीधा जोड़ के ही बात करता हूँ मैं। अभी राजस्थान सरकार ने ये किया है कि हाईवे से 500 मीटर दूर तक शराब के ठेके नहीं रहेंगे।
1: इम्प्लीमेंट कम होगा
0: सर, उसके विरोध में खड़े हो गए लोग। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ दिन पहले आपसे एपिसोड में कहीं बात बताई थी, लोग सर उसके विरोध में खड़े हो गए। अभी सर क्या तर्क दिया उन्होंने, मैं सर बड़ा यूं सोच के मुझे बहुत पीड़ा होती है कि जब जो जिस चीज की हम ही प्रशंसा किए और आज तो उसके लिए हम सुन रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो सर ये जो अपने आबरूढ़ क्षेत्र के लिए सर बता रहे हैं, यहाँ तो सर ये इकोनॉमी का बहुत बड़ा ये जरिया है।
1: बताओ
0: अब सर जहाँ संस्कार की बात है, जहाँ सबको बचाने की बात है, वहाँ इकोनॉमी कहाँ से लानी है
1: सर? आध्यात्मिक स्थल में इतना
0: तो
1: बड़ा
0: सर, ये तो सर ऐसी ऐसी चीजें हो रही। अभी सर एक और डिसीजन सर अभी सरकार ने दे दिया जो नेशनल लेवल पर हुआ है सर, कि जो माइनिंग को लेकर के सर 100 मीटर जो पहाड़ी है उसी को अरावली रेंज में माना जाएगा, तो फिर नीचे क्या होगा सर? ये भी बहुत ही पर्यावरण की दृष्टि से गलत डिसीजन है, इसके कुछ क्लिप्स है मेरे पास, वो भी मैं आपसे निवेदन करूंगा। तो सर कुल मिलाकर के सरकार भी बैलेंसिंग करते हुए कहीं न कहीं कुछ तो मतलब उसका तरीका उनके पास होना चाहिए कि उसका सांस्कृतिक नुकसान कितना हो रहा है उसके
1: विकल्प,
0: हाँ उसके तरीके के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। अब कितना आवश्यक है वो तो सरकारें जाने, आप और हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा ही जो निर्णय है इसको पर्यावरण की दृष्टि से तो ये मेरे ख्याल से चिंतनीय है। हम ये नहीं कह रहे सरकार ने निर्णय क्यों लिया ठीक नहीं है, ये तो हम नहीं कहते, लेकिन चिंतन योग्य है, चिंतन योग्य है। सर सोचना चाहिए सर, सर महामारी कोरोना आया सर, प्रकृति के साथ में हमने अच्छा व्यवहार किया तो कोरोना चला गया, तो सर ये महामारियां इस इम्बैलेंस की वजह से ही आती है, और फिर उसमें सर महामारी से फिर
1: प्रकृति के साथ
0: हाँ सर सभी प्रभावित होते, पशु पक्षी व्यक्ति परिवार सभी प्रभावित होते हैं सर। जैसे जिन परिवारों में ये तकलीफ आई उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन संभालेगा? समस्या है ना सर, उनकी अच्छी शिक्षा नहीं होगी, देखिए वातावरण कहाँ ले जा रहा है, उनकी शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो सर फिर वो किस ओर जाएंगे, रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे? सर भुभुक्षितम् किम न करोति पापं, ऐसा कहते हैं ना, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करेगा, उसको पेट भरना है जीने के लिए, फिर वो तो कुछ भी कर डालेगा। तो ये वही चीज है, प्रकृति ही है ये वहां तक उनको दुष्प्रेरित करना तो नहीं चाहती, लेकिन उसका प्रतिफल आपको हमको भुगतना पड़ता है। क्राइम क्यों बढ़ता है सर? क्राइम इसलिए तो बढ़ता है आप प्रकृति के साथ में चले तो क्राइम भी नहीं बढ़ेगा।
1: स्कूटी या मोटरसाइकिल रखने के लिए हमको सोचना पड़ रहा है कहाँ रखे तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि पैसा हमारे पास
0: बिल्कुल सर वो इसलिए बहुत बड़ी चीज है सर, ये सर बहुत बड़ी चीज मैं बताऊँ,
1: उसके लिए हम सोचते तो
0: हम सर इसलिए सोचते हैं, ये बिल्कुल बहुत अच्छा मतलब आपने बात करने का मौका दिया मुझे। वहाँ सर एक्चुअल में जैसे वो ना करे लेकिन उनके पास जरिया दूसरा नहीं है, उसको मैं सर्टिफिकेट हम लोग नहीं दे रहे हैं कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब वो भूखा रहेगा तो करेगा क्या? सरकार उनके लिए प्लानिंग करे उनके तरीके की, वो जब उस परिवार में कोई तकलीफ है तो सरपंच के माध्यम से उस परिवार तक पहुंचा जाए। और सर सरकार दे रही है, महात्मा गांधी नरेगा में जो कुछ भी दे रही है सरकार दे रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई आवश्यकता है। कई बार सर ऐसे परिवार भी इतनी तरीके से वो वंचित रह जाते हैं कि वो कहीं से उसमें जुड़ ही नहीं पाते, लेकिन अब सिस्टम बना है तो सर उन तक पहुंच करके उनकी सुविधाएं की जाए तो निश्चित रूप से वो बच्चे पढ़ लिख लेंगे और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब सर उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आएगा तो फिर वो क्यों नहीं करेंगे सर? इसलिए क्राइम को सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहे, लेकिन वो क्राइम इसलिए सहज रूप में बढ़ जाता है।
1: परिस्थितियां हो चाहे सरकार अनुदान होने के बाद उसका चिंतन दूसरा तरफ चला जाता है।
0: बिल्कुल सर,
1: कोई सब अच्छा होते हैं लेकिन परिवेश और उनका जो आवश्यक रिक्वायरमेंट
0: वो
1: होता है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता है तो और कुछ ऑप्शन नहीं होता है
0: तो फिर वो ऑप्शन को मजबूरी के बारे में उस तरफ आगे बढ़ते हैं।
1: कोई व्यक्ति नहीं चाहता होगा जो हम दे
0: ये बात,
1: लेकिन परिवेश हो चाहे परिस्थिति हो है ना, तो उसको मजबूर कर देता है,
0: वो मजबूर कर देता है,
1: तब जाकर के वो विवेकशील है सभी। लेकिन क्यों होता है, जैसे हम लोग जब जाते हैं फील्ड में, हमको आप ही खुद बोलो सर गाड़ी यहाँ पर रखना सुरक्षित नहीं है,
0: बिल्कुल सर वो वजह है ना,
1: और यहाँ पर कभी देखो पिछले दिन में ऐसे हुआ था, और आप आए मेहमान होकर आप गाड़ी थोड़ा इंटरलॉकर और हमारा सामने जैसे गाड़ी रहा है, ये चीज थोड़ा सा हम सब जानते हैं, और यहाँ का जो परिवेश और मजबूर कर देता है, जिसका
0: चलते करता है
1: परिवेश तो कितना नेगेटिव कर देता है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: हम पॉजिटिव होकर जा रहे थे।
0: हाँ बिल्कुल,
1: और आपने बताया भाई ऐसे ऐसे, तो हमारा ध्यान कहाँ गया,
0: बिल्कुल सर उस पर चला जाता
1: है कुछ समय के लिए, फिर उसको छोड़ने के लिए हम फुटकर करना पड़ता है, चलो कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव में हमेशा जाते
0: हैं,
1: कोई नहीं लेगा, और हमें अच्छा काम में कर रहे और लेगा तो उनका हिसाब किताब, नहीं तो ऐसे सोचकर उनको
0: पॉजिटिव भावना
1: समझाना पड़ता
0: है, बिल्कुल सही बात है।
1: तो क्यों कैसे वो उसमें उलझ रहेंगे, ऐसे आएगा ही, क्योंकि समय ऐसे सर
0: जी सर,
1: समय बलवान है,
0: समय बड़ा बलवान है,
1: भगवान नहीं समय
0: बलवान,
1: क्योंकि समय का अंदर में ही भगवान जुड़े हुए हैं,
0: बिल्कुल सर,
1: अपने हिसाब से
0: वो तो
1: नहीं कर पा रहे हैं
0: अदृश्य रूप में, बिल्कुल सर,
1: नहीं वो भी समय अनुसार ही आता है, वो अपना मन से जब चाहे तब नहीं आएगा,
0: हाँ वो समय के अनुसार ही आएगा,
1: नहीं तो पहले जैसे शुरू में वो चाबी लॉक कर देता है, हाथ में नहीं था ऐसे,
0: देखो मतलब ये सर ये नहीं तो फिर सृष्टि में ये सब होता ही नहीं,
1: होता नहीं,
0: ये सब सामान्य है,
1: ये उसका आवश्यकता है,
0: ये जब चलता ही रहेगा,
1: तीखा रहेगा तब तो मीठा का स्वाद अब बारीक,
0: बिल्कुल का बिल्कुल,
1: कौन तीखा और कौन मीठा
0: नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, कांटे लगेंगे तभी तो धूप का असर अपने को पता होगा कि वहाँ कांटे थे और यहाँ
1: धूप, वहाँ छींची करेंगे, यहाँ
0: कितना बढ़िया ये
1: तो ये
0: कालीन बिछा दिए,
1: समय जो है अभी जो तम प्रधान का समय चल रहा है, और इसको सत प्रधान आने में देरी नहीं है, और हम सब चिंतन से
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उसके लगे हुए है, और जरूर आने वाला है, थोड़ा धीरज से काम हम कर,
0: आने ही वाला है सर, देखिए इतने विश्व के सभी देशों में इतने आध्यात्मिक संस्थान काम कर रहे हैं, और लोग भी चाह रहे हैं, जो संस्थानों से नहीं जुड़े वो भी चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं,
1: जैसे सर एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम लोग रात में सोते हैं
0: जी,
1: एक आशा लेकर जब सूरज निकलेगा,
0: हाँ बिल्कुल सही,
1: प्रकाश आएगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो रात का इतना हमें दुख नहीं होता है, क्योंकि हमको मालूम है जो आने वाला समय बहुत अच्छा
0: होगा, निश्चित रूप से आएगा,
1: तो ये जो अच्छा चीज आने वाला, कहीं कोई भी चीज का जैसे कोई भी वृक्ष होता है
0: जी,
1: उसको फल आ गया
0: जी,
1: उसको तो उसका समय हो,
0: सर इस पर आपने कहा तो मैं आपसे एक बात निवेदन कर दूं कि सर मैं इतिहास को देख रहा था
1: जी,
0: तो इतिहास में सर ऐसा हुआ कि अपने जो हिंदुस्तान के जो पहले के जो राजा हुआ करते थे
1: जी,
0: वो सर युद्ध के अंदर बिल्कुल सर धर्म का आचरण करते थे,
1: बड़ी बात,
0: सत आचरण करते थे, ये अभी मतलब मैंने इसको अपने तरीके से लाइव सुना है, मैं उसी बात को रख रहा हूँ, दो दिन पहले ही सुना है, क्योंकि फिर मैंने कहा इसको ही किस तरह से सर वो अच्छा सोचता था, आपने अभी बताया कि हर किले में मंदिर, आपने अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था कि हर किले में मंदिर है, सब धर्म के प्रति सचेत है, सर जब वो युद्ध करने जाता था तब सर सुबह से शाम तक युद्ध करता था, और शाम के बाद में अगर युद्ध करना है तो वो नहीं करते थे वो लोग, हिंदुस्तान के जितने भी राजा थे सर, सुबह से शाम तक लड़ाई होगी और शाम होने के बाद सूर्यास्त के बाद में सर वो आमने सामने बैठ करके भोजन करते थे, ऐसे उदाहरण है अपने इतिहास,
1: क्या बात
0: जी सर, अब तो ऐसे उदाहरण कभी मैं आपसे शेयर भी करूंगा, ये बांसवाड़ डूंगरपुर में हुआ था सर, वहाँ चाचा और भतीजा आमने सामने थे, पूरे दिन लड़ाई होती है लेकिन सूर्यास्त के बाद में वो साथ में भोजन करते हैं,
1: क्या बात है,
0: तो सर ऐसी ऐसी स्थितियां सर यहाँ पर रही है सर, बाहर के आक्रांता जब भी आए, एक इतिहास की बात के लिए मैं कह रहा हूँ, इसको वैसे नहीं लेना, इतिहास की बात कह रहा हूँ, जब आए तब सर अपने हथियार सवारी भारी थे और उनके हथियार सर हल्के थे, वो घोड़ों पर लड़ने आते थे, हमारे राजा हाथी पर लड़ते थे, वहां का राजा जो आता था बाहर से, वो सर राजा था वो अपनी सेना को आदेश देता था कि जाइए लड़िए, पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था, यहाँ पर यह प्रणाली थी कि वो स्वयं युद्ध के अंदर उतर जाता था, जब तो राजा मारा गया तो सेना हार गई या भाग गई, और जबकि उनके वो सारे बच जाते थे, और सर इसी चाल में इसी में कि भाई उन्होंने संध्या के बाद भी आक्रमण किए तो उन्होंने धोखा देना शुरू कर दिया, तो सर उन्होंने साम दाम दंड भेद वो सब अपनाना शुरू कर दिया सर, इसका परिणाम क्या हुआ, उन्होंने हमको हमारे ऊपर राज तो किया लेकिन अंततः उनको जानना पड़ा, लोकतंत्र आया, और आज क्या स्थिति है हिंदुस्तान की आप सब जान रहे हैं कि विश्व शांति के लिए भी आज की तारीख में लीड कर रहा है, तो सर वो जो आक्रांता थे उनको जाना पड़ा। तो सर ये प्राकृतिक कारण ही हुआ ना, उन्होंने गलत तरीके से कंट्रोल भी है सर, गलत तरीके से क्राइम जब चलता है तो डरना पड़ता है, लेकिन एक अच्छा समय उसके बाद आता है। तो सर भारत का अच्छा समय आया, तो इस तरह से पूरी दुनिया का भी एक धर्म के उदय का अच्छा समय आपके पास में ये आया है, तो इसको लेकर के निश्चित रूप से विश्व में शांति के लक्ष्य को अपन हासिल करेंगे आध्यात्मिक उन्नति के साथ में, इसमें कोई शक नहीं।
1: हर चीज में एक श्रीमत कहते हैं भाई, सत्य की नाव,
0: बिल्कुल
1: सत्य की नाव मैंने धर्म जिसको कहते हैं, हिलेगी डूलेगी
0: डूलेगी डूलेगी
1: लेकिन डूबेगी
0: नहीं, डूबेगी नहीं।
1: तो आज जो भी थोड़ा हिलता डुलता लेकिन सत्य सत्य ही रहेगा,
0: सत्य तो सत्य ही रहेगा सर।
1: भारत महान है ये जिस धरती पर, और खासकर भारत माता कहते हैं सर
0: जी, बिल्कुल
1: जमीन का कितना महत्व है
0: जी,
1: इस लोग जब आते हैं इस धरती को पवित्र मंत्र माथा में लगते हैं
0: जी।
1: तो ये भी एक पर्यावरण का जो प्रकृति में पृथ्वी का खासकर भारत
0: जी जी बिल्कुल
1: कितना महान और
0: महान है, तभी इसको तभी
1: इसको देवी देवता का वास स्थान सर।
0: सर इसकी सोच अच्छी रही है, सोच अच्छी रही है,
1: अभी भी है और आगे भी रहेगा, ये हमारा भावना है।
0: प्रतिफल भी बहुत ही अच्छा
1: रहेगा,
0: और सर सद चिंतन जब होगा तो सर इसमें अब सर आगे भी अपन जाने प्रवाल भित्ति विरंजन भी इसी से होता है सर
1: जी जी।
0: क्योंकि सर जो केमिकल प्रदूषण जो समुद्रों में होता है, समुद्र में वेस्ट को छोड़ दिया कौन देख रहा है, तो फिर वो क्या करता है वो केमिकल जो भी है वो प्रवाल भित्ति, प्रवाल के सर द्वीप के द्वीप बने,
1: कोई देख लिया भी तो उसका ऑप्शन भी रखता है वो। मैंने कोई देख लिया भाई, आजकल तो सीसी कैमरा बड़ा लगाते हैं
0: ठीक है,
1: और तब भी वो क्या करता है उसका तो चार तरफ भाव बहुत बड़ा है इधर उधर करके उसको, और आज लेने वाले देने वाले सब एक ही जैसे हो गए,
0: बिल्कुल सही,
1: और इसलिए वो भी डरता नहीं, पनिशमेंट होता है तुरंत, अगला वाला करेगा नहीं, अरे ये तो बच गया भाई मैं भी करूँ तो मैं भी बच
0: जाऊँ,
1: उसका लेन देन
0: वो बिल्कुल वो गलत तरीके से ये सारा
1: हो रहा है ना,
0: बिल्कुल सर,
1: जिसका चलते जो स्वार्थी लालची
0: बस लालची प्रवृत्ति हो गई,
1: कुछ भी हो जाए धरती
0: बस बस बस
1: पानी कुछ भी हो जाए हमारा तो पॉकेट भर रहा है,
0: तो उससे क्या फायदा सर, वो पॉकेट कितना चले,
1: वो चीज सब आप सोच रहे
0: कितना,
1: सभी लोग ऐसे सोचे तब
0: सही बात। तो सर ये है, तो इससे सर समुद्री जीव विलुप्त हो रहे हैं
1: जी जी।
0: सर ये जो है ये क्लाइमेटिक चेंज तो सर इतना खतरनाक सर हो रहा है सर, जो क्रैब्स है ना जिसको केकड़े कहते हैं, कई जीव सर इस क्लाइमेट चेंज की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचारे माइग्रेट कर रहे हैं, जीव माइग्रेट कर रहा है, व्यक्ति कर रहे हैं ये तो ठीक बात है, लेकिन वो जानवर माइग्रेट कर रहे हैं, वो जो जीव जो समुद्र जल पर आधारित है वो सब माइग्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कई जगह इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
1: अच्छा लग रहा है आपने बताया माइग्रेट कर रहे हैं
0: जी सर,
1: जीव जंतु पक्षी का बात कर रहे
0: हैं,
1: हम आप और हम अनुभवी है, जब पंछी पशु जीव जंतु का मालिक जिसको हम मालिक मनुष्य विवेकशील है
0: जी,
1: वो आज एक स्थान में नहीं है, वो भी माइग्रेट कर रहे हैं
0: जी, बिल्कुल सही,
1: वो तो करेगा मालिक जब ऐसे हालत में है,
0: हाँ, तो वो तो करना ही है,
1: उसको करना है, उसमें कोई सोचने का बात नहीं, लेकिन जैसे आज हम पलायन करते हैं
0: जी,
1: आपका गांव का लोग भी पलायन करते हैं, सरकार तो अभी कुछ करा है तो रुके, हम तो अमेरिका रूसिया जापान में जाकर विदेश में जाकर नौकरी करते हैं, पलायन जैसे
0: पलायन ही हुआ सर,
1: यहाँ पर उसका आवश्यकता नहीं मिल रहा है जितना चाहिए।
0: सर आपने कितनी बढ़िया बात की सर, सर बहुत पहले हिंदुस्तान से जो ब्रेन ड्रेन हुआ इसको कहते हैं ब्रिटिश काल में हुआ था, आज भी वो हो रहा है, कैसे हो रहा है कि सर जितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इंटेलिजेंट इन द सेंस अच्छी समझ रखने वाला व्यक्ति जो भी है बहुत अच्छी मेहनत करता है, वो सारा का सारा विदेशों में कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर के बैठ जाता है, तो फिर हमको तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि अपने लोगों में वैल्यूज तो है, जहाँ भी जाते हैं अपने हिंदुस्तानियों में वैल्यूज तो है, तो सर वो जब बाहर जाके बस जाता है, हालांकि वैल्यूज सब में है, लेकिन वो जब बाहर जाके जब बस जाएगा तो अपना टैलेंट तो बाहर गया, तो सर उनके यहाँ पर रहने के लिए स्थिति यहाँ होती तो हमारे भी लोग यहाँ रहते। खैर अब तो अंतरराष्ट्रीय जो है वसुधैव कुटुंबकम हो गया, पूरी दुनिया ही एक घर हो गई, इसलिए ये बात ज्यादा मायने नहीं रहती, लेकिन फिर भी हाँ मतलब जो ये अच्छे लोग है वो सब जगह रहने चाहिए। सर गुरु नानक ने एक बार कहा था
1: जी जी,
0: बदमाश लोग वहां पर थे तो उनको कहा कि भाई तुम सारे बदमाश हो, तुम एक ही जगह जुट एकजुट हो जाओ, और जो अच्छे लोग थे ना उनके लिए क्या कहा उन्होंने, तुम सब बिखर जाओ। तो उनको यह भगवान आपने ये क्या आशीर्वाद दिया? अरे भाई के अच्छे लोगों के बिखरने से सब जगह अच्छी अच्छी बातें जाएंगी और ये बुरा एक जगह ही रहने दो, इस तरह की कहानी कही जाती है।
1: जैसे वाइब्रेशन जो माइग्रेट होते हैं इसमें फायदा हुआ, पॉजिटिव लेना है सर,
0: अच्छे लोग
1: जीव जंतु माइग्रेट हो रहा है, उसी सब
0: विवेकशील प्राणी अच्छी जगह गए हैं तो उससे तो फायदा ही होना है,
1: जाकर वहाँ पर भी अपना एक संसार बना।
0: बुराई तो एक जगह इकट्ठी होनी चाहिए ताकि वो वहीं रहे।
1: धन्यवाद। और जाते जाते हमें खुशी लगा क्योंकि आज का टॉपिक पर्यावरण से मिक्स एक जैसे खिचड़ी होता है,
0: अलग तरह का बन गया।
1: परिवेश हमें जो आवाज करता है
0: जी जी
1: उसी हिसाब से हमारा चल पड़ता है,
0: बस हम तो उस हिसाब से चल पड़ते हैं।
1: इसे अच्छा करते रहिए तो अच्छा मिलेगा ही। तो इन शुभ भावना के साथ हमें और श्रीमान भोपाल रामपुर जी को दीजिए इजाजत, फिर अगला एपिसोड में मिलेंगे और किसी पर्यावरण को विषय को लेकर। तो
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में, कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए, भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है, आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे, उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है, क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है, कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। वैसे संगीत का सफर सच में इतना सुहाना होता है कि बाकी सब सफर उसके आगे फीके लगते हैं। एक्चुअली चाहे हम घूमने जाएं या परिवार के साथ समय बिताएं या कहीं अकेले किनारे बैठे हो किसी सोच में डूबे हो, संगीत हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, इसलिए हम भी उसका साथ नहीं छोड़ते और लेकर आते हैं आपके लिए ये कार्यक्रम जिसमें मिलवाते हैं आपको हर हफ्ते एक नए मेहमान से। लेकिन वो मेहमान होते हैं खास क्योंकि उन्हें होता है संगीत से प्यार। और आज भी हमारे समक्ष एक ऐसी ही आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है निधि अग्रवाल जी, जो कि कवयित्री भी हैं, वो ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट राइटर भी हैं, और साथ साथ उनकी कविताओं का बहुत सुंदर उन्होंने संग्रह भी तैयार किया है। तो आइए निधि जी का स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में आज। निधि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया। और मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं संगीत, जहाँ भी मौका मिले संगीत या गीत, कहीं पर भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो तो जो भी मैं कविताएं लिखती हूँ उनको ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि वो समाज से जुड़ी होती हैं और प्रकृति से भी संबंधित होती हैं, जिससे कि हम लोग अपने समाज में क्या चल रहा है, हमारी प्रकृति में क्या बदलाव हो रहे हैं, उनसे हम लोग जुड़े रहें। मैं खुद जुड़े रहती हूँ और इन कविताओं के माध्यम से बस अपना संदेश सबको सुनाना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ, इसलिए। और मैं बेसिकली यूपी कानपुर की रहने वाली हूँ और हमारे यहाँ जैसे गंगा नदी है तो वहाँ पे मतलब अभी तो काफ़ी प्रदूषण पे कंट्रोल है, लेकिन एक समय था जब हमारे यहाँ पे गंगा का बहुत ज़्यादा प्रदूषण था, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, पानी हमें साफ नहीं मिल पाता था और हर जगह गंदगी कचरा कूड़ा ये सब रहता था। लेकिन अभी सरकार भी बहुत मतलब जागरूक हुई है सबको लेकर, तो अभी साफ़ सफाई गंगा की करना बहुत हो गया है। और शहर में भी अभी सुंदरीकरण हो रहा है, पहले बहुत ज़्यादा गंदगी और वो प्रदूषण और वो सब रहता था। तो मेरी कविताओं का मतलब, क्योंकि बचपन से ही मुझे संगीत, कविताओं से, गीत से बहुत एक स्पेशल अटैचमेंट रहा है और बहुत मतलब एक अंदर से ही एक जैसे एक मुझे रहा है बचपन से कि मैं कुछ ऐसे क्रिएटिव चीज़ें करने का मुझे शौक रहा है। तो उसमें कविताओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपने ब्लॉग्स के माध्यम से, जो भी मुझे लगता है समाज में चल रहा है और जो हमारे युवा पीढ़ी के लिए और तब बच्चों के लिए, जो हम उनको कैसे एक अच्छी सोच दे सकते हैं, कैसे उनको जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आज है हमारा और बच्चे हमारा कल है। तो जब हम अपनी युवा पीढ़ी को सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे बच्चों को, तो हमारा भविष्य और आज बहुत सुंदर हो सकता है।
0: इसलिए आप युवाओं के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए भी कविताएं लिखते
1: हैं। मैं उनके लिए भी लिखती हूँ। और हमारी जो महिलाएं हैं, जो शक्ति सेना है हमारे देश की, मतलब 50% जो जनसंख्या है हमारी महिलाओं की है, तो हमारी जो महिलाएं हैं वो, वैसे तो आजकल हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत
0: कहां नहीं है महिलाएं, चाहे
1: हर जगह है महिलाएं,
0: चाहे क्रिएटिव फील्ड्स में हो,
1: हाँ हर फील्ड में आगे हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। तो उनसे भी संबंधित मैं कविताएं लिखती हूँ, बाकी समाज के लिए लिखती हूँ और प्रकृति से संबंधित। और एक चीज और मेरे विषय में शामिल है जो है आध्यात्मिकता, जिसकी आज हम सबको बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल के जो हमारा माहौल है, जो हमारी जिंदगी है, उसमें बहुत ज्यादा भाग दौड़ है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हम मतलब कभी कभी लो फील करने लगते हैं, हम निराश हताश होने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती,
0: बहुत सारी परेशानियां,
1: बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि बहुत सारी परेशानियां भी हैं जीवन में। तो हमें लगता है कि हमें परमात्मा से जुड़ने की और उनकी, उनसे शक्ति लेने की जरूरत है। तो जब हम अध्यात्म को साथ लेके चलेंगे तो हमारा जो जीवन है वो बहुत बेहतर बनेगा, बहुत मतलब हम अच्छे से अपनी सारी समस्याओं का सामना कर पाएंगे और हम अपने हर मतलब हर जो भी हमारे जीवन में हम करना चाहते हैं उसमें हमेशा हमें सफलता मिलेगी।
0: तो बहुत सुंदर विषय हैं आपके, आपने बताए, और मुझे लगता है कि आपके पास शब्दों का बहुत बड़ा खजाना भी होगा, क्योंकि जब कोई लिखते हैं तो वो शब्दकोश भी बहुत बड़ा जरूर होता है उनके पास, क्योंकि हर चीज को व्यक्त कर पाना कई बार लोगों को मुश्किल भी लगता है कि हमने जो सोचा शायद वो वो कहा या नहीं, तो वो भी होता है। निधि जी, मैं आपसे थोड़ा सा और पहले ये जानना चाहूंगी कि कविता लिखना आपने कब शुरू किया, वो कैसा?
1: जी, मैं क्लास 5th या 6th में थी, तो तब से मतलब मैं प्रकृति के शुरू से बहुत करीब रही हूँ। हमारा जो घर भी रहा है वो बहुत मतलब ऐसे, हमने घर में मतलब मेरे माता पिता को भी हरियाली का बहुत शौक रहा, तो हमारे आसपास बहुत पेड़ पौधे रहे, पशु पंछी बहुत मतलब पहले हमारे घर के मतलब घर में भी उनकी बहुत हम आवाज सुनते रहे शुरू से ही, और गीत संगीत भी हमने बहुत मतलब करीब से मैंने बचपन से देखा। तो मेरा एक रुझान सा हो गया कि मतलब कि कुछ मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, जो प्रकृति है जो वातावरण है वो हमसे कुछ कहना चाहता है, तो हमें उनकी आवाज को सुनने की कोशिश करना चाहिए, क्या वो हमको संदेश देना चाहते हैं। और वो संदेश अगर मैं समझ पाती हूँ तो वो मैं अगर कविता के माध्यम से दूसरों को भी बताऊं या सुनाऊं, तो मुझे एक बहुत मतलब लगता था कि मैं कुछ सेवा कर रही हूँ प्रकृति की और मतलब अपने समाज की भी। तो जब मैं 5th या 6th क्लास में थी तभी से

0: संगीत का है ये कार्यक्रम, ऐसा है कि जहाँ पे हम जुड़ते हैं कविताओं से, गीतों से, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आपकी लिखी हुई कोई कविता आप हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाएं।
1: जी जी जरूर। मेरी एक कविता है जो मैंने लिखी है कि कैसे मतलब अपने मन के जो भाव होते हैं उस पे आधारित है कि हर इंसान के अंदर मन में कुछ ना कुछ भाव रहते हैं और उनको मतलब हम कैसे मतलब कभी कभी बहुत गहराई से फील करते हैं, तो वो ही भाव के ऊपर ये कविता है कि मेनली जैसे शांति का एक होती है भाव होता है या एक फीलिंग होती है, तो वो मुझे जब फील हुई होती है तो उसकी मतलब कितनी पावर होती है उसमें, उसी पर आधारित है। खामोशी की जुबान, खामोशी की जुबान बहुत गहरी होती है, दूर तक सुनाई देती है, गहरा असर करती है, बिन बोले बहुत कुछ कहती है, मन के अनसुने राज खोलती है, दिल में बस उतर जाती है, बार बार विवश कर देती है इतना असर छोड़ती है, बार बार विवश कर देती है इतना असर छोड़ती है, जुबान कभी ना जो कर पाती, खामोशी की जुबान वो कर देती है जो सोचा नहीं। खामोशी की जुबान मन का आईना है, खामोशी की जुबान मन का आईना है, हमारे विचारों को देती है आकार, हमारे विचारों को देती है आकार। खामोशी की जुबान बहुत गहरी होती है, दूर तक सुनाई देती है, गहरा असर करती है, खामोश रहकर भी अपनेपन का एहसास कराती है, अंदर तक दिल में उतर जाती है, अंदर तक दिल में उतर जाती है, बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह देती है, सुकून और आनंद से भरपूर जीवन को बनाती है, सुकून और आनंद से भरपूर जीवन को बनाती है, खुद को खुद से मिलाकर खुदाई से जोड़ जाती है, खुद को खुद से मिलाकर खुदाई से जोड़ जाती है, जीवन में नए रंग भरकर जीवन खूबसूरत बनाती है, जीवन खूबसूरत बनाती है। खामोशी की जुबान बहुत गहरी होती है, दूर तक सुनाई देती है, गहरा असर करती है, गहरा असर करती है।
0: क्या बात है, खामोशी को जुबान दे दी आपने, और क्या महसूसता होती है जब कोई इंसान चुप भी होता है तो क्या कह रहा होता है या क्या महसूस कर रहा होता है। आपने एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, खुद को खुद से मिलाकर खुदाई से जोड़ देती है खामोशी की जुबान। इसका क्या अभिप्राय था, मतलब ये क्या आपकी भावना थी इसके पीछे?
1: मेरे मन में इसके पीछे यही भावना थी कि जब हम खामोश होते हैं तो हमारे जो विचार होते हैं हम उनको समझ पाते हैं, अपने मन को समझ पाते हैं, और परमात्मा से जुड़ने के लिए भी हम जितना खामोश रहते हैं उतना ही डीप कनेक्शन परमात्मा से हमारा बन पाता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क में रहते हैं तो हम खुद से नहीं जुड़ पाते हैं और परमात्मा से भी हम नहीं जुड़ पाते उतना अच्छे से, लेकिन जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो हम कौन हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या हमने सही किया, क्या गलत किया, या हमें क्या करना चाहिए, और परमात्मा से हमारा जो संबंध है उसकी गहरी महसूसता जब हम खामोश होते हैं तभी होती है। और हमारी शक्तियाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब हम जब बोल रहे होते हैं तो हम अपनी शक्तियों को भी उतना ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे होते हैं।
0: okay.
1: लेकिन जब खामोश रहते हैं तो हमारी शक्तियां कंसंट्रेट हो जाती हैं और बेटर होती हैं। मेरा बस यही अभिप्राय था खामोशी की जुबान के पीछे।
0: बहुत सुंदर।
1: हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए, जो भी हमारा दिनचर्या है या जो भी हमारा लाइफ स्टाइल है, तो अपने लिए समय निकालें और उस समय मतलब खामोशी में रहकर बैठें तो हमें बहुत सारा मतलब अपने बारे में जानने को मिलेगा और हमारे जीवन में हमें ज्यादा सफलता मिलेगी और परमात्मा का भी हमारा जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग
0: होता जाएगा। क्या बात है। और जैसा आपने कहा कि आपने फिफ्थ क्लास से आप लिखना शुरू कर दिया था, आप अपना अनुभव सुना रहे थे, तो आपने क्योंकि आप कंटेंट राइटिंग की फील्ड में हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड में हैं, तो क्या ये फील्ड आपकी लिखनी से ही शुरू हुई, इसीलिए आपका इंटरेस्ट आया, या कोई और रीज़न था इस करियर के पीछे?
1: एक्चुअली मेरी लेखनी से, वैसे तो मैंने आगे की जो पढ़ाई की वो मतलब अलग फील्ड में की थी, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हमेशा से, क्योंकि मुझे साइंस बहुत पसंद रहा क्योंकि इसमें लॉजिक होता है चीज़ों में, हम मतलब प्रूव कर सकते हैं हर चीज़ को, हमें ऐसे मतलब बिना देखे कोई चीज़ को मानने की, बिना समझ के मानने की ज़रूरत नहीं होती। साइंस

0: हर चीज का प्रूफ देती है, लॉजिकल होती है, इसलिए मुझे साइंस फील्ड पसंद थी। तो मैंने साइंस में ही अपनी पढ़ाई आगे की। और उसके बाद उस समय क्योंकि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड वाली फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो मेरे घर वालों ने भी चाहा कि मैं उस फील्ड में कुछ करूँ। तो फिर मैंने आगे की पढ़ाई उस फील्ड में की, MBA किया। और MBA के बाद मैंने कुछ कॉरपोरेट कंपनीज में, MNCs में भी काम किया। लेकिन अंदर से मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लग रहा था। लेकिन जो मेरा राइटिंग वर्क था वो मेरा चल रहा था साइड बाय साइड। तो मुझे लगा कि जब मुझे ये प्लेटफॉर्म है जिसमें ज्यादा अच्छे से काम कर सकती हूँ और इससे मैं ज्यादा करीबी फील करती हूँ, क्रिएटिव राइटिंग है, चाहे वो कविताओं के माध्यम से है, लेखों के माध्यम से है, ब्लॉग्स के माध्यम से है, और मैं गीत भी लिखती हूँ तो गीतों के माध्यम से है। तो फिर मुझे लगा कि मैं इसी को अपना फुल टाइम करियर बनाऊँ, क्योंकि मुझे और भी लोगों ने
1: कब लगा आपको मतलब
0: जब मैंने जैसे आपको शेयर किया कि जब मैं MBA करके और कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही थी, उस समय 2-3 साल बीत चुके थे।
1: 3 साल बाद आपको ये लगने लगा?
0: मुझे ये लगने लगा कि मुझे अपना करियर थोड़ा सा मुझे वो करना
1: क्रिएटिव फील्ड,
0: हाँ मुझे कुछ शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे उतना पैसा मैं कमा रही थी और जॉब भी चल रही थी, लेकिन अंदर से एक सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना जो हम कर रहे होते हैं वो मुझे कहीं मिसिंग लग रहा था। बाहरी तौर पे तो मैं कर रही थी, ठीक था सब कुछ, लेकिन अंदर से जो फीलिंग आनी चाहिए बहुत कंटेंटमेंट की, सेटिस्फेक्शन की, वो नहीं आ रही थी। और बाकी जो मैं जैसे फ्रीलांस बेसिस पे काम करती थी, तो जो फील्ड से जुड़े, लेखन की फील्ड से जुड़े लोग हैं, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप इस फील्ड में अगर करोगे तो ज्यादा शायद अच्छा रिजल्ट आप दे पाओगे और आप आगे ज्यादा सफल हो पाओगे, और मतलब आपका लगता है कि इसमें ज्यादा अच्छा एप्टीट्यूड है। तो फिर तभी से मतलब मैंने सोचा कि मैं फिर इसी फील्ड में अपने आप को वो करूं, परस्यू करूं इस फील्ड को, और इसी में अपने सफर को आगे
1: बढ़ाऊं।
0: तो बस वहीं से मैंने सोच लिया और वहीं से फिर मैंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी कर लिया, इसलिए मुझे बोला गया तो BHU से 1 ईयर का, और उसके बाद से पूरी तरह इस फील्ड में
1: आप आ गए। क्या बात है, आपने कहा आप गीत भी लिखते हैं
0: जी,
1: तो क्या कोई गीत है आपका लिखा हुआ आपको याद, या कुछ आप अगर शेयर करें हमारे श्रोताओं के लिए?
0: एक गीत है तो उसकी कुछ लाइंस मैं गा देती हूँ, क्योंकि मैं कवित्री हूँ बट मैं लिखती हूँ गीत भी
1: जी।
0: इसका शीर्षक है तुम बिन कोई नहीं, ये परमात्मा को मैंने डेडिकेट या समर्पित किया हुआ है। तुम बिन कोई नहीं मेरा यहाँ, सदियों से है तुमसे नाता मेरा, तुमसे मिलकर ऐसा लगा तुम ही हो मेरे यहाँ, तुम ही हो मेरे यहाँ, बस तुम ही हो मेरे यहाँ, तुम ही हो मेरे खुदा, तुम ही हो जीवन मेरा, तुम्हें पाकर जैसे आसमां पा लिया, तुमसे मिली है मुझको शफा, तुमसे ही है मेरी सारी वफा, तुमसे मिली है मुझको शफा, तुमसे ही है सारी वफा, तुम बिन कोई नहीं मेरा यहाँ, सदियों से है तुमसे नाता मेरा, दिन रात तुमको ही चाहूँ मैं, तुम्हारी ही मत पे चलती जाऊँ मैं,

देते हो मेरा हर दफा, मेरी दुनिया रोशन है तुम्ही से, मेरी खुशी जिंदा है तुम्ही से, तुम हो मेरे खुदा, तुम हो मेरे खुदा, रखते हो पलकों पे सदा, रखते हो पलकों पे सदा, कैसे करूं प्रभु तेरा शुक्रिया, कैसे करूं प्रभु तेरा शुक्रिया। जन्नत को जैसे जमी पे लाए हो, सुख अपार मुझ पर लुटाए हो, जन्नत को जैसे जमी पे लाए हो, सुख अपार मुझ पर लुटाए हो, तुमसे मिलकर कुछ ऐसा लगा, तुमसे मिलकर कुछ ऐसा लगा, तुम ही हो मेरे यहाँ, बस तुम ही हो। मैं हूँ जैसे कोई अफसरा, ऐसा मुझको लगने लगा, मैं हूँ जैसे कोई अफसरा, ऐसा मुझको लगने लगा, तुमने मुझ पर ऐसा करम किया, ऐसा करम किया, इतना ऊंचा मुझको बना दिया।

0: किया, खालीपन कुछ भी न रहने दिया, खालीपन कुछ भी न रहने दिया, भर भर के प्यार इतना दिया, नैनों क्यों मेरे भिगा दिया, भर भर के प्यार इतना दिया, नैनों को मेरे भिगा दिया, तुम ही हो मेरे खुदा, तुम ही हो जीवन मेरा, तुम ही हो जीवन मेरा, तुम बिन कोई नहीं मेरा यहाँ, सदियों से है तुमसे नाता मेरा, सदियों से है तुमसे नाता मेरा।
1: ये गीत आपने पूरा परमात्मा को समर्पित किया
2: जी,
1: आपने ऐसा लिखा, वो जो आप फील करते हैं ईश्वर के लिए वो जैसे आपने शब्दों में लिखा। तो जब आप ये गीत लिख रहे थे तो क्या भावना थी, जैसा आपने कहा कि आप वैसे गाते तो नहीं हैं, आप लिखते हैं, तो आपको ये मन में भावना थी कि ये आप किसी को देंगे या गवाएंगे, या आपको लगता था कि ये मैंने अपने लिए लिखा है, क्या सोच के आपने लिखा या क्या महसूस था थी इस गीत के लिए?
0: मेरा मतलब मेन पर्पस था कि ये गीत तो मैं अपने लिए लिखना चाहती, जो मेरा परमात्मा के साथ संबंध जो मैं महसूस करती हूँ, लेकिन जैसे कि मैं चाहती थी कि कोई और की आवाज में ये गीत
1: गाया
0: मतलब,
1: जाए।
0: हाँ, गाया जाए और सुने सब लोग, ताकि मतलब जैसा मैं महसूस करती हूँ परमात्मा के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो भी ऐसा महसूस करते हैं परमात्मा के लिए, तो एक मतलब उनको भी ये गीत सुनने को मिले तो उनको भी वो खुशी हासिल हो जो मुझे खुशी हासिल हो रही है, तो यही सोच के साथ मैंने ये लिखा था।
1: वंडरफुल। तो डेफिनेटली जब हम कुछ लिखते हैं तो अगर महसूस नहीं करते तो वो लिख नहीं सकते, वो कागज और कलम पे नहीं आ सकता। तो
0: जब तक भावनाएं हमारे मन में नहीं होंगी उस विषय के प्रति या उस चीज के प्रति, तब तक वो शब्दों में उस तरह से ढल ही नहीं पाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सच। तो निधि जी, एक और बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, कविताएं लिखना और कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी लेखन के भी दो अलग अलग फील्ड्स हैं बहुत
0: जी।
1: तो आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं, क्या समानता लगती है, या कैसा महसूस करते हैं हम दोनों को ही लिखते वक्त?
0: देखिए, लेखन का है वो फील्ड एक अलग है, वहां पे हमें बहुत सारा प्रैक्टिकल होके भी सोचना पड़ता है, बहुत सारी मतलब भावनाओं के साथ ही हम नहीं हमेशा लेखन कर सकते, हमें जो सच्चाई है समाज की या जो हमारे विषय है उसके ऊपर हमें रिसर्च भी करना पड़ता है, और बहुत सारे लोगों से बातचीत करके हम कोई लेख तैयार करते हैं और फिर वो लिखते हैं, और वो समाज से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारे मतलब महिलाओं से रिलेटेड, कोई भी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है लेख हमारा, लेकिन उस पे हमें रिसर्च जरूर करना पड़ेगा, और वो इतना मतलब एक जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी कई बार उसमें शामिल किए जाते हैं, लेकिन जो कविताएं होती हैं, गीत होते हैं, ये जो हैं ये सारे बहुत भावनात्मक पहलू से संबंधित होते हैं, जो हम समाज से भी हम चीज़ें देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, मतलब बहुत सारे विषय हैं जो जिन पे आधारित होते हैं, लेकिन मेनली इनमें भावनाएं मेन होती हैं और उन्हीं के आधार पे हम लिखते हैं, इसमें कोई रिसर्च वर्क या कुछ किसी से बातचीत के आधार पे ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट ये है कि दोनों में समानता अगर देखें तो यही होती है कि लेखक जो होता है वो उसके विचार दोनों में ही आ जाते हैं, चाहे वो गीत होंगे, कविताएं होंगी या लेखन होगा, तो हमारे विचार तो इनमें आते हैं, हम अपने मन की जो भावना है, लेकिन वो लिखने का जो पैटर्न होता है वो फॉर्मेट चेंज हो जाता है दोनों में, वो भावनात्मक विषय हमारी फीलिंग्स पे आधारित होते हैं जो गीत और कविताएं हैं, हालांकि वो विषय हम वहीं से उठाएंगे, अपने समाज से ही उठाएंगे, पर लेखन में होता है कि हमें खाली अपनी फीलिंग्स नहीं डाल देनी है, वो सच के करीब होने चाहिए, उसमें जो फैक्ट्स हैं उनको शामिल करना पड़ेगा, लोगों के जो व्यूज हैं वो सारे शामिल करने पड़ेंगे, ये मेन डिफरेंस आ जाता है।
1: तो उसके लिए अगर मान लीजिए कोई कंटेंट राइटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है तो क्या स्किल्स होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग?
0: मेनली अगर कोई कंटेंट राइटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है तो उनको थोड़ा सा लिखने की मतलब उनकी एक शैली उनको डेवलप करनी पड़ेगी, अगर होती है कुछ लोगों में तो फिर वो लेखन के फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, शब्दकोश अपना अच्छा बनाना पड़ेगा, जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में हमें थोड़ा कमांड होना चाहिए अच्छा, तो फिर इस फील्ड में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने कोई डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है. हालांकि अगर आप प्रोफेशनल एक राइटर बनना चाहते हैं तो वो भी आजकल जरूरी हो गया है कि आपके पास डिप्लोमा या डिग्री हो. लेकिन अगर आप ऐसे शौकिया तौर पे लेखन करना चाहते हैं तो इस फील्ड में आप आ सकते हैं. अगर आपका रुचि है, लेखन में रुचि है, आपका शब्दकोश आप अच्छा रख सकते हैं और आप भावनाओं को एक्सप्रेस करने का अगर आपका मतलब एक आपके अंदर वो
1: काबिलियत है,
0: हाँ एप्टीट्यूड है, तो इस क्षेत्र में आप आके बहुत आगे बढ़ सकते हैं और ये क्षेत्र आपको बहुत
1: बहुत कुछ देगा,
0: बहुत कुछ दे सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अच्छी पहचान आप बना सकते हैं. और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि लेखन के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों के दिलों में आ जाते हैं, दिलों में लोग बिठाते हैं और बहुत सम्मान भी हमें मिलता है. जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं, वो चीज नहीं है. खाली इस क्षेत्र में सम्मान और एक लोगों का प्यार बहुत
1: है,
0: ये मैंने देखा है.
1: क्या बात है, मस्त है. तो कोई और ऐसी कविता निधि जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सुनाएं जो आपके दिल के बहुत करीब हो या आपको बहुत पसंद हो, या जैसा आपने कहा लोगों का प्यार मिलता हो, जिससे आपको लगा कि हाँ लोगों ने बहुत प्यार दिया ऐसे.
0: जी बिल्कुल, ये कविता है जो हमारे रिश्ते जो हैं उन पर आधारित है कि आजकल हमारे रिश्तों में मतलब वो जो अपनापन जो खींच है वो थोड़ा कम हो रही है, तो उसको कैसे हम बरकरार रखें. चाहे कोई भी रिश्ते हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, वो पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्तों के साथ रिश्ता हो, या परमात्मा के साथ हमारे जो संबंध हैं, तो कैसे रिश्तों में एक ताजगी हम रखें, कैसे रिश्तों में प्यार स्नेह रखें, उस पर आधारित है मेरी ये कविता. आपके सामने रख रही हूँ. रिश्तों का सौंधापन, रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है. रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है. रिश्ते तो हमें जोड़ते हैं, हम खुद ही उन्हें तोड़ते हैं. विकारों के वशीभूत होकर रिश्तों को छोड़ते हैं, झूठे अहम के चलते अपनों से भी मुंह मोड़ते हैं. झूठे अहम के चलते अपनों से भी मुंह मोड़ते हैं. रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है. प्रेम वात्सल्य की गुनगुनी धूप, अपनेपन की खाद. प्रेम वात्सल्य की गुनगुनी धूप, अपनेपन की खाद. मीठे बोल का शीतल जल रिश्तों में प्राण भर देता है. मीठे बोल का शीतल जल रिश्तों में प्राण भर देता है. रिश्ते सहज सरल समरस बन जाते हैं. रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है. रिश्ते मुरझा ना पाएं, ध्यान हमें रखना है. रिश्ते मुरझा ना पाएं, ध्यान हमें रखना है. प्रेम का छिड़काव उन पर करते रहना है. प्रेम का छिड़काव उन पर करते रहना है. मधुरता और अपनत्व की धूप से उनको पोषित करना है. शीतलता की बारिश उन पर करते रहना है. रिश्ते सौंधे और सुंदर बने रहेंगे सदा और सर्वदा. रिश्ते सौंधे और सुंदर बने रहेंगे सदा और सर्वदा. रिश्तों का सौंधापन खूब कशिश करता है, जी भर जीने का मन करता है. जी भर जीने का मन करता है.
1: बहुत सुंदर. रिश्तों का सौंधापन, मतलब ये कैसे रिलेट किया आपने? हम जानते हैं वो सौंधी सौंधी जो खुशबू होती है वो तो बहुत आकर्षित करती है, पर रिश्तों का सौंधापन क्या है? थोड़ा अगर आप समझाएंगे मतलब किस चीज ने प्रेरित किया आपको ये लिखने के लिए, और रिश्ते आपके लिए क्या मायने रखते हैं वो भी अगर आप बताएं.
0: ये मतलब जैसे सौंधापन हम देखते हैं ना, बहुत मतलब खुशबू होती है एक बहुत प्यारी सी, तो वही हम खुशबू अपने रिश्तों में भरें तो फिर वो रिश्ते हमारे हमेशा सुंदर बने रहेंगे और हमारे रिश्तों में प्यार हमेशा बना रहेगा. तो वही मैंने कहा कि वो जैसे सौंधापन हमको, चाहे वो बारिश की बूंदें जब पड़ती है मिट्टी पे, तो मिट्टी से एक सौंधेपन की खुशबू आती है. पहले जमाने में वो जो दाल माताएं बनाती थी वो चूल्हे पे, उसमें एक सौंधापन आता था जो मिट्टी का बर्तन होता था. तो इस तरह हम वो सौंधापन अपने रिश्तों में भी अगर हम लाएं, वो मीठापन, तो हमारे रिश्ते बहुत सुंदर बने रहेंगे. बहुत रिश्तों में हमेशा एक ताजगी बनी रहेगी, एक अपनत्व बना रहेगा, स्नेह भावना बनी रहेगी. और मेरे लिए रिश्ते मेरे जीवन में बहुत बहुत मायने रखते हैं. तो बचपन से ही मैंने अपने रिश्तों को मतलब बहुत महत्व दिया है जीवन में, और चीजों से ज्यादा हमेशा मैंने रिश्तों को महत्व दिया है. तो मैंने देखा है कि बाकी सब चीजें मेरे जीवन में हमेशा अच्छी हुई हैं क्योंकि लोग मेरे साथ हैं, रिश्ते मेरे मजबूत हैं, तो मेरे मन की स्थिति भी हमेशा अच्छी है और लोगों की दुआएं मुझे मिलती हैं जब अपने रिश्तों से जुड़ी रहती हूँ. तो कहीं ना कहीं मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे मुझे सीखने को मिलता है, एक मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहा है. एक बुरे वक्त में साथ मिला है रिश्तों का, अच्छे बुरे वक्त में. तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते हमेशा अच्छे बना के रखने चाहिए, चाहे वो घर के लोगों से रिश्ते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां पे हैं, क्योंकि इन सब की ब्लेसिंग्स और इन सब का साथ जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और परमात्मा से हमारा रिश्ता वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो उनसे अगर हम अपना रिश्ता अच्छा बनाए रहेंगे तो बाकी सारे रिश्ते भी कहीं ना कहीं हमारे अच्छे बने रहेंगे. और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में रिश्ते. मेरे हिसाब से तो मेरी लाइफ में एक मतलब जो बोलते हैं ना कि लाइफ लाइन है रिश्ते मेरी लाइफ के.
1: क्या बात नीति जी. लेकिन रिश्तों को बरकरार रखने के लिए जो आपने कहा, ये सब पाने के लिए आज की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो चुकी है. सब अपने अपनी तरह से जीवन जीना चाहते हैं, जो गलत भी नहीं है. और फिर भी और समय भी बहुत कम होता जा रहा है सभी के पास. तो कैसे, मतलब आपका क्या कोई फॉर्मूला है या कोई चीज़ है जिसने आपके रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काम किया, जो आपको लगता है कि दूसरों को भी मदद कर सकती है?
0: हाँ, मुझे लगता है कि आज की लाइफस्टाइल, जैसे आपने कहा, मैं भी मानती हूँ कि सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और एक दूसरे के लिए इतना टाइम भी नहीं दे पाते आजकल हम लोग. और मतलब दूरियां भी बढ़ गई हैं, मतलब फिजिकल डिस्टेंस भी हो रहे हैं आजकल, क्योंकि कोई किसी शहर में रह के काम कर रहा है, कोई यहाँ रह के. लेकिन हम मन से तो जुड़े रह सकते हैं ना. तो मन की भावना हम सभी जो हमारे अपने हैं या जो भी लोगों के हम संपर्क में हैं, संबंध में, उनके लिए मन की भावनाएं अच्छे रख सकते हैं. और साथ में हम बीच बीच में उनसे अगर पॉसिबल हो तो उनके साथ कुछ समय बिताएं. कोई ओकेशन है उस समय हम आपस में मिलें, या फिर कभी हम लोग फोन से भी बात कर सकते हैं जिन लोगों से मिलना पॉसिबल नहीं है. और मान लीजिए कि हम किसी को हमारी मदद की जरूरत है तो उस समय हम उस रिश्ते के साथ जरूर खड़े हों, समय निकाल कर उनके सुख दुख में. तो जरूरी नहीं है कि हम उनसे रोज ही मिलें, रोज ही बात करें, या उनको बहुत सारे अच्छे गिफ्ट दें, या फिर मतलब बाहरी जो दिखावे की चीजें वो करें, मगर हम उनका दिल से साथ दें रिश्तों का. और मतलब रिश्तों में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा सा सहनशील बने. और मतलब जो भी हमारे रिश्ते हैं उनको बरकरार रखने के लिए अगर हमें सैक्रिफाइसेस भी कुछ कुछ करने पड़ते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज बहुत स्मूथ रहती है रिश्तों में. बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारी आपस में मतभेद भी हो जाते हैं, पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग को भी हम कम्युनिकेशन के थ्रू खत्म करें. रिश्तों में कभी भी मन मुटाव की भावना पैदा नहीं होने दें और अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने दें, तो हमारे रिश्ते अच्छे रह सकते हैं और हम लोगों से जुड़े रह सकते हैं जिन लोगों से हम जुड़े रहना चाहते हैं.
1: मतलब माफ कर दें अगर कुछ हो भी जाए तो.
0: जी जी बिल्कुल,
1: उसको माफ लेकर बैठे
0: उसको लेकर बैठे नहीं, और वो जो वाइब्रेशंस हैं वो हमेशा कोशिश करके पॉजिटिव रखें दूसरों के प्रति भी. क्योंकि हो सकता है, देखिए हम सभी अलग अलग जगहों से आए हैं और हमारे संस्कार स्वभाव कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं. ये सोचे कि उनका स्वभाव हमसे थोड़ा अलग है, ये नहीं कि मैं ठीक हूँ और वो गलत है. वो भी अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूँ, बस हमको तालमेल बिठाने की जरूरत है, एडजस्टमेंट की जरूरत. अगर ये सोच रखेंगे तो हमारे रिश्ते कभी किसी के साथ खराब नहीं हो सकते. और जहाँ अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो हम थोड़ा सा साइलेंट हो जाए उस समय, और बाद में जो भी बात है वो आपस में बातचीत करके खत्म कर लें. बस ये सब चीजें अगर हम अपनी लाइफ में सोच में रखेंगे तो हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहेंगे और

0: हमेशा मतलब हमारे बीच जो है प्रेम और स्नेह बना रहेगा रिश्तों में। और मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं रिश्ते तभी खूबसूरत रह सकते हैं, हमारी सोच अच्छी रहेगी तो दूर रहकर भी हमारे रिश्ते आपस में बहुत अच्छे रह सकते हैं।
1: निधि जी, जैसे आपने रिश्तों के बारे में बात की और उससे पहले हमने परमात्मा के साथ जो संबंध की बात की, अब अगर थोड़ा सा प्रकृति पे आए, आपने क्योंकि लिखना जब शुरू किया था तो आपने कहा वो चिड़िया पे है ना, वो पेड़ों को देखा वो हाँ। वहां आपने फिफ्थ क्लास में लिखना शुरू किया, तो प्रकृति के लिए भी अगर आपने कोई कविता लिखी हो तो वो हमें जरूर सुनाए हमारे श्रोताओं के लिए। कि हम आबू में रहते हैं और आबू सराबोर है प्रकृति के जैसे वरदानों से, ना बहुत सुंदर प्रकृति का स्थान है ये,
0: बहुत सुंदर ये जगह है। यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे भी बहुत प्रकृति के नजदीक फील होता है और लगता है प्रकृति जो कुछ कहना चाहती है उसे सुनना चाहिए और उसको महसूस करने का बहुत अच्छा एक जरिया है ये आबू। तो मैंने जो मतलब मैं भी प्रकृति के शुरू से बहुत नजदीक रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रकृति के साथ समय बिताना। तो मेरी ये कविता प्रकृति से संबंधित है और समर्पित है। जीवन और प्रकृति। जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी, क्या आपने ये बदलाव महसूस किया? जीवन का यह नया अंदाज असाधारण सा, फिर से हम पुराने समय में पहुंच गए हैं, जड़ों से जैसे जुड़ने लगे हैं, प्रकृति के बेहद करीब हो रहे हैं, सब कुछ लग रहा है नया नया। शांति से बिताएं कुछ पल प्रकृति और अपने संग, शांति से बिताएं कुछ पल प्रकृति और अपने संग, दिल में भरें खुशी और मस्ती के रंग। जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी, कलयुगी समर के इस दौर में मुश्किलों के बीच भी कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। ताजी और ठंडी हवा आनंदित कर रही है, धूप गुनगुनी और प्यारी लग रही है, अपनों से समरसता बढ़ रही है, पर क्या अपने अंदर झांक कर देखा है? जरा खुद को टटोलो और पूछो, क्या मानव सृष्टि बदलने वाली है? क्या नई दुनिया आने वाली है? प्रकृति भी इशारा दे रही है, संभल जाओ मानव वरना देर हो जाएगी। पछतावे के अलावा हाथ में सिर्फ मिट्टी आएगी, पछतावे के अलावा हाथ में सिर्फ मिट्टी आएगी, प्रकृति भी फिर तांडव मचाएगी, प्रकृति भी फिर तांडव मचाएगी और जीवन रूपी गाड़ी थम जाएगी, और जीवन रूपी गाड़ी थम जाएगी, फिर से ये महफिल ना सच जाएगी, फिर से ये महफिल ना सच पाएगी। जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी, कलयुगी समर के इस दौर में मुश्किलों के बीच में कुछ तो अच्छा हो रहा है। जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी,
1: जीवन बदल रहा है और प्रकृति भी। और सच में हमने प्रकृति के साथ बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत गलत किया है, प्रकृति का विकराल रूप भी इंसान ने देखा है।
0: हाँ, लेकिन बहुत हमने देखा है, मतलब क्योंकि अब आजकल जो दौर चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि प्रकृति भी अपनी सीमाएं लांघ रही है, बहुत जगह प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं क्योंकि हमने प्रकृति का बहुत ज्यादा शोषण किया है, प्रकृति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है मानव दिन पर दिन। तो इसीलिए ये सारी हम देख रहे हैं, प्रकृति भी फिर वो रिएक्शन दे रही है ना आपको, जब हम उसका इतना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी भी हमारे पास समय है कि हम संभल जाएं वरना फिर हो सकता है बहुत देर हो जाए और फिर विनाश की, मतलब एक प्रकृति भी ऐसे रूप में आ जाए,
1: प्रकृति भी अपना विकराल रूप और दिखाए,
0: और ज्यादा विकराल रूप सामने आएगा तो फिर मानव को बहुत ज्यादा उस समय मतलब पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।
1: वो कहते हैं ना, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो अब हमें प्रकृति प्रेम को और बढ़ाना है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम प्रकृति की बात पे आई है, कैसे मतलब प्रकृति के साथ और करीब कैसे खुद को महसूस करें या कैसे वो उस नाते को और स्ट्रॉन्ग किया जाए?
0: हाँ, प्रकृति के साथ हम अपना नाता स्ट्रॉन्ग तभी कर सकते हैं जब हम प्रकृति का संरक्षण करने की दिशा में आगे बढ़े, मतलब पेड़ पौधे हरियाली है उसको मतलब और हरियाली अपने आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाएं, और मतलब जो हमारे शहरों में जो जहाँ पे भी मतलब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो हम लोग उस चीज को भी देखें कि हम नष्ट नहीं करें पेड़ पौधों को, और जो हमारा जैसे पानी है वो भी एक हमारा प्राकृतिक एक स्रोत है, प्रकृति से जुड़ा हो, तो उसको भी हम मिसयूज नहीं करें, उसको बर्बाद नहीं करें, उसका भी हम संरक्षण करें, तो हम प्रकृति के करीब महसूस कर सकते हैं जितना हो सके हम, मतलब पेड़ पौधों का, जल का, इन सब का मतलब हम दुरुपयोग नहीं करें, इसका सदुपयोग जितना जितना हम करते जाएंगे तो हम प्रकृति के और नजदीक आते जाएंगे, और मतलब उनको अपना एक दोस्त समझें, ये नहीं सोचे कि ये तो मतलब पेड़ पौधे हैं, इनका क्या है, इनको कैसे भी इस्तेमाल करो, इनके अंदर तो कोई जान नहीं है, ये तो एक जगह खड़े रहते, निर्जीव नहीं माने, वो सजीव है हमारे जैसे ही, तो अगर हम उनको अपने जैसा ही समझेंगे तो हमारे उनके प्रति भी शुभ भावना रहेगी और हम उनको भी अपना एक सच्चा मित्र मान के चलेंगे, तो कभी हम उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे और हमारा उनसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या कनेक्शन बनेगा और हम नजदीक रहेंगे, और वो प्रकृति की भी एक भाषा होती है जो अगर हम एक शांति में रहकर अगर उस भाषा को सुनने की कोशिश करेंगे तो हमें वो भाषा समझ में आएगी कि प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है, तो वो हम सुनने की कोशिश करें कि हमारी प्रकृति हमसे क्या चाहती है, जैसे हम प्रकृति से बहुत कुछ चाहते हैं और बहुत कुछ प्रकृति हमको दे भी रही है, देती रही है सदियों से, लेकिन उसको भी जो हमसे चाहिए वो हम कभी हमने उस चीज के बारे में नहीं सोचा, केवल हमको क्या चाहिए प्रकृति से उसी के बारे में हम सोचते आए सदियों से, तो अब हमें जरूरत है कि हम इसको अपने फोकस को चेंज करें और प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है उसके बारे में भी हम सोचें।
1: ये बात मुझे सच में बहुत अच्छी लगी निधि जी की, हम देखते हैं हम जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, हम वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं,
0: अगर बहुत अच्छा लगता है, अगर पेड़ पौधे पहाड़ प्रकृति नहीं हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा,
1: बिल्कुल
0: बहुत नीरस हो जाएगा, प्रदूषण कितना हो जाएगा हमारे शहरों में, हमारे गाँव में, हर जगह, और बारिश जो प्रकृति की देन है हमको वो नहीं हमें मिलेगी, तो सोच लीजिए कैसा जीवन होगा मानव जीवन।
1: सच में जब हम जाते हैं तो हम इतना इंजॉय करते हैं और हम रिलैक्स हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, तो ऐसी प्रकृति जो हमें हर टेंशन से फ्री करती है, जो हमें खाना देती है, पानी सब कुछ मिलता है, तो हम क्यों ना उसकी आवाज सुने। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोस्तों जब आप भी जाते हैं किसी भी सफर पर या फिर ऐसे यूं ही कुछ वक्त अपने लिए जब आप निकालते हैं तो प्रकृति की आवाज सुने, सच में वो हमसे क्या कहना चाहती है, वो क्या हमसे एक्सपेक्ट करती है। या बहुत सुंदर ये बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है, करके देखिएगा जरूर, मैं अपने दोस्तों से कहूंगी यहाँ पे। और निधि जी मैं आपसे जाते जाते एक और प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने महिलाओं की भी बात करी थी, है ना, जिन टॉपिक्स पे आप लिखते हैं उसमें आपने कहा था महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी आप लिखते हैं, तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि अगर आप कुछ बताएं कि आपके क्या विचार हैं उस बारे में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, तो अभी किस प्रकार के सशक्तिकरण की जरूरत है, क्या अभी वो तरीका, मतलब क्या अभी वो नीड बदल गई है या चेंज हो गई है, कौन सा सशक्तिकरण चाहिए, और फिर जाते जाते अगर आप हमें कोई कविता भी आपकी जरूर सुनाएं।
0: महिलाओं को तो देख रहे हैं हम कि आजकल महिलाओं समाज में आगे बढ़ रही हैं, उनको मतलब हर क्षेत्र में महिलाएं अच्छा कर रही हैं, क्योंकि जागरूकता हमारे समाज में बढ़ी है, तो इसी वजह से आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो भी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनको आर्थिक तौर पर इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होना सिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और पहलू भी है कि महिलाएं जहां एक और भारी तौर पे तो उनके अंदर सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मूल्य हैं, हमारे संस्कार है, वो भी बच्चियों में आजकल के पेरेंट्स को देने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कहीं ना कहीं वो संस्कार और वैल्यूज की मिसिंग भी हो रही है हमारी जो नारी शक्ति है उसके अंदर, जिसकी वजह से हमारे समाज में, हमारे परिवार में उसका बहुत गहरा प्रभाव हो रहा है कि महिलाएं जहाँ एक और वो आर्थिक तौर पे पावरफुल बन रही हैं, एम्पावर हो रही हैं, और वो इंडिपेंडेंट सोच वाली हो रही हैं, वो होशियार हैं, वो हर क्षेत्र में आगे प्रगति कर रही हैं, लेकिन जो अपने परिवार को साथ लेके चलना चाहिए और मतलब सबकी आदर सम्मान जो महिलाओं को मतलब करती हैं महिलाएं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं उस चीज को नहीं समझती हैं, लेकिन एक समाज में कुछ मतलब बहुत सारी वो भी हो रही है, महिलाओं के आर्थिक तौर पे सक्सेसफुल होने के साथ साथ जो वैल्यूज और जो संस्कार हैं उनकी महसूसता, मैं वो शक्तियां कम कहीं ना कहीं हो रही है महिलाओं में, जिसकी वजह से आजकल हम देख रहे हैं कितने सारे तलाक हो रहे हैं हमारे समाज में, मतलब डाइवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है क्योंकि महिलाएं सहन शक्ति जो है, जो पहले की माताओं में हुआ करती थी, स्नेह की भावना, स्नेह की शक्ति, प्रेम की शक्ति, जिसके माध्यम से वो पूरे परिवार को बांधे रखती थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है आजकल। महिलाएं भी जैसे अपने ही बारे में ज्यादा सोचने लगी हैं आजकल, या अपने बच्चों के बारे में सोचने लगी हैं बस, या मतलब एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम डेवलप होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो रहे हैं, मतलब पति के साथ या हस्बैंड के साथ में वो महिलाएं उस तरीके से तब अपने परिवार को नहीं साथ लेके चल पा रही हैं, जैसे पहले महिलाओं के अंदर ये भी वैल्यूज और संस्कार रहते थे कि वो पूरे परिवार को बांध के चलती थी, परिवार की धुरी बन के चलती थी, भले ही वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, आर्थिक तौर पे वो इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, लेकिन अपने परिवार में वो बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती थी, वो रोल कहीं ना कहीं तो महिलाओं थोड़ा मिसिंग,
1: महिलाओं का मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि अब शायद हम जैसे जैसे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो गई हैं, उनको ये भी समझ में आया है या ये भी लगता है कि परिवार को बांधने का कार्य सब मिलकर करें और उसमें पुरुष भी सम्मिलित हों, उसमें ये डिफरेंस ना हो कि ये सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है, सभी की वो जिम्मेदारी होनी चाहिए।
0: हाँ, होनी चाहिए सबकी, पुरुषों की भी होनी चाहिए महिलाओं के साथ साथ, पर कहीं ना कहीं जो है ना परमात्मा ने भी जो महिलाएं हैं उनको जो शक्तियां दी हुई हैं, जैसे स्नेह की, प्रेम की शक्ति, सहन शक्ति, वो पुरुषों से ज्यादा दी हुई है, तो अगर महिलाएं उस शक्ति को यूज करेंगी तो फिर वो ज्यादा मेजर रोल प्ले कर सकती हैं, जैसे पालना की शक्ति है ना, ये महिलाओं के पास है, पुरुषों के पास ये शक्तियां उतनी नहीं है, तो इसलिए महिलाएं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल परिवार को बांधने में कर सकती है, पुरुषों का भी रोल होता है और वो उनको निभाना भी चाहिए, पर अगर महिलाएं उनका साथ देंगी पूरी तरीके से, जैसे पुराने जमाने में हमारी माताएं बहनें दिया करती थी, तो परिवार कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से चलते थे और एक साथ रहते थे, कोई तलाक और डाइवोर्स पुराने जमाने में नहीं हुआ करते थे, जबकि पुराने जमाने में बहुत सारी
1: दिक्कतें होती थी, बिल्कुल
0: होती थी, लेकिन
1: वो तो हर समय होती है, जरूर
0: हो रहा है कि और महिलाएं मतलब वो भी सहन शक्ति खो रही हैं कहीं ना कि आर्थिक तौर पे वो क्योंकि सशक्त हो रही हैं, तो उनको लगता है कि हमें इतना सहन नहीं करने की जरूरत है, हमें कोई बात किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ मतलब मेरे को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए परिवार में जितना मेरे पति को मिलता है, मैं क्यों झुकूं, मतलब ये सब
1: झुकना तो दोनों को चाहिए, जहां जहां
0: जरूरत है दोनों झुकें, और मतलब ये और दोनों मतलब एडजस्ट करके चलें,
1: जैसा आपने पहले कहा था
0: जी,
1: क्योंकि परिवार की जहां बात होती है
0: मतलब
1: वहां एक दूसरे को माफ करना, सहन करना, हर

0: दोस्तों, अक्सर जब हम घूमने जाते हैं, हम कौन सी जगहों का सिलेक्शन करते हैं अपने लिस्ट में घूमने के लिए? या तो समुन्दर के किनारे जाना पसंद करते हैं, या जंगलों आदि में जाना पसंद करते हैं, या किसी ऐसे तीर्थ स्थान पर जाना पसंद करते हैं जहां पर मन की शांति मिले। ऐसे ही कई स्थानों में से एक होता है पहाड़ों पर जाना। मैं आपको क्या समझाऊं पहाड़ों पर जाने का सुख क्या होता है, क्योंकि आप तो स्वयं ही पहाड़ों की गोद में रहते हैं, माउंट आबू में रहते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पहाड़ की जो पूरा विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, हिमालय की पहाड़ियों की। और उन पहाड़ियों की गोद में बसा हिमाचल, हिमाचल के एक बहुत सुंदर से प्रांत में आज हम आपको लेके जाने वाले हैं, जिसका नाम है सिरमौर। जैसा कि नाम है, सिरमौर अर्थात सिर का जो मुकुट है, ऐसे ही संस्कृति के ताज में आज हम आपको लेकर के जाना चाहेंगे। ये सिरमौर जो है, ये भारत की संस्कृति का सिरमौर आज एक विशेष व्यक्ति की वजह से बना है। आज हम मिलने जा रहे हैं श्री विद्यानंद सरेख जी से, जो कि राजगढ़ के सिरमौर जिले से हैं, जो लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक नृत्य और लोकगीत को लेकर के अपने जीवन को उन्होंने ऐसा संजोया है कि आज उनका जीवन हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन चुका है और यशस्वी भारत कार्यक्रम का हिस्सा। आइए मिलते हैं विद्यानंद सरेख जी से, जिन्हें भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। तो विद्यानंद सरेख जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार जी, धन्यवाद जी, ओम शांति।
0: ओम शांति। कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ जी, ठीक हूँ। 85 साल पूरे होने को जा रहे हैं। ठीक है, अभी वक्त ना हो आपसे बात करने का।
0: जी, हमें भी आपसे बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपके जैसा एक विद्या का पुजारी और पहाड़ों से आने वाला, जिनका हृदय बहुत साफ, कोमल और शुद्ध होता है, उनसे हमें बात करने का मौका मिल रहा है। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि रेडियो मधुबन भी पहाड़ों में ही बसता है, क्योंकि शांतिवन, जहां पर रेडियो मधुबन का केंद्र है, वहां और आसपास के माउंट आबू के जितने भी हमारे श्रोता साथी हैं, वो भी अपने साथ एक पहाड़ी दिल लेकर के चलते हैं, जो कि हम सब जानते हैं। दुनिया भर में हर कोई कहता है कि पहाड़ लोग बहुत अच्छे होते हैं। और तो आज एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक आवाज पहुंच रही है, ये देख करके बड़ा मजा भी आ रहा है और आपसे मिलने का अलग खुशी भी है हमें।
1: असल में इन पर्वतों में युगों की, सदियों की विरासत छुपी है। वो सांस्कृतिक परंपरा हो, धार्मिक परंपरा हो, या सामाजिक दृष्टिकोण हो, लेकिन इन कुछ बची है और उसको विरासत में हम बरकरार रखने की देव परंपरा के साथ जुड़े हैं।
0: जी, तो विद्यानंद जी, मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। जैसे कि आपने कहा, संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर, आप पहाड़ों की कहानियां जन जन तक पहुंचाते हैं, लेकिन आपकी कहानी हमें सुनने का मन है। हम सुनना चाहते हैं आपकी कहानी, आपकी जुबानी। जब आपने कहानियां सुनना शुरू किया, आपको कैसे उन कहानियों ने प्रेरित किया? आपका बचपन कैसा रहा? हम सुनना चाहेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी। कैसे शुरुआत हुई आपके सफर की?
1: असल में कहानी तो बड़ी लंबी है, और लेकिन ये जरूर है कि ये सांस्कृतिक परिवेश और परंपराओं से जुड़ा मेरा जीवन रहा है। 4 वर्ष से लेकर के मन संभाला है, और उसके बाद निरंतर शिक्षा काल में भी, और जब शिक्षा के बाद मुझे सरकारी नौकरी में अध्यापन का कार्य मिला उस वक्त भी, फिर जब सामाजिक कार्य में मैं 40 वर्षों से निरंतर रहा, उसमें भी निरंतर मेरा प्रयास रहा है, जिसमें मैंने कम से कम 35 पुस्तकें हिमाचल प्रदेश के, जो गिरी नदी बहती है, बड़ी पवित्र धारा है, इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है, और सतयुग की ये नदी है, सतयुग में, और ये गाथा गीतों में है हमारी है। सतयुग में एक साधु स्वर्ग से गंगा जल लाया था, और वो यहाँ पर कोट खाई और युबल है, दो शिमला क्षेत्र के तहसीलें हैं, उनके मध्य एक उपरधार है। आज भी वहां पर गिरी गंगा का मंदिर है। मैं तो गिरी गंगा पर भी काम कर रहा हूँ, तो ये वहां पर उसका कमंडल गिर गया, और उस बड़ी आवाज आई कि गिरी गिरी गंगा, गिरी गंगा, और गिरी गंगा नाम थी, गिरी गंगा गिरी थी। और वो अब वो कहानी तो ये है, ये फिर वो बहती हुई यमुना में डाक पत्थर में मिलती है, और इसके दोनों ओर हमारा सिरमौर जनपद है, सिरमौर का एरिया भी है, और आज शिमला, सोलन, और कुछ ये आपका ठियोग का एरिया, ये सारा दूसरी तरफ ही है, गिरिवार और गिरिपार में, ये दोनों ओर का क्षेत्रीय और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की को हम प्राकृतिक दृष्टि से तीन भागों में विभक्त करते हैं। एक है ये गिरी गंगा का या महासुवी क्षेत्र, और दूसरा है डोगरी बोली का क्षेत्र जो कांगड़ा हमीरपुर के क्षेत्र है, चंबा के क्षेत्र है, मंडी के क्षेत्र है, और तीसरा है वहां पर डोगरी का प्रभाव है, और तीसरा है भूटी बोली का प्रभाव जो लामाओं का है, वो है जनजातीय क्षेत्र किन्नर और क्या कहते हैं लाहौल स्पीति। तो इन तीन प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश में हिमाचल प्रदेश की अमूल्य धरोहर है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने क्षेत्र की, वो जहाँ पर मैं हूँ और जहाँ मैंने लोक साहित्य पे, लोक गीतों पे, लोक नृत्य पे, लोक नाट्य पे और साहित्य पे के विभिन्न पहलुओं पे, उपन्यासों पे काम किया है, तो वो क्या कहते हैं एक धरोहर है। और शायद और फिर अनुवाद भी किए हैं, गीता का अनुवाद किया है, भर्तृहरि त्रिशतक का अनुवाद किया है, रविंद्रनाथ टैगोर की 51 कविताओं का गीतांजलि का अनुवाद किया है, और वो क्या कहते हैं अब मैं 4 वेदों का सिरमौरी में अनुवाद कर रहा हूँ। ये तो छोटे छोटे ऐसे काम है जो मेरे निरंतर चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरे साथ एक संस्था जुड़ी है जो निरंतर हम जो कुछ सोचते हैं, लोक संस्कृति की खोज करते हैं, उसको प्रैक्टिकल रूप देते हैं वो, और वो भी 22 साल से है, और वहाँ पर भी गुरु शिष्य परंपरा चली हुई है। उस गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन भी मैं भली प्रकार भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से कर रहा हूँ, और इसी दौरान मुझे माउंट आबू आने का भी मौका मिला, और मैंने वहाँ हमें वहाँ पर मेरा बहुत सा जो सम्मान है वो यहाँ है,

0: गिरी नदी के किनारे ही क्या कहते हैं, ये तो ये सौभाग्य हमारा कि इसी के किनारे महाराज बलि को, बलि सौवा यज्ञ, एक ही राजा बलि था जो धर्म के रास्ते से स्वर्ग का, स्वर्ग पर विजय पाना चाहता था। तो वो जब सौवा यज्ञ यहाँ मेरे गांव के नजदीक बलग गांव है, बलग बलि गया था जहाँ, तो वहां पर त्रिवेणी बनती है, उस वक्त की वास्तविक त्रिवेणी वो है, वो गिरी गंगा ऊपर से निकलती थी, पाताल नदी टूड़ेश्वर है यहाँ पर सबसे ऊंचा 12-13 हजार फुट की ऊंचाई का, वहां से पाताल नदी निकलती थी और साथ में उसके साथ ही पार बलग के साथ सात स्वर सात पानी, ये नेचुरल बात कह रहा हूँ, सात पानी निकलते हैं, वहाँ स्कूल भी है एक तुंगेश जगह में, वहां से सात स्वर निकलते हैं और वो वहाँ बलग में मिलते हैं और वहाँ ये बलग में उसने सौवा यज्ञ करना चाहा, लेकिन देवताओं ने कहा भी अगर ये राक्षस के हाथ में दिए, ऐसा है किंवदंती है, हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन जो भी हो, लेकिन कहते हैं बामन अवतार वहां पर बामन बन के वहां आए और उन्होंने राजा बलि को पाताल का राज्य बलग में दिया है और वहीं पर ये इसी गिरी गंगा के किनारे त्रेता युग में परशुराम जी का अवतार हुआ, हमारे क्या कहते हैं 24 अवतारों में, तो वो मार रेणुका और जमदग्नि की तपस्या के फलस्वरूप गिरी गंगा के पास ही एक बड़ा तालाब है जो मां रेणुका का एक तपस्थली है और बिल्कुल मनुष्य के आकार का है उस समय, और वहीं ऊपर वो जामू का टीमा है, जमदग्नि वहां पर तपस्या करते थे, वहीं परशुराम जी ने एक शिला पर तपस्या करके त्रेता युग और संदेश दिए है। ये त्रेता युग की घटना भी इसके किनारे है। द्वापर में इसी गिरी गंगा के राह से, यमुना की राह से, कुरुक्षेत्र के मैदान से ये कौरव समर्थक सैनिक और पांडव समर्थक जो है सैनिक थे, शाठड़ और पाषण नाम थे, वो इधर आए और यहाँ की मूल जातियों पर अपना अधिक वो क्या कहते हैं अधिपत्य जमा करके यहाँ पर वर्षों तक उन पर आपस में भी लड़ते रहते, पहने तीरते, और उस काल की द्वापर काल के बाद की असंख्य गाथाएं गीते हैं, उनमें ये सारी ये गिरी गंगा का भी, देवताओं की उन लड़ाई की, हारूल बार साका पुआरा पडवायन रामायण, ये सारी ये मैंने संकलन किया है, और तो क्या कहते हैं ये सारी लोक शैली की जो लोक परंपराएं थी हैं, और फिर नेचुरल इस गिरी गंगा के दोनों ओर असंख्य देवी देवता, शिरगुल हो, महातु देवता हो, गुग्गा पीर हो, ब्रजेश्वर हो, क्या कहते हैं डूम देवता हो, मतलब ये सारे सैकड़ों देवी देवता आज भी असंख्य मंदिर है और उनके मंदिर है, और फिर प्राचीन वास्तुकला से आज भी यथापत विरासत में है। तो इस क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिला, खैर मैं तो अभी और भी काम कर रहा हूँ, और लेकिन मैं इसके जो परम शांति के लिए जो एकाग्रता की पहल जो ये ब्रह्म कुमारियों ने की है, वहाँ मुझ पर मेरे तो अपने बैठक में लगा हुआ, मैं नित्य रोज उसके सामने 2 मिनट के लिए शांति, क्योंकि हमारी एकाग्रता नहीं होगी तो कोई हम न ईश्वर के की आराधना कर सकेंगे, और क्योंकि हम भटके हुए हैं सभी लोग, तो ये छोटा सा ये जीवन है। अब इसमें मेरी पुस्तकें में कुछ तो छपी भी है लेकिन कुछ छपी नहीं, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, कोई ऐसा है नहीं, अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है कि शायद आने वाली पीढ़ी मेरी बैठक में बैठे हैं, ये पद्मश्री वगैरह ये यहाँ लगा है जो कुछ, वो कई पुरस्कार मेरे बैठक में लगे हैं, तो डॉक्टर वाई एस परमार भी इस बैठक में कई बार बैठे, अब क्या कहते हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन सब का प्रभाव, मेरा निरंतर प्रयास, मुझे नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मुझे मंजिल की ओर रास्ता लेते जाते हुए आपके क्या कहते हैं मार्गदर्शन ऐसा मिला कि हमें क्या कहते हैं माउंट आबू में भी जाने का मौका मिला, और आज आप दोबारे मुझे माउंट आबू पहुंचा रहे, मैं आपका आभार भी।
1: आभारी तो हम हैं आपके विद्यानंद जी कि आपने हमें अपने जीवन कहानी के बीच में आपने उस पूरे प्रांत की कहानी सुना दी, और साथ ही साथ हमें इतिहास और हमारे उन सांस्कृतिक धरोहरों की ओर हमारा रुझान आपने कराया, जहाँ जरूरी है कि आज के जमाने में जो लोग इतनी दौड़भाग की जिंदगी जीते हैं, कभी बैठकर के इत्मीनान से जब ये कहानियां वो सुनते हैं तो जैसे सुकून मुझे महसूस हो रहा है, मैं समझता हूँ उन्हें भी ये सुकून महसूस होगा। लेकिन जब आप कहानियां कह रहे थे कि कैसे कमंडल गिरा और उसकी वजह से गिरी गंगा नाम आया,

0: और कैसे राजा बलि की कहानी भी आपने इसमें जोड़ी और भी कई सारी बातें। लेकिन मुझे जानना है विद्यानंद सरे की कहानी, जब वो बचपन में पैदा हुआ या जिस परिवार में पैदा हुआ, कैसा परिवेश था, क्या संस्कार थे, किन चीजों ने आज के विद्यानंद सरे को प्रेरित किया कि वो इस रास्ते पे निकले।
1: ये जी, मैं एक गरीब परिवार में, मेरी माँ बाप, एक माँ थी एक बाप है, पिताजी, मैं 9वीं कक्षा में, मैं पहला यहाँ 3, 4, 5, 6 पंचायतों का एक युवक था जिसने पहली बार यहाँ मैट्रिक पास किया, फिर आगे ग्रेजुएशन भी। चलो वो तो एक बड़ी लंबी कहानी है। यहाँ पढ़ाई नहीं होती थी, फिर नहान जाना पड़ता था, 200 किलोमीटर या शिमला जाना पड़ता था, जो 100-150 किलोमीटर थी उस वक्त, ऐसी हालात थी। पिताजी जो थे मामूली सी सीने का काम करते थे, जमीन थी हमारे पास, जमीन पे काम करते थे। लेकिन मुझे वो पढ़ाना चाहते थे और डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो बीच में मेरी शादी का उन्होंने नियत कर दी। मैं 9th में पढ़ता था जब, और उन्हीं दिनों 10 प्रविष्टि क्या कहते हैं चैत्र में उनकी, मैं वो 26 की शादी थी, 10 प्रविष्टि चैत्र में वो उनका स्वर्गवास हो गया। मेरा सारा सारी व्यवस्था जो उनकी शादी थी हो गई, वो क्यों अड़े रहे, क्योंकि शायद उन्होंने जाना था। फिर माता जी ने जैसे तैसे मुझे पढ़ाया, हम दो ही रहे माँ बेटा, और फिर किस तरीके से शिक्षा हासिल की बलसन में जा करके, तिहा बलसन में जा करके, तो फिर आकर के 59 में सीधा जैसे ही मैट्रिक किया मुझे नौकरी मिल गई थी। 62-63 में मैं प्राइवेट पढ़ना शुरू किया ट्रेनिंग। ये तो बड़ी फिर लंबी कहानी है, लेकिन इस परिवेश में रह करके मेरा बचपन से ही नृत्य के लिए, माँ बाप के को भी रुचि थी संगीत से, और उनका प्रभाव, उनका आशीर्वाद भी मिला। और पहले तो अपने मनोरंजन के लिए क्या कहते अपनी इसके लिए कि भाई उनको रिझाता था मैं नाच करके गा करके, जो जो फूटे फूटे गीत थे। लेकिन बाद में फिर मंच मिल गया गांव का, करियाला हमारा लोक नाट्य है, और वहां से वहां पर भी क्या कहते सैकड़ों लोगों में मुझे वाहवाही मिलने लगी। और मेरा, और इसी तरह से मैं 57-58 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से मुझे गाने का मौका मिला। आवाज सुरीली थी, अब तो खैर आवाज भी खो चुका हूँ, लेकिन वहां पर सुप्रू हाउस में डॉक्टर केसकर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, और परमार यहाँ से MP बन करके गए थे, क्योंकि 55 में यहाँ विधानसभा खत्म हो गई थी और उन्हें पार्लियामेंट में भेजा गया था। वो सुप्रू हाउस में मुझे उनके सामने, शिमला से ऑल इंडिया रेडियो से एक बड़ी टीम गई थी, तो वहां पर तो उन्होंने डॉक्टर परमार ने मुझे हाथ पकड़ करके केसकर हाथ में दे, कहते मिस्टर केसकर विद्यानंद जो है हमारी कल की स्वीकृति की धरोहर है। खैर ये तो बड़ी लंबी कहानी है, मुझे तो मुसीबतें झेलनी पड़ी, और लेकिन क्या कहते हैं जैसे तैसे आगे बढ़ते, फिर 17-18 साल की नौकरी भी छोड़ गया, क्योंकि राजनीति वालों ने मुझे उकसा दिया, उससे भी सारा किया कराया खत्म। बच्चे थे 4-5 आधी दर्जन, वो कैसे पले, खैर जमीन है भगवान की कृपा से। ये सारी कठिनाइयां झेलते हुए मैं निरंतर लिखने का काम करता रहा, और मेरे लिखने का कई बार पहाड़ी में मजाक भी होता था, ये विद्यानंद तो नाटियां लिखता है वो, और किसको पता था भी ये नाटियां भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री मुझे यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करे। मुझे नहीं कैसे, मेरे मैंने ना अप्लाई किया ना मैंने कोई लॉबिंग की, तो ये लंबी कहानी। इसके अलावा भी यहाँ दर्जनों प्रदेश के, जिला के, इसके और फिर विदेश में भी जाने का मौका मिला। हमने विदेश में भी अपने साथ जो हमारी टीम थी उनकी वो किया है, तो ये तो ये कहानी। लेकिन उसके साथ साथ हम साथ साहित्य को, लोक साहित्य को उभारते रहे, और हिंदी में भी बहुत सारे लोक साहित्य, बहुत से विलुप्त हो रहे हमारे नृत्य, उनको हमने कोशिश की है कि हम उसको लिपिबद्ध किया जाए, क्योंकि यहाँ यहाँ जो है ये जो हमारा गिरी पार्क कहते हैं, हमारे ट्रांस गिरी एरिया ऑफ द गिरी गंगा, ये आज जनजातीय बन गया है, भारत सरकार की नोटिफिकेशन के अनुसार हाटी समुदाय है। ये सारा अनादि काल से घुमंतू था, और क्या आज भी गडरिये गर्मियों में टूरधार के जंगल में जाते हैं, और सर्दियों में गर्म इलाकों में नोएडा बोलते हैं उधर को जाते हैं। तो उनके उनके कृतित्व को, देवी देवताओं की विभिन्न परंपराओं को, उसको भी सजोना। फिर जो वास्तुकला है यहाँ की, घरों की, मकान की, देवताओं के मंदिरों की, उसका भी संकलन मैंने किया है और सुरक्षित रखा है, ताकि वो परंपरा निहित रहे। कोशिश ये की है हमने कि उस परंपरा को, उस वास्तुकला को, मूर्ति कला को यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं मुझे बड़ा सम्मान देते हैं, ताकि बने क्यों कि हमारे हमारा जो जीवन है माँ बाप के संस्कारों से, वहाँ घर के परिवेश से, संस्कार से संस्कृति की ओर जाता है, संस्कृति सभ्यता को पैदा करती है और सभ्यता से हमारा आज का परिवेश बनता है। लेकिन जब उस सांस्कृतिक परिवेश में छाया पड़ती है पाश्चात्य, वो क्या कहती है, जैसा आज पढ़ रही है धर्म पर पढ़ रही है, आज धर्म में साधु महात्मा लोग क्या कर रहे हैं, कोई झिंगुड़ बाबा है, कोई कर रहा है, देश को जब सही रास्ते में ले जा रहा है वो नहीं। लेकिन हमारे लोग अभी भी आस्था रखते हैं, जब मंदिर के जो बात होगी उसको आदेश समझ करके हम अपनी उसका पालन करते हैं, वो चाहे शिव का मंदिर है, चाहे शक्ति का मंदिर है, चाहे काली का मंदिर है, लेकिन श्रद्धा से उसका पालन किया जाता है। ये ट्रांसगिरी एरिया जो है ना, क्योंकि सिरमौर जो मैं आपको बताऊं, ये कालसिया से लेकर के आके तरोज तक, उस गिरी गंगा के क्षेत्र से आगे तक, ये सिरमौर जो था ना, सिरमौर एक साम्राज्य था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका नाम सिरमौर, सिर का मौर्य, सिर का ताज रखा था, हिंदुओं ने उनका साथ दिया था पाटलिपुत्र विजय पर। तो तब से लेकर ये राज्य था, ये कोई छोटी रियासतें तो मुसलमानों के टाइम, हुनों के टाइम लेना देना, जब रियासतें आई और कंपनी के समय में, अंग्रेजों के समय में, लेकिन उस समय ये साम्राज्य सिरमौर था। और आज भी सिरमौर जो है ना, एक जिला जनपद के रूप में प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को यथावत रखा है।
0: और आपने सिरमौर को सिरमौर बना के रखा है, क्योंकि सिरमौर का सिरमौर बने रहने के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान है। अगर इन कहानियों को, इन धरोहरों को कोई सामने ही ना लाए, तो जनमानस तक इन बातों को जानना, इनके बारे में रुचि रखना, इनको अपने जीवन में धारण करने की बात ये हो ही नहीं सकती। इसलिए जो आपका योगदान है, आपने बार बार कहा कि मैं बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ, बट हमारा दिल और आपका दिल जानता है कि कितना महत्वपूर्ण कार्य है। मेरे को एक सवाल ये था कि जब आपने कहा कि बचपन में ही आपको नृत्य का और कला के प्रति रुझान था, अक्सर ये देखा जाता है कि माँ बाप या जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, या स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, या जो दोस्त आदि होते हैं, वो सब कुछ और प्रकार की विधाओं को ज्यादा सम्मान या ज्यादा प्रेरणा देते हैं। अगर कोई कहे कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। कोई कहे मैं टीचर बनूंगा, तो बोलते हैं हाँ ये भी अच्छी बात है। अगर कोई कहे मैं किसानी करूंगा, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है भले कर लो। लेकिन जब कोई कहता है कि मैं कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, सब कहते हैं अरे बिल्कुल मत करना, वहां तो कुछ भी नहीं रखा है, तुम्हारा तो घर ही नहीं चलेगा, आदि आदि बहुत सारी बातें होती हैं। आपको भी ऐसी बातों का सामना करना पड़ा होगा, या कैसा था आपका वो समय जब आप इस विधा की तरफ झुक रहे थे, या लोक संस्कृति, लोक गीत, इनको आप अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहते थे, तो वो कैसा था आपका सफर?
1: मैं आपको एक बात बता दूंगी, मैं प्रैक्टिकल आदमी, मैं तो खुद गाता हूँ, अगर लिखता हूँ तो खुद लिखता हूँ, किसी की चोरी नहीं करता, अगर नृत्य करता हूँ तो खुद नृत्य और अभिनय की जो ट्रेडिशन है हमारी, मैं ये आपको ऐसे नहीं बता रहा कि मैं तो क्या कहते हैं मतलब साहित्यिक तौर पर, सिद्धांतिक तौर पर, मैं तालों के बारे में मैं जो हमारे लोक ताल है उस पर भी मैंने काल और ताल एक पुस्तक लिखी है और छपी तो है नहीं, लेकिन उन तालों को बजाना भी जानता हूँ और उनकी प्रस्तुति भी करना जानता हूँ, और उसके पीछे क्या लॉजिक है हमारा वो भी, क्योंकि मैंने हर काम के डेप्थ पर जाकर के काम किया है। फिर अलग अलग विधाएं खोजी है, गायन की भी अलग अलग विधा, नाटी के भी चार रूप हमने खोजे है, 8 मात्रा, 12 मात्रा, 16 मात्रा और 6 मात्रा, ये हमारी यहाँ की परंपरा है। उसमें असंख्य गीतों को, असंख्य तर्जों को किया और उसका संकलन किया है। तो कहने का तात्पर्य, फिर नाट्य की बात है तो नाट्य में अभिनय भी, नाट्य में अभिनय की निर्देशन भी और लिखना भी, तो बाल नाटक भी वो भी लिखे हैं, और कुछ मेरा एक जो यहाँ झांको अजबा का पवाड़ा है, आपके राजस्थान में भी पवाड़ा जो है ना, तो पवाड़ा नाम से है, हमारे यहाँ झांको अजबा का पवाड़ा ऐसा ऐसा ढांचा था जो सदियों पुरानी वैमनस्य था, 1860 राजपूतों 1818 उनमें युद्ध था, वो भी यही सिरमौर में गिरी गंगा के किनारे क्या कहते कोटला में एक सती झांकू ने अपना बलिदान दे करके इसको खत्म किया। और इस गिरी गंगा के ही किनारे त्रिविधा नृत्य, नृत्य नाट्य क्रीड़ा, एक छोटा नृत्य वो तीर कमान का, वो पैना तीर उन्होंने काट दिया, उन्होंने हार जीत खत्म कर दी। वो क्या कहते हैं उसने बोलो जी मेरा बलिदान जो है बराबरी के लिए होगा, और अपने आप वो अपने पति के साथ जल गए। ये बड़ी लंबी कहानी है, और तो ये ऐसे ऐसे गाथा गीत इनका संकलन किया है, और इस पर मैंने मेरा टेलीकास्ट रेडियो से भी क्या कहते दूरदर्शन से भी जालंधर से दिल्ली से समाधान नाम से वो क्या कहते नाटक वो हुआ है। तो मतलब ये थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी कह रहा हूं मैं कि मैंने अगर छड़े की बात कही है, एक युद्ध का होता था इनका, तो उन वहां जाकर के उसको देखा है उसमें क्या है। हर गांव में जाकर के वो तो सौभाग्य था भी मेरी पोती पीएचडी कर गई सिरमौर जनपद के गीतों में, मौसमों के अनुसार लोक नृत्य लोक संगीत का विश्लेषणात्मक अध्ययन अभी उसका पीएचडी पूरा हो गया, तो इस वजह से मुझे बाजार से भी जाना पड़ा। तो क्या कहते हैं बहुत से स्कॉलर आते हैं यहाँ पर, मैं इस प्राचीन संस्कृति को उभारने के लिए निरंतर हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो ये धर्मांधता है हमारे कट्टरवादिता है, ये अब ब्राह्मणवाद तो कहेंगे नहीं इससे, और ये जो साधुवाद है इससे जरा थोड़ी सी परहेज करके मुझे आपकी जो ये संस्था है इससे लगाव हुआ है कि कम से कम कोई संस्था तो ऐसी है जो निर्लेप है, और कोई संस्था तो ऐसी है जो समग्र सबके कल्याण के लिए बिना किसी कशमकश और रस्सा करती थी। क्योंकि अगर आप ईसाई धर्म को लोग भी वहाँ भी प्रोटेस्टेंट और ब्लडी मेरी जैसे हालात हुए हैं, दुनिया के सभी धर्मों ने किया है, यहूदियों का वही हाल रहा है, तो कहने का तात्पर्य है भी प्लॉटिंग होती रही है वो, लेकिन एक ऐसी संस्था जो शांति और परम श्रद्धा के साथ लोगों को इकट्ठा करे और फिर ये सोचे कि हमारा जन कल्याण हो, ये हमारी सनातन धर्म की परिपाटता का सही रूप।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस अनूठे प्रयास को पहचाना है और इसका आप सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस चीज का भी मैं आपको धन्यवाद कहूंगा कि आपने शरीर की आयु होते हुए भी आप अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं, आप रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, युवाओं के साथ गांव-गांव जाकर के उस गांव के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। ये करने के लिए बहुत जज्बा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत धैर्य चाहिए। इतना धैर्य आप अपने अंदर कैसे लाते हैं?
1: मैंने आपसे पहले कह दिया था कि मैं प्रैक्टिकल आदमी, मैंने बचपन से लेकर के मेरे साथ बड़ी गंदी सोसाइटी होती थी नाच गाने वालों, मैंने कभी शराब का स्वाद नहीं लिया, ना मीट खाता हूँ, और पूरा परिवार मेरा ऐसा है कि ना मीट खाता है ना शराब पीता है, और कम से कम 30-35 आदमी का 3 बेटे हैं, उनके भी आगे पोते भी हैं, परपोती भी। कहने का तात्पर्य ईश्वर की कृपा है, लेकिन कहने का ये तात्पर्य ये है कि मैंने पहले अपने आप अपने चरित्र को, मैं सुबह 4 बजे उठ करके योगा करता हूँ, तभी लोगों को बोलता हूँ 20 मिनट योगा करके, और मैं तभी इस तरीके से जिंदा हूँ। मेरे साथ ही सब वो चूर की हड्डियां कीर्तन बोल रही है, मैं भागता हूँ दूर जाता हूँ। आजकल तो मेरे ऊपर तो हम भीगे, एक जगह मैं चीफ गेस्ट था तो वहाँ भीगे, तब से मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया था, लेकिन आज सौभाग्य आपसे मिला और ऐसे स्थान से मिला कि हम जहाँ देख करके भी आया है, और आप विश्व में जो ऐसा काम कर रहे हैं ये वास्तव में हमारे राष्ट्रीय धर्म की सही एक विश्लेषणात्मक बोलो या अध्ययन पूर्ण बात बोलो या ये बोलो कि सही दृष्टिकोण है, और जिससे जो लोगों को भी कुछ ना कुछ पता चलेगा कि हम किस तरीके से अपना जीवन यापन।
0: जो आपने ये बात कही कि आपने जीवन में संयम नियम और अनुशासन को बहुत गहराई से जीवन में अपनाया है, और जो आपने बात कही कि केवल आज का नहीं एक लंबे समय का आपने अभ्यास किया है इन तीनों गुणों का, जिसकी वजह से आज आप इतने स्वस्थ हैं और आज आप इतने सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, थकान नहीं आपके शक्ल में, इतनी रौनक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सीखना चाहिए आपसे, सभी श्रोता साथियों को भी मैं ये कहूँगा कि जैसा कि इन्होंने कहा, जीवन का एक नियम होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए और उसमें सततता होनी चाहिए कि हम रेगुलरली उस चीज को कर रहे हैं, आज किया कल नहीं किया। ऐसे उतार चढ़ाव में क्या हो जाता है कि हम खुद भी नहीं समझ पाते कि उससे कुछ परिवर्तन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम सतत करते हैं किसी चीज को तो उसका प्रभाव जीवन पे दिखता है, जैसे कि विद्यानंद सरेख जी के जीवन से दिखता है। उन्होंने न केवल साहित्य के साथ, कला संस्कृति के साथ जुड़े रहने को अपने जीवन का ध्येय बनाया, लेकिन उसको करते हुए उन्होंने कईयों के जीवन में उस संस्कृति का अलग जगाया है। क्योंकि मैं और आप दोस्तों जब शहर में जीने लगते हैं और शहर के दौड़ धूप में अपने को एकदम मच देते हैं, तब हमारे पास यही संस्कृति होती है जो हमें एक ठंडी छांव और एक ठंडी हवा का महसूसता कराती है। विद्यानंद सरेख जी, आपने बोला कि अब आप बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं इसलिए आपकी आवाज भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कभी ना कभी आप गुनगुनाते तो जरूर होंगे खुद के लिए। क्या आज आप हमारे लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? कुछ आप गाना चाहेंगे, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे?
1: तो बोलोगे तो मैं गाऊंगा एक भजन।
0: बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप कोई भी ऐसा भजन गाएं जो कि उन पहाड़ों से निकल के आता हो।
1: वो दुखो राताना बना तो ए इशरा लाया रे, घड़ी पले माया ममते दा जीवना मान छोरा सजाया रे। दुखो दुखो राताना बना हरी बांदरी ये धरती है ऊंची गायणी दे तारे पे, हरी बांदरी ये धरती है ऊंची गायणी दे तारे बे, नाचो तारो दे सात समुंदरो नदी खाड़ो रे फवारे बे, पापी जी उठा दियो गवाए तेरे बद के माया रे। दुखो दुखो रा ताना रो बना तो ए इशरा लाया रे, दुखो दुखो रा ताना रो बना चंदो सूरजो चौधुरा के जोड़ू दुई ने हाथों बे, तेरी साइया कुण जी बोलिए लाऊ गुणोरी बातो बे, आखे देखो तेरे मुर तो कहीं मने ना समाया बे। दुखो दुखो राताना रो बाना, ये तो धार्मिक का मैं आपको श्रृंगार की
0: जी। इस गीत का थोड़ा सार भी अगर आप समझाएं, मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन हमारे श्रोताओं को अगर आप सार में समझाएं तो भी बड़ा अच्छा होगा इस गीत का सार।
1: तो मतलब ये सुख दुख का ताना ही भगवान तेने लगा रखा है, और ये सारी संसार सुख दुख के ताने और बाने में जो हमारा जैसा क्या नाम कपड़ा बुनने के लिए ताना बाना लगाते है ना जी, तो उसमें उलझी हुई है लेकिन, और उसके साथ माया ममता के साथ ऐसा उलझा रहा है रखा है कि इंसान जो है ना अपने आप को भी भूल जाता है, कई बार घर को घर गृहस्थ को भी भूल जाता है और बहक जाता है दूसरी ओर भाग रहे, और यही कारण है कि पाश्चात्य की ओर नजर लगा करके हम अपने आप को बर्बाद कर। थोड़ी थोड़ी बातें है ना जी, ऐसी बहुत पहले लिखा, ऐसे मैंने धार्मिक भी लिखे, श्रृंगारिक भी लिखे, हास्य के भी लिखे और लिखे है, और वो अलग अलग वो पहलू है उन पुस्तकों का, तो लेकिन मैंने छपे इसलिए नहीं सके, मेरे पास साधन नहीं था और कोशिश करता हूँ गाए रेडियो से, मेरे बहुत से लोगों ने भी गाए, मैंने भी बहुत से रेडियो से गाए, मैं भी हाई था रेडियो का, ऑल इंडिया रेडियो शिमला का, तो क्या कहते बहुत अच्छे तक जब गला बंद हो गया तब क्या करना, तो पर यही एक उस वक्त।
0: लेकिन आज भी आपकी आवाज में वो क्या कहेंगे, एक ओरिजिनलिटी है आपकी आवाज में, वो एक अनोखापन है जो कि सुनते साथ ही मैं खुद को ऐसे अनुभव कर रहा था कि मैं हिमाचल की या हिमालय की किसी छोटे से गांव में बैठ करके चाय पी रहा हूँ, खिड़कियों से देखते हुए झरने नदी, मैं जैसे आपके वहां पहुंच गया था, आपकी आवाज में वो जादू है।
1: ये यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये हमें प्रेरणा देता है इसको अध्ययन करके, यहाँ ये देवी देवताओं का तभी पास है, और हजारों वर्ष के यहाँ प्राचीन मंदिर है, मेरे गांव में हजारों वर्ष पुराने मंदिर है और मूर्ति कला का एक अनूठा वो है। अब उन्होंने किस आस्था से किस तरह से बनाया ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें हमारे लिए ये प्रेरणा है कि हम आस्था से वहाँ बैठ करके श्रद्धा से अब एक एकाग्रता वहाँ पर अपनी जता करके और ये सोच करके चलते हैं कि हम उस प्रभु जो क्या कहते हैं जिस जो निराकार है, निर्विकार है, निराधार है, उसकी आराधना किस तरीके से हम करें। चलो ये तो बहुत लंबा वो है, लेकिन आज मैं मुझे मुझे तो पेंशन भी कोई नहीं मिली और ना मैंने कभी भगवान ने चला रखा जैसा काम घर का चला रखा है, मेरा भी चला रखा है, सारे परिवार का भी चलता है, बाग बगीचे लगे हुए, अब तो खैर भगवान सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने आर्थिक दृष्टिकोण को देखा नहीं, तब तो मैं अच्छी खासी नौकरी ना, मैं भी डिप्टी डायरेक्टर तो रिटायर हो ही जाता इतना।

0: मुझे पता था, लेकिन 17-18 साल की नौकरी छोड़ करके मुझे ना पेंशन मिली ना कुछ मिला, और भटक भटक पर ये 40 साल मुझे पड़ाव पर लाए। आज मैं प्रसन्न हूँ, मुझे बेशक नहीं मिला, लेकिन मैं आनंद आप जैसे लोगों का सहयोग आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे प्रेरणा मिले।
1: तो विद्यानंद जी, जैसे आपको प्रेरणा मिल रही है, मैं समझता हूँ पूरे देश भर में भी जब आप जाते हैं अलग अलग जगहों पे जाकर के आप अपनी कहानियों को आगे रखते हैं, अपने कला संस्कृति के अनुभव को आगे रखते हैं, तो कई युवा भी आपसे प्रेरणा लेते होंगे। युवाओं के लिए आप क्या समझते हैं, अभी क्या जरूरी है उनके लिए, आपका कोई संदेश है उनके लिए, या आप क्या देखते हैं उनमें, उनकी क्या जरूरतें हैं आज?
0: जी, युवा पीढ़ी आज भटक तो चुकी है, लेकिन फिर भी ये मेरा अपना ये संदेश है युवाओं को कि वो माँ बाप पिता गुरु अपने अपनी जो प्राचीन हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, धरोहर है, उस पर आस्था रखते हुए आगे बढ़े। इस पाश्चात्य जो प्रभाव हम पर पड़ता रहा उसकी नकल छोड़ करके सीधे अपने जो अपना सनातन धर्म है, जो हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, उनका अनुसरण करे, उस पर चले, और तो अपना भविष्य उनका सुधर सकता है, और क्या कहते हैं, यही नहीं पूरा परिवार खुशहाल हो सकता है। तो ये मेरा छोटा सा परिवार है कि भाई 30-35 आदमी के परिवार में कोई किसी किस्म का बुरे व्यसन में नहीं है, तो मेरे लिए तो गौरव की बात है, कम से कम मैं इतना तो करता हूँ। लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग वो मेरे से चुप करके जो करते भी है, चुप चोरी छुपे की नहीं, गुरु जी आ रहे हैं जरा हम बोतल को दबा करके रखें तो खैर इतना भी एक बहुत बड़ा है। तो युवा अगर भटक गए हैं उनके लिए भी मेरे निरंतर प्रयास है, मैं किसी भी मंच से, किसी भी पत्रिका में, किसी भी इस तरीके से जो जहां पर भी बातचीत होती है वहां पर यही संदेश देता हूं कि आइए पहले तो खुद को अपने आप को सुधारिए, क्योंकि गांधी जी गुड़ खाते थे और उनके दांत में दर्द तो होती थी, पर एक औरत आई कि मेरा बेटा जो है ना उसके दांत में दर्द हो रही है, कि 8 दिन बाद आना, कि वो 8 दिन बाद ही, तो आज अब बता दो क्या है कि आपका बेटा गुड़ तो नहीं खाता, बोलो हाँ, तुम अब गुड़ नहीं खा रहे लेना, तो 8 दिन पहले बता दो, बोलो उस वक्त मैं खुद गुड़ खाता था, मैंने भी गुड़ छोड़ दिया। तो असल में ये छोटी सी बात है, लेकिन आदर्शों को पहले खुद आपके आपको अपने व्यक्तित्व को हमको अपने व्यक्तित्व को इतना सबल बनाना है, तभी हम जो है दूसरों को के लिए आदर्श बन सकते हैं। नहीं तो आज सर्वनाश हो रहा है, धर्म का विनाश हो रहा है और कर्म का विनाश हो रहा है, आर्थिक राजनीति खत्म हो चुकी है, लोग भटक चुके हैं और हम पश्चिम की ओर इस तरीके से दौड़ रहे हैं, भाई पैसा ही कमाना है, वो कह रहे हैं। हमने देखा, मैं आपको एक बात बता दूं, बुल्गारिया में हम एक जब आ रहे थे तो वहाँ की जो डायरेक्टर थी कृषि विभाग की, वो हमें छोड़ने थी ऑफ करने, फिर हमने वहाँ से मैसेडोनिया जाना था, तो हमारे लड़कों ने कहा कि गुरुजी ने एक गीत लिखा है पहाड़ी का, यहाँ वो क्या कहते हैं, हमारे साथ बुल्गारिया की एक नौजवान लड़की थी बड़ी खूबसूरत, उसके ये इनके हमारे शाबरे बाल बोलते हैं, इसके जो इनके पेड़ बाल होते हैं ना अंग्रेजों के, तो मैंने लिखा है था उसमें, उनको सुना दिया मैंने, क्या बोलो मुर्गा जो रिये बुलगार किए तेरे शाबरे बाल हो, ताई देखे हो दाढ़ी ये जियो दे चोटी ये बोल रहे, तेरे को देख करके मन उबल गया, अब क्या करने, तो वो हंसने लगे सभी, बोलो आप लिखते भी है, उसने हिंदी में बोला उस लेडी ने, मैंने कहा आप हिंदी आ, और हमारे बीच वो साड़ी पहन करके आती थी, कहते आपको मैं बता दूं, मैंने सूरदास पर गोकुल वृंदावन में PhD की है, और क्या कहते 2 साल लगा करके वहां पर अध्ययन करके मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, और मुझे भारतीय संस्कृति से प्यार है, इसीलिए ये आपके बीच ये साड़ी पहन करके ये लड़कियां आपकी शालीन है, पर्दे में हया है, इनको शर्म है, हमारे तो नग्नता है। तो कुछ आदर्श भी होते जीवन के और उनको अपनाना जरूरी है, और ये हमारी नकल से सीख रहे हैं बाहर के लोग और हम अपने आप को भटक रहे हैं। मैं नौजवानों की बोलता आइए अपनापन, अपना अस्तित्व, अपनी खुददारी और देश की क्या कहते हैं ताकत देते अपने आप को सुधार करके आप अपनी बात को दुनिया के सामने मनवाने की कोशिश, जो विवेकानंद ने की, जो भी आप लोग जो कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, और वो उन लोगों को भी पता लगता जा रहा है कि भाई हाँ वाकई वास्तव में ये जीवन का सही रास्ता।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं को जरूरत है अपनी संस्कृति पर निश्चय होने की, कि इस संस्कृति पे जब मेरा निश्चय होगा तो ही मैं एक खुददार नागरिक कहलाऊंगा देश का। अगर मैं अपनी संस्कृति पे निश्चय नहीं रखता हूँ, उसको अपने जीवन में अवलंबन नहीं करता हूँ, तो मेरी खुददारी भी कम हो जाती है और फिर ऐसा नागरिक देश को कैसे यशस्वी बना सकता है। मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जब आप भारत के अलग अलग विभिन्न प्रांतों में जाते हैं तो या फिर देश के बाहर भी आप जब जाते हैं तो आपको ऐसा कौन सा चीज देखने को मिलता है जो आपको केवल भारत में ही देखने को मिलता है, बाकी और कहीं देखने को नहीं मिलता।
0: हमें तो जब भी गए हम जब वो क्या कहते हैं बुल्गारिया में एक कॉन्सुलेट के यहाँ एट होम थे ना जी, तो उसने मुझसे पूछा हिंदुस्तान ने दुनिया को क्या दिया है। मैंने कहा गीता रामायण बड़े बड़ी तारीख है आपको नहीं पता जो विश्व को दिया जिस पर विश्व आज खड़ा। तो मैंने कहा आप बोलो, कहते जीरो किसने दिया। देखिए वो लोग अध्ययन करते कि जीरो का वो कहते रिसर्च करने वाला भारत है और आज सारा इंटरनेट लेना देना जीरो पर, वो अध्ययन करते हैं और हम जो है ना हम उनके पीछे लगे हुए, उन्होंने सारी हमसे सीखा है। और आज आप लोग जो पहुंचा रहे हैं ये परम शांति और मोक्ष की बात कहते हैं वहां जाकर के, तो उन उनके दिमाग में सही रास्ता निकलता नहीं, तो वो लोग भटक भटक चुके हैं अपने।
1: तो ये जो आपने बताया कि भारत की विशेषता रही है कि हमेशा दुनिया को दिशा दिखाने की, ऐसे भारत में भी जब आप अलग-अलग प्रांतों में जाते हैं, हर प्रांत की अपनी एक विशेषता है और हर प्रांत अपने को दूसरे से ज्यादा बेहतर मानता है। शिमला वाले कहेंगे हम ज्यादा अच्छे हैं और हिमाचल में कोई और शहर वाला कहेगा नहीं हम ज्यादा अच्छे हैं। हर एक को अपना देश अपना प्रांत ज्यादा प्रिय होता है, लेकिन जब आप पूरे देश में घूमते हैं या पूरे देश में जाते हैं, कोई एक बात ऐसी जरूर आपने देखी होगी जो पूरे देश को एक बना देता है, जोड़ देता है, वो कौन सी एक बात है आपके हिसाब से?
0: मुझे तो ऐसा लगा कि पूरे देश को मुझे आपकी ये जो परंपरा है ये ब्रह्म कुमारियों का संदेश है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि सब धर्मों में कहीं ना कहीं विसंगतियां उसका धर्म का नाम लेकर के वो, लेकिन ये कुछ जोड़ने का ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिसमें ना ऊंच है ना नीच है, जिसमें ना जाति है ना धर्म है, जिसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है, जिसमें एक कट्टरवादिता है ना वो क्या कहते हैं किसी किस्म का एक ऐसा गिरोह है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता जो तलवार लेकर के एक दूसरे के पीछे पड़ा है कि ये मानो धर्म नहीं तो हम ये तुम धर्म नहीं है तुम तो शांति का एक ऐसा परम शांति का एक रास्ता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके मंच से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं प्रभावित हुआ हूँ और बहुत सा समय भी देखा है हमारे सामने। हमने 1947 में जब यहाँ लोग गुज्जर लोग आए, लोगों ने उनको खत्म किया हमारे गांव में भी ऐसे ने, उनकी हालात देखी, उनको यहाँ लोगों ने कपड़े वगैरह दिए, तब उनकी वो दिन में आज भी बड़ी दर्दें भी इस तरीके से हुआ है, उनको बचाया यहाँ खाना दिया लोगों ने, यहाँ के लोगों में श्रद्धा और प्रेम रही है ऐसी बात नहीं, वो बरकरार रहे तो ठीक है। धर्म का झंडा लेकर के ही इंसान किसी देश को नहीं बचा सकता, लेकिन अगर उसकी कृतत्व तो अच्छे है, उसका समर्पण अच्छा है, श्रद्धा अच्छी है और वो सेवा भाव है और सबसे मिलकर के काम करके अपने साथ जोड़ने की व्यवस्था है तो शायद हम बच सकते हैं, तभी इसलिए कह सकते ज्यादा कह को।
1: ये आपने बहुत सुंदर बात कही कि धर्म का झंडा या व्यापार का झंडा या किसी एक विधा का झंडा पकड़ के व्यक्ति आगे बढ़े तो उससे देश आगे नहीं बढ़ता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर सत्यता होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए, अपना मानवीय जो धर्म होता है वो बहुत जरूरी है। और जो आपने एक और बात कही कि पूरे देश में जो आपने एक चीज देखी जो पूरे देश को जोड़ता है वो है शांति के प्रति लोगों की आस्था या शांति के प्रति लोगों का जो लगाव है, रुचि है, हर कोई शांति पसंद करता है। तो इन बातों को सुनते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक भारत देश में आपके जैसे बेटे और बेटियां होंगे तो भारत देश यशस्वी तो बना ही रहेगा। आपके हिसाब से भारत को यशस्वी बनाने वाला कौन सा एक बात है? ये भी आपने बताया कि भारत ने विश्व को दिया है हमेशा से, शून्य से लेकर के संस्कृति तक हर चीज का ज्ञान भारत ने विश्व को दिया है। तो ये जो देने की कला है ये मैं समझता हूँ भारत को यशस्वी बनाता है, जो कि मैं आज के एपिसोड से आपसे सीख रहा हूँ कि हमें हमेशा देने का अभिप्राय रखना चाहिए। कभी भी लेने वाली अगर भावना होती है तो शायद कहीं ना कहीं हम छोटे हो जाते हैं, और अगर हमारे अंदर देने की भावना हो तो हम अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। तो विद्यानंद जी, आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला, और हमारे सभी श्रोता साथियों को एक लगभग दशक कई दशकों का जो ज्ञान है, संचित ज्ञान, वो आपने कुछ ही मिनटों में हमारे सामने रखा, और ये दशकें जो थी वो आपके आयु से जुड़ी हुई थी, लेकिन आपने उससे भी आगे चल करके पुरातन काल और सनातन काल की कहानियों को भी आपने आज हमारे साथ इस एपिसोड में जोड़ा, जिससे मैं समझता हूँ केवल माउंट आबू में सुनने वाले श्रोता नहीं, लेकिन कहीं भी देश के किसी भी कोने में सुनने वाले श्रोताओं को सिरमौर से जुड़ने का जरूर अवसर मिलेगा। उनके अंदर रुचि जागेगी कि सिरमौर के बारे में थोड़ा हमें और जानना चाहिए, कि सिरमौर को चंद्रगुप्त मौर्य ने सिरमौर कहा था, लेकिन उस सिरमौर को सिरमौर बनाए रखने में कैसे लोगों का हाथ है, विद्यानंद सारंग जी जैसे लोगों का हाथ है। जाते जाते अगर विद्यानंद जी आप अपनी आवाज में फिर से कुछ गुनगुना दे हम सबके लिए और उसका थोड़ा सार भी बता दे तो बड़ा अच्छा होगा।
0: पहाड़ी की सुनना चाहेंगे, हिंदी की क्या करूं
1: पहाड़ी
0: या
1: पहाड़ी
0: धार्मिक?
1: पहाड़ी, ऐसा कोई गीत जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपका सबसे प्रिय गीत है।
0: मैं एक श्रृंगार का एक गीत सुनाता हूँ। आप आखुटी आखुटी मलाई जा, भाव टलाई जा, अपने पे वो कहरी बात बताई जा। आखुटी बता आखुटी मलाई जा, भाव टलाई जा, अपने प्यो कहरी बात बताई जा। कोसरी ध्याना कोसरी जाए, ठोणी बाणी रा तू मुंदरे आए, इने नखरे तू हमो न खाए। आकुटी मलाई जा, भाव टलाई जा, अपने प्यो कहरी बात बताई जा। एक युवक को युवती खूबसूरत मिलती है, वो उसको ये बोलता है कि तू आंखें तो मिला ले, तू तिरछी नजर से देख रही है, तू तू दौड़ रही है, मैं तेरे पीछे दौड़ रहा हूँ, तो तू ही तो बता किसकी ध्यान है, किसकी बेटी है, और किस तेरा माता पिता कौन है, ताकि मैं समझ सकूं, और क्या क्या कहते हैं, और मेरे तेरा पीछा करने का मुझे भी फल मिले। मतलब ये तो श्रृंगार का, मैंने आपको धार्मिक का भी था। इसी तरह से नाटी के कई रूप हमने यहाँ पर उभारे हैं, और एक शीर्षक से चारों विधाओं को पेश किया है। एक एक चीज उसका, जैसे ढाटू है ना, सिर में स्कार्फ पहनती है ना हमारे, तो ढाटू को लेकर के 8 मात्रा की घी गारंटी नाटी है, उसको घी कहते हैं हमारे, और मुंजरा बोलते हैं हमारे घरों में, अंदर नाटी का एक सबसे छोटा रूप है वो, उसको आपको बता रहा हूँ। निखाए घाले पिंवड़े ढाटुए, बोलो तो ही जो माटुए, जवानी दूरी जणू ढोबो, कुण नीरी जा माइए, शावणो भी जणू ढोबो, कुण नी भी जा माइए। हो निखाए घाले पिंवड़े ढाटुए, कहते इस पीले ढाटू ने तेरे हमारे को तबाह कर दिया है। तू ये बता, जवानी में कौन नीरी जा, कौन ठंड बढ़ के नहीं चलता, और जवान वो ऐसा कौन आदमी है जो बरसात में नहीं भीगता? तो ये जवानी के बाद बरसात आती है, इसमें भी जो भीगा नहीं है वो भी इंसान, उसने वर्ष के मौसम को समझा नहीं है। कहते निखाए घाले पी, लेकिन तेरे काले तेरे जो पीले ढाटू ने मुझे तबाह कर। निखाए घाले माटुकू था बोला बांका जवानो, माटू माटुकू था बड़ा बांका जवान था वो, माटकू था बोलो बांका है जवानो, लाल होठड़ू पांदे गूंजो रे छानो। गूंज समझ रहे, मुंह क्योंकि लाल होठ थे उसके, उसकी खूबसूरती का वर्णन किया है। एक ही दिन से भी मुजरे आया, पिंवड़े ढाटू है हाड़ो दा पाया। एक दिन वो मुजरे में आया, महफिल में आया, और पिंवड़ा ढाटू जो उसका खूबसूरत लड़के देखा हाड़, मतलब जैसे सैलाब हो पानी का, ऐसा वो उसके सिर पर, उसके जीवन पर ढल गया, और वो बेसुध होकर। ये तो 8 मात्रा की गीत है। इसी इसी क्रम में हमारी दूसरी विधा है, वो है 12 मात्रा की। ये रथेवड़ा ताल पर, रौद्र ताल पर है, और रौद्र ताल पर हमारे ठोडा जो है ना, तीर कमान खेलते हैं, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। और ढाटू है, ढाटू तेरे मुंडो दा पिंवला ढाटू, मेरे मुंडो दा टोपा, तेरे मुंडो दा पिंवला डाटू, मेरे मुंडो दा टोपा, टूटी तलना समझ रो, आया जमाना कोटा। कह युति जरूर तेरे सिर पर पीला डाटू बड़ा सज रहा है, और मेरे सिर पर भी ये जो है ना हिमाचली टोपी है बड़ी अच्छी लगी, लेकिन उसके बावजूद ही जरा सोच समझ करके कदम देना है, आजकल जमाना पार गंवारी है ध्याणी, आया जमाना खोटा। ये 12 मात्रा की बंदी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 ये बड़े धमाके से और दिल खोल जाता है नृत्य करने वाला का जब इसको गाते। ये 12, अब 16 मात्रा की बंदिश बताऊंगा, लेकिन ढाटू याद रखना है। मैंने ढाटू ऐसे ढाटू पर, गले पर, आंखों पर, ऊँटों पर, पलकों पर, पतली कमर पे, बहुत से वो मैंने कोई 60-70-80 गीतों का संकलन अलग कर रखा है, अलग अलग, लेकिन अलग अलग तर्जों में। अब ये 16 मात्रा की बंदिश है, ढीली नाटी है हमारे, ये बड़ी मशहूर है। ढाटू बिस राणा, ढाटू रखना याद, ये ढाटू जो है ना हमारे सिर की में औरतें लगाती है। ढाटू बिस राणा किसके चाली दाढ़ी ये बोला मस तुए, तेने ढाटू बिस लिया वो, अब तू तो नंगे सिर से जा रही है। ढाटू बिस टलटा घिसरा, टलटा हमारे दुपट्टे को बोलते, कहते दुपट्टा भी भूल दिया, ढाटू तो भूला ही था वो भी भूल दिया। माथे तमको टीका बिरे, माथे में तेरा टीका जो है ना, जो चमकदार बिंदी है वो चमक रही है। गोरा तेरा बोलो मुटा दाड़िए, आए पड़ो सुर जो फीका बिरे, ढाटू बिस, कहते गोरा तेरा मुंह देख करके अब वो ढाटू भी निकल गया, दुपट्टा भी निकल गया, टीका सामने नजर आ रहा है, तेरे तेरे चेहरे को देख करके क्या कहते हैं सूरज भी फीका पड़ता जा रहा है। तो पूरा वर्णन इसमें है, चलो कह रहे सुंदरता का। तो क्या कहते हैं ये 16 मात्रा की बंदिश है, ये नृत्य करना का भी, इसका मैं इस नृत्य भी करता हूँ, और इसका एक बड़ा अंदाज है ढीली नाटी का। बहुत सी नाटियां हैं लेकिन मैंने अपनी संकलन की है, यहाँ ट्रेडिशन में भी बहुत सी नाटियां गाई है कई लोगों ने। तो अब ये 16 मात्रा की, अब 6 मात्रा की बंदिश आपको बता रहा हूँ। भाभी ये तेरा ढटकू, भाभी ये तेरा ढटकू काला, सो मेरे दियो रर बाला, तू भी टंग बेरा ताला दाड़ी, मेरे दियो रर बाला। ए भाभी तेरा ढटकू जो है मेरे मन को बहलाने वाला है, मेरे मन के लिए बहलावा है। क्या और तू तो अनोखी औरत है, आकर्षक है, सजीली है, सुंदर है, क्या कहते हैं, इसलिए मैं तेरा वर्णन कर। तो ये 6 मात्रा की, 4 किस्म की नाटियां मैंने आपको बता दी। ये हमारी यहाँ की सिरमौर की जो नाटी है, और जिसका उदय ही सिरमौर में हुआ है। और ये नाटी आपको ये भी बता दूं, ये नाटी जो है मेरी टीम ने विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड में 11 बार फर्स्ट आने पर विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड में डाली है। जोगिंदर हाफी मेरे शिष्य है, तो उन्होंने 11 बार ये नाटी कंपटीशन में फर्स्ट आने पर विश्व में, और इसका जो नाटी का उदय है वो सिरमौर से, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हमने सारा कोशिश की है कि हर चीज के डेप्थ पे जा करके हम काम करें और लोगों को बताएं कि हमारे संस्कारों से जुड़े ये पहलू क्या है और हम उनको क्यों झुठला रहे हैं, क्यों भूल रहे हैं। लेकिन हमारा जब आदर्श और हमारा जब चिंतन, जब हमारा जब सामने आप जैसे लोगों का प्रदर्शन हो, तो मन में सुकून मिलता है और आगे बढ़ने का रास्ता।
1: मैंने कहा विद्यानंद जी आपकी आवाज में आज भी वो जादू है कि सुनने वाला खुद ब खुद नाचना शुरू कर देगा, जैसे कि आप खुद नृत्य करते हैं सामने वाला सुनते हुए नृत्य करना शुरू कर देगा। लेकिन आपका जो भाव है या जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया वो मैं समझता हूँ बहुत ही सिंबॉलिक है, बहुत ही प्रतीकात्मक है, क्योंकि अगर मैं सोचूं तो वो हिमाचल की या हिमालय के एरिया की प्रकृति को भी दर्शा सकता है। जो सूर्य की बात हो रही है, जो लालिमा की बात हो रही है, जो सनराइज सनसेट हम हिमालय में देख सकते हैं वो कहीं और नहीं देखा जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक जो भी नाटी आपने सुना है उनमें वहां की प्रकृति का सौंदर्य भी झलकता है।
0: कि हर गीतों में कथा और कथानक होना चाहिए, हमारे यहाँ गीतों में भी आड़ सगाड़ गारे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन चाहे वो धार्मिक बात हो, चाहे श्रृंगार की हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण की हो, या कोई संदेश हो जन जागरण का, या और पहलू हो सामाजिक एकता का, ऐसे असंख्य गीत है जो मैंने उसी हिसाब से कथा और कथानक को लेकर के सस्वर लिपिबद्ध किए हैं। और कोशिश करो जब कभी भगवान समय देगा तो तभी तो है, तो ऐसा है।
1: जी बिल्कुल, आपके पास जो भी समय है और जितना भी समय है उसको आपने सफल किया है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि पूरा भारत देश आप पर नाज करता है। आज आप भारत के एक ऐसे यशस्वी रतन हैं जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए हैं क्योंकि आपने भारत की संस्कृति को अपने जीवन का ध्येय बनाया है। आपसे मिलकर के न केवल मैं लेकिन हमारा पूरा रेडियो मधुबन का परिवार जिसमें कि हमारे प्यारे श्रोता साथी भी आते हैं। आज बहुत खुश हो रहे हैं कि आज रेडियो के माध्यम से, रेडियो मधुबन के माध्यम से और यशस्वी भारत कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंच गए सीधा सिरमौर, और आपने अपने घर में, अपने बैठक में हमें स्थान दिया। आपने हमारे साथ बातचीत की, अपने जीवन की कई सारे पन्नों को आपने खोला हमारे सामने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुभकामना करेंगे कि आप
0: एक जी सिरमौर एक ऐसी है जिसके सिर पर चूड़धार की 12,000 फुट की ऊंचाई है और आगोश में गिरी गंगा बहती है, असंख्य नदियां बहती है, खूबसूरत वादियां हैं बीच में, और इन वादियों में असंख्य देवी देवताओं के मंदिर है, और मन में सुकून मिलता है जब वहां जाकर के कुछ बचा हुआ है तब लगता है कि है ये यहाँ कुछ है। तो ये अंत में आपको कहना चाहूंगा, इन्हीं के धन्यवाद।
1: जी विद्यानंद जी ने इतने सुंदर तरीके से कहा कि सिरमौर में अध्यात्म का सिरमौर है, और यहाँ पर जो बस्तियां हैं, जो देवताओं की श्रृंखलाएं हैं, जो मंदिर हैं, जो प्राकृतिक धरोहर है, इसके बीच में कभी अगर आने का मौका मिले तो जरूर लोगों को प्रयास करना चाहिए कि आकर के अपना समय जरूर यहाँ गुजारें। रेडियो मधुबन के समस्त परिवार की ओर से, जिसमें कि हमारे प्यारे श्रोता भी आते हैं, उन सभी की ओर से विद्यानंद सरेख जी, आपका और आपके परिवार का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आपने हम सबके लिए इतना समय निकाला और अपने बातों के जरिए, अपने सुरों के जरिए आपने हमें सीधा सिरमौर पहुंचा दिया। आपका दोबारा हम धन्यवाद करना चाहेंगे और ईश्वर के आगे हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके जीवन के जरिए कई जीवन को अलग संस्कृति की अलग जगाने में जरूर मदद करते रहे आपको, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपका फिर से रेडियो मधुबन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता साथियों, अब तक आप सुन रहे थे यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के हमारे एपिसोड के मेहमान। मेहमान क्या कहेंगे, घर वाले ही कहेंगे, क्योंकि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर आवाज जा रही थी। हम माउंट आबू से सुन रहे थे और सुनाने वाले थे विद्यानंद सरेख जी, जो कि सिरमौर हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं में हिमाचल प्रदेश से आते हैं। विद्यानंद सरेख जी भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। इसके पूर्व उन्हें राज्य सम्मान और राष्ट्रपति सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। कारण कि उन्होंने अपने प्रांत की जो पहाड़ी सभ्यता है, सिरमौर जिस जगह से वो आते हैं, उस जगह की सभ्यता में उन्होंने न केवल उस जगह की लोक संस्कृति को उजागर किया, लेकिन जो मूल धारा है, जो प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर, जैसे कि हमारे शास्त्र हैं, हमारी गीता, भागवत, पुराण, रामायण आदि, इनका भी उन्होंने अनुवाद किया सिरमौरी में। साथ ही साथ उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के भी 51 कविताओं का अनुवाद किया। ऐसे कई चीजों का उन्होंने अनुवाद किया ताकि जनमानस, जो उनके आसपास के लोग हैं, मूल सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ सके, और जो मूल धारा के लोग हैं वो किसी भारत के किसी एक कोने की आवाज से जुड़ सके। उन्होंने एक ब्रिज का काम किया दोस्तों, जहां पर उन्होंने अपने प्रांत की आवाज पूरे देश तक पहुंचाई और पूरे देश की आवाज को अपने प्रांत तक लाया। मैं और आप भी ऐसे एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, एक सेतु का काम कर सकते हैं। मेरे आसपास जो हो रहा है उसमें अगर मैं अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको जोड़ सकूं, तो उस चीजों को मैं निखार सकता हूं और पूरे देश को यशस्वी बनाने में अपना एक अहम भूमिका निभा सकता हूं। उम्मीद करेंगे कि आप भी ये अहम भूमिका जरूर निभाएंगे और निभा भी रहे हैं। आगे चल करके आपसे मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। यशस्वी भारत कार्यक्रम में हम लाएंगे एक और नए मेहमान को, जिनसे जानेंगे हम उनके जीवन की कहानी उनकी जुबानी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: पांच यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो ₹500 अर्न करे।
3: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
3: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे ₹500 मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
3: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: ₹20,000 में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
4: क्या बात है यार।
5: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
5: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर, ऐसा नहीं करना चाहिए। एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल
2: या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आइए, आज आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ विशेष अनघा सावंत हमारे साथ है, उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस प्रोग्राम। और साथ में हमारे गेस्ट में पूजन मजुमदार जी भी हैं और आप अच्छे गाते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: अर्चना जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आज के इस हमारे प्रोग्राम में अनघा जी से हम लोग बातें करेंगे और खास करके नेचुरल जो ब्यूटी है उसके बारे में जानेंगे, सोचेंगे और किस तरह से उन्होंने काम किया है इस विषय लेकर, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। और कई बार हम लोगों को ब्यूटी के लिए बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं और नेचुरल ब्यूटी आजकल या तो बहुत महंगा हो गया है या तो पता नहीं या तो मिलता नहीं, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन फिर भी हम लोग अनघा जी से इनके कुछ खास अनुभवों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग अपने लाइफ में इन चीजों को ठीक से समझ पाए, जान पाए और एक क्या कहते हैं, एक नेचुरल हमारा जीवन जो है खुशियों से भर जाए, ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे। तो विशेष अनघा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा वर्तमान समय में आप कहाँ पर हो और किस तरह से कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। स्वागत है।
2: थैंक यू। नमस्ते सबको। मैं फिलहाल एक अनिर्या बाथन बॉडी एसेंशियल्स नाम का मेरा ब्रांड है जो मैंने ऑफिशियली 2020 में शुरू किया, तो 2 साल हो गए आई एम वर्किंग ऑन दिस ब्रांड। हम क्या करते हैं, तो वी हैव द नेचुरल प्रोडक्ट्स जो अपना स्किन केयर के लिए, स्पेसिफिकली स्किन केयर के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर इनटू।
0: जी अनघा जी, धन्यवाद, शुक्रिया। और आपने बताया कि स्किन के लिए आप प्रोडक्ट बनाते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट। तो आइए, मैं पूजन जी से चाहूंगा कि एक छोटा सा गीत के साथ आपका स्वागत करें और उसके बाद हम लोग बातें करेंगे आपसे आपके प्रोडक्ट्स के बारे में और आपने इसको शुरू कैसे किया वो कहानी भी आपसे सुन। पूजन सर, स्वागत कीजिए एक छोटे से गीत के द्वारा।
1: जी शुक्रिया, शुक्रिया रमेश भाई। जो राह चुनी है अनघा जी ने वो राह उनके लिए काफी सफलता से भरी रहे और बहुत आगे वो बढ़े, ऐसी मेरी मनोकामना है। पेश करते

0: थैंक यू, थैंक यू सो मच,
1: वेरी नाइस,
0: थैंक यू आचार्य,
2: थैंक यू पूजन जी, बहुत ही
0: प्यारा, रमेश जी शुक्रिया,
2: शुक्रिया शुक्रिया आपका, पूजन मजुमदार जी बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया, शुक्रिया करके शिवाज जी ने मैसेज किया है और मीनल जी ने भी ओम शांति लिख के भेजा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अनघा जी से मैं बात करना चाहूंगा, आप सभी को जोड़ना चाहूंगा। अनघा जी मैं चाहूंगा कि क्या ऐसा हुआ कि आपको ये नेचुरल प्रोडक्ट को बनाने के लिए तैयार किया गया, यानी क्या सिचुएशन था कि आप इस और आए?
3: जी मैं थोड़ा सा शुरुआत से शुरुआत करती हूँ। प्रोफेशनली मैं एक साउंड इंजीनियर हूँ, सो मेरा करियर में से 10 साल आई हैव वर्कड विद इंडस्ट्री, साउंड के लिए मैं काम करती थी, तो काफी सारे चैनल्स के लिए, काफी सारे स्टूडियोज में, काफी सारे शोज के लिए मैंने काम किया था। सो तब से लेकर के मेरा एक सपना था कि मुझे मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस होगा, ये मेरा तब से काफी काफी शुरुआत से मेरा एक सपना था। बट शादी हो गई,

0: या जब तक दवाई चालू है तब तक उसको उस चीज से आराम पड़ कि ये अब ठीक हो गया आप बंद कर देते हैं, ये सोच के जैसे ही बंद कर दे वो वापस शुरू हो जाता है। इससे ये सिलसिला चल रहा था कुछ साल करीबन तक, साल 8-10 महीने साल तक ये चल रहा था। वो भी परेशान थी, मैं भी परेशान थी कि क्या किया जाए। तो उस रिसर्च में मैंने पढ़ते पढ़ते कि वाई द ड्राई स्किन एंड उसके ऊपर क्या इलाज हो सकता है, तब जाकर के मुझे पता चला कि हैंडमेड सोप करके कुछ है। तो अभी हैंडमेड सोप, मैं तो ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना तो मैं साइंस फील्ड से बिलोंग करती हूँ, ना तो मैं कॉस्मेटिक फील्ड से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत नया था कि क्या है, कहाँ से इसको कैसे सीखा जा सकता है, इसको कैसे मैं मेरी बेटी को दे दूँ। तो मार्केट में तो ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो मैंने पहले उसमें से कुछ चीज़ें ट्राई की जिससे उसको फर्क पड़ गया। और शुरू से एक जज्बा था कि मुझे मेरा खुद का बिजनेस करना था, खुद का ये सब मतलब वेंचर करना था। तो फिर एक बत्ती जल गई कि क्यों नहीं मैं इसी में करूँ। और मैंने फिर सीखना शुरू कर लिया, कुछ कोर्सेज किए, जैसे कि सोप मेकिंग का कोर्स किया, बॉडी बटर्स का कोर्स किया, क्रीम्स लोशंस ऑयल्स, जितना भी मुझसे बन सकता था मैंने वो हर एक चीज सीखना शुरू कर दिया। और जो चीज सीखती थी उसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होता था मेरी बेटी के ऊपर। रमेश जी सच मानिए, जिस चीज के पीछे मैं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने डॉक्टर्स के पीछे भाग रही थी, उस चीज को मैंने 3 हफ्ते में उसके जख्म भर गए और आगे वाले 2 महीने में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो ये नेचर की देन है, ये कुदरत का करिश्मा है, मैं ये कहना चाहूंगी। बट हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम भागते हैं केमिकल्स की तरफ जिससे जल्दी रिजल्ट मिले, जिससे हम बहुत बाहरी खूबसूरती के ऊपर हम ध्यान देते हैं। बट हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि आयुर्वेद जैसे जो श्रेष्ठ शास्त्र है वो हमारी संस्कृति से आए हुए हैं और हम उन्हें कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। तो मुझे एक मौका मिल गया कि मैं उसको मेरे जरिए उसको शुरू करूँ, मेरी बेटी के जरिए उसको शुरू करूँ। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मतलब बेटी तो उसके ऊपर तो रिजल्ट्स दिख ही रहे थे। तो आजू बाजू आस पड़ोस वालों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या है जो वो अचानक से इतनी ठीक हो गई, उसकी स्किन में अचानक से इतना बदल कैसे आ गया। तो फिर वहां से मेरे बिजनेस की शुरुआत हुई। तो वो फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, मेरे बिल्डिंग वाले जो मेरे पड़ोसी आस पड़ोसी थे, वहां से मेरे बिजनेस की शुरुआत हुई। और धीरे धीरे जो चीज मैंने एक साबुन, एक कोल्ड प्रोसेस्ड साबुन, एक और एक बाथ सॉल्ट, इस जर्नी से जो शुरुआत की थी, जो अब 18 से 20 प्रोडक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और उसमें से मेरे 4 प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक सर्टिफाइड हो गए। सो दिस हैज बीन द जर्नी ऑफ अ मदर फॉर द मदर नेचर।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात। अभी हमने मैं एक हमारे राम प्रकाश करके व्यक्ति थे जो यूएस से मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टाइटल दिया। पहले तो मैं टाइटल सुन के ही कंफ्यूज था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्राइसिस टर्न्स इनटू अपॉर्चुनिटीज।
0: ट्रू ट्रू ट्रू
1: तो वो चीज मुझे लगा कि उन्होंने फिर अपने लाइफ में बोला, कि मैं बोला ये कैसे संभव है। जैसे उनको ये सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, हमारा पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था, वो एकदम से करप्ट हो गया, हम लोग पूरी तरह से खाने के लाले पड़े। ऐसे सिचुएशन में आप सोच सकते हैं, एक बहुत ही मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम जी रहे थे यूएस में, और अचानक सब कुछ गया, तो मुझे लगा अब तो मेरा जीवन खत्म हो गया। लेकिन पता नहीं वहाँ ऐसे हुआ कि मैं काम करने लगा और फिर धीरे धीरे मेहनत करके इंजीनियर बना और फिर वापस सब कुछ वापस आ गया। तो मैंने क्राइसिस अपॉर्चुनिटी दिया। हो सकता है कि मेरे पिताजी का मेरे पे वो सारी चीजें मैं करता रहता या उनका बिजनेस संभालता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास वो क्राइसिस होने की वजह से मुझे करने का अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, तो मैं तो आपके साथ भी आप किया जो
0: तो मुझे कहीं ना कहीं एक मौका मिला कि जो मैंने मतलब एज अ मदर जो मैंने मेरी बेटी के लिए शुरू किया था, जिस जिस विचार से मैंने ये सारी चीजें सीखना और बनाना शुरू किया था, उसको क्यों ना मैं और 10 लोगों में और 100 लोगों में और जितने भी लोगों तक मैं उसको पहुंचा सकूं, वहां तक मैं पहुंचा के मतलब इट्स वी आई कैन ऑफर समथिंग बेटर टू द कम्युनिटी, इस थॉट से मैंने वो आगे करना शुरू कर दिया। एंड दूसरी चीज सर ये है कि कहीं ना कहीं हम जो केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसका जो
1: जी
0: जिस तरह से वो बनते हैं, जिस तरह से उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, उससे भी कुदरत को हानि पहुंचती है और उसका जो रेसिड्यू निकलता है उससे भी हानि होती है। ऊपर से जो हम यूज करते हैं उससे भले आपको ऐसे लगे कि हाँ भाई 10 मिनट में मैं गोरी हो गई या 10 मिनट में मुझे असर दिख गया, बट कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग टर्म आप खुद को भी उससे तकलीफ पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आई स्टार्टेड विद समथिंग टू गिव एज माई गिफ्ट फॉर द कम्युनिटी।
1: तो ये जो स्किन के लिए आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, ये कैसे आपने सीखा या कैसे शुरू हुआ ये? जैसे आपने कहा कि आप
0: जी
1: चीजें, किया और कहीं अच्छा।

0: हाँ,
1: करना
0: तो
1: चाहिए।
0: मैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं साइंस स्टूडेंट नहीं थी, मुझे केमिकल्स का कोई ज्ञान नहीं था, ना कि मैं कोई डॉक्टर हूँ कि मुझे मेडिसिन का ज्ञान है, ना कि मैंने कोई कॉस्मेटिक्स का कोर्स किया है, क्योंकि गवर्नमेंट, मतलब देर आर फ्यू डॉक्टर्स हु आर एलिजिबल टू लर्न द कॉस्मेटोलॉजी या कॉस्मेटिक्स मेकिंग कोर्सेज फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स, तो मेरे पास वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी. तो मेरे पास एक, और ऊपर से एज भी, एज बार जो रहता है वो भी मेरा क्रॉस हो चुका
1: बिल्कुल
0: था.
1: बिल्कुल, वो भी अलग है।
0: तो हाँ, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ये सारी चीजें सीखूं. आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड टीचर, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से मुझे जो बेसिक नॉलेज था कि प्रोसेसेस जो थे, या जो उसके पीछे जो केमिकल प्रोसेसेस रहते हैं, या उसके पीछे जो साइंस था, वो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छे तरीके से सिखाया. मैं ये क्या कहूंगी यहाँ पर कि मैं नसीबवान थी कि जब मैं सोप मेकिंग सीख रही थी, उसी दौरान मेरी मुलाकात एक आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट से हुई. ठीक है.
1: अच्छा,
0: हाँ, तो वो मेरे साथ वो भी कोर्स कर रही थी, हालांकि उन्होंने ऑलरेडी कॉस्मेटिक्स का कोर्स किया हुआ था, उन्होंने ऑलरेडी सारी, मतलब उनकी खुद की प्रोडक्ट रेंज बहुत ज्यादा बड़ी, बट उनके पास ये कोल्ड प्रोसेस सोप्स नहीं थे. तो हमारी मुलाकात उस कोर्स के दौरान हुई और हम दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई. फिर मैं जो भी चीज बनाती थी या जो भी फॉर्मूला मैं बनाती थी, तो समझिए अभी मुझे ड्राई स्किन के लिए सोप बनाना है. तो बेसिकली सोप में क्या है कि कुछ ऑयल्स हैं जो आपको सेलेक्ट करने हैं, उसके अगेंस्ट आपको अकुस्टिक सोडा है और पानी है, तो इन तीनों चीजों को मिला करके आपको साबुन बनाना. तो मैं, जो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था, मैं सीख रही थी, तो मैंने उनसे काफी सारी चीजें सीखी कि हर एक ऑयल का अपना एक गुणधर्म होता है. तो कोई ऑयल आपको ठंडक पहुंचाता है, कोई आपकी बॉडी की हीट बढ़ाता है, कोई आपके स्किन के पोर्स क्लॉग करता है, कोई नहीं करता है. हर एक इसेंशियल ऑयल की भी अपनी अपनी विशेषताएं होती है. जैसे कि जिस चीज के लिए मैं तुलसी का तेल या बेजिल का तेल मैं यूज कर सकती हूँ, उसी रिजल्ट के लिए मैं लेमन ग्रास का ऑयल नहीं यूज कर सकती हूँ, या मैं कॉफी का ऑयल उस चीज के लिए नहीं यूज कर सकती हूँ. तो ये सारी चीजें मैंने उनसे सीखना शुरू कर दिया. सो डायरेक्टली इट वॉज, दो आई कुडंट एनरोल टू अ कॉस्मेटिक्स कोर्स, आई स्टार्टेड लर्निंग इट थ्रू हर नोट्स, एंड शी वॉज काइंड इनफ टू शेयर हर नॉलेज. सो आई विल बी ऑलवेज ओब्लाइज्ड टू हर टू शेयर हर नॉलेज विथ मी. एंड फिर क्या होता था कि मैं जो भी चीज बनाती थी, जो भी फॉर्मूलाज मैं बनाती थी, वो मैं उनसे शेयर करती थी, एंड शी यूज्ड टू सजेस्ट मी द करेक्शंस कि जी अब इससे मैं सीखती हूँ. बट जो मैंने कोर्सेज किए थे, वो जैसे कि हम स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को बोल सकते हैं कि हमें जो ज्ञान दिया जाता है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे कि तैसे हम नहीं यूज कर सकते हैं. तो वैसे ही मेरा भी हुआ कि कोर्स तो सीख लिया, टेक्निक तो समझ गई, लेकिन जो रिजल्ट चाहिए वो कैसे निकाले, तो वो मुझे डॉक्टर मनाली से मिला. एंड फिर हम, मतलब मैं वो यही कहना चाहूंगी कि मैं दो, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, मेरे पैकेजिंग के ऊपर मैं नहीं लिख सकती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड है, मतलब डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. बट हम वही
1: बिल्कुल
0: करते हैं कि मैं एक डर्मेट को मेरे प्रोडक्ट्स देती हूँ, वहां पे वो उनके क्लाइंट्स के ऊपर टेस्ट होते हैं, मेरे घर पे, मेरे बच्चों पे, मेरे फैमिली पे वो सारी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, और उसके बाद रिसर्च करने के बाद ही वो आप तक पहुंचते हैं.
1: जी, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे ये शुरुआत हुआ और कैसे ये साबुन बनाने से जो है एक अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ पर आपके फ्रेंड जिससे आपकी मुलाकात हो गई और उनके द्वारा ये सारा काम। तो अच्छा, ये जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं नेचुरल प्रोडक्ट, वो चीजें कहाँ से मिल जाती हैं,
0: सर
1: कैसे आपके पास आती?
0: बहुत सारी चीजें जैसे कि ऑयल्स है या एसेंशियल ऑयल्स है, वो तो हमें कहीं ना कहीं से सोर्स करने पड़ते हैं, बट दे कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग जगह से आते हैं. कुछ चीजें ऐसी है जो कि यहाँ पे नहीं बनती, तो वो, बट हालांकि आई डोंट इम्पोर्ट देम, माई वेंडर्स अरेंज देम फॉर मी. एंड बाकी तो सर चीजें अपने अगल बगल में ही मिल जाती है, जैसे कि एलोवेरा हो गया, नीम, तुलसी, ये चीजें जो जो हम पुश्तों से सुनते आ रहे हैं दादी माँ के नुस्खों में कि इससे वो होता है, ये खा लो तो वो होता है, तो वो सारी चीजें तो अपने इर्द गिर्द ही मिल जाती है, उसके लिए कहीं ज्यादा दूर तक जाना नहीं. एंड सेकेंडली जो हर्ब्स यूज होते हैं, आई मेक श्योर कि दे आर लैब टेस्टेड, एंड जो कॉस्मेटिक ग्रेड, उसमें भी दो चीजें होती है, एक कॉस्मेटिक ग्रेड होता है और एक मेडिसिनल ग्रेड के लिए प्रोडक्ट्स, मतलब रॉ मटेरियल्स बनते हैं. सो जो हम यूज करते हैं वो आई मेक श्योर कि वो उस लेवल के हो कि कॉस्मेटिक ग्रेड में थोड़ी अल्ट्रेशन होती है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव बन जाए. मेडिसिनल ग्रेड के प्रोडक्ट्स जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, सो वी मेक श्योर दैट वी प्रोक्योर दोज काइंड ऑफ रॉ.
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया किस तरह से आप काम करते हैं उसके बारे में आपने बताया। और नेचुरल प्रोडक्ट को मंगाने के लिए मेरे ख्याल से जैसे दूसरी चीजें हैं उसे मंगाने के लिए आपको टाइम नहीं लगता क्योंकि वो प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं, लेकिन इन चीजों के लिए
0: सर
1: आपको
0: इंडिया में तो
1: शायद
0: कोई
1: ज्यादा।
0: कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इंडिया इन चीज़ों से भरा पड़ा है, हमारी इग्नोरेंस है इन सारी चीज़ों की तरफ, बस ये एक ही बात है.
1: बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक आपने जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं वो जैसे समझो आपकी बेटी का जो तकलीफ था उसको दूर करने के लिए आपने सोप बनाया पहले, और दूसरे जो प्रोडक्ट है उनको कैसे आपने रिसर्च कर बना क्या किया, कितने प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट्स आप बोल रहे थे तो? जी
0: हाँ, तो जो दो प्रोडक्ट्स से पहले जिससे मेरी बेटी को आराम पड़ा वो था, एक तो मिल्क एंड हनी सोप था और दूसरा फुट सोप था. तो फुट सोप क्या है, बाथ सॉल्ट आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा, सबको पता होगा. तो बाथ सॉल्ट भी क्या है कि अपना ये भी पुराना दादी माँ का नुस्खा ही है कि गर्म पानी में नमक डाल के उसे सेक कर लो तो आपको पैर में दर्द कम हो जाएगा, पैर की सूजन कम हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. गोइंग फर्दर जो ये वो है जो अपना जाड़ा नमक जो है, समुन्द्र वाला नमक, सी सॉल्ट जिसे है. सो
1: जी
0: गोइंग
1: जी
0: फर्दर सॉल्ट में भी काफी सारी चीजें हैं. इप्सम सॉल्ट करके एक आता है जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं. तो मैग्नीशियम
1: जी जी
0: सल्फेट, हिमालयन सॉल्ट जो पिंक सॉल्ट है आजकल, उसका भी बहुत ज्यादा प्रमोशन चल रहा है हर तरफ. ये दो सॉल्ट्स थे, उसमें भी आलमंड ऑयल, बेजिल ऑयल और लेवेंडर ऑयल. तो तुलसी के तेल से उसके जख्म भर गए, नमक के पानी से उसका जो इन्फेक्शन था वो कम हो गया, और लेवेंडर से और बादाम के तेल से मॉइस्चराइजेशन मिल गया. तो इस तरह से वो मेरे पहले दो प्रोडक्ट्स थे. उसके बाद लोग को, मतलब जैसे जैसे लोगों को पता चलने लग गया कि मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ, तो लोगों से डिमांड आने लग गया कि आने का तेरे पास ऑयली स्किन के लिए कुछ है, तेरे पास कोई क्रीम है, तेरे पास शैम्पू है, कंडीशनर है, एन नंबर ऑफ थिंग्स पीपल स्टार्टेड
1: अच्छा
0: आस्किंग मी कि
1: अच्छा
0: तेरे पास ये है, तेरे पास वो है. मेरे पास नहीं था, इसके लिए मैंने वो सीखना शुरू कर दिया और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसको एज अ प्रोडक्ट लॉन्च किया. तो माई प्रोडक्ट्स हैव ऑलवेज बीन आउट ऑफ द नीड फॉर द बायर, नॉट कि मुझे ये आता है तो मैं ये बेच रही हूँ, ऐसा नहीं था.
1: अनका जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। जैसे जैसे लोगों का आपके पास डिमांड आता गया फिर उसके बाद आपने सोचा कि यार इसकी भी डिमांड है तो इसको भी बनाना सीखें और इसको भी बनाएं, तो लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसके अनुसार आपने प्रोडक्ट बनाए। और अभी तक कितने प्रोडक्ट हैं आपके पास थोड़ा सा बताइए हमें।
0: सर ऐसे मतलब ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आगे भी और भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बट आज की तारीख में अगर आप मुझे पूछे कि कितने प्रोडक्ट्स हैं तो मेरे हाथ में आज की तारीख में 20 प्रोडक्ट्स हैं. और उसमें से चार, जैसे कि मैंने बताया, चार आयुष सर्टिफाइड, दैट इज आयुर्वेदिक सर्टिफिकेशन हो चुका है, और पांच मेरे FDA के अप्रूवल के लिए इन प्रोसेस है. तो अब शायद जिन्हें पता ना हो उनके लिए कि किसी भी कंट्री में, ये भारत में तो है ही बट बाहर भी किसी भी कंट्री में कोई भी कॉस्मेटिक, फिर साबुन भी कॉस्मेटिक्स में ही आता है. तो ये सारी चीजें अगर आप लार्जर स्केल पे बेचना चाहते हो तो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवमेंट अगर आप बेच रहे हो तो यू आर डूइंग एन इलीगल बिजनेस. तो मेरे लिए वो होममेड से हैंडमेड तक का जो जर्नी था वो थोड़ा मुश्किल था, जिसमें थोड़ा वक्त लगा, और वो चैलेंज मुझे अभी भी आता है कि जब मैं किसी से बोलती हूँ कि ये मेरा, दिस इज माई हैंडमेड प्रोडक्ट, तो लोग थोड़ा सा उसको,
1: सोचते हैं
0: हाँ कि
1: इग्नोर।
0: हाँ अच्छा मतलब होममेड है. सो होममेड तो खाना भी होममेड ही होता है अपना, बट होममेड खाने को ही ज्यादा प्रायोरिटी या ज्यादा हेल्दी हम मानते हैं.
1: स्टैंडर्ड
0: तो एक थोड़ा सा वो जो नीचे अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग,
1: से
0: तो
1: समझ
0: हाँ मतलब ब्रांड कॉन्शियस नहीं
1: और
0: हो. हाँ
1: राइट
0: आप अच्छा ठीक है, आप तो होममेड हो जी. तो वो होममेड से हैंडमेड ब्रांड की तरफ का मेरा जर्नी अभी भी चल रहा है, और दैट इज अ चैलेंज फॉर मी टू ब्रेक दैट मोशन फॉर मी एंड राइज अप. तो अभी मेरे 20 प्रोडक्ट हो गए जिसमें से चार मेरे आयुष सर्टिफाइड हो गए, और आगे के पांच छह प्रोडक्ट्स मेरे FDA अप्रूवल के लिए प्रोसेस में है. सो सूनर वी विल बी हैविंग 10 प्रोडक्ट्स व्हिच विल बी सर्टिफाइड, एंड अदर देन दैट ऑन बोर्ड 20 प्रोडक्ट्स है, और कम से कम पांच प्रोडक्ट्स, मतलब जो सर्टिफिकेशन है उसके अलावा पांच प्रोडक्ट्स और लाइनअप में है कि हम लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी.
1: बिल्कुल बिल्कुल। अनघा एक और बात पूछना चाहूंगा, आजकल जो विशेष रूप से जैसे स्किन डिजीज होते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं जल्दी से, तो ऐसा मैंने पिछली बार एक डॉक्टर से मैंने बात किया था बॉम्बे का ही, उन्होंने कहा जो इचिंग है आजकल बहुत ज्यादा वो लोगों को हो रहा है और उसमें ठीक होने में बहुत टाइम लेता है। पहले क्या होता था कि किसी भी चीज को मना ऑइंटमेंट लगाते ही 2 दिन में 3 दिन में लोग ठीक हो जाते थे, लेकिन ऐसा आज नहीं है। आज देखते हैं कि एक दो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास बड़ी लंबी लाइन लगती है और उनके एक फाइल बनती है जैसे कोई कैंसर पेशेंट की फाइल बनी हो, और बड़े लंबे लंबे बड़े बड़े तगड़े जो मेडिसिन हैं वो लिए जाते। तो क्या इतना मुश्किल है, और क्या उसका कुछ अल्टरनेटिव है आपके इस नेचुरल प्रोडक्ट?
0: सर मुश्किल तो है और मुश्किल हमने ही बना के रखी है, क्योंकि देखिए स्किन के लिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीज़ें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, और हमने हर तरफ गंद मचा के रखी हुई है। हमारा डाइट ज़्यादातर बहुत मतलब आजकल आजकल की जनरेशन का ज़्यादा करके बहुत ज़्यादा जंक फूड पे डिपेंडेंट है, तो उस वजह से अंदरूनी बीमारियां हो जाती है। सेकेंडली पोल्यूशन की वजह से भी आपकी स्किन खराब हो जाती है। ये दोनों चीज़ें मतलब ए अपने कंट्रोल में है, बी अपने कंट्रोल में नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि जो हम डे टू डे लाइफ में हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रमाण में केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे कि मान लो अपना जो साबुन है, सीधा साधा साबुन है, उसमें कलर्स हैं जो आपको स्किन इरिटेशन देते हैं, उसमें परफ्यूम्स है, अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम्स है जो आपको स्किन बेने ये देते हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में सल्फेट्स यूज किए जाते हैं, पैराबेंस यूज किए जाते हैं। तो सर जहाँ तक कि मेरा रिसर्च मुझे कहता है ना, जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ, तो सल्फेट्स और पैराबेंस ये वो चीज़ें हैं कि इन चीज़ों से आपको मतलब आप जब नहा के आते हो तो आपको एक रूखा सापन महसूस होता है स्किन पे, स्किन खींची खींची सी लगती है। तो ये सारी चीज़ें ये सल्फेट्स की वजह से होती है। सल्फेट का काम ये है कि आपके स्किन पर से ऑयल हटाना है। तो कोई भी सरफेस हो आप, वो सल्फेट काम करेगा, जहाँ तेल है वो तेल को साफ करना है। तो आप उससे बर्तन भी धो लेते हो, आप उसी से कपड़े भी धो लेते हो, आप उसी से नहा भी लेते हो। और स्किन ये ऐसा अपनी बॉडी का पार्ट है जो कि पोरस है, तो वो सारी चीजें अब्जॉर्ब करते रहता है। और सल्फेट की वजह से कई लोगों को कैंसर तक जैसी बीमारियां होती है, ये रिसर्च कहता है। इवन मैं नहीं कहती, ये रिसर्च कहता है। आप भी अगर कहीं गूगल कर लो तो आपको भी पढ़ने में मिल जाएगा।
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: मेरी कोशिश ये है कि ये जो सारी चीजें हैं उनको अपने रूटीन से, या मेरा सजेशन है सबको कि अपने रूटीन से आपके प्रोडक्ट में पढ़ लो कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। उसमें अगर SLS है, उसमें अगर SLES है, उसमें अगर पैराबेंस है, तो ये प्रोडक्ट्स आप जितने कम हो सके उतने कम यूज कीजिए। उससे कुछ हद तक ये जो इचिंग वाला जो कंप्लेंट्स है लोगों की वो कम हो सकती है। डाइट तो
1: बिल्कुल
0: आपको मतलब करना ही है, उसके ऊपर ध्यान देना है, वो तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू कमेंट ऑन दिस।
1: जी। एक इन्होंने मैसेज किया है, मानसी जी ने, लिखते हैं वॉन्ग इन मराठी, इट्स रिकवरेबल और नॉट टोटली, वो उनका पूछने का।
0: आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट बॉन्ग जाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता है, बहुत ज्यादा वक्त लगता है। एंड आइडियली यू शुड कंसल्ट अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड आइडियली यू शुड कंसल्ट एन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दिस, क्योंकि वापस एलोपैथी विल इंजेक्ट लॉट ऑफ केमिकल्स, लॉट ऑफ मतलब हालांकि कुछ हद तक वो नेसेसरी है, बट बॉन्ग के लिए आप आयुर्वेदिक उपचार करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
1: अनघा जी, काफी अच्छी बात आपने बताया, और फोंग, ये मानसी जी आप समझ लिया होगा कि क्या करना है आपको। इसमें थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है, और एक तो आपको डाइट सिस्टम को और डर्मेटोलॉजिस्ट को दोनों को ही फॉलोअप करना पड़ेगा। दोनों का कंसल्टिंग जो है प्रॉपरली अगर आप लेते हैं तो चीजें आसानी से ठीक हो सकती है। और कोई भी चीज दुनिया में वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब हम उसको ठीक से समझे, डायग्नोस ठीक से हो जाए तो फिर काम करने में आसानी हो जाता है। डायग्नोस प्रॉपरली हो जाए किस कारण से ये चीजें बन रही हैं, तो वो कारण पता चल जाए तो निवारण आसान है। जब तक कारण नहीं पता चल रहा है तो वो चीजें जो है थोड़ी सी लंबी चलती। तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि इन फ्यूचर बहुत सारे तो इतने सारे प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है अलग अलग बनाने में, तो क्या बाय ऑर्डर आप उसको बनाते हैं या बना के रखते हैं?
0: सर कुछ चीज़ें हैं जो बना के रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कोल्ड प्रोसेस्ड सोप जो हम बनाते हैं उसका प्रोसेस ऐसा है कि ऑयल ले लिया, उसको मतलब बैटर उसका बन गया, मोल्ड में डाल दिया, उसके बाद 24 घंटे बाद वो मोल्ड से बाहर निकलता है। उसके बाद मुझे उसको 3 हफ्ते तक, उसको क्यूरिंग पीरियड कहते हैं, उसको 3 हफ्ते का हमें क्यूरिंग पीरियड देना पड़ता है, शेड ड्राई देना पड़ता है। तो अगर आप मुझसे कल कहेंगे कि अनंगा जी मुझे मलगन भी साबुन चाहिए, तो मैं कल आपको नहीं दे पाऊंगी, तो उसके लिए मुझे प्री प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है। सो कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे स्टॉक में रखनी पड़ती है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम मतलब छोटी बैच में बनाते हैं, तो मैं एट अ टाइम 1 किलो 2 किलो इतना ही बनाती हूँ, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो तक का
1: अच्छा
0: बैच बनाती हूँ। तो जैसे वो खत्म हो जाता है हम फ्रेश बनाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि एक बार 50 किलो 100 किलो 1000 किलो बना के रख दिया और फिर 2 साल
1: बना के
0: में रेडी
1: रखा हो
0: कर
1: फिर।
0: दिया, वो नहीं होता है।
1: अच्छा इसमें एक मेडिसिन या फिर सोप जो भी बनाते हैं उसमें एक्सपायरी डेट वगैरह आती है या क्रीम में आती है, तो क्या आयुर्वेद जो आप बनाते हैं उसमें भी आप लिखते हैं या नहीं लिखते,
0: नहीं लिखना
1: या
0: पड़ता
1: फिर
0: है
1: आपके?
0: सर, लीगली लिखना ही
1: अच्छा
0: पड़ता है।
1: हाँ, तो बेसिकली कितना दिन चलता है आपका बनाओ या प्रोडक्ट जो है कितना टाइम तक चलता है?
0: सर कोल्ड प्रोसेस सोप जो है वो, ये जो थॉट है ये इंडिया में अभी थोड़ा नया है लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जो वो बनता है तो फॉरेन कंट्रीज में सर क्यूरिंग पीरियड 1 साल का देते हैं वो लोग। जैसे कि 100% ऑलिव ऑयल का अगर अगर सोप है तो उसको 1 साल तक वो क्यूर करते हैं, उसके बाद वो यूज करने के लिए निकालते हैं। बट हाँ हम, हमारे में इतने पेशेंस नहीं है, हमारी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि हमें सब जल्दी चाहिए और हमें सब इंस्टेंट चाहिए। तो उस वजह से मुझे 3 हफ्तों से ज़्यादा मैं उसको क्यूरिंग पीरियड नहीं दे पाती, उसके बाद वो सेल के लिए आता है। तो सोप्स के लिए बेसिकली देर इज नो एक्सपायरी टेक्निकली, लेकिन जैसे कि हम इसमें सारी चीज़ें नेचुरल यूज करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका कलर चेंज होना, उसकी खुशबू जो है वो कम हो जाना, ऐसी चीज़ें होती है। सो फॉर दैट रीजन वी कीप द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स। एंड यही चीज़ें बाकी सारे प्रोडक्ट्स को भी अप्लाई होती है कि 18 महीने तक तो प्रोडक्ट को कुछ नहीं होता है फॉर श्योर, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा डिटेरियरेट हो जाता है। मतलब जैसे कि खुशबू है, उसका रंग है, ये चीजें बदलना शुरू हो जाता है। सो फॉर दैट रीजन वी कीप द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स फॉर एवरी प्रोडक्ट।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जो आपके प्रोडक्ट हैं वो ज्यादातर कौन से मतलब स्किन डिजीज को ठीक करते हैं स्पेशली, जो जिस पे आपने काफी रिसर्च किया हो कि आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये चीज के लिए ये चीज?
0: तो मेरे प्रोडक्ट्स वैसे तो हर एक ने यूज करना चाहिए, भले उसको स्किन डिसीज है या नहीं है। स्किन डिसीज होने तक इंतजार मत कीजिए, स्विच योर सोप्स एंड योर प्रोडक्ट्स एज अर्ली एज यू कैन। बट जिन्हें सोराइसिस है, जिन्हें सनबर्न जैसे इश्यूज है, जिन्हें स्किन इचिंग का इशू है, जिन्हें ड्राई स्किन का इशू है, इन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा परिणामकारक और यूजफुल है।
1: तो आपके प्रोडक्ट को मना रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि नेचुरल आप अच्छी चीजें बना रहे हैं, तो जो अवेलेबल केमिकलाइज चीजें हैं उसको रिप्लेस अगर करते हैं तो आपका स्किन ब्यूटी भी बनी रहती है और आप केमिकल का जो साइड इफेक्ट्स होगा उससे भी बचे रहते हैं, ये आपका
0: कुछ कहना
1: कहना?
0: चाहूंगी सर यहाँ पे
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी, ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कहीं पर भी कि आप सैलून में मत जाइए या पार्लर में मत जाइए, आप फेशियल मत कीजिए। प्लीज कीजिए, जरूर कीजिए, वो आज के जमाने में वो इट्स अ नीड ऑफ आर और इट्स अ नीड ऑफ टाइम। लेकिन आप फेशियल करके आए हैं समझिए, तो फेशियल को अगर लंबे समय तक आपको उसका रिजल्ट चाहिए, उसका इफेक्ट चाहिए, तो फेशियल के बाद आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। क्योंकि अगर आप केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो जो गुडनेस आपके स्किन में आपके डॉक्टर ने हो या आपके ब्यूटिशियन ने डाली है, वो आप जल्दी से जल्दी आपकी स्किन से निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे, वो रहेगा और बहुत ज्यादा देर तक रहेगा। इसके लिए मतलब ऑल फॉर एवरीथिंग, मतलब भले स्किन प्रोडक्ट्स है, हेयर केयर प्रोडक्ट्स है, प्लीज स्विच टू नेचुरल स्किन केयर बिकॉज इट विल कीप यू हेल्दी एंड ब्यूटिफुल ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
1: जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, और स्विच ऑफ करना अच्छा है क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो अच्छा है। और अर्चना जी मैं चाहूंगा कि अनघा जी से कैसी आपकी मुलाकात हुई, थोड़ी सी बातें हम जो शेयर कीजिए।
2: रमेश जी हमारे शो पर ऑलरेडी जो एक गाना गा चुकी है बिंदिया राणे, उन्होंने मुझे अनघा जी से कनेक्ट करवाया। एंड
1: अच्छा
2: थैंक यू
1: अच्छा
2: बिंदिया फॉर कनेक्टिंग मी विद अनघा।
1: धन्यवाद।
2: एंड अनघा, जो आपकी अभी बातें सुनी, मदर केयर टू मदर नेचर विद मदर नेचर, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एंड लॉट ऑफ इंसाइट्स और करेजियस जर्नी बाय अ मदर, हैट्स ऑफ टू यू। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने आपके प्रोडक्ट का नाम क्या दिया और क्यों दिया?
0: नाम के पीछे दो चीजें थी। जब मैं ये कंसेप्चुलाइज कर रही थी, मतलब मैंने शुरू तो कर दिया था 2017-2018 से ही मैंने ये बनाना शुरू कर दिया था, बट जब ये स्केल अप हो रहा था, जबकि मुझे इसको एज अ ब्रांड या एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करने का टाइम था, तब मैंने अपने इतनी तो आदत है कि पहले सबसे पहले दोस्तों से सब हर बात दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचती। तो मैंने मेरी दो सहेलियों को बताया कि यार मैं ऐसा ऐसा सोच रही हूँ, क्या ये किया जा सकता है, एंड दे पुश्ड मी कि प्लीज डू दिस एंड वी विल सपोर्ट यू बाय ऑल आर मीन्स एंड व्हाट एवर वी कैन डू फॉर यू। तो वो हम तीन जन थे, अनघा, सोनिया और आर्या। तो हम तीनों के नाम का एक एक अक्षर उठा करके अनेरिया ये शब्द बना। लेकिन अगर हम अनेरिया का मतलब जानने की कोशिश करें तो अनेरिया का मतलब है फॉरेन लैंग्वेजेस में फ्लावर गर्ल या मैजिकल एंड गॉड्स गिफ्ट। ये अर्थ निकलते हैं अनेरिया इस शब्द के। सो दैट्स व्हाट अनेरिया मीन्स एंड

0: व्हाट वी डिलीवर।
1: सही ना।
2: थैंक यू अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछा। और अनेगा, मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक मैसेज सभी दर्शक मित्रों को क्या बताना चाहेंगे आप, क्योंकि काफी टाइम से आप इन चीजों को कर रहे हैं, तो नेचुरली लोगों की हैबिट्स का आपको पता ही होगा और लोग आपको फोन करके बताते भी होंगे, तो आप थोड़ा बहुत तो उनका जम्पशन हो गया होगा क्योंकि लोगों के पास मोस्टली क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो आप जरूर एक छोटा सा मैसेज इन प्रोडक्ट को लेकर क्या बताएं।
0: प्रोडक्ट्स को लेके तो सर जितना आप कुदरत से जुड़ सकते हैं उतना आप जुड़ेंगे तो अच्छा है। ये एक बेसिक एकदम बेसिक मैसेज है मेरी तरफ से। लेकिन थोड़ा सा आगे चल के मैं कहीं ना कहीं मतलब बीइंग एन वुमन, मुझे जब मैं बिजनेस मतलब एक वर्किंग प्रोफेशनल से जब बिजनेस वुमन की तरफ मेरा जर्नी शुरू हुआ तो जो चैलेंजेस हमें आते हैं, तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस शो कि प्लीज सपोर्ट वुमन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द सोसाइटी। नॉट जस्ट बिकॉज कि वो दे कैन अर्न अ गुड मनी, बट दे कैन टेक योर कंट्री एंड योर नेशन टू अनदर लेवल। सो प्लीज सपोर्ट वुमन एंटरप्रेनर्स इज वन मोर थिंग दैट आई वुड टेक एन अपॉर्चुनिटी एंड रिक्वेस्ट द होल नेशन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म।
2: जी, अनेगा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया कि जो फीमेल यानी महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती हैं उसको जरूर सपोर्ट करना चाहिए, और दूसरा अपने नेचुरल जो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं वो भी हम भी के लिए अच्छा रहता है, तो उसके लिए आपने कहा कि उसे जरूर यूज करना चाहिए क्योंकि उससे हमारी नेचुरल ब्यूटी बनी रहती है और हम सभी को
0: बिल्कुल इतर चीजों के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है। तो
2: बिल्कुल
0: यू कैन बी सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट फॉर योर ओन एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्किन केयर।
2: तो थैंक यू अनेगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छी बातें आ रहा है, और चाहेंगे कि आप इसी तरह नए नए चीजें बनाते जाएं, नेचुरल प्रोडक्ट, और लोगों के बीच में आपके प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हो और लोगों को आपके प्रोडक्ट से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले और फटाफट वो आपकी तरफ जुड़े रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है मंजिल का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत
0: थैंक यू,
2: शुभकामनाएं।
0: थैंक यू एवरी रमेश, थैंक यू अर्चना दीदी एंड थैंक यू बिंदु। थैंक यू।
2: थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आज हमने अनघा को सुना, अनघा की जो स्टोरी है उससे पता चल जाता है कि इस और किस तरह से उनका आना होगा, उनके बच्चे के लिए वो इन सारी चीजों को सीखना शुरू कर दिया, रिसर्च किया, उसके बाद उनको लगा कि बच्चे के लिए मैं कुछ बनाऊं, तो फिर उन्होंने सीखना शुरू किया, सीखते सीखते उन्होंने इन चीजों को बनाया और उनका अच्छा रिजल्ट उनके बच्चे को मिला, फिर लोगों ने उनको सामने से पूछा कि आप ये भी करते हो क्या, ये भी बनाते हो, तब फिर उनको लगा कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए भी करूँ, तो फिर उन्होंने लोगों की डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ऐसा है कि भाई आपको ऐसे क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले ही बताना पड़ेगा इनको, तब जाके ये बना के फिर आपको दे देगी, तो नेचुरली ये चीजें जो है घर में बनाती है, होममेड है, तो हाई क्वालिटी वाला मिल जाएगा और आपको अच्छा चीज है, तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप ऐसे जो
0: मनीष जी, क्या
2: होममेड।
0: एक एक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे सकती हूँ?
2: जी, हाँ जी बताइए।
0: जी, तो अगर कोई भी जो इस कार्यक्रम को सुन रहा है वो अगर हमारे प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है तो हम आज की तारीख में अमेजोन पर अवेलेबल है। हम एलबीबी क्रॉप शॉप ऐसे कुछ छोटे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अवेलेबल है। हमारी खुद की वेबसाइट है www.aneria.com, यहाँ पर भी आपको हमारे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं। इसके अलावा मैं मेरा नंबर बता रही हूँ, 9619188854। एक बार दोहराती हूँ, 9619188854। आप मुझे इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं अगर कोई भी मुझसे जुड़ना चाहता है।
2: तो दोस्तों आपका नंबर भी मिल गया, आप उनसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, आपको क्या तकलीफ है वो बताने से उस टाइप के प्रोडक्ट आपको जो है सजेस्ट किए जाएंगे और आप फिर उस प्रोडक्ट को ले सकें। तो चलिए फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अच्छी चीजें माना नेचुरल प्रोडक्ट जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ही आपका जो है बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा, आप साइड इफेक्ट से बचे रहेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत।

0: कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्नी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। चलो
3: कोख को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

0: अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आपको ऐसी नारी शक्ति से मिलवाना चाहूंगी जिनका नाम है सौम्या रेवणकर। आप बेंगलोर के रहने वाले हैं और 5 वर्षों से आप राजस्थान आबू तलेटी में रहते हैं। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। आपने बीकॉम फाइनल तक पढ़ाई की हुई है और आप अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं। आप सभी के साथ हिलमिल करके प्यार से रहते हैं और बहुत ही आपका व्यवहार सौम्य व्यवहार है। तो और भी बहुत सारी विशेषताएं जो आपके द्वारा ही जानेंगे, तो ऐसी नारी शक्ति से आप सभी को मिलवाना चाहूंगी। देखिए, वंदे मातरम स्पेशल नारी शक्ति पर आधारित है कि महिलाओं के अंदर कोई ना कोई ऐसी विशेषता होती है जो ऐसे तो पता ही नहीं चलता है कि इनके अंदर क्या विशेषता है, लेकिन रेडियो मधुबन के जरिए आप समझ सकते हैं कि महिलाओं में क्या नहीं है। तो आइए हम आपको मिलवाएंगे। सौम्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: थैंक यू
0: जी। सौम्या जी, आपकी स्माइल बता रही है कि आपको अच्छा लग रहा है यहाँ आकर।
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पधारे हैं। आज आपके अनुभव हम सुनेंगे। तो आपकी उम्र वैसे 55 वर्ष की है, 55वां अभी लगा है।
1: अच्छी।
0: तो चलिए 55 में बचपन को याद कर लेते हैं।
1: जी जरूर जरूर करेंगे
0: जी।
1: हम तो बचपन से ही बेंगलोर से ही पैदा है, कर्नाटक बेंगलोर से ही है हम लोग। हम यहाँ अभी 5 साल हो गया, मगर बचपन में हम अध्यात्म में और धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि थी। हम जब से पैदा हो गए दादी के साथ ही हम रहते थे। दादी पूजा पाठ में बहुत चलती थी।
0: अच्छा, तो दादी जी की वजह से आपको भी ऐसे ईश्वर में रुचि होने लगी।
1: हाँ जी।
0: तो आप बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति कर रहे।
1: हाँ जी।
0: तो दादी जी क्या करते थे, मंदिर वंदिर जाते थे या घर में पूजा पाठ करते थे?
1: दादी जी मंदिर भी जाते थे, मंदिर भी बनवाए थे। हम बचपन से दादी के साथ ही पले बड़े हैं। अब हमारे घर धार्मिक प्रवृत्ति है और बड़ा घराना था वहाँ हमारा, वहाँ बेंगलोर में। तो आने जाने वाले भी बहुत सारे थे, स्वामी लोग भी बहुत सारे आते थे, साधु संत आते थे, ऋषि मुनियों का आना जाना रहता था। मेरा दादी सबको एक आश्रिता दाता जैसे वो रहती थी। इसके उनके बाद में मेरे पिताजी और मम्मी दोनों ऐसे उसी रास्ते में चल पड़े थे।
0: अच्छा, ये बताइए आपके परिवार में कितने सदस्य, संयुक्त परिवार था?
1: हाँ, जॉइंट फैमिली थी हमारी। हमारी फैमिली में वैसे तो हम 23-24 लोग तो हमेशा घर में रहते थे और आने वाले वो लोग भी रहते थे। 30 तक हमारा घर में रोज सुबह शाम खाना बनता था।
0: अच्छा, तो उसमें आपके चाचा चाची?
1: चाची, बड़ी माँ, बड़ी पापा सब थे, और जॉइंट फैमिली होने के कारण कजिन ब्रदर्स, कजिन सिस्टर्स बहुत सारे थे
0: जी। तो कहाँ समय बीतता पता ही नहीं चलता।
1: नहीं,
0: क्योंकि इतना बड़ा परिवार है तो सभी भाई बहन साथ में हिल मिल करके रहे होंगे।
1: इसका एक रिजल्ट ऐसा है हमारे जिंदगी में, सबके साथ जुल मिल कर कैसे रहना ये भी हमको आसानी से आ गई। और सब काम करने की तरीका, साथ में मिलकर काम कैसे करे, वो एक करे हम एक दूसरे करे कैसे कर सकते हैं, वो सब हमको सीखने को मिला, बचपन से ही सीखने को मिला। आज अपनी जिंदगी में वो सब आ रहा है, वो सब काम आ रहा है।
0: जी जी, वो तो देखो बचपन के दिन भुला न देना। तो बचपन के जो हमने प्राप्ति की है ना, वो लाइफ टाइम चलता है। तो बहुत ही सुंदर की आपके दादी जी, चाचा चाची, उनके बच्चे, 30 लोगों का परिवार था।
1: 30 लोगों का परिवार था।
0: आप रियल भाई बहन कितने थे?
1: हम रियल भाई बहन 4 लोग हैं, 2 बहनें और 2 भाई। मैं सबसे ऊपर, मतलब बड़ी मैं ही हूँ, मेरे पीछे सब लोग हैं। तो जिम्मेवारी भी मेरी ज्यादा ही थी, और मम्मी पापा को देखना, वो सब वो जो कहते वो सब काम करना, और पूजा पाठ में उनका समय देना, उसको रेडी करके जो पूजा करते थे वो रेडी करके देना, वो सब हमारी जिम्मेवारी थी।
0: घर में सबसे बड़ी बेटी आप ही थी?
1: हाँ जी।
0: बाकी चाचा के सबके छोटे?
1: वो सब छोटे ही थे।
0: बड़ों के ऊपर तो जिम्मेवारी होती
1: है।
0: तो आपके दादाजी भी थे?
1: दादाजी नहीं थे।
0: अच्छा, आपके दादी जी बहुत धार्मिक?
1: दादी जी हाँ,
0: तो
1: बहुत धार्मिक,
0: सभी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे।
1: हाँ, सभी जी। सभी हमारी एरिया में, वो तो बड़ी दादी नाम के, बड़ी नाम से वो पुकारते थे वो लोग। हमारे वहाँ श्रृंगेरी शारदा पीठ है शंकराचार्य से जो स्थापित किया हुआ है, वहाँ से जो स्वामी जी आते थे वो हमारे घर में आकर रुकते थे। उनका प्रवचन चलता था 7 दिन 8 दिन ऐसा, भागवत वगैरह सब। और उसके बाद में हमारा साउथ इंडिया के जो कंची हम अभी जानते हैं कंची कामाक्षी नाम से, वो भी शंकराचार्य पीठ से ही हो गया, शंकराचार्य के हाथों से ही वो भी स्थापित हो गया।
0: अच्छा, तो ये सत्संग आपके घर में होते या आप लोग अरेंज करते?
1: नहीं, अपने घर में। अपना तो बड़ा वाड़े जैसा घर था।
0: अच्छा, बहुत बड़ा?
1: हाँ, बहुत बड़ा था। दो हॉल थे ऐसे, 50 के लोग आराम से बैठ सकते थे हम ऊपर और नीचे। ऐसे आंगन भी बड़ा था हमारा, इसीलिए हमारे घर में ही ज्यादातर चलते थे और मंदिरों में भी चलते थे, हम उधर भी चले जाते थे।
0: जी जी जी जी बिल्कुल। तो वो तो कहते हैं ना कि जब बड़े इस तरह अध्यात्म के रंग में रंगे हुए तो छोटों पर तो प्रभाव उसका पड़ना ही है। तो आप भी ऐसे?
1: हाँ, और हर महीना हमारे घर में एक तो यज्ञ या होम हवन चलता ही था हर महीना।
0: जी जी जी तो साधु संतों का तो आना जाना चालू था। तो आप जैसे बच्चे लोग हैं और साधु संतों को तो बहुत ही स्वच्छता और वो उनका ध्यान रखना पड़ता था,
1: पड़ता है।
0: तो भाई इतना बड़ा परिवार है, की वजह से बच्चों की वजह से कभी डिस्टर्ब तो नहीं हुआ कि कोई साधु संत थोड़ा भड़क गए?
1: नहीं नहीं, संस्कार ऐसे हो गए थे ना हमारे, इसलिए ऐसे ही हो गए थे हम। उनको जैसे चाहिए इसलिए हमारे घर को सिलेक्ट करते थे वो सब लोग।
0: और उनके रहने के लिए भी एक्स्ट्रा
1: अलग से कमरा उनका आने जाने के लिए, उनके साथ वो भी शिष्य लोग भी आते थे, उनके चेला लोग भी आते थे, उनके लिए भी रहना। और अपना तो क्या है, वो बड़े जमींदारी ऐसा था ना, सर्वेंट्स तो हमेशा अपने घर में रहते ही थे, दिन रात चलता था वो सब तो चलता था। मेरे पापा और बड़े पापा दोनों मिलकर करते थे वो सब।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी जी। तो आपके क्या बिजनेस था या?
1: हाँ, हमारी बिजनेस थी, नहीं बिजनेस थी, पापा की अपना जमींदारी थे, तो जमीन था, वो जमीन में वो पैदा उगा करते थे चावल वगैरह वो सब। और अपना बिजनेस भी था, पिताजी का साड़ी का, दादाजी का ये था, साड़ी का दुकान था, होलसेल दुकान था।
0: अच्छा।
1: तो वो सब करते थे, हम भी जाते थे साथ में, वो भी सिखाते थे हमको।
0: अच्छा।
1: लड़कियां पीछे नहीं हटना है, सब चीजें सीखे लड़कियां, आगे कौन सी वक्त आता नहीं पता नहीं है, निडर होके आगे चलने के लिए क्या चाहिए वो सब सिखा दिए मेरे पापा।
0: जी जी जी जी, हर प्रकार का कार्य आपने किया।
1: हाँ, जैसे भाई लोग करते हैं, भाई और बहन अलग से देखा ही नहीं अपने घर में, हर किसी को नहीं देखा, ये भाई बहनों का काम है, ये भाइयों का काम है, ये करना चाहिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। पिताजी अपने साथ हम लोगों को, लड़कियों को मतलब अपनी बेटियों को साथ में लेके जाते थे, सुनो परखो करो ये सब।

0: बेटे बेटे मैं बोर हो रही थी, और हमारे अपने घर में मायके में तो इतने सारे लोगों के साथ रहकर ये अकेला टाइम बिताना बहुत मुश्किल लग रहा था मेरे को।
1: जी
0: तो मैंने भी साड़ी का बिजनेस शुरू कर दिया। पिताजी ने थोड़े बहुत मुझे अपने दुकान के साड़ी दिए थे, मैंने वहाँ से शुरू कर दिया। नाम के 5,000 से 5,000 रुपये की माल लेके आई थी मैं बस। तब से लेकर 14-15 लाख तक अपने बिजनेस को बढ़ाया। घर बैठे ही मैंने बिजनेस भी करती थी और
1: क्या
0: आध्यात्म
1: बात है,
0: के रुचि रखती थी। आध्यात्म में भी यहाँ भी टाइम देती थी और अपने बिजनेस को भी बढ़ाते चली थी मैं।
1: क्या बात है। आपकी शादी की बात तो हम जरूर करेंगे, अभी
0: हाँ
1: आपके
0: जी
1: बचपन की बातें चल रही
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो चलिए हम यहाँ पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, आपके अनुभव जरूर सुनेंगे,
0: जी
1: लेकिन सुन लेते एक गीत। तो
0: जी
1: कहीं भी जाइएगा नहीं मेरे प्यारे श्रोता बंधु, सौम्या जी के अनुभव बहुत सारे बाकी है और आप देख रहे हैं कितने सुंदर अनुभव है, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, पहले सुनेंगे गीत, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते

0: नारी है तो सृष्टि है, नारी से संसार। नारी है तो सृष्टि है, नारी से संसार। उसके हौसले के आगे फीका हर वार। ममता भी है, शक्ति भी है, साहस की पहचान। नारी के सम्मान से बढ़ता देश का मान, नारी के सम्मान से बढ़ता देश का मान। तो ऐसे ही नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सौम्या जी हमारे साथ बने हुए हैं। सौम्या जी के बचपन के अनुभव हमने सुने हैं कि किस तरह आप बचपन से ही अध्यात्म में गहरी रुचि रखते थे। तो आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। सौम्या जी, पुनः आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: थैंक यू।
0: तो आप अपने बचपन की बातें बता रहे थे। हाँ, आप बता रहे थे कि देखिए आप पढ़ाई भी करते थे, अध्यात्म में आप बहुत ही गहरी रुचि रखते थे, परिवार भी पूरा धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो आप हर प्रकार की मदद करते।
1: हाँ, मदद करते
0: फिर आपने बताया कि दुकान पर भी चालू किया आपने जाना, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद जाना शुरू किया या पढ़ते
1: नहीं,
0: समय?
1: बचपन से पढ़ते समय भी हमको उस पर भी ध्यान देते थे। ज़्यादातर अभी दिवाली आती है तो ग्राहक लोग ज़्यादा रहते हैं, कस्टमर लोग, तो सर्वेंट्स कितने भी होते हैं तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए भी चाहिए। और गल्ला जो हम बोलते हैं पैसा लेने की बिलिंग जगह होती है, वहाँ पर पिटाते थे हमको। बिलिंग का भी हम करते थे, पैसे लेन देन करना। बिजनेस थोड़ा बड़ा था तो 1 घंटा 2 घंटा दिन में जाकर हम बैठ जाते थे दुकान में।
0: अच्छा, तो सभी का साथ में ही था, जैसे बड़े पापा
1: हाँ,
0: के और आपके?
1: सभी का साथ में,
0: जी
1: सभी
0: जी
1: का, सब मिलकर ही। हाँ, अपना राइस मिल था, जमींदारी थी और दुकान था। तीन
0: अच्छा,
1: भाई, हाँ, बड़े पापा और चाचा और अपना पिताजी का, सबका वही था।
0: तीनों भाई?
1: तीनों भाई साथ में थे।
0: जी जी जी जैसे आप बता रहे थे कि संतों का आना जाना शुरू रहता था, तो आपने गुरु किया होगा उस समय?
1: हाँ, उस टाइम गुरु किए, मगर मन में एक अजीब सी एक प्यास थी, मतलब और कुछ हमें चाहिए। जो मैं उनसे प्रश्न पूछती थी, प्रश्न से उनको उलझाती थी, वो ऐसा कैसे करते हैं, ये पूजा कैसा क्यों करना है, ये क्यों करने से क्या फायदा होता है, ये देवी ऐसे करने से हमको प्राप्ति, इससे वर मिलता है क्या, ऐसे मैं उसे जिज्ञासु होकर मैं उनसे प्रश्न पूछती थी।
0: तो आपके दादी जी डांटते नहीं थे कि क्या पूछ रही है? तो
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बड़े पापा डांटते थे, क्योंकि दादी तो स्कोप देती थी, कितना अपना बुद्धि को बढ़ाना चाहती हो बढ़ा दो, अपना प्रश्न को उनसे निवारण कर लो तो तब भी तुमको तसल्ली मिलती है। और अपने तो भजन वो सब गाते थे, भजन में भी अपने दादी के साथ बैठकर ही हम गाते रहते थे। वो प्रश्न आता था उसमें भजन गाने से भी, आप भज गोविंदम ये सब गाते हो, गोविंद का नाम इतना क्यों है, ये ऐसा क्यों है, कृष्ण को यहाँ आप वृंदावन में क्यों लाए, वो तो महाराजा होने वाला था, राजा होने वाला था, ऐसा प्रश्न तो मन में आता था। दादी को भी बोलते थे, पूछते थे, और अपने गुरु लोगों से भी मैं पूछती थी तब तो। अगर उत्तर वो क्या समझते थे, उनको क्या समझ में आता है वो बताते थे, या अपनी उम्र के हिसाब से वो बता देते थे, मगर तसल्ली नहीं होती थी,
0: जी, हाँ,
1: बिल्कुल तसल्ली नहीं होती थी। मैं अपने पापा को बोलती थी, ये जो बोल रहे हैं ना, ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आता, मुझे अपने मन के अंदर लगा रहता था कुछ और चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए, ये है नहीं, ये जो बता रहे हैं वो मेरे लिए है नहीं, कुछ और चाहिए, ऐसा मुझे होता था। और थोड़ा और आगे होने के बाद अपने घर में किराए पे एक चिन्मयानंद मिशन वाले आ गए किराए
0: जी
1: पे रहने के लिए, तो वो तो सुबह और शाम 2 वक्त उपनिषदों का वो क्लास कराते थे। इतने उपनिषद थे, 8 उपनिषद थे, उप उपनिषद थे, वो सब उपनिषद का क्लास के लिए मैं सुबह और शाम दोनों उनके साथ ही बैठती थी, क्लास में जाती थी।
0: जी
1: कॉलेज जाते समय, स्कूल का टाइम अलग था, कॉलेज का टाइम में सुबह शाम उसको सुनना, मगर वो आत्मा के बारे में, चैतन्य के बारे में क्या बोलते थे वो सही लगता था, मगर परमात्मा के बारे में जो वो बोलते थे, अद्वैत सिद्धांत बता देते थे शंकराचार्य का वेदांत के बारे में, ये सब मुझे ना थोड़ी सी अजीब सी लगती थी। घर में तो धार्मिक प्रवृत्ति रहते हुए भी मुझे वो अब मानने के लिए मैं रेडी नहीं थी, ये कुछ
0: जी
1: दूसरा है, ये कुछ और बोल रहे, जो चीज़ वो दूसरा है वो अपने हाथ में नहीं था, देखने के लिए भी नहीं, सुनने के लिए भी नहीं। और समझने के लिए भी नहीं है वो क्या है, वो क्या है, अंदर अंदर ये जिज्ञासा होता बहुत सारा था मेरा।
0: जी जी जी लेकिन आपके प्रश्नों का समाधान फिर आपको मिला कि नहीं मिला?
1: मिला ना, आगे जिंदगी में जरूर मिला।
0: अच्छा अच्छा। हाँ, उस समय नहीं मिला?
1: उस समय नहीं मिला।
0: तो मैं
1: वो कंची श्री से मैं एक बार प्रश्न पूछी थी भगवान के बारे में, भगवान माना क्या है, कौन है, भगवान के बारे में सही सही बताइए। मगर वो बोले थे अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, मैं 16-17 साल की थी तब तो छोटी है, और तुम ये सब को ये सब सोचना नहीं है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि लड़कियां हैं
0: जी,
1: लड़कियों को एक पाबंदी रहती है, दिन महीने में 4 दिन का वो रहता है ना, इसलिए पाबंदी रहती है, ये सब तुम नहीं कर सकती, ऐसे बोले थे। मुझे अंदर से एक फेमिनिज्म, ये स्त्री शक्ति के बारे में ये अपमान कर रहे ऐसा लगा था उस टाइम लगा था। मगर उनकी बुद्धि शक्ति और उनकी नॉलेज उतनी ही थी, तो वो तो उस टाइम के वो जो बताए वो उनके लिए सही था, वो मैं गलत नहीं कहती हूँ।
0: जी जी जी, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं।
1: हाँ,
0: और हमको ऐसा लगता है कि नारी होना क्या गुनाह है क्या?
1: हाँ, ऐसा लगता था मेरे को।
0: सही है, क्या नारी भक्ति नहीं कर सकती, क्या नारी
1: कर सकती है ना,
0: आगे नहीं बढ़ सकती, वो सारे प्रश्न आपके अंदर घूमे होंगे।
1: वो तो मैं हमेशा, मेरे पिताजी बोलते थे वीर शक्तियाँ, उनके बारे में बताते थे, और गार्गी और ये सब जो है मुक्ता ये सब है, और मीराबाई के बारे में तुम आगे बढ़ सकते हो। पिताजी का, मम्मी और अपने दादी का बहुत स्कोप, माना बहुत स्कोप था हमको।
0: जी जी,
1: कितना
0: जी।
1: आगे बढ़ा सकते हो, बढ़ सकती हो, बढ़ो, कितना आगे बढ़ सकते हो, पढ़ो, तुम्हारा है। हम तो छूट दे दिए पढ़ने के लिए, जाने के लिए, कभी फर्क नहीं किए।
0: जी जी जी जी, एक अच्छा माहौल मिला। और भाई बहन आपस में कैसे रहते थे?
1: बहुत फ्रेंडली, अभी भी है, बहुत फ्रेंडली है
0: जी। हाँ, तो कभी ऐसे तू-तू में तो नहीं होता था?
1: नहीं नहीं, बड़ी होने के कारण क्या होता था, जो भी मिलता है पहले छोटों को बाद में मेरे को।
0: अच्छा,
1: ऐसा सिस्टम था हमारे घर में, जो छोटे लोग पहले चूज करते हैं वो चुन लेते, पहले उनके अधिकार है बाद में तुम्हारा। बड़ी माना संभाल के जाना है, संभाल, उनको भी संभालना है तुमको।
0: अच्छा, तो मतलब बड़ा होना तो ऐसे हो गया बस त्याग करो शुरू से ही?
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है, जिम्मेवारी है, एक जिम्मेवारी उठाना तब से शुरू हो गई थी।
0: तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पसंद का था लेकिन उसने ले लिया?
1: नहीं, मेरे
0: मन मार के कोई चीज आपने ली हो?
1: ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, वो वापस हमको ही देते थे बाद में। जो मुझे पसंद है वो मेरे भाई बहनों को भी पता रहता था, वो चीज छोड़कर वो दूसरा ले लेते थे।
0: जी जी जी,
1: जैसे मैं उनका ख्याल रखती हूँ वो भी ऐसे मेरे ख्याल रखते थे।
0: जी जी,
1: हाँ
0: जी। वो स्नेह, वो प्यार दिखाई देता है।
1: हाँ,
0: वो त्याग भी दिखाई देता। हाँ, है दोनों का,
1: तो वो पता चलता था, लेते तो भी वापस कर लेते थे।
0: जी जी जी। और जैसे आप कह रहे थे कि पूजा की सारी तैयारी आप करके रखते थे, मान लीजिए कभी कोई ऐसे गड़बड़ हो गई हो तो दादी जी से डांट भी खाई कभी?
1: नहीं नहीं, दादी तो कभी नहीं डांटी, ऐसे तो हमने छूटा नहीं है, मगर बड़ी मम्मी जो थी ना वो डांटती थी कभी कभी।
0: अच्छा, वो क्यों? हाँ, डरते थे
1: वो क्यों? इसलिए मैं पूजा करना पसंद नहीं करती थी, पूजा की तैयारी करती थी मैं, जो जो चाहिए वो सब पूजा की तैयारियां करती थी। तो बेलपत्र फूल वगैरह सब लाना होता है, कलरफुल करना होता है, वो देवी के हिसाब से, इस देवी के हिसाब से ये कलर का होता है, लाल कलर का होता है, शंकर के नाम से सफ़ेद फूल रहते हैं, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र रखना चाहिए, वो सब उनके जो रीति रिवाज होता था उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई तो वो थोड़ी बहुत डांट पड़ती थी, ज्यादातर नहीं।
0: जी जी जी, बिल्कुल, बड़े हैं थोड़ा सा डांट भी देते हैं और बच्चे हैं तो थोड़ी गलतियां हो ही जाती है।
1: सब लोगों को क्या होता है उस टाइम पूजा करना होता है, लड़कियों को भी पूजा करना होता था, सारी मेरी सिस्टर्स, कजिन सिस्टर्स पूजा करती थी, मैं अकेली नहीं करती थी, इसके लिए भी कभी कभी डांट पड़े है।
0: जी जी जी, तो आपको कोई हेल्प करने वाला होता था, भाई बहन या?
1: हाँ,
0: फिर आप
1: करते थे, अपने सर्वेंट्स भी थे, ये छोटे भाई बहन भी करते थे।
0: जी जी जी, तो भाई इतना बड़ा परिवार है, इतना साधु संतों का आना जाना लगा रहता था, तो सर्वेंट भी हर प्रकार से हेल्प करने में रहे होंगे?
1: हाँ जी,
0: तो किचन में भी हेल्प लेते थे?
1: किचन में कभी नहीं लिया
0: जी,
1: किचन में अलाउ नहीं था हमारा। साउथ इंडिया में एक कम्युनिटी, मतलब हम एक ब्राह्मण्स है, एक ब्राह्मण्स में दादी थी ना, वो शेर मुंडन कर, ऐसा सिस्टम था।
0: अच्छा, क्यों हाँ, मुंडन कराते थे?
1: वो तो दादा जी गुजर गए माना, वो ऐसे करेंगे तो पूजा पाठ के लिए आ सकते हैं।
0: अच्छा,
1: नहीं तो नहीं आ सकते।
0: अच्छा, तो सोनिया जी चलिए फिर से समय हो चला यहाँ पर एक गीत सुनने का, तो ये गीत सुनने के बाद तुरंत लौटते हैं फिर इसी विषय पर बात करने के लिए, ठीक है?
1: जरूर।
0: तो बने रहिएगा श्रोता बंधु कार्यक्रम वंदे मातरम में। सोम्या जी के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं और जरूर सुनेंगे, पर पहले सुनेंगे गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma
1: Kumaris. Kabhi beti bankar ghar mein khushiyan lati hai. Kabhi beti bankar ghar mein khushiyan lati hai. Kabhi maa bankar jeevan ki raah dikhati hai. Har rishte ko pyar se sajati hai nari. Har rishte ko pyar se sajati hai nari. Apne hauslon se likhti hai nayi kahani. Apne hauslon se likhti hai नई कहानी। तो ऐसी ही नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम वंदे मातरम आप सुन रहे हैं और इसमें सौम्या जी हमारे साथ बने हुए हैं। सौम्या जी के काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं। आइए और भी इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। सौम्या जी, आप बता रहे थे कि आपके दादी जी सिर मुंडवा करके ही पूजा कर सकते थे, बाकी नहीं, तो ऐसा उधर रिवाज है?
2: रिवाज है, अपना सामाजिक पद्धति था तब की टाइम, तब की टाइम में, अब तो नहीं है, तब की टाइम था, वो कंपलसरी भी था, उन लोगों को कंपलसरी था। बाद में जो हो गए तो वो नहीं करवाए, मगर उन्होंने करवाए थे।
1: अच्छा, तो फिर तो वो तो रोज ऐसे मुंडवा के रखते थे बाल?
2: हाँ,
1: क्योंकि पूजा तो रोज करनी होती है।
2: करनी होती है, और शालिग्राम रहता है घर में, जहाँ शालिग्राम रहता है वो तो वो पूजा करने वाले एक वैसे लोग चाहिए, सर मुंडन करने वाले, या नहीं तो भाई लोग चाहिए। हम लड़कियां तो कर नहीं सकते और बहनें भी कर नहीं सकते शालिग्राम का पूजा, ऐसे सिस्टम था।
1: अच्छा जी जी जी, तो दादी जी तो खुशी खुशी करवाते होंगे?
2: उनको पूजा पाठ में, अध्यात्म में, धर्म में बहुत रुचि थी।
1: जी जी जी, बढ़िया। और आप बता रहे थे कि आप दुकान भी संभालते थे, तब आप कौन सी क्लास की पढ़ाई करते थे?
2: मैं 8th 9th स्टैंडर्ड।
1: अच्छा, तब से आपने दुकान पर जाना शुरू कर दिया?
2: हाँ।
1: जी जी, और स्कूल में कैसा व्यवहार था सखियों के साथ?
2: स्कूल में तो सब मेरे फ्रेंड्स है, वैसे तो हम स्कूल में पढ़ाई में भी अच्छे ही थे, फर्स्ट रैंक आते थे हम स्कूल में भी, और टीचर्स बहुत अच्छे अपना प्यार करते थे। जैसे कि टीचर एक बात बोली तो वो मना नहीं करते थे, हम कुछ भी हो जाए मानकर उस पर चल के दिखाते थे।
1: जी जी जी,
2: हाँ, आज्ञा पालक थे
1: जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह आपकी स्टूडेंट लाइफ, और घर में भी सभी का प्यार मिला, स्टूडेंट लाइफ भी अच्छी बीती। अच्छा, और पढ़ाई के अलावा क्या आपको रुचि थी? जैसे आप बता रहे थे कि भजन भी गाते थे।
2: हाँ।
1: तो दो लाइन सुनाएंगे हमारे श्रोता बंधुओं को?
2: अभी तो बहुत दिन हो गए, वो तो याद ही नहीं है।
1: अच्छा,
2: और हम कन्नड़ लैंग्वेज में गाते थे, कन्नड़ लैंग्वेज का वो पुरंदर दास के वो सब, अभी तो वो आदत ही नहीं है, छूट गई है बहुत दिन के बाद।
1: अच्छा अच्छा, तो और आप क्या करते थे स्कूल में, जैसे गेम्स वगैरह खेलते थे?
2: गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स रहता था ना, स्पोर्ट्स में बैडमिंटन में चैंपियन थे हम।
1: अच्छा।
2: और कैरम बोर्ड में थे।
1: अच्छा।
2: इंडोर वो भी थे, और वॉलीबॉल में थे हम, वॉलीबॉल। अच्छा। अच्छे से खेलते थे।
1: तो कभी आप टूर्नामेंट में गए?
2: गए हैं ना।
1: तो आप किस में गए थे?
2: डिस्ट्रिक्ट, वो थे वही बैडमिंटन और इसका, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए थे, आगे जा नहीं सके क्योंकि टीम वर्क रहता है, टीम हार गई तो वापस आ जाते।
1: जी जी। हाँ। वो तो है बिल्कुल। तो बैडमिंटन में जाते थे?
2: हाँ, बैडमिंटन और वॉलीबॉल।
1: अच्छा, दो गेम्स में जा सकते?
2: हाँ।
1: अच्छा,
2: जा सकते, कितने भी हम जा सकते हैं, नेशनल लेवल तो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटर डिस्ट्रिक्ट रहता है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये जोन रहता है
1: जी।
2: जोनल लेवल तक हम गए थे।
1: अच्छा, और डांस वगैरह?
2: डांस वगैरह कुछ कभी नहीं की है।
1: अच्छा।
2: मगर गाना गाते थे, संगीत सीखे थे बचपन से।
1: अरे वाह।
2: हाँ, गाना गाते थे
1: तो स्कूल में, गाना भी गाते थे।
2: हाँ,
1: कन्नड़ भाषा,
2: कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा।
1: हिंदी में कभी नहीं गाया?
2: हिंदी में कभी कभी गाए थे बचपन में, वो भी अभी याद नहीं है।
1: अच्छा। चलिए, कोई बात नहीं। और कॉलेज लाइफ आपकी कैसी गई?
2: कॉलेज लाइफ तो अच्छी थी, जब सेकेंड ईयर थे तब मम्मी को एक सीरियस या बीमारी आ गई थी, तो उसकी वजह से हम घर का ध्यान ज़्यादा देने लगे तब से।
1: अच्छा।
2: हाँ, इसलिए थोड़ा नंबर कम मिले, मगर घर पर ध्यान देना जरूरी समझा।
1: हाँ, बड़ी बेटी हो तो जिम्मेदारी घर की आ गई आपके ऊपर। भले संयुक्त परिवार है फिर भी माँ को संभालना
2: जरूरी था, तो माँ को ज्यादा पालना देना था उस टाइम। तब से अपना लाइफ और थोड़ा अंतर्गत, मतलब क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी होने लगे। मम्मी को सीरियस हो गया, उसको बचा के ले आना हमारे लिए एक अच्छा लगा था, मुश्किल भी लगा था तब के टाइम।
1: जी जी जी, वो उस समय, आज तो भाई परिपक्व एज है, उस समय तो बच्चे ही थे ना।
2: मैं तो 18 साल की थी तब।
1: जी जी जी जी,
2: 18 इयर्स ओल्ड।
1: जी जी, तो उनकी फिर तबीयत में सुधार आया,
2: बाद में सुधार आ गए।
1: अच्छा अच्छा,
2: बाद में अच्छे भी हो गए, मगर जिम्मेवारी अपनी बढ़ गई।
1: जी,
2: उनके बाद अपनी बढ़ गई, माना पूरा जिम्मेवार ले लिया रसोई का भी।
1: अच्छा, तो रसोई में तो इतने जने थे बनाने वाले, फिर भी आपको
2: बनाने वाले थे, मगर मम्मी जो बनाती थी, मम्मी का जो काम था वो करना ही था हम लोगों को।
1: अच्छा, हाँ, पेशेंट के हिसाब से खाना बना के देना, उनके केयर करना,
2: वो सब था ना।
1: जी जी जी जी, और फिर तो आप बड़े हो जो थोड़ा सा सौम्या जी इमोशनल हो गए हैं, स्वाभाविक है। चाहे माँ का तो बच्चों का बिल्कुल अजीज रिश्ता होता है, बिल्कुल ही करीब होते हैं माँ के। तो सौम्या जी, खैर
2: उस टाइम हम चले गए थे, आपने याद दिलाया, उस टाइम पास्ट में हम चले गए थे ना।
1: जी जी जी,
2: उस टाइम क्या क्या हो गया था।

0: सब बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसी लाइफ को अभी जी रही हूँ, जैसे,
1: हाँ, जैसे
0: याद आ गए सारी बातें। जी
1: वो
0: जी
1: सब लगने लगा
0: जी
1: था।
0: फिर आपके मम्मी ठीक हो गए
1: हो
0: धीरे
1: गए
0: धीरे?
1: बिल्कुल। अभी बेंगलोर में, अभी तो नहीं है, बेंगलोर में ही है,
0: जी।
1: बेंगलोर में थे।
0: लेकिन हाँ, लेकिन आपकी तपस्या रंग लाई,
1: हाँ, वो बिल्कुल ठीक हो गए
0: जी
1: सब उसके बाद।
0: वापिस उन्होंने संभाल लिया सब
1: हाँ
0: कुछ।
1: जी बिल्कुल।
0: जी। और इतने बड़े देखो घर में साधु संतों का जमावड़ा रहता था, तो उनकी भी दुआएं तो मिलती थी।
1: दिन रात एक होके करो सेवा करते थे मम्मी।
0: जी जी जी
1: हम तो
0: जी
1: छोटे छोटे उनके हाथ में काम करते थे, मगर पूरा जिम्मेवारी उन लोगों की थी ना, बड़ों
0: जी
1: की। तो एक नहीं है तो दूसरों को उसका प्लेस लेना ही पड़ता है, उस
0: बिल्कुल
1: स्थान में रहकर करना ही पड़ता है, वो प्रेशर ज्यादा होता
0: जी
1: है।
0: जी
1: और
0: जी
1: हम कभी किए नहीं थे वो सब,
0: जी
1: तो सीख गए और करने लगे।
0: वो कहते हैं ना, जिम्मेदारी चीज ही ऐसी होती है कि
1: हाँ,
0: कुछ नहीं आता वो सब कुछ आ जाता है।
1: सिखा देता
0: सिखा
1: है।
0: जी, समय सिखा
1: हाँ,
0: देता है।
1: सिखा देता
0: से आपका बचपन बहुत अच्छा बीता। कहते हैं ना कि फिर भी संघर्ष तो हर एक के जीवन में रहता ही है। अच्छा सोम्या जी, फिर आपकी शादी कब हुई?
1: 1995 में शादी हो गई।
0: बीकॉम फाइनल हो गया
1: बीकॉम
0: था आपका?
1: फाइनल तब भी हो गया था, उसी में साल में हो गया था। 1995 में शादी हो गई।
0: अच्छा, तो शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
1: शादी के बाद तो बहुत बदलाव आ गई है, क्योंकि शादी के बाद हम दूसरे शहर पे आ गए, तो 30 लोगों से हम 2 हो गए। ये
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ी बदलाव है।
0: और आपके ससुराल में कोई नहीं है, सास ससुर?
1: ससुराल सास थी, सासू माँ थे, और इनकी बहनें भी थे, ननद वगैरह थे, उनकी भी शादी हो गई थी। हम दूसरे शहर में रहते थे, वहाँ भी नहीं, मायके में भी नहीं, ससुराल में भी नहीं।
0: अच्छा,
1: जॉब की वजह
0: नाम
1: से
0: बताएंगे
1: दूसरा,
0: आपके ससुराल का, शहर का नाम?
1: ससुराल का नाम है सिरसी, बोलते हैं उसका नाम
0: अच्छा,
1: सिरसी।
0: सिरसी। और
1: हाँ,
0: रहते कहाँ थे?
1: वो सिरसी में ही रहते थे वो लोग।
0: नहीं, आप कहाँ रहते?
1: हम कहाँ, दूसरी जगह पे रहते थे। हुबली के पास एक शहर है, छोटा सा तालुका प्लेस है, वहाँ हम लोग बैंक में, श्याम सुंदर मेरे हस्बैंड वहाँ काम करते थे, वहाँ हम लोग रहते थे।
0: जी।
1: तो 30 लोगों से, या उस वो भी 10 लोग थे ससुर के घर में, वहाँ से भी हम निकल के आ गए, तो 2 के 2 हो गए। तब थोड़ा बोर होता था मुझे, मगर श्याम सुंदर भाई आध्यात्म में वो भी रुचि रखते थे, उनके घर में भी ऐसे मेरी सासू माँ वो सब आध्यात्म में बहुत सारे रुचि रखते थे, उनको आसक्ति थी। तो मैंने भी थोड़ा बहुत उसको आगे बढ़ाया,
0: अच्छा।
1: बचपन का जो मेरे अंदर जो हवस था आध्यात्म का, वो उसमें मैं आगे बढ़ गया, बढ़ा दिया।
0: अच्छा, शादी के बाद
1: शादी
0: आपको,
1: के बाद,
0: आपके सारे प्रश्न खत्म हो गए, आपको वो तोड़
1: शादी
0: मिला?
1: के बाद पूरा खत्म ऐसा नहीं हो गया, मैं वैसा बिल्कुल नहीं कहती हूँ। 2-4 साल उनके बाद साधना की मैंने, उसके
0: अच्छा
1: उसमें साधना की, जो मुझे मिला वो साधना के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा, जो प्यास थी अंदर अंदर, जो मेरे में एक वैक्यूम रह गया था, खालीपन, वो भरता गया भरता गया भरता गया, वो मुझे एहसास होने लगा।
0: जी बिल्कुल। और जो आपके प्रश्न थे उसका जवाब मिल गया
1: हाँ,
0: आपको?
1: जवाब मिलते चले गए, जवाब मिलते चले गए वो तो।
0: जी। तो चलिए सोम्या जी, फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुनः लौटते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नारी को कमजोर समझने की भूल न करना, उसके हौसलों को कभी धूल न करना। वो चाहे तो आसमान भी झुका सकती है, वो चाहे तो आसमान भी झुका सकती है, अपने जुनून से इतिहास बना सकती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सोम्या जी हमारे साथ बने हुए हैं। सोम्या जी, आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं, और आप बता रहे थे कि शादी के बाद आपके जो पहले आप धार्मिक प्रवृत्ति में थे तो बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन शादी के बाद अध्यात्म में जाने से आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया और आपके प्रश्न खत्म हो गए।
3: खत्म होने लगे
2: होने लगे
3: होने लगे
2: जी।
3: ऐसा था माहौल दीदी, हम बताएंगे। उस टाइम में भी लड़कियां बहुत सारे जॉब करते थे, मेरी भी जॉब लगी थी एज ए टीचर, मेरी भी जॉब लगी थी। मगर मेरे हस्बैंड जो है वो श्याम सुंदर ने वो नौकरी भी छुड़ाई मेरे से।
2: अच्छा।
3: क्योंकि वो आध्यात्म के रुचि में थे ना, मैं और वो दोनों साथ में वो सब प्रैक्टिस करते थे, हम ध्यान का वगैरह
2: जी, जी सब, मेडिटेशन करते थे।
3: हाँ, मेडिटेशन वो सब जो करते थे, उसके दोनों का इंटरेस्ट सेम था हमारा। तो उन्होंने कहा तुम क्यों जॉब करती हो, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अपने को बच्चा पैदा करके अपने में फंसना नहीं है, अपना स्वार्थ में फंसना नहीं था, हमको दुनियादारी विश्व कल्याण करना था, दुनिया की सेवा करनी थी, दोनों का इरादा वही था। इसलिए हमने जो सोचा और निर्णय किया, खुद का बच्चा न होना नहीं है, भगवान को ही अपना बच्चा मान ले।
2: क्या बात,
3: जैसे यशोदा माता श्री कृष्ण की पालना करती थी, वैसे ही हमने भी भगवान का सेम टू सेम पालना किया, वैसे ही हमने सब कुछ की, अपने अनुभव से मैं सब कुछ करती थी, कल्पना शक्ति से मैं करती थी
2: जी।
3: और उसका रिजल्ट भी आज मैं देखती हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और संतुष्ट हूँ, क्योंकि दुनिया वाला जो सृष्टि करता है उसको ही मैं अपना बेटा मान चुकी हूँ।
2: जी जी जी।
3: तो उसी तरह अब दो हम दोनों उसी मार्ग में चल पड़े, अपना खुद का जिंदगी, अपना खुद का स्वार्थ जो है अपना साइड रखा, विश्व कल्याण की दृष्टि से अब हम आगे बढ़ने लगे।
2: तो आपके परिवार वालों ने विरोध नहीं किया?
3: पहले ससुराल वालों ने पहले विरोध किया। मैं हम दोनों मिलकर क्या किया, अपने माता पिता को और सास ससुर को सबको बिठाए, अपने घर में जो बड़े हैं सबको बिठाए, और अपनी मन की जो वो इच्छा थी वो हमने उनके सामने रखा। पहले पहले मना कर दिया, एक बच्चा होने दो, बाद में वो सब करो ये सब। वैसे एक दो घटना हो गई, बच्चे होने के बाद भी कमज़ोर थे या कुछ हो गया, वो मैं यहाँ बता नहीं सकती। इसलिए उन्होंने क्या कहा, तो अपना जिंदगी है ये भी अच्छा है, तुम अपना जिंदगी जी लो, तुमको कैसे चाहिए वैसे जी लो, ऐसे हमको आशीर्वाद देकर उन लोगों ने भेज दिया। हमने किसी का विरोध भी नहीं किया, अभी भी आज भी हम लोग साथ में रहते हैं, सब लोग साथ में हैं, वहाँ भी हम जाते हैं, बेंगलोर में भी जाते हैं, वहाँ भी रहते हैं, दो तीन महीना रहकर फिर वापस हम यहाँ आते हैं। तो यहाँ भी अपना जिंदगी अच्छी चल रही है, वहाँ भी वो जो दिल में एक बार आ गया, अपना बच्चा नहीं हो तो मैं तो माँ बन सकती हूँ, क्योंकि दुनिया सृष्टिकर्ता भगवान को भी माँ बनी, मतलब सबको माँ बन सकती हूँ
2: जी।
3: तो अपने को मैं जगदम्बा रोल समझ लेती हूँ, अपने को सबको पालन देना है
2: जी जी जी। एक में बंद के नहीं, आप पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सोम्या जी, कहाँ पूरा जीवन आपका बेंगलोर में बिता, अभी आप 5 साल से आबू तलेटी में रह रहे हैं, तो यहाँ आपको अच्छा लगता है? पूरी भाषा आपकी चेंज हो गई, माहौल चेंज हो गया, तो यह कैसा लग रहा है आपको?
3: बहुत अच्छा लग रहा है। चेंज माना क्या, साउथ से नॉर्थ आना माना विरुद्ध ध्रुव जैसा होता है ना, वैसा हो जाता है। तो खाना पीना और वायुमंडल, यहाँ का एयर कंडीशन, पानी हवा सब बदली होती है और लोग बदली होती है, मगर सब में क्या रहता है, एक भगवान की नाम, और हर किसी के दिल में भगवान की ऊपर स्नेह और प्यार है, वो जो है आपस में बांधता है हम लोगों को। ये हम दोनों ने अनुभव किया। और पहली बात ये है, मैं अपना एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। 97 में पहली बार आ गए थे हम लोग, 95 के बाद ज्ञान में चलने के बाद, आध्यात्म में चलने के बाद। तो तब आए तो मुझे पहली बार देखा तो यहाँ गेट वो सब एंटर किया, देखा तो पहले मैंने कहीं देखा है, कभी देखा हुआ है, कभी सुना हुआ। तब आते ही क्या हो गया, एक गीत बजा, तब तो गीत बजा। तो मैं अपनी दीदी को बोल पूछ रही थी, ये गीत आपने सेंटर पे लगाई थी क्या, ये गीत मैंने कहीं सुना है ऐसा लग रहा है मेरे को। तो ये जो सृष्टि चक्र चलता है, फिरता रहता है, वैसा एहसास मुझे तब हो गया था, ये मैं सुनी सुनी हूँ, देखा हुआ है, मैं पहले मैं रह चुकी हूँ, ये कहाँ हुआ है, ऐसे जिंदगी में कहीं हो गया होगा अपने अपनी इस जिंदगी में, कब हुआ था वो मुझे याद नहीं, वो याद आता रहता था मुझे पहली बार आए तो। बाद में हर साल आने लगे, साल में 2 बार आने लगे, 3 बार आने लगे। बाद में क्या हो गया, VRS लेके कायम अपने यहाँ रहने के लिए आ गए।
2: अच्छा।
3: तो कुछ भी नया लगा ही नहीं हम लोगों को,
2: जी जैसे आपको ऐसा लगा पहले भी आके
3: पहले
2: रहे
3: भी आके रहते थे, अभी भी आ रहे, इसमें क्या बड़ी बात है, सब अपने हैं, अपने भाई बहन है, ऐसा फील
2: जी
3: होने लगा, आराम से रहने लगे।
2: जी, कोई दिक्कत नहीं आई,
3: कुछ भी नहीं, न खाने की, ना पीने की, ना हवा की, कुछ भी दिक्कत नहीं।
2: रोड़ा आपको पसंद आ गया?
3: पसंद आ गया।
2: बहुत ही सुंदर अनुभव है सौम्या जी आपके। और कार्यक्रम के अंत में जो हमारे बहनें सुन रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं इस बहनें सिर्फ बहनों के लिए नहीं कहती, सभी के लिए कहती हूँ, भाइयों के लिए भी और जो स्टूडेंट्स हैं सबके लिए कहती हूँ। मैं यहाँ पहले से ही आती थी, इस मार्ग में मेरे चलने से मेरे अपनों का अनेक प्रश्नों का अनेक उत्तर भी मिले। और यहाँ आने के बाद जो भगवत गीता के बारे में, भागवत के बारे में, वेदों के बारे में, उपनिषद बारे में, वो बचपन में जो पढ़ी थी, सुनी थी, कही थी, वो सब के उत्तर यहाँ मिल गए। यहाँ भगवान कहते हैं सबका सार, में शास्त्रों का सार मैं बताता हूँ, ये सच में ये सार ही है, यहाँ मैं सुनने को आ गया, पढ़ने को आ गए यहाँ। और ये एक अजीब सी शांति है यहाँ, मैं बता नहीं सकती, जैसे मीठा खाने के बाद उसकी अनुभव सुना नहीं सकते, वैसे मेरा अनुभव है। यहाँ आने के बाद यहाँ कोई नहीं है अपना, मगर सब अपने हैं
2: जी,
3: ये यहाँ की हकीकत है, ये सच है यहाँ की
2: जी,
3: ये हम लोगों ने यहाँ ये अनुभव किया है, मेरी जिंदगी का यही सच है। दुनिया भर में कहीं भी सब जगह पे दुख है, कहाँ नहीं है, सब जगह पे सब तरह की दुख है, सिर्फ हम लोगों को ये ऐसा नहीं लगता, ये युद्ध चल रहा है, ये बारिश हो रही है, धूप ज़्यादा है, ऐसा नहीं, अपने मन में भी बहुत सारे दुख है, ये ऐसा क्यों किया, ये क्यों कहा, हर किसी के ऊपर भी एक आरोप लगता है सोचे तो उस आरोप, उस दुख की दुनिया, उससे हम बाहर आ गए और अपना मनस्थिति को ऐसा कर दिया, उज्ज्वल कर दिया, निर्मल कर दिया, ये ज्ञान अपना आध्यात्म जीवन ऐसा कर दिया हमको, और ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ले जा रहे हैं। मैं तो ऐसा समझती हूँ जैसे पंछी 2 पंखों से उड़ता जा रहा है, ऐसे ही मैं यहाँ आकर उड़ रही हूँ।
2: क्या बात
3: और
2: है,
3: ऊपर उड़ रही हूँ मैं।
2: बहुत सुंदर सौम्या जी, बहुत अच्छा अनुभव आपने किया है और बहुत सुंदर आपने अपने अनुभव सुनाए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आए और आपने अनुभव सुनाए इसके लिए।
3: थैंक यू, आपने बुलाए, आपको भी धन्यवाद।
2: तो श्रोता बंधु, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम सौम्या जी से। सौम्या जी, जो पूरा जीवन आप बेंगलोर में रहे, अभी आपकी 55 साल की उम्र है और अभी आप 5 साल से आबू तलेटी में रहते हैं, लेकिन आपके अनुभव बहुत ही गहरे रहे, आप अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं और यहाँ आकर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत खुश है, दुनिया में इतना दुख है लेकिन हम बहुत खुश है, हम उड़ रहे ऐसा महसूस होता है। तो सचमुच ऐसी नारी शक्ति देखिए जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए सोच लिया कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, मैं पूरे विश्व की माँ हूँ, एक और दो की नहीं। तो आप निस्वार्थ रूप से सेवा भी करते हैं, दीन दुखियों का मदद करते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी भारत देश की बेटी को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव सुनाना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना आसपास लोक भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का जो भागीदारी देखने को मिलता है, कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है। तो हर एपिसोड की तरफ आज पर्यावरण का बात करेंगे, और पर्यावरण जो एनवायरनमेंट सबको विदित है कितना आवश्यकता है। हम जहाँ पर रहते हैं वो परिवेश कितना स्वच्छ होना चाहिए, और स्वच्छ होंगे तो हमारा मन बुद्धि स्वच्छ होता है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ ईश्वर वास करते हैं सर। तो आप आज का कार्यक्रम को सजाने के लिए हमेशा की तरह हर एपिसोड के हमारा साथ सजाते हैं श्रीमान गोपाल राम पुरेत जी, जो कि किवली निवासी है और एक शिक्षा जगत में बिलोंग करते थे और अभी भी शिक्षा में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस से गर्ल्ड सर्विस की ओर प्रमोशन हुआ उनका रिटायरमेंट होने के बाद। और एक पर्यावरण को लेकर एक एनवायरमेंट एक्सपर्ट है जो पर्यावरण भी थे, तो उनको स्वागत करते सर, आपको स्वागत करते सर।
1: सर नमस्कार। सर
0: नमस्कार। आप अपना परिचय तो मैंने दे दिया, फिर भी कोई होगा तो आप अपना थोड़ा संक्षिप्त में परिचय दीजिए, और आज का जो पर्यावरण का ऊपर में क्या लेकर खजाना लेकर आए हमारा श्रोता मित्र और हम आपस में बात करने के लिए।
1: जी हाँ जी हाँ सर, जैसा आपने परिचय दिया, रेडियो मधुबन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बीके पवित्रा भाई दूर पर्यावरण में रिमोट एरिया तक आप भ्रमण करते हैं, और आपको जब भ्रमण करते हुए कई बार मैंने देखा तो मेरे मन में एक वो हुक पैदा होती कि आप इस शांति के ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोगी हैं, समर्पित राजयोगी। और एक राजयोगी की विचारों सिद्धांत ये होते हैं कि भूत से प्रेरणा लेकर, मतलब भूत को भूलना है प्रेरणा लेकर, और भविष्य के प्रति चिंता ना करते हुए लोगों को जगाना है और वर्तमान में जीना है। तो आप एक बहुत ही अच्छी सोच को लेकर के, जो आध्यात्मिक सोच है, आत्मनिरीक्षण करना या स्व उन्नति करना, स्व साधना करना, ये सामान्य रूप से सभी कर रहे हैं, अधिकांश लोग कर रहे हैं
0: जी,
1: राजयोगी करता है। पर देखिए उनका जीवन का ये जो समय है वो किस तरह से बढ़िया तरीके से खुद भी जिए और दूसरों को भी इस रास्ते पर लाए, इसके लिए वो रिमोट एरिया तक, दूरस्थ एरिया तक भ्रमण करते रहते हैं। आप स्वयं राजयोग में रहते हुए और मुक्त जीवन जीकर आप दूसरों को भी इस ओर प्रेरित करना चाहते हैं, और इसलिए आप दूरस्थ एरिया तक, क्षेत्रों तक भ्रमण करते हुए मैं लंबे समय से आपको देखता रहता हूँ। तो ये जो भाव है वो मेरे अंदर भी पैदा हुआ कि भाई साहब के साथ में बैठ करके जो पर्यावरण पर मेरा चिंतन है, जो आध्यात्मिक चिंतन है, ये किस तरह से एक दूसरे से और मनुष्य के लिए मिले हुए मिला जुला स्वरूप है। तो जीवन का मेरे ख्याल से सर्वोत्तम समय तो यही होता होगा कि आप स्वयं वर्तमान स्थिति में रखते हुए, स्वयं को आत्मचिंतन करते हुए, भूतकाल से प्रेरणा लेकर के, जो संतों ने, जो साधुओं ने, जो बाबा ने जो बताया है, उसकी वर्तमान जीवन में उतार करके, साधना करके, भविष्य की चिंताओं को देखकर चिंतित नहीं होना,
0: चिंतन
1: संकल्पित होकर के, दृढ़ संकल्पित होकर के कि किस तरह से मनुष्य के सहज जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, जो श्रीमत के अनुसार जो भी है अच्छे जीवन जीने के लिए, अध्यात्म में वातावरण किस प्रकार से सहयोगी हो सकता है, काम करने की बड़ी इच्छा थी और आपने ये मंच उपलब्ध करवाया है, तो मैं बड़ी खुशी से दौड़ा चला आता हूँ आपकी तरफ, और आप मुस्कुराते हुए चेहरे से मुझे मिल ही जाते हैं, एक आनंद की अनुभूति होती है।
0: सही बात, जितना बताए एक्चुअल मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होता है और हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है और किसका पार्ट कहाँ पर होगा हमें पता नहीं।
1: बिल्कुल।
0: और ये जो ड्रामा एक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं तो आप कहाँ और हम कहाँ और हमारा श्रोता मित्र कहाँ है, कोई सोचा नहीं था,
1: कोई सोचा नहीं था,
0: ये तो ड्रामा में ऐसे बना हुआ है और हमें उसको
1: रोल प्ले करना
0: है, हमको
1: प्ले करना है,
0: क्योंकि
1: आप जो रोल प्ले कर रहे हैं तो मुझे लगा कि भाई साहब से मिलकर के ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहीं और छोटा सा विचार
0: हम भी कर लेते हैं, क्योंकि सरकार क्यों जाता है, क्योंकि जो रेडियो स्टेशन दिया है कम्युनिटी रेडियो,
1: जी जी जी,
0: आप लोग का साथ रूबरू होने के लिए जो इंटर एरिया जहाँ दूरस्थ जगह में पहुँचते हैं, क्योंकि हमें सेवा दिया गया है जो आपको इस रिमोट एरिया में सबको आप जैसे आप समान आप जितना शांति सुख आनंद जीवन जीने की कला जो सीखे उसको आप जब जाएंगे आपका चलन चेहरा
1: जी
0: और कर्म से लोग को प्रभावित करें, भले बोल से नहीं हो किंतु आपका मन से जो भावना है भाव है तो जन तक तो पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य लेकर हम एक कदम जब बढ़ाए शुरुआत में। हम तो उड़ीसा से आए, यहाँ पर हिंदी भाषा और यहाँ का लोकल भाषा जो
1: गरासिया
0: भाषा में जाकर
1: मतलब उड़िया से लेकर के गरासिया तक जाना ये अपने आप में
0: सर आदिवासी लोग जो रहते हैं, तो हमें यहाँ का लोग और हमारा जो संस्था में सभी कहते भाई तुमको कैसे मिल जाते इतना एकत्रित करते कि सूचना मतलब कोई सूचना नहीं है, सूचना ऊपर वाला को हम दे देते भाई आज
1: निकल जाते सर वहां पधारते।
0: तो मुझे कभी डर वगैरह अपनापन लगता था, मेरा ये मेरा परिवार और इनको कौन उधार कर कौन बताएगा मुझे कोई
1: बस बस सर इसी बात को लेकर के मुझे भी प्रेरणा मिली जब भाई साहब यहाँ के रिमोट एरिया में मिल करके इतने बड़े संस्थान के साथ काम करते तो जब उनको जगाया जाएगा तब तो वो जगेंगे, इसलिए इसकी आवश्यकता है। सरकार भी उनको प्रेरित करने का प्रयास कर रही है तो विभिन्न तरीके से, तो सर ये सारा मिला जुला रूप है, इसको अगर सही समय का सही उपयोग कर रहे हैं
0: यहाँ का पर्यावरण
1: प्रेरणा
0: परमात्मा यहाँ का जो माउंट आबू जो है
1: जी
0: देवभूमि है,
1: बिल्कुल
0: तपोभूमि है और स्वयं परमात्मा का अवतरण भूमि है
1: जी हाँ जी।
0: इस भूमि का जो इस आबू रोड और ये आसपास माउंट आबू का एरिया है इतना शुद्ध भगवान ने इसको सिलेक्शन किया और हमें वहाँ पर रहने के लिए मौका मिला
1: तो
0: और जो वासी हमारा
1: सौभाग्य है, सौभाग्य है।
0: आबू रोड में जो 32 ग्राम पंचायत है
1: जी हाँ।
0: जैसे हम इधर देलदर साइड में जाएंगे भागकर में
1: जी हाँ।
0: भी तो देलदर रास्ता बंद उपलागढ़ से
1: जी हाँ
0: निचलागढ़ उपला खेजडा पावा दैतरा
1: कितनी सुंदर जानकारी कि ये पहाड़िया आप जब यूँ कहते तब मैं पहाड़ियों पर चढ़ता उतरता हूँ हमारे मन से भी
0: ये तो प्रकृति है सर, ये पर्यावरण सर।
1: तो सर ये पर्यावरण यूँ तो सहज लगता है, यही बात आज मैं कहना चाह रहा था कि सर ये अपन सामान्य तौर पर इस प्रकृति के बीच में रहते हैं कितने सहज भाव से प्रकृति का वो आनंद दे रही है लेकिन हम उनके प्रति कितने समर्पित है ये चीज हमको यहाँ पर हमको चेतना।
0: सर आपने एक बात बताया
1: सर
0: एक भूतकाल
1: जी हाँ
0: भविष्य और वर्तमान
1: जीना वर्तमान में
0: हम दोनों को लक्ष्य रखते हैं तो अनुभव किए हैं
1: भूत का तो देखा है
0: अनुभव
1: तो ध्यान रखना है पर वो और भविष्य के लिए चिंतित नहीं होना
0: सिख लेकर
1: के लिए चिंतित नहीं वर्तमान में जीना है और राजयोगी तो यही करता है संकल्प से सिद्धि करता है संकल्प से सृष्टि बनाता है।
0: मुझे बहुत अच्छा लगता है इस एरिया में जाने का बहुत सुकून मिलता है। आप भी कभी बहुत सारा क्योंकि आप जब शिक्षा अधिकारी थे इससे आपका विजिट होना होता है
1: जी जी जी।
0: तो बहुत अच्छा शकुन है जल जंगल और जमीन सर आदिवासी लोग का जो धन है जैसे हमारा इस पूरे विश्व में तीन चीज तीन रत्न होता है
1: जी हाँ
0: झाड़ू सफाई
1: जी हाँ।
0: फिर पोछा और बर्तन सफाई
1: तो कितनी सफाई है सर वहाँ सर आपने जब जब हमें ब्रह्मा भोजन का अवसर दिया भाई साहब मैं देखता हूँ कि उस थाली में बड़ी मुश्किल से ही कुछ कण बचते हैं तो यही तो है सर संरक्षण जितना करे उतना कम है
0: जी।
1: ये चीज बहुत बड़ी है साहब बहुत बड़ी है
0: सर। इसका पीछे हम और आप जैसे आप सोच रहे हैं ब्रह्मा कुमार भाई बहन करते हैं लेकिन उनको प्रेरणा व शिक्षा जो देने वाला उसको अभी तक लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे
1: सर करेंगे
0: सभी कह रहे क्या
1: करेंगे,
0: अरे
1: करेंगे
0: उनका तो रहने का जगह बहुत अच्छा है।

0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
1: जी जी।
0: और पूरे भारत में और सब जगह, और अब तो सर वो सब जगह सोलर पैनल लगना शुरू हो गए हैं। कौन सा सोलर पैनल फायदे वाला है, जर्मनी का है कि अन्य सोलर पैनल है जो भी है, तो कौन सा सिलिकॉन वाले, कौन से कई तरह के, तो सर उससे अब तो किसानों को भी कुसुम योजना के तहत
1: जी जी।
0: सर ये जो बिजली के सौर ऊर्जा के पंप है, वाटर खींचने के जो पंप है वो सरकार लगवा रही है, उसमें सब्सिडीज दे रही, तो सर ये कितना बड़ा काम है सर। उस जो सोलर प्लांट है उससे लेकर के सीधा सा विद्युत सप्लाई में सीधा फायदा, फिर उसी से भोजन का बनना, सोलर प्लांट से भोजन बनना और उससे भोजन बनना और उसी से जो वाटर है वो भी आगे पीछे होना, और सोलर की गाड़ियों का वहां पर होना, एक कितना कितना मतलब ऊर्जा की बचत करता है
1: पर्यावरण के लिए, तो
0: कितना फ्रेंडली
1: इको फ्रेंडली
0: इको फ्रेंडली सिस्टम है सर। तो यहाँ पर तो परमात्मा ने एक बार इन्वेस्ट करके सारा बिल्कुल निःशुल्क जैसे प्रकृति से ही जो आ रहा है,
1: और सारी चीज प्रोडक्शन इतना होता है, तो ये भी प्रकृति का एक देन है। और प्रकृति यहाँ पर क्या है, सूरज का किरण डायरेक्ट प्राप्त होते हैं राजस्थान, ये एक प्लस पॉइंट है जिसका चल
0: बिल्कुल सर
1: अच्छा हो पा रहा है। जैसे बारिश का बहुत कम होता है, इससे बादल आता है तो कम पड़ता है, लेकिन यहाँ
0: सोलर एनर्जी डायरेक्ट मिलती है
1: राजस्थान के लिए,
0: इसलिए फिट है सर, फिट है। तो सर आपने इसको, इस एरिया को भी पूरा का पूरा ग्रीन बना दिया इस तरह से, और इतने समर्पित भाई बहन, बीके भाई बहन जो बिल्कुल समर्पित होकर के यहाँ पर काम करते, पूरा जीवन ही समर्पित कर दिए, तो फिर
1: ये जो चीज है सर, ये आज जो है ना, जो डेडिकेशन भावना का
0: उनका संकल्प सिद्ध हो रहा है।
1: डेडिकेशन भावना मैंने वो अपना परिवार हद में नहीं रहा, हद में जैसे हद में रहते हैं, जैसे हमारा माँ बाप पिताजी भाई बहन, इसमें कितना 25-30 लोग का एक दायरा होता है सेवा करने के लिए,
0: बिल्कुल सर बिल्कुल।
1: लेकिन जब बेहद होता है जिसका, जैसे सरेंडर होते हैं, जो बैचलर रहते हैं, सिंगल रहते,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पवित्रता रहते हैं, तो उनका ये परिवार पूरा विश्व को अपना परिवार मानते हैं,
0: पूरा विश्व, पूरे विश्व के 140 देशों में ये फैले हुए है इसका हेडक्वार्टर, तो उसका मैनेजमेंट गॉडली मैनेजमेंट तो से बहुत बहुत सर, ये कोई सामान्य सामान्य चीज है।
1: कोई भी आते तो हमारे यहाँ पर जो कंपस विजिट में आते, चाहे आप भी आते, कोई भी आते, तो उनको एक संकल्प आता है, इतना पैसा कहाँ से आता है, इतना वेल मैनेजमेंट, वो सोचते नहीं ये मनुष्य कोई व्यक्ति का,
0: ये सर व्यक्ति का नहीं है, फिर
1: व्यक्ति होता चलाते
0: इतने सर जुड़े हुए लोग, ये बड़ा ही वो सहज है सर इसको समझना, वो समर्पित है, बिना कुछ लिए दिए कर रहे हैं,
1: इस बात कर रहे हैं।
0: अच्छा दूसरा, इन्होंने सिस्टम ऐसा एडॉप्ट कर लिया, जैसे यहाँ से चारों तरफ खेती के लिए जमीन है, रहने के लिए स्ट्रक्चर है, जो एक बार बना दिया तकलीफ देख करके, तो वो स्थायी रूप से हो गया, फिर जल है, जंगल है, जमीन है, उसको बचाते हुए चल रहे, तो वो गॉडली मैनेजमेंट हो जाता है।
1: देखिए सर, आपका घर में, आपका गांव में एक छोटा सा फंक्शन करते शादी,
0: जी जी बिल्कुल,
1: 50-200-300
0: जी जी जी जी,
1: क्या हालत होता है और कितना पोल्यूशन का।
0: और सर यहाँ जरा भी
1: डेली तो 5,000 मिनिमम है,
0: मिनिमम 5,000 तो
1: मैक्सिमम भोजन
0: में, और मैक्सिमम 50,000 सर, बहुत बड़ा नंबर है,
1: कभी कोई पोल्यूशन का आपको देखने को नहीं
0: कहीं। और सर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट आपने मुझे दिखाया,
1: उसका ही था
0: सर, ये सारी चीजें मैं इसलिए प्रेरित हूँ आप सभी से कि इतना अच्छा आसपास के एरिया में सबको सुविधाएं देने, कहीं पर बिल्डिंग्स बनाए हैं, कहीं स्कूलों में आपने कमरे भी डोनेट किए हैं, संस्थान ने कई जगह पर
1: करा था, वो भी हमारा भाई बहन है,
0: हमेशा भी तो आपके ही भाई बहन, आपसे प्रेरित है तभी तो वो कर रहे हैं।
1: हमें लगता है आप भी हमारे हैं और हमारे जो सुन रहे वो भी मेरे हैं,
0: बिल्कुल सर,
1: और उनसे हमारा प्यार है,
0: बिल्कुल सर।
1: तो दो चीज हमको अच्छा लगता है, मेरा है, मेरा पंचायत, मेरा बन होता है सर, उसमें त्याग भरना आता है।
0: और सर जितना यहाँ किया है वहाँ बीके भाई बहन जहाँ जहाँ, जैसे अभी
1: सभी जगह
0: जहाँ जहाँ है वहाँ भी सर इसी तरह से, इसको
1: बड़ा बड़ा सिटी सोचिए, दिल्ली वाराणसी हमारा जो पूरा है, वहाँ पर भी बड़ा बड़ा ऐसे ही आप जाएंगे तो मिनी मधुबन है, वहाँ पर
0: मिनी मधुबन है,
1: मिनी मधुबन जैसे
0: मिनी मधुबन कहाँ कहाँ पर, ये आप बताए थोड़ा सा, जैसे बड़े बड़े मतलब जैसे बिल्कुल शॉर्ट नहीं, अच्छे अच्छे कहाँ कहाँ बने,
1: जैसे सर हैदराबाद आप जाएंगे,
0: हैदराबाद में
1: शांति सरोवर है,
0: अच्छा अच्छा,
1: क्या सुंदर गजा,
0: अच्छा
1: कभी भी कोई भी श्रोता जाना चाहेंगे वहाँ भी मिनी मधुबन है,
0: अच्छा
1: पूरा रिट्रीट
0: हैदराबाद,
1: हैदराबाद
0: फिर इधर
1: दिल्ली में जाएंगे सर,
0: दिल्ली में
1: ओआरसी है, ओम शांति रिट्रीट सेंटर है,
0: अच्छा अच्छा,
1: ओम शांति
0: रिट्रीट सेंटर,
1: रिट्रीट सेंटर है,
0: अच्छा
1: वहाँ पर भी पहला रिट्रीट सेंटर ओआरसी,
0: जी जी जी, ये भी मिनी मधुबन,
1: मिनी मधुबन जैसे अभी तो हर शहर में मिनी मधुबन कर दिए,
0: ठीक है वो,
1: क्योंकि जब समय आएगा इतना लोग अभी आ रहे, तो इतना लेकिन यहाँ पर जैसे सुविधाएं इतना हम प्रोवाइड नहीं कर पाते, जैसे पानी का गवर्नमेंट का कुछ रूल एंड रेगुलेशन को भी हमको मानना पड़ता है, उसका सिस्टम क्या, जितना पॉपुलेशन का परमिशन लेना पड़ता है, नहीं तो प्रशासन को बहुत दिक्कत हो जाती है,
0: बिल्कुल सही बात है, सब जगह पानी तो देना है,
1: और उसको ऐसे नहीं हम

0: आगे बढ़ रही है।
1: तो सर दिल्ली का जो ओआरसी है उसकी कैपेसिटी कितना होगा सामान्य तौर पे?
0: उसका भी एकड़ में पूरा 25-30 एकड़ तो मिनिमम
1: उसका बड़ा है सर।
0: 70-80 एकड़ तो वहाँ पर मैंने 66 एकड़ का मैंने देख कर आया था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: ऐसे भुवनेश्वर में जाएंगे,
1: भुवनेश्वर
0: कटक में जाएंगे, उड़ीसा में तो मैंने अपना स्टेट का मैंने गया था इसलिए मैंने बोला।
1: जी जी जी।
0: एक स्टेट में 5 जगह रिटेल सेंटर खोला है बड़ा बड़ा शहर में।
1: अच्छा।
0: संबलपुर उड़ीसा का संबलपुर में।
1: जी जी जी जी। प्लान्ड तरीके से हर स्टेट में 5 जगह रिटेल सेंटर है
0: ऐसे ही छोटा
1: छोटा जैसे छोटा छोटा
0: छोटा बना।
1: ये भी छोटा थोड़ी है, बहुत बड़ा
0: ये तो सबसे बड़ा है।
1: नहीं
0: ब्रांचेज
1: वो
0: क्यों कर
1: कितनी सेवा
0: जैसे यहाँ पर जो हो रहा है वहाँ पर भी इस तरह सेवा के लिए निमित्त जो आते हैं सभी वर्गों को बुलाते हैं।
1: वो सभी वर्ग को आप बुलाते हैं। ये तो सर बिल्कुल फैक्ट है कि यहाँ पर पहले जो भी प्लेसमेंट का जो तरीका रहा बाबा का, आप पूरे बीकेज और नॉन बीकेज के लिए अलग अलग प्रोग्राम करते हुए उनको सबको सेवा देने का।
0: सर इसमें क्या है, हम क्यों इतना ध्यान देते
1: हैं शांति के लिए प्रयास?
0: पर्यावरण को जो चलाता है, पर्यावरण का जो हमें खुद महसूस करते हैं जीव जंतु और जो सराउंडिंग जैसे पृथ्वी आकाश वायु जो 5 तत्व
1: है,
0: इस सबका यूज करने वाला मनुष्य है सर।
1: बिल्कुल सर,
0: हम और आप
1: बिल्कुल,
0: चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी आयु हो, इस सबका जो चलन संचालक
1: कोई भेद नहीं है,
0: मनुष्य है।
1: जी हाँ,
0: पशु का भी वही है,
1: सभी का,
0: पंछी का भी वही, सभी का ये
1: संजय।
0: तो हम परमात्मा क्या सोचे भाई, इसको बनाने के लिए पहले उसका जो मालिक जिसको हम भगवान जो चलाता है उसको सुधारेंगे।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: वो सुधर जाएगा, ये ऑटोमेटिक सुधर जाएगा।
1: सही बात है, सही बात है।
0: हम प्रकृति सुधारने के लिए जाते हैं लेकिन खुद को नहीं सुधारते।
1: नहीं, खुद ही सुधरना तो पड़ेगा।
0: यस,
1: सुधरना खुद को ही।
0: ये चीज
1: सुधरना
0: यूनिक सर।
1: सर खुद सुधर करके खुद बीके भाई बहन दुनिया के 140 देशों तक फैल गए।
0: जी,
1: बाबा को याद करते राजयोग से तो दुनिया के 140 देशों में उनका प्रकाश तो जहाँ है वहाँ आसपास जा ही रहा है ना। तो सर ये पूरी सृष्टि के लिए काम करने वाली बात हो गई, पूरी पृथ्वी मंडल के लिए काम करने वाली बात हो गई। तो वो तो सब जगह है, ये जो गॉडली जो वर्क है ये करने का पूरा जो श्रेय है वो इस तरह के बड़े संगठन को जाता है। ये अपने आप में एक ऑटोमेटिक गवर्नमेंट।
0: सर बहुत अच्छा बात आपने बताया,
1: एक ऑटोमेटिक गवर्नमेंट।
0: जब सोचते हैं सही में जो प्रकृति हमें सब कुछ देता है।
1: जी हाँ,
0: देता कब? जब हम सात्विक भावना से और निस्वार्थ भाव से,
1: निस्वार्थ भाव से करेंगे तभी मिलेगा।
0: तो नहीं तो वो अपोजिट से जाएंगे, शत्रुता भावना से, नकारात्मक सोच से करेंगे तो वो भी हमें रिटर्न
1: हो रहा है ना।
0: वही हो रहा है
1: सर। सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जब अब हो रहा है किसका? नेचर का। माइनिंग से, सैंड का, जो जितने भी अयस्क है, जितने भी मेटल्स के, वो सारा तो सर उससे नुकसान तो हो ही रहा है। तो वो पर सर वही बात है कि डेवलपमेंट के लिए उसका कितना उपयोग होना चाहिए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। और ये मनुष्य ही करेगा और वो विवेक से कर पाएगा, अगर उसमें आध्यात्म है तो कर पाएगा, नहीं तो फिर वो लूटेगा। ये शब्द सही शब्द है, वो रॉबरी करेगा इकोनॉमिक, मतलब उसकी प्रकृति की। तो फिर जब वो लूटेगा तो सर प्रकृति तो प्रकृति है सर, परमात्मा के बाद में अगर बड़ी कोई चीज है यूनिवर्स में तो वो प्रकृति है, प्रकृति है सर। और फिर मनुष्य है। अब वो पर अगर
0: ये भी निस्वार्थ तभी स्वार्थ होगी,
1: तभी जाकर के वो सार्थक सिद्ध होगा, वो उसको सही रिटर्न देगा। नहीं तो फिर वो जितनी ये घटनाएं हो रही है, परमाणु युद्ध ही समझ लो आप, और प्रकार के युद्ध ही समझ लो, ये सारी की सारी चीजें। अब आप कहते बहुत सही बात कहते, मेरे सर मेरे दिमाग में कई बार ये विचार आता है कि ये जो बड़े बड़े युद्ध करने वाले देशों के जो लीडर्स हैं वो इस पर क्यों नहीं सोच पाते इतना ज्यादा। वो भी एक व्यक्ति है
0: सर,
1: एक ब्रह्मा बाबा या एक कोई भी आध्यात्मिक लीडर या कोई भी अच्छे देश का लीडर वो युद्ध के लिए मना करता है और वो युद्ध के लिए आगे आगे बढ़ रहे। अरे भाई थोड़ा आप छोड़ो, थोड़ा हम छोड़ो, थोड़ी त्याग की भावना हो तो मुझे लगता है भाई विश्व शांति में कितना बड़ा आनंद आए, क्योंकि वो लीडर भी तो एक ही व्यक्ति है। हाँ वो देश के लिए सोचता है लेकिन वो हजारों लोगों के विनाश के स्थान पर थोड़ा बहुत अगर अपना त्याग कर ले तो मेरे ख्याल से विश्व शांति की कल्पना की जा सकती है।
0: जैसे आपने बताया तो बहुत अच्छा बात, अपना सबके लिए, उनके भलाई के लिए भी सोच रहे हैं। लेकिन जो ड्रामा ऐसे बना है तो उसमें परमात्मा जो डायरेक्टर है ना, वो भी बोलता भाई मेरे उस तरह यदि नहीं होगा उस तरह नहीं होगा तो जो आप लोग का जो पद भी कैसे बढ़ेगा और उनका जो
1: बात भी
0: पाप का गढ़ा
1: जो वो जैसे भी भरेगा
0: तब जाकर उसका
1: बिजनेस होगा, नई सृष्टि
0: सृष्टि स्थापना
1: होगा, हाँ नई तरीके से।
0: ब्रह्मा एक्यूरेट है सर, परमात्मा जो
1: बता, सर होना ही है, वो तो होना ही है,
0: कोई रोक नहीं सकता है, और कितना भी आप शांति कर दो
1: सर, विध्वंस होना ही है,
0: क्योंकि ये सब जो मिसाइल्स जो बना है हर का पास जो है पूरा मिसाइल्स का भंडार है,
1: जी,
0: तो वो तो प्रकृति के लिए कितना दुखदायी होगा हमको मालूम
1: है,
0: दुखदायी तो है ही है, फिर भी सुखदायी को लाने के लिए दुख तो लाना पड़ेगा, दुख का बाद सुख आएगा ना सर।
1: बिल्कुल सर,
0: दिन का बाद रात, सर रात क्यों आता है, हमको ऐसे जो आता है उसका भी एक चक्र है सर।
1: बिल्कुल सर, उसका
0: भी चक्र है, और चक्र में हमारा भी बुद्धि उस चक्र में ही
1: उस विनाश के बाद फिर वापस वो वही साइकिल में, बिल्कुल
0: हम लोग भी
1: होगा,
0: तब हमारा चिंतन कैसे चल रहा, कुछ तो होगा तब तो हम आगे बढ़ रहे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत अच्छा चिंतन है, और खास कर पर्यावरण में कितना हम सब सिर्फ ब्रह्मा कुमारी क्यों
1: सभी
0: मिलकर करेंगे, तो करते भी है,
1: करते हैं।
0: हाँ, जितना आवश्यकता उतना हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, इसलिए हमको
1: इसके लिए सोचने की आवश्यकता है, उसके लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है,
0: और इसका जो श्रेय इससे भक्ति भावना आस्था विश्वास
1: वो सब मिल करके
0: वो लोग ही कर पा रहे हैं,
1: वही सब मिल करके विवेक से करेंगे तभी जाकर के ये हो पाएगा।
0: बहुत अच्छा लग रहा है, और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे प्रकृति का जो तांडव हम तो देख रहे हैं, और तांडव हम करते तो प्रकृति भी हमें तांडव दिखाता
1: है, रिजल्ट में तांडव ही मिलेगा,
0: पानी का कभी वायु का कभी भूकंप का सभी तरफ आता ही,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो उसके लिए हम पहले से समय हमें कहे, हम पहले से सुधर जाए,
1: बस हम पहले से सुधर जाए,
0: और हमें
1: तो थोड़ा अच्छा तो लगेगा,
0: हमें रिजल्ट मिलेगा
1: तो सर इसमें तो, जैसा कि शास्त्रों में कहा है, जैसा पूर्व के साधु संतों ने कहा है, हमारे बाबा ने कहा है कि आप अगर सही तरीके से जियोगे तो प्रकृति आपको जीने देगी, और आप प्रकृति का शोषण करोगे तो फिर प्रकृति भी रिजल्ट में आपका शोषण कर लेगी, तो ये तो सीधी सी बात है, जैसा आप दोगे वैसा ही पाओगे, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, तो फिर ये तो अवश्य अवश्य अवश्य भाव है,
0: आप काला बॉल फेंकेंगे,
1: जी
0: ब्लैक तो क्या आएगा सर,
1: बस वही आएगा रिटर्न में, तो
0: और व्हाइट बॉल फेंकेंगे गेंद तो व्हाइट ही आएगा
1: बिल्कुल,
0: हमारा जो जा रहा है
1: बस
0: वो व्हाइट की ब्लैक हम जानते हैं,
1: बस
0: तो उसको थोड़ा सा चेंज करना, और कुछ नहीं,
1: बस सहज है सर, ये सर जब कहते हैं ना ये सब ऐसे युद्धों का होना उनका रोकना, ये सर सहज युद्ध रोके जा सकते हैं, लेकिन वो जो करने चलाने वाले हैं ना, वो छीनने वाले, वो चुप हो जाए तो शांति से आराम से काम हो जाए। सर मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ से लोकल स्थान की बात कर लो, यहाँ से अगर आपको सिरोही जाना है तो आप शांति से समय से उठ करके तैयार होकर के गाड़ी से धीरे धीरे जाए ना, के एकदम देरी से तैयार होकर के फिर दौड़ करके गाड़ी से एकदम 120 की स्पीड से जाएंगे तो दुर्घटना की संभावना रहेगी ना सर।
0: सर लेकिन इससे
1: तो सर शांति और आनंद के साथ में, मैं ये कह रहा हूँ योग के साथ में जीते हुए इस जीवन की यात्रा को आप पूरी करें, अपने लक्ष्य तक पहुँचे, ये कह रहा हूँ,
0: जानेंगे। और इसका बात में इसे सर ने बताया, भाई हमें धीरे से शांति से और अपना प्रिपरेशन का साथ चलेंगे,
1: जीना है,
0: ये चीज सभी लोग नहीं कर पाते,
1: यात्रा आनंददायक
0: नहीं होता है, अब सभी का यात्रा आनंद क्यों नहीं होता है उसका जानेंगे अगला लिंक कार्यक्रम, मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन, ये तक खासकर पर्यावरण संबंधित कुछ जानकारियाँ, और हम आपस में ही बात कर रहे हैं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है। और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस। इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर कर।
2: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही है। और सर ब्रेक का पहले हमें बोल रहे थे भाई सिरोही जाना है, तो जैसे आप लोग कैसे जाते हैं? शांति से मेडिटेट होकर और अपना प्रिपरेशन होकर धीरे से गाड़ी धीरे धीरे चक्कर अपना
3: खुशी से जाइए,
2: खुशी से जा रहे हैं।
3: जिस गाड़ी में जगह है उसमें बैठ के जाइए,
2: जाइए
3: जाइए, लोगों को स्थान भी दीजिए, अपने से वृद्ध है उनको स्थान दीजिए, महिलाओं को स्थान दीजिए, माताओं को स्थान दीजिए, तो जाकर के आनंददायी यात्रा हो जाएगी।
2: लेकिन
3: यात्रा तो सब करेंगे
2: सर, लेकिन
3: एक तो झगड़ते हुए करेंगे, अरे खुशी के साथ करेंगे।
2: लेकिन कितना लोग, कितना यात्री इस तरह भावना लेकर पहुंचते हैं
3: सर? ये भावना तो अब जिसको यात्रा करनी है उसको लेना है।
2: कारण क्यों? क्योंकि अभी मान लीजिए आपको एक घंटा लगता है, 45 मिनट्स लगता है यहाँ साब रोड से शुरू जाने के।
3: जी हाँ जी,
2: ठीक है। लेकिन आपको टाइम दिया गया 10 बजे,
3: ठीक है?
2: ठीक है सर, ये भी आप क्राइटेरिया लगाइए।
3: बिल्कुल सर, क्राइटेरिया ये,
2: क्राइटेरिया आपको जाना है 10 बजे वहाँ पहुँचना है।
3: बिल्कुल सर,
2: वैसे कभी भी जाओ तो धीरे धीरे साइकिल में मोटरसाइकिल में भी जा सकते हैं। जो बॉस का बात कर रहे भाई आप,
3: जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ,
2: लेकिन आज का लोग जो है भाई, हम कैसे कम समय में सभी का जो परसेंटेज
3: कम समय
2: कम समय पहुंचे, कोई जाए चाहे नहीं जाए, हम पहले कैसे
3: सबसे पहले हमको पहुंचना
2: है। इसका सुख दुख का हमसे कोई नहीं, एक दो परसेंट को छोड़ के 70-80% लोग का भावना क्या होता है?
3: भाग के
2: भाग कर पहुंचना है, और सबको मैंने रेस में जाकर आगे पहुंचेंगे, 10 बजे का पहले पहुंचे इसे सोचेंगे। और उनका जो स्थिति है,
3: जी हाँ जी हाँ,
2: किस सोच में जा रहा है?
3: तो सर वहाँ जाकर भी हड़बड़ाहट में वो सही एडजस्ट भी नहीं हो पाएंगे, और फिर वो जो कुछ होना है उस कार्यक्रम को भी चूक जाएंगे।
2: फिर भी खुद को दोषी नहीं साबित करेगा, उसका चलते ही हुआ है, उसका चलते सबको उधर
3: देखाएगा। बिल्कुल सही बात,
2: नहीं पहुँचेगा
3: नहीं, फिर बहाना
2: बहाना ये सब कराएंगे। तो ये जो बहानाबाजी हो, जो हम जो सभी अनुभव, तो ये भी पर्यावरण के लिए कितना क्षति
3: सर,
2: एक्सीडेंट का।
3: बिल्कुल सर,
2: आप गलत है, दूसरा सही चल रहा है।
3: बिल्कुल सर,
2: उसका हुआ है
3: सर, इसमें प्राय देखा गया है अब तो, क्योंकि सर बहुत पहले तो अपने जो हिंदुस्तान के जो रूल्स है ना, उसमें गाड़ी, अब हम लोग लेफ्ट में ही चला करते थे और गाड़ी राइट से ओवरटेक होती थी
2: जी।
3: काफी समय पहले, लेकिन एक समय के बाद अब तो सर जब फोर लेन हो गए हैं तब से गाड़ी इधर से भी राइट से भी आगे निकल जाएगी, लेफ्ट से भी आगे निकल जाएगी, वो अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं करता है सर। अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट से राइट में जाता है, वो आगे बढ़ना चाहता है राइट साइड से, उसकी स्पीड उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो उससे भी कम स्पीड में बीच में चलता रहता है। तो सर इस तरह की जो अनियमितताएं है वो किसको डिस्टर्ब करती है? जो सही चलने वाला है, जो सही एंगल में चल रहा है, सही डायरेक्शन में चल रहा है, नुकसान कई बार उनको ज्यादा होता है स्थान पर उनके की जो गलत चल रहे हैं,
2: जिसके चलते पर्यावरण को नुकसान होता है
3: बहुत बड़ा।
2: जैसे जीव जंतु तो कहीं भी कुत्ता बिल्ली बार गाय बार देख, वो तो मनुष्य तो ज्यादा जाता है
3: सर, इतना ज्यादा नुकसान होता है कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी, और सर इनकी जब चोट लगती है उनको संभालने वाला कोई नहीं रहता।
2: और तो ये जो वस्तु निर्जीव वस्तु तो है ही है, गाड़ी का खुद का भी उसका भी, गाड़ी का जो मेटेरियल रोड का अवस्था खराब होता है, ये भी पर्यावरण का साथ है
3: सर, ये तो उसके साथ में ही सर इसको देखना होगा,
2: कितना जिम्मेदारी है खुद, थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल नहीं होता।
3: बिल्कुल सर,
2: हो रहा है
3: बिल्कुल सर,
2: हर रोज आप पेपर देखिए बस सुनने न्यूज में हुई है, इसका कारण क्या पर्यावरण का ये भी नुकसान
3: सर। सर अब हम इसमें बात करें थोड़ा इसके पूरा इसको फोकस करते हुए
2: जी,
3: कि सर ये जो पर्यावरण है इसको अगर अपन संभालते हैं, अच्छा सर इस पर लंबे समय से कार्य होता रहा है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग कह दो या बादलों का फट्टा कह दो या जो कुछ भी कह दो, उस पर हम धीरे धीरे इसको समझाते आ रहे हैं, बस समझाने का मतलब ये है कि हम सचेत हो जाए
2: जी,
3: हम जग जाए, हम अपनी यात्रा को सुखद कर लें। समझाने का मतलब ये है कि हमारे जीवन की यात्रा सुखद हो जाए, हम अच्छा खाएं ताकि हम बीमार ना पड़े, हम अच्छे वातावरण में जिए ताकि हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं हो, हम उन आध्यात्मिक विचारों के साथ में सलूक करें पशु पक्षी प्रकृति के साथ में, ताकि वो भी खुश रहे और हम भी खुश रहे, नहीं तो फिर पेड़ों को काटते जाओ, पशुओं को मारते जाओ, एक्सीडेंट करते रहो, तो फिर जीवन आपका और उनका कैसा होगा इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। सर अब ग्लोबल वार्मिंग की जो बातें पढ़ाई जाती है सिखाई जाती

0: होती है आपने हमने स्कूलों में जाकर के भी देखा, वहाँ पर समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, एक सामान्य चर्चा अपन ने की है, वर्षा के पैटर्न में बदलाव। प्रति माह बरसात हो रही है साहब अपने यहाँ पर लोकल एरिया में, 2 साल पहले प्रति माह बरसात हुई सर, तो सारा हमारा सिस्टम ही गड़बड़ा गया। तो फिर भी ठीक है, इस बार तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, नहीं तो प्रति माह बरसात हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रदूषण का इम्बेलेंसिंग का बहुत बड़ा लक्षण था। सर वन्य जीव आबादी लुप्त होती चली जा रही है, जंगली जीव प्रदूषण के कारण लुप्त होते चले जा रहे हैं, सर वहाँ कितना बड़ा इम्बेलेंस होगा। भाई जो भी पशु जो है वो जिस वातावरण में सर्वाइव करते हैं, वो वातावरण ही उनके पास में नहीं रहेगा, तो वो जंगलों से निकल करके कहाँ आएंगे, सड़क पर आएंगे, उनको भोजन जंगल में नहीं मिला तो कहाँ आएंगे, सड़क पर आएंगे। सर फिर आप हम कहेंगे कि हमको उसने नुकसान पहुंचा दिया, अरे भाई नुकसान आपने पहुंचाया है इसलिए वो आपको नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं।
1: सर माउंट आबू
0: जी सर
1: जो भी आते हैं यहाँ पर लिखा रहता है भाई ये वन्य
0: क्या गजब बात की,
1: इसमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का बहुत रेस्ट्रिक्शन बहुत अच्छा लगता है
0: सर, बहुत अच्छा है वो,
1: नहीं तो आज क्या होता है, आज कोई माउंट आबू जो अभी सुरक्षित रूप में है
0: जी जी
1: कम से कम जितना दूसरा,
0: अब तो सर सरकार परमिशन दे रही है, अब तो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में छूट मिलने लग गई है।
1: लेकिन उसमें मेरिट और डिमेरिट दोनों साइड है
0: जी सर, इसमें डिमेरिट ज्यादा है
1: कंस्ट्रक्शन में,
0: कंस्ट्रक्शन में नुकसान ज्यादा है,
1: नुकसान ज्यादा है
0: सर। ये कंक्रीट के जंगल खड़े करना ये अच्छा नहीं है सर,
1: एक ही जगह पता तो वो भी सरकार दे रहा है, उसका डिमांड तो चलता, सरकार भी क्या कर भाई चलो।
0: हाँ वो देखो मैं कहता हूँ सरकार को तो बैलेंसिंग करना
1: पड़ता है उनका
0: बैलेंसिंग। सर सरकार ने तो अभी मैं आपसे निवेदन करूँ, एक डिसीजन तो बहुत अच्छा लिया सर, इसको पर्यावरण से सीधा जोड़ के ही बात करता हूँ मैं। अभी राजस्थान सरकार ने ये किया है कि हाईवे से 500 मीटर दूर तक शराब के ठेके नहीं रहेंगे,
1: इम्प्लीमेंट कम होगा
0: सर, तो उसके विरोध में खड़े हो गए लोग। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ दिन पहले आपसे एपिसोड में कहीं बात बताई थी, लोग सर उसके विरोध में खड़े हो गए। अभी सर क्या तर्क दिया उन्होंने, मैं सर बड़ा यूं सोच के मुझे बहुत पीड़ा होती है कि जब जो जिस चीज की हम ही प्रशंसा किए और आज तो उसके लिए हम सुन रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो सर ये जो अपने आबरूढ़ क्षेत्र के लिए सर बता रहे हैं, यहाँ तो सर ये इकोनॉमी का बहुत बड़ा ये जरिया है।
1: बताओ
0: अब सर जहाँ संस्कार की बात है, जहाँ सबको बचाने की बात है, वहाँ इकोनॉमी कहाँ से बनी है
1: सर, आध्यात्मिक स्थल में इतना
0: तो
1: बड़ा
0: सर, ये तो सर ऐसी ऐसी चीजें हो रही। अभी सर एक और डिसीजन सर अभी सरकार ने दे दिया जो नेशनल लेवल पर हुआ है सर, कि जो माइनिंग को लेकर के सर 100 मीटर जो पहाड़ी है उसी को अरावली रेंज में माना जाएगा, तो फिर नीचे क्या होगा सर। ये भी बहुत ही पर्यावरण की दृष्टि से गलत डिसीजन है, इसके कुछ क्लिप्स है मेरे पास, वो भी मैं आपसे निवेदन करूंगा। तो सर कुल मिलाकर के सरकार भी बैलेंसिंग करते हुए कहीं न कहीं कुछ तो मतलब का तरीका उनके पास होना चाहिए कि उसका सांस्कृतिक नुकसान कितना हो रहा है उसके
1: विकल्प,
0: हाँ उसके तरीके के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। अब कितना आवश्यक है वो तो सरकारें जाने, आप और हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा ही जो निर्णय है इसको पर्यावरण की दृष्टि से तो ये मेरे ख्याल से चिंतनीय है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार ने निर्णय क्यों लिया ठीक नहीं है, ये तो हम नहीं कहते, लेकिन चिंतन योग्य है, चिंतन योग्य है। सर सोचना चाहिए सर, सर महामारी कोरोना आया सर, प्रकृति के साथ में हमने अच्छा व्यवहार किया तो कोरोना चला गया, तो सर ये महामारियां इस इम्बेलेंस की वजह से ही आती है, और फिर उसमें सर महामारी से फिर
1: नुकसान प्रकृति के साथ,
0: हाँ सर सभी प्रभावित होते, पशु पक्षी व्यक्ति परिवार सभी प्रभावित होते हैं सर। जैसे जिन परिवारों में ये तकलीफ आई उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन संभालेगा, समस्या है ना सर, उनकी अच्छी शिक्षा नहीं होगी, देखिए वातावरण कहाँ ले जा रहा है, उनकी शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो सर फिर वो किस ओर जाएंगे, रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे सर। भुभुक्षितम किम न करोति पापं, ऐसा कहते हैं ना, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करेगा, उसको पेट भरना है जीने के लिए, फिर वो तो कुछ भी कर डालेगा। तो ये वही चीज है, प्रकृति ही है ये, वहां तक उनको दुष्प्रेरित करना तो नहीं चाहती लेकिन उसका प्रतिफल आपको हमको भुगतना पड़ता है। क्राइम क्यों बढ़ता है सर, क्राइम इसलिए तो बढ़ता है आप प्रकृति के साथ में चले तो क्राइम भी नहीं बढ़ेगा।
1: स्कूटी या मोटरसाइकिल रखने के लिए हमको सोचना पड़ रहा है कहाँ रखे तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि उनको तो पैसा हमारे पास,
0: बिल्कुल सर वो इसलिए ये सर ये बहुत बड़ी चीज है सर, ये सर बहुत बड़ी चीज मैं बताऊँ,
1: उसके लिए हम सोचते तो हमारा गाड़ी के लिए हम वो सोचते,
0: हम सर इसलिए सोचते हैं, ये बिल्कुल बहुत अच्छा मतलब आपने बात करने का मौका दिया मुझे। वहाँ सर एक्चुअल में जैसे वो ना करे लेकिन उनके पास जरिया दूसरा नहीं है, उसको मैं सर्टिफिकेट हम लोग नहीं दे रहे हैं कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब वो भूखा रहेगा तो करेगा क्या? सरकार उनके लिए प्लानिंग करे उनके तरीके की। वो जब उस परिवार में कोई तकलीफ है तो सरपंच के माध्यम से उस परिवार तक पहुंचा जाए। और सर सरकार दे रही है, महात्मा गांधी नरेगा में जो कुछ भी दे रही है सरकार दे रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई आवश्यकता है। कई बार सर ऐसे परिवार भी इतनी तरीके से वो वंचित रह जाते हैं कि वो कहीं से उसमें जुड़ी नहीं पाते, लेकिन अब सिस्टम बना है तो सर उन तक पहुंच करके उनकी सुविधाएं की जाए तो निश्चित रूप से वो बच्चे पढ़ लिख लेंगे और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब सर उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आएगा तो फिर वो क्यों नहीं करेंगे सर? इसलिए क्राइम को सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहे, लेकिन वो क्राइम इसलिए सहज रूप में बढ़ जाता है।
1: परिस्थितियां हो चाहे सरकार अनुदान में होने के बाद उसका चिंतन दूसरा तरफ चला जाता है।
0: बिल्कुल सर,
1: कोई सब अच्छा है। होते हैं, लेकिन परिवेश और उनका जो आवश्यक रिक्वायरमेंट
0: वो
1: होता है, फुलफिल नहीं होता है तो और कुछ ऑप्शन नहीं होता है,
0: तो फिर वो ऑप्शन को मजबूरी के मारे उस तरफ आगे बढ़ते हैं।
1: कोई व्यक्ति नहीं चाहता होगा जो हम दे
0: ये बात,
1: लेकिन परिवेश हो चाहे परिस्थिति हो है ना, तो उसको मजबूर कर देता है,
0: मजबूर कर देता है।
1: और विवेकशील है सभी, लेकिन क्यों होता है जैसे अपने हम लोग जब जाते
0: जी,
1: फील्ड
0: जी,
1: में
0: जी, हाँ, जी,
1: हमको आप ही खुद बोलो सर गाड़ी यहाँ पर रखना सुरक्षित नहीं है,
0: जी, बिल्कुल सर, पर वो वजह है ना।
1: और यहाँ पर कभी देखो पिछले दिन में ऐसे हुआ था और
0: जी, जी,
1: आप आए मेहमान होकर आप गाड़ी थोड़ा इंटरलॉकर और हमारा सामने जैसे गाड़ी रहा है।
0: बिल्कुल,
1: ये चीज थोड़ा सा हम सब जानते हैं और यहाँ का जो परिवेश और मजबूर कर देता है, जिसका
0: मजबूर करता है
1: परिवेश तो कितना नेगेटिव कर देता है।
0: हाँ, बिल्कुल,
1: हम पॉजिटिव होकर जा रहे थे।
0: बिल्कुल,
1: और आपने बताया भाई ऐसे ऐसे, तो हमारा ध्यान कहाँ गया?
0: बिल्कुल सर, उस पर चला जाता है।
1: बिल्कुल, कुछ समय के लिए फिर उसको छोड़ने के लिए हम फुटकर्ट करना पड़ता है, चलो कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव में हमेशा जाते
0: हैं,
1: कोई नहीं लेगा और हमें अच्छा काम में करे और लेगा तो उनका हिसाब किताब, नहीं तो ऐसे सोचकर उनको
0: वो ठीक है,
1: पॉजिटिव भावना,
0: पॉजिटिव भावना
1: उनको समझाना पड़ता है।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: तो क्यों कैसे वो उसमें उलझ रहेंगे, ऐसे आएगा ही, क्योंकि समय ऐसे सर
0: जी, सर
1: समय बलवान है,
0: समय बड़ा बलवान है,
1: भगवान नहीं समय
0: बलवान,
1: क्योंकि समय का अंदर में ही भगवान जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल सर,
1: अपने हिसाब से
0: वो तो
1: नहीं कर पा रहा है,
0: अदृश्य रूप में, बिल्कुल सर,
1: नहीं वो भी समय अनुसार ही आता है, वो अपना मन से जब चाहे तब नहीं आएगा।
0: हाँ, वो समय के अनुसार ही आएगा,
1: नहीं तो पहले जैसे शुरू में भी वो चाबी लॉक कर देता है, हाथ में नहीं था, मतलब ऐसे
0: देखो मतलब ये सर, ये नहीं तो फिर सृष्टि में ये सब होता ही नहीं,
1: होता नहीं,
0: क्योंकि ये सब सामान्य
1: है, तब तो उसका आवश्यकता है,
0: ये जब चलता ही रहेगा,
1: तीखा रहेगा तब तो मीठा का स्वाद बारीक,
0: दोनों का बिल्कुल
1: कौन तीखा और कौन मीठा
0: नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, कांटे लगेंगे तभी तो धूप का असर अपने को पता होगा कि वहाँ कांटे थे और यहाँ धूप
1: वहाँ छींची करेंगे, यहाँ
0: कितना बढ़िया ये
1: तो ये
0: कालीन बिछा दिए।
1: समय जो है अभी जो तम प्रधान का समय चल रहा है और इसको सत प्रधान आने में देरी नहीं है और हम सब चिंतन से
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उसके लगे हुए हैं और जरूर आने वाला है, थोड़ा धीरज से काम हम कर,
0: आने ही वाला है सर। देखिए इतने विश्व के सभी देशों में इतने
1: रहे
0: और लोग भी चाह रहे हैं, जो संस्थानों से नहीं जुड़े वो भी चाह रहे हैं, सब चाह रहे
1: हैं। जैसे सर एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम लोग रात में सोते हैं
0: जी हाँ,
1: एक आशा लेकर जब सूरज निकलेगा,
0: हाँ बिल्कुल सही,
1: प्रकाश आएगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो रात का इतना हमें दुख नहीं होता है, क्योंकि हमको मालूम है जो आने वाला समय बहुत अच्छा
0: होगा, निश्चित रूप से आएगा।
1: तो ये जो अच्छा चीज आने वाला, कहीं कोई भी चीज का जैसे कोई भी वृक्ष होता है उसको फल आ गया, उसको तो उसका समय हो।
0: सर इस पर आपने कहा तो मैं आपसे एक बात निवेदन कर दूं कि सर मैं इतिहास को देख रहा था
1: जी,
0: तो इतिहास में सर ऐसा हुआ कि अपने जो हिंदुस्तान के जो पहले के जो राजा हुआ करते थे
1: जी,
0: वो सर युद्ध के अंदर बिल्कुल सर धर्म का आचरण करते थे,
1: बड़ी बात,
0: सत आचरण करते थे। ये अभी मतलब मैंने इसको अपने तरीके से लाइव सुना है, मैं उसी बात को रख रहा हूँ, दो दिन पहले ही सुना है, क्योंकि फिर मैंने कहा इसको ही किस तरह से सर वो अच्छा सोचता था। आपने अभी बताया कि हर किले में मंदिर, आपने अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था कि हर किले में मंदिर है, सब धर्म के प्रति सचेत है। सर जब वो युद्ध करने जाता था तब सर सुबह से शाम तक युद्ध करता था और शाम के बाद में अगर युद्ध करना है तो वो नहीं करते थे, वो लोग हिंदुस्तान के जितने भी राजा थे सर, सुबह सुबह से शाम तक लड़ाई होगी और शाम होने के बाद सूर्यास्त के बाद में सर वो आमने सामने बैठ करके भोजन करते थे, ऐसे उदाहरण है अपने इतिहास।
1: क्या बात
0: जी सर। अब तो ऐसे उदाहरण कभी मैं आपसे शेयर भी करूंगा, ये बांसवाड़ डूंगरपुर में हुआ था सर, वहाँ चाचा और भतीजा आमने सामने थे, पूरे दिन लड़ाई होती है लेकिन सूर्यास्त के बाद में वो साथ में भोजन करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो सर ऐसी ऐसी स्थितियां सर यहाँ पर रही है। सर बाहर के आक्रांता जब भी आए, एक इतिहास की बात के लिए मैं कह रहा हूँ, इसको वैसे नहीं लेना, इतिहास की बात कह रहा हूँ, जब आए तब सर अपने हथियार सवारी भारी थे और उनके हथियार सर हल्के थे, वो घोड़ों पर लड़ने आते थे, हमारे राजा हाथी पर लड़ते थे। वहाँ का राजा जो आता था बाहर से, वो सर राजा था, वो अपनी सेना को आदेश देता था कि जाइए लड़िए, पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था, यहाँ पर ये प्रणाली थी कि वो स्वयं युद्ध के अंदर उतर जाता था। जब तो राजा मारा गया तो सेना हार गई या भाग गई, और जबकि उनके वो सारे बच जाते थे। और सर इसी चाल में इसी मैं कि भाई उन्होंने संध्या के बाद भी आक्रमण किए तो उन्होंने धोखा देना शुरू कर दिया, तो सर उन्होंने साम दाम दंड भेद वो सब अपनाना शुरू कर दिया। सर इसका परिणाम क्या हुआ, उन्होंने हमको तुम्हारे ऊपर राज तो किया लेकिन अंततः उनको जानना पड़ा, लोकतंत्र आया। और आज क्या स्थिति है हिंदुस्तान की, आप सब जान रहे हैं कि विश्व शांति के लिए भी आज की तारीख में लीड कर रहा है। तो सर वो जो आक्रांता थे उनको जाना पड़ा, तो सर ये प्राकृतिक कारण ही हुआ ना, उन्होंने गलत तरीके से कंट्रोल भी है सर, गलत तरीके से क्राइम जब चलता है तो डरना पड़ता है, लेकिन एक अच्छा समय उसके बाद आता है, तो सर भारत का अच्छा समय आया। तो इस तरह से पूरी दुनिया का भी एक धर्म के उदय का अच्छा समय आपके पास में ये आया है, तो इसको लेकर के निश्चित रूप से विश्व में शांति के लक्ष्य को अपन हासिल करेंगे आध्यात्मिक उन्नति के साथ में, इसमें कोई शक नहीं।
1: हर चीज में एक श्रीमत कहते हैं भाई सत्य की नाव,
0: बिल्कुल
1: सत्य की नाव मैंने धर्म जिसको कहते हैं, हिलेगी डोलेगी
0: डोलेगी डोलेगी
1: लेकिन डूबेगी
0: नहीं, डूबेगी नहीं।
1: तो आज जो भी थोड़ा हिलता जुलता लेकिन सत्य ही रहेगा,
0: सत्य तो सत्य ही रहेगा सर।
1: भारत महान है ये जिस धरती पर, और खासकर भारत माता कहते हैं सर
0: जी, बिल्कुल
1: जमीन का कितना महत्व है, इस लोग जब आते हैं इस धरती को पवित्र मानकर माथा में लगते हैं
0: जी।
1: तो ये भी एक पर्यावरण का जो प्रकृति में पृथ्वी का खासकर भारत
0: जी जी बिल्कुल
1: कितना महान और
0: महान है, तभी इसको
1: देवी देवता का वास स्थान सर।
0: सर इसकी सोच अच्छी रही है, सोच अच्छी रही है,
1: अभी भी है और आगे भी रहेगा, ये हमारा भावना है,
0: प्रतिफल भी बहुत ही अच्छा
1: है।
0: और सर सद चिंतन जब होगा तो सर इसमें अब सर आगे भी अपन जाने प्रवाल भित्ति विरंजन भी इसी से होता है सर
1: जी जी।
0: क्योंकि सर जो केमिकल प्रदूषण जो समुद्रों में होता है, समुद्र में वेस्ट को छोड़ दिया कौन देख रहा है, तो फिर वो क्या करता है वो केमिकल जो भी है वो प्रवाल भित्ति, प्रवाल के सर द्वीप के द्वीप बने,
1: कोई देख लिया भी तो उसका ऑप्शन भी रखता है। मैंने कोई देख लिया भाई, आजकल तो सीसी कैमरा बड़ा लगाते हैं,
0: ठीक है,
1: और तब भी वो क्या करता है उसका तो चार तरफ भाव बहुत बड़ा है, इधर उधर करके उसको, और आज लेने वाले देने वाले सब एक ही जैसे हो गए,
0: बिल्कुल सही
1: ना सर,
0: बिल्कुल सही।
1: और इसलिए वो भी डरता
0: नहीं,
1: पनिशमेंट होता है तुरंत, अगला वाला करेगा नहीं, अरे ये तो बच गया भाई मैं भी करूँ तो मैं भी बच जाऊँ।
0: हाँ तो वो
1: क्योंकि उसका लेन देन
0: वो बिल्कुल वो गलत तरीके से ये सारा
1: हो रहा है ना,
0: बिल्कुल सर,
1: जिसका चलते जो स्वार्थी लालची
0: बस लालची प्रवृत्ति हो गई,
1: कुछ भी हो जाए धरती
0: बस बस बस
1: पानी कुछ भी हो जाए हमारा तो पॉकेट भर रहा है,
0: तो उससे क्या फायदा सर, वो पॉकेट कितना चले,
1: वो चीज सब आप सोच रहे हैं, सभी लोग ऐसे सोचे तब
0: सही बात। तो सर ये है, तो इससे सर समुद्री जीव विलुप्त हो रहे हैं
1: जी।
0: सर ये जो है ये क्लाइमेटिक चेंज तो सर इतना खतरनाक सर हो रहा है सर, जो क्रैब्स है ना जिसको केकड़े कहते हैं, कई जीव सर इस क्लाइमेट चेंज की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचारे माइग्रेट कर रहे हैं, जीव माइग्रेट कर रहा है, व्यक्ति कर रहे हैं ये तो ठीक बात है, लेकिन वो जानवर माइग्रेट कर रहे हैं, वो जो जीव जो समुद्र जल पर आधारित है वो सब माइग्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कई जगह इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
1: अच्छा लग रहा है आपने बताया माइग्रेट कर रहे हैं
0: जी सर,
1: जीव जंतु पक्षी का बात कर रहे हैं।
0: हाँ हाँ हाँ
1: हम सब आप और हम अनुभवी है, जब पंछी पशु जीव जंतु का मालिक जिसको हम मालिक मनुष्य विवेकशील है
0: जी,
1: वो आज एक स्थान में नहीं है, वो भी माइग्रेट कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल सही है,
1: वो तो करेगा, मालिक जब ऐसे हालत में है
0: हाँ हाँ तो वो तो करना ही है,
1: वो तो करना है, उसमें कोई सोचने का बात नहीं। लेकिन जैसे आज हम पलायन करते हैं
0: जी,
1: आपका गाँव का लोग भी पलायन करते हैं, सरकार तो अभी कुछ करा है तो रुके, हम तो अमेरिका रूसिया जापान में जाकर विदेश में जाकर नौकरी करते हैं,
0: बिल्कुल पलायन देश में पलायन नहीं हुआ सर,
1: यहाँ पर उसका आवश्यकता नहीं मिल रहा है जितना चाहिए।
0: सर आपने कितनी बढ़िया बात की सर,
1: मनुष्य
0: सर बहुत पहले हिंदुस्तान से जो ब्रेन ड्रेन हुआ इसको कहते हैं ब्रिटिश काल में हुआ था, आज भी वो हो रहा है। कैसे हो रहा है कि सर जितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इंटेलिजेंट इन द सेंस अच्छी समझ रखने वाला व्यक्ति जो भी है, बहुत अच्छी मेहनत करता है, वो सारा का सारा विदेशों में कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर के बैठ जाता है, तो फिर हमको तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि अपने लोगों में वैल्यूज तो है, जहाँ भी जाते हैं अपने हिंदुस्तानियों में वैल्यूज तो है, तो सर वो जब बाहर जाके बस जाता है, हालांकि वैल्यूज सब में है, लेकिन वो जब बाहर जाके जब बस जाएगा तो अपना टैलेंट तो बाहर गया, तो सर उनके यहाँ पर रहने के लिए स्थिति यहाँ होती तो हमारे भी लोग यहाँ रहते। खैर अब तो अंतरराष्ट्रीय जो है वसुधैव कुटुंबकम हो गया, पूरी दुनिया ही एक घर हो गई, इसलिए ये बात ज्यादा मायने नहीं रहती, लेकिन फिर भी हाँ मतलब जो ये अच्छे लोग है वो सब जगह रहने चाहिए। सर गुरु नानक ने एक बार कहा था
1: जी जी,
0: बदमाश लोग वहां पर थे तो उनको कहा कि भाई तुम सारे बदमाश हो, तुम एक ही जगह जुट एकजुट हो जाओ, और जो अच्छे लोग थे ना उनके लिए क्या कहा उन्होंने, तुम सब बिखर जाओ। तो उनको यह भगवान आपने ये क्या आशीर्वाद दिया, अरे भाई के अच्छे लोगों के बिखरने से सब जगह अच्छी अच्छी बातें जाएंगी और ये बुरा एक जगह ही रहने दो, तो इस तरह की कहानी कही जाती है।
1: जैसे माइग्रेशन में जो माइग्रेट होते हैं हाँ। इसमें फायदा हुआ, पॉजिटिव लेना है सर,
0: अच्छे लोग
1: जीव जंतु माइग्रेट हो रहा है,
0: अच्छा
1: तो उसी सब
0: विवेकशील प्राणी अच्छी जगह गए हैं तो उससे तो फायदा ही होना है,
1: जाकर वहाँ पर भी अपना संसार बना,
0: बुराई तो एक जगह इकट्ठी होनी चाहिए ताकि वो वहीं रहे।
1: और जाते जाते हमें खुशी लगा क्योंकि आज का टॉपिक पर्यावरण से मिक्स एक जैसे खिचड़ी होता है,
0: एक अलग तरह का बन गया,
1: परिवेश में हमें जो आवाज करता है
0: जी जी
1: उसी हिसाब से हमारा चल पड़ता है,
0: बस बस हम तो उस हिसाब से चल पड़ते हैं।
1: इसे अच्छा करते रहिए तो अच्छा मिलेगा ही, तो इन शुभ भावना के साथ हमें और श्रीमान भोपाल रामपुर जी को दीजिए इजाजत, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे और किसी पर्यावरण को विषय को लेकर, तो
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में, कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए, भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे, उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है, क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है, कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस मनुष्य सृष्टि के आदिकाल से ही संगीत का जन्म हुआ होगा। आदिकाल अर्थात मानव समाज में हर मनुष्य अपने मन बुद्धि संस्कार रूपी तीन सूक्ष्म शक्तियों के बंधन में आ गई, तब से ही संगीत का उद्भव हुआ। प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि तपस्या द्वारा संगीत के माध्यम से ही माना मंत्रोच्चारण द्वारा अपने ईष्ट देव देवियों का आह्वान करते थे। जबकि इस आधुनिक काल में भी उषा काल से ही हम मंदिर मस्जिद में संगीत के सुर मूर्छना सुनते रहते हैं। तो आइए संगीत की महिमा में और बढ़ोतरी करने के लिए आज हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बारंबार स्वागत है।
1: हाँ गीता जी, आपको और जितने सारे लिसनर है सबको मैं स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ।
0: श्यामली जी, आज हमने आदिकाल से ही जो संगीत की महिमा चली आ रही है इसके बारे में कुछ बातें बताई, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ देखिए, अभी भी आदिकाल आप बोलो या मध्य या अभी जो चल रहा है, ओम ध्वनि जो होता है
0: जी,
1: कितना सुर में उसको बैठा कर करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, महल बदल जाती है
0: जी।
1: तो हम कह सकते हैं कि आदि में भी जो वेद का शामगान हम कह सकते हैं, शामगान में भी जितने सारे मंत्र थे वो मुनि ऋषि आदि सब इतना अच्छा करके संगीत के सुर के द्वारा सुर के धुन में बैठा कर इतना अच्छा मंत्रोच्चारण करते थे कि सुनने का लायक है। कि सबका अलग अलग तरीका है, भगवान को बुलाने का आह्वान करने का अलग अलग तरीका है, तो हम क्यों ना संगीत के माध्यम से करें
0: जी।
1: इसलिए अभी भी
0: वही सरल माध्यम
1: है। हाँ जी, अभी वही परंपरा चल रहा है
0: जी।
1: कि आप देखो संगीत जो है, सुबह आप कोई मंदिर में जाओ तो देखोगे भजन पूजन हो रहा है, रामगान हो रहा है, शिव का स्तुति हो रहा है या आदि आदि देवी देवता का स्तुति होता है, जिस मंदिर में जो है व्यवस्था जो है, या मस्जिदों में अल्लाह को जो बुलाते हैं, या गिरजा में आप जाओ उधर में भी ऐसी आप धुन सुन सकते हो। मतलब संगीत ही एक माध्यम है जो भगवान के पास पहुंच सकते हैं हम भक्त जन
0: जी। सभी लिसनर को पता ही होगा कि जौनपुरी राग की शुरुआत तो श्यामली जी ने कर चुके हैं
1: जी।
0: आगे श्यामली जी आप इसमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, पिछले एपिसोड में शायद लिसनर को जो विलंबित हम सिखा रहे थे तो उसमें स्वरलिपि दे दिया था
0: जी।
1: तो लिसनर को हर बार की तरह मैं उसको कौशन करती हूँ, सावधान करती हूँ कि अगर ये जो हमने स्वरलिपि दे देती हूँ, अगर वो बहुत ध्यान पूर्वक आकार सहयोग से करते हैं तो कभी हम जो विलंबित का बंदेश देंगे अभी वो मिस नहीं कर सकते
0: जी।
1: बहुत अच्छा से बैठा सकते हैं, क्योंकि अभी नए नए राग सीख रहे हैं, थोड़ा कठिन में जा रहे हैं तो सोच रहे कि यह कठिन है हम नहीं कर सकते, ये कभी नहीं होता है। कि हमने भी ऐसे ही किया था, पहले स्वरलिपि को आकार सहित उसको अंदर बैठा लिया
0: जी,
1: उसके बाद अगर बंदिश दे दिया तो मास्टर जी ने, तो हम आसानी से उसको बैठा दिया। तो हमने जो स्वरलिपि दे दिया, मैं तो रिवाइज कराऊंगी, तो अब आज बंदिश देने का दिन है, बंदिश दे देती हूँ जो जनपुरी राग में एक तल के ऊपर 48 मतलब 48 मात्रा थे उसके ऊपर जो बंदिश है, बंदिश को स्थाई का जो बोल है, बाजी झनन झनन बाजे पायलिया मोड़ी राज दुलारी दौड़े अंगनवा, बहुत सुंदर बंदिश है। बाजे झनन झनन बाजे पायलिया मोड़ी राज दुलारी दौड़े अंगनवा माँ, और अंतरा जो है, मन मातंग मतवारो मन मातंग मतवारो ही डोरे इन नए नए छवि अति ही छाई, मन मतंग मतवारो ही डोरे इन नए नए छवि अति ही छाई। तो ये बंदिश शायद लिसनर लिख लिया किताबों में, तो अभी इसको जैसे हमने सिखाया है उसको धुन में बैठा देती हूँ, पहले स्थाई उसके बाद अंतरा बैठा देती हूँ, ठीक है? ओके
0: जी जी।

0: ये हमने थोड़ा विस्तार करके लिसनर को सुनाया, क्योंकि अभी हमने एक बात फिर से स्मृति दिलाती हूँ कि मैंने पिछले एपिसोड में हमने राग आशावरी सिखाया था, क्योंकि ये जनपुरी जो राग है इसका ठाट भी आशावरी है। तो आशावरी के साथ इसका अंतर है, तो आशावरी एकदम धा सा होता है, नी वर्जित है, लेकिन इसमें धा नी सा ऊपर जो हम जब मध्य स्वर में उठते हैं ऊपर चढ़ते हैं तो सा रे मा पाए धा नी सा। लिसनर को याद है, याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने ऐसे सिखाया था, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना है
1: जी।
0: मैं करके सुनाती हूँ, पहले आशावरी उसके साथ फिर से करती हूँ, उसके बाद जनपुरी।

0: शायद लिसनर के सामने क्लियर हो गया कि आशाबरी के साथ जौनपुरी जो राग है इसका अंतर। अभी जो दिया है हम स्वरलिपि आशाबरी के साथ हम बंदिश बैठा देते हैं।
1: जरूर आप बंदिश हमें सिखाइएगा
0: जी।
1: लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हम अपने श्रोता मित्रों के साथ जौनपुरी राग से ही संबंधित एक गीत का आनंद लेंगे। पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराती रहिए रेडियो।

0: आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज शुरुआत में हमने संगीत की आदि काल से ही चली आ रही महिमा के बारे में सुना। उसके साथ साथ जौनपुरी राग और आशावरी राग में क्या अंतर है, ये भी श्यामली जी ने हमें स्पष्ट समझाया। आगे श्यामली जी, आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, अभी मैं फिर से लिसनर को स्वरलिपि के साथ ये बंदिश बैठा देती हूँ, ठीक है?

0: ये हमने स्थाई के थोड़ा बिस्तर किया, थोड़ा बोल के साथ जो बंदिश का जो बोल दिया है उसके साथ किया है। इतना जल्दी तो हम इतना छोटे एपिसोड में नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा इसका सैंपल दे दिया। अगर लिसनर गुरु के पास जाकर शिक्षा लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन सबसे बड़े अगर बंदिश उठाना है तो स्वरलिपि को आकार सहित उसको कंठस्थ करना है।
1: शमली जी, आज जाते जाते आप कौन सा गीत लेकर आए हैं?
0: हाँ, बहुत सुंदर एक गीत 1973 में हस्ते जखम एक फिल्म बना हुआ था, उसमें ऑब्वियसली लता जी का ही है, जो अभी तो लता जी बिना हम तो नहीं रह सकते हैं ना
1: जी।
0: तो बहुत सुंदर गीत, आज सोचा तो आंसू भर आए, अभी भी लता जी को याद करते हैं तो आंसू भर आ जाते हैं,
1: दर्द भरा गीत है।

0: ये गीत जब भी गाती हूँ लता जी का याद ताजा हो जाते हैं
1: जी, क्योंकि अभी अभी ही लता जी हमारे से रुखसत कर गई है, मगर आज भी हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेगी।
0: जी जी,
1: उन्होंने ऐसा सारे विश्व को अपने कंठ के द्वारा ऐसी यादें दी है जो सदियों तक हम सभी और आने वाली पीढ़ी भी उसको याद करती रहेगी। ये सच में लता जी थी, मगर है भी हमारे दिलों में सदा जिंदा रहेगी। श्यामली जी, यही हम विराम लेते हैं, पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो जरूर हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। पुनः रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब आसमान में एकदम अंधेरा होता है, काले बादलों ने चांद को भी ढक दिया होता है, और तब एक टिमटिमाता तारा नजर आता है जो ये एहसास कराता है कि ढूंढने पर रोशनी की एक झलक तो मिल ही जाती है। राठौड़ परिवार के जमाई सा यानी सूरजमल जी को अपने घर से बेदखल कर दिया गया और अपनी पत्नी यानी राठौड़ परिवार की सुपुत्री शांति के साथ घर जमाई बनकर रहना मतलब समाज की जिल्लत सहना। क्या राठौड़ परिवार अपने जमाई को अपनाएगा? क्या इस घर में एक और मेंबर आएगा, या फिर शांति और सूरजमल को अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना होगा? आइए सुनते हैं।
1: मेरा फैसला यह है कि
2: क्या है पापा,
3: थोड़े दिन तो जमाई सा को रहने देते हैं।
4: मुझे पता है पापा कभी नहीं मानेंगे।
5: मुझे तो लगता है कहीं साथ साथ शांति को भी ना घर से निकाल दें।
1: इस दुनिया में भांति भांति के रिश्ते हैं। कुछ लोग उन्हें दिल से निभाते हैं और कुछ समाज के डर से। मान मर्यादा का ख्याल हमको भी है। समाज के नियम के हिसाब से हम भी चलते आए हैं, लेकिन वो नियम जो सच्चे हैं, जो घर की सुख शांति के लिए जरूरी है।
5: हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं, और हम राठौर परिवार का नाम बदनाम थोड़ी होने दे सकते हैं। जा शांति, तू भी अपना बैग पैक कर ले, ढूंढो कहीं और अपना ठिकाना दोनों।
6: भाभी, आप ये क्या कह रही है? क्या ये घर मेरा नहीं है? पापा, आप भी?
7: शांति, सब ठीक कह रहे हैं। चलो, हमें यहाँ किसी पर बोझ नहीं बनना है।
1: तुम लोग का आज से टीवी सीरियल देखना बंद।
8: क्या?
9: क्या?
8: क्या?
9: क्या?
1: अरे मेरी पूरी बात सुने बिना एकदम टीवी सीरियल के जैसे अपना अपना मतलब निकलते जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और बेटा सूरजमल, इस दिल में और इस घर में दोनों में तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
2: हाँ जमाई सा तो यहीं रुकेंगे, कितनी अच्छी बात है ना?
3: हाँ बिल्कुल, ये बात सही है।
6: मैं तो बहुत खुश हूँ।
3: बढ़िया,
2: बहुत अच्छी बात है,
10: सब लोग मिलकर रहेंगे।
11: सुनिए, मैं जानती हूँ आप शांति और दामाद जी का भला चाहते हैं, और मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन सोचिए जरा, घर जमाई बनकर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी?
3: माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त जमाई सा को हमारी जरूरत है।
1: मेरा फैसला आखिरी है, जमाई सा यही रहेंगे, अब से यही उनका घर।
12: वीरेंद्र, तू तो समझ बेटा, मैं तो बस इनकी भलाई सोच रही हूँ।
4: माँ, आप क्या चाहती हो, दीदी और जीजा जी सड़क पर दर दर भटके?
11: किशन, सुन ले मेरी बात, वो तेरी तरह किताबी बातें और शायरी नहीं।

0: मेरा इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। पहले गलती करेंगे फिर पछताएंगे। देखती हूँ मैं भी कब तक रहती है खुशी ने दामाद की।
1: अरे जमाई सा, अब तो आंसू पोंछ दीजिए, आपका आपके घर में स्वागत है।
2: वैसे जमाई सा, मैं आपको वार्न कर देती हूँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
3: अरे राजकुमारी, तू डरा क्यों रही है इस बेचारे को?
1: अरे माँ, खतरा है ना।
4: क्या?
1: राजकुमारी के हाथ का खाना।
5: नहीं नहीं, मुझे तो राजकुमारी भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद है।
6: क्या, करेले के लड्डू
4: या मिर्ची का हलवा?
2: बस इसी से वार्न कर रही थी मैं आपको जमाई सा, यहाँ ना आपकी टांग खिंचाई कर कर के लंबा ही कर देंगे। लेकिन सच बताऊँ, ये परिवार बहुत प्यारा है, हर रंग है यहाँ पे।
0: देखो किस्मत हमारी, जब इनके जीवन में अंधेरा हुआ, ठोकर लगी तो हम याद आ गए। भाई हम सब कोई सूरज थोड़ी हैं जो तुम्हारे जीवन में उजाला कर देंगे। इतनी कमाई नहीं है हमारी कि अब बेटियों को और उनके पतियों को भी बैठ कर खिलाएं।
7: इस बात पर मुझे गर्मा गर्म शेर याद आ गया।
8: सुनाओ सुनाओ किशन, इनके तानों से अच्छा है तुम्हारा शेर ही सुन ले।
2: शेर नहीं भाई साहब, शेर शेर।
8: हाँ हाँ वही।
3: हाँ बेटा, हमारी समझ में नहीं आते ये तेरे शेर कविताएं, लेकिन कम से कम किसी के दिल को दुखाती तो नहीं है तेरी ये कविताएं।
7: तो अर्ज किया है, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या? सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या? अहमियत पर उसे अपनी कुछ कम नाज है क्या? अंधेरों में साथ निभाता है, दिन में भला क्या खूबी है? मुख्तलिफ किस्मत पर अपनी उसे एतराज है क्या?
6: वाह वाह वाह वाह
1: वाह वाह। किशन बात तो तूने सो आने सच्ची कही है, रिश्ते कभी चांद बन जाते हैं तो कभी दिए की लौ ही सही, लेकिन अंधेरों में कभी रोशनी देना नहीं भूलते।
0: तो बनो चांद सितारे तुम लोग, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
8: चंद्रावती, तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो।
0: मैं तो बस सच्ची बात कहती हूँ, बुरी तुम लोग को अपने आप लग जाती है।
8: सच तो बहुत है दुनिया में चंद्रावती, एक सच मैं भी कह देता हूँ।
1: भाई साहब जाने दीजिए ना।
5: भाभी जी, मैं किसी पर बोझ बनने नहीं आया हूँ, मैं शांति को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, बस कुछ दिन ही।
8: जमाई सा, आपका घर है, आप यहीं रहेंगे, और तुम्हें सच सुनना है ना चंद्रावती, तो सुनो। एक तुम हो जो इस घर का माहौल खराब करके रखती हो, ना किसी को चैन से रहने देती हो ना सोने देती हो तुम।
1: भाई साहब बस कीजिए, जमाई सा के सामने ये सब शोभता नहीं।
0: मैंने इस घर के लिए क्या क्या किया है और ये कहते हैं।
2: भाभी जी, भाभी जी चुप हो जाइए, हम जानते हैं आपके पास जुबान कड़वी भी है, दिल नहीं।
6: बातों बातों में आधा सच कह दिया राजकुमारी भाभी ने, जुबान की तो बड़ी कड़वी है बड़ी भाभी।
7: हाँ बहना, रोने में भी ऐसा लग रहा है गुस्से में तंतना रही हो।
0: क्या क्या मैं कड़वी हूँ जुबान की?
3: नहीं नहीं बेटा, तेरे मुंह से तो फूल झड़ते हैं।
9: अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या करो, ऐसे ही बिठा कर रखा है, जमाई सा कुछ खिलाओ।
5: आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है पापा।
9: एहसान कैसा बेटा, ये तो रिश्ते की परिभाषा है, समय का खेल बहुत निराला है, कभी किसी का अच्छा वक्त आता है कभी बुरा, ये तो जीवन का चक्र है, रिश्ते इस पूरे चक्र में साथ निभाते, अगर गम में साथ नहीं तो खुशी में रहने का अधिकार भी नहीं।
1: पापा एकदम सही कह रहे हैं जमाई साहब, हम पांचों भाई बहन में बड़े भाई साहब किशन, शांति और रागनी यही सीख के बड़े हुए हैं कि परिवार मतलब प्यार, कितनी भी नोक झोंक हो, गुस्सा आए या एक दूसरे से दिमाग की सोच में अंतर हो सकता है लेकिन दिल में नहीं।
3: चलिए जमाई साहब, अब आप अंदर चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर हम बाहर खाने के लिए मिलते हैं।
2: पापा कितना सही कह रहे हैं भाभी, ऐसा कोई अपने घर वालों के साथ करता है क्या जैसा जमाईसा के भाई ने किया? ऐसे तो मैं अपने जले हुए आटे के

0: बात ना करूं, उस दिन आटे का हलवा बनाते समय जो आटा जल गया था उसको भी मैंने सब्जी में घोल कर इस्तेमाल कर लिया था। वो जो जली हुई सी महक नहीं आ रही थी सब्जी में, आप लोग कह रहे थे सब्जी जली भी नहीं महक भी आ रही है, ऐसा कैसे? वो उस आटे की वजह से ही तो थी। जमाई साहब रुकिए रुकिए, मैंने कल ही काली गाजर और करेले का केक बनाया है, आपके लिए अभी लेकर आई।
1: अब राजकुमारी जी के हाथ का केक खा के जमाई साहब का हाजमा खराब होगा या सिर्फ मुंह का टेस्ट, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन ये जानता हूँ कि रिश्तों के धागों में अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो खुलने पर भी धागे को कमजोर कर देती है। क्या सचमुच रिश्ते इतनी आसानी से छूट जाते हैं? क्या वो भाई या बहन जिसके साथ बड़े हुए, हंसे खेले, जिसने बचपन में हमें पापा की डांट से बचाया, जिसको अगर किसी और ने चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो हम आगे खड़े हो गए, उसे हम आज खुद चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं सोचते। कैसे आ जाती हैं इतनी दूरियां? वो प्यार कहां खो जाता है? खैर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि राठौड़ परिवार ने सूरजमल यानी जमाई साहब को ये एहसास दिलाया कि ये उनका अपना घर है। लेकिन राठौड़ परिवार है जी, यहाँ सूरज भी अपनी निकलने की दिशा भूल जाता है तो नए जमाई सा मतलब पुराने जमाई, नए घर जमाई क्या चीज है ना? बस सुनते जाइए कि इस जंगल में अब क्या क्या होगा जब एंट्री होगी एक नए जीव की। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहे।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: नमस्कार, मैं हूँ अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूँ, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ।
1: मैया मोरी मैं नहीं मां खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

शांति। आज है 21 सितंबर 2026 और हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बताया है। बाबा कहते हैं, ज्ञान सागर बाप आकर के इस समय हम बच्चों को भक्ति का फल देते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान और ज्ञान से होती है सदगति। तो बाबा आकर हम बच्चों को ज्ञान की धारणा कराते और सदगति में ले जाते हैं। बाबा कहते, इस समय में आकर तुम बच्चों को पतित से पावन होने का ज्ञान देता हूं, क्योंकि तुमने पुकारा है कि हे पतित पावन आओ, तो मैं आकर तुम्हें पावन बनने का ज्ञान देता हूं। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को मैं राजयोग का ज्ञान दे करके राजयोगी बनाता हूं। फिर तुम भविष्य नई दुनिया में चले जाते हो, वहां पर न ज्ञान है न भक्ति है, वहां ज्ञान की प्रालब्ध है। जिस प्रालब्ध को हम दो युग तक भोगते हैं, फिर जैसे ही द्वापर युग में आते हैं, तो द्वापर युग में आते ही हम भक्ति आरंभ करते हैं। तो ये नहीं कहा जाता कि हम ज्ञान को डाइवोर्स दे देते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता में तुम ज्ञान की प्रालब्ध में हो, तो वहां ज्ञान नहीं होता है, तो इसीलिए एक नेचुरल रीति से तुम रावण राज्य में चले जाते हो और वहां भक्ति आरंभ करते हो, भक्ति जप तप पूजा आदि सब करते हो, तब मैं आकर के फिर तुम्हें ज्ञान देता हूं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, सतयुग में कोई भी भक्ति की रसम रिवाज नहीं होती है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है, ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता है। जब है ही ज्ञान की प्रालब्ध का समय, तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या है? वहां यह कोई भी रसम हो नहीं सकती। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान वाच। अब बाप बैठ बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया है, जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई यह ज्ञान सिखला न सके, वह भी भक्ति ही सिखलाते हैं। ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो, जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हो। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है, वहां भी राजयोग की तपस्या में बैठे हैं। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता भी है, कुमारी कन्या अधर कुमारी भी है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, ऊपर में राजा के चित्र खड़े हैं। बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं, भक्ति ही उनकी करते हैं जो सिखला कर गए हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि कौन राजयोग सिखलाए राजा स्थापन करके गए हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो, भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान सुनाने वाले है ही एक, और कोई सुना न सके। ज्ञान का सागर एक ही है, वही आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग है उनमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखला सकते, भल कोई
श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसे कोई नहीं कहते कि मैं सबका परम पिता ज्ञान का सागर हूं। उनको कोई परम पिता तो कहते ही नहीं है, भले जगत गुरु हो जाते लेकिन परम पिता ये टाइटल नहीं ले सकते हैं। यह तो जानते ही है कि परम पिता पतित पावन है। यह पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति रखनी है। मनुष्य कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां तो भक्ति को डाइवोर्स देती है, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति को डाइवोर्स देना ही है। ऐसे नहीं, जब भक्ति में जाते हैं तो उस समय ये मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान को डाइवोर्स देते हैं। नहीं, वह तो ऑटोमेटिकली रावण राज्य में आ जाते हैं। अभी तुमको समझ मिली है कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। राजयोग का ज्ञान है, इनको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर है, वह कभी भक्ति नहीं सिखलाएंगे। भक्ति का फल है ही ज्ञान, भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से होती है सदगति। कलयुग के अंत में सब दुखी है, इसलिए इस पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। इन बातों को अभी तुम समझते हो। बाप आया हुआ है भक्ति का फल अर्थात सदगति देने। राजयोग सिखला रहे हैं। यह है पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है। हमको राजाई चाहिए नई दुनिया में। यह राजयोग का ज्ञान है। ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। बाबा कहते निराकार परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वही ज्ञान सिखलाते हैं, बाकी श्री कृष्ण की महिमा अलग है। जरूर आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है जो प्रिंस बना है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग का ज्ञान ले नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग को सदगति, नरक को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी जो यह ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे, तो राजधानी में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। कलयुग अंत में जो इतने अनेक मनुष्य है वह जरूर मुक्ति धाम में होंगे। गुम नहीं हो जाते हैं, सब घर चले जाते हैं। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है कि अब 84 जन्म का चक्र पूरा होता है, नाटक पूरा होता है। अनेक बार चक्र लगाया है, यह तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण तो बनते जाते हैं। 16108 की माला है। सतयुग में तो बहुत नहीं होंगे, सतयुग का मॉडल रूप भी दिखलाते हैं ना। बड़ी चीज का मॉडल छोटा होता है, जैसे सोने की द्वारका दिखलाते हैं। कहा जाता है द्वारिका में श्री कृष्ण का राज्य था। अब द्वारिका में कहेंगे व दिल्ली में कहेंगे? जमुना का कंठा तो यहाँ दिल्ली में है, वहां तो सागर है, द्वारिका में तो सागर है। ये तो बच्चे समझते हैं, जमुना का कंठा था कैपिटल, द्वारिका कैपिटल नहीं है, दिल्ली मशहूर है। जमुना नदी भी चाहिए, जमुना की महिमा है। परिस्थान दिल्ली को ही कहा जाता है, परिस्थान दिल्ली को ही कहा जाता है। बड़ी गद्दी दिल्ली ही होगी। अभी तो बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग खलास हो ज्ञान मार्ग होता है। ये दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं आगे चल तुमको सब मालूम पड़ जाएगा, कौन कौन कितना पास होते हैं। स्कूल में भी मालूम पड़ता है फलाने फलाने इतने नंबर से पास हुए हैं।
अभी दूसरे क्लास में जाते हैं, पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कौन कौन पास होते हैं जो फिर ट्रांसफर होंगे। क्लास तो बड़ा है ना, बेहद का क्लास है, सेंटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी रीति लेंगे, 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं है। देखते हैं, कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, अब सतो प्रधान बनना है। बाप ने कहा है बुद्धि योग मेरे से लगाओ तो सतो प्रधान बन जाएंगे, पवित्र दुनिया में आएंगे, पाठ तो जरूर बजाना ही है। जैसे ड्रामा में कल्प पहले पार्ट बज चुका है, भारतवासी ही राज्य करते थे, फिर वृद्धि को पाया है, झाड़ वृद्धि को पाता जाता है, भारतवासी देवी देवता धर्म

कलयुग बदल सतयुग आना है, तो कलयुग में पतित होंगे। बाबा ने समझाया है कि लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो व लिटरेचर छपाते हो तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने इस सहज राजयोग के ज्ञान से आगे जन्म में ये पुरुषार्थ किया है। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे, बाबा कहते राजधानी है तो सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे, प्रजा भी तो बनती है ना। अज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो वे लोग पूजा करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही देखते रहते, ज्ञान कुछ भी नहीं। लोग समझते भक्ति बिगर भगवान ही नहीं मिलेगा। तुम किसको कहते हो भगवान आया हुआ है तो तुम पर हंसते हैं। भगवान तो आएगा कलयुग के अंत में, तो अभी कहां से आया? कलयुग के अंत में भी क्यों कहते हैं यह भी समझते नहीं। वह तो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, मनुष्य को जो आता है सो बोल देते हैं बिगर समझ के। इसीलिए बाप कहते तुम बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हो। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्ति बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, भक्ति की चमक कितनी है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और कहां भी सत्संग आदि में जाएंगे तो आवाज जरूर होगा, गीत गाएंगे। यहां तो बाबा रिकॉर्ड भी नहीं पसंद करते, आगे चल शायद यह भी बंद हो जाए। बाप कहते इन गीतों आदि का सब सार तुमको समझाता हूं, तुम अर्थ जानते हो, ये पढ़ाई है, बच्चे जानते हैं हम राज योग सीख रहे हैं, अगर कम पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे, इसीलिए जो बहुत होशियार है उनको फॉलो करना चाहिए क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है तो उससे फायदा होगा। जो अच्छा समझाने वाले हैं उनसे सीखना चाहिए, जो अच्छा समझाते हैं उनको सेंटर्स पर याद करते हैं ना। ब्रह्मा कुमारी तो बैठी है, फिर कहते हैं फलानी आए, समझते ये बड़ी होशियार है, ऐसे तो उसका फिर आदर भी करना पड़े। बाबा कहते ऐसे तो फिर उसका आदर भी करना पड़े, बड़े का फिर रिगार्ड भी ऐसा रखना होता है। तो बाबा हमें दैवी मैनर्स भी सिखाते हैं कि दैवी मैनर्स किसको कहा जाता है। ये ज्ञान में हमारे से तीखे हैं, जरूर इनको उच्च पद मिलेगा, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा कहते इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, बड़े की बड़ी इज्जत होती है, प्रेसिडेंट की जरूर जास्ती इज्जत होगी, हर एक की नंबरवार इज्जत होती है, एक दो का रिगार्ड तो रखेंगे ना। बैरिस्टर में भी नंबरवार होते हैं, बड़े केस में बड़ा होशियार वकील लेते हैं, कोई कोई तो लाख रुपए का भी केस उठाते हैं, नंबरवार जरूर होते हैं। अभी तो लाख रुपया कुछ नहीं है, सामान्य केस के लिए भी लाख रुपया ले, लेकिन उन दिनों की बात है जब आने जाने की चीज थी तो उस समय लाख रुपया बहुत बड़ा माना जाता था। बाबा कहते नंबरवार जरूर होते हैं, हमसे होशियार है तो रिगार्ड रखना चाहिए, सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन ख्यालात रहते हैं ना, प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए, पूरा अटेंशन देना है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, बाप आए ही है सतो प्रधान बनाने, पतित पावन बाप ही है। यहां फिर कहते पतित पावनी गंगा, उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करते आए हैं, पावन तो कोई भी नहीं बना, ये सब है भक्ति। जबकि कहते हैं हे पतित पावन आवो, वह आएगा तो जरूर संगम पर, और एक ही बार आते हैं, हर एक की

अपनी अपनी रस्म रिवाज है। जैसे नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को हाथ में बंदूक दे चलवाते हैं, वह भी बलि चढ़ाएंगे। बड़ा होगा तो एक धक से बछड़े को काट देगा। कोई ने कम धक लगाया, एक धक से न मरे तो वह बलि नहीं हुई, वह देवी पर नहीं चढ़ाएंगे। ये सब भक्ति मार्ग हर एक की अपनी अपनी कल्पना है। कल्पना पर फॉलोअर्स बन जाते हैं, यहां फिर ये नई बात है। इनको तो बच्चे ही जान सके, एक ही बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुमको खुशी रहती है हम स्वदर्शन चक्रधारी है, और कोई समझ न सके तुमको सभा में हम कहेंगे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, तो इसका अर्थ तुम समझेंगे। नया कोई होगा तो मूंज जाएगा, ये क्या कहा, स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, ये नई बात है ना। इसीलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े। बाबा कहते इसीलिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े। तुम्हारा है ज्ञान मार्ग, तुम पांच विकारों पर जीत पाते हो। इन असुरों पांच विकारों से तुम्हारी लड़ाई है, फिर तुम देवता बनते हो, और कोई लड़ाई की बात नहीं होती, और कोई स्थूल लड़ाई की बात है ही नहीं। जहां असुर है वहां देवताएं होते नहीं। तुम हो ब्राह्मण देवता बनने वाले जो पुरुषार्थ कर रहे हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ होता नहीं। रुद्र है शिव, फिर श्री कृष्ण का नाम कहां से आया। तुम दुनिया से बिल्कुल ही न्यारे हो, और तुम हो कितने थोड़े। चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, शास्त्र में दंत कथाएं कितनी है। बाप कहते अब वह सब भूल मां में कम याद करो, आत्मा ही बाप को याद करती है, बाप तो एक है ना। हे परमात्मा व प्रभु कहते हैं तो उस समय लिंग भी याद नहीं आता है, सिर्फ ईश्वर व प्रभु कह देते हैं। आत्मा को बाप से आधा कल्प का सुख मिला हुआ है तो फिर भक्ति मार्ग में याद करती है। अभी तुमको नॉलेज मिली है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है। हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हैं, वहां से नंबरवार पाठ बजाने आती है। पहले आते हैं देवी देवताएं, कहते हैं क्राइस्ट के पहले देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष की बात है, वो लोग कह देते 50000 साल की ये पुरानी चीज है, परंतु 50000 वर्ष की पुरानी चीज कोई हो नहीं सकती। ड्रामा है ही 5000 वर्ष का, मुख्य धर्म है ही यह। इन धर्म वालों के ही मकान आदि होंगे। पहले पहले तो रजोगुणी बुद्धि थी, अभी तो और ही तमोगुणी बुद्धि वाले हैं। प्रदर्शनी में कितना समझाते हैं, किसकी समझ में थोड़ी आता है। ब्राह्मणों के ही सैपलिंग लगनी है, तो बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है भक्ति अलग चीज है। ज्ञान और भक्ति की बातें बाबा ने आज बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया। ज्ञान से सदगति होती है, इसलिए कहते भी है हे पतित पावन आओ दुख से लिबरेट करो, फिर गाइड बन साथ ले जाएंगे। बाप आकर आत्माओं को ले जाते हैं, शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे, विनाश होगा ना। शास्त्रों में एक ही महाभारत की लड़ाई गाई हुई है, कहते भी है यह वही महाभारत की लड़ाई है, वह तो लगनी ही है। सबको बाप का परिचय देते रहो,
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का उपाय तो एक ही है। बाप कहते माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ चली जाएगी। सबको संदेश देते रहो तो बहुतों का कल्याण होगा। सबको संदेश देते रहो तो बाबा कहे बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जो पढ़ाई में होशियार है अच्छा समझाते हैं उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना है। इसी खुशी में रहना है कि हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, न्यारे और प्यारे पन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे और प्यारे पन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सहज योगी जीवन का अनुभव करने लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना है लेकिन मन का लगाव न हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं वह प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारे पन की योग्यता वाले सर्व लगाव से मुक्त। आज का स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। आज का व्यक्ति इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत दाता के बच्चों को हर सेकंड हर संकल्प में देना है। बाबा कहते दाता के बच्चों को हर सेकंड हर संकल्प में देना है। दाता का मुख्य गुण है उदारचित, वह औरों के उद्धार के निमित्त होगा। तो सदैव समझो कि हम दाता के बच्चे हैं, एक सेकंड भी देने के सिवाय न रहे। उसी को कहा जाता है महादानी। सदैव देने के द्वार खुले हो, जैसे मंदिर का दरवाजा सदैव खुला रहता है, ऐसे दाता के बच्चे का देने का द्वार कभी बंद न हो। दाता के बच्चे का द्वार कभी बंद ना हो। अच्छा और